संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ में। जो समझते हैं कि हम एक ही समय में तीन सेवा करते हैं, वह हाथ उठाओ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं, क्या होता है, सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, स्वयं में और साथियों में संतुष्टता, यही सेवा की रिजल्ट है। क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा के सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी बाबा ने। सेवा के सफलता की विशेष तीन बातें सुनाई थी, याद होगी। बहुत सुंदर बात बाबा ने तीनों बताई। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, सेवा में है मन निमित्त भाव। दूसरा निर्माण भावना और तीसरा निर्मल वाणी। तो निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी, भाव भावना और स्वभाव। भाव हो निमित्त, निमित्त बनेगा। भावना है निर्माणता की और स्वभाव हो निर्मल वाणी का। यह सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। जहां निमित्त भाव से सेवा करेंगे तो बाप के तरफ उनका संबंध जुड़ेगा। अगर निमित्त भाव नहीं है तो बाप के नजदीक इतना नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव भावना और स्वभाव ठीक रहा। निमित्त भाव, निर्माण भावना और स्वभाव निर्मल वाणी का, ये ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है, बाप दादा की, कि हर एक को और अपने को चाहे कहां भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे। जहां भी है, जहां भी जाते हैं तो चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे। क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त हो साथ साथ। संतुष्टता और खुशी का फल साथ साथ प्राप्त हो। एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई न कोई का साथ सेवा में होता ही है, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। पहले बाबा ने पूर्वज की बात सुनाई, कैसे शक्तियों द्वारा लास्ट पत्ते तक को भी सकाश देना है। फिर पूज्य पने की बात सुनाई और कहा कैसे हमारी आज तक भी विधि पर पूर्वक पूजा होती है। फिर बाबा ने कहा सदा शब्द अपने पुरुषार्थ में ऐड करो और एक ही समय पर तीनों सेवा साथ हो। मनसा द्वारा सकाश, वाणी द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं, तो वहां हर एक के साथ बहुत सुंदर व्यवहार हो हमारा।
तो चेहरे द्वारा, संबंध द्वारा, संपर्क द्वारा, तीनों द्वारा हमारी इकट्ठा सेवा हो। फिर बाबा ने कहा सेवा का फल है संतुष्टता, खुशी। तो क्या यह अनुभव होती है? उसके लिए तीन बातें बताई, निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी, यानी भाव, भावना और स्वभाव तीनों ही साथ साथ हो, तभी संतुष्टता और खुशी का फल साथ साथ में प्राप्त होगा। फिर बाबा ने देखा, कहा कि किसी भी आत्मा को देखो तो कैसे देखना है? कोई न कोई का साथ सेवा में तो होता ही है, तो एक दो को आत्मा रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, ये चेक करना है। खाली आत्मा रूप में नहीं देखना है, लेकिन उसके ओरिजिनल सतोगुणी संस्कार के रूप से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वह भी दिखाई देता है। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, या वर्तमान संस्कार भी सामने आता है? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वह नहीं होगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाते हैं। अभी आत्म रूप में देखते हो, लेकिन साथ में क्या होता है? वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता है। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो। तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा है, परिवार की बहुत महिमा है। ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता है। अभी बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, परिवार की बहुत महिमा है, ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता है। कल्प में एक ही बार ये ईश्वरीय परिवार मिला है, इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। परिवार की विशेषता को जानना और परिवार में चलना ये एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में चार बातें हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जो निश्चय बुद्धि है वो सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। इसलिए बाबा परिवार का भी महत्व समझाते हुए कहते हैं जैसे बाप दादा में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हैं? जब कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? चारों ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप, नॉलेज, नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार।
ब्रह्मा की नॉलेज में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय, अगर चारों ही बातें मजबूत नहीं है, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय, तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, ये बहुत आवश्यक है। पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? जब वो क्रोध की स्थिति में है, अगर हम दुआ देते भी है उसको, तो दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं, अच्छा संस्कार वश वो बद्दुआ देता है, मानो कि वो क्रोध में है, क्रोध माना ही बद्दुआ देता है। आप दुआ देना चाहते हो लेकिन वह बद्दुआ देता है, लेकिन उसने बद्दुआ दी, लेने वाला कौन? हम ना ले, उसके लिए हमें देना है। लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हो, उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। वो बद्दुआ दे रहा है, क्रोध कर रहा है, उस समय आप उसको अपने उसके ओरिजिनल संस्कार में देखो, उस आत्मा को, तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो नहीं, लेने वाले आप हो, न दो न लो, न हमें बद्दुआ देनी है न बद्दुआ लेनी है। बाप दादा आज सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्म रूप में देखो, वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार है, उसे निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे, तो बातें समाप्त हो जाएगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है, सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है, शुभ भावना शुभ कामना देना और शुभ भावना शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, बाप दादा को एक और भी बात ध्यान में आई तो वह भी बताते हैं। पहले भी बताया है तो कहां कहां संगठन में कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन तीनों पर को काट दो, एक पर रखो, वह एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना है, पर उपकारी है, ब्राह्मणों का स्वभाव है पर उपकारी। पर दर्शन नहीं, यह पर काट दो, यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत। इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखने चाहते हैं।
हो सकता है? पूछते बाबा, हो सकता है? बाप दादा मुबारक देते हैं, इन एडवांस बाबा मुबारक देते हैं। एक दो को अटेंशन दिलाते रहना, क्या करना, रोज रात को सोने से पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मिल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया, वह बाप को पोता मिल देके अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में ही सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, बाप के रूप में सारा पोता मिल सच्चे दिल का दे दिया और आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता है। इतनी सुंदर बात कही कि बाप के रूप में सारा पोता मिल सच्चे दिल से दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाएगा। तो होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। बाप ने देखा यह जनक बच्ची ने तबियत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी, चाहे निमित्त कोई भी है लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया, वहां की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो, दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं। हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेंगे? आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकार रहे हैं, हर एक भक्त अपने इष्ट को पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वह तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, हर एक के भक्त हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी है क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं, तो हर एक के भक्त तो है, तो आपका सकाश का पार्ट है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ और जितना बिजी रहेंगे ना उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना, मनसा सेवा करना जानते हो ना, अच्छा नियम पूर्वक करते हो या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो, मनसा सेवा को रेगुलर करो। और अगर थोड़ी करते हो तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि जितनी परसेंट अभी है उससे बढ़नी चाहिए। चाहे पुजारी है राज्य अधिकारी है, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क। तो बाबा कहे जितनी भी परसेंटेज है इसको बढ़ाना है। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना है तो अभी करो, कभी नहीं। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते। कभी कर लेंगे, ये कभी वाले गीत अच्छे नहीं लगते। अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं। तुरत दान महापुण्य,
तो समझा भी क्या करना है।

यहां भी बैठे हैं, लेकिन सभी को बाप याद है और बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद हैं, क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए यही आश रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर बच्चे में जो आशाएं हैं, वह जानता है कि नंबर वार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है, बच्चे जब मेहनत करते हैं ना तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए, प्यार में खो जाए। प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते तो बाप को भूल जाते हैं, बातों में आ जाते तो बाप को भूल जाते हैं। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुना, प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो सभी को। मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं, उड़ते चलो उड़ाते चलो। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी है वह कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मन मना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते हैं। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती है। आज का स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के हजार कदम बाप के। संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के हजार कदम बाप के। हमें संकल्प करते चलना है और बाबा के हजार कदम हमें मदद मिलने हैं। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते, वह सरल चित होते हैं। और जो सरल चित होते हैं उनके नैनों से मुख से चलन से मधुरता व हर्षित मुक्ता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ऐसी सरल चित स्थिति वाले दूसरों को भी सरल चित बना देते हैं। सरल चित माना, जो बात सुनी देखी की वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए, वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए। अच्छा, ओम शांति।

ओम शांति। जब से कोई भी आत्मा बाबा के पास आती है, उसका बच्चा बनती है, उसे बाबा का ये सुंदर बोल सुनने में आता है, मीठे बच्चे, वो आत्मा सत्य राह को पाकर संतुष्ट हो जाती है। उसे लगता है कि जन्म जन्म की उसकी खोज पूरी हो गई है, जो कुछ उसे पाना था, जिसके लिए उसने भक्ति की थी, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य था, वो उसे मिल गया। भगवान को पाकर, उससे सत्य ज्ञान को पाकर आत्मा संपूर्ण रूप से प्रसन्न और संतुष्ट हो जाती है। ये अनुभव लगभग सभी ब्राह्मणों का है। बहुत थोड़े हैं जिनको खुश होने में देर लगती है, पर जो आत्माएं आते ही प्रभु प्राप्ति से आनंदित हो उठी, जिनके जीवन में संतुष्टता का सबसे बड़ा खजाना समा गया, वे सचमुच परम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन कईयों को ऐसा होता है, कुछ समय के बाद असंतोष उभरने लगता है, खुशी नष्ट होने लगती है, पुरुषार्थ की स्पीड धीमी पड़ने लगती है। इसका एक ही कारण है, अपने लक्ष्य को भूलना, परचिंतन और परदर्शन में लग जाना। यदि मनुष्य अपनी प्राप्तियों की खुमारी में रहे, यदि उसे अपना लक्ष्य सदा याद रहे, तो उसकी खुशी, उसकी पुरुषार्थ की स्पीड कभी खत्म नहीं हो सकती है। हम अपने लक्ष्य को इतना महान बना लें कि व्यर्थ के लिए हमारे पास समय ही न बचे। करें रिवाइज आप अपने लक्ष्य को। लक्ष्य बहुत बड़ी चीज है। लक्ष्य के बिना जो जीवन जीते हैं, उनकी स्पीड तो चींटी की ही होती है। एक महान लक्ष्य मनुष्य के जीवन में उमंग उत्साह भरता है। तो आइए हम स्वयं को बाप समान संतुष्ट मणियां बनाएं, जिनके प्रकाश से सारे संसार का अंधकार दूर हो जाए। हर हाल में संतुष्ट, विशेष रूप से दूसरों के व्यवहार में संतुष्ट, भगवान को पाकर उससे संतुष्ट, उसके प्यार से संतुष्ट, उसकी पालना से संतुष्ट, उसके ज्ञान से संतुष्ट, जो उसका हम अलौकिक अव्यक्त पाठ देखते हैं, उससे संपूर्ण रूप से संतुष्ट और सर्व खजाने पाकर संतुष्ट। सच्ची संतुष्टता तो वास्तव में सर्व खजाने प्राप्ति के बाद ही होती है। एक है जो कुछ हमारे पास है उसमें हम तृप्त रहें, वो बहुत सुंदर बात है। लेकिन हमारी वो संतुष्टता जिसको संपूर्णता कहा जाता है, वो तब आती है जब संपूर्ण ईश्वरीय खजानों से हम सुसज्जित हो जाएं। और वो है ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, खुशी का, समय का, संकल्पों का, दुआओं का, पवित्रता का और पुण्य कर्मों का खजाना। ये 9 हमारे खजाने हैं जो सचमुच हमें भरपूर करते हैं, और इन खजानों से ही हमारा जन्म जन्म का भाग्य बनता है। जिसने इस समय ये खजाने जितने प्राप्त किए, वो उतना ही श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी होगा। तो आइए हम सभी स्वयं को तृप्त आत्मा बनाएं, सर्व खजानों से भरपूर करें। व्यर्थ में समय गंवाने का समय नहीं है। आज सारा दिन हम एक बहुत सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, सुख मेरी नेचर है। फील करें इसको, बार बार याद करें, मैं आत्मा हूँ, चमकता सितारा हूँ और बहुत सुखी हूँ। अपने अंदर आज 100 बार संकल्प भर दें, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं भगवान की संतान बहुत सुखी हूँ, मैं सुख सागर की संतान ईश्वरीय सुखों से भरपूर हूँ। यदि भगवान की संतान ही सुखी नहीं होंगे, तो भला संसार में और कौन सुखी होगा। इस सुख के फीलिंग से जन्म जन्म के दुखों की लहर, उनकी छाया स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और फिर अभ्यास करेंगे साथ में, ऊपर से बाबा
कि किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर निरंतर पड़ रहा है, इससे सारा दिन अतिंद्रिय सुखों की अनुभूति होगी और छोटी मोटी बातों के प्रभाव से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ओम से

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत दिल से प्रसन्नता से स्वागत करती हूँ। और आप सब बड़े उत्सुक होंगे एक सुंदर विचार सुनने के लिए, तो चलिए सुनते हैं आज का सुविचार। दोस्तों, आज का सुविचार बहुत ही सुंदर है। मैं समझती हूँ कि जिस पर हमें गौर से सोचना चाहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, कहते हैं हम जो शब्द बोलते हैं वह हमारा चुनाव है। संदेह, निराशा, बीमारी और हार के बजाय विश्वास, आशा, स्वास्थ्य और जीत के शब्दों को बोलने से हमारे पास अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की शक्ति होती है। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। अब इसमें से एक भी लीजिए ना, अगर हम बीमारी की बात करते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों के लिए हम एक दूसरे को मिलते हैं, किसी ने पूछा कैसे हो, क्या हो, नहीं थोड़ी तबीयत ढीली है, थोड़ी बीमार है। अब वो जाकर दूसरे को कहेगा आज ये मिले थे लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके भी 5% जो नकारात्मकता है वो हमारे पास आएगी। फिर वो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को बोलेगा, और अनजाने में हमने केवल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है यही एक वाक्य बोला, लेकिन 4-5 लोगों के कुछ न कुछ बीमारी के वजह से नकारात्मक संकल्प हमारे पास पहुंचे। तो दोस्तों, बात बड़ी छोटी है लेकिन समझने जैसी है, ध्यान में रखने जैसी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सुबह सुबह हम प्रसन्नतापूर्वक अच्छे शब्दों का भी उपयोग करें तो सचमुच ही न कि हमारा पूरा दिन बल्कि पूरी जिंदगी भी बहुत ही सुंदर, विश्वास के साथ, स्वास्थ्य के साथ, आशाओं के साथ और हमेशा के जीत के साथ जा सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि शास्त्रों के भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके कारण हमारे मन में संदेह पैदा होता है। ऐसे लगता है कि हमारे ऋषि मुनि, जिनके लिए हमारे दिल में बहुत बड़ा आदर है, सम्मान की भावना है, और इस प्रकार के शास्त्रों के शब्द जो है वो कैसे हो सकते हैं। लेकिन जी हाँ, उनका ही बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए कहो या जीवन में उतारने के लिए दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, परिवर्तन की शक्ति कैसे होनी चाहिए, ये चर्चा करने के लिए कहो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। चलिए हम सब उनका स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, सुविचार तो बहुत अच्छा लगा। शब्द कैसे बोलने हैं ये जब मैं सुन रहा था तब मुझे याद आया तोल मोल के बोल। पहले तोलना है, फिर उसका मोल निकालना है और फिर बोलना है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी लगा कि सिलेक्टिव लिसनिंग, क्या सुनना है ये भी अगर हम तय करें तो दूसरा कोई अपशब्द भी बोले लेकिन हमने उसे सुना ही नहीं तो हमारे दिल तक वो जाएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल सचमुच। दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, वो भी राम नाम का मोल क्या है उसके बारे में ही बता रही है। कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कहानी सुनने के बाद बहुत कुछ बातें बुद्धि में क्लियर हो जाएगी। चलिए सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी थे और उनके पास एक शिष्य भी रहता था। एक बार क्या हुआ, महात्मा जी कहीं गए हुए थे और उसी दौरान एक व्यक्ति आश्रम में आ पहुंचा। अब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसको ठीक करने का सही उपाय पूछने के लिए मैं महात्मा जी के पास आया हूँ। अब देखो, शिष्य ने तो उनको बता दिया महात्मा जी नहीं है, इसलिए आप कल आइए। लेकिन वो व्यक्ति आया था बहुत दूर से, बड़ी आस लेकर। तो उसने क्या किया, 2 मिनट सोचकर उसने शिष्य को कहा, आप भी तो महात्मा जी के शिष्य हो और आप भी तो उनके सान्निध्य में रहते हो, अभी आप ही कुछ उपाय बता दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। कृपया मुझे निराश न करें, बहुत दूर से आया हूँ। उसकी परेशानी, उसकी हालत देखकर शिष्य ने भी कुछ सोचा और फिर कहा, देखो बहुत सरल उपाय है, किसी भी पवित्र चीज पर राम नाम 3 बार लिख दो, फिर उसे धोकर अपने पुत्र को पिला दो, ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन क्या हुआ, फिर से बहुत लंबा अंतर पार करके वो व्यक्ति आया और उसने क्या किया, उस शिष्य को बताया कि मैंने तो बिल्कुल आपने जैसे कहा था उसी अनुसार कार्य किया और सचमुच मेरे पुत्र को आराम हो गया, मैं तो बस आपके आभार करने के लिए आया हूँ। उस दिन कुटिया पर महात्मा जी मौजूद थे, आगंतुक ने, उस व्यक्ति ने महात्मा जी के दर्शन भी किए और सारी बात कह दी। उसने कहा, बड़ी आश्चर्य की बात है, मेरा बेटा ऐसे उठ गया बीमारी से जैसे कि कोई उसको बीमारी है ही नहीं। दोस्तों, राम नाम केवल 3 बार लिखकर उसका जल पीने से बीमारी खत्म, आपको तो बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये कहानी आगे क्या कहती है जरूर सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, राम नाम की महिमा सुनिए, आगे क्या होता है। अभी सारी बातें महात्मा जी ने सुनी और वो अपने शिष्य से बड़े नाराज हो गए। वह बोले, अरे साधारण सी पीड़ा के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग कराया, तुमको राम नाम की महिमा का पता नहीं? इसके एक उच्चारण से अनंत पाप कट जाते हैं। तुम इस आश्रम में रहने के योग्य नहीं हो, जहां इच्छा है वहीं चले जाओ। शिष्य को बहुत ही गलती महसूस हुई और उसने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए, क्षमा याचना करने लगा। महात्मा जी ने भी क्षमा कर दी। उन्होंने सोचा, शिष्य को यह समझाना बहुत जरूरी है, आखिर उसकी गलती क्या है। तो महात्मा जी ने एक चमकता हुआ पत्थर शिष्य को दिया और बोले, शहर जाओ, इसकी कीमत करा लाओ, ध्यान रहे इसको बेचना नहीं है, बस कीमत जो भी है लिखते जाना कि किसने कितनी कीमत लगाई। शिष्य पत्थर लेकर चला गया। सबसे पहले क्या हुआ कि वो सब्जी बेचने वाले के पास गया। उसने वो पत्थर की चमक दिखाई। सब्जी वाले ने सोचा, यह सुंदर पत्थर है, मेरे बच्चों को खेलने के लिए काम आ सकता है। और उसने कहा कि इसके बदले में मैं ढेर सारी मूली सब्जी साग देने के लिए तैयार हूँ। शिष्य ने मना किया, आगे बढ़ा। उसकी भेंट एक बनिए से हुई। उसने पूछा, इसका मोल क्या लगाओगे? बनिए ने कहा, पत्थर तो बहुत सुंदर है, चमकीला है, इसे तोलने के लिए काम आ सकता है, मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूँ। आगे चला, सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने क्या कहा, ये तो बड़ा काम का है, इसे तोड़कर मैं पुखराज बहुत सारे बना दूंगा। तो सुनार ने कहा, इसके 1000 रुपये देने तक मैं तैयार हूँ। फिर शिष्य रत्नों का मोल लगाने वाले जौहरी के पास पहुंचा। अभी तक पत्थर की कीमत साग मूली सब्जी 1 रुपया इतनी थी। अभी उसकी हिम्मत बड़े दुकान में जाने की नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब उसने 1000 की बात सुनी थी तब उसका हौसला बढ़ गया और उसने उस पत्थर को दिखाया उस दुकानदार को। लगता था उसको कि ये तो एक उच्च कोटि का हीरा है, पर इसीलिए दुकानदार ने कहा कि मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कीमत बढ़ती गई, करोड़ तक गए। वह घबराया कि कहीं उसे सही कीमत न पता चली हो। हार कर वह राजा के पास गया। राजा ने जौहरियों को बुलाया, सबने कहा, राजन ऐसा पत्थर तो कभी देखा नहीं है, इसकी कीमत आंकना बुद्धि से परे है, इसके आगे तो राज्य पूरा भी अगर दे दिया जाए तो भी संपत्ति कम पड़ जाएगी। अब महात्मा जी की प्रसिद्धि से सब परिचित थे। राजा ने कहा कि गुरु जी से कहना, यदि वह यह बेचना चाहते हैं पत्थर तो मैं सारा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। शिष्य ने कहा, राजन बेचना तो है नहीं, सिर्फ कीमत का पता लगाना है। अब वो आश्रम पर आया, सारी कहानी सुना दी, फिर बोला कि राजा ने तो कहा है कि पत्थर के बदले सारी संपत्ति देने के लिए राजी है। तो गुरुजी ने कहा, अभी तक इसकी कीमत तो आकी नहीं है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी राजा पूरी राज्य देने के लिए तैयार है, और क्या चाहिए, और क्या हो सकती है इसकी कीमत? गुरु ने उसे एक लोहा लेकर आने के लिए कहा। वो आ गया लोहे के 2 चिमटे लेकर। गुरु ने चिमटों से पत्थर को स्पर्श किया। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि वे सोने के हो गए। शिष्य की तो आंखें ही फट गई। गुरुजी ने कहा, देखा इस पत्थर का चमत्कार, अब बोलो इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। शिष्य सब समझ गया। उसने कहा, संसार में हर चीज की कीमत सोने से लगती है, पर जो स्वयं सोना बनाता हो उसका मोल करे कैसे। महात्मा जी ने कहा, अरे यह पारस है, इससे स्पर्श करते ही लोहे जैसी कितनी भी कठोर कुरूप काली चीज सोने जैसी सुंदर लचीली चमकदार हो जाती है। भगवान के नाम की महिमा भी कुछ ऐसी है। इस पारस के प्रयोग से केवल जड़ पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं जो नश्वर है, लेकिन कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन राम नाम वो सच्चिदानंद है। अब उसके कारण हम आनंद के मार्ग पर चल सकते हैं। पहचानो अब उसका मोल, जिस राम नाम के प्रभाव से इंसान भव सागर पार कर सकता है। तो उसके लिए मामूली सी परेशानी के लिए केवल उसको बुलाना, क्या ये ठीक है? तुमने तो ऐसी बात की, सोचो क्या बात तुम बता रहे हो। अब दोस्तों सचमुच कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम सब भगवान के नाम का अगर मोल समझते हैं तो हम उसकी कद्र कर सकते हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं वो कमियां निकाल सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम का मोल आका नहीं जाता। ज्ञानेश्वर जी, सचमुच मुझे लगता है कि आज तक हमने पारस नाम का पत्थर एक है ये तो बात सुनी थी, लेकिन हम भी कभी कभी केवल बात सुनते हैं, विश्वास कम रखते हैं। सचमुच भगवान का नाम ही तो पारस जैसा है, और वो नाम लेने से हमारे अंदर के जो कालेपन है, बुराइयां है, वो सारी एक सेकंड में परिवर्तन हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सचमुच हमें भी भगवान के नाम का मोल पता होना चाहिए।
2: बिल्कुल भक्ति जी, कथा बड़ी सुंदर है। राम नाम की महिमा बहुत आगाध है, और ये कथा जब मैं सुन रहा था तब मुझे वाला कोड़ी और नारद जी उनकी कथा याद आई। उन्होंने भी राम नाम की महिमा जानी थी और वाला कोड़ी को कहा था कि आप राम नाम लो। राम नाम लेने से उनके यहाँ इतना परिवर्तन हो गया कि वो बड़े महर्षि वाल्मीकि हो गए और रामायण के रचयिता हो गए। तो राम नाम की महिमा तो है ही, लेकिन जैसे राम नाम अनमोल है वैसे राम नाम मुफ्त भी मिलता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। राम नाम लेने के लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को धन देने की जरूरत नहीं है। राम नाम लेते हैं तब उसका भाग्य खुल जाता है, और राम नाम दान भी करते हैं तो दूसरों का भी भाग्य खुल जाता है। तो ये कथा सुनने के बाद मुझे लगता है कि अगर हम भी राम नाम का दान दे तो वो पारस पत्थर था, लेकिन हम भी पारस जैसे हो सकते हैं। और कोई भी दुखियारी हमारे पास आता है तो उसको हम सुखी बनाने के लिए तरकीब बता सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल सचमुच दोस्तों, हम पारस जैसे बन जाए, हमारे पास कोई भी आ जाए और उसके भाग्य खुल जाए, उसका जीवन सोने जैसा बने, इससे तो बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, और जैसे कि कहा, शब्द जो है उसका भी मोल जानना चाहिए, शब्द कितने अनमोल है। इसीलिए सदा सकारात्मक बोलते रहे, आशा के बोल बोलते रहे, ये भी सदा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, शास्त्रों की बात हो रही है, अमृत धारा हम सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा, जरूर हम एक ब्रेक के बाद फिर से उसको सुनते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृत धारा में ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। और दशम स्कंद का 12वां अध्याय, जिसमें अघासुर का वध, ये बहुत ही सुंदर कथा हम सुन रहे हैं। तो आगे कहते हैं भागवतकार, शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि अघासुर का एकदम भयंकर रूप, जिसने अजगर का रूप धारण किया था, और उसका यही उद्देश्य था कि सबको चपेट में ले ले। तो उसका ऐसा रूप देखकर बालकों ने क्या समझा कि ये भी कोई वृंदावन की शोभा है, और वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि जैसे यह तो लगता है कि कोई अजगर का खोला हुआ मुंह हो। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो, ये तो हमारे सामने कोई जीव जैसा बैठा है। यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं? तो दूसरे ने क्या कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए ना, तो मानो ऐसा लगता है कि ठीक ठीक उसका ऊपर का होठ ही हो। तीसरा ग्वाल बाल आया, उसने कहा, सच बात है, देखो तो सही, क्या है ये, रे कंदराहो जैसा जबड़ा भी उसका लगता है, कितने बड़े बड़े शिखर पंक्तियां जैसे उसका मुंह लग रहा है, उसकी दाढ़े भी दिखा रही है। ऐसे एक दूसरे के साथ सब चर्चा करने लगे। और फिर एक ग्वाल बाल ने कहा, क्या करते हैं हम सब लोग उसके मुंह में घुस जाते हैं, देखते तो है, क्या ये हमें निगल जाता है। इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच अनजान बच्चों ने आपस में ये जो कोई बात की थी, वो बातें उन्होंने सचमुच ही अमल में लाई, और सारे ग्वाल बाल हंसते हुए उस अघासुर के मुंह में घुस गए। अब उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई ये सारी भ्रमपूर्ण बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण ने क्या सोचा, अरे सचमुच इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। शुकदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, श्री कृष्ण तो अभी जान गए थे कि ये है राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस है ये, और श्री कृष्ण से भला क्या छिप सकता है, वह तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने निश्चय किया कि अपने सारे सखा ग्वाल बालों को इसके मुंह में जाने से बचा लेना चाहिए था, आप क्या कर सकते हैं। ऐसे वो सोच ही रहे थे, इतने में वो अपने सामने से देखते हैं कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस अघासुर के, उस असुर के पेट में चले गए, लेकिन उस अघासुर ने उन्हें निगला नहीं। कारण क्या था? कारण यही था कि वो सोच रहा था कि मेरा भाई बकासुर, मेरी बहन पुतना, इनके वध करने वाले श्री कृष्ण को पहले उसको मुंह में आ जाना चाहिए, तब मैं सबको एक ही साथ निगल ले लूंगा। भगवान श्री कृष्ण तो सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देखा, अरे मैं तो इन बेचारे ग्वाल बालों का एकमात्र रक्षक हूँ, मेरे सामने ये के मुंह में चले गए, अब क्या कर सकते हैं। ज्ञानेश्वर जी, बड़ी रसीली रोचक कथा है ये, लेकिन कभी कभी मन में ऐसा विचार आता है कि छोटे बच्चों को अगर हम ये कथा सुनाएं, या बड़े भी हो, लेकिन वो तो एक प्रश्न जरूर पूछेंगे कि कोई भी बात होने के बाद भगवान फिर वो बचाता है, वो सारी बातें जो है वो उसमें अपना कर्तव्य दिखाता है, लेकिन अगर वो पहले से ही जानता है तो वो सावधान क्यों नहीं करता।
1: भक्ति जी, बहुत ही सुंदर विचार करने योग्य प्रश्न है, और ये प्रश्न हमेशा बहुत बार पूछा भी जाता है और आम आदमी के मन में आ सकता है। ये जब कथा मैं सुन रहा था, इतना अच्छा वर्णन किया है भागवतकारों ने, और मुझे लगा कि कोई मैं पिक्चर देख रहा हूँ, कोई फिल्म देख रहा हूँ। देखिए, बहुत बार जब मनोरंजन की बात आती है तब तर्क जो है वो उसे कोई स्थान नहीं रहता। तर्क और मनोरंजन वह थोड़े अलग अलग रहते हैं। चाहे ईसाप नीति कहिए, चंदा मामा कहिए, बीरबल अकबर कहिए, बहुत सारी कथाएं हैं। ऐसी ही कथा के रूप में अगर इस कथा की तरफ हम देखें तो मनोरंजन तो बहुत अच्छा होता है। सामने छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं और राक्षस जो है असुर वो जबड़ा खोल के बैठा है और फिर वो सोच रहे हैं क्या करे। लेकिन आध्यात्मिक ओर से हम उसकी तरफ देखें तब मुझे लगता है कि बहुत बार हमारी जिंदगी में कठिनाइयां आती है, कठिनाइयां सामने दिखती है, संकट सामने दिखते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम संकट में घुस जाते हैं, मुश्किल की घड़ी में घुस जाते हैं, जहां गलत काम है लेकिन वो भी सही लगता है और फिर हम बाद में पछताते हैं। लेकिन उसी समय जब हम निश्चय बुद्धि से परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा की कृपा के अंदर रहते हैं, तब परमात्मा भले गलती हो गई लेकिन उसको सुधारने का मौका हमें देता है और उस गलती से, उस संकट से हमें बाहर भी निकालता है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों चलिए आगे कहानी क्या बताती है जरूर सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही रसीली कथा है और सचमुच इसीलिए श्रीमद् भागवतकार श्री कृष्ण लीलाओं का जो वर्णन करते हैं वो सुनने के बाद रोमांचित हो उठते हैं। और ऐसे ही ये कथा आगे बताती है कि जैसे ही श्री कृष्ण जी ने अपने ग्वाल बालों को बचाने के लिए और ऐसा कोई उपाय करने के लिए जिससे वो सब बच जाए, वो अपना कर्तव्य निश्चित करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवताएं भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के जो हितैषी थे कंस आदि राक्षस बहुत हर्षित हो गए। अब अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित श्री कृष्ण जी को अपनी ढाड़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु दोस्तों क्या हो गया, उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण जी ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फूर्ती से बढ़ा लिया।

0: सबको लेकर अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। सचमुच कितना सुंदर वर्णन है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, भागवतकार बताते हैं कि ये सारी जो श्री कृष्ण की लीला थी, उस समय उनकी आयु मात्र केवल 5 साल की थी। अब ये सारी जो बातें हैं, वर्णन करते वक्त या सुनते वक्त, पढ़ते वक्त बहुत ही अजीब लगती है। 5 साल का बच्चा इस प्रकार की बातें। तो ज्ञानेश्वर जी, ये सारी बातें जो है, श्री कृष्ण की लीलाएं जो है, वो सुनते वक्त, पढ़ते वक्त, सुनाते वक्त बहुत सुंदर लगता है, लेकिन क्या 5 साल का बच्चा और ऐसी सारी लीलाएं, इसके पीछे भागवतकार हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: भक्ति जी, श्री कृष्ण की लीलाएं श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, और श्री कृष्ण के लीलाओं की शुरुआत होती है पूतना के वध से। यहाँ तो 5 साल का बच्चा है। पूतना का जब वध हो गया, तब वो दूध पीता बच्चा था। उसके बाद भी हमने बहुत सारे असुर जो है उनका निर्दालन देखा। वो रेंगता हुआ बच्चा था, उस समय भी असुरों का निर्दालन हो गया। तो मुझे ये लगता है कि दो चीजें हम उसके ऊपर गौर करें। भागवत कथा, अभी अघासुर का वध, अघासुर मर्दन, ये कथा जब हम सुन रहे थे, तब दो प्रकार से हम उसे देखे। एक, परमात्मा की शक्ति, वो शरीर की उम्र कितनी है उससे निर्भर नहीं होती, और वो क्या करता है, जब भी कोई उसकी मदद के लिए याचना करता है, उसके लिए वो दौड़ता है। लेकिन ये मदद की याचना जो है, वो दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं होनी चाहिए। हम भगवान को दिल से याद करते हैं या दिमाग से याद करते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर वैज्ञानिक रूप से उसे देखें, तब मुझे लगता है कि शरीर की आयु कितनी भी छोटी हो, लेकिन अगर शक्ति उसमें अच्छी है, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों को जोड़ने के बाद अगर हम इसके ऊपर सोचे, तो मुझे लगता है कि शरीर की आयु के तरफ ध्यान न देते हुए हम आध्यात्मिक शक्ति उसके तरफ ध्यान दे, तो वो शक्तिशाली होती है। बहुत बार ऐसे लगता है कि संकट जो है वो बहुत बड़े हैं, और हमारे संकट इतने बड़े हैं कि उसके सामने हमें भगवान भी छोटा नजर आने लगता है। भगवान की मदद जब हम मांगते हैं, तो मन में संशय पैदा होता है कि क्या मदद मिलती है या नहीं मिलती है। अगर उस समय हम ये ध्यान रखें कि वो शक्तिशाली है, तब क्या होगा, संकट भी छोटे लगने लगेंगे। तो वो गीत मुझे हमेशा याद आता है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, लेकिन उन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ये चीजें एक फैंटेसी के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल फैंटेसी जैसी है, लेकिन हम उसको अगर आध्यात्मिक रूप से देखें, तो आध्यात्मिक रूप से हमें मदद करने वाली है, हमारे शंकाओं का निरसन करने वाली है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल सच कहा ज्ञानेश्वर जी आपने, कि कई बार हमारे मन की शक्ति कम हो जाती है, और मन की शक्ति कम होने के कारण हम उस शक्ति की कमी से भगवान को आंकने लगते हैं, और इसीलिए हमको लगता है पता नहीं होगा या नहीं, मदद मिलेगी या नहीं। यहाँ भागवतकार हमें ये भी संदेश देना चाहते हैं। और दूसरी बात, मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी, बाल लीला अर्थात बचपन में भगवान ने जो लीलाएं की, जो चमत्कार किए, उसका वर्णन यहाँ है। सारा भागवत उसी से ही इतना रसीला हो गया है। तो यहाँ भी भागवतकारों का यही हमें एक संदेश हो सकता है कि हम इन बातों को हमेशा अपने मन से जोड़ने।
1: बिल्कुल। और भी मुझे एक लगता है कि भक्ति जी, कि ये टीम स्पिरिट जो है ना, आजकल हम टीम की बातें करते हैं, कोई भी गेम है, कोई भी खेल है, उसमें टीम में जो कैप्टन होता है वो फ्रंट साइड में लीड करता है, वो पीछे नहीं रहता, वो आगे जाके लीड करता है अपनी टीम को। तो ये जहां श्री कृष्ण जी की टीम थी, ग्वाले थे, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो छोटे बच्चे अंदर गए हैं, देखने के बाद उनको छुड़ाने के लिए खुद वो अंदर चले गए। अगर किसी को बचाना है तो खुद को कूदना पड़ेगा।

0: घंटा पानी में तभी तो बचा सकते हैं अगर हम किनारे पे रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे बचाओ बचाओ, तो वो बच नहीं सकता। उसके लिए ताकत भी होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए। तो वो शक्ति इच्छा परमात्मा के पास थी और उन्होंने उनको बचाया, ये हम यहाँ सीख ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, सही बात है कि जब हम इतनी समर्पण की भावना रखते हैं या नेतृत्व शक्ति हमारे अंदर इतनी होती है, तो सचमुच हमें समय पर सही मदद मिल ही जाती है। और इन सब बातों को भागवतकार हमें कुछ कथाओं के द्वारा, ऐसे लीलाओं के द्वारा बताना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अघासुर, जिसका वर्णन इतना सुंदर रीति से किया है, क्योंकि अघासुर अर्थात मूर्तिमान पाप, और भगवान के स्पर्श मात्र से भागवतकार कहते हैं कि उसके सारे पाप धुल गए और उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि ये सारी बातें भी भागवतकार हमें बताना चाहते हैं कि पाप कर्म होने के बाद भगवान के एक स्पर्श से भी मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। जैसे आज हमने पारस की भी बात की, तो ये भी एक बात इसमें भागवतकार हमें स्पष्ट करना चाहते हैं।
0: क्योंकि मुझे लगता है भक्ति जी, यहाँ संदेश ये है कि अगर कोई पाप कर्म किसी ने किया है तो उसका दिल छोटा ना हो, पश्चाताप की आग में अगर वो जलता है और उसे लगता है कि मैं यहाँ से मुक्ति पा सकता हूँ या नहीं पा सकता हूँ, तो भागवतकार यहाँ विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने पाप कर्म किया है लेकिन आपको अगर पश्चाताप हुआ है तो फिर आप वहां से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन ये है, शर्त यह है कि आप वापस उसी मार्ग में ना चले। आजकल की जिंदगी में भी हम देखते हैं बहुत सारे डकैत है जिनको पश्चाताप हो गया और वो अच्छे मार्ग पे चलने लगे और उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। ये हमारे सामने मिसाल है। तो ये मिसाल हमारे लौकिक जीवन में है, आध्यात्मिक जीवन में, और जहाँ भगवत कथाओं जैसे वर्णन है वहां भी हम ये संदेश ले सकते हैं कि अगर कोई पाप कर्मी है, अघासुर जैसा पाप कर्मी भी था लेकिन उसको भी मुक्ति दे दी और उन्होंने उनका अंत कर दिया।
1: बिल्कुल, स्वयं भगवान ने, भगवान की कृपा से, भगवान की स्पर्श से और भगवान के द्वारा उसकी मुक्ति हो गई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, हमने पहले से ही ये बात को तय किया है कि हर प्रकार की सकारात्मकता और हमारे जिंदगी में इन कथाओं का क्या भाव है, किस प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं, इस बात को हमें मद्देनजर रखना है। इन बातों को हमें बहुत अच्छी तरह से सोचना है, समझना है। मुझे लगता है कि ये सारी बातें अगर हम समझ गए तो श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, और 5 साल का हो, 2 साल का हो या दूध पीता बच्चा हो, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने इन सब पापी लोगों को मुक्ति दी, इन बातों को भी भागवतकार हमें बताना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ समय को देखते हुए आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे अमृतधारा में, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम सब मिलकर बैठकर समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उसके समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। खुशी इस बात की हमें बहुत ज्यादा है कि जो भी समाधान दिए जा रहे हैं वो सचमुच समाधान का कार्य कर रहे हैं, और जिन चेहरों पर खुशी नहीं थी, जिन चेहरों पर गम था, उनके चेहरों पर खुशी वापस लौटती चली जा रही है। वास्तव में समस्याएं जीवन को बहुत ज्यादा दुख और परेशानी की ओर ले जाती हैं, लेकिन यदि हम समाधान की ओर देखते हैं, लेकिन यदि हम आशा भरी निगाहों से प्रकाश की ओर देखते हैं, तो समस्याएं दूर होती चली जाती हैं और जीवन आनंद से परिपूर्ण होता चला जाता है। समाधान कार्यक्रम का लक्ष्य यही है कि आपका जीवन खुशियों से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण होता चले, और हमें हमेशा समाधान की ओर ले चलते हैं। हम जानते हैं आदरणीय भ्राता राजयोगी सूर्य जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: भ्राता जी। बहुत सुंदर हर बार की तरह हमारे पास पत्र और ईमेल हैं, जिनमें हर प्रकार की मिली जुली बातें हैं। कुछ बातें ये हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के जो समाधान दिए गए हैं उनका बहुत अच्छा हमें फायदा हुआ है। कुछ लोगों के प्रश्न भी हैं और कई प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। तो कुछ लोग वो प्रश्न कर रहे हैं जो प्रश्न कई बार हम लोगों ने शामिल किया है अपने कार्यक्रम में, इसलिए हम चाहेंगे कि लगातार हमारे दर्शक कार्यक्रम देखते रहें ताकि अलग अलग समस्याओं के जो समाधान हैं उन्हें प्राप्त होते रहें। आप क्या कहेंगे?
1: मनुष्य को खुश रहना बहुत आवश्यक अंग है जीवन का
0: जी,
1: और बहुतों के लिए खुश रहना ही एक बड़ी समस्या हो गई है। खुश रहना आता ही नहीं, चाहे अपने स्वभाव के कारण, चाहे दूसरों के व्यवहार के कारण, चाहे किसी की गलती के कारण। गलती दूसरा करता है और खुशी इनकी जाती है। तो अपनी खुशी को कायम रखना ये भी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। एक सरल स्वभाव का एक प्रैक्टिकल स्वरूप है ये कि हम बहुत खुश रहें। लेकिन इस संसार में देखने में ये आता है, कुछ लोग तो बहुत खुश हैं, उनके पास कुछ है या नहीं है, वो सूखी रोटी खा रहे आनंदित हैं, वो हमारे यहाँ मजदूर लोग रहते हैं ऊपर माउंट आबू में, बेचारों के पास एक कनस्तर होता है, वो उनकी संपत्ति होती है। और जो रॉक्स होती हैं बहुत ऊंची नहीं, छोटी जमीन से 5-7 फुट ऊंची, वो उनका अपनी बेड होती है, और बस वहीं वो गद्दा सा डाले रखते हैं, मेला सा, उस पे सोते हैं, ढोलक बजाते हैं, ढोल बज रहे हैं, डांस हो रहा है। लोग तो सोचेंगे शायद कोई बहुत बड़ी म्यूजिक पार्टी हो रही है, पर वो मजदूर जिनके पास और कुछ नहीं है, संपत्ति नहीं है, बहुत खुश रहते हैं। और बड़े बड़े लोग हैं, धन संपत्ति से संपन्न और अच्छे अच्छे पद पोजीशन पर खुशी की तलाश में रहते हैं। तो खुश रहना अपना स्वभाव बना लें। जो मनुष्य बहुत खुश है, समस्याएं उससे दूर चली जाती हैं। जिस घर में खुशी का माहौल है, लक्ष्मी का वहाँ पर वास हो जाता है, आह्वान हो जाता है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा बहुत है, लक्ष्मी वहाँ से रूठ के चली जाती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा है, विचार नहीं मिलते हैं, वहाँ समस्याएं वृद्धि को पा लेती हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक परिवार में विचारों का मिलन करना, चाहे पति पत्नी हो, विचारों का मिलन हो, बच्चों को भी सम्मान देना और विचारों का मिलन करना, ये एक परिवार में सभी को एक अपना मुख्य लक्ष्य बना लेना चाहिए। इससे परिवार में सहजता रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा, शांति रहेगी, और ऐसे माहौल में समस्याएं बहुत कम होती हैं।
0: जी जी जी, आपने परिवार की बात कही भ्राता जी, तो हमारे पास जो आज मेल आए हैं वो परिवार से ही जुड़े हुए हैं। हमें स्वर्णा जी लिखती हैं, कहती हैं कि मेरी बेटी 16 साल की है और वो बहुत ही बात बात पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, चीखती है। मैं हर प्रकार से उसे हर प्रकार की सुविधाएं देती हूँ, जो भी उसकी डिमांड होती है उसे मैं पूरा करती हूँ, लेकिन वो जीवन से खुश नहीं है, और कई बार तो वो कहती है कि मैं मर जाना चाहती हूँ। तो जब उसकी ऐसी स्थिति देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, मैं अपनी बच्ची के लिए क्या करूं। और भ्राता जी, ऐसा ही एक मेल हमारे पास दूसरा भी आया है। ये कहती है कि मेरी 21 साल की बेटी है, बैंगलोर से लिख रही हैं ये, कहती है वो CA कर रही है और वो भी 2 साल से उसे ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गए हैं। कई बार वो जिन चीजों की डिमांड करती है यदि वो चीजें उसे नहीं मिलती हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और हमें भी परेशान कर डालती है। वो स्मोकिंग भी करने लगी है, ड्रिंकिंग भी करने लगी है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चली जाती है। यदि हम कुछ कहते भी हैं तो तुरंत हम सब पे बरस पड़ती है। तो उसकी इस स्थिति को लेकर के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं और हम उसे 8,000 रुपए हर मास जेब खर्च के लिए भी देते हैं और यदि हमने उसे नहीं दिया तो भी वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है। 2 बार तो उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की है। तो ऐसी उसकी स्थिति देख करके हम सब बहुत दुखी हैं। कृपया कुछ समाधान बताएं। तो ये दोनों ही बेटियां हैं, एक 16 साल की एक 21 साल की, दोनों की स्थिति भ्राता जी लगभग एक जैसी है।
1: सचमुच बहुत बड़ी समस्या है और वो भी जिस केस में लड़कियां हों, ये भयानक रूप माताओं को, उनके फादर को, पेरेंट्स को चिंता में डालने वाली बात होती है।
0: और आजकल ये बहुत ही सहज भाव से ये यंगस्टर्स ये कहने लगे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। हाँ। इससे पेरेंट्स और ज्यादा हाँ, परेशान
1: बिल्कुल हैं। वो एक्चुअली डराते हैं उनको और उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें ये संकल्प बार बार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो संकल्प बार बार मनुष्य करता है वो अंतर मन में प्रबल रूप से अंकित होने लगता है और एक दिन अगर समस्याएं बहुत बढ़ गई, अगर वो सहन नहीं कर पाए तो वो यही काम कर लेते हैं और ये फिर बहुत बड़ी दुर्गति का मार्ग हो जाता है। आत्माएं भटक जाती हैं, परिवारों में अशांति हो जाती है, समाज में उन्हें उसे नीचा करके जीना पड़ता है कि देखा इनके परिवार में यंग लड़की ने ऐसे सुसाइड कर लिया।
0: लेकिन यंगस्टर्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं भ्राता जी कि इससे एक तो दुर्गति होगी हमारी और साथ ही साथ ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, इस बात को भी बोल रहे हैं।
1: इसके बारे में उन्हें जरूर थोड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए और जीवन के प्रति अपने एटीट्यूड्स को बदलना चाहिए और ये सुसाइड करना या जीव घात करना कितना बुरा होता है, इसके बाद क्या होता है, उस समय क्या होता है, माँ बाप पर इसका क्या असर पड़ता है, इन सब की जानकारी उन्हें रखनी चाहिए। इसलिए इस घृणित कर्म से हमेशा ही बच के रहना चाहिए। अभी ये 16 साल की लड़की है और ये चिड़चिड़ी होती जा रही है, इसको खुशी नहीं है, निश्चित रूप से पढ़ाई में इसका कंसंट्रेशन नहीं रहा है, ये इरिटेट हो रही है। माँ बाप ये जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई विशेष कारण अवश्य होगा। आजकल जो युवकों में चल रहा है, बॉयफ्रेंड बना लिया, वहाँ से धोखा मिला, बहुत जल्दी धोखा मिलता है क्योंकि आजकल की जो फ्रेंडशिप है ये अंधी फ्रेंडशिप है, ये स्वार्थ पर बेस्ड फ्रेंडशिप है, ये स्थाई चलने वाली फ्रेंडशिप नहीं होती। वो न जाने क्या क्या वायदे कर लेते हैं, फिर वो पूरे नहीं होते तो उनकी खुशी चली जाती है, उनके मन में चिड़चिड़ापन रहता है, वो माँ बाप को तो कुछ समझते नहीं, उन्हें अपना फ्रेंड ही दिखाई दे। तो ये जो अफेयर्स हैं ये अनेक समस्याओं को जन्म देते जा रहे हैं। मुझे तो भारत में ये भविष्य नजर आ रहा है युवकों का कि अगले 5-7 साल में युवकों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, क्योंकि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात है ये विदेशों से हमारे यहाँ आ गई है और मैंने सुना इसको कानूनी मान्यता भी मिल गई है, लिव इन रिलेशनशिप, तो इसको भारतीय कल्चर स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, ये क्रिश्चियन कल्चर में था, वहाँ के लोग इसे स्वीकार करते हैं, वहाँ का जीवन बन चुका था, इसलिए वहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति बहुत दयनीय है, ये हम जानते हैं। हमारे पास वहाँ के हजारों लोग हर वर्ष आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं और रात को बहुत लोग नींद की गोली खा के ही सोते हैं। हमारे देश में तो खैर अभी भी गमीनियत है, ऐसा कुछ भयानक रूप यहाँ नहीं हुआ, पर युवकों की ये गिरती स्थिति को देखकर, ये कल्चरल डिफरेंस, ये वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 5-7 साल में भारत में मानसिक रोगियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो हमारे युवकों को सावधान रहना चाहिए, उनके इस तरह के प्यार करने का एक समय आएगा, अब उनका समय है स्टडी पे ध्यान देने का, अब उनका समय है अपने कैरियर को बहुत सुंदर बनाने का। जब जिस चीज का समय है उसे वही करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अब वो इस चीज से विचलित, अफेयर्स में फंसे, कंसंट्रेशन भंग हुई, इसलिए उनकी पढ़ाई पर बुरा असर आएगा और भविष्य में पश्चाताप के दिन उन्हें देखने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे युवक हमें बताते हैं 10वीं क्लास में उनके 97% मार्क्स आए, 12वीं क्लास में जाते ही 65 रह गए। इसके कारण यही हैं सूक्ष्म रूप से, शरीर में हार्मोनियल चेंजेज भी आती हैं, लेकिन ये किसी ना किसी से प्यार हो जाना, और उसमें सेक्सुअल फीलिंग्स भर जाना, ये मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले चलता है। तो कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इसकी माँ को बहुत प्यार से बैठकर अपनी बच्ची से बात करनी चाहिए, और यदि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसे बहुत प्यार से, डांट से नहीं कि तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए, बहुत प्यार से उसे एक सुंदर भविष्य के निर्माण की अच्छी नॉलेज दी जाए कि अब तुम्हें क्या करना है, इन चीजों से तुम बचो, ये समय तुम्हारा अपनी स्टडी पे ध्यान देने का है। तो क्योंकि अगर उसको बार बार क्रोध आएगा, यदि वो बार बार अपनी खुशी खोती रहेगी तो उसका भविष्य बहुत खराब होगा। मेरे पास ऐसे कई युवक जिनके 30-35 साल हो गए हैं, वो भी आते हैं जो बचपन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे थे कि वो कहीं ना कहीं फंस गए, फिर इरिटेट हुए, उनकी खुशी चली गई, फिर उनके मन में रिवेंजफुल फीलिंग आ गई, बदला लेना है उससे। और इसका परिणाम, तब तो वो बड़े जोश में थे, होश खोए हुए थे, और इसका परिणाम 30 साल की आयु में उन्हें देखने को मिलता है कि जीवन में एक निराशा भरी रहती है, जीवन में एक अकेलेपन की फीलिंग होती है। परिवार साथ है, बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन अकेलापन, एक नीरसता, एक उदासी जीवन में छाई रहती है। तो माँ को इससे बहुत प्यार से बात करना चाहिए, और इस बच्ची को भी समझना चाहिए कि मुझे अब सुंदर विचारों के साथ अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपने अंदर खुशी को बढ़ाना है। जो दूसरी स्थिति है वो इससे भी भयानक है, दूसरी लड़की की जो सीए कर रही है, 21 साल की है, उसको तो वास्तव में बहुत संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन फ्रेंड्स के साथ वो रात को घूमती है वो उसके सच्चे फ्रेंड नहीं हो सकते, वो उसे धोखा देंगे और इससे उसका जीवन नर्क तुल्य बन जाएगा। माँ बाप का इसमें चिंतित होना परम आवश्यक है, लेकिन अगर लड़की कुछ नहीं करती तो माँ को विशेष रूप से मेडिटेशन का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज का कुछ प्रयोग अपनी बच्ची पर अवश्य करना चाहिए, और उसके विशेष रूप से 2-3 तरीके मैं सजेस्ट करूंगा। एक तो इनको चाहिए जब ये भोजन बनाएं तो बहुत अभ्यास करेंगी मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और संकल्प उस भोजन को देंगी कि इस भोजन को खाने से मेरी इस लड़की का चित्त शांत हो जाए, इसकी खुशी लौट आए। दूसरा, इनको अपनी लड़की को बहुत प्यार के वाइब्रेशंस भेजने हैं, बहुत गुड वाइब्रेशंस भेजने हैं, अपनी ब्लेसिंग्स भेजनी है। चिंताएं करना समस्या का समाधान नहीं होगा कि मेरी बच्ची बिगड़ गई है, उसका क्या होगा, अब उसकी शादी भी मुश्किल हो जाएगी, कहीं वो सुसाइड ना कर ले, ये चिंताएं अगर माँ करती है, बाप करता है, तो उसके सारे वाइब्रेशंस इस बच्ची को जाएंगे और उसकी निगेटिविटी में वृद्धि होती ही जाएगी। इसलिए एक बहुत अच्छा सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग मैं इन्हें बताता हूँ, और अवश्य वो इसका प्रयोग करेंगी रोज सवेरे 5-6 बजे जब वो लड़की सोई हो
0: जी।
1: जब वो सोई है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, जागृत है। अभी ये उससे 3 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस दें। गुड वाइब्रेशंस हम राजयोग में सिखाते हैं कि परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़कर पहले उसके वाइब्रेशंस रिसीव करें, फिर अभ्यास करें मुझ आत्मा से उस आत्मा को वाइब्रेशंस जा रहे हैं, जैसे किरणें जा रही हैं, 1 मिनट से शुरू करें, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर माइंड टू माइंड उससे बात करनी माँ को, तो बहुत अच्छी आत्मा, यू आर ए गुड सोल, अरे तुम तो एक बहुत बड़े कुल की एक अच्छी आत्मा हो, तुम सचमुच बहुत चरित्रवान हो, तुम तो हमारी महान बेटी हो, तुम तो हमारे कुल का नाम रोशन करेगी, तुम तो अपने भविष्य को बहुत उज्ज्वल बनाओगी, अरे तुम पर तो भगवान की नजर है, तुम बहुत खुश हो, तुम तो हमारे कुल का चिराग हो, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसी बातें रोज करेंगे माइंड टू माइंड। तो ये वाइब्रेशंस उसके सबकॉन्शियस माइंड को जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इन्हें रिसीव करने लगेगा, 4-5 दिन के बाद ही रिसीव करेगा, और जब वो उठेगी तो उसको यही विचार आएंगे, उसको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन होगी, यू आर रॉन्ग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा कुल तो बहुत ऊंचा है, तुम सीए कर रही हो, तुम्हें एक अच्छी जिम्मेदार पोस्ट पर जाना है, तुम्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, तुम तो सचमुच अच्छी हो, ये विचार होंगे। तो रोज सेम टाइम ये गुड वाइब्रेशंस देना, प्यार की फीलिंग देना, नफरत की फीलिंग नहीं, ये बिल्कुल अटेंटिवली काम करना है, नफरत नहीं, प्यार की फीलिंग, गुड वाइब्रेशंस, और माइंड टू माइंड उनसे बात करेंगे तो चाहे वो स्मोकिंग करने लगी है या थोड़ी गंदी व्यसन उसमें आ गए हैं, ये सब चिंताओं को नष्ट करने के लिए मनुष्य करने लगता है, ये सब उसका छूट जाएगा और इनके जीवन में खुशहाली लौट आएगी।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामना है कि ये जो एक विकट स्थिति इनके पास आई है इससे ये मुक्त हो जाए इन सुंदर अभ्यासों के माध्यम से। कई बार भ्राता जी ऐसा होता है कि जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है किसी भी फैमिली में तो परिवार के सारे ही सदस्य बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, लाजमी है कि परिवार के सारे लोग चिंतित हो ही हो, लेकिन वो जो यंगस्टर्स की आपने बात कही कि यंगस्टर्स इस चीज को समझें कि मेरे कैरियर की बात है, भविष्य की बात है, इस चीज से यंगस्टर्स बिल्कुल ही मुक्त हो गए हैं। मैं सभी की बात तो नहीं करता, लेकिन जो लोग इसमें युक्त हो गए हैं उन लोगों के अंदर इसकी कोई चिंता रहती ही नहीं है, वो वास्तव में क्या करें।
1: एक्चुअली घरों में आजकल माहौल ऐसा बन गया है, टीवी, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो साधन आ गए हैं इनसे मनुष्य कुछ बुरी चीजें ज्यादा सीखने लगा, हालांकि इनसे अच्छी चीजें भी सीखी जा सकती हैं, इनका सदुपयोग यदि मनुष्य करे तो ये मनुष्य को बहुत आगे ले जाने में बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। तो घरों का माहौल ऐसा हो गया, माँ बाप के अपने संस्कार ऐसे हो गए, माँ बाप के बीच में भी मन मुटाव हो गया है, वो अपने से खुद परेशान है, उनमें आपस में मिलन नहीं हो रहा है, उनका जो सच्चा निस्वार्थ प्यार होना चाहिए, घर में एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए माता पिता को, वो वास्तव में नहीं कर पा रहे, इसलिए बच्चों पर इफेक्ट हो रहा है बाहर का। अब अपने फ्रेंड्स से जो कुछ वो सीख कर आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तो न जाने आजकल का क्या क्या चर्चा करते हैं, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, हम ऐसे हैं, हर एक फ्रेंड बढ़ चढ़ के बातें करेगा और ये उससे कुछ सीखते रहते हैं
0: जी।
1: तो इस माहौल को परिवारों में बदलने की बहुत आवश्यकता, क्योंकि हमारे जो विद्या के मंदिर हो गए हैं ना, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटीज, उनमें मनुष्य कुछ बहुत अच्छी चीजें सीखे ये तो आसान नहीं की जा सकती है, वहां तो वो पढ़ने जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, कुछ रटवट लिया, कुछ नई चीजें देख ली बस, लेकिन जीवन के लिए इम्पोर्टेंट बातें मनुष्य सीखे, देखिए जीवन के दो पहलू हो गए ना, एक वो एजुकेशन, एक लाइफ जीने की एजुकेशन।
0: जी, वैसे भी कहा जाता है कि पहला पाठशाला तो वास्तव में घर ही है और वहां ही प्रथम गुरु।
1: घरों के माहौल को अगर सुंदर बनाया जाए, माँ अगर बहुत योग्य हो जाए, सच्चा गुरु बन जाए अपने बच्चों का, तो इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।
0: इसी से जुड़ा हुआ ही मेल भ्राता जी मैं ले रहा हूँ, जैसे आपने कहा, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन कहती है, ओम शांति, आई एम इन ज्ञान सिंस 1 ईयर, आई वॉन्ट टू मेक my home a pure and holy place so that my family members start getting pure and stop doing the very wrong things which some of them do. Also, I wish that whoever comes in my home should feel relaxed and pure. Please help.
1: बिल्कुल
0: ठीक, इसी से जुड़ी हुई बात जो आपने कही।
1: बिल्कुल, मेरी तो यही इच्छा है कि हम बहुत सारे घरों को तीर्थ बना दें, जहां आकर परेशान लोग रिलैक्स हो जाएं, जहां आकर टेंस पर्सन बिल्कुल शांति का अनुभव करने लगे, जहां आते ही लगे मनुष्य को कि कहां आ गए, ये घर है, मंदिर है, आश्रम है, तीर्थ स्थान है, यहां आते ही तो मन रिलैक्स हो गया। हमारा ज्ञान सरोवर है माउंट आबू में, वहां लोगों के यही अनुभव होते हैं, एक बार मनुष्य वहां आ गया, कहता कहां आ गए हम, ये स्वर्ग है, ये आसमान से उतर आया स्वर्ग है, या ये धरती पर क्रिएट किया गया स्वर्ग है, ये है क्या, यहाँ आते ही तो एकदम एक जादुई प्रभाव हम पे हो जाता है, एक खुशी जीवन में ऐसी भर जाती है कि लगता है बस यहीं रह जाएं। तो ऐसा हर घर को एक सुंदर तीर्थ बनाने की हमारी विशेष कामना है और हम भी बहुतों के कॉन्टेक्ट में हैं। मैं बहुत माताओं को ये चीज़ सिखाता हूँ, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज हैं, और अगर इस बहन ने राजयोग सीखा है तो बहुत ही अच्छी बात है।
0: एक साल से ये कहती हैं भ्राता जी कि ये ज्ञान में है, अर्थात ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क।
1: तो एक साल से अगर ये राजयोग मेडिटेशन करती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, 2-4 बातों की ये घर में प्रैक्टिस करें। देखिए पहली चीज, जब ये अपने पूरे परिवार को देखें कम से कम दो बार इनको प्रैक्टिस करनी है, तो सबको आत्मा देखे। मान लो इनके परिवार में इनके अलावा 5 मेंबर और हैं, ये सब गुड सोल्स हैं, ये सब देवकुल की महान आत्माएं हैं, ये हमारा घर देवताओं का परिवार है, कितना सुंदर हमारा परिवार है, अच्छे अच्छे विचार, कम से कम 2 मिनट ये अपने परिवार के सदस्यों को देख कर करेंगे, कहीं भी बैठकर, चाहे परिवार के सदस्य हों या ना हो, जरूर नहीं वो सामने हो, उनकी एब्सेंस में भी वो ये प्रैक्टिस करें। इससे इनके घर के वाइब्रेशंस में अलौकिकता हो जाएगी, एक बहुत ही रिलैक्स वाइब्रेशंस वहाँ क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी चीज, भोजन बनाते हुए ये अभ्यास करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत अच्छा अनुभव होगा। इसे प्योर वाइब्रेशंस पूरे परिवार में घर में फैलते जाएंगे और भोजन में भी वो समा जाएगा। देखिए, मुझे बीच में याद आ गया, आज मुझे राजस्थान से एक बहन बात कर रही थी, वो स्वयं एडवोकेट, उसके पति एडवोकेट, अभी शायद 1 मास पहले ही उन्होंने मेरे से बात की थी, उसके पति की कुछ समस्याओं की, वो बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं काम कर पा रहे, मन ऐसे इरिटेट हो रहा है। आज उनका फोन आया, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के, उन्होंने ये सब बातें की जो मैं अब बता रहा हूँ अपने दर्शकों को
0: जी।
1: और आज बताया कि उनके पति सवेरे 4 बजे उठते हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, हमारे घर में तो शांति छा गई है, और जो वो बुरी आदतें उनको लग गई थी थोड़ी सी, उनसे मुक्त हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उनको मैंने सिखाया था भोजन इस तरह बताएं। तो ये बहन इतनी एक्टिव है कि घर में गीता पाठशाला चलाती है, वकालत करने भी जाती है, भोजन भी बनाती है, बहुत एक्टिव है, बूढ़ी नहीं है, यंग है, तो ऐसी एनर्जेटिक होने से उसने बहुत अच्छा अपने घर का माहौल बना दिया है। तो ऐसा ही माताओं को चाहिए, भोजन बनाते हुए कम से कम 100 बार याद कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं, तो घर में प्योर वाइब्रेशंस फैलेंगे, और वेयर देयर इज प्योरिटी पीस एंड हैप्पीनेस इज देयर। तो पीस और हैप्पीनेस इनके घर में हो जाएगी। तीसरा अभ्यास इनको करना है, इनको मैंने सिखाया था कि किसी भी तरह मैनेज करो, 15-15 मिनट 3 बार अपने घर में गुड मेडिटेशन करो, एक बार घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ
0: जी।
1: दूसरे 10-15 मिनट में प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाओ, तीसरी बार शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाओ। देखिए 45 मिनट का मेडिटेशन है, ये इन्होंने बहुत तत्परता से किया और इनके घर में बहुत अच्छा हो गया। इनको मैं कहूँगा कि ये चीजें अपना ले, 3 बार मेडिटेशन, भोजन बनाते अभ्यास, और अपने परिवार के लोगों को देखकर ये गुड फीलिंग उन्हें देंगे, तो इनका घर सचमुच एक महान तीर्थ बन जाएगा, और जो इनकी मनोकामनाएं हैं ये अनेक आत्माओं को सुख दे पाएंगी, सबका कल्याण कर पाएंगी। डर से भयभीत लोग, तनाव से परेशान लोग, और कुछ व्यसनों से दुखी लोग हैं, इनके घर में आके बहुत रिलैक्स होंगे।
0: बिल्कुल प्रताप जी, एक फोन कॉल हमारे पास आया था कोटा से, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं शालिनी, इनका नाम है, और कहती हैं कि मैं पढ़ती हूँ तो मेरा मन एकाग्र नहीं होता, मन बहुत भटकता है। प्रताप जी, यद्यपि हमने बहुत बार चर्चा की है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पुनः हम जानना चाहेंगे कि मन जो भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो सचमुच इनके लिए चिंता की है, क्योंकि एकाग्रता नहीं होगी तो ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगी, बातें अंदर नहीं जाएंगी, और फलतः परिणाम तो बुरा ही होगा। कैसे एकाग्र करें मन को?
1: देखिए, इनको अपनी एकाग्रता नष्ट होने के कारणों को गहराई से देखना पड़ेगा, कहाँ चला गया है इनका मन, इनकी विवेक शक्ति किधर जा रही है, जबकि इनका लक्ष्य तो स्टडी करना है, ये किसी के मोह पास में फंस गए हैं, या बुद्धि का अटेंशन इनका बार बार कहीं जा रहा है, या इनके साथ कुछ हो गया है बुरा, उससे इनका मन विचलित हो रहा है, उसको इनको ठीक करना होगा। और मैं विद्यार्थियों को एक छोटी सी प्रैक्टिस सिखाया करता हूँ कि वो केवल 10 मिनट सवेरे और 10 मिनट से हमको देंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा यहाँ हूँ, बिल्कुल इस देह से अलग हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, अपने मन को आदेश देंगे शांत हो जाओ, बुद्धि को आदेश देंगे तुम एकाग्र हो जाओ, हे मेरे मन तुम शांत हो जाओ। ये मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि आत्मा मालिक है और मन बुद्धि उसके अंडर हैं, हमें ये फीलिंग अपने अंदर बढ़ानी होगी कि मैं अपने मन की मालिक हूँ, एक ये मेडिटेशन करना होगा
0: जी।
1: दूसरा वो सवेरे बैठकर लिखेंगी शांत से, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, 108 बार लिखेंगी तो मन काफी शांत होने लगेगा। और शाम को किसी भी टाइम बैठकर लिखें मैं एक महान आत्मा हूँ, इससे मन बहुत शांत होगा। और इनको अपने को डिटैच करना होगा उन सब बातों से जिनमें इनका मन जरा विचलित हो गया है, तो तेजी से इनकी एकाग्रता।
0: कई बार ऐसा होता है व्रता जी, जैसे एक फोन कॉल मेरे पास कल भी आया, तो वो भी कोटा से थी, उन्होंने कहा कि पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रही थी लेकिन आज अचानक पता नहीं पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत अच्छी तरह से हम चल रहे थे पढ़ाई में और कोई कारण नहीं बना, आज समझ में भी नहीं आ रहा है लेकिन आज पता नहीं मन क्यों नहीं कर रहा है।
1: इसका कारण कुछ होता है, हमारे चारों ओर जो निगेटिव एनर्जी है वो कई बार हमारे मन को अफेक्ट कर देती है, हमारे चारों ओर न जाने क्या है। ऐसे समय में पढ़ाई छोड़ के थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, छत है तो वहां चले जाएं, कोई अच्छा म्यूजिक या सॉन्ग आपको प्रिय है वो सुन ले, मन को थोड़ा डाइवर्ट करें और फिर 10 मिनट के बाद ही आकर स्टडी करें तो फिर मन लग जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा हम ब्रेक ले लें, यदि लगातार हम पढ़ रहे हैं तो उससे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मन की एकाग्रता थोड़ी खंडित हो जाती है या फिर एक प्रकार से ब्लॉक हो जाता है।
1: ये इसका कारण ये है कि हर एक के ब्रेन की एनर्जी की तो एक सीमा है
0: जी।
1: अब वो पढ़ रहे हैं उसमें एनर्जी खर्च हो रही है और एक समय ऐसा आया कि ब्रेन रिलैक्सेशन चाहता है, ब्रेन पुनः एनर्जी को रिगेन करना चाहता है तो वो एकदम ब्लॉकेज ले आता है। ऐसे में पढ़ाई छोड़ देना ही कल्याणकारी होता है। 10 मिनट छोड़ेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे, रिलैक्स होंगे, गीत सुनेंगे, कुछ और घूम फिर लें तो ब्रेन फिर से तैयार हो जाएगा।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी आज की तमाम चर्चाओं के लिए। हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छे अच्छे समाधान बिंदु दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जहाँ तक विद्यार्थियों की चर्चा हम कर रहे थे तो जहाँ तक एकाग्रता की बात आती है, वास्तव में यदि हम अच्छी तरह से अपने मन और बुद्धि को अपना साथी बना लें, जैसे भ्राता जी हमसे चर्चा कर रहे थे कि मन और बुद्धि दोनों ही मित्र हैं आत्मा के, और यदि हम उनसे मित्रवत व्यवहार करें, उनसे बात कर लें कि हे मन तू एकाग्र हो जा, हे बुद्धि तू शांत हो जा, तो एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जिससे हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी बढ़ जाती है। सभी विद्यार्थी से हम यही कहेंगे कि इसका अभ्यास अवश्य करें, और जहां कहीं लगे कि मन थोड़ा विचलित हो रहा है और आपको लगे कि आप थोड़े से इरिटेट भी हो रहे हैं, थोड़ी खुली हवा में घूम लें, कुछ सत्साहित्यों का अध्ययन कर लें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और यदि सुबह उठकर थोड़ा आप प्राणायाम कर लेते हैं तो उससे भी ब्रेन को बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि ब्रेन को हमारे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिससे वो फ्रेश रहता है। तो विद्यार्थी इन तमाम बातों को अपनाएं जिससे उनकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, पढ़ाई में भी मन लगेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को आप अवश्य अचीव करें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है।
1: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
2: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
1: One of the Meet Brothers, Anjan, music directors and singers from the film Oh My God.
2: मिट्टी से नहीं जज्बातों से।
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं

0: जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है गुड मॉर्निंग आबू इस कार्यक्रम में। चलिए, 7 जून 2026 आज का तारीख है, रविवार का दिन है। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। रविवार छुट्टी का दिन होता है और सप्ते में रविवार जो है अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि हम सभी पूरे परिवार एक साथ होकर अपना समय बिताते हैं। और आज के समय में थोड़ा ये भी गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल का ज़माना है, हम सभी लोग परिवार एक साथ घर में रहने के बावजूद भी एक साथ नहीं रहते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मोबाइल में लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा जो है आज के दिन अगर मोबाइल को थोड़ी छुट्टी दे दिया जाए सुबह या शाम के समय में, तो मुझे लगता है कि हम फिर से अपने परिवार के साथ उसी तरह जैसे पहले हम मिलकर खुशी मनाया करते थे वो चीज़ें देखने को मिल सकती है। चलिए, आशा करूँगा इस पर आप जो है परिवार के साथ अगर ज़्यादा समय बिताते हैं मोबाइल को बंद करके या मोबाइल को अलग रख के, तो ऐसा कुछ है तो ज़रूर बताइएगा हमें फ़ोन करके 94 14 15 14 15 इस नंबर पर। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग आबू इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ, और ये गीत आपके मन को एक नई चालना देने वाला है ना? तो सुनते हैं ये प्यारा गीत, आपके नाम अभी।

ओम जय जगदीश हरे। आइए आगे बढ़ते हैं और इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज के दिन की शुरुआत हो गई है आपकी 7 जून 2026। जी हाँ, चलिए बात करते हैं हमारे भारत के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिनका नाम है महेश भूपति। जी हाँ, भारत के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने टेनिस में लेजेंडर पेस के साथ युगल मुकाबले में शानदार सफलता अर्जित की है। इनका पूरा नाम महेश श्रीनिवास भूपति है और भूपति को 1996 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया और उसके बाद 26 मार्च 2001 को लेजेंडर पेस के साथ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। तो ये कुछ खास बात है महेश भूपति की। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। जी हाँ, सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

0: याद में तेरी नैना बरसे, ऐसी प्यार अगर हो जाए परमात्मा से तो कितना मजा आ जाए, है ना। चलिए एक बार कोशिश करने से हो ही जाता है हर चीज। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताना चाहूँगा महेश भूपति के बारे में। इस बीच सुभाष जी जलगांव से आप सभी को याद कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय के बाद फ़ोन किया था उन्होंने, और साथ ही साथ हमारे एक और मित्र भी फ़ोन करके याद कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि मोबाइल के बिना परिवार के साथ कितना समय बिताते हैं, इस पर आपको बताना है अपने विचार। तो चलिए 15-20 मिनट आपके पास हैं, आप तब तक फ़ोन करिए 94-14-15-14-15 इस नंबर पर और बताइए कि आप बिना मोबाइल के अपने परिवार के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं। तो आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार, बाबू जी नमस्कार।
0: जी जी जी बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ, कार्यक्रम को सुन करके आनंद ले रहा
0: हूँ।
1: तो एक मेरा भी भजन सुना देना सर।
0: जी जी जी।
1: दूसरों का दुखड़ा दूर करे, दूसरों का दुख दूर करने वालों को करने वालों का है अरे
0: दूसरों का दुख दूर करने वाले बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कवि प्रदीप जी का ये सुंदर भजन है, मैं कोशिश करता
1: हूँ।
0: बिल्कुल मजा आ जाएगा,
1: मजा आ जाएगा। धन्यवाद सर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। ये थे गुंडली रनल जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे और मैं बात कर रहा था महेश भूपति के बारे में। जी हाँ, 7 जून 1974 को बेंगलुरु कर्नाटक में इनका जन्म हुआ और ये विशेष बचपन से ही टेनिस में काम करना या टेनिस खेलना पसंद करते थे। इनके पिताजी का नाम सी जी के भूपति रहा और दाहिने हाथ के इस खिलाड़ी की लंबाई 6 फुट 2 इंच है। और हाई एक दोस्त और मिलना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं। और महेश भूपति जो है बचपन से ही टेनिस खेलने में काफ़ी मास्टरी हासिल कर दी थी और उनका निवास मस्कट ओमन तथा भारत में बेंगलुरु में रहा। टेनिस का खेल उनके परिवार के लिए कोई नया नहीं था क्योंकि महेश के पिताजी भी टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं। तो हेलो जी नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, ओम शांति रमेश जी।
0: ओम शांति सुभाष जी, बढ़िया है, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
2: हम भी बहुत बढ़िया है, आपके प्रोग्राम हम डेली ऐसा नहीं डेली सुनते और शनिवार रविवार के प्रोग्राम तो जरूर सुनते। देखो कल का कैरियर ऑप्शन ने वैसे तो सभी प्रोग्राम अच्छे होते हैं, पर कल का कैरियर ऑप्शन में डाटा साइंटिस्ट शायद आदित्य भाई नाम था भाइयों का, जो भाई साहब गेस्ट थे उनका नाम शायद आदित्य भाई था। देखो कितने साधन बढ़ गए, जो भी आज सफलता लेने के लिए युवाओं को संघर्ष करना पड़ता है। देखो पहले इतना ज्ञान नहीं था
0: जी,
2: इतना कुछ नहीं था, जो भी उमंग उत्साह युवाओं में बहुत था, संघर्ष करते थे, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहते थे क्योंकि अध्यात्म ज्ञान और संस्कार अच्छे थे, वातावरण भी अच्छा था, तो सर नौकरी भी मिल जाती थी, कोई काम धंधा भी कर लेते थे, कला कसूरी जो भी है। पर आज कितना ज्ञान बहुत हो गया, कितना संसाधन बढ़ गए, जो भी आज सुख शांति हमारे से गुप्त होते जाती है। तो कल का वो डाटा साइंटिस्ट प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, और हम आपके सभी प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन हम कम है भाई जी, तकलीफ होती है बोलने का इसीलिए, और आपको रेडियो मधुबन परिवार और सभी को सुभाष भाई का महाराष्ट्र जलगांव से सभी को नमस्कार, दोस्तों को नमस्कार, परिवार को नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
2: ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छा लगा
0: जी। ओम शांति, ओम शांति। ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये थे शिवाज जी जो याद कर रहे थे, और अभी बीमार रहते हैं तो थोड़ा सा उनको बड़ा दिक्कत हो जाता है बोलने में, तो कम फ़ोन करते हैं, और लेकिन कार्यक्रम सभी सुनते हैं और ज्ञान वर्धन तो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को महेश भूपति की बातें चल रही थी, और बचपन से ही इनको टेनिस खेलने का जो है शौक चढ़ा, क्योंकि इनके पिताजी खुद एक टेनिस खिलाड़ी रहे हैं और खिलाड़ी और डेविस कप टीम के सदस्य भी रह चुके थे उनके पिताजी, तो वहीं से उनको जो है कोचिंग वगैरह सब कुछ जो है बचपन से ही मिल गया। और फिर इनको बम्बैया फिल्म देखना बहुत पसंद है, तो फिल्मों की डीवीडी अपने साथ लेकर चलते थे। उनकी रैंक युगल खेल में नंबर एक रहा, और शौक नेट सर्फिंग और क्रिकेट खेलना ये पसंद था इनको, और 2002 में मॉडर्न श्रोता जयशंकर से इन्होंने विवाह किया। ये कहना गलत नहीं होगा, कलकत्ता की तेजी लेजेंडर पेस और बेंगलोर ताकत हम महेश भूपति से मिलते ही टेनिस की दुनिया में धमाल हो गया, और ये जोड़ी नंबर वन पर आ गई। तो इस तरह से एक भविष्यवाणी भी यहाँ पर किताब में की गई थी, अच्छा खासा मजाक बनाया गया, और उन्हें छोटा मुंह बड़ी बात कहकर उस समय इनकी जोड़ी विश्व क्रम में 80वें क्रम पर थी, परंतु दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और सफलता के शिखर पर बढ़ते हुए सभी का जो है हौसला अफजाई करते हुए नंबर वन पर पहुँच गए, जिसके कारण जो किताब में लिखी थी वो बात सच भी हो गई। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें महेश भूपति और लेजेंड प्रेस के बारे में। आज महेश भूपति जी का जन्मदिन है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए, जैसे हमारे गुड़ीलाल जी ने एक बहुत ही प्यारा सा गीत याद किया है, तो सुनते हैं अभी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे फील कर रहे हैं और ढेर सारी खुशियां आप सभी को। आज का ये रविवार का दिन आपके लिए यादगार बन जाए, ऐसी शुभ आशा के साथ। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलना चाहूँगा एक और शख्सियत के बारे में बातें करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो ये है व्यक्ति ख्वाजा अहमद अब्बास। जी हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री में इनको याद किया जाता है आज भी। बहुत ही पॉपुलर फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक थे। वे उन गिने चुने लेखकों में से एक थे जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम दिया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन शुरू किया। बॉम्बे कॉर्निकल में ये लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक के रूप में काम करते रहे। इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे लंबा चलने वाले स्तंभों में से गिना जाता है। 1941 से लेकर 1986 तक चला। अब्बास इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो आइए इनके बारे में अगर जानेंगे तो 7 जून 1914 को इनका जन्म हरियाणा राज्य में पानीपत में हुआ। ख्वाजा गुलाम अब्बास के पोते थे और 1857 के विद्रोह के शहीदों में से एक थे। उनके पिता गुलाम उस शिबतैन थे जो उन्हें पवित्र कुरान पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे, जबकि मशहूर खातून उनकी माँ थी। उनके खानदान का मखान अयूब अंसारी तक जाता है जो पैगंबर मोहम्मद के साथी थे। अपने पारंपरिक शिक्षा के लिए अब्बास हली मुस्लिम हाई स्कूल गए, जहां उन्होंने परदादा यानी प्रसिद्ध उर्दू शायर ख्वाजा अफत हुसैन हली और मिर्जा गालिब के शागिर्द थे। उनके द्वारा इनको जो है उनके सानिध्य में सीखने को मिला और पानीपत में उन्होंने 7वीं कक्षा तक अध्ययन किया और 15 वर्ष की आयु होने पर मैट्रिक समाप्त करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में बीए किया और एलएलबी। फिर वह अपने अधिकांश कार्यों में सफल भी रहे। उसके बाद परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि मुमतबी बेगम के साथ इनका विवाह हुआ, जो अति सुंदर वन उनका आत्मकथा आई एम नॉट आईलैंड में किया गया है। एक सफल प्रेम विवाह इनका हुआ और कहा जाता है कि उनकी समस्त उल्लेखनीय उपलब्धियों के पीछे उनकी पत्नी का ही हाथ रहा और 1958 में पत्नी की मृत्यु के उपरांत अकेले रह गए। अब्बास साहब ने जल्दी ही एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिर अलीगढ़ ओपिनियन नाम की देश की पहली छात्र प्रकाशित पत्रिका भी शुरू कर दिया। और संपादन के कार्य को संभालते हुए धीरे धीरे फिल्मों की तरफ उनका रुझान हुआ और हिमांशु राय और देवी की रानी के साथ मिलकर फिल्मों में आ गए। तो एक प्रोडक्शन कंपनी इन्होंने बनाई और 1941 में अपनी पहली फिल्म नया संसार इसी कंपनी के द्वारा बेची गई और 1945 में ख्वाजा साहब का एक निर्देशन के रूप में करियर शुरू हुआ, जब उन्होंने इप्टा इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के लिए धरती के लाल नाम की एक फिल्म बनाई और फिर 1943 में बंगाल में पड़े अकाल पर आधारित एक फिल्म थी ये। 1951 में नया संसार नाम की अपनी खुद की कंपनी खोल ली, जो अनहोनी 1952 में और फिर सामाजिक प्रसंगों को लेकर ये फिल्म थी। तो इस तरह से अब्बास जी 1953 में एक फिल्म राही बनाए और जिसमें मुल्क राज आनंद की एक कहानी पर आधारित थी और इस तरह से बहुत सारे फिल्में बनाते हुए चेतन आनंद के लिए इन्होंने नीचा नगर 1946 में लिखा और अब्बास साहब वी शांताराम के लिए डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी 1946 में भी लिख चुके थे। ये फिल्म ख्वाजा अब्बास की एक कहानी एंड वन डिड नॉट कम बैक पर आधारित थी, जिन्होंने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस के जीवन पर लिखे थे। फिर इस तरह से राज कपूर के बहुत ही करीबी बने और फिर उनके साथ मिलकर सुपर डुपर हिट फिल्में उनके लिए बनाई, जिसमें मेरा नाम जोकर, बॉबी, श्री 420 ये सारी फिल्में आती हैं। अद्भुत निर्माता और निर्देशक के रूप में इन्हें याद किया जाता है आज भी। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और 7 हिंदुस्तानी जो फिल्म थे जिसमें अमिताभ बच्चन को ब्रेक मिला था, तो ये भी फिल्म उन्होंने बनाई थी। तो इस तरह से बहुत सारे खूबसूरत फिल्में बनाने का श्रेय इनको जाता है। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ
एक और सुंदर गीत की तरफ, उसके बाद फिर चलेंगे समाचारों की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: की दुआ से बाकी ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है,
1: हाल चाल ठीक ठाक है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, ढेर सारी खुशियों के साथ आपका दिन आज का बेहद खुशियों से भरा रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ समाचारों के साथ आपको छोड़े जा रहा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ, मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों

0: करने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी भी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने

0: के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका अमेरिका की खबर है। भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: में से ये कोई हो।
1: अलग अलग डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराते हैं और पूरा 9 से 10 बजे तक जो है हम डॉक्टर के साथ बातें करते हैं और आप भी 94

0: 1415 1415 इस नंबर पे जुड़कर अपनी बातें पूछते रहते हैं, तो आपको घर बैठे जो है कंसल्टेशन मिल जाता है और बहुत सारा स्वस्थ रहने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हमारे साथ है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दिलीप निलगे जी, जो एमपी रतलाम में अपनी प्रैक्टिस, वो मेडिकल प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेद कॉलेज में, और साथ ही साथ राजयोगा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो ऐसे डबल डॉक्टर हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं, और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आज के समय में जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीजनल डिजीज़ के बारे में बात करें, आयुर्वेदाचार्यों में क्या सिस्टम है और कैसे उसको कंट्रोल या क्योर किया जा सकता है। कई बार अभी देखते हैं सीजन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और खांसी हो जाते तो टॉन्सिल हो गया ना, खांसी हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, खौ खौ चालू ही है, गोलियां भी खा रहे हैं, दवा भी पी रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है कि आदमी 15 दिन हो गया अब तक खांसी जा नहीं रहा है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ऑफिस में अगर आप अच्छे पोस्ट में हैं और खो खो करता रहेगा तो क्या लोगों के ऊपर असर होता है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या ऐसे कुछ आयुर्वेद नुस्खे हैं जिससे हमें उस समय जैसे हम काम कर रहे हैं तो अगर हम कुछ खा लें या कुछ चूस लें या कुछ ऐसे काढ़ा बना के पी लें जिससे हमारा वो 4-5 घंटे कम से कम ऑफिस आवर्स में कंट्रोल में रहें, तो वो सारी बातें भी हम लोग करने वाले हैं। तो डॉक्टर दिलीप निलगे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ओम शांति, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी आपका।
0: जी जी जी जी, हमें खुशी हुई कि आप हमारे साथ आज एक घंटा समय देंगे, और हमारे सभी श्रोता बंधु जो हमें सुनते हैं, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, जो रेगुलर लिसनर्स भी हैं वो भी फोन करके आपको जरूर पूछेंगे, हेलो हाय करेंगे, तो अच्छा लगेगा हमें। तो आइए सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप आयुर्वेदाचार्य हैं तो वर्तमान समय कहाँ है और इससे पहले कहाँ थे, थोड़ा सा अपना परिचय शिक्षा दीक्षा के बारे में जरूर बताइए ताकि हमारे श्रोता बंधु आप ये हैं ये समझ जाएं।
1: जी जी बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मुखातिब होने का, ये एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: रेडियो मधुबन के माध्यम से।
0: जी जी जी,
1: मैं डॉक्टर दिलीप नलगे, बेसिकली मैं मुंबई से हूँ लेकिन वर्तमान समय में मैं रतलाम में आयुर्वेद महाविद्यालय है पंडित डॉक्टर शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज, वहाँ पे एक साल से ऊपर मुझे अभी हो गया, एज अ प्रिंसिपल मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो लगभग मुझे आयुर्वेद के क्षेत्र में 95 से हूँ मैं, मतलब लगभग 30 साल हो गए मुझे आयुर्वेद से जुड़े हुए, और लगभग उसी के दरमियान मेरा राजयोग मेडिटेशन से भी कनेक्शन हुआ था।
0: अच्छा,
1: तो उसके लगभग 2-3 साल बाद में मेडिटेशन से जुड़ा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आप राजयोग से जुड़े और पिछले काफ़ी लंबे समय से आप जो है मेडिकल फील्ड में, खास आयुर्वेद के फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा अनुभव आपके पास है। और मैं चाहूँगा जो सीजनल डिजीज़ है, ऋतु जो संस्कृत में कहते हैं कि ऋतु के अनुसार हमारे जीवन में या हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, उसका इफेक्ट होता है
1: जी।
0: तो अब जैसे कि ठंड का समय है, ऐसे में बड़ी दिक्कतें हो जाती है कि एक तो ठंड भी है और ऊपर से सर्दी जुकाम या खांसी हो जाती है
1: जी।
0: तो ये सारी चीज़ें चलते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि ठंड के समय में खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग हो जाता है और वो बड़ा अनकम्फर्ट लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं
1: जी जी,
0: तो उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि हमारे श्रोता बंधु इस बात को समझ लें।
1: बिल्कुल रमेश भाई जी, आयुर्वेद में देखिए उसका जो पर्पस बताया है ना,
0: जी जी जी, हाँ हाँ हाँ,
1: वो दो चीजें बताई है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम माना स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जिसको हम आजकल की भाषा में प्रिवेंशन कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, माना अब बीमारी आ गई है तो उसको ठीक कैसे करना है। तो आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है हमारा, हजारों साल पुराना ये विज्ञान है, जिसमें प्रतिबंधात्मक या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इतना अच्छी तरह से बताया है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा, लेकिन आयुर्वेद में ये बात भी बताई हुई है कि अलग अलग ऋतु के अनुसार हमें अपना आहार और विहार चेंज करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि जैसे देखिए बाहर परिवर्तन आ रहा है, है ना, तो बाहर जो परिवर्तन आ रहा है उसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, हमारे जठराग्नि के ऊपर पड़ता है, हमारे शरीर के एक एक सेल के ऊपर पड़ता है। तो जो असर पड़ता है उसको कैसे हम मतलब उससे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन ऋतुचर्या नाम से आयुर्वेद में किया गया है।
0: जी जी, जी।
1: अब ऋतुचर्या के लिए पहले तो ये पता होना आवश्यक है कि भाई ऋतु कितने होते हैं। क्योंकि आप अगर किसी को भी पूछेंगे कि भाई कितने ऋतु होते हैं, तो लोग कहते हैं तीन ऋतु होते हैं, गर्मी सर्दी और बरसात। या तो कोई कोई कहते हैं चार होते हैं, कोई कहते हैं पांच होते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग आंसर्स आपको मिलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। लेकिन वास्तव में ऋतु जो है ना वो छह बताए गए हैं आयुर्वेद।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इस प्रकार से ये छह ऋतु जो है वो वर्णन किए गए हैं। और अलग अलग ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन आते हैं हमारे शरीर में ना, तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीन दोष अगर साम्यावस्था में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और ये तीनों में अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है आयुर्वेद का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सीजन के हिसाब से क्या होता है कि इन दोषों में भी परिवर्तन आता है, और फिर उस अनुसार हमें बीमारियां होती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे अभी ये ठंड का समय चल रहा है, तो ठंड के दिनों में क्या होता है, बाहर के वातावरण में ठंड माना शीत गुण बढ़ जाता है, रुक्ष गुण बढ़ जाता है। तो ये जो शीत और रुक्ष गुण जो बढ़ जाता है, उसकी वजह से शरीर में भी जो है ना वो वात जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उसके अनुसार कुछ कुछ वात और कफ की बीमारियां जो है वो हो जाती है। आपने ये चीज नोट की होगी, देखिए लॉकडाउन जो लगा कोरोना की वजह से,
0: जी जी जी,
1: कौन से महीने में लगा पहला लॉकडाउन?
0: मेरे ख्याल से
1: मार्च में लगा।
0: मार्च में,
1: है ना। और मार्च में ही क्यों लगा, उसका भी आंसर आयुर्वेद दे सकता है।
0: अच्छा।
1: मार्च में क्या होता है कि ठंड कम हो जाती है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है।
0: हाँ,
1: और उस समय क्या होता है कि शरीर में जो कफ जमा हो गया, ठंड के दिनों में हमने जो चीजें खाई उसकी वजह से कफ जमा हो गया, वो जैसे उसको गर्मी लगती है ना वैसे पिघलना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और कफ की बीमारियां शुरू होती है उस समय में, इसलिए उसको कफ प्रकोप का काल कहा गया है।
0: अच्छा।
1: कि हमारे शरीर में कफ दोष प्रकोपित हो जाता है। तो नेचुरली मार्च और अप्रैल ये महीनों में सभी के शरीर में जो है ना कफ पिघलने लगता है, और सर्दी खांसी ये नेचुरली होता है।
0: जी, जी जी जी।
1: और इसीलिए उस दौरान फिर कोरोना ज्यादा बढ़ गया था और लॉकडाउन लगाना पड़ा।
0: सही बात है जी। और बहुत ही अच्छी बात है ये आपने बता दिया, कैसे हम लोग जो है ये चीजें हमारे बीच में आती है। और लेकिन ये काफी, जैसे सर्दी खांसी या जुकाम के लिए बात करें
1: जी,
0: तो कितने दिन में ये ठीक हो जाना चाहिए, या फिर नहीं हो रहा है इतने दिन के बाद तो हमें इलाज करने की जरूरत है?
1: जी जी जी
0: जी जी, जी।
1: देखिए आयुर्वेद में तो है ना आहार को ही औषधि कहा गया है।
0: अच्छा। हाँ हाँ,
1: डाइट इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन प्रॉब्लम ये है
0: उसको
1: कि उसको यूज कैसे करना
0: कैसे
1: है?
0: करें, वो समझ में नहीं आता है,
1: ये हमें पता नहीं होता है
0: जी।
1: अब देखिए आयुर्वेद में एक संस्कृत श्लोक बताया है, पथ्ये सति गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैः, पथ्ये असति गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणी, आप बोलेंगे आपने ये संस्कृत में क्या बोला,
0: क्या बोला, कुछ बल्ले ही नहीं पड़ा।
1: इसका मतलब ये है कि अगर हम सही आहार लेते हैं तो हमें दवाई की क्या आवश्यकता,
0: सही बात है।
1: और अगर हम सही आहार नहीं लेते हैं तो भी दवाई क्या काम करेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सही आहार लेना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू माना गया है स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में। और इसीलिए आयुर्वेद में आहार के गुणधर्म बताए हैं। जैसे हम खाना खाते हैं ना, वो दो प्रकार की तासीर होती है उसकी, या तो ठंडी तासीर होती है या तो गर्म तासीर होती है, और उस अनुसार उसका असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो अब जब शरीर में कफ बढ़ता है तो उस समय कौन से तासीर वाला खाना खाना चाहिए, तो नेचुरली गर्म तासीर वाला खाना खाना चाहिए, ठंडी तासीर वाला खाना अवॉइड करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि ठंडी तासीर किसकी, गर्म तासीर किसकी, तो क्या करेंगे, हम गलती कर बैठते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और इसीलिए फिर बीमारी बढ़ जाती है।
0: सही बात है।
1: अब जैसे हमें ये पता ही नहीं ना कि चावल की तासीर ठंडी होती है, और हमें कफ बढ़ रहा है और हम चावल खाए जा रहे हैं, हम दूध पिए जा रहे हैं, जो ठंडी तासीर वाली चीजें हैं।
0: जी जी जी।
1: और गर्म तासीर वाली चीजें कौन सी होती है, जैसे देखो हम किचन में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं उसमें से, जैसे अदरक है,
0: हाँ।
1: गर्म तासीर है, काली मिरी है, गर्म तासीर है, और जो दालचीनी है, गर्म तासीर वाली चीज। तो गर्म मसाले के लिए भी जो चीजें यूज की जाती है ना, जिसको हम गर्म मसाला कहते हैं किचन में, तो ये गर्म तासीर वाली चीजें हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हर एक के पास रहता भी है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में कहां इतने फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे,
0: नहीं हुआ करते थे बिल्कुल।
1: पहले के जमाने में तो दादा दादी और नाना नानी यही डॉक्टर हुआ करते थे, और वो अपने अनुभव के आधार से घर में से ही कोई ऐसी चीज निकालते थे, उसकी दवाई बना के पिलाते थे और लोग ठीक हो जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए आज ये समय आ गया है कि हम हर एक व्यक्ति को भी आयुर्वेद का थोड़ा बहुत ज्ञान वो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रखेंगे तभी हम अपना बचाव कर सकेंगे बीमारियों से, है ना। क्योंकि शरीर में देखिए जो तीन दोषों की मैंने बात की,
0: जी जी जी,
1: तो ठंडी तासीर से वात और कफ बढ़ता है, और गर्म तासीर से पित्त बढ़ता है।
0: अच्छा।
1: तो अगर हमारे शरीर में ऐसा हो गया है कि भाई पित्त बढ़ गया है, तो हमें ठंडी तासीर वाली चीजें फायदे की है, जैसे नारियल है, ठंडी तासीर है, दूध है, ठंडी तासीर है, तो ये पित्त को कम करने में
0: मदद करता है।
1: तो ये बेसिक चीजें हमें पता होना बहुत आवश्यक है।
0: जी जी।
1: तो हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को ठीक रख सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बता दिया, और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप भी जो है अपनी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है हमें फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि किस तरह से आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और डॉक्टर साहब आपको पूरी डिटेल बताएंगे। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा होगा। आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वो कुछ पूछेंगे तो बात हो जाएगी। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार, ओम शांति, मैं दयाराम बोल रहा हूँ राजस्थान रामपुरा से।
0: जी जी जी जी, दयाराम जी बोलिए, कैसे हैं आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, और सभी मित्रों की, भाइयों की, बहनों की, और आप, आपका और हमारे
0: डॉक्टर साहब, जी जी,
2: डॉक्टर साहिबा का रेडियो मधुबन स्टूडियो में तहे दिल से उनका भी स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: तो डॉक्टर साहब आते हैं तो हमारे कोई जो समस्या होती है तो हम उसका हल ढूंढने के लिए डॉक्टर से बात करते है।
1: जी।
2: तो डॉक्टर साहब जी, हमारे जो एक बहन जी है तो उनके पैर से, घुटने से नीचे और पैर के बीच में जो हड्डी है तो उसमें दर्द हो रहा है, तो वो कभी कभी दर्द होता है, थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत होती है उनको, तो उसके लिए डॉक्टर साहब जी क्या करना पड़ेगा?
1: एक तो सबसे पहली बात, उनकी उम्र क्या है अभी?
2: उसकी उम्र तो 45 साल है जी।
1: अच्छा। तो देखिए क्या होता है ना, कि मैंने जैसे आपको बताया कि तीन दोष होते हैं शरीर में, वात, पित्त और कफ। तो बचपन का हमारा जो समय होता है ना वो कफ का समय होता है, तो कफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है शरीर में और इसीलिए कफ से संबंधित बीमारियां ज्यादा होती है। हमारी जो युवावस्था रहती है ना वो पित्त का काल रहता है, तो इसीलिए शरीर में पित्त की समस्याएं ज्यादा बढ़ती है। और ये जो आफ्टर 40-45 जो है ना वो शरीर में वात ज्यादा बढ़ने लगता है, और जो वात बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, वात की निशानी क्या है, माना शरीर में जो दर्द होता है ना, जैसे खास करके हड्डियों में, घुटनों में, घुटनों के नीचे, पैरों में, तो ये मुख्य रूप से वात की वजह से होता है। तो जो वात बढ़ा हुआ है उसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो वात के लिए सबसे उत्तम औषधि जो बताई है आयुर्वेद में वो है ऑयल, लेकिन ऑयल भी कौन सा यूज करना चाहिए ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो जैसे अलग अलग प्रकार के ऑयल आते हैं, सबसे सरल और सबसे अच्छा जो है वो तिल्ली का जो तेल होता है, तिल्ली का तेल गर्म तासीर वाला भी होता है और उससे वात को कम करने में भी मदद मिलती है, एब्जॉर्प्शन भी उसका अच्छा होता है। तो अगर घर में तिल्ली का तेल है, चलो तिल्ली का तेल नहीं, आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। तो सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक मिला के उसको अगर रेगुलरली अगर उससे मसाज करेंगे जहां पे भी दर्द हो रहा है, तो अगर वो ज्यादा पुराना दर्द नहीं होगा ना तो इतने से उपाय से भी वो शांत होने लगेगा। लेकिन ये कब करना है, स्नान करने से पहले करना है, और ये करने के बाद में थोड़ा सा गर्म गर्म पानी से उसको सेकना है। तो आयुर्वेद में इसको स्नेहन और स्वेदन ऐसे कहा गया है। तो ये मैंने आपको घर ही घर में कैसे आप कर सकते हैं ये बताया। बाकी अगर आपके आसपास कोई पंचकर्म चिकित्सा करने वाला अगर चिकित्सक अवेलेबल है तो उसकी सलाह लेकर भी आप इसको कर सकते हैं और उनके वहां जाके भी आप इसको करवा सकते हैं। वहां जाएंगे तो वो अलग अलग ऑयल यूज करते हैं, जैसे सबसे फेमस इसमें एक तेल है जो आपने शायद नाम सुना भी होगा, महानारायण तेल। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध तेल है वात रोगों के लिए। तो कहीं भी शरीर में दर्द हो रहा है ना तो वो तेल को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने से पहले उसको थोड़ा गर्म करना आवश्यक होता है। तो ये भी कर लेंगे ना तो उससे भी काफी उनको राहत मिलेगी।
2: शरीर में कहीं भी कौन सी जगह पे हो तो हम उसकी मसाज करने से वो थोड़ा दर्द कम होगा जरूर।
1: जी
2: जी सर, धन्यवाद धन्यवाद सर आपका, बहुत ही आपके हमारे समस्या का हल बताया आपको, धन्यवाद, थैंक यू।
1: जी जी जी,
0: चलिए दयाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 FM। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आपने देखा दयाराम जी ने अपनी समस्याएं बताई और डॉक्टर दिलीप नलगे जी ने उन्हें समस्या का समाधान सुनाया। तो निश्चित तौर पे आप भी अगर किसी तरह की कोई बीमारी से परेशान हो तो ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैं अभी खास रहा था, ये खांसी 3-4 दिन से है।
1: अच्छा,
0: तो इसके लिए क्या है कि वो खत्म नहीं हो रहा है, शायद 10 दिन हो गया।
1: मैं आपको बहुत सरल उपाय बताता हूँ इसके लिए। देखिए, अदरक का जूस निकाल के उसमें शहद मिला करके रात को सोने से जस्ट पहले उसको चाटना है।
0: अच्छा, हाँ
1: हाँ हाँ हाँ, तो जितना शहद का जूस, जितना शहद उतना ही अदरक का जूस।
0: ओके ओके,
1: और सुबह भी एक बार उसको चाटना है। 2-3 दिन में आपकी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, एक दो डोज में ही हो जाएगी।
0: अरे वाह,
1: ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है।
0: हुआ है तो फिर अपन बात करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, नमस्ते।
3: नमस्ते, ओम शांति।
0: ओम शांति जी, बोलिए।
3: सगुना बहन बोल रही
0: हूँ जोटाना। सगुना बहन जोटाना से स्वागत है, स्वागत है। डॉक्टर दिलीप नलगे जी से बात कीजिए, सुन रहे हैं वो। जी
3: डॉक्टर जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्ते जी,
0: ओम शांति।
1: ओम शांति
3: सर, मुझे ना सर्दी हो गई है
1: जी,
3: 4-5 दिन हो गया
1: जी,
3: और इसके पहले भी हो गई थी, 1 साल हो गया अब
1: जी।
3: तो पहले कभी नहीं हुआ, अभी ऐसी सर्दी हो गई तो ऐसे कफ, खांसी तो आती है लेकिन कफ निकलता नहीं, अंदर आवाज थी आपकी, सोचे ना तो अंदर कफ की आवाज आती है और निकलता नहीं है। अभी मैं दवा लाती हूँ फिर भी कोई आराम नहीं हुआ है, 2-3 हो गया दवा लाई लेकिन अंदर खांसी आती है ना तो निकलता नहीं कफ।
1: अच्छा, माना जम गया है कफ।
3: हाँ हाँ,
1: अच्छा, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ। किसी को भी ऐसा अगर होता है ना कि जैसे खांसी तो आ रही है लेकिन कफ निकल नहीं रहा है, मतलब जैसे अंदर जम गया हो, तो उसके लिए तिल्ली का तेल या सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके उसमें नमक मिला करके चेस्ट को मसाज करना है, अपनी चेस्ट को जो है वो मसाज करना है और गरम गरम पानी से थोड़ा सा सेक करना है। उससे जो कफ जमा हो गया है ना उसको पिघलने में मदद मिलती है, पिघलने में मदद मिलती है और वो पिघलने लगता है। और उसके साथ साथ आपको रात को सोते समय अदरक का रस निकाल के उसमें उतना ही शहद मिला करके और थोड़ी सी हल्दी, ये आपको चाटना है रात को सोते समय भी और सुबह उठने के बाद भी। ऐसा दो टाइम आप करेंगे, चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए, चावल आपको नहीं खाने हैं, जब तक आपको सर्दी खांसी है तब तक आपको चावल नहीं खाने हैं, ठीक है?
3: हाँ।
1: है ना, इतना आप कर लेंगे तो भी आपको बहुत उससे राहत मिलेगी और आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। हाँ, तिल्ली या सरसों के तेल में से कोई भी तेल चलेगा, उसको थोड़ा गर्म जरूर कर लीजिए और उसमें फिर नमक मिला करके उससे मसाज करना है। जी जी, और मसाज करने के बाद फिर थोड़ा गर्म पानी से सेक करना है, ठीक है? तो उससे अपने आप जो कफ है ना वो आने लगेगा, माना बलगम निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कफ को बाहर निकालना आवश्यक है।
3: खांसी इतनी ज्यादा भी नहीं आती है, कभी कभी आती है थोड़ी
1: जी।
3: तो मैंने सोचा क्या मालूम क्या हो गया है, अभी डॉक्टर को दिखाया तो बोले दवाई दिया तो बोले हो जाएगा ठीक, लेकिन अभी दो दिन हो गया
1: जी,
3: दवाई भी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने बोला डॉक्टर साहब से बात करते हैं।
1: हाँ, आप
3: आते ही रहते हैं।
1: जी जी जी, अदरक का जूस लेना आप शुरू करो शहद के साथ और चावल बंद कर दो पूरी तरह से, कोई भी तली हुई चीज भी नहीं खानी है बिल्कुल भी, ठीक है? है ना, गरम ही पानी पी रहे होंगे मुझे लगता है। पानी गरम पीना बहुत आवश्यक है, ठीक है? जी जी जी,
3: ओम शांति।
1: ओम शांति जी, ओम शांति
0: जी। शुक्रिया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए, आपने अच्छा सवाल पूछा कि कैसे हम लोग जो है सर्दी खांसी जुकाम और ये ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए और किस तरह का हमारा डाइट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। हम कभी कभी डाइट को भूल जाते हैं और जैसे एलोपैथी में तो डाइट बताते ही नहीं है कि ये नहीं खाना, ये नहीं, सब खाओ और ये दवा भी खाओ बोलते हैं। तो वो बड़ा आसान लगता है, तो हम लोग आसान चीजों पे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं।
1: देखिए मैं आपको बताऊँ, ये डॉक्टर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप परहेज मत करिए और हमारे पास आते रहिए, हमारी फीस देते रहिए।
0: जी जी जी, जी। आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
4: हाँ, बुरा राम बोल रहा हूँ रमेश भाई, राम राम है सुबह सुबह।
0: राम राम बुरा राम जी, स्वागत है आपका, बोलिए।
4: डॉक्टर साहब से बोले तो थोड़ा मेरे को बात करने का था।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, सुन रहे, बात कीजिए
1: जी, बोलिए।
4: हाँ
1: बोला राम जी,
4: नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते।
4: अच्छा, मेरे को कम से कम ये दो महीने से ज्यादा ये सांस की बीमारी हो गई है, तो कोई भी काम करता हूँ या सीढ़ी चढ़ता हूँ उतरता हूँ तो मेरे को ये सांस फूल जाता है और मैं ये काम कर सकता हूँ।
1: अच्छा,
4: तो इसके लिए कोई दवाई है तो?
1: उम्र क्या है आपकी बोला राम जी?
4: हाँ,
1: उम्र उम्र एज
4: उम्र है मेरा 75।
1: अच्छा, और आपका हीमोग्लोबिन वगैरह आपने चेक करवाया था कभी?
4: खून दवा लेता लेकिन वो थोड़ा रिलीफ मिलता लेकिन वापस चालू हो जाता।
1: हाँ, देखिए सांस फूलने के दो कारण हो सकते हैं, अगर शरीर में खून शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से भी सांस फूल सकता है, और या तो फिर दमा की बीमारी अगर हो गई तो भी सांस फूल सकता है।
4: तो दमे एक तरीका है मेरे को।
1: अच्छा, तो आपको ये कैसे पता चला कि आपको ये माना दमे जैसा प्रॉब्लम हुआ है? क्या ठंड में आपको ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, ऐसा होता है क्या?
4: ऐसा बोले तो क्या है कि ये पहले तो थोड़ा थोड़ा मेरे को सर्दी खांसी तो हमेशा इसी मतलब नाक
1: अच्छा
4: तो रहता है सर मेरा
1: अच्छा
4: और अभी पहले खांसी थी लेकिन मैंने वो पहले सिगरेट बीड़ी पीता था तो वो बंद कर दिया तो कम होगी मेरे को खांसी कम है अभी
1: जी
4: लेकिन ये सांस फूलना ये ज्यादा हो गया
1: जी जी जी जी अभी तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ
4: हाँ।
1: एक तो देखिए त्रिकटु चूर्ण आता है उसको त्रिकटु चूर्ण आता है या तो सौंठ जो होती है ना सौंठ
4: हाँ।
1: सौंठ है मिरी है पीपर है
4: हाँ।
1: है ना ये तीनों को मिला के त्रिकटु कहा जाता है
4: अच्छा सौंठ और क्या
1: सौंठ मरी मरी काली मरी
0: काली मरी
1: काली मरी
5: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल
0: हेलो
5: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे
0: हेलो हेलो
4: हाँ मैं बोल बात क्यों बंद होगी
0: हाँ वो अपने आप ही बंद हो गए बोलिए बोलिए आप हाँ। काली मिरी
1: सौंठ
0: सौंठ
4: काली हाँ।
0: काली मिरी सौंठ और
1: पीपर
0: पीपर पिपली पिपली का पाउडर
1: ये ना त्रिकटु चूर्ण नाम से मिलता है आप अगर देखें
0: बाजार में आपको मिल जाएगा डायरेक्टली रेडीमेड त्रिकटु नाम लिख लीजिए
1: त्रिकटु
0: त्रिकटु त्रिकटु
4: त्रिकटु
0: त्रिकटु त्रिकटु हाँ
4: अच्छा
0: त्रिकटु
4: त्रिकटु
1: हाँ ये सुबह शाम है ना आप आधा आधा चम्मच ले लीजिए
4: अच्छा
1: शहद में मिला करके
4: शहद में मिला कर ना
0: हाँ, हाँ, हाँ बिल्कुल
1: और अच्छा, कनकासव नाम की एक दवाई आती है
4: हाँ,
1: कनकासव
0: कनकासव ये लिक्विड है
1: कनकासव हाँ, कनकासव
0: बोतल
1: ये सुबह शाम अच्छा, सुबह नाश्ते के बाद रात के भोजन के बाद 15-15 ml उतने ही गर्म पानी हाँ, में मिलाकर
4: अच्छा
1: माना 3-4 चम्मच तीन से चार चम्मच गरम पानी ऐसे मिला करके उसको आप लेना शुरू कर दीजिए
4: अच्छा अच्छा
1: और ठंडी तासीर वाली चीजों से परहेज रखिए
4: हाँ ठंडी ये इससे ज्यादा हो जाता
1: है हाँ चावल वगैरह आप मत खाना है ना
0: जब तक ठीक नहीं हो रहा है तब चावल बंद करना
4: अच्छा अच्छा
0: ठीक हो गया तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते ठीक है ओके बुराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने का
1: जी
0: जी ओम शांति
1: ओके ओम शांति
0: चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करेंगे
6: महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का एक ही इंजेक्शन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं गर्भावस्था के दौरान दूसरी और तीसरी तिमाही में खून की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे थकान कमजोरी भूख में कमी और अन्य जटिलताओं तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब FCM इंजेक्शन की एक ही खुराक काफी है
7: FCM यानी फेरस कार्बोक्सी माल्टोस खून की कमी को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है तो बिना देर किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही FCM का इंजेक्शन लगवाएं और स्वस्थ रहें
6: हर रोग का मिटे नामो निशान ये है संकल्प स्वस्थ रहे राजस्थान NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित
0: हेलो जी नमस्कार हेलो हेलो हेलो जी नमस्कार स्वागत है आपका अच्छा आपका फोन चालू है शायद आप दूसरे से बात कर रहे हैं एक बार फोन कट कर लीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं बुराराम जी का फोन चालू ही रहा गया और शायद वो बातें भी कर रहे हैं तो आइए आज रविदास जयंती है तो ललिता जयंती भी है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं चलिए अब बात करते हैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी बातें जैसे हम लोग अभी सर्दी खांसी जुकाम की बातें चल रही थी अब बात करते हैं वात पित्त के बारे में भी ये भी क्या सीजनल होते हैं ऋतु इसके साथ भी जुड़ा हुआ है क्या अगर ऐसा है तो फिर कैसे इसके ऊपर काम करें जी
1: देखिए आयुर्वेद में जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बताई है डेफिनेशन, उसमें उन्होंने कहा है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक क्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ये महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में 5000 साल पहले ये चीज लिखी हुई है।
0: अच्छा,
1: तो उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि अगर हमारे शरीर में जो तीन दोष हैं वात पित्त और कफ, ये तीनों अगर बैलेंस में रहते हैं, हमारा अग्नि माना डाइजेस्टिव फायर ये भी अगर सही रहता है, समदोषा समाग्निश्च समधातु, हमारे शरीर में जो सात धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये भी अगर बैलेंस में रहते हैं, मलक क्रिया माना हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है, हमारी आत्मा मन और इंद्रियां ये प्रसन्न रहती है, तो हम स्वस्थ कह सकते हैं अपने। तो उस दृष्टि से वात पित्त कफ का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और इसीलिए ये समझना हमें आवश्यक है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ये कफ जो है वो बढ़ता है, उसका सीजन होता है जैसे ठंड का जो एंड है है ना, और गर्मी शुरू हो जाती है मार्च में, तो ये कफ के प्रकोप का समय रहता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: ऐसे ही पित्त के प्रकोप का जो समय रहता है वो सितंबर अक्टूबर, जिसको शरद ऋतु कहा जाता है। जैसे ही बरसात खत्म होने लगती है और बरसात खत्म होने लगती है और थोड़ा सा उस समय भी गर्मी बढ़ जाती है, तो वो जो सितंबर अक्टूबर का समय है, जैसे कहते भी है ना कि अक्टूबर हीट, तो उस समय में गर्मी जो है वो बढ़ जाती है और शरीर में जो पित्त दोष है वो प्रकोपित हो जाता है, और इसीलिए उस दौरान पित्त से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती है, है ना, जैसे एसिडिटी है, स्किन डिसीजेस है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और उसकी वजह से माना एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाना, फोड़े फुंसी आ जाना शरीर पर, ये सारी पित्त की बीमारियां हैं। तो ये पित्त की बीमारियां उस दौरान बढ़ती है। और वात की बीमारियां कब बढ़ती है, आपने भी ये देखा होगा कि हमें, देखिए काफी साल पहले कोई जगह पे जो है वो लग गया था और वो दर्द बाकी समय में नहीं दर्द आता है, लेकिन बरसात जब होने लगती है ना तो वो दर्द उभर के आता है,
0: उभर के आता है, ठंड में उभर के आता
1: जी। तो ये बरसात का समय जो होता है ना, ये एक वात के प्रकोप का काल होता है।
0: अच्छा अच्छा। आइए इस बीच हम लोग हमारे कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद फिर बात पित्त के बारे में जो बातें कर रहे थे उसको भी समझ लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
8: हाँ जी साहेब, नमस्कार रमेश भाई।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए।
8: तो हूँ ईम क्या था, तो मारा हूँ तकलीफ ये था पर गड़ी वस्तु कहू ना गड़पण।
0: हाँ,
8: तो ये नाती मारा पेलो टाबड़िया जो खाई छ, श्वास मार लेवा श्वास लेवा।
1: हिंदी में नहीं बात कर सकते आप? हिंदी में, हिंदी में।
8: हाँ हिंदी में, तो मैं बोलता हूँ। हाँ। गुड़ गुड़ वाली जो चीज आती है ना।
1: हाँ।
8: मिठाई मिठाई वाली। हाँ। तो मैं खाता हूँ ना, तो मेरे को तकलीफ होता है श्वास लेने में।
1: अच्छा,
8: जो गुजराती में उसको बोलते हैं, छोटे बच्चे को नहीं होता ताबड़िया।
1: हाँ।
8: ऐसा मेरे को होता है।
1: अच्छा,
8: मैं डॉक्टर को बताया, रिपोर्ट करवाया, मगर उसने बोला जो मिठाई वाली चीज कम खाना। हाँ। वो खाना ही नहीं। तो मैं जो खिचड़ी बोलते और आलू बोलते वो भी खाता हूँ तो भी होता है। तो इसके लिए साहब को
0: क्या
8: कुछ
0: उपाय बताए?
1: आपकी उम्र कितनी है?
8: 44 वर्ष।
1: अच्छा, और कब से आपको ये तकलीफ हो रही है?
8: ये मेरे को साल ही लगा है, एक साल।
0: एक हाँ, साल हो गया।
1: तो आप ये समझ लेना कि ये कफ के बढ़ने से हो रहा है।
8: हाँ हाँ,
1: है ना। तो आलू खाने से भी, चावल खिचड़ी खाने से भी कफ बढ़ता है शरीर में।
8: हाँ, जो जो सब्जी में भी मिठाई आती है ना वो भी खाता हूँ ना।
1: हाँ।
8: आलू खाओ खिचड़ी खाओ तो भी।
1: आपको मैं एक मीठी चीज बताता हूँ, वो आप खा सकते हो जो कफ नहीं बढ़ाती है।
8: हाँ बोलो बोलो।
1: गुड़ जो होता है ना, गुड़।
8: हाँ गुड़, गुड़।
1: लेकिन वो भी कैसा?
0: ब्लैक।
1: ब्लैक जो होता है, जो नेचुरली जो बनाया
0: है, ऑर्गेनिक, आयुर्वेद,
1: ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक गुड़,
0: देसी गुड़, देसी गुड़,
1: देसी गुड़, बिना केमिकल वाला। है ना, उसको आप थोड़ा बहुत खा सकते हो क्योंकि बाकी सारी चीजें आपके कफ को बढ़ाएगी
0: ये नहीं
1: और आपको तकलीफ होगी, तो इसीलिए बाकी सारी मीठी चीजें आप अवॉइड करो।
9: हाँ तो ये तो बंद कर दिया
1: है ना, लेकिन बहुत ही क्रेविंग जैसे होता है ना, जिसको जो चीज पसंद आती है अगर पूरी तरह से बंद करो तो उसको एकदम अजीब लगने लगता है। तो इसीलिए आप को जब भी ऐसा लगे मीठा खाने की इच्छा हो तो थोड़ा सा गुड़ आप खा सकते हो,
0: देसी गुड़ खा लेना और रख लेना अपने घर में, और जब ऐसा मन करे तब

0: हाँ
1: ठीक है,
0: हाँ ठीक है दीदी,
1: हाँ हाँ हाँ
2: ओके जी, थैंक यू,
1: ओके
2: हाँ। तो ये थे हमारे दोस्त जो कफ के चक्कर में आ गए हैं, बड़े परेशान हैं
1: जी,
2: तो उनके लिए रेगुलर जो है चीनी या फिर चावल ये सारी
1: मीठा खाने से भी कफ बढ़ता है,
2: बढ़ता है बिल्कुल, और चावल वगैरह भी खाने से बढ़ जाता
1: जी,
2: है,
1: चावल आलू
2: आलू ये सारी चीजें थोड़ी सी कम कर दे
1: जी,
2: जब तक आप नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आए तब तक, और गुड़ अदरक ये सारी चीजें थोड़ा सा रख लीजिए आपकी जो है बैलेंस करने के लिए। आइए, आप बात कर रहे थे हम लोग पित्त और वात के बारे में, तो वो जैसे कि बात चल रही थी तो वो पूरा कर लेते हैं जी।
1: तो देखिए, वात दोष हमारे शरीर में कुपित होता है बरसात के समय में, तो बरसात के समय में पुराने पुराने दर्द जो है ना वो उभरने लगते हैं, ऐसा लगता है कि अरे साल भर तो मुझे कुछ
2: कुछ नहीं हुआ, अभी कैसे हुआ,
1: अभी ये जैसे ही बादल आ गए बरसात होने लग गई तो दर्द ये बढ़ गया, क्योंकि उसका रीजन ये रहता है कि उस समय शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात का कनेक्शन दर्द के साथ है, तो जहां जहां भी दर्द है वो वात की वजह से ही होता है, वात के प्रकुपित होने की वजह से होता है
2: बिल्कुल।
1: जहां जहां बर्निंग सेंसेशन है जिसको आयुर्वेद में दाह कहा गया है वो पित्त की वजह से होता है, बढ़े हुए पित्त की वजह से, और जहां जहां खुजली है कंडू है वो बढ़े हुए कफ की वजह से होता है, तो इसीलिए ये चीजें भी हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। और एक बात मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि हमारे खाने में जैसे जो छह रस होते हैं ना, ये छह रस भी इन दोषों को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं।
2: अच्छा,
1: जैसे देखिए छह रस कौन कौन से होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कशैला, ठीक है। तो ये जो तीखा, कड़वा और कशैला है और गर्म तासीर वाली चीजें हैं, ये कफ को कंट्रोल में रखने में मदद करती है। मीठा, खट्टा, नमकीन और गर्म तासीर वाली जो चीजें हैं, ये वात को नियंत्रण में रखने में मदद करती है। मीठा, कड़वा और कशैला और ठंडी तासीर वाली चीजें पित्त को नियंत्रण में रखने में मदद करती है।
2: एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
3: नमस्ते सर, कैसे हो?
2: बढ़िया बढ़िया, बताइए आप कैसे हैं?
3: हमारे दिनेश सर को जी हमारी तरफ से नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नमस्ते।
3: और जी, मेरा तो सवाल था लेकिन मुझे तो जवाब मिल गया इसमें से।
1: अच्छा।
3: कि कई सारे सवाल था लेकिन फिर भी एक सवाल में सभी जवाब मुझे मिल गया है। पहले तो मैं आपको बात करना चाहता था कि वो कफ के बारे में, तो
1: जी
3: वो तो हमारे सगुना बहन ने जो बात की और हमारे जगदीश भाई ने भी बात की, तो इसमें भी मेरा जवाब मिल गया कि मेरे भी थोड़ी कफ की तकलीफ है, लेकिन मैं जो आपने बताया गुड़ की बात तो सही है, बिल्कुल मैं गुड़ खा लेता हूँ कभी कभी, तो गुड़ से अच्छा रहता है
1: जी,
3: वो देसी गुड़ आता है बहुत अच्छा रहता है, मैं मीठा तो नहीं खाता, मुझे मेरे भी डायबिटीज का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मीठा तो मैं नहीं खा सकता हूँ। और दूसरी बात सर बताइए, मेरा तो सवाल ये था जो आपने शुरुआत में बताया सरसों का तेल की बात की, तो बिल्कुल सही बात है सर, सरसों का तेल हम भी हमारे घर में डालते हैं, क्योंकि मैं बताते हमारी पत्नी को नीचे जब पक्के तलवे आते हैं तो उसमें बहुत दर्द रहता था, तो एक बार आपने बताया था वो सरसों का तेल, तो इसमें हमको इसका हमको उपयोग किया हमने
1: जी,
3: उसको गर्म करके जो मीठा डाल के तो जो नीचे मालिश करते हैं पैरों में तलवे, तो इससे बिल्कुल ठीक हो गया सर
1: जी,
3: वो बिल्कुल नहीं कहती कि मुझे दर्द हो रहा है
1: जी,
3: तो पाँच सात दिन, सात आठ दिन तक हमने लगवाया वहाँ इसके बाद से, तो वो अभी बिल्कुल ठीक है और बोलती नहीं है कि मुझे कोई दर्द होता है।
1: वेरी गुड।
3: तो इसे आपने जो आपने बताया था सर, आपने पहले बताया था, तो ये दवाई हमने की है वो देसी दवाई, तो हमने
1: जी
3: वो जो सरसों तेल से बिल्कुल अच्छा है, इसकी मालिश करना भी अच्छी है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा जो गर्दन के पास थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, दर्द होता था, लेकिन हमने भी वहाँ वो सरसों का तेल की मालिश की तो अब ठीक हो गया
1: जी जी जी, जी।
3: तो बहुत सरसों का तेल बिल्कुल अच्छा है, सबकी दवाई ये की है
1: बहुत अच्छा। आपने अभी जैसे सरसों के तेल की बात की ना, ऐसे और एक तेल है जो बहुत ही फायदेमंद है लेकिन उसके बारे में लोग उतना जानते नहीं है या उसका उतना उपयोग नहीं करते हैं,
3: तो आप बताइए।
1: वो है कैस्टर ऑयल।
3: क्या?
1: कैस्टर ऑयल।
3: कैस्टर ऑयल,
1: हाँ, एरंडी का तेल,
3: अरंडी का
1: तेल
3: है ना, बाजार में मिलता होगा मेडिकल में
1: जी, तो अरंडी का तेल पीना भी चाहिए।
3: अच्छा, वो तो हमारे एरंडी का तेल आता है, सही है, उसको हम दिवाल भी बोलते हैं, दिवेल भी बोलते हैं।
1: हाँ राइट।

0: के हमारे यहाँ दिगल भी बोला जाता है। हाँ। जो गेहूँ के जो गेहूँ बोने गेहूँ को तो रगड़ने के लिए जो
1: पीस करता है। बराबर बराबर।
2: सप्ताह में एक बार जरूर पीना चाहिए, उससे पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है।
0: बिल्कुल जी, मैं बताऊं सर, तो हमारे पहले हमारे पिताजी जैसे दादाजी थे वही करते थे कि 10-15 दिन होता था तो एक बार जो चाय में डाल देते थे, दो चार बूंद डाल देते थे वो चाय में
2: जी,
0: तो इससे कई सारे फायदे होते थे। एक तो पेट आपका साफ हो जाता था, कलेजा की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी और पेट का दर्द भी मिट जाता था।
2: बिल्कुल
0: सही बात है आपकी।
2: आधी बीमारियां तो पेट से ही शुरू होती है, तो पेट को अगर ठीक रखेंगे तो वैसे ही आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी।
0: सही है सही है, बिल्कुल बिल्कुल। सभी बीमारियां पेट से शुरुआत होती है
2: जी।
0: तो आपने बहुत अच्छा एक ताजा हमको कर दिया वो दवाई आपने, क्योंकि हम तो भूल गए थे, पहले जमाने की बात है, पहले तो लोग यही करते थे, कोई ऐसी कोई दवाई के डॉक्टर के पास नहीं जाते थे।
2: हमारे भी दादाजी जो है ना, हमें याद है बचपन में सबको जब छुट्टी का दिन रहता था ना, सारे बच्चों को घर में जितने लोग हैं सबको अरंडी का तेल पिलाते थे और धूप में बिठाते थे, और उसके बाद फिर थोड़ा पेट वगैरह अच्छे से साफ हो जाता था, सब बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी।
0: सही है, बिल्कुल
2: ये अच्छी
0: दवा है, 100% गारंटी वाली।
2: जी जी जी, बिल्कुल। और आजकल जैसे सायटिका का प्रॉब्लम भी जो देखा जाता है ना
0: जी,
2: तो सायटिका की भी अगर शुरुआत हो रही है तो उसके लिए अरंडी का तेल ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है।
0: बेस्ट, हाँ, सबसे बेस्ट है,
2: सही माना है, इतना इजीली अवेलेबल है लेकिन इतना उपयोगी है, मेरा खुद का भी अनुभव है और मैंने कई पेशेंट्स को भी ये दिया हुआ है।
0: सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है सर, अरंडी का तेल तो देखो एक लाजवाब कहते हैं ना, लाजवाब
2: जी जी, जी, जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा बताया सर आपने, धन्यवाद आपका।
2: मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने आयुर्वेद के बारे में अपना अनुभव जो है वो सबके साथ शेयर किया।
0: जी, लोगों को भी पता चले सर आपने जो इंडिका तेल बताया मुझे, मैंने सरसों का तेल बताया, वो लोगों के लिए फायदा कारक है, वो भी समझ पाए कि भाई सही है, वो करने से हमको कई सारी बीमारी से हम बच सकते हैं।
2: बिल्कुल,
0: कई सारी बीमारियां इसमें से जो गुम हो जाती है दिवल से।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलो सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू।
2: देखिए ये जो बात कर रहे थे ना अभी
1: सुरेश जी,
2: वास्तव में हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है ना, वो आधे से ज्यादा बीमारियां पेट से ही शुरू होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसके लिए बहुत अच्छी बात किसी ने कही है
1: जी,
2: कि भाई स्वस्थ किसको कहेंगे, जिसके हाथ पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा,
1: अरे वाह,
2: तो डॉक्टर को लगाओ डंडा। माना अगर हमारे हाथ पैर गर्म है, पेट नरम कब रहेगा, जब साफ रहेगा तभी तो नरम रहेगा।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन आजकल क्या हो गया है, हाथ पैर हो गए ठंडे, पेट हो गया है कड़क और सिर हो जाता है छोटी छोटी बातों में गर्म। तो ये तीन चीजों को अगर हमने मैनेज कर लिया ना, तो हमें स्वस्थ रखने से कोई भी रोक नहीं सकता है, स्वस्थ रहने से।
1: सही बात है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बता दिया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आज विशेष एक तारीख है और अच्छा दिन है, और पहली तारीख में आपको सारा ज्ञान मिल गया सेहत का, और अपने सेहत को अच्छा रखने से आपका पूरा जो साल है वो अच्छा बीतेगा, महीना भी अच्छा बीतेगा। हेलो जी, नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी। नमस्ते सर जी,
3: मैं दत्ता जी बोल रहा हूँ।
1: दत्ता जी बोलिए, स्वागत है आपका।
3: मेरा अभी एक महीने से लेफ्ट साइड वाले पैर पे सांधे पे उसका नस दबी है, उसके लिए क्या करना है?
2: आपको तकलीफ क्या होती है उसकी वजह से?
3: मैं ठीक आए तो भी पेन हो रहा है, पाँव उठाए तो भी पेन हो रहा है।
2: अच्छा,
3: डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बोला है।
2: अच्छा, कौन सी सिर दबी है आपकी, मना कुछ ऐसा उसमें आया है रिपोर्ट में?
3: हाँ, रिपोर्ट में आया, वो तो रीढ़ की हड्डी वाला, वो तो L5 में।
2: ओके, L5 में।
3: और दूसरा जो सांधा जो है, जहाँ अपना पैर घूमता है ना।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ,
3: उधर
2: माना घुटने के पास, घुटने के पास।
3: हिप।
2: अच्छा, हिप माना पीछे की तरफ से दर्द हो रहा है ना आपको?
3: हाँ हाँ, उसके अंदर नस दबी है, वो उठानी
2: जी। तो मना सायटिका जैसा ही आपका ये समस्या मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आपको भले ही एक डॉक्टर ने ये राय दी हो ऑपरेशन की, लेकिन मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी भी डॉक्टर से आपको ये राय दी जाती है ऑपरेशन की, तो आप कम से कम और दो डॉक्टरों से जरूर सलाह ले। हो सकता है कि ऑपरेशन से बचने का आपको कोई रास्ता उससे मिल जाए।
3: उन्होंने ही बताया है 10 दिन की दवाई दे, 10 तारीख तक, उसके बाद ठीक हुआ नहीं तो ऑपरेशन करना।
2: नहीं नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि एलोपैथी में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वो ऑपरेशन के सिवाय कोई चारा नहीं ऐसा लगता है, लेकिन वो आयुर्वेद से ठीक होती हुई दिखाई देती है, ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। तो इसीलिए भले ही एक डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जरूर पास में कोई आयुर्वेद चिकित्सक से भी एक बार सलाह अवश्य ले। हो सकता है कि आपको उसके राहत मिल जाए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। और मैं यहाँ से भी आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ये समस्या कितने समय से आ रही है? अभी
3: 28 दिन से,
2: माना ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसीलिए
3: मैं 28 से तो चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा।
2: अच्छा, बैठ भी नहीं पा रहे?
3: हाँ,
2: सो तो भी नहीं पा रहे।
3: साइड वाला जो हिप है तो उसके ऊपर ही हुआ है ना ज्यादा।
2: तो कंटिन्यूअस पेन है क्या? कंटिन्यूअस है?
3: हाँ, कंटिन्यूअस पेन है।
2: अच्छा, ओके। तो आप का पेट वगैरह ठीक है, साफ है?
3: तो मेरे शाम फर्स्ट क्लास साफ होता है।
2: ओके। फिर भी आप अपने पास में पंचकर्म ट्रीटमेंट करने वाले जो आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं, ऐसे किसी एक चिकित्सक को अवश्य दिखा दें, ये मेरी सलाह है आपको। ठीक है?
3: ओके
2: जी, जी।
1: ओके दत्ता भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हाँ नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, इस कार्य को आप सुन रहे हैं। और देखिए कैसे कैसे जो है प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आ जाती हैं, तो ऐसे में हमें जो है दो सलाह जरूर लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो हमें आगे बढ़ भी जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि उन चीज़ों को करने से आपको आगे भी कोई तकलीफ ना हो, ऐसा भी एक जो है एश्योरेंस आप देखना पड़ेगा। कई बार हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं, महीना दो महीना ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से कुछ नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं या साइड से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वाली बातें ना हो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो वो थोड़ा सा जो है, इसलिए दो तीन लोगों से आपको राय सलाह करने की बात होती है, तो आप पूछने से दोनों चीज़ें बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी की बात होनी चाहिए, ताकि आपको सब चीज़ों का ज्ञान हो, ताकि आप उन चीज़ों को करें भी तो आपको ये अंडरस्टैंड हो, हाँ इसके बाद ये चीज़ें होगी, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बाद ये चीज़ें हो सकती हैं, इसके लिए मुझे इस तरह से उसको मैनेज करना है, तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को आज रेडियो के माध्यम से आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी अच्छी बातें उनको सुनने को मिला, और सीजनल डिजीजेस के बारे में हमने बातें की, ऋतु के अनुसार जो बीमारियां होती हैं वो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर वात पित्त कफ, इन सभी चीज़ों पर हमने बातें की। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है अलग भी हो सकती हैं, जैसे कि हमने अभी पेन के बारे में, दर्द के बारे में कभी फिर विषय लेकर स्पेशली उसी पर बात कर सकते हैं, दर्द क्यों होता है, क्या कारण है, उसे कैसे हम बच सकते हैं। ऐसा कहा गया एलोपैथी में सबसे बड़ा बिजनेस जो है पेन किलर से हो रहा है उनकी, अलग अलग ऐसा देखा गया कि पूरी वैरायटी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें ज़्यादा जो वैरायटी है वो दर्द वाली दवाओं से बनी है, तो उसको लेकर लोग जो है ठीक होते हैं। कई बार हमने देखा मेडिकल स्टोर में एक एक आदमी जो है ऐसे पूरे प्लास्टिक डब्बा भर के दवाइयाँ ले जाते हैं 6 महीने का, वो ख़त्म होने के बाद फिर से डब्बा ले गया, फिर भर लेगा, फिर चला जाएगा, और वो कंटिन्यू उनकी चलती रहती हैं, और वो डब्बा ख़त्म नहीं होता, उसके साथ और एक डब्बा 6 महीने के बाद बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी गोलियां वो पहले खा चुके हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के और और कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें जो है आयुर्वेद या फिर घरेलू नुस्खा या फिर हमारा जो जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल जो है, उसको अगर हम बदलाव करते हैं, हमारे खान पीन में बदलाव करते हैं, जैसे ऋतुचर्य को समझ कर हम अगर खाने को चेंज करते हैं, तो इससे हमें दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि हम अपने आप ही ठीक होते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए, आप कुछ बता रहे हैं।
2: हाँ, मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा था कि अगर हमें स्वस्थ रहना है ना, तो अगर हम थोड़ा सा ये चीजों पर भी ध्यान दें कि हम खाना ऐसा खाए जिसमें कुछ ना कुछ फाइबर्स जरूर
1: हो,
2: है ना, जैसे फल जरूर खाएं, कच्ची चीजें थोड़ी खाने में शामिल करें, ताकि हमारा पेट जो है वो साफ रहे।
1: बिल्कुल
2: जैसे मैंने बताया ना, पेट नरम, हाथ पैर गर्म रखने के लिए कोई ना कोई योगा, कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें, और सिर को ठंडा रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें। तो इतना भी अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहने में इसकी बहुत मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल
2: जी। और कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
1: सही
2: ना, बीमारी होने के बाद उसका उपाय करने से अच्छा है कि बीमारी हो ही नहीं, ऐसा कुछ
1: इलाज कर ले। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया। और हमारे दयाराम जी, सुरेश जी और भी बहुत सारे लोग, सुगना बहन और लक्ष्मण जी और बुराराम जी, सभी ने फ़ोन करके पूछा, सभी को सही जवाब मिला होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप इसका उपयोग करें, अगले हफ्ते ज़रूर हमें अपने अनुभवों को साझा कीजिएगा। तो डॉक्टर दिलीप नलगे सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज कुछ देना चाहें तो ज़रूर।
2: जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आहार का जरूर ध्यान रखें। अपना आहार जो है ना, उसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आजकल फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पहले के जमाने में हमारा आहार सही था, इसलिए बीमारियां कम थी। अभी आहार बहुत गड़बड़ हो गया है, तो इसीलिए बाहर का खाने से बचे। और हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, क्या हम भूख के अनुसार खा रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। पानी जरूरत से ज्यादा ना पिए, जितना आवश्यक है उतना ही पिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जैसे हाथ पैर हमारे गर्म रहने चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करें। और निश्चित रूप से हमेशा सकारात्मक रहे हर परिस्थिति में, अपना जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रखें, और हमेशा आशावादी रहे जीवन के प्रति। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा अनुभव कर सकते हैं, बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी आप सबके प्रति यही शुभकामना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप नलगे सर, और स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले संडे कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ख्वाबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आपको मिलवाएंगे मावल के रहने वाले शांति देवी शर्मा। जो आप मावल में रहते हैं, आप हाउस वाइफ है, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि आप कढ़ाई का काम, बुनाई का काम, सिलाई का काम सब कर लेते हैं, पढ़ाई आपने नहीं की हुई है, बाकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आइए इन्हीं के द्वारा जानेंगे। शांति जी, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हो आप?
1: ठीक हूँ।
0: अच्छा शांति जी, अभी आप वर्तमान में क्या क्या काम करते हैं?
1: अभी तो घर पे ही रहते हैं।
0: जी, घर पे तो रहते हैं, लेकिन घर पर रह करके क्या क्या काम कर लेते हैं, किस तरह के काम करते हैं आप?
1: अब बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उठते हैं, झाड़ू पोता है, घर का काम है, कपड़ा लेता है, ये खाना बनाना है।
0: जी जी, कढ़ाई बुनाई सिलाई सब करते हैं?
1: हाँ, सिलाई आई है, मशीन है, सिलाई भी कर ली।
0: सिलाई मॉल की करते हैं?
1: नहीं नहीं, अपने घर की करते हैं।
0: अच्छा, घर की करते हैं तो अच्छा है ना, बचत हो जाती है।
1: अपने घर की करते हैं, बाहर की नहीं करते।
0: जी जी, तो शांति जी चलिए अभी आप क्या करते हैं और भी आपसे जानेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पे बीता?
1: बचपन तो मेरे गांव में बीता।
0: कौन से गांव में बीता?
1: गांव तो जिला बदायूं है, नाम गांव का बछेली।
0: अच्छा, आप यूपी के रहने वाले?
1: हाँ, यूपी के रहने वाले।
0: तो जिस गांव में आप रहते थे वो गांव कस्बा है, शहर है या छोटा सा गांव है?
1: छोटा सा गांव है, देहात है।
0: और आप कितने भाई बहन हो?
1: हम चार बहन चार भाई।
0: आठ भाई बहन, उसमें आपका नंबर कौन सा आता है?
1: हमारा मंझले है, दो भाई से छोटे,
0: पांचवा नंबर आता है आपका। अच्छा, तो आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: नहीं, गांव में हम छोटे हैं तो गांव में स्कूल नहीं था। हमारा
0: स्कूल ही नहीं है, तो कोई भाई बहन ने नहीं की पढ़ाई?
1: नहीं नहीं, वो जब हम बड़ा भाई है वो दूसरे गाँव में, हमारे ताऊ जी रहते वो, उनके वहाँ भेज दो तो उधर पढ़ाई की। अब बहन हमारी नहीं पढ़ी, सबसे छोटी है, तो हमारे भाई ने स्कूल खोल दो तो उसमें पढ़ाई की, प्राइवेट स्कूल हमारे भाई ने खुलवा दो। सबसे छोटी आ रही नहीं, उसने पढ़ाई करी, तीन बहन नहीं पढ़ी।
0: और भाई बाहर जाते थे पढ़ने?
1: हाँ, भाई हमारे बाहर पढ़ाए, हमारे ताऊ जी रहते उनके यहाँ।
0: तो आप बहनों को नहीं भेजा?
1: नहीं नहीं, हमारे गाँव में स्कूल नहीं तो नहीं भेजो।
0: जी जी, बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा?
1: नहीं नहीं, डराते, छोटे से गाँव बूढ़े, जैसे हमारे इधर भेड़िया आड़िया पहले छोटे छोटे, वो पेंदुआ बढ़िया ज्यादा है, इसलिए मेरे मम्मी पापा डरते हैं, इसलिए नहीं भेजो।
0: अच्छा, तो आपके पापा क्या काम करते थे उस समय?
1: हमारे पापा खेती बाड़ी करते।
0: मम्मी भी करते?
1: नहीं नहीं, मम्मी घर का काम करती, भैंस गाय घर का है, भैया बहन खाना बनाना घर का काम।
0: और आपके पापा खेत संभालते है, आप लोग भी हेल्प करते?
1: हाँ, छोटे है तो जाते, बड़े हुए तो नहीं जाते।
0: बड़े हुए तो क्यों नहीं जाते खेतों पर?
1: बड़े हुए तो हमारे इधर नहीं, लड़की को भेजते हैं खेत पर, छोटे है तो जाते थे। हाँ।
0: अच्छा, तो फिर जैसे आप बड़े हुए तो फिर आप घर का क्या क्या काम कर लेते हैं?
1: हाँ, सिलाई बिनाई, ये पंखा बनाते थे, कपड़ा सिलते थे, और घर को काम है जैसे सब, अपनी मम्मी की हेल्प करते है।
0: तो जैसे कि आपने पढ़ाई नहीं की, पूरे गांव में कोई लड़कियों ने पढ़ाई नहीं की?
1: नहीं नहीं, जब छोटे छोटे हमारे स्कूल ही नहीं तो किसी ने पढ़ाई नहीं की।
0: तो कभी आपकी इच्छा हुई पढ़ने की?
1: हाँ हुई थी, लेकिन जब स्कूल नहीं तो क्या जाते पढ़ने के लिए, पढ़ाई को मन करते थे लेकिन स्कूल नहीं तो कहाँ जाते, बाहर मम्मी पापा नहीं भेजा।
0: तो आपको जैसे लिखना पढ़ना आता है थोड़ा बहुत, सीखा आपने घर पर बैठ कर? नहीं
1: नहीं नहीं, नहीं सीखा, खाली अपने घर का काम करते, कढ़ाई बुनाई, और फिर नहीं हो तो अपने मस्ती मौज मस्ती करते, खेलते सहेली छोटी छोटी लड़की उनके संग में घर पे। अपने
0: कौन कौन से खेल खेलते थे आप?
1: गुड़िया गुड्डा को गुड़िया गुड्डा छोटी छोटी लड़की अपने घर पे खेलते, बाहर हमारे भाई हमारे पापा नहीं जानते थे।
0: सारी लड़कियां आपके घर पर आती थी मोहल्ले की?
1: हाँ, सारी लड़कियां हमारे घर पर आती, लेकिन मेरे भाई पापा दूसरे घर पर नहीं भेजते, दूसरी लड़की आई आती थी हमारे घर पर।
0: तो पूरे दिन खेलने में बीतता था?
1: नहीं नहीं, घंटा दो घंटा खेलते, उसके बाद काम करते अपनी मम्मी के संग, दादी के संग।
0: दादी दादा सब परिवार में जॉइंट परिवार था?
1: हाँ, दादी दादा ही, मम्मी पापा चाची चाचा, हमारा बहुत बड़ा परिवार।
0: तो सभी चाची चाचा के बच्चे भी सभी आप साथ में ही बड़े हुए?
1: हाँ, सब हमारा बहुत बड़ा परिवार है, खूब बड़ा घर है, एक एक घर में सब बड़े पले, सब सलाह से प्रेम से रहते सब।
0: तो आप भाई बहन और कौन से मतलब किस तरह रहते थे, इतने सारे भाई बहन हो तो कैसे रहते थे आप?
1: प्रेम से रहते सब, एक दूसरे की सब अपने जो चीज भाई ला दो तो सब बहन देते, बहन लेती तो अपनी बहने सब मिल के खाते, मिल के रहते ऐसे। दादी मेरे बाबा है, एक चीज दिवाते सबको दिवाते, हमारे मम्मी पापा लाते तो सबको चीज देते ऐसे।
0: जी जो भी बाहर जाते तो सभी के लिए लेके आते?
1: हाँ सभी के लिए लेके आते, हमारे भाई लेके आते सबको देते, पापा लेके आते सबको देते।
0: तो जैसे कि आप गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे है ना, और भी कोई खेल खेलते थे कि सिर्फ गुड्डा गुड्डी का?
1: नहीं नहीं खाली गुड्डी गुड्डा और कुछ नहीं खेल खेलते।
0: अच्छा, और इस तरह आप कितने बड़े हुए फिर आपकी शादी हुई?
1: हमारी तो याद नहीं है, मान लो ऐसे 17-18 साल की तो उम्र हुई थी हमारी शादी हुई थी।
0: अच्छा, तो आपके मम्मी पापा आपको किस तरह की शिक्षा संस्कार देते थे उस समय?
1: मम्मी पापा बोलते कहीं बाहर नहीं जाने का, अच्छे से घर में काम करने का, कढ़ाई बिनाई सीखने का, किसी की बात नहीं सुनने की, किसी घर पे नहीं जाने का।
0: जी, और आप किस शादी मतलब कौन से शहर में हुई?
1: नहीं है थोड़ी दूर पे, हमारे गांव से थोड़ी दूर गांव है, दूसरे गांव में करी।
0: वो भी गांव ही है?
1: हाँ वो भी गांव है, शहर कस्बा नहीं है, गांव है।
0: तो आपकी शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
1: सही आओ बढ़िया है, सास है, ससुर है, एक जिठानी है, जेठ है, देवर हो, दो ननद है,
0: उधर भी बड़ा परिवार है।
1: हाँ फिर दोनों ननद की शादी हमने करी, एक देवर की शादी करी, हम तीन दिन जिठानी अभी साझी रह रहे हैं, अभी 2-4 साल से अलग हुए हैं, मान लो अब हम बाहर रह रहे हैं, वो घर पर रह रही।
0: तो आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं?
1: हमारे हस्बैंड इधर कंपनी में काम करता है, ठेका चला रहे हैं
0: राजस्थान में। तो आपकी शादी के बाद तुरंत आप इधर आ गए या फिर उधर रहे?
1: घर पर 10 साल रहे।
0: 10 साल आप घर पर रहे और आपके हस्बैंड इधर राजस्थान?
1: हम घर पर रहे, हमारे घर वाले इधर अहमदाबाद में काम कर रहे थे, हम सास ससुर के पास रहे, अपने मम्मी पापा के पास रहे, अपने भाई के पास रहे।
0: और जैसे कि शादी करके ससुराल जाते हैं, इतना बड़ा परिवार है, पियर में तो फिर भी फ्रीडम होती है, ससुराल में तो बहुत सारा काम करना पड़ता है।
1: नहीं मिलके करते हैं, हमारी जिठानी हम जिठानी दोनों सलासर आते, दोनों मिलके एक एक झाड़ू लगाती, बर्तन एक मांजती थी, एक धोती थी, एक आटा लगाती थी, एक रोटी सेकती, एक बेलती, ऐसे करके अभी भी जाते हैं तो हम दोनों दिन जिठानी तीनों मिलके काम करते हैं सलासर, कभी झगड़ा नहीं हुआ।
0: जी बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि मिल करके काम करते काम भी जल्दी होता है, फटाफट भी होता है और स्नेह भी बढ़ता है।
1: अभी मेरे 4-5 बच्चे हैं हमारे, हमारी जिठानी के भी बच्चे हैं, लेकिन हमारे कभी बच्चे ने झगड़ा, वो अपने बच्चे डांट देती हैं, हम अपने बच्चे डाए, हम कभी नहीं झगड़ा करता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है शांति जी, आधे झगड़े तो बच्चों की वजह से होता है, बच्चे झगड़ते हैं तो माता है क्या अपने अपने बच्चों का पक्ष लेती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: नहीं होना चाहिए, बच्चा गलती कर रहे हैं तो दोनों को डांट देना चाहिए, और फिर नहीं डांटे तो हमने अपने को डांट दिया, उन्हें अपने डांट दिया, अपने खेलेंगे बच्चा तो खेलेंगे, न लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक होंगे, बच्चों को पीछे नहीं लड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतना प्यार से रहते हैं।
1: हाँ प्यार से रहते, इधर भी बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, बता रहे हैं अच्छे से रहना, किसी बड़ा आए तो उसे दीदी अरे दीदी बोलने का, बड़ी मम्मी बोलने का, भाई है तो भाई बोलने का, चाचा है तो चाचा बोलने का, किसी से झगड़ा नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का।
0: बहुत अच्छी बात है शांति जी, बहुत अच्छे शिक्षा और संस्कार आप दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो ऐसे ही अगर हर माँ अपने बच्चों को देवे तो ये सारे दुनिया के झगड़े खत्म हो जाए। तो शांति जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो प्यारे श्रोता बंधु बने रहिएगा वंदे मातरम में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे शांति देवी जी से, और आइए और भी बात करेंगे मावल में ही। तीजा जी बेरवा, इनसे बात करेंगे। तीजा माता जी, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद
0: माता जी, आप कैसे हो?
1: हाँ, हम ठीक हैं जी।
0: प्यारे श्रोता बंधुओं, माता जी की उम्र 70 के आसपास होगी, फिर भी माता जी बड़े खुश रहते हैं हमेशा। माता जी, आप थोड़ी देर के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पे बीता?
1: हमारा बचपन तो अबरूड़ में बीता है। हाँ, हम राजी खुशी रहते थे, 8 बहन भाई है।
0: अच्छा, आपका बचपन आबू रोड में बीता, क्या बात है, आप तो आबू गई है। और आपका नंबर कौन सा आता है?
1: मेरा चौथा नंबर।
0: आप चौथे नंबर के, तो आप 8 भाई बहन कैसे रहते थे आपस में?
1: आपस में राजी खुशी रहते थे, लड़ना झगड़ना कोई जानते ही नहीं था। जो बस माँ बाप थे, छोटे छोटे के मर गए, बस भाई थे, 5 भाई थे, 4 बहन थी, 9 बहन भाई थे, पर वो सब 4 बहन भाई मर गए, 2 भाई है।
0: जी जी, वो तो कहते हैं समय के साथ उम्र होगी तो सभी को जाना ही पड़ेगा। पर आपके बचपन की बातें चल रही है कि उसमें 8 भाई बहन आपस में आप प्यार से रहते थे।
1: प्यार से रहते थे, अब लड़ना झगड़ना तो कोई जानता ही नहीं था जब छोटे छोटे थे जो।
0: जी जी, और आपने पढ़ाई की हुई?
1: नहीं जी, पढ़ाई नहीं करी।
0: आपके जमाने में पढ़ाई नहीं कराते थे?
1: पढ़ाई करवाते थे, पर अपने छोटे छोटे एक तनख्वाह में हमारा पूरा नहीं पड़ता, तो वैसे घर का ही काम करते थे।
0: आपके पिताजी क्या काम करते थे?
1: हमारे पिताजी ये गाड़ी चलाते थे, फिर फोरमैन थे।
0: अच्छा, ट्रेन चलाते थे। और सिर्फ पिताजी काम करते थे या माता जी भी करते?
1: नहीं, माता जी तो कभी ये खेत में जैसे नाज हुआ तो काटने जाते थे, घास वास काटे, कोई सल्ला बीन लेते ऐसे।
0: जी जी, तो पिताजी की कमाई पर आप क्या 8 भाई बहनों की पालना करनी होती थी, तो इस वजह से पढ़ाई नहीं की?
1: और जब लड़कियों कोई पढ़ाता ही नहीं था हमें।
0: तो आपने ही नहीं की, आपके भाई बहनों ने की या नहीं की?
1: सबने की है, छोटी बहन ने तो उसने भी करी, बड़ी बहन थी तो उसने भी नहीं करी थी, मेरे जैसे ही थी।
0: अच्छा, आपने और आपकी बड़ी बहन ने नहीं की, भाइयों ने की?
1: सब भाइयों ने की थी।
0: तो उस समय बेटियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था?
1: रिवाज था ही नहीं, नहीं। हाँ, और था बड़े बड़े लगे जगह था, और हम छोटे जगह था ना, तो जाने नहीं दिया। बच्चे थे छोटे छोटे, माँ काम करने चले जाती तो हम खिलाते थे भेड़ भाइयों को।
0: छोटे भाई बहनों को रखना पड़ता था?
1: रखना पड़ता था।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है कि माताएं काम करती थी और छोटे भाई बहनों को कौन खिलावे,
1: एक तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता तो फिर क्या करेगा।
0: तो आप और पढ़ाई तो आपने की नहीं, फिर आप क्या करते थे, पूरे दिन कैसे बिताते थे आप?
1: बस वैसे ही खेलते थे, कोई चूड़ी खेलते, कोई क्या खेलते, चंगाफो खेलते, ये गुजारा करते थे बस।
0: अच्छा, चूड़ी कैसे खेलते थे?
1: वैसे ही चूड़ी होती है ना, कुंडाला बना के और एक एक चूड़ी
0: चूड़ियों के टुकड़ों से।
1: हाँ, टुकड़ों से बस।
0: ओके, अच्छा, तो आपके जैसे कि भाई आपसे बड़े थे तो भाभियां भी आ गई होगी?
1: हाँ, 2 भाभी आ गई थी।
0: तो घर में काम आपको करना पड़ता था?
1: नहीं, भाभी आई जब जिसके बाद तो नहीं करना पड़ा था, जब तो मैं ससुराल आ गई थी, एक भाई की शादी हुई हमारे ससुराल के साथ भेज दी थी।
0: अच्छा, आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: हमारे 15 साल की,
0: 15 साल की उम्र में शादी हुई। तो आपकी खेती बाड़ी पे जैसे आपके मम्मी जाते थे, आप भी जाते थे?
1: नहीं,
0: आप घर का ही काम करते थे। अच्छा, घर में और आप क्या कर लेते थे, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ करते थे?
1: नहीं, बस ये कभी हमारी मम्मी वो स्वेटर बनाती थे, वो स्वेटर बनाते थे, कभी कसीदा निकाल लेते थे।
0: अच्छा, कसीदा आप निकालते थे मम्मी का देख देख के, और स्वेटर भी बना लेते थे?
1: लेते थे बस।
0: तो स्वेटर भी देख देख के बनाते थे?
1: नहीं, फिर तो हमको आ गया था ना।
0: हाँ, जैसे मम्मी से ही सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा, मम्मी से सीखा, अड़ोसन पड़ोसन बस बैठ जाती, भाई इधर आओ, भाई इधर आओ, तो वो बैठ जाती तो उनके साथ में सीख लेते।
0: अच्छा, तो स्वेटर आप किसके लिए बनाते थे, खुद के लिए या भाई बहनों के लिए?
1: जैसे मम्मी बनाती थी तो उसमें सारा लगा देते थे,
0: मदद करते थे।
1: बस।
0: अच्छा, और पहले के जमाने में गीत गाने का बहुत रिवाज था, माताएं बहनें कुछ भी काम करती जाते थे और गीत गाते थे, तो आप भी गाते थे?
1: हाँ, गीत तो मैं भी अभी भी गाती हूँ।
0: तो आप लोग गीत गाते हुए काम करते थे, है ना?
1: वैसे राती जगह होता है, भजन होता है, तो उनमें गाते हैं सबसे मिलकर।
0: हाँ जी, राजस्थान में रात्रि जागरण का बहुत रिवाज है, तो राती जगह में आप गीत गाते थे। तो राती जगह में तो कहते हैं कि माताएं जाती है, बेटियां नहीं जाती है, तो आप भी जाते थे?
1: जब नहीं जाते थे, आप ससुराल में जाना पड़ा ना,
0: ससुराल में तो जाना पड़ेगा। आपके बचपन की बातें चल रही थी कि आपका बचपन कैसे बीता और आप क्या क्या करते थे?
1: कुछ नहीं, खेलते थे, मस्ती मारते थे।
0: और आप 15 साल के हुए और आपकी शादी हो गई, तो शादी करके ससुराल या मावल है या फिर कहीं और?
1: नहीं, मावल में गेट है, मतलब ढाई में क्या है, थोड़े 2 किलोमीटर वहाँ है।
0: क्या नाम है उस गांव का?
1: आवल, आवल, आवल।
0: अच्छा, आवल। आवल से फिर आप मावल आ गए रहने?
1: हमारी सास वहाँ गुंटी पे काम करती थी, झंडी बताती थी गाड़ी पे। हमारे ससुर मर गया ना, तो उनकी जगह मिल गई थी, तो वो रिटायर हुए तो हमने गांव पर आ गया।
0: अच्छा, तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए, थोड़े बताएंगे?
1: ये तो मेरे को नहीं परिवर्तन तो क्या, ससुराल में रहते थे, 3 जने थे, खाते पीते परिवार।
0: ससुराल में छोटा परिवार था?
1: हाँ, छोटा परिवार। वैसे परिवार तो बहुत बड़ा, हमारे घर में 3 जने थे, मैं थी, मेरी सास थी और हमारे बाबूजी थे।
0: अच्छा, तो आपके ननन देवर जेठ कोई नहीं थे?
1: ननन थी, बड़ी बड़ी ससुराल थी, बस आज गुजर गए थे।
0: इतने बड़े परिवार से आप आए छोटे से परिवार में, तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा?
1: लगा ना, कोई नहीं था, गांव की बस्ती थी, गांव में चोरी आ जाती, लुगाई आ जाती तो मन लग जाता था, नहीं तो जंगल में एक गुंडी में पड़े रहते थे।
0: तो आपके पतिदेव उस समय क्या काम करते थे?
1: वो बच्चे को पढ़ाने जाते थे, टीचर थे।
0: अच्छा, टीचर थे, तो ये तो अच्छी बात है। आपके सास भी जॉब करते थे, आपके हस्बैंड भी जॉब करते थे, आप घर में अकेले पड़ जाते थे?
1: अकेले।
0: तो फिर कैसे आप समय व्यतीत करते थे?
1: गांव था ना, गांव पास में, तो सब आ जाती थी, वहाँ गेट था ना, गेट पे सब इकट्ठी होके बैठ जाती थी, फिर हम भी बैठ जाते वहाँ, सुबह शाम काम कर लेते और दिन में मस्ती मारते।
0: अच्छा, सुबह शाम काम करते और दिन में सभी बैठ जाते थे और बातचीत करते थे। तो बातचीत करते थे और साथ ही कुछ करते थे या सिर्फ बातें ही बातें करते थे?
1: नहीं, बातें ही, कुछ नहीं करते। इधर 2 किलोमीटर इधर झाड़ना, 2 किलोमीटर झाड़ना, शाम को 2-12 बजे तक काम कर लेते और फिर बैठ जाते खाना।
0: और आपके सासू माँ कितनी देर बाहर रहते?
1: बाहर क्या, वो तो गेट पे रहते थे, वो सांप आते तो झंडी बता देते और वैसे सफाई करते, मतलब 2 खंबे इस तरफ 2 खंबे इस तरफ, हम भी मदद करते थे, घास वास उपाड़ना करना, लेन पे कचरा होता तो उसको घास उपाड़ना, ऐसे रस्सी होती है ना गिलास वो।
0: अच्छा, तो आप भी इस तरह मदद करते थे, बहुत अच्छी बात है माता जी। आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मावल की कुछ बहनें हमारे साथ बने हुए हैं, जिनका नाम है तीजा देवी जी और शांति जी शर्मा, तीजा जी बेरवा हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए शांति जी से फिर से बात करेंगे। शांति जी, आपका फिर से स्वागत है वंदे मातरम में।
1: स्वागत है।
0: अच्छा शांति जी, आप बता रहे थे कि आपके गांव में सड़कें वगैरह नहीं थी।
1: छोटा सा गांव है, भूड़ है, रेती जैसी है और सड़क नहीं थी, कच्ची रास्ता है, बैलगाड़ी चलती है, पैदल भी जाने पड़ते।
0: अच्छा, पैदल कहाँ जाते थे आप?
1: थोड़ी दूर हो, जैसे इधर से आबू रोड है, इतनी दूर सड़क की कच्ची रास्ता, चले जाते आराम से, मस्ती मस्ती सब लोग।
0: मावल से?
1: मावल से जैसे आबू रोड है इतनी दूर तक,
0: उधर यूपी में
1: रास्ता है। हाँ, उधर पापा के साथ में, चाचा के, भाई के, सबके साथ में जाते, बैलगाड़ी से भी जाते, पैदल भी जाते।
0: बसें वगैरह नहीं आती?
1: नहीं नहीं, बस नहीं चलती।
0: अच्छा, और आपके ससुराल में?
1: ससुराल में तो देखो ये टेम्पू चलते हैं, गाड़ी भी चलती है, रिक्शा चलता है, बड़ा बुग्गी चलती है।
0: तो फिर आज भी आप आपके मायके जाते हो तो क्या करते हो?
1: अब मायके जाते हैं तो अपने बस से जाते हैं, और फिर अपने जैसे बस से जाके गांव को जाते हैं तो हमारे भाई की ट्रैक्टर है, वो ले जाते हैं, नहीं कोई गाड़ी आड़ी कभी मिल जाते सवारी तो उससे चले जाते, नहीं पैदल चले जाते।
0: ओहो, पर आज भी आप कह रहे हो ना कि अभी भी बसें नहीं चलती है।
1: अभी भी सड़क पर ही है, पर कहीं कहीं टूटी है, ये सही नहीं है, जैसे खूब बढ़िया रोड है वो रोड नहीं है अभी पर।
0: आज भी मुश्किल पड़ता है?
1: हाँ, अभी जाते हैं तो सवारी बहुत कम मिलती है, तो अभी भी पैदल जाने पर। तो वैसे तो मेरे भाई ने जैसे आबू रोड है ऐसे मकान ले लो उधर रात पर, जैसे गांव में मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं, छोटा भाई रह रहा हो तो उधर जाने पर, तो तीन भाई ऐसे कस्बा में रह रहे हैं और मम्मी पापा भी गांव, बहुत जमीन है, घर है, इसलिए वो छोड़ के नहीं, तो उनके पास तो जाना पड़ेगा।
0: जी जी बिल्कुल। और आप आपके गांव से राजस्थान की तरफ आपने रुझान किया, कितने समय हो गए राजस्थान में रहते हैं?
1: यहाँ मैं 6 साल हुई है।
0: अच्छा, 10 साल उधर रहे?
1: घर पे रहे, घर पे तो 10-12 साल घर पे रहे।
0: अच्छा, उसके बाद आप इधर आए राजस्थान?
1: हाँ, उसके बाद गुजरात में भी रहे, गुजरात में रहे 5-6 साल गुजरात रहे।
0: गुजरात रहे, गुजरात में काम?
1: गुजरात में भी कंपनी में काम करते।
0: कौन से शहर में रहे?
1: अहमदाबाद कलोल।
0: अच्छा, अहमदाबाद कलोल रहे, तो ये कड़ी कलोल।
1: हाँ, कड़ी कलोल।
0: तो ये आप जैसे कि उधर से हिंदी भाषा है ना, आपके कौन सी भाषा चलती, भोजपुरी या हिंदी?
1: नहीं, हम तो हिंदी बोलता,
0: तो हिंदी भाषा बोलते, फिर इधर गुजरात में गुजराती भाषा, तो कैसे आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा?
1: नहीं, यहाँ अटपटा लगा तो, पर अपने बोलते तो बंजी सब गुजराती की, सब अपने हिंदी में ही बोलती, बात करती, अपन में बोलती तो गुजराती बोलती, हमसे बोलती तो हिंदी में बोलती।
0: तो आपका इधर आके मन लग गया?
1: हाँ, अच्छा लग रहा हो, रह रहा है, अब नौकरियाँ पति देव रहेंगे हुए, हमें रहना पड़ेगा।
0: जी जी बिल्कुल। और फिर कलोल रह करके फिर आप मावल आए?
1: हाँ, पहले कलोल में रह रहे थे, उसके बाद इधर आए, अभी इधर बच्चा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कितने बच्चे हैं?
1: हमारे 5 बच्चे हैं, 5 लड़का लड़की नहीं।
0: 5 ही लड़के हैं?
1: 5 लड़का लड़की नहीं।
0: अच्छा, तो लड़की की कमी खलती नहीं है बेटी की?
1: हाँ, बेटी की खलती है, इसलिए बेटी एक रात देखा देगा तो 5 लड़के हुई है, एक लड़की जो रहे थे।
0: जी जी, तो इस तरह 5 बेटे हो गए बेटी की राह देखते देखते। तो 5ों लड़कों को पढ़ा रहे हैं आप?
1: नहीं, सबसे बड़ा है वो अपने पापा संग काम कर रहा हुआ, 4 छोटे छोटे वो 4ों पढ़ रहे हैं।
0: तो जैसे कि आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आपको कभी महसूस होता होगा कि काश मैं भी पढ़ती तो?
1: हाँ, महसूस होता, पढ़े होते तो हम जाते तो अंगूठा लगा देते, पढ़े होते तो हम भी साइन कर देते।
0: तो आप अपने बच्चों से पढ़ाई सीख सकते हैं ना?
1: हाँ, बच्चा बोलते हैं मम्मी तुम अपना नाम लिख लो, देखो सीख लिया, हम सिखा देंगे। हम बोलते हैं नहीं, क्या करने अब, तो अब बच्चा पढ़ लेंगे वही बहुत है हमारे लिए, क्या करने अब, इतनी कटी रही वो भी कटी आई, बच्चे नहीं पढ़ाई जरूरी है, बच्चा पढ़ जाएंगे तो बस।
0: तो जैसे आप एक छोटे से गाँव से आप कड़ी जैसे कस्बे में आए, फिर कड़ी से वापिस मावल गाँव में आ गए, तो आपका मन लग गया इधर आके?
1: हाँ, मन तो लगे, अब जहाँ रहेंगे तो मन तो लगे, अच्छा लगे, अब सबके संग में यहाँ बैठते हैं उठते हैं, प्रेम सराहत है, सब एक दूसरे से बात करते हैं तो अच्छा लगता।
0: आपके रिश्तेदार सब उधर यूपी में?
1: हाँ, और रिश्तेदार तो कोई रह रहे हैं, पर हम किसी से रिश्तेदार से अपने अपने घर में रहते हैं, जो बात करे उससे करते, नहीं तो अपने घर में ही बस।
0: लेकिन आपके घर वाले तो सब उधर ही है ना?
1: हाँ, हमारे घर वाले कलोल में ही काम कर रहे हैं।
0: अच्छा, कलोल है, और आप यहाँ पर?
1: ये रह रहे थे पर इधर काम छोड़ दिए तो आप कलोल में पहुँचिए, तो अभी कलोल में रह रहे हैं हम, यहाँ बच्चा पढ़ रहा है इसलिए यहाँ रह रहे हैं।
0: तो क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड?
1: हमारे वो प्लास्टिक कंपनी है ना, उसमें ठेका आदमी को बुला के ला के उन पर काम करवाता, ठेका चला रहे हैं।
0: अच्छा, तो इसमें भी ट्रांसफर सिस्टम है क्या, पहले कलोल फिर अभी आबू मावल?
1: ऐसा है जैसे अभी इधर कंपनी में काम लिया तो उसमें सेट पैसा नहीं बढ़ा रहा है, जैसे कम पैसा दे रहे हैं, अब लेबर हमारी ज्यादा मार रही है इसलिए इधर छोड़ दिया तो उधर दूसरी जगह ले लो, वैसे उधर कर रहे हैं।
0: जी जी, आपके 5 बच्चे हैं, आपके हस्बैंड कमाते अकेले हैं, फिर वो आपके घर में चल जाता है?
1: हाँ, बच्चा नहीं है पर पूरा हो जाता खर्चा पानी, बच्चा है सब खर्चा, भाड़ा किराया है सब।
0: आप भी कुछ करते हैं?
1: नहीं नहीं, हम तो घर पे ही रहता, हम कुछ भी नहीं करते,
0: बस आप अपना छोटा मोटा काम करते हैं घर का?
1: हाँ, अपना छोटा मोटा काम है, बच्चन को बस सुबह उठाओ, तैयार करो, नाश्ता पानी बनाओ, उन्हें स्कूल भेजना है, झाड़ू पोता पानी ये काम करना।
0: जैसे आप यूपी में रहे, फिर गुजरात में रहे, अभी राजस्थान में रहे, आपको सबसे अच्छा मन कहाँ पे लगा?
1: अब अच्छा तो गुजरात में भी अच्छा लगता रहा है, इधर भी अच्छा लग रहा है।
0: नहीं, कहते हैं कि एक तो भाई जहाँ अपना बर्थ प्लेस होता है, जहाँ जन्म स्थान होता है, वहाँ से ज्यादा लगाव रहता है।
1: वो तो रात में मम्मी पापा की, भाई की, भाभी की, सबकी याद आती है कि अपना कैसे इधर रह रहे हैं तो घर पे जाए, सब बार बार याद आती है उनकी।
0: तो कितने समय से आप जाते हो अपने घर पर?
1: 1 साल हो जाए, 2 साल, 3 साल ऐसे हो जाती है तब जाते।
0: तो फिर वो लोग आते हैं मिलने इधर?
1: नहीं नहीं, इधर दूर पड़ते, हमारे भाई खेती बाड़ी है, सब नौकर पैसा उधर काम करते थे, इधर नहीं आता, वो तो घर पे ही रह रहे हैं सब। हमारे 4 भाई हैं, 4 भाभी है, और 4 बहन है, एक दिल्ली रह रही है, एक बरेली में, एक मियाऊ में, और हम इधर रह रहे हैं।
0: सभी आपसे दूर है?
1: सभी दूर है। हाँ, भाभी है, सब बहुत याद आती है भाभी की, भाई की, फोन कर लेते बात कर लेते।
0: जी जी, आजकल तो फोन का सिस्टम अच्छा है कि चलो याद आई और फोन किया,
1: भाई भी बात कर ले, भाभी कर ले, दीदी कर ले, सब लोग कर ले, मम्मी कर ले, पापा कर ले, सब। अब मम्मी भी है, पापा भी है, चाचा है, चाची है, सब लोग।
0: जी, और आपके सासू जी, आपके जेठानी वगैरह भी आते हैं इधर मिलने आपसे?
1: नहीं, वो नहीं, सासू ससुर तो नहीं है, जेठानी है, जेठ है, देवर है, देवरानी है,
0: वो सभी आपके गाँव में ही रहते हैं या कलोल रहते हैं?
1: नहीं, वो तो घर पे रह रहे हैं, जिठानी है, माँ जेठ है, वो घर पर, वो सब लोग घर पर रह रहे हैं, हम अकेले रह रहे थे।
0: अच्छा, तो फिर उनकी भी तो याद आती होगी ना?
1: हाँ आती है, बात कर लेते मोबाइल से, 2 ननद है, ननद अपने अपने घर है, उनसे बात कर लेते, नंद से, नंदोई से।
0: अभी कितना समय हो गया उधर गए हुए?
1: अभी अभी तो ये अप्रैल में गए थे, भतीजी की शादी उसमें गए थे।
0: फिर सभी जगह जाते हो, मिल के आते हो?
1: हाँ, जब जाते तो सभी जगह मिल के आते, जाते मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, अपने ससुराल सिगरे।
0: अच्छा, और आप अपने बच्चों के प्रति क्या लक्ष्य रखते हो? उनको अच्छा पढ़ा लिखा करके अच्छा, मतलब अच्छी पोस्ट तक पहुंचाना चाहते हो, जॉब करवाना चाहते हो, या फिर बिजनेस करवाना चाहते हो, क्या लक्ष्य बनाया आपने?
1: अब पढ़ाना तो चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चा खूब पढ़ा लिखा है, नौकरी हो, लेकिन प्राइवेट नौकरी है तो अब पति हमारे इतना कमाते, उसमें खर्चा पानी पूरा मुश्किल से पाते है, इसलिए प्राइवेट नहीं पढ़ा पा रहे, सरकारी में पढ़ रहे हैं, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है।
0: कोई बात नहीं, देखो आगे जाने वाले बच्चे तो सरकारी में से भी निकल पड़ते हैं, वो भी आगे बढ़ जाते हैं।
1: पर पढ़ाते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं, और देखो ट्यूशन लगा दी, 2 की छोटे छोटे ट्यूशन जाता पड़ा।
0: तो चलिए शांति जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मावल की बहनें हमारे साथ बने हुए हैं, शांति जी, तीजा माता जी। तो आइए फिर से हम बात करेंगे तीजा माता जी से। तीजा माता जी, आप बता रहे थे कि आबू से विवाह करके आप मावल में आ गए।
1: हाँ जी, हाँ, आबू से विवाह करके आबू मावल में आ गए।
0: नहीं, आवल आए ना, पहले तो आवल रहते थे।
1: वैसे शादी तो वहाँ ससुराल में हुई थी, केसरगंज में, फिर यहाँ आ गए थे।
0: कहाँ पे आपका ससुराल?
1: केसरगंज।
0: केसरगंज
1: सिरोही के पास में, सिरोही के पास में।
0: हाँ, तो केसरगंज आपका ससुराल था।
1: हाँ।
0: फिर वहाँ से इधर आए।
1: हमारी सास गेट पे थी, तो गेट पे रिटायर हो गई, तो यहाँ आ गए।
0: जी जी, तो आवल रहे।

0: फिर ये मकान बना रखा था वो यहाँ रहती, मैं फिर उनके साथ रहती, महीना भर रह के फिर वापस आ जाते, फिर यहाँ रहते महीने दो महीने, फिर थोड़े दिन चले जाते इनके साथ।
1: अच्छा, बीच बीच में आवल जाते वापस मावल आ जाते?
0: आवल नहीं, ये जहाँ ड्यूटी करते यहाँ।
1: अच्छा, आपके पति देव जहाँ सर्विस करते थे, हाँ। तो कहाँ कहाँ रहे आप?
0: आप रहे तो कहीं जगह, पहले तो ये उदयपुर रहे थे, हाँ, तो एक महीना उदयपुर रह के आए, जिसके बाद में ये इकबालगढ़ आ गए, इकबालगढ़ से फिर जो अपने कह रहे सिलोत्रा गए, फिर सीधे भिलड़ी गए, भिलड़ी से फिर वो गंदम चले गए।
1: अच्छा, तो इतनी जगह आप रहे फिर?
0: ये तो मास्टरों की बदली होती रहती है, तीन साल में इस मारे।
1: अच्छा, तो आपके पतिदेव तो टीचर थे ना?
0: टीचर थे, फिर स्टेशन मास्टर हो गए ना।
1: अच्छा, स्टेशन मास्टर हो गए, तो कैसे, पहले तो टीचर थे, अध्यापक थे, फिर स्टेशन मास्टर?
0: फॉर्म भरा फिर वो आ गई ड्यूटी।
1: अच्छा, तो स्टेशन मास्टर बनने के बाद आप जगह जगह घूमे?
0: जगह जगह घूमे
1: और बीच बीच में वापिस आप घर पर भी आते थे?
0: हमारे सास को संभालते थे ना फिर।
1: तो आपके सास के कभी छुट्टियां नहीं होती थी?
0: नहीं होती थी, 15 दिन में रेस्ट पड़ता था।
1: तो फिर वो आपके पास आते थे?
0: वो फिर हमारे पास ही रहने लग गई थी ना। फिर वापिस फिर गुजर गई, जब फिर हम रहने लग गए, बड़े बड़े बगान मेरे चले गए, बच्चे पढ़ने जैसे हो गए, फिर यहाँ आके मकान बना लिया, मकान में यहाँ रहते थे।
1: आपके कितने बच्चे?
0: हमारे 4 लड़के 1 लड़की।
1: अच्छा, तो सभी को पढ़ाया आपने?
0: सभी को मैं पढ़ाया।
1: तो जैसे कि मावल आप रहते हो, फिर पढ़ाई कहाँ की बच्चों ने?
0: बच्चों ने यहाँ स्कूल से जब 8वीं तक थी, तो 8वीं तक यहाँ नहीं, 5वीं तक थी, 5वीं के बाद आबू रोड भेजा, आबू रोड पढ़े।
1: आबू रोड ही रहते थे? आबू रोड से डेली
0: आबू, यहाँ से आबू रोड जाते थे पढ़ने।
1: अच्छा, तो यहाँ से कोई गाड़ी की व्यवस्था करवाई आपने?
0: गाड़ी थी ना, सुबह सिग्नल थी, ये पार्सल थी, फिर साइकिल ले दी, फिर साइकिल से आते जाते थे।
1: अच्छा, और अभी तो आप भी दादी नानी बन गए?
0: हाँ जी, हाँ, अभी तो 5 बच्चे हैं, उनके बेटा बेटी है, नवासा है।
1: आपके जमाने में गाड़ियाँ चलती थी?
0: गाड़ियाँ तो चलाते थे ना।
1: नहीं, ट्रेन तो चलती थी, वह बसें चलती थी?
0: बहुत, हाबरोड से अहमदाबाद तक खूब चलती थी, उदयपुर जाती थी।
1: तो आपके तो कोई दिक्कत नहीं आई इधर उधर आने जाने में?
0: कुछ नहीं, यहाँ से कभी आवल रहते थे, जब 5 से उतर के पैदल जाते थे 2-2.5 किलोमीटर।
1: अच्छा, और जैसा कि आप बता रहे हो कि आपकी सास आपको बेटी की तरह रखते थे, आपके भी बहुए हैं, तो आप कैसे रह रहे हो बहुओं के साथ?
0: आपके तो देखो अभी भी ठीक है भगवान की दया से, और वो तो टेम से टेम, जैसे पहले जैसे टेम तो है नहीं, अब थोड़ा परिवर्तन तो हो ही गया ना, तो भी अपने को तो खाना मिल जाता है, खाना देते।
1: जी जी, खाना तो मिल जाता है, लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन तो खैर होता ही है, थोड़े विचारों की भिन्नता आ जाती है। पर जैसे कि आप शादी करके आए, उस समय भी सास बहुओं के विचारों में तो भिन्नता होती है, तो अभी आपके बहुएं हैं, तो बहुओं के साथ आपका कैसा रहता है? आपको जैसे बेटी बना के रखा, आप अपने बहुओं के साथ कैसे रह रहे हो?
0: अब देखो बेटी बराबर रखते हैं, फिर वो टेंट हो जाती है, फिर बोलती है नहीं बोलती, ऐसे हो जाता है, खटपट तो होती चलती है। चलो अब दो तो यहाँ रहती नहीं है, 2 गंदम में, वो लड़के डरे भरे तो वहीं रहती है, वो 2 है तो यहाँ रहती है, एक थोड़ी आगे रहती है, आगे की वजह और एक यहाँ रहती है हमारे पास।
1: जी जी, आप तो प्यार से रहते हो, लेकिन सभी के स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। और
0: तो वो उसके एक बच्चा हुआ, और वो अभी गया छोड़ के, तभी बैठी घर पे, 3-3.5 साल हो गई।
1: अच्छा अच्छा, बेटी की शादी कहाँ करवाई?
0: ये फुलेरा, फुलेरा है ना।
1: अच्छा, फुलेरा, और उनके एक बेटा है, वो यही है?
0: हाँ, यही है इसके पास।
1: अच्छा, क्या कारण होगा?
0: अब कारण क्या पता है, दोनों जने के क्या पता क्या कारण है, पहले 1 साल तो अच्छी तरह रही है, और फिर जो लड़का हुआ इसके बाद में खटापटी होने लगी, बोलता नहीं, खटापटी तो क्या मारता कुछ नहीं, बोलता नहीं खाली, अब क्या पता हुआ रहता है, वो बोलती मैं हम चले, तो फिर नहीं मैं यहाँ आ जाऊंगा, वो बोलती मैं यहाँ आऊँ, तो फिर मैं वहाँ चले जाऊंगा, क्या पता पार पग होगा उसका सर। तो फिर एक दिन आके छोड़ के चले गए।
1: तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं?
0: नहीं, हमने नहीं कहा,
1: क्योंकि आपके 4 बेटे हैं, एकलौती बेटी है, तो भाइयों ने कुछ कहा नहीं कि क्या गलती है जो इसको छोड़ के जा रहे हो?
0: कुछ नहीं बोला। अब भाई तो 2 भाई वहाँ है, वो एक 2 भाइयाँ हैं, तो एक तो कुछ बोलता ही नहीं, वो तो बहुत सीधा है,

0: कहीं ने बोला क्या बात है, तो बोले कुछ नहीं, वो बोले बोल बोल बोल, बस उनको वो ही है कि वो वहाँ आती है तो वो वहाँ चले जाता है, वो वहाँ चले जाती है तो ये यहाँ घर पे आ जाता है। बात ये है, एक ननद है खाली और ससुराल में कुछ नहीं, एक जेठ है तो वो तो बोलते ही नहीं उनसे, तो शादी में भी नहीं बुलाया
1: जी। तो अब आप, आपकी बेटी पड़ी हुई है?
0: हाँ है, मैं बीएड करी हुई है।
1: तो जॉब कर रहे?
0: जो भी है यही जा रही है, स्कूल पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ाती बच्चों को,
1: ट्यूशन पढ़ाते हैं। कहते हैं कि देखिए इस तरह की
0: इंग्लिश स्कूल में जाती है पढ़ाने
1: जी जी, इस तरह की परिस्थितियाँ आती है तो माता पिता को बेटी को गले लगाना चाहिए।
0: गले तो लगा ही रखा है ना अपना तो।
1: बिल्कुल माता जी, और आप क्या कहना चाहेंगे, आप खुश है?
0: बस खुश, हाँ खुश है।
1: तो हमारे सुनने वाली माताओं को कुछ कहेंगे, कोई संदेश देंगे?
0: अब मेरे से संदेश दिया नहीं जाएगा।
1: चलो कोई बात नहीं। और शांति जी, आप अपने जीवन के अनुभव से हमारे सुनने वाली बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
2: अपने बच्चों को, बेटी को, बेटा को अच्छे से पढ़ाना, अच्छे संस्कार देना, अच्छे से रखना, उन्हें प्यार देना, लाड़ दुआर देना। जो ससुराल जाए तो उन्हें ये नहीं आवे कि हमारे मम्मी पापा ने, भाई ने, बहन ने, भाभी ने अच्छे से रखो, प्यार से रखो, तो उन्हें दुख नहीं होना चाहिए।
1: तो शांति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तीजा माता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने अपने जीवन के अनुभव सुनाए और रेडियो मधुबन और सुनने वाले श्रोताओं को इतना समय भी दिया, आपके जीवन के अनुभव भी शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। मावल गाँव की रहने वाली बहने जो तीजा माता जी और शांति जी शर्मा, इन दोनों के जीवन के अनुभव आपने सुने हैं। कहते हैं कि देखिए तीजा माता जी के आज 70 प्लस इनकी उम्र है और इस उम्र में 4 बेटे, 1 बेटी है। बेटी को के ससुराल वालों ने बेटी को छोड़ दिया, इनके पास है, लेकिन फिर भी कहती है कि एक नारी कभी नहीं हारती, अपने बच्चों की अच्छी तरह पालना करती है, उन्हें पूरी तरह प्यार देती है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर फोन कीजिए और इस तरह आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, सुप्रभातम। सब कुशल मंगल होंगे, यहाँ भी सब कुशल मंगल है। परमात्मा जी से आप सब की कुशलता की शुभकामना करते हुए परमा पंडिताइन आपका प्रोग्राम पंडिताइन शुरू करती है। आप सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत बहुत बहुत प्रोग्राम में स्वागत करती है। देखिए भाई, संबंध हम सब चाहते हैं कि सफल हो, तो सफल संबंध ई बात पर आधारित नहीं होता कि हम बातों को कितना अच्छे से समझते हैं, बल्कि हम कितना गलत फहमियों को दूर करते हैं इस पर आधारित है। कई बार होता ना, छोटी मोटी बात में गलत फहमी हो जाती, उसी समय दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो वो गांठ बन जाती है, और एक बार गांठ बनते जाए ना तो वो फिर जल्दी खुलती नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, लोगों से बात करके मन हल्का हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम सुनकर अगर उन्हें चिंता, निराशा, डर या दुख हुआ, उन्होंने हमारी या दूसरों की निंदा की, तो उनकी वाइब्रेशन हमें भारी कर देगी। तो बात उनसे करें जो हर प्रॉब्लम में स्थिर रहे, यही सोचे, सबका नज़रिया समझे, हमें सिर्फ समाधान नहीं शक्ति भी मिले कि चला हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। अरे सॉल्व हो गई, लेकिन आगे भी कोई प्रॉब्लम आए उसको हम सॉल्व कर सकें, उसकी हमारे पास शक्ति भी होएगा चाहिए। जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव है, हर समय संघर्ष और चुनौतियां हैं। हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। जो हमारे पास है ही नहीं उसके बारे में सोचकर काहे दुखी होना भाई। हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर में तलाश नहीं, ये बात तो सुने होंगे। प्रेम वो आना सकते, ईश्वर हमें प्रेम करने की कला सिखा रहे हैं। उदाता हैं, प्रेम के सागर हैं, और हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, परंतु पहले हमको अनासक्त रहने की कला सीखनी। अनासक्त यानी कोनो चीज में आसक्ति नहीं, कि चीज नहीं मिलेगी तो हमारा काम नहीं चलेगा, नहीं, क्योंकि इसके बिना मुझे उनके प्रेम पर दावा करने का अधिकार नहीं होगा। अनासक्ति एक कौशल भी है और एक कला भी है। आत्मचेतना की स्थिति में रहकर इसका विकास किया जा सकता है। आत्मचेतना की स्थिति में हम ईश्वर के साथ गहरा संबंध जोड़कर सीमित प्रेम के आकर्षण में फंसने से बच सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि मैं अपने सच्चे रूहानी स्वरूप की चेतना में इतनी केंद्रित हो जाऊं कि मेरे व्यक्तित्व में जो विपरीत लक्षण मौजूद हों, ये तथा आसपास के सब मायावी आकर्षण स्वतः अस्वीकृत हो जाएं। अनासक्ति के कारण मैं इन सब से प्रभावित नहीं होती तथा अपने रूहानी व्यक्तित्व के मूल्यों व गुणों को धारण करती रहती हूँ। ईश्वर हमें अपना पूरा प्यार देना चाहते, परंतु यदि हम अनासक्ति की पहली शर्त पूरी नहीं करते तो ईश्वरी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी नज़र किसी दूसरी तरफ मोड़ देने से सत्य का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, वो मेरी प्रगति रुक जाएगी। अतः यह अत्यावश्यक है कि पहले हम अनासक्ति को अपनाएं। आपकी हार या जीत लोग निर्धारित नहीं करते। हम कहते हैं ना इसकी वजह से हम हार गए, ना, ये गलत बात है। आपकी हार या जीत लोग निर्धारित नहीं करते, बल्कि आप स्वयं निर्धारित करते हैं। इसलिए ये कभी ना सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपकी हार तब तक निर्धारित नहीं होती जब तक आपकी सकारात्मक सोच वो मनोबल कायम है। जहाँ आपका मनोबल कमजोर हुआ, जहाँ आप में नकारात्मकता आई, समझ लीजिए वहीं पर आपकी हार शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति सभ्य है उसके साथ सभ्य बने रहिए। किसी के ओछे बन के चलते अपना चरित्र नीचे करने का कोनो औचित्य नहीं है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच पुल का काम करता है। इंसान की सोच जहाँ समाप्त हो जाती है, वहीं से ईश्वर की सोच शुरू होती है। इसलिए हमसे जो बेहतर बने वो करते हुए सब ईश्वर पर छोड़ सदा चलते रहना चाहिए। जब आप अतीत और भविष्य के बजाय वर्तमान क्षण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं, तो आप जो करते हैं उसका आनंद लेने की आपकी क्षमता और इसके साथ ही आपके जीवन की गुणवत्ता नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। देखिए भाई, सही सही बात बता रहे हैं। आज मनुष्य का अधिकतर काम मशीनें कर रही हैं।
अतः इतना शारीरिक परिश्रम नहीं है, फिर भी बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। पहले तो हर काम हाथ से करते थे, मसाला सिलबट्टे पर पीसते थे, कपड़े हाथ से धोते थे, सभी कुछ। तो आजकल तो हर चीज के लिए रोटी बनाने की भी मशीन आ गई है, क्योंकि मन में सदा व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। खाली खुपरिया है तो शैतान का घर तो बनबे करेगा ना। यदि हम अपने विचारों को सदा सत्य ज्ञान युक्त रखें तो हमारा तन मन दोनों हल्के रहेंगे। एक मनोवैज्ञानिक स्थिति सदा काम करते रहती है, अर्थात जिन्हें हम पसंद करते हैं उनकी हर बात हमें अच्छी लगती है, जबकि जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनकी हर अच्छी बात भी हमें बुरी लगती है। तो सारा खेल कहाँ का है? हमारी खुपरिया का तो है। अंदर का सोच रहे हैं, किसके बारे में कैसा सोच रहे हैं, बस वैसी परिस्थिति सामने आ जाती है। तो कोशिश करिएगा कि जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना आपके जीवन में घटनाएं भी आपके मन मुताबिक घटेंगी, वरना आपका नेगेटिव थॉट आपके सामने वही क्रिएट करेगा। तो हम चाहते हैं क्या हमारे साथ कुछ बुरा हो? नहीं, तो अच्छा सोचिए। मन में ठहराव आ जाए फिर दुनियादारी कोई मायने नहीं रखती। मन जब तक भटकता है ना, तभी तक दुनियादारी की परवाह रहती है। ठहर जाए, स्थिर हो जाए, फिर दुनिया की हमको फिक्र नहीं। ऐसा मन नहीं कि कुछ भी गलत करेंगे, लेकिन कई बार हम सोचते हैं ना, वो लोग का कहेंगे, वो का करेंगे। अरे भाई, लोग गलत करे में नहीं डरते तो हम अच्छा करने में काहे डरे। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको कुत्ता मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको कुत्ता मिलेगा, उलझना नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है। आप अर्थ समझ गए होंगे। लोगों को अपना संघर्ष परिश्रम लगता है और दूसरों का तमाशा, कहते हैं अरे ये क्या परिश्रम करते हैं, ये तो तमाशा करते हैं, और खुद का संघर्ष कहते कि हम तो ऐसे ही थोड़े बने हैं, हम तो बहुत मेहनत किए हैं। दूसरा करता है तो मेहनत नहीं लगती, दूसरे का तमाशा लगता है। किताबें पढ़ो ताकि लोगों से बहस नहीं बल्कि तर्क कर सको। सभी कार्य विचारों के परिणाम होते हैं, इसलिए विचार मायने रखते हैं। तो हर विचार को ध्यान से सोचिएगा। समझदार वही है जो दूसरों के हालात को अपना बना कर देखे। बहुत जल्दी तो हम किसी की भी गलती निकाल देते हैं, लेकिन उस जगह अपने आप को भी तो रख के देखिएगा, अगर हम होते तो क्या करते। झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से लोगों को मिर्ची, ये तो आप समझते होंगे। चिंता से कभी कुछ हासिल नहीं होता। जब आपके पास कोई समस्या हो तो उस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा है, न कि केवल समस्या पर। हम वही में उलझे रहते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा काहे हुआ, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता। वो तो जो हो गया सो हो ही गया ना भाई, अब वो का समाधान क्या कर सकते हैं, वो सोचिए ना। अपनी सारी एनर्जी वो जो हो गया वो के पीछे काहे गवाते हैं। परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है, और जो अपने मन को नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। ज्यादा सुख सुविधा की चाहत सुकून की हत्या कर देती है। और चाहिए सुविधा चाहिए, अभी एक 800 आ गई मारुति, अभी नहीं भाई हमको तो BMW चाहिए, BMW आ गई तो एक हेलीकॉप्टर चाहिए, एक हेलीकॉप्टर आ गया तो एक बड़ा विमान चाहिए, उसके बाद तो सारी दुनिया ही चाहिए। तो ज्यादा सुख सुविधा की चाहत रखते हैं ना तो सुकून की हत्या हो जाती है, यानी मन में शांति नहीं रहती है। वो जुगाड़ कैसे करें, और कैसे बढ़ाए, और कैसे बढ़ाए, उसमें ही सारा हमारा जिंदगी खप जाती है। सूर्यास्त होने तक मत रुको। चीजें तुम्हें त्यागने लगे उससे पहले तुम ही उन्हें त्याग दो। कहते ना कि अब तो दांत है लेकिन चने नहीं, जब चने थे तो दांत नहीं, तो काहे ऐसा मोह रखते हो? जो चीज छूटने वाली है उससे मोह पहले ही निकाल दीजिए ना। किसने चिल्लाया, किसने चलाया ये तोहफे लेने का रिवाज, किसने चलाया ये तोहफे लेने का, लेने देने का रिवाज। गरीब आदमी मिलने जुलने से भी डरता है, काहे कि भाई हम तो कुछ दे नहीं सकते, तो मिल के का फायदा, काहे कि कुछ ना कुछ देना चाहिए। दर्द अपमान अनदेखा और धोखा मनुष्य को पूरा बदल देता है। शांति कहीं नहीं मिलती, शांति अपने अंदर भीतर ही मिलती है। और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मन बदल सकता है, जिद्दी व्यक्ति कभी नहीं। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों पर नींद जरूर पूरी हो जाती है। वस्तुओं से हीन
होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। तो देखिए ये छोटी छोटी बात है, इनको अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जीवन बड़ा सुखमय बीतेगा। और की चाहत मत करिए, जो है उसमें संतुष्ट रहिए। चलिए यही के साथ एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। परमा पंडिता इन आपके साथ 12 बजे तक बनी।

0: नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: भारत देश बहुत महान है, कई कारणों से है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा कारण है पतिव्रता। भारत में नारी का पतिव्रता होना बहुत बड़ी बात है, और देशों में तो लोग ऐसे पति बदलते हैं जैसे साड़ी बदले, ड्रेस बदलते हैं। एक विदेश में केस गावा कोर्ट में, तो वो कहा कि तुम काहे डाइवर्स लेना चाहती हो, तो कहा भी थोड़ी देर पहले हमको पता चला ये 6वें नंबर का हमारा पहले हस्बैंड रह चुका है। ऐसी तो हालत है। लेकिन भारत में भगवान आते हैं, भारत में वो संस्कृति है जो हमें आध्यात्मिकता के ज्ञान से आगे रखती है, और यहाँ का संस्कार, यहाँ के चरित्र की बात। तो सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी रही। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध, उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया रहा। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वो स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए। काहे कि राम पुरुषोत्तम हैं, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोनो संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार ना गिरे जमीन पर। कहे कि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा संभव है ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो, ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। उत्तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विद्रोह होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधु के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे, मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करते हुए सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी, सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं न कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वो कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। ई बल रहा भगवान राम के चरित्र में और ई बल रहा उसती के इसमें सतीत्व के बल पे वो कटा हुआ हाथ भी सारा बात भी लिखा। और रावण तो दुश्मन समझता रहा ना राम जी को, तो वो भी अपनी बहू से कहा कि तुम वहाँ जा सकते हो, वो सब मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो एक भगवान राम ही या सिर्फ मेघनाथ की पत्नी ही थोड़ी रही, हम सब भी तो वही देश के वासी हैं। तो कहा हम अपने जीवन में ऐसी सत्यता ऐसी पवित्रता नहीं धारण कर सकते। आज अगर नहीं कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी दृष्टिवृत्ति में कुछ भेदभाव हो रहा है। जो हमारी दृष्टिवृत्ति में होना चाहिए उसके अलावा कुछ हो रहा है। तो कोशिश करिएगा कि देखिएगा हमारे मन में कहीं किसी के प्रति आसक्ति तो नहीं है, किसी से हम प्रभावित तो नहीं होते हैं। किसी की तारीफ करना, गुणों को, कला को सराहना वो अलग बात है, लेकिन किसी के प्रति बहुत लगाव होना ये भी एक प्रकार की अपवित्रता है। तो हम तो यही कहेंगे कि देखे भाई, जितना हो सके आत्मिक प्रेम सबसे रखिएगा, लेकिन अगर सच्चा प्यार करना है तो एक परमात्मा से करिए। वो परमात्मा कभी आपको निराश नहीं हो देगा और हमेशा हमारी रक्षा भी करेगा और हमारे चरित्र की तो रक्षा हुई भी करेगी। तो आज से ही बात को ध्यान में रखिएगा कि हमको सबसे बड़ी चीज है हमारा चरित्र। आपसे दूर जाने का इरादा तो नहीं था, आपसे दूर जाने का इरादा तो नहीं था, साथ साथ रहने का भी वादा तो नहीं था। तुम याद आओगे ये जानते थे हम, पर इतना याद आओगे अंदाजा नहीं था। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार, आपको भी नमन है। सुप्रभात।
2: क्या बात है, क्या बात है
1: जी।
2: अभी अभी मैं अकेला भाग चल रहा था,
1: हाँ,
2: और घड़ियाल के कांटे की तरफ नजर गया
1: जी।
2: तो मैं भी हमारी दीदी आ गई होगी और ना जाकर देखिए पहले हमसे क्या बात करनी हो, तो हम बात अपने आप से करें
1: जी।
2: मैंने बोला आज हमारी दीदी आ गई है,
1: हाँ जी,
2: अच्छा ज्ञान सुनाने वाली, दुनिया की तरह आवाज निकालने वाली, राजा महाराजा की बात कहने वाली और पूरे सृष्टि का सब कुछ सुनाने वाली, एक एक आत्माओं का मन की बात कहने वाली, ऐसी हमारी परवा दीदी को नमन है, सख्त सख्त नमन है और हमारे सभी शो को नमन है।
1: अरे
2: तो बहुत अच्छा लगता है, जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं
1: जी,
2: बस किसी चीज से जो हो रहा है वो अच्छा ही है
1: जी।
2: और आज गर्मी थोड़ी है, गर्मी तो मगर
1: जी,
2: और अभी अभी मैं जोड़ा वो पान के पत्ते मुंह में डाल दिए,
1: हाँ जी,
2: ये क्या लीम के
1: हाँ हाँ हाँ हाँ।
2: तो अब मैं वो खा रहा था तो मेरे को बोले भाई साहब क्या पान खाया क्या,
1: हाँ।
2: फिर मैंने बोला भाई जमाना हो गया पान खाया
1: जी,
2: जी। आप तो बच्चन की तरह बोल रहे
1: हैं,
2: देखिए आप तो हम भी तो बच्चन के दोस्त है,
1: हाँ।
2: तो बोले भाई वो इंस्पेक्टर बोलता है इसको पहचानता है तो क्या,
1: हाँ।
2: ये तो मैं हूँ, उसके हम बच्चन होता है, ये तो मैं हूँ, ये सब तुम्हें बनना पड़ेगा। नहीं कहा डान और कहा मैं डान को छोटी छोटी बातों में गोलियां लगा चालू करता था और मुझे तो गोलियां तक रमना नहीं आता, मुझे तो माफी कर दी है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। ओम शांति,
1: ओम शांति, थैंक यू। तो देखिए भाई, मदन लाल भाई हमेशा फोन करके बतियाते हैं, हाँ, और कितना तारीफ करते हैं, इतने तारीफ के तो काबिल हैं नहीं हम, लेकिन फिर भी आप जैसे श्रोताओं को सुनते हैं तो ये मन में आता है जिनसे मिलकर खुशियाँ ज़्यादा और दुख कम हो जाते हैं, अक्सर वही तो अपने कहलाते हैं। आप सभी तो हमारे अपने हैं जिनसे मिलकर बात करके खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। शुभ चिंतक सड़कों पर लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं, शुभचिंतक सड़कों पर लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं। वे हमारी यात्रा की दूरी को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन और यात्रा को आसान करते हैं। आप सुने रहे, लास्ट वीक हमारी तबीयत ठीक नहीं रही, थोड़ी आवाज़ कमज़ोर रही, कितने भाई बहनों ने फ़ोन करके हमसे कहा। तो यही तो शुभचिंतक है, और कहा है भाई, कोई किसी को कुछ देता है तो ज़िंदगी भर थोड़ी टिकता है। एक टाइम खाना खिला दीजिएगा, शाम को तो फिर भूख लगाएगी। किसी को कुछ दे दिया वो तो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो प्यार होता है ना, ये शुभचिंतक, ये बहुत जिंदगी में आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति दूर होते हुए भी हमारे आसपास लगे तो समझ लेना, उस व्यक्ति का संबंध हमारी आत्मा से जुड़ा है। और हम सब तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो जरूर हम सब का तो कहीं ना कहीं संबंध तो है ना भाई, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी कोई किसी को मान लेता है। छू ना सकूं मैं आसमान को तो कोई गम नहीं, छू ना सकूं मैं आसमान को तो कोई गम नहीं, बस छू जाऊं दोस्तों के दिलों को, ये भी तो आसमान से कम नहीं, ये भी तो आसमान से कम नहीं। और हमें तो ये बात में पूरा भरोसा है कि हम ये तो बात में हम जीत गए हैं। तभी तो आप सबका प्यार अभी 13 साल हो गए, फिर भी निरंतर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। ये बात भी तो हम जानते ही हैं। मैं कहूँ और आप सुनो, वो अच्छी दोस्ती, दोस्ती का है। मैं कहूँ और आप सुनो, वो अच्छी दोस्ती। आप कहो और मैं सुनूँ, वो उससे भी अच्छी दोस्ती। पर मैं कुछ भी ना कहूँ और आप समझ जाओ, तो वो है सच्ची दोस्ती, वो है सच्ची दोस्ती। हर बात लफ्ज़ों में नहीं बयां की जा सकती, कुछ बातें तो इंसान टेलीपैथी से, यानी सच्चा स्नेह हो तो अपने आप समझ जाता है। और आप सब हमारे श्रोता तो इसका जागता उदाहरण है। तो आप सबको हम बहुत बहुत सलाम करते हैं और चलते हैं, एक बहुत सुंदर सा गीतवा सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे पते आएंगे। सुनिएगा गीतवा।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है? ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: राजा की तीन प्रश्न से वैराग्य। बहुत सुंदर कहानी सुना रहे हैं। एक बार एक राजा रहा। एक दिन वो बड़ा प्रसन्न मुद्रा में रहा तो अपने मंत्री के पास गवा और कहा कि तो तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा का है। मंत्री शर्मा गया और आके नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबरा मत, तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ। मंत्री ने राजा से कहा, सरकार, आप इतनी बड़ी राज्य के मालिक हैं और जब भी मैं ये देखता हूँ तो मेरे दिल में इच्छा जागृत होती है कि काश मेरे पास इस राज्य का यदि 10वां हिस्सा होता तो मैं इस दुनिया का बड़ा खुश नसीब इंसान होता। ये कहकर मंत्री खामोश हो गया। राजा ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूँ तो? मंत्री को तो घबरा गया और आंखें ऊपर करके राजा से कहा कि सरकार, ये कैसे संभव है? मैं इतना खुश नसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ? राजा ने दरबार में आधे राज्य के कागज तैयार करने की घोषणा की और साथ के साथ मंत्री की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर मंत्री तो बहुत घबरा गया। राजा ने मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि तुम सफल हो जाओगे तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा और यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर 30 दिन के भीतर ना दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। मंत्री और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 प्रश्न लिख लो। मंत्री ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, पहला, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का है? दूसरा, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा का है? तीसरा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी का है? राजा ने 3 प्रश्न समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। मंत्री अपने 3 प्रश्नों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर संतों, महात्माओं, साधुओं के पास जाकर उन प्रश्नों के उत्तर पूछे लगा, मगर कौनों के भी पास उन उत्तरों से वो संतुष्ट नहीं भाया। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उनके दिन रात उन 3 प्रश्नों को लिए ही गुजर रहे थे। हर एक एक गांव में जाने से उनके पहने हुए जो लिबास थे वो भी फट चुके थे और जूते के तलवे भी फटने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। मंत्री हार चुका रहा तथा वो जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और ये सोचता सोचता वो एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी कुटिया में एक साधु अपनी मौज में बैठा हुआ रहा और वो कई कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। मंत्री ने झोपड़ी के अंदर झांका तो कहा, देखा कि साधु अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब साधु की नजर मंत्री की फटी हालत पर पड़ी तो मंत्री से कहा कि आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके 3 प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता हूँ। मंत्री तो एकदम हैरान हो गया और हैरान होकर पूछे लगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूँ और कहाँ है मेरे 3 प्रश्न? साधु ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और मंत्री से कहा, अब आप समझ जाएंगे। मंत्री ने झुककर देखा कि उसके वस्त्र वैसा ही थे जैसा राजा उस मंत्री को भेंट दिया करता था। साधु ने मंत्री से कहा, मैं भी उस राज्य का मंत्री हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। साधु फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबो कर खाए लगा। मंत्री निराश मन से साधु से पूछे लगा, का आप भी राजा के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए थे? साधु ने कहा कि नहीं, मैंने राजा के प्रश्नों के उत्तर भी दिए और आधे राज्य के कागज को वहीं फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा। मंत्री और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, का तुम मेरे प्रश्न के उत्तर दे सकते हो? साधु ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके दो प्रश्नों के उत्तर मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे प्रश्न के उत्तर में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब मंत्री सोचे लगा कि यदि राजा के प्रश्नों के उत्तर ना दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग कर देगा। वो तो कह ही रहा था ना कि अगर 30 दिन में नहीं दिए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो असमंजस में पड़ गया कि का करो का नहीं करो। अब मंत्री ने सोचा, यदि राजा के प्रश्नों के उत्तर ना दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग कर देगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे साधु की शर्त मान ली। साधु ने कहा, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है मौत। इंसान के जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। जो भी आया उसे जाना जरूर है, मौत अटल है। और ये अमीर गरीब राजा साधु किसी को नहीं देखती है, मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है जिंदगी, समझे ना? दूसरे प्रश्न का उत्तर है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे साधु चुप हो गया। मंत्री ने साधु से वचन के अनुसार शर्त पूछी तो साधु ने मंत्री से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। मंत्री असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में गटक गवा। साधु ने उत्तर दिया कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है मजबूरी। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है मजबूरी। मजबूरी इंसान को ना चाहते हुए भी वो काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता है, जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध भी पी गए। मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। मगर अब मंत्री बहुत प्रसन्न था, कहे कि उसके तीनों प्रश्नों के उत्तर उसको मिल गए थे। मंत्री ने साधु को धन्यवाद किया और महल की ओर चल पड़ा। उसके मन के भय के साथ साथ उसकी राज्य पाने की लालसा भी समाप्त हो चुकी थी। महल पहुंचकर उसने राजा के सभी प्रश्नों का सविस्तार उत्तर देकर, हेलो हेलो हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार
1: नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हैं आप?
2: हाँ जी, हाँ जी नमस्कार,
1: कैसे हैं? ठीक है
2: जी, नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।
2: बोल रहा हूँ
1: जी सीताराम भाई जी, कैसे हैं?
2: अभी मैं अगले रविवार को आउटबाउंड गया था
1: जी जी,
2: तो बहुत अच्छे। और आपके समय फिर आपके स्टूडियो में भी आया था
1: जी,
2: तो रोहित भाई से मिला
1: जी जी, रोहित भाई से मिले थे
2: और वो स्टूडियो के पास में रूम में वहाँ बैठे थे रोहित जी और पीछे बैठे थे रमेश भाई।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: और उनको उन्होंने मेरा 10-15 मिनट का कुछ मोबाइल से मेरा ले प्रोग्राम भी कुछ लिया है। मेरी यात्रा हुई और आपकी ये पतिव्रता वाली कहानी है बहुत अच्छी लगी।
1: थैंक यू।
2: तो मुझे एक छोटी बात और भी याद आ रही थी। एक बार एक अप्सरा नाच रही थी, अर्जुन जी उसको घेर घूर के देख रहे थे। तब वो सोचने लगी कि अर्जुन जी मेरे पर खुश है। जब वो उसके पास गई तो अर्जुन जी ने कहा कि भाई बहन जी कैसे आए? अरे तो मेरे को बहन जी क्यों मिला, क्योंकि उस समय तो मुझे इतने घोर से देख रहे थे। अरे कि मैं देख नहीं रहा था, मैं तो भगवान की कला देख रहा था। एक तो आपके अंदर के नृत्य करने की कला भरी है
1: जी,
2: इतना सुंदर शरीर बनाया है
1: जी,
2: तो भगवान ने आपके शरीर में कितनी कलाकारी की है
1: जी,
2: मैं उसको देख रहा था
1: जी।
2: तो आपकी कहानी भी हमें अच्छी लगी, बात याद आ गई थी
1: जी।
2: और भारत वालों की प्रतिष्ठा की है और पतिव्रता वाला
1: जी
2: बहुत अच्छी बात है
1: जी।
2: और वास्तव में ऐसा ही है भारत में
1: जी, इसीलिए भारत महान कहलाता है, विश्व गुरु कहलाता है, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने चरित्र की वजह से। जी
2: ठीक जी, नमस्कार, सुनाते रहो, हम सुन रहे हैं। ठीक, नमस्कार, ओम शांति।
1: ओम शांति। तो देखिए भाई, हम सुना रहे थे कि मंत्री ने साधु को धन्यवाद किया और महल की ओर चल पड़ा। उसके मन के भय के साथ साथ उसकी राज्य पाने की लालसा भी समाप्त हो चुकी रही। महल पहुंचकर उसने राजा के सभी प्रश्नों का सविस्तार उत्तर देकर राजा की शर्त को पूर्ण किया, तथा जब राजा ने उसके आगे आधे राज के कागजात रखे तो उन्हें वो भी उसी साधु की भांति फाड़ कर राजा से बोला, महाराज, अब मुझ में राज्य को पाने की लालसा नहीं रही है, अतः आप अपना राज्य स्वयं ही संभालिए तथा मुझे इस पदभार से मुक्त कर दीजिए। राजा ने मंत्री पर प्रसन्न होकर उसे उसके पदभार से मुक्त कर दिया। ये कहानी से आप क्या समझे? इंसान को जब तक सच्चाई नहीं पता चलती तब तक भटकता है, और जौन दिन सच्चाई पता चल जाती है तो उसके ये दुनिया और दुनिया की चीज वस्तु सभी बेकार लगती। कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का है मौत, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा का है जिंदगी, और इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी का है मजबूरी। मजबूरी इंसान को का नहीं कराती। तो देखिए भाई, इस सत्य कहानी हम आपको सुना दिए, इसे कुछ शिक्षा लेकर अपने जीवन में उतारिएगा, आपका जीवन भी सुखमय होगा। चीज वस्तुओं के प्रति भागना दौड़ना और जीवन के लक्ष्य को नहीं समझना, जैसे कि वो नहीं रेगिस्तान में मृग दौड़ता है, रेत को देखता है तो सोचता पानी है और दौड़ता और दौड़ता और दौड़ता और एकदम गिर पड़ता है। वही तरह इंसान है, और की चाह में दौड़ रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो आया हो को जाना ही है। और इस सच्चाई को जान लें और मजबूरी में कोई काम ना करें, मजबूरी का नहीं करा देती, तो जितना है उसमें संतुष्ट रहें और सुखी जीवन जिए। चलिए यही बात पे गीत सुन लेते हैं, ओके बाद फिर आपसे बताएं।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है, ख्वाहिशों का क्या है, पल पल बदलते हैं। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। कहा जाता है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से

बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। ये बात को लिख के रख लीजिए, 100% सही है कि कोई भी मुसीबत आपको और मजबूत बना के जाती है। लेकिन इंसान छोटी छोटी बातों में घबराए जाता है, और घबराए जाता है तो फिर तो क्या होता है जानते ही हैं आप सब लोग। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही है। वो परमात्मा जीव गॉड जी ने हमें वो लकीर खींच के भेजी है। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। औरों की कमी पर तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अकेले में बैठ के सोचिए कि हमारे जीवन में सही में ईमानदारी से अपना कैलकुलेशन कीजिए। वो का कहते पोस्टमार्टम, अंदर के अंदर पोस्टमार्टम करिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए, दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। नहीं तो हम दूसरों को बताते ना, आपकी ना ये बात हमको अच्छी नहीं लगती है, आपका ना ये काम हमको अच्छा नहीं लगता, ये दूसरे को आईना दिखाइए, खुद अपने आप तो देख लीजिए, हम में तो कोई कमी नहीं है। हमें सदैव ये लगता है कि हमसे अधिक दूसरों का जीवन अच्छा है, किंतु हमें ये भूल जाते हैं कि दूसरों के लिए हम भी दूसरे ही होते हैं। कहा जाता है दुनिया में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, आज इंसान दुनिया में दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन दूसरे के पास हमसे ज़्यादा है, तो वो दुख हमको ज़्यादा सहलता है। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमसे अधिक दूसरों का जीवन अच्छा है, ये सोच के मत ईर्ष्या कीजिए कि तो हम भी तो ये भूल जाते कि दूसरे के लिए भी तो हम दूसरे ही होते हैं ना। संबंध बनाने रखने का आसान तरीका हाथ पकड़े बात नहीं, का समझे? संबंध बनाए रखने का आसान तरीका हाथ पकड़े बात नहीं। बात पकड़ लिए खुपड़िया में, पशु की हर कमजोरी, हर बात, हर अच्छी बात भी बुरी लगेगी, तो ऐसे में तो संबंध नहीं बन सकता। तो बात को मत पकड़िए, हाथ को पकड़िए। बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफ़र जारी रखो, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जिसका अहंकार जितना बड़ा होता है वो उतनी ही छोटी बातों से आहत हो जाता है। अब मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, परंतु मुझे बेहतर ज़िंदगी जीने का एक सूत्र मिल गया है, और वो है बेकार की बातों को नज़रअंदाज करना और आगे बढ़ना है। किसी को दूसरे की नज़र में गिराने से कभी आपका चरित्र सुधर नहीं सकता, बल्कि आप और ही नीचे गिर जाओगे। कहते हैं कि किसी की खुशी के लिए आप किसी से दूर रहते हो तो ये भी आपका उसके प्रति सम्मान ही है। ध्यान रहे कि जरूरत के वक्त अगर सभी लोग बहाने बनाएं तो भी आप अपनी अच्छाई को ना छोड़ें। वो कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, आप तो अपना काम करिए। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाएंगे। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी भी अहंकार मत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभा पंडिताइन अपनी वाणी को विराम देती है। अगले शनिवार 11 बजे फिर मिलने का वादा करके नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। सभ्यता के परिवर्तन के साथ साथ संगीत में भी तब्दीली आती है। ऐसे कहते हैं कि संगीत समाज के सर्व स्तर में विस्तृत है और हर त्योहार या उत्सव में संगीत होता ही है। मनुष्य के जो इमोशंस होते हैं उसको प्रकाशित करने का एकमेव माध्यम है संगीत। कोई भी परिस्थिति में संगीत मनुष्य को साथ देता है। भारत देश में विभिन्न स्थान, प्रदेश, जाति या सभ्यता की पहचान ही है संगीत। जैसे गुजरात के गरबा, तो पंजाब के भांगड़ा इत्यादि इत्यादि। तो आइए, संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं सबको नमस्कार करती हूँ।
0: मैंने पहले भी बताया कि जैसे त्योहार या उत्सव हो उसमें हम गीत संगीत के बिना वो मनाया ही नहीं जाता।
1: हाँ जी,
0: आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: ये तो सही है। ये जो आनंद की जो हमारा जो उत्सव जो होता है, फूर्णा जो होता है, आनंद की फूर्णा हम कह सकते हैं, कैसे सबको
0: पता चले जी।
1: तो संगीत का माध्यम में कोई भी, अगर हम पौधा लगाते हैं तब भी संगीत
0: जी,
1: पतंग भी उड़ाते हैं तब भी संगीत होता है, जब पानी में नैया ले जा रहे हैं तब भी संगीत होता है, लक संगीत को जो है, तो हर जगह में संगीत ही संगीत है
0: जी। और जैसे हमने पहले भी बताया कि भारत में विभिन्न जाति के हिसाब से या सभ्यता के हिसाब से भी संगीत है।
1: हाँ,
0: जैसे कि गरबा, भांगड़ा,
1: साउथ इंडियन जो होते हैं कर्नाटक संगीत, उसमें भी अलग पहचान है, खुशबू है अलग, जहाँ आप जाओगे उधर अलग अलग खुशबू है,
0: मगर संगीत कॉमन,
1: संगीत कॉमन है
0: जी।
1: सारी गामा पाधानी
0: जी,
1: ये सब तक कॉमन है,
0: माना विविधता में संगीत की एकता। आज आप कौन सा राग लेकर आए हैं?
1: आज हम बहुत अच्छा एक राग है केदार
0: जी,
1: बहुत सुंदर राग है। तो आज हम क्या करेंगे, ट्रुथ ख्याल नहीं करेंगे, आज हम विलंबित सिखाएंगे
0: जी।
1: तो आगे बढ़ेंगे ना, कठिनाई में चढ़ेंगे ना, सहज सहजता से इतना दिन चले गए
0: जी,
1: तो अभी कठिनाई में चढ़ेंगे। शायद लिसनर को पता है कि हमने एक ताल के ऊपर 12 मात्रा सिखाए थे, 48 मात्रा। कैसे
0: अच्छा।
1: होता है 12 × 4 = 48 मात्रा। तो अगर याद है तो अच्छा है, नहीं तो फिर से मैं दोहराती हूँ, ठीक है? उताल की पहली सौम है, सौम फाक, उसके बाद दो है फाक, तीन चार, मतलब चार ताली दो खाली है एक तल की, तो चार मात्रा करके, अगर चार एक एक विभाग में चार मात्रा है, ऐसे 12 विभाग है तो चार मात्रा होता है, चार चार करके अगर करते हैं तो 48 मात्रा आ जाते हैं, ठीक है?
0: अच्छा,
1: पहले बताती हूँ। धिन इन ते टे, धिन इन ते टे, धा आ धा धागे, ते रे के टे, थुन ते टे, ना आ ना ना ना, कत ते टे, ता ते टे, धा आ धा धागे, ते रे के टे, धिन न ते टे, धिन न धा धा धा। मतलब एक जो पहले जो ताली है सौम की ताली है, उसके बाद दो मात्रा, फिर फाक, उसके बाद दो मात्रा, फिर दूसरा ताली आती है, फिर दो मात्रा। ये जो दो मात्रा कहती हूँ, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा इंटू फोर, चार मात्रा, मतलब एक विभाग में 8 मात्रा, उसके बाद करते करते लास्ट में फिर धिन का ऊपर सोम गिरता है। तो लिसनर के शायद याद होगा कि हम मुखड़ा जो है चार मात्रा, जो सोम की चार मात्रा पहले से हमको लेना है,
0: ओके,
1: ठीक है? धिन के ऊपर सोम है, मुखड़ा के चार मात्रा पहले, मतलब लास्ट में जो है 12 मात्रा में चार मात्रा जो है धिन न धा धा धा, इससे हमको मुखड़ा लेना है चार मात्रा से। उसके बाद हम पूरा आवर्तन, एक आवर्तन घूम के आएंगे। जैसे हम द्रुत में क्या करते हैं, दो आवर्तन तीन आवर्तन करते हैं, 16 मात्रा, दो लाइन तीन लाइन होता है, मतलब वही बात है, ये एक ही लाइन में 48 मात्रा होता है,
0: ओके
2: ठीक है। तो किधर राग हम सिखाएंगे, पहले तो उसको जानकारी दे देती हूँ क्या उसको चलन है क्या है। अच्छा, ये जो राग है, राग की जो ठाट है कल्याण ठाट है, कल्याण ठाट मतलब कड़ी माँ होता है।
0: ओके,
2: लेकिन इस राग में सा माँ, माँ वाइटल स्वर है, ज्यादा कड़ी माँ से ज्यादा वाइटल स्वर है शुद्ध माँ।
0: ओके,
2: हाँ यूज होता है, दो माँ यूज होता है, शुद्ध माँ कड़ी माँ। तो इसमें और जाति जो है और अब सारब कह सकते हैं, क्योंकि जाने के टाइम पांच मात्रा, आने के टाइम छह मात्रा, मतलब दो स्वर वर्जित है रे और गा, और आने के टाइम और भी ओ गाई वर्जित होता है। लेकिन जब हम करेंगे जाने के टाइम रे वर्जित, कभी कभी रे गा वर्जित होता है, सारब संपूर्ण होता है, सात मात्रा भी, सात स्वर भी होता है।
0: ओके,
2: और वादी स्वर जो है वो शुद्ध मा है, और समवादी जो है सा है। इसका समय जो है रात्रि प्रथम प्रहर है, पहला प्रहर है, अच्छा। छह से नौ, छह से नौ तक होता है, ठीक है,
0: शाम का भी कह सकते हैं।
2: तो इस राग में विशेषता है दो माह होता है यूज होता है, कभी कभी विवादी स्वर हमने कहा है, विवादी स्वर अर्थात मेमन स्वर होता है ना, वो कुमलनी, कभी कभी कोमलनी भी यूज होता है, वो तो बाद में हम दिखाएंगे कैसे कोमलनी यूज होता है। तो और भी कल्याण ठाट हमने बताया शायद कि कल्याण ठाट में जो पास से एकदम सीधा सा लगता है, यमन जो राग था वो पा सा तार सा, जो नीचे पा मध्य सर पा और तार सर जो सा है सीधा यूज होता है। तो हम करके सुनाते हैं, ठीक है
0: जी।
2: लिसनर जो है थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि नया राग है ना, नया रूप है, नया राग है, तो सुनना है। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, इसको आरोहण अवरोहण पकड़ करके सुनाते हैं। ओके,

0: हम क्या किया है, आरोह अवरोह जो पकड़ होता है उसका जो स्वर है हमने दे दिया है। ओके
1: हाँ, अभी क्या करते हैं कि केदार राग की जो हमने बोल रहे थे ना, विलंबित देंगे, उसको स्वर भी देते हैं। ठीक है, चार मात्रा मुकरा है, उसके बाद 48 मात्रा एक आवर्तन होता है, तो हम स्थाई अंतरा की स्वरलिपि दे देते हैं, उसके बाद हम करके सुनाएंगे
2: जी।
1: मा मा गा पा मा पा धापा, ये जो माँ है कड़ी माँ है, साधा सोम की ऊपर साधा, सा सब तार स्वर की है, सा ऊपर सोम है, साधा आ पा धा पा आ मापा धापा, ये मापा धापा जो है माँ है कड़ी माँ है, उसके बाद शुद्ध माँ, उसके बाद मा रे सा आ मा मा ग पा आ सा आ सा आ सा सब तार स्वर की है, सा धा धा पा पा पा आ पा आ मा पा धापा, ये जो मा है कड़ी माँ है, मा पा धापा मा मा शुद्ध मा मा मा मा मा शुद्ध है, मा पा धापा कड़ी मा पा धापा मा शुद्ध मा रे सा सा। जब तक हम नहीं करेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन करके सुनाते हैं, क्योंकि पहले जो मुकरा है मा मा का पा मा पा धापा, ये चार मात्रा एक साथ है।
2: ओके,
1: चार स्वर एक मात्रा में है, कैसे करते हैं ये आपको सुनाते हैं।

मपद पसादा पाथा पा। हम एक आवर्तन घूम के आगे, चार मात्रा मुकरा है, मा मा गा पा मा पा धा पा। फिर से करती हूँ, मा मा गा पा मा पा धा पा सा धा।

0: ये तीन लाइन जो है स्थाई का है।
1: श्यामली जी, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और एक प्यारा सा गीत हम श्रोता मित्रों को सुनाना चाहेंगे, वो सुनने और हम फिर लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने बहुत सुंदर केदाराग से संबंधित गीत का आनंद भी लिया होगा और अभी हम सुनते हैं श्यामली जी आगे हमें केदाराग के बारे में क्या बताते हैं। श्यामली जी पुनः संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। केदाराग के बारे में आप क्या समझाना चाहेंगे?
1: अभी क्या करते हैं, अंतरा के भी स्वल्पि दे देते हैं।
0: ओके,
1: एक साथ चार मात्रा में है, दो दो मात्रा करके, दो दो स्वर एक मात्रा में है, पापा पापा धामा मापा एक साथ है, दो दो दो दो करके, पापा पापा धामा मापा पा आ नी धा सा आ सा सा, ये जो सा है ऊपर की सा है, सा आ रे ए तार स्वर की है, सा आ नी सा सब तार स्वर की है, सा सा आ मा गा, ये मा गा जो है वो तार स्वर की ऊपर की है, मा रे सा सा सब तार स्वर की है, सा आ सा सा मतलब तार स्वर की है, धा आ पा आ सा आ रे ए सब तार स्वर की है, सा नी धा पा मापा धापा, ये माँ पहले जो है मापा धापा गरिमा है, उसके बाद माँ आ
0: ओके
1: करके सुनाते हैं, ये अंतरा है। एक करेंगे उसके बाद फिर पहले से अंतरा तक करेंगे, समझ में आ जाएंगे, ठीक है।

0: म प ध प स द प ध प।
1: हमने स्थाई में तीन लाइन, अंतरम में भी तीन लाइन दिया, मतलब तीन जो है 16-16 तीन लाइन होता है, 48 मात्रा होता है
2: जी।
1: और ये तो पीछे तीन लाइन की ऐसे दिया है, तो हमने पहले स्थाई में तीन लाइन किया है, आवर्तन घूम के आ गया, फिर तीन लाइन है आवर्तन है अंतरा की। अगर लिसनर इसको आ करके करते हैं तो बहुत अच्छा है,
2: मन आकार के साथ
1: करेंगे। थोड़ा सुनाती हूँ।

0: ऐसे आकर करके सुनाएंगे जब कंठस्थ हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में जब हम करेंगे इसको बोल देने की बंदिश बता देंगे तो आसानी से बैठ जाएंगे।
1: ओके ठीक है। श्यामली जी, जाते जाते आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं?
0: हाँ, जाते जाते तो आपको तो सुनाना ही है,
1: है। जी जी,
0: गुड्डी फिल्म का है ये, सब जानते शायद, बोलेंगे तो सब पहचान जाएंगे कि अच्छा ये गीत है। किधर रखी पर हमको मन की शक्ति देना
1: प्रार्थना है।
0: हाँ जी। ये बानी जयराम जी की जो गीत है बहुत अच्छा भी है, ये हम करके सुनाते हैं, गुड्डी फिल्म का है।
1: जी जी।

0: हमको भी शक्ति देना।
1: बहुत सुंदर केदार राखी पर ये जो गीत है बहुत अच्छा है
0: जी,
1: प्यार सॉन्ग भी है
0: और इसमें शिक्षा सावधानी भी कितनी दी है,
1: कितना अच्छा है,
0: बहुत सुंदर।
1: तो राग भी कितना अच्छा है, इसके ऊपर बैठा है जिन्होंने ये रचना किया है, कितना अच्छा इसको निभाया है वाणी जयराम जी, बहुत अच्छा सुंदर भाव से इसको निभाया है।
0: श्यामली जी, समय देता है हमको इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में नए राग नए रूप के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हो संगीत के बारे में, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9494141415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
2: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
3: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
4: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
5: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
6: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: का अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
1: अरे इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
2: आई मासा।
1: अरे चाय मुझे पिलानी है, मेरे साड़ी को नहीं राजकुमारी।
2: हाँ ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
3: अरे बेटा ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
4: दादी मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
5: ए राम।
2: चल शैतान स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
4: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
1: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
6: शांति शांति।
7: अरे शांति क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
8: अरे राजकुमारी।
2: अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
4: नहीं मम्मी थोड़ा और सोना है।
9: 10 मिनट और बस।
2: अरे चलो 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
4: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी 6 ही तो बजे है।
2: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग हिलाकर बाहर मत आ जाना।
4: ये मम्मी की पुरानी ट्रिक है उठाने की, और हम फिर से बन गए इसके शिकार।
10: हे भगवान ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? देखो अपने घर से चोरी करके भाग गया बेटा।
7: अरे हमें तो पता ही है, ये लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ये सब आजकल के चोचले हैं। पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता जाता है, फिर ये सब काम करती हैं।
11: कोई भाभी को बताओ कि बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
12: इनको मैं बताती हूँ।
11: अरे दीदी आप रहने दो, आप फेमिनिज्म का झंडा सुबह सुबह बुलंद मत करो।
12: ऐसे कैसे? रुक जरा भाभी जी, खबर ध्यान से तो सुन लीजिए। बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
7: हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब आप तो किसी लड़की ने ही करवाया होगा। है छोड़ो, हमारे लाडले को स्कूल बस लेने आती होगी, हमको जाना है।
13: अरे भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? कौन भागा सोसाइटी में जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
14: लो जी खबर पूरी पड़ी भी नहीं और आ गए हमारी पड़ोसी माधुरी जी। इनके कानों में कोई एंटीना लगा है क्या जो खबर को सीधा कैच करता है?
0: आप दिन को रात कह देंगे तो चलेगा, आप प्लेन को रेलवे स्टेशन पर उड़ने को कहेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने राठौड़ परिवार की सुबह को शांत कह दिया। सुनिए सुनिए सुनिए अब माधुरी माहेश्वरी जी आगे कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं।
13: भाभी जी आपको तो पता ही है, माधुरी मुंह खोले तो हमेशा मीठा ही बोले, लेकिन ये किसके भागने की बातें हो रही है? पड़ोस वाले शशि की क्या? मुझे तो न उस पर पहले से ही शक था, देखा न कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है।
7: अरे नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, वो बस खबर छपी है।
15: आपको खबर की क्या जरूरत माधुरी जी, आप तो खुद चलता फिरता न्यूज़पेपर है।
13: हैं? क्या जी?
15: नहीं नहीं मतलब आपसे क्या छिप सकता है, आपको तो सब पता रहता है ना।
12: हाँ कभी कभी तो जो नहीं हुआ वो भी।
16: फ्यूचर प्रेडिक्शन, वाह वाह माधुरी जी आप तो टैलेंटेड हो।
0: अब इस फैमिली में किसके कौन से टैलेंट हैं ये तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ टैलेंट सामने नजर आते हैं तो कुछ छिपे हुए होते हैं। वैसे छिपे हुए से याद आया, कोई है घर में जो आज बुरी तरह से फंसने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां, जहां कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।
16: ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ। वाओ ये तो कितना अमेजिंग है, मेरी सिल्वर ड्रेस पर कितना अच्छा लगेगा। ये भी अभी ऑर्डर कर लेती हूँ।
1: ये देखो इस लड़की को, इधर फोन में लगी हुई है। बेटा शांति, तू अब बच्ची नहीं है कि मैं बार बार तुझे समझाती रहूं।
15: अरे छोड़ो ना माँ, क्यों बेचारी को सुबह सुबह डांट रही हो?
1: अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, खांस रहा है, देखो कोई पानी लाओ।
14: ला रही हूँ मासा।
15: अरे कुछ नहीं हुआ बस मुझे।
12: वैसे तो औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, आज भैया की आवाज चली गई।
7: अरे मैंने तो सुबह ही कहा था सीधे हाथ से पानी लेना, हो गया ना सब उल्टा काम।
10: तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ वीरेंद्र को, डॉक्टर को दिखाते हैं चलो।
0: सुना आपने, यहाँ बात बात पर बात बढ़ तो जाती है लेकिन चुप्पी पर कैसे बातें बनती हैं ये देखना होगा। डॉक्टर तो गले का इलाज करेगा लेकिन अब वीरेंद्र सिंह राठौड़ की आवाज गई तो घर में क्या क्या होगा, आइए सुनते हैं।
10: देखो डॉक्टर ने कहा है वीरेंद्र की आवाज को 2-3 दिन लगेंगे ठीक से वापस आने पे, उसको बस दवाई टाइम से देते रहना है, ठीक है ना?
14: जी मैं समय पे खिला दूंगी। ये सुबह की, ये शाम की, इतनी बापरे सारी गोल गोल गोलियां हैं, इसमें तो मैं ही गोल गोल घूम जाऊंगी।
7: कुछ कहा राजकुमारी?
14: नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी।
15: ओ ओ ओ ओ ओ
7: अरे ये कह रहा है ऊपर।
13: अरे नहीं नहीं नहीं ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ ऊपर होगा वही ढूंढ रहा होगा।
3: अरे उसको बैठना है।
14: लेकिन उसे पपीता कहाँ से होता है? अरे कोई और फल चाहिए क्या?
13: पैर में दर्द है क्या?
14: अरे पानी मांग रहे हो, पानी लेकर आओ।
8: अरे पापा से कुछ कहना होगा।
14: अरे पिताजी कहाँ गए?
3: अरे वो मुझे बुला रहा है, क्या बात कर रहे हो? पापा पापा बोल रहा है।
14: पापा गाड़ी को लेटेस्ट गाना तो नहीं गा रहे? पापा पापा पापा वाला।
3: पापा कहते हैं।
14: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है, बताओ।
12: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
13: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी, नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
0: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पांव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनकी आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे ये तो अब भगवान ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
12: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी, अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौर परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बेस्ट राइटर अवार्ड गोज टू मिस सुरेखा।
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन के सभी सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, रेडियो मधुबन पर अभी समय हो रहा है कार्यक्रम सलामे जिंदगी का, और आप जानते हैं कि सलामे जिंदगी के कार्यक्रम में हम आपके पास लेकर आते हैं हमारे समाज के एक सीनियर सिटीजन्स को, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनके जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी यात्रा से हम कौन सी प्रेरणा ले सकते हैं। दोस्तों, समाज में बड़े जो बुजुर्ग हैं वो एक बरगद की तरह हैं, जिनके छांव में परिवार न सिर्फ फलता फूलता है बल्कि शांति, सुख और आनंद का भी अनुभव करता है। उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं हम उन अनुभवों से सीख लेते हैं और अपने जीवन में कई सारी गलतियां करने से बच जाते हैं। उनके मार्गदर्शन से हमारा जीवन की प्रगति जो है आसान हो जाती है। ऐसे ही एक विशेष अतिथि आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद है, जिनका नाम है अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक्स।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं।
1: मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील से हूँ
0: जी,
1: और वर्तमान समय में अयोध्या में ब्रह्मा कुमारीज के जनसंपर्क अधिकारी के रोल में कार्य कर रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, कहना पड़ेगा जय श्री राम।
1: जय श्री राम। ये तो राम की बात, तो राम राज्य के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि पूरे विश्व में राम राज्य हो जाए
0: जी।
1: तो राम के आदर्शों को जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक राम राज्य होना भी असंभव है।
0: हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो पर आप मौजूद हैं। इस यात्रा में हम आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताएं कि कहाँ आपका जन्म हुआ, अपने माता पिता के बारे में, उनसे क्या शिक्षाएं आपने प्राप्त की, तो वो समय कैसा था, ये सब सुनना चाहेंगे।
1: मेरा जन्म जो है 29 अप्रैल 1959 को जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील में हुआ, जहाँ मेरा ननिहाल था। वैसे मैं मूलतः आजमगढ़ जनपद के मेहनगर बाजार का रहने वाला था, लेकिन मेरा ननिहाल होने के कारण मेरे पिताजी जो उस समय पोस्टमास्टर थे और होम्योपैथिक का भी प्रैक्टिस करते थे, और उस समय वो इंटर क्लास पढ़े हुए थे, जो कि उस समय लोग इंटर क्लास को बहुत ज़्यादा मानते थे। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी जो है मेरे आदर्श थे, और पिताजी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हैंडल किए। मैं तो 3 भाई था, लेकिन बड़े भाई के बाद मेरा नंबर था और उससे छोटे मेरे भाई थे। मैं पिताजी के मार्गदर्शन में अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करने में और पिताजी मेरे ज़िंदगी को तराशने में मेरा बहुत सहयोग देते थे। एक बार की बात है, मुझे याद है मैं क्लास 3 में पढ़ता था और पिताजी के साथ ही मैं सोता भी था, तो पिताजी ने मुझे पूछ लिया कि तुम्हारा नाम अखिलेश कुमार है, तुम अपने नाम के अर्थ को जानते हो? तो मैंने कहा, पिताजी मैं तो नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तक नाम के अर्थ में आप नहीं जाओगे तब तक जो है आप जो है उन्नति नहीं पा पाएंगे। तो मैंने कहा कि बताइए। फिर उन्होंने कहा, अखिल लेश जो नाम है उसमें अखिल धन ईश है, अखिल माने संपूर्ण ब्रह्मांड और ईश माने ईश्वर होता है, तो आप सारे संसार के मालिक के बच्चे हो, ये हमेशा याद रखना। ये चीज मेरे मानस पटल पर उसी समय अंकित हो गया और मैं उस चीज को अपने जीवन में गांठ बांध लिया था। धीरे धीरे धीरे मेरा उम्र बढ़ता गया और परिवार के कुछ विषम कारणों से मेरी पढ़ाई जो है यस क्लास से ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि उस समय लोग 6 क्लास से इंग्लिश शुरू करते थे और मेरे पिताजी मुझे 3 क्लास से ही इंग्लिश सिखा दिए थे। मैं 6 क्लास में ट्रांसलेशन करता था और क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ भी जो है मुझे क्या हुआ कि बहुत रिस्पांस मिलता था, क्योंकि मेरे साथ के जो भाई बहन थे क्लास में स्टूडेंट, वो सब इतना नहीं जानते थे, और वहाँ पे उसका जो है फिर धीरे धीरे मुझे अन्य कारणों से, पारिवारिक कारणों से मुझे यर्थ क्लास से ज़्यादा पढ़ने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ और मैं पढ़ाई यर्थ क्लास में छोड़ करके फिर इलेक्ट्रॉनिक कोर्स जो है रेडियो का उस समय चलन था उसका मैंने डिप्लोमा किया। मैं चाहता नहीं था कि डिप्लोमा करूं, लेकिन मेरे पिताजी मुझे ये सिखाना चाहते थे कि तुम जिंदगी में कभी बेकार मत रहो। मेरा मन जो था वो बिजनेस माइंडेड था, मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और काफ़ी मेरा कपड़े की दुकान भी थी। मैं एर्थ क्लास में ही पढ़ते पढ़ते हफ्ते में मैं 2-3 दिन वहाँ से 250 किलोमीटर दूर कानपुर जाकर के माल ले आता था और बहुत मेहनत करता था 6th क्लास से लेकर के जो है, और जब तक उस समय मैं पढ़ाई तो 8 के बाद छोड़ दिया था, लेकिन मेहनत करके अपने परिवार के लिए मुझे ध्यान रहता था। मैं 6 बजे सुबह से रात के 11 बजे तक दुकान पर बैठता था। संघर्ष, जिसको कहते हैं कि बिना संघर्ष के कुछ प्राप्ति नहीं होती है, तो वो चीज़ मैंने शुरू से ही किया। उसके बाद जो है मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक कोर्स करने के बाद जो मुझे बगल में एक जगह है जहाँ फारिक लोग बहुत रहते हैं, सरायमीर जगह है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो रेडियो वेडियो टेप रिकॉर्ड वकार्ड बहुत बड़े बड़े जो है टेप रिकॉर्डर जैसे चलते थे, बड़ा बड़ा जैसे फिल्म के जैसे रील की तरह चलते थे, वो सब मैं उसमें जो है रिपेयर करता था उनके साथ। तो मेरा ये भी सौभाग्य था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था उसमें, क्योंकि पता नहीं कहीं कहीं बीच में मेरे दिमाग में था कि ये कारीगरी लाइन जो है ठीक लाइन नहीं होती, लोगों को धोखा देने वाला लाइन होता है, तो मैं मन से नहीं करता लेकिन करता था। उसके बाद जो है मैं अपने कपड़े के दुकान पर ही बैठा रहा, फिर मेरी शादी हुई 1983 में।
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ देते हुए उनकी आज्ञा अनुसार आपने प्रगति की। माताजी से क्या सीखा आपने?
1: माताजी मेरी बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी मेरी माताजी, लेकिन माँ और पिता ये समझ लीजिए नेक्स्ट गॉड के रूप में माना जाता है
0: जी।
1: तो उनका जो वरदान था उन्होंने मुझे, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बचपन में ही रहता था कि माता पिता की सेवा संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप भगवान को न पूजिए लेकिन माता पिता की अगर आप पूजा करेंगे या उनके इच्छा को पूरा करेंगे तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। इस चीज को मैंने अपने जीवन में गांठ बांधा था और उसी से एक बात किसी बुजुर्ग ने मुझे कहा था कि बच्चे जब तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा जरूर करेंगे। तो ये बात को मैं अनुभव भी किया बहुत।
0: माता पिता की सहाय से जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्कूल जाना होता है, स्कूल में शिक्षक होते हैं, उस समय की पढ़ाई किस प्रकार से होती थी?
1: ये बात तो बहुत, आपने कहने की बात यह है कि पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था, गुरु और शिष्य का जो है क्वालिटी बहुत अच्छी थी।
0: ओके।
1: मैंने देखा है कि जब हम लोग 5वीं क्लास या 4थी क्लास में जब पढ़ते थे तो जरा से भी गलती होते थे तो हम लोग लकड़ी के पट्टी पर लिखते थे। उस समय, वो समय तो अब नहीं है, हम लोग जब कोई दंड देना होता था तो हमारे प्रधान अध्यापक जो मुंशी जी हम लोग का थे तो हम लोग को मुर्गा बनवाते थे और पीठे पीछ में पीछे 10-15 पटरी रखते थे।
0: ओके।
1: और 1-2 घंटा चाहे हम रोते रहें चाहे जो करें मैं, हम लोग को उसी तरीके रखना पड़ता था। और बहुत समझ लीजिए कि वो चीजें जो हमने शुरू में कष्ट सहा है अंदर जो शिक्षा के रूप में वो पनप गया है,
0: क्षमता बढ़ गई है।
1: क्षमता हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई।
0: अभी भी आप देखते होंगे आपके जैसे बच्चों के बच्चे हैं, बच्चों को भी आपने पढ़ाया होगा, तो वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है और उस समय की शिक्षा व्यवस्था है, उस दोनों में क्या तुलना करेंगे आप?
1: शिक्षा तो कहने को तो बहुत आगे हो गया है, लेकिन शिक्षा का जो मूल स्वरूप है, जो उनके अंदर आदर्श आनी चाहिए, वो नहीं आ रहा आज के समय में।
0: कल भौतिक
1: जी प्रोफेशनल हो गया है ये शिक्षा।
0: ओके।
1: शिक्षा वो नहीं है। और एक तरीके
0: क्या,
1: से
0: क्या मिसिंग लगता है
1: जी?
0: क्या मिसिंग लगता है?
1: आजकल हमको लग रहा है कि बच्चे लोग घबरा जा रहे हैं, बहुत ज्यादा शिक्षा के नाम पे इतना उनको थोपा जा रहा है कहीं कहीं बच्चे डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। पहले ये बात नहीं थी, पहले विषय कम थे, लेकिन उनके जो है कार्य शिक्षा का जो स्वरूप था वो जीवन में बहुत जल्दी धारण होता था, आज वो बात नहीं है। किताबों में लिखा है लेकिन जीवन में नहीं आ पा रहा।
0: क्या बदलाव करना चाहिए उसमें?
1: बदलाव ऐसा क्या है कि देखिए, सबसे पहले बात तो है दुनिया का संस्कार सबसे बड़ी चीज है। जब माता पिता अगर संस्कारित होंगे तो अपने बच्चों को भी वो बना सकते हैं, नहीं तो कहीं नहीं। तो पहला माता पिता ही गुरु होते हैं बच्चे का और उन्हीं से वो सीखते हैं। तो हम तो सबसे अच्छा यही समझते हैं कि सब जितने भी माता पिता हैं वो इस बात को समझे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें एक दूसरे भी करेंगे।
0: तो आदर्श पहले हमारे माता पिता के अंदर ही पड़ेगा।
1: जैसे मेरा सोचना है कि मैं खुद उठूं सुबह 8 बजे और अपने बच्चों से कहूं कि आप 5 बजे भोर में उठ जाइए। बच्चे जो है देखते हैं माता पिता को। आज के समाज में जो यही है कि प्रैक्टिकल जीवन लोग देखते हैं तब धारण कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: और आगे जो मेरी जीवन जो गाथा और आगे है वो आप सुनेंगे, उसमें बताएंगे
0: जी,
1: हम
0: जी,
1: आपको
0: जी, जी, जी।
1: कि कैसे हम आगे बढ़ते चले।
0: शिक्षकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब वर्तमान समय के जो शिक्षक है उनको कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: शिक्षक आज का डर रहा है। पहले बच्चों को अगर कोई दंड दिया जाता था तो माता पिता कहते थे गुरुजी बहुत आपने अच्छा किया। अगर आज किसी बच्चे को दंड दे दें तो शायद माता पिता FIR कर देंगे।
0: मेरे बच्चे को
1: कौन है मेरे बच्चे को बोलने वाले, चाहे पढ़े चाहे न पढ़े, आप कौन जिम्मेदार हैं?
0: तो क्या कहीं ना कहीं इसमें मोह का स्थान है, क्यों ऐसा हो रहा है?
1: नहीं, मोह का बात नहीं है। हाँ, अटैचमेंट तो कुछ है ही है। वो सोचते हैं कि मेरा लड़का चाहे जो करे, कोई दूसरा ना बोले, मुझे बोलना होगा तो बोल। लेकिन दुनिया में भी ये है, माता पिता और शिक्षक तीन ही तो हैं। अगर माता पिता फेल हो रहे हैं कहीं तो शिक्षा उनकी जिंदगी को संवार दे रहा है, शिक्षक संवार दे रहा है। तो आप शिक्षक को आदेश ही नहीं देंगे कि आप हमारे बच्चों को सुधारिए, उनको क्या गर्ज है? पहले क्या था कि शिक्षक को देख लेते थे हम लोग रास्ते में, उनका अभिवादन करते थे, चरण स्पर्श करते थे। आज की बात क्या है, शिक्षक को तो एज ए मजाक बना लिए हैं।
0: वो भय खत्म हो गया है और रेस्पेक्ट भी खत्म हो गया है,
1: इस समय का देन है।
0: चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जैसे दोस्त होते हैं, क्योंकि माता पिता और शिक्षक और उसके बाद होते हैं हमारे दोस्त, क्योंकि ये एक सर्कल है जहाँ पर हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा उसका बेस पड़ता है। कि दोस्त आपको याद आते हैं कि जो
1: जरूर जरूर, हम देखिए क्या है, हर आदमी के अंदर हर आदमी का एक दोस्त होता है। और दोस्त की परिभाषा जो होती है, जब मत मिलता है तो दोस्ती होती है। जिसके लिए कहा गया है शराबी को शराबी दोस्त बन जाता है, जुआरी को जुआरी बन जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति रहता तो आध्यात्मिक वैसा वो खोज भी लेता है।
0: आपके दोस्त कैसे थे?
1: हमारे दोस्त ऐसे हैं कि हमारे दोस्त तो 6th क्लास में 4-5 थे जो हमारे सहपाठी थे के समय में, कोई SP है कोई IAS है, तो ऐसे थे।
0: उनको याद करना चाहेंगे उनके नाम से?
1: संजोग की बात है कि वो कहाँ है, नहीं है। पहले बात आज, पहले तो भाई वो मोबाइल वाइल नहीं था, आज के तो समय में सबको अपना दोस्त का नंबर वंबर सब 6th क्लास 1 से बच्चे रख रहे हैं, चला गया सब समय वो नहीं है। लेकिन ये कि मुझे याद रहा चेहरा उनका, वो कितना अच्छा मेरा भाई था, दोस्त था। हम लोग कितना आजादी से रहते थे पहले की
0: जी।
1: सब चीजें चेंज हो गई हैं
0: जी। बहुत अच्छी आपकी यात्रा से हम कुछ सीख रहे हैं, चाहे उस समय के बारे में, शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके अपब्रिंगिंग कहें, पालना कहें, उसके बारे में और भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम सलामी जिंदगी। हमारे साथ बने हुए हैं अखिलेश जी। आप अयोध्या से आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे हैं और फिर मुलाकात होगी। आप सुनिए एक छोटा सा गीत, फिर लौट कर आते हैं। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी के सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका। अगली कड़ी में हमारे साथ बने हुए अखिलेश जी। अखिलेश जी, बचपन से थोड़ा आगे चलते हैं, युवा काल आ जाता है, युवा काल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं ये विचार भी आ जाता है कि अब हमें क्या करना है। आपने 8वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद की यात्रा बताइए।
2: 8वीं पढ़ाई के साथ साथ मैं घर में आर्थिक अभाव के कारण अपने पिताजी का साथ देता रहा बिजनेस में
1: जी।
2: और क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है उनके अनुकूल नहीं थे और पिताजी मेरे पर भरोसा रख सकते थे
1: जी।
2: ये बेटा मेरा काम देगा, मेरे साथ देगा, और मैंने उनके भरोसे को तोड़ा भी नहीं, उनका साथ भी दिया, और आज उनके आशीर्वाद से मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ।
1: पिताजी के साथ बिजनेस करते हुए आपकी यात्रा आगे बढ़ी।
2: बिजनेस
1: कब तक किया आपने?
2: पहले मैंने कपड़े का बिजनेस किया, वो सन 1973 से 1985 तक
1: जी।
2: 85 के बाद मैं जनरल स्टोर का दुकान खोला और मेरे साथ ये वहाँ पे लेवल लग गया कि जो पूरे मार्केट में कहीं सामान नहीं मिलेगा इनके यहाँ मिलेगा, मतलब नाम मेरा जी, नाम जी। उसके बाद जो है मैं 85 के बाद फिर जो है चेंज किया बिजनेस अपना।
1: अच्छा, क्या बिजनेस किया फिर?
2: मार्केट में मैं लेडीज जो आइटम का जनक माना जाता हूँ, वहाँ पे मैंने महिलाओं की बहुत स्टडी किया। वहाँ परिवेश जो था वो ग्रामीण था, मार्केट का था, तो बहनें वहाँ निकलती नहीं थी मार्केट में। आज किस तरह नहीं है कि परचेजिंग करती हैं। मैंने वो टेक अपनाया वहाँ के। उस समय तो लोग साड़ी भी लेना होता था, 10-5 साड़ी ले जाते थे, घर पे दिखाते थे, तब पसंद कराते थे। आज के समय में तो पैसा दे देते हैं घर वाले, जाओ अपना परचेजिंग कर लो। तो मैंने कहा कि मैं दिखाने के लिए सामान नहीं दूंगा, आइए यहीं पर ले जाइए। मेरा मतलब ये था कि अगर वो एक सामान लेना होगा तो महिलाओं की जो क्रय शक्ति है बहुत अच्छी होती है, परचेजिंग पावर महिलाओं के अंदर है, जेंट्स नहीं खरीदता, ये मैंने अनुभव किया है ये
1: जी।
2: तो मेरा मकसद यही था कि वो आएंगी तो जितना अपने पति जी से छुपा के पैसा वैसा रखी होंगी वो सब खरीदेंगी तो मेरा सेल बढ़ जाएगा,
1: और 4 चीजें खरीदेंगी,
2: एक के बदले में 5 ले जाएंगी। ऐसा सोच के मैंने कहा कि मैं दिखाने के लिए नहीं दूंगा, आपको आकर के ही लेना है। और उसमें मैं कामयाब भी रहा। मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बहनों के लिए आता है प्यूमिक स्टोन, जो पत्थर का जमावटी होता है, वो सफाई करते हैं शरीर का अपना।
1: okay.
2: तो उस समय वो 36 रुपए दर्जन आता था, एक पीस 3 रुपए का मिलता था, मेरा देखिए मैंने 30 रुपए का एक पीस बेचा उसको। मैं बिजनेस सफल बिजनेसमैन माना जाता था वहाँ पे, और आज भी जो है बिजनेस तो मैं नहीं करता लेकिन लोग मुझे फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा कि ये बहुत कामयाब थे यहाँ के,
1: इन्होंने कैसे किया, हम भी ऐसा करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बिजनेस के लिए हमें एक दूरदर्शी होने की आवश्यकता है और एक उसके लिए वातावरण भी क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई आता है हमारे स्टोर पर तो उसके लिए उसके सुइटेबल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जो हम और भी उनको ऑफर कर सकें कि और भी वो खरीदारी करें।
2: मैंने स्लोगन एक कहीं पढ़ा था, जहाँ न जाए रेलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। बिजनेस के लिए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती है वहाँ मारवाड़ी पहुँच जाते हैं। और भी मैंने, क्योंकि मेरा बिजनेसमैनों से बड़ा संपर्क था, वाराणसी में आज भी जालान हैंड सन्स है, उनके मालिक से मेरा बहुत अच्छा संपर्क, मुझे बहुत मानते थे कपड़े के बिजनेस में।
1: तो बनारस से आप सामान खरीद?
2: बनारस से भी बहुत मेरा माल आता था, कानपुर से भी आता था, बॉम्बे से भी आता था। उन्होंने कहा एक स्लोगन मुझे कहा, असफलता ये सिद्ध करती है कि कार्य ठीक ढंग से नहीं किया गया। श्रोतागण ये नोट कर लें, ये चीज बहुत काम की चीज है कि असफलता ये सिद्ध करती है कि काम ठीक ढंग से नहीं किया गया।
1: कई बार हम लोग दूसरों को दोष देते हैं, अपने को दोष दे देते हैं, लेकिन ये एक मंत्र हम अगर मन में ठान लें कहीं ना कहीं ये सफलता पाने के लिए हमारी एक अच्छी सीढ़ी साबित हो सकती है।
2: और भी मैं स्लोगन बहुत जगह, मेरा नेचर सीखने की नेचर है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा कुछ न कुछ सीखता रहूंगा, ये मैंने अपने अंदर बांधा हुआ है, गांठ के रखा। और जगह मैंने देखा, एक जगह लिखा था या सुना था मैंने कि यात्रा रेल की अच्छी होती है, यात्रा रेल की अच्छी होती है सब्जी सरसों की तेल की अच्छी होती है और दुकानदारी मेल की अच्छी होती है। फर्नीचर आप चाहे जितना अच्छा लगा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास मेल नहीं है तो सेल नहीं होगा। ये सब चीजें मैंने जीवन में रखा अपने
1: जी,
2: और एक एक चीज को, एक भी कस्टमर मेरा लौटता नहीं था। मैं ऐसे मैनेज करता था कि कस्टमर जब तक खड़ा रहे उसके पास आ जाएगा सामान, ऐसा सेटिंग मैंने था। सेल्समैन थे, बहुत एक्सपर्ट रखते थे। कार्य करने का ढंग होता है तो सफलता मिलती है ना।
1: बहुत अच्छी बात है। हमारे दोस्त, मैं समझता हूँ कि जब ये आपकी बातों को सुन रहे होंगे तो जरूर कुछ नोट्स भी ले रहे होंगे, क्योंकि ये एक एक वाक्य जो है उनके जीवन को पलटने वाला है। जैसे आपने, आपको हम आज देख रहे हैं कि 67 आपकी एज है, लेकिन कहीं से भी आप, वो उम्र का प्रभाव आप पर नहीं दिखता है, चाहे वो मानसिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो, आध्यात्मिक रूप में हो। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है रेडियो मधुबन पर अखिलेश जी, अयोध्या से आए हुए हैं, और अयोध्या नगरी के जो वाइब्रेशन है वो भी हम उनसे महसूस कर रहे हैं कि कैसे एक आध्यात्मिक विचार, भारतीय मूल्यों के प्रति उनका समर्पण भाव और सर्व के प्रति एक कल्याण की भावना उनकी बातों में समाई हुई है। एक निस्वार्थ भाव से वो अपनी अनुभवों को हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अखिलेश जी, जैसे शादी के पड़ाव पे जाना हुआ, उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन समय हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लें। दोस्तों, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। प्लॉट कराते हैं इस गीत के बाद।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर रेडियो मधुबन। दोस्तों, सलामी जिंदगी के इस कार्यक्रम में तीसरे पड़ाव में हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश जी रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर, और आइए आगे बढ़ते हैं। उनकी जीवन की यात्रा के बारे में जान रहे थे, तो अखिलेश जी जानना चाहेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। आपका विवाह किससे हुआ और क्या आप दोनों का समन्वय रहा, तालमेल रहा परिवार को आगे बढ़ाने में?
3: मैं जब 25 साल का हुआ या 24 साल का था
2: जी,
3: क्योंकि मेरी शादी जो हुई 17 नवंबर 1983 को हुई और मेरा 29 अप्रैल को डेट ऑफ बर्थ है, तो शादी भी मेरी जिनसे हुई उनके पिताजी बहुत परेशान थे। आपको बता दूं, मैं 8 तक पढ़ा हूं, लेकिन मेरी जो धर्म पत्नी जी हैं वो ग्रेजुएशन 1980 में की हैं। सोचने की बात है कि जो लड़की ग्रेजुएशन की है और उसकी शादी किसी 8वीं पास लड़के से हो तो क्या होगा। लेकिन जोड़ा तो भगवान के यहाँ से बन के आता है, दुनिया मानती है और हम भी। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी लड़की के माता पिता पूरा संसार खोज डालते हैं और उनके बगल में ही उनका जोड़ा रहता है, ये हमने देखा भी है। हम इतने लकीस्ट हैं, भाग्यशाली हैं कि जो हमारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी जी हैं वो सेम मेरे समकक्ष विचार की हैं।
2: अरे वाह, क्या नाम है उनका?
3: उनका नाम है उषा जी। वो मिर्जापुर जनपद की उत्तर प्रदेश में विंध्याचल के बगल में एक शक्तिपीठ है, मिर्जापुर की रहने वाली हैं और हम लोग गोल्ड में स्वर्णकार हैं। उनके पिताजी बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे सोने के जेवर बनाने के, और उन्होंने बहुत परख करके मेरी शादी किया था। मैं 2-3 मिनट का उसका वाकया बताऊंगा कि मेरी शादी कैसे हो। बृहस्पतिवार के दिन मेरे शाहगंज मार्केट में दुकान बंद रहती है और मेरे पिताजी अपना अकाउंट का कार्य कर रहे थे और मैं दुकान पर उनके साथ बैठ करके बैठा था कि कोई कस्टमर आएगा तो मैं बेचूंगा। भाई उसमें मुझे तो मेहनत करके पैसा कमाने का धुन चढ़ा था। ससुर जी जो आए बृहस्पतिवार को, उषा जी के फूफा जी के साथ आए थे। फूफा जी बहुत परेशान थे, कई जगह तलाशते तलाशते थक गए थे। तो उन्होंने कहा चलिए हम एक लड़का दिखाते हैं आपको। पैसा वैसा तो उनके पास नहीं है लेकिन लड़का जो है बहुत मेहनती है, ये शब्द उन्होंने बोला था। वो समझ लीजिए बहुत आगे जा सकता है, हमने परखा उसको। तो वो लेके आए, हमारे ससुर जी ने कहा कि भाई साड़ी दिखाओ मुझे। मैंने कम से कम 200-300 साड़ियाँ दिखाई, नहीं पसंद आया उनको। टालते जा रहे थे, मेरी सहन शक्ति को परख रहे थे, कहें कि बाबू, मैंने कहा बाबू जी कैसा चाहिए आपको? तो कहें कुछ मुझे आइडिया बताइए, मैं और दिखाऊँ। मेरे पास कम से कम 500-600 साड़ियाँ थी और अकेले था मैं उस दिन, स्टाफ नहीं था कोई। तो सारा मैंने दिखाया तो उन्होंने अंत में यही कहा कि बेटा मुझे साड़ी तो लेना नहीं था लेकिन मैं 5 साड़ी तुम्हारी मेहनत से प्रभावित होकर के ले रहा हूँ। उन्होंने लिया और इसी सब दरमियान जो है ऐसा है, मेरे पिताजी कहें कि जाओ जलपान अलपान ले आओ, तो मेरी छठी इंद्रियां समझ गए कि ये मेरी शादी के लिए आए। तो मैंने कहा ठीक है चलो
2: जी।
3: अच्छा, मेरी शादी और कहीं तय हो रही थी तो पिताजी जाने वाले थे लड़की देखने। वो इनके फूफा जी मेरे पिताजी को भी फूफा जी कहते थे।
2: अच्छा।
3: तो फूफा जी आप ऐसा कि ये लड़की भी देख लीजिए और जो आप देखने वाले वो भी देख लीजिएगा, तो जो आपको पसंद आएगा वो करिएगा, मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। मेरे पिताजी गए, मेरी माताजी से बात किए, कहें चलिए देख लें। जब मेरे पिताजी और मेरी माताजी मेरे ससुर जी के साथ ही उसी दिन चले गए देखने, लेकिन ये नहीं समझ पाई, मिर्जापुर चले गए, ये समझ नहीं पाई। जब पहुंचे तो समझ नहीं पाई क्योंकि इनके बगल में विंध्याचल है, देवी का स्थान है, कोई घूमने उमने दर्शन करने आई होंगी। बहुत मैं गर्व के साथ कहता हूँ उषा जी भोजन बनाने में बहुत महारत हासिल है उनको
2: जी। जी
3: भोजन वो 600-600 लोगों का बनाती थी।
2: 600?
3: हाँ, बना सकती हैं, अभी भी बनाती हैं।
2: ओके।
3: अयोध्या की जो सेंटर पर भी बनाती हैं वो, तो वो बहुत उनके अंदर एक गुण था पाक कला का, तो वो मेरी माता जी को बना के खिलाई। तो मेरी माता जी कह रही मेरे सर में दर्द है, तो वो तेल लेकर के उनका मालिश भी कर दी। अब मेरी माता जी कहीं मुझे कहीं देखना नहीं है, मुझे इसी लड़की से शादी करना है, और शादी मेरा हो गया। मुझको बहुत ज़्यादा जेवर ओवर भी मिला मेरे ससुर जी से, जो लगता उनके लिए मिला, मुझे पहनना नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी कह रहे थे मैं पैसा नहीं खर्च करूँ, मैं जेवर नहीं दे पाऊंगा आपको, अगर जो देना तो अपनी लड़की दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे शादी हो गई और जीवन हमारा बहुत ही सुंदर।
2: जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं साथ ही, दोनों पहिए पति और पत्नी अगर एक साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन की गाड़ी बहुत ही स्मूथ रहती है, बहुत आनंद में रहती है।
3: ऐसे भी सुना गया है
2: जी
3: कि अगर किसी गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर का लग जाए और एक स्कूटी का लग, तो गाड़ी कैसे चले, इसलिए दोनों पहिया समान रहना चाहिए।
2: ये भाव जो आपका एक रेस्पेक्ट और प्रेम का भाव है अपनी धर्मपत्नी के लिए, वो भी बहुत सलाम करने लायक है। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि पारिवारिक जीवन में कौन से ऐसे मूल्य हैं, जीवन मूल्य जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में आजकल कई तालमेल बिठाने का जो एक समस्या है वो देखते रहते हैं।
3: परिवार में सबसे बड़ी बात होती है अगर एकता रहेगी तभी वो परिवार सुंदर बनेगा
2: जी,
3: और उसके लिए सबसे बड़ा गुण होना चाहिए हर सदस्य में, कोई कुछ कहता है तो उनको सुनने का मादा रहना चाहिए उनके अंदर। मेरे जैसे दो बच्चे लड़के थे और एक लड़की भी थी, मैं ये कहूँगा कि मैंने बच्चों को नहीं पाला है लेकिन उषा जी ने बहुत अच्छा उनको संस्कार दिया।
2: संस्कार,
3: और सारे बच्ची और बच्चे, मेरी बेटी भी शादी हो गई 40 साल की इस समय है, वो भी योगा टीचर है, योग धारा प्रवाह जो है एक ऑनलाइन कोर्स कराती है लोगों को BHU से, और मेरे बेटे भी मॉस कम्युनिकेशन किए हैं।
2: बेटे का नाम क्या है?
3: बेटे का नाम सौरभ है और बेटी का नाम शर्मिष्ठा है। छोटे बेटे इसमें संसार में नहीं है, उसका नाम जो है गौरव था, वो है नहीं, 20 साल की उम्र में उसने शरीर छोड़ दिया था। बेटे और बेटी दोनों मेरे जीवन में बहुत हमारे साथ सहयोग में थे, और अपने इसमें जहाँ भी हैं वो लोग बहुत कामयाब हैं, आगे हैं।
2: बहुत अच्छी बात है। तो वैल्यूज के बारे में जैसे आपने बताया, ऐसे ही जैसे बच्चों को पालने के लिए आप जो वर्तमान हमारे श्रोता सुन रहे हैं जिनके छोटे बच्चे होंगे या बड़े बच्चे होंगे, तो किस चीज को हमको धारण करना चाहिए और सक्सेस कैसे मिलेगा बच्चों को अच्छा बनाने के लिए?
3: सबसे पहले अगर बच्चे से चाहते हैं कि वो हमारा बात माने, और जो चीज हम चाहते हैं कि वो हमारा माने, तो सबसे पहले अपने जीवन में लाना जरूरी है,
2: स्वयं के जीवन
3: जी।
2: कोई ऐसा अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप अपने जीवन से?
3: हमारे जीवन में
2: कोई ऐसा समय आया हो जब बच्चों के लिए कुछ आपको लगा हो कि चाहिए कैसे करना है, फिर आपने अनुभव किया हो कि नहीं बच्चों ने देखो उस बात को माना, समझा, आगे बढ़ा, जीवन में धारण किया?
3: मैं तो आश्रम में ब्रह्मा कुमारीज का सदस्य 34 वर्ष से हूँ, लेकिन ये कोरोना काल के पहले जो मेरी शॉप थी वो किराए पे थी, तो बेटे देख रहे थे क्योंकि मैं निर्बंधन होकर के आश्रम की सेवा करता हूँ अयोध्या में, और उषा जी भी करती हैं। बच्चों ने कहा कि पापा मुझे दुकान लेनी है ये, तो मैंने कहा कौन सी, जो जिसमें हमारी शॉप थी। तो उस समय मैं कोरोना के एक दो साल 2017 में दुकान को मैं 21 लाख में तय हुआ, उसने तय किया। मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन परमात्मा मेरे साथ था, इसलिए जो मैं अनुभव हुआ मुझे एक दिन में हमारा बैंक ने जो है लोन पास बिना कमीशन के एक दिन में, हम और उषा जी गए, मैनेजर उठकर खड़ा हो गया, कहिए बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं आपको
2: जी।
3: जो हम ड्रेस में थे अपने बाबा के, और इस आत्मिक स्मृति में उसको पहले हमने कहा कि बाबा ये आपका बच्चा है और मेरी मदद के लिए आपने इसको यहाँ पर भेजा है। उसने कहा कि अब मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और मेरा लोन सैंक्शन, कहे कि आपको एक हफ्ते में पैसा मिल जाएगा
2: जी,
3: और मिला भी। उसके बाद 21 लाख में तय किया था, पार्टी जो थी मेरा दोस्त था वो जो इसको 15 लाख दिया, 6 लाख बाकी था। मैंने कहा कि 2-1 साल समय दे दो, कहे कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम करिए, अब दीजिएगा मुझको, और उसने दिया भी। फिर बनवाने की बात थी तो मुझे बनवाने के लिए बाबा का सहयोग मिला, और मैंने उनको कहा कि देखो बन रहा है, ये एक कहावत है ना, बाढ़े पूत पिता के धर्म में, अगर माता पिता धर्म काम करेंगे तो बच्चों को भी तकलीफ नहीं हो सकती है, कभी नहीं तकलीफ होगी, ये हमने अनुभव किया। तो हम लोग जो है ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे दूर दूर तक रिश्तेदार भी सुखी हैं। हमारा परिवार तो छोड़ दीजिए, रिश्तेदार भी सुखी हैं। और आज के कंडीशन में वो रिश्तेदार लोग कहते हैं कि हमारे घर में 5 मिनट के लिए आ जाइए, हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं।
2: एक बहुत ही आदर्शवादी दृष्टिकोण आपने अपने जीवन के रखा और इसके कारण आपके जीवन में अपने आप से अच्छे गुणों का समावेश हुआ, अच्छे कर्मों का समावेश हुआ, बहुत लोगों को आपसे सुख मिल रहा है और उसकी दुआएं जो हैं आपको और भी प्रेरित करके आगे बढ़ाती रहती हैं, ये हमें अनुभव हो रहा है। आगे फिर आपके वर्तमान जीवन के बारे में बात करेंगे। समय हो रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लें, हमारे श्रोताओं को एक गीत सुनने दें और फिर लौट कर आएँ। और जब लौट कर आएंगे तो जानेंगे कि आपका जो वर्तमान जीवन है, एक 67 ईयर का उम्र और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता होगा, बहुत सारे लोगों का आप ध्यान रखते हैं, तो जिस उम्र में आपका ध्यान रखने के लिए लोग चाहिए होते हैं उस समय आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, तो ये कमाल आप कैसे कर रहे हैं ये जानेंगे। तो दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं?
2: इतना तो हम कर सकते हैं।
3: दोस्तों हम फिर लौट कर आ गए हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी में और आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद हैं अयोध्या से पधारे हुए अखिलेश जी। अखिलेश जी के जीवन के अलग अलग पड़ावों के बारे में बात किया हमने, उनका बचपन, युवा काल और वैवाहिक जीवन और बच्चों के पालने का समय, सब चीज़ों को हमने सीखा, समझा, सुना। अब चलते हैं आगे। अखिलेश जी, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं अभी रेडियो मधुबन, वो अलग अलग उम्रों में होंगे अपने जीवन के। हर एक का समय आना है जब वो एक सीनियर सिटीजन का रूप लेगा, बुजुर्ग हो जाएगा, और उससे पहले क्या ऐसी तैयारी करें जो उनका जीवन भी आपकी तरह ही श्रेष्ठ रहे, चाहे वो उनके शारीरिक रूप से जैसे आप स्वस्थ हैं और मन से तंदुरुस्त हैं, वो तो सब हमारे स्रोत आपको सुन ही रहे हैं। जीवन भी आदर्शवादी है और उस आदर्श पे आप अन्य लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जो अभी आपसे कम उम्र के लोग हैं, उनको बुजुर्ग होने से पहले कैसा अपना जीवन रखना चाहिए?
4: देखिए, इस समय वर्तमान में जो है जीवन में दुख का मेरे समझ में एक ही कारण है, हमारी जीवन शैली खराब हो चुकी है, लाइफ स्टाइल। जीवन शैली खराब होने से ही दुख है। अब थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको
3: जी।
4: देखिए, हमें जब सोना चाहिए तब हम जागते हैं और जब जागना चाहिए उस समय तक हम सोए रहते हैं।

0: जो नहीं खाना चाहिए वो जानबूझकर हम खाते हैं, जो खाना चाहिए वो हमारे लिए महंगा होता है, जो देखना चाहिए वो हम नहीं देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो हम छुप छुप के देखते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को परेशानियों में डाल दिया है, दुखी बना दिया है। और जब से मुझे बाबा मिले हैं 1991 15 मई से, मेरे जीवन में उजाला आ गया, मुझे जीवन जीने की कला मिल गई और मैं उसी जीवन जीने की कला को अपने जीवन में ला करके आज आपके सामने 67 साल की उम्र में भी एकदम लोगों को प्रेरणा देने के काबिल मैं हूँ। बाबा के ज्ञान को अप्लाई करके लाइफ में और लोगों को देता हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे सिखाया है कि बच्चे तुम्हें देवता बनना है, सिर्फ देना है, दैवी मूल्यों को, गुणों को देना है उनको, जो भगवान के खजाने हैं। मैं उनका बच्चा हूँ तो इसलिए मेरा भी अधिकार है, मैं भी वही बिजनेस करूँगा, वही दूंगा, जैसे मेरा पिता बाबा ज्ञान का सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरे जीवन से ज्ञान लोगों को मिले, मेरे जबान से न मिले, मेरे जीवन को देख करके उनको प्रेरणा हो कि मुझे भी ऐसा जीवन जीना है। मेरा बाबा प्यार का सागर है, मुझे प्यार देना है, ये नहीं देखना है कि ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये क्या है क्या नहीं है, सब मेरे आत्मिक भाई हैं। मैं तो मेडिटेशन करने का एक भी तरीका ये भी अपनाया हूँ, मैं सड़क पर जब चलता हूँ, बाबा मुझे आपने बेपनाह सुख दिया है, शांति दिया है, दौलत दिया है। मेरे भाई लोग जो कमजोर हैं, जिनको नहीं है, उनको मेरे हिस्से में से दीजिएगा आप। मैं इस तरीके से राह चलते भी योग करता हूँ और हमेशा रहता है कि मैं किसके काम आ जाऊँ, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ये मैं दिन भर सोचता हूँ। और जहाँ तक होता है मैं सहयोग की भावना रखता हूँ, सहयोग के द्वारा ही मुझे बाबा ने सिखाया है बच्चे दुआएं देना है, दुआएं लेना है, थीम लेकर के मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ और बढ़ाता रहूँगा। मुझे विश्वास है कि बाबा मुझे अपने नैनों पे रख करके मेरी इच्छा अनुसार सब कार्य करते हैं और करेंगे, मुझे अपने साथ ले चलेंगे।
1: जी बिल्कुल, कहा भी जाता है कि जो देता है वो देवता है, और इसी भाव को आपने अपने ध्येय वाक्य बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, देने का ही भाव रखते हैं, और जो देता है उसके लिए भगवान भी उसको देने के लिए हर चीज़ मुहैया भी करवाता है, चाहे वो शक्ति है, सामर्थ्य है, साधन है। इसी प्रकार से आप अनेकों की सेवा कर रहे हैं, ये मैंने भी अपने स्वचक्षियों से देखा है कि किस प्रकार से राम जन्मभूमि में राम जी के दर्शन करने के लिए जब पधारते हैं तो आप उनको गाइड करना, स्वागत करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनके पधारने से लेकर जाने तक हर सुविधाओं का ध्यान रखना, और इसके माध्यम से बहुत सारी दुआएं आप कमाते जा रहे हैं, ये भी मैंने देखा है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए क्या ध्यान?
0: हाँ, ये बता रहे हैं, देखिए जो मैं दुआएं कमाता हूँ ना, उससे अभी हाल की बात है, मैं अपने जोनल ऑफिस जा रहा था मोटरसाइकिल से और हल्की बरसात हुई, एक भाई जो चला रहा था वो स्लिप कर गया, मुझे अनुभव हुआ कि बाबा मुझे अपने गोद में ले लिया है, मैंने अनुभव किया वो
1: जी,
0: कहीं मुझे दर्द नहीं हुआ। मेरा कपड़ा गंदा हो गया था, एक दिन पहले मैंने कपड़ा बदला था, वो कपड़ा पहन करके फिर गया मैं बनारस तक, सोचिए पहले जौनपुर से जाना था, 70 किलोमीटर था, मैंने कहा कि नहीं अब निकला हूँ तो चलूंगा। बल्कि हमारी जोनल निशा सुरेंद्र दीदी पूछी कि कैसे आना होगा, मैंने कहा दीदी ड्रामा मुझे ले आया यहाँ पे आज। वो फिर जब मैं वहां से लौट के अयोध्या आया तो रास्ते में कहीं दर्द नहीं, अयोध्या में जब सेंटर पे पहुंचा, अपने कमरे में गया तो कुछ दर्द हुआ, मैंने कहा बाबा आप तो बैद्यनाथ हो ना, अपने बच्चे का दर्द कैसे देख रहे हो आप। उस समय मुझे टच हुआ कि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके वहां सिकाई कर दो अपने हाथ से, कपड़ा लेकर के रुमाल से, और उसके बाद दूध में हल्दी डाल के पी लो। और एक तेल था मेरे पास जो है, एक फिनिश नाम का तेल था, उसको लगा के सो जाओ, सुबह तुम ठीक हो जाओगे एकदम। मैं सुबह उठा एकदम कहीं कुछ नहीं लगा, मेरे दाहिने हाथ में खून जम गया था, मुझे दिखाई नहीं दिया था, दो तीन दिन बाद लगा मुझे यहाँ काला हुआ है। धीरे मैंने कहा बाबा ये क्या हो गया, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे तुम जब गिरे थे ना वैसे घूम गए थे तो खून वहाँ पे रुक गया था, चिंता की बात नहीं, वो सब सही हो जाएगा। देखिए बाबा मुझसे जैसे बात करते हैं ऐसे, तो मैंने कहा ठीक है बाबा सही हो गया अपना। ऐसे मेरे अनेक कारण हैं, मेरे छोटे बेटे का मर्डर हुआ था 2008 में, 20 साल का था, और मुझे एक आंसू नहीं गिरा था। मुझे उस समय याद था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होगा। और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये कहाँ मरती है। तो याद रहा एक भी मुझे आंसू नहीं आया था।
1: जब भारत में भगवान ने जो सनातन का ज्ञान दिया हुआ है, इसमें आत्मा का जो रहस्य बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया कि देह को हम धारण करते हैं और फिर समय पर त्याग करके चले जाते हैं। दोस्तों, कई चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हो चुकी है, जो लौट कर वापस नहीं ठीक हो सकती है, तो वहाँ पर यह आध्यात्मिक ज्ञान बहुत काम आता है। तो जैसे आपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बताया, ये मन को भी ठीक रहना बहुत आजकल महत्वपूर्ण है। आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ाव है और वहाँ पर आप सेवाएं दे रहे हैं 67 साल की उम्र में भी, और आपकी बातों से हमारे श्रोता तो बहुत कुछ देख पा रहे होंगे आपका जीवन। आध्यात्मिकता का क्या महत्व है, और जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं वो कैसे इस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में आपकी तरह अपना सकते हैं?
0: देखिए, हमारा ये मानना नहीं बल्कि दुनिया का मानना है कि जहाँ सारी शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं वही आध्यात्मिकता की शक्ति काम करती है। और ब्रह्मा कुमारी इसका जो 21 विंग है उसका मूल उद्देश्य यही है कि अपने कार्य व्यवहार में आध्यात्मिकता की शक्ति को लेकर के कामयाब बने जितने भी वहाँ पर हैं। इसीलिए यहाँ पे हेडक्वार्टर में उसका प्रोग्राम होता रहता है और लोग उसका लाभ लेते हैं, और बहुत लोगों ने अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है, बहुत ऊंचाई पर गए हैं।
1: जी, आप आध्यात्मिकता को कैसे व्यवहार में लाते हैं अपने जीवन में?
0: हमारे यहाँ जो है क्या है कि सुबह देखिए ऐसा है कि हमारी जो सिस्टम है, हम भोजन बहुत पहले करते हैं क्योंकि शरीर के लिए सोने के 2-3 घंटा पहले जो है हमें भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि पचता है, टाइम लगता है। और दुनिया का एक परेशानी का कारण ये भी है कि भारत में सारे फंक्शन रात में होते हैं, सारे फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिश बनते हैं, वो खा करके लोग परेशान होते हैं, पछता है नहीं और दूसरे दिन नुकसान करता है। तो हमारा तो मानना यही है कि नाश्ता करो राजा की तरह, दोपहर का भोजन मिडिल क्लास करो और रात का भोजन कंजूस की तरह करो, तब आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। हमें याद रखना चाहिए कि हम जीने के लिए खा रहे हैं, न कि खाने के लिए जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे याद रहता है, मैं अपना जो है कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखता हूँ और मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे मैंने 2 महीना पहले चाय छोड़ दिया, क्योंकि बाबा मेरे अंदर दृढ़ संकल्प का पावर जगाए हैं, तो उससे मैं बहुत जो है कामयाब हो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि आज नहीं पिया तो दोस्त पी रहे हैं तो वहाँ पी लिया, ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल, एक एग्जाम्पल, रोल मॉडल मुझे खाना है लोगों को, क्योंकि दुनिया आज जो है ज्ञान नहीं सुनना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है आपके अंदर क्या है। बाबा ने मुझे कहा है ना कि तुम अपने चलन और चेहरे से दुनिया को बदल करके दिखाओ।
1: आपका सुबह कितने बजे शुरू होता?
0: मेरा सुबह 2:30 बजे उठता है।
1: 2:30 बजे उठ
0: जी, 4 घंटा के अंदर नींद पूरा हो जाता है मेरा। सबसे पहले मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करता हूँ। हाँ, एक बात और कह रहा हूँ, देखिए मल्टीमीडिया मोबाइल का लोग यूज करते हैं, मेरा सुझाव है कि शाम को वो कम से कम 7 बजे के बाद मोबाइल न छुएं तो अच्छा है। मोबाइल बहुत बड़ा कारण है, इसकी जद में बहुत लोग हैं, ज्ञान में भी हैं अज्ञान में भी हैं। मुझे लगता है कि आवश्यक चीज़ ही इसका उपयोग करें तब, और कम से कम, क्योंकि इसकी मोबाइल की माया बहुत बड़ी खराब हो गई है, ये जो माया पकड़ ली है अच्छे अच्छे लोगों को। तो मेरा सुझाव यही है कि मोबाइल कम से कम यूज करें तो अच्छा है, आवश्यकता के अनुसार, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जा रहा है। आजकल छोटे बच्चे तो मोबाइल की बीमारी ऐसा हो गया कि उनका अंग ही काम नहीं कर रहा है,
1: भोजन भी नहीं करते मोबाइल के बिना।
0: हाँ, मोबाइल जो है वो देखो ऐसा भी है कि आने वाले समय में, मैं तो उसका एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ टेलीपैथी का, हम एक दो दोस्त हैं वो कर रहे हैं, तो 20% आ गए उस पर, जैसे सोचते हैं तो उनको
1: विचार मिल जाएगा।
0: हाँ, वो यही काम करेगा, क्योंकि नेटवर्किंग जब फेल होगा तो ये टेलीपैथी काम करेगा, और इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में सोलार काम करेगा, क्योंकि सब फेल होना ही है, बाबा ने कहा है और कि परमात्मा ने कहा है वो पूरा हुआ है, हो रहा है। 81 में कि परमात्मा ने कहा था, बच्चे एक दिन तुम्हारा राष्ट्रपति भवन घर बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, वो हमने अपने

श्रोताओं के सामने आपने प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ कि ये श्रोता जो सुन रहे हैं उन्हें भी और मैं जो सुन रहा हूँ मुझे भी बहुत सारी चीज़ें एक मार्गदर्शन के रूप में, जीवन दर्शन के रूप में मुझे प्राप्त हुई हैं। और दोस्त भी हमारे जो सुन रहे हैं वो भी इसे कहीं ना कहीं नोट करेंगे, अपने मन में करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे जो आज की बातचीत से उन्होंने समझा। और उसके द्वारा अपने शारीरिक, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के जीवन को, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अखिलेश जी को, आज अयोध्या भूमि से हमारे पास पहुँचे हुए थे और हम उनका धन्यवाद करते हैं और विदा लेते हैं रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी से। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: यहाँ।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार सभी सुनने वालों को, और आज फिर से एक नए गेस्ट के साथ, एक युवा चेहरे के साथ हमारे साथ हैं वैष्णवी। आपका फेवरेट प्रोग्राम है जुनून, फिर से एक जुनूनी हमारे साथ। जुनून क्यों होना चाहिए, ये जुनून वैष्णवी को कहां से आया, आइए सुनते हैं वैष्णवी की कहानी। और आप हमें सुन रहे हैं 107.8 FM पे माउंट आबू की वादियों में, और हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आप हमें लाइव सुन सकते हैं। हमारे साथ वैष्णवी जी हैं, और वैष्णवी जी जयपुर से आती हैं, एक यंग ग्रेजुएट हैं, परंतु इनके अंदर एक जुनून है, और वो जुनून कहाँ से आया आइए उनसे जानते हैं। वेलकम वैष्णवी जी हमारे प्रोग्राम जुनून में।
3: नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं रेडियो मधुबन और शरद सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने दो शब्द रखने के लिए, और मुझे बताने के लिए कि मुझ में जुनून कहाँ से आया। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, और मेरे में ये जुनून आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मैंने अपने पापा से ये जुनून लिया है, कि माय फादर रविशंकर धाबाई, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि आपको ये सोशल एक्टिविस्ट या सोशल सर्विस में जाना चाहिए, आपको सोसाइटी के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, कोई भी ऐसी चीज़ करें जिससे कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो या सोसाइटी का बेटरमेंट हो, जिससे कि सोसाइटी एक साथ यूनाइटेड होके आगे बढ़ सके। तो मैं रेडियो मधुबन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। जी सर, शरद सर।
2: जी जी जी जी, जुनून तो आपके अंदर आ गया, और आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको मोटिवेट किया इसके लिए। निश्चित रूप से हमारे आसपास और परिवार में ही कोई ऐसा होता है जिसको देखकर हम आगे प्रेरणा लेते हैं, और आपने वो प्रेरणा अपने फादर से ली।
3: जी तो
2: सर। वो जुनून आपके फैमिली से आपको मिला है, परंतु हम ये जानना चाहेंगे कि वो जुनून क्या है और आप क्या कर रहे हैं।
3: सर, जुनून मेरा यही काम है कि मुझे एनवायरनमेंट में अपना एक रोल निभाना है। जैसे मैंने काफ़ी ट्री प्लांटेशन करे हैं, और मैंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनमें मैं मोटिवेट करती हूँ कि हमें क्यों ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ऐसे ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो कि जिससे कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो इसी सोच के साथ मैं थोड़ा एनवायरनमेंट में अपना भागीदारी निभा रही हूँ। जी सर।
2: जी, एनवायरनमेंट को लेकर आप जो क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियां बनी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप हमारे जयपुर की ग्रेटा थंबर्ग हैं, राइट?
3: जी सर।
2: तो मैं वैष्णवी से पूछना चाहूंगा कि आप शहर में क्या देख रहे हैं अभी, जयपुर में क्या बदलाव आपने देखा है, और जयपुर के एनवायरनमेंट को लेकर कौन से ट्रीज हैं जो आपको लगते हैं कि सूटेबल हैं?
3: सर, काफी ऐसे ट्रीज हैं जैसे कि हमें नीम के पेड़ लगाने चाहिए हैं, और मैंगो के ट्रीज हो गए, या टीक वुड हो गया, या फिर अशोका के पेड़ हो गए। काफ़ी सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि हमें मदद करते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट की, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो।
2: जी,
3: ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिससे कि हमारा अभी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो उतना ही हमें टेम्परेचर कम मिलेगा, और गर्मी जो अभी जितना 50 डिग्री तक जाता है वो कम रहेगा। तो ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं।
2: जी। निश्चित रूप से, आप जयपुर में आपका जन्म हुआ है, तो आपने जयपुर को देखा है बदलते हुए, तो जयपुर का जो वेजिटेशन है या जयपुर की हरियाली है, उसमें आपको कुछ लगा कि क्या, कैसे राजधानी शेप ले रही है अभी?
3: जी सर, इम्प्रूव हो रहा है कहीं ना कहीं, बहुत हद तक इम्प्रूव हो रहा है, और बाकी और भी ऐसे चीज़ें अभी करनी है जिससे कि और इम्प्रूव हो, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है।
2: जी
3: जी जी सर।
2: तो मेन बात ये है कि जुनून कहाँ से आता है, ऐसा क्या हो जाता है कि हम कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, मैं वो मानसिक प्रक्रिया को समझना चाह रहा हूँ कि वो आपकी क्या समझ बनी है, कि आपको ऐसी कभी फीलिंग नहीं आती कि मेरा समय क्यों वेस्ट कर रही हूँ, भाई मैं कुछ इस समय में कुछ बिजनेस कर लूँ मैं, है ना, ऐसा? तो वो जुनून एकदम से कहाँ से आ जाता है, वो मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, वो केमिकल लोचा जैसे कहते हैं दिमाग में, तो वो क्या है?
3: ये सर बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये लोचा कहाँ से आया है। तो सर ऐसा ये बात है कि अभी हम जैसे एनवायरनमेंट का यही नहीं है कि हम रिसोर्सेज ही यूज करे जाए पढ़ाई करी जिसमें मैंने डिप्लोमा करा, तो उसमें मैंने यही पढ़ा कि आप रिसोर्सेज तो यूज ले रहे हैं सोसाइटी की, तो आप वापस क्या दे रहे हैं उसको, आप जैसे एनवायरनमेंट को वापस क्या दे रहे हैं। यही नहीं कि आप रिसोर्सेज यूज करे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप वापस भी दें। यही नहीं कि आप यूज़ ही करे जाएँ, उसका एक्सप्लॉइट ही करे जाएँ और वापस कुछ ना दें, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे हमें भी ऐसा नहीं है कि हमें भी आगे जाके अच्छा ही फ्यूचर मिलेगा, हम ही अभी प्लांटेशन करेंगे तो आगे जाके अच्छा ही हमारे लिए भी अच्छा ही होगा, सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। तो एक यही मेरा पार्ट है कि भाई हमें वापस भी देना चाहिए।
2: निश्चित रूप से हमें वापस देना चाहिए, अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हमें वापस देना चाहिए, तभी बैलेंस हो पाएगा। और आप तो बिजनेस पढ़ के आए हैं तो बैलेंस शीट में बैलेंस होना जरूरी है, राइट?
3: जी,
2: तो
3: सर।
2: मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप ये काम कैसे करते हैं, मतलब क्या आपको चैलेंजेस आते हैं और क्या आप तक कर चुके हैं, अभी आपके क्या लक्ष्य आप पूरे कर चुके हैं और क्या भविष्य में सोचते हैं?
3: जी सर, मेरा यही है कि अभी जैसे मैंने अभी मेरे आसपास के एरिया में प्लांटेशन करा है, कम्युनिटी पार्क्स हो गए, इनमें हो गए, तो मैंने उधर जाके प्लांटेशन करा है। बाकी मेरा यही फ्यूचर गोल है कि मुझे बड़े वास्ट एरिया में प्लांटेशन करना है और एनवायरनमेंट के प्रति वर्क करना है। और अभी कम एरिया है तो मेरा यही गोल है कि आगे और आगे हद तक आगे जाके कई और एरियाज में बढ़ूँ मैं, आगे जाके और आगे काम करूं। और चैलेंजेस, चैलेंजेस यही है कि ट्रीज को अभी उनके केयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आगे जाके जैसे कोई कई जगह देखभाल नहीं कर पाते हैं। जी सर।
2: हाँ हाँ, नहीं आप आराम से रखें अपनी बात। जी देखिए, चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से, आपको पेड़ों को पौधों को पाने में भी चैलेंजेस आता होगा, बड़ी संख्या में पेड़ों और पौधों को लगाने के लिए आपको एक टीम चाहिए होती है, तो वो टीम को मोबिलाइज करना भी एक चैलेंज है। तो इन सारे विषयों पे आप आराम से अपनी बात रख सकते हैं। जी जी वैष्णव।
3: सर जैसे आपने अभी पॉइंट रखा कि पेड़ों को पानी की बहुत जरूरत होती है, तो यही एक चीज है कि जैसे अभी हमने प्लांटेशन कर दिया तो आगे जाके इतनी केयर नहीं कर पाते हैं, सब जगह जाना इम्पॉसिबल है। तो ज्यादा से ज्यादा यही है कि अभी टीम बड़ी करके और फिर उनको डेप्यूट करना कि भाई आप इधर की देखभाल करें, आप इधर की देखभाल ये करें, ऐसे करके। सर मेरा ये पॉइंट है। जी,
2: आप शहर के अपने निवास के आसपास के जो गार्डन्स हैं उनको आप मैनेज कर रहे हैं, राइट?
3: जी।
2: तो पब्लिक गार्डन जो आपके घर के आसपास हैं, तो चूंकि आप विद्याधर नगर में रहते हैं और एक वो इलाका काफ़ी ऑर्गेनाइज वेल डेवलप्ड इलाका है और काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, पब्लिक गार्डन्स की सहेज रखना, उनकी हरियाली को मेंटेन रखना भी एक अपने आप में एक मिशन है, राइट?
3: जी,
2: आपकी टीम में अभी कितने युवा हैं आपके साथ?
3: सर अभी इतना वास्ट ग्रुप नहीं है, करीबन 10-11 पीपल है जो कि अपने अपने एरिया में कर रहे हैं, कोशिश प्रयास कर रहे हैं।
2: जी सर, आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है इसके लिए या आप सोशल मीडिया पे कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ?
3: व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सर, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के थ्रू भी कर लेते हैं।
2: जी
3: ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं।
2: जी, तो सोशल मीडिया का आप उपयोग कर रहे हैं इसके लिए।
3: जी सर।
2: क्या लक्ष्य है आपके भविष्य में?
3: सर लक्ष्य यही है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए आगे की जनरेशन के लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि हम इजीली रह सके और एक अच्छा डेवलपमेंट हो सके। अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, अगर हमारे पास एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो हमारा माइंड स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें हम हमारे आसपास के जो भी एरिया है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें अपने आसपास के एरिया में, जिससे कि हमारा एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके और हम सब एक साथ मिलके हमारे एनवायरनमेंट को, एक जहाँ भी हम रह रहे हैं उसको एक अच्छा और सुखद जीवन बना सके। जी सर,
2: नहीं बिल्कुल, आपको एक मिशन अगर आपने चुना है तो उस मिशन के ऊपर आपको एक लंबी यात्रा करनी है जी. तो आपके क्या लक्ष्य हैं भविष्य को लेकर और अपनी पढ़ाई के बीच में कैसे संतुलन करते हैं इसको लेकर?
3: जी सर, करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, पढ़ाई भी अपनी जगह है और ये चीज भी अपनी अपनी जगह है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही अपनी जगह अपनी अपना रोल प्ले करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो सर जैसे मैं ऐसे डेज बना रखे हैं कि भाई सैटरडे संडे इधर ही काम करना है, या जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये करूँ चीज. जी सर.
2: तो अपने पापा को भी साथ लेके जाते हैं, अपनी फैमिली को भी लेके जाते हैं साथ में?
3: जी सर. यस सर.
2: बहुत बढ़िया. और हम तो युवाओं से बात करते रहते हैं और युवाओं से मैं जब बात करता हूँ तो मैं युवाओं को कहता हूँ कि 5 घंटे अपना स्वयं अध्ययन और 5 घंटे की स्टडीज और 5 घंटे का सोशल वर्क अगर कोई युवा करता है तो उस युवा को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. ये मेरी फिलॉसफी है जिसको लेकर मैं युवाओं के साथ बात करता हूँ कि आप 5 घंटे वॉलंटियरिज्म और 5 घंटे अपनी स्टडीज के बीच में अगर आप बैलेंस बनाएंगे अपनी लाइफ में तो आप निश्चित रूप से आप बहुत कुछ कर पाएंगे. क्या ये बात सही है? आप इससे सहमत हैं?
3: सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ. आपने बहुत ही अच्छी बात रखी कि 5 घंटे अपनी पढ़ाई और 5 घंटे आप सोसाइटी को दे, बहुत ही जरूरी चीज है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से. आपने जो बोला बिल्कुल, हमें आज युवा ही आगे देश को आगे बढ़ा सकता है, तो बहुत ही युवा एक अहम रोल प्ले करते हैं. वो सभी से गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी किसी भी नहीं सोशल सर्विस, यही नहीं कि भाई आप पेड़ ही लगाएं, और भी काफी सारे ऐसे हेल्थ सेक्टर में हो गया या एजुकेशन सेक्टर में हो गया. सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से. आपने जो रखा कि 5 घंटे आप पढ़ाई में दें या एजुकेशन में दें और 5 घंटे आप सोशल सर्विस में दें, ये 5-5 रूल बहुत ही सही आपने बात रखी. मैं आपसे सहमत करती हूँ और मैं सभी युवाओं से ये विनती करती हूँ कि भाई आप अपने सोसाइटी के प्रति भी कुछ रोल निभाएं, ये बहुत ही जरूरी चीज है. और मेरा यही कहना है कि भाई किसी भी जिसमें भी आपको लगता है कि पैशन है, जिसमें भी आपको लगता है कि मैं एनवायरनमेंट के प्रति कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या फिर एजुकेशन में कुछ कर सकती हूँ या स्किल्स दे सकती हूँ जो कि अनप्रिविलेज्ड है उनको मैं स्किल्स प्रोवाइड कराऊंगी या कराऊंगा, तो आप वो कराएं या फिर हेल्थ में कुछ उनको फैसिलिटीज दें. तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सबसे कि आप जो भी बनता हो सोशल सर्विस में आप वो जरूर करें, जिससे कि अपना सोसाइटी का ही अपलिफ्टमेंट होगा, उन्हीं का ही डेवलपमेंट होगा. जी सर.
2: निश्चित रूप से हमको 360 डिग्री डोमेन में काम करने की जरूरत है और 360 डिग्री में हमारा एनवायरनमेंट भी है, हमारी सोसाइटी भी है, हमारा स्किल भी है, हमारा कैरियर भी है और हमारी फैमिली भी है. तो इन 360 डिग्री पे ही के सभी आयामों पे हमें काम करने की जरूरत है, तभी हम एक सशक्त देश बना पाएंगे और हमारे युवाओं का अपना खुद का भी जीवन बेहतर कर पाएंगे. और आजकल 360 डिग्री का ही मूल्यांकन है. आप कॉर्पोरेट में जब आप जाएंगे तो HR मैनेजर जो है वो आपकी बॉस की रिपोर्टिंग से अलग हटके आजकल 360 डिग्री अप्रेजल का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आपके क्लाइंट आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, आपके जो दोस्त हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इसके साथ साथ आपके नीचे का स्टाफ और आपके कलीग्स क्या आपके बारे में सोचते हैं. उस 360 डिग्री पर अप्रेजल जब होता है तभी उस एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है. तो ये एक बदलता हुआ दौर है, तो इस दौर की सभी चुनौतियों को देखते हुए हम लोग भी साथ में काम कर रहे हैं. तो वैष्णवी हम ये जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज ने आपको या आपके जहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ भी क्या आपको इस बारे में कुछ सपोर्ट या मोटिवेशन मिल रहा था या वहाँ पर किस तरह का माहौल रहा?
3: जी सर मिल रहा था, जैसे हमने अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा तो उसमें काफ़ी हमें सपोर्ट मिला. जैसे हमें कॉलेज में भी मोटिवेट करते थे कि भाई आप अपना कुछ भी भागीदारी निभाएं सोसाइटी के प्रति, कुछ भी जैसे छोटे मोटे पेड़ हो गए हमसे लगवाया करते थे कॉलेज में, हमसे प्लांटेशन उधर भी करवाई गई है. तो ऐसा नहीं है, कॉलेज भी एक मोटिवेटिंग पार्ट था हमारे लिए और उन्होंने भी काफ़ी हमें हद तक मोटिवेट करा कि आप कुछ भी स्किल्स और दूसरे जो भी अनप्रिविलेज्ड हैं उनको स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ रोल बताएं कि स्किल्स कितनी ज़रूरी है आज के समय में. तो ऐसा नहीं है, कॉलेज ने भी बहुत हद तक हमें मोटिवेट करा और उनका एक पार्ट रहा है, इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है इस चीज में
2: जी सर। कोई नई लर्निंग आपको इन दिनों में एनवायरनमेंट को लेके कोई समझ बनी है? आप क्लाइमेट चेंज के बारे में आप क्या जान रहे हैं, आपका क्या मानना है उसके बारे में?
3: जी सर, काफी हद तक चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है, काफी हद तक लोगों में जागरूकता आ रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने चाहिए। काफी हद तक चेंजेस आ रहे हैं, जयपुर में भी काफी हद तक प्लांटेशन हो रहे हैं अलग अलग जगह, काफी लोगों में मानसिकता में चेंजेस आ रहे हैं।
2: क्लाइमेट चेंज के बारे में आप क्या समझते हैं?
3: क्लाइमेट चेंज ये है कि भाई जो भी हम ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको हम, जो कि हमारी ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रही हैं, तो हम उसको कम करें और जिससे कि हमारा ही फ्यूचर अच्छा होगा।
2: जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे दोस्तों के साथ बात करता हूँ कि एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री से नीचे ना लेके जाए, और जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा, मेरे फ्रेंड्स को देखा, वो एसी भी ऑन कर लेते हैं 18 डिग्री टेम्परेचर कर लेते हैं और ऊपर से ब्लैंकेट भी यूज कर लेते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जब आप ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं तो फिर आप एसी को ठंडा क्यों करने की जरूरत क्या है, आप एसी को 24-25 तक रख सकते हैं अगर आपको ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं तो। और फिर ये भी है कि अगर आप 29 डिग्री पे एसी सेट कर लेते हैं और आप फैन यूज करते हैं एसी के साथ में, तो फैन जो है वो एसी, फैन और एसी का कॉम्बिनेशन जो है, फैन एसी के टेम्परेचर को और लोअर ले आता है, रूम के टेम्परेचर को और लोअर ले आता है, मतलब कि 5 डिग्री का और आपका लोअर हो जाएगा। अगर आपने 25 डिग्री पे अगर आपका एसी है तो आपको 20 डिग्री का फील कराएगा अगर साथ में आप फैन का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमें यूथ के साथ ले जाने की जरूरत है या उनसे इस बारे में बात करने की जरूरत है, या हमारी फैमिली गॉसिप में भी हम किसी की इधर उधर की लैग पुलिंग करने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि हम इस तरह के साइंटिफिक फैक्ट्स पे बात करें कि हम अपनी लाइफ को और हमारी ऊर्जा जो है हमारे देश की उसको हम कैसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। खैर, तो आप ये बताएं कि जो पौधों को जुटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे, बहुत मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग हो गया आजकल। मैंने पिछले दिनों जुलाई अगस्त के महीने में पौधों को सोर्स करने की नर्सरीज में ट्राई किया, पता लगा कि लगभग सारे पौधे जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि मतलब प्लांटेशन बड़ी संख्या में हो रहा है और सर नर्सरीज में उतने पौधे नहीं बन पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कुछ युवाओं को आगे आके कुछ नई नर्सरीज डेवलप करनी चाहिए जहाँ से हम रीजनेबल रेट्स पे बड़ी संख्या में पौधे हर साल जो हमें जरूरत पड़ती है प्लांटेशन के लिए वो हम कर सके?
3: जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने जैसे बोला ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पौधों को सोर्स करना, तो बेसिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप नर्सरी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, वहाँ पे पौधे पाए जाए, मिलते नहीं हैं, रीजनेबल रेट पे नहीं मिलते हैं, और हम नर्सरी में जाएं तो हमें पौधे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपने जैसे कहा कि नर्सरी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए और उसमें पौधे मिलें, सबसे मेन तो यही है कि जिससे कि ट्री प्लांटेशन में आगे जुट सके हम।
2: जी
3: सर,
2: आप टेक सेवी हैं और इस बार तो राजस्थान सरकार ने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया हरियाणा राजस्थान का, और उस टैग पे पेड़ों को जियो टैगिंग करके ही प्लांटेशन करना है। तो क्या आपका क्या अनुभव रहा उस एप्लीकेशन के साथ में, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत लगती है आपको या उसमें लगता है कि हाँ नहीं ठीक है वो उपयोगी है एप्लीकेशन युवाओं के हिसाब से?
3: सर मेरे हिसाब से तो सही लगा मुझे, मैंने एक दो पेड़ों के करे हैं जियो टैगिंग, तो मुझे काफी हद तक सही लगा। एक दो बार फोटो अपलोड होने में दिक्कत आई थी थोड़ी, बाकी तो जहाँ तक मैंने यूज करा तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं आई।
2: तो ये एक ऑथेंटिक तरीका है ना?
3: जी सर, ऑथेंटिक है काफी हद तक, अगर सही रूप में करा जाए तो ऑथेंटिक है।
2: आप एक राष्ट्रीय युवा अवार्डी है, कैसा अनुभव रहा आपका, किस साल आपको ये पुरस्कार दिया गया?
3: नहीं सर, आई एम नॉट इन नेशनल यूथ अवार्डी, आई अप्लाइड फॉर इट।
2: अरे यू अप्लाइड फॉर इट, ओके,
3: बट
2: नहीं, अच्छा ओके, यू अप्लाइड फॉर इट बट यू आर ट्राइंग फॉर इट, राइट? बढ़िया बढ़िया, आप लगातार आप ऐसे ही प्रयास करते रहे। आपकी आगे की भविष्य की क्या योजना है?
3: सर योजना यही है कि मैं अपने एनवायरमेंट को कुछ दे पाऊँ या सोसाइटी को कुछ वापस दे पाऊँ, मेरा मोटिव यही रहेगा।

0: और कुछ मतलब मैं सोसाइटी के प्रति कुछ अपना भागीदारी निभा पाऊँ, यही है सर मेरा मोटिव अभी का।
1: वंडरफुल। तो वैष्णवी जी आप ऐसे ही काम करते रहें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप हरियाणा राजस्थान एप्लीकेशन को देखिएगा, इसमें हम और क्या बदलाव कर सकते हैं वो उन बदलावों की के लिए सर सरकार को भी सजेस्ट करिएगा और हम तक भी पहुंचाइएगा। और रेडियो मधुबन के साथ आप जुड़े रहिए, आपको शुभकामनाएं।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके मार्गदर्शन में मैं ये काम करती रहूंगी, आपका मार्गदर्शन बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू वैष्णवी आप जुड़ने के लिए। और श्रोताओं जो हमसे देर से जुड़े, मैं जाने कि हमारे साथ आज थी वैष्णवी धवाई जो जयपुर से आती हैं और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और प्लांटेशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर सजग युवा हैं और अपना अपनी भूमिका को लेकर जागरूक हैं और लगातार प्लांटेशन कर रही हैं। ऐसे ही आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारा फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM रेडियो मधुबन। नमस्कार, मैं RJ शरद।

0: मधुबन रेडियो के इस कार्यक्रम जुनून में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट शरद। आज हम लोग एक नई शख्सियत, नए जुनूनी के साथ फिर से आए हैं। आज हमारे साथ हैं एक युवा चेहरे जयदीप पांचाल। जयदीप अपने गांव और अपने शहर में क्या कर रहे हैं और इनका क्या जुनून है, आइए जयदीप से जानते हैं। जयदीप, आपको की जीवन की यात्रा में आपने सामुदायिक सेवा को चुना या आपने कुछ इनोवेटिव चीजें की और उसके फलस्वरूप आपको राजस्थान सरकार ने 2025 का यूथ आइकन पुरस्कार भी दिया। लेकिन जुनून कार्यक्रम में हम लोग आपके जीवन और आपके जुनून के कारण को समझने का ज्यादा प्रयास करते हैं। पुरस्कार तो सरकारों की तरफ से आते जाते रहते हैं, है ना। तो जयदीप, हम ये जानना चाहेंगे कि आप की यात्रा क्या है, पहले तो अपने बचपन के बारे में बताएं, फिर हम आपसे जानेंगे कि अब आप क्या करते हैं। जी जयदीप।
1: सर, मेरा नाम जयदीप पांचाल है और मैं अलवर जिले के राजगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव पूर्णला का रहने वाला हूँ। बेसिकली मेरा जो शुरुआत की जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो जो ग्रामीण स्तर पे राजकीय महाविद्यालय से हुई है। सर, हमारे जो गांव का परिवेश है वो थोड़ा फॉरेस्ट एरिया वाला है, क्योंकि हमारे गांव के समीप ही सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो सीमा है वो हमारे गांव से ही लगती हुई है। तो ऐसे करते हुए हमने शुरुआत से ही कम संसाधनों में रहते हुए हमारी जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया। तो हमने अक्सर देखा कि हमारे जो आसपास के गांव है या फिर जो हमारा गांव है वहाँ पे लोग शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। तो जब मैंने कॉलेज की, उसके बाद मैंने देखा कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए और इसके लिए कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो तब से मैंने फिर अपना जो सोशल वर्क है, कम्युनिटी वर्क है, तब से स्टार्ट किया।
0: हम उस पर आते हैं, लेकिन पहले हम जयदीप फिर से वहीं शुरुआत करते हैं कि आपके स्कूल में आप कहाँ पढ़ रहे थे और आपके पेरेंट्स किस प्रकार से आपको गाइड कर रहे थे, ये हम जानना चाहेंगे।
1: जी सर। सर, शुरुआती शिक्षा मेरी, जैसे कि मैंने बताया कि गांव में ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय से स्टार्ट हुई थी। तो ग्रामीण स्तर पर हमारे आसपास के 6 गांवों में सिर्फ एक स्कूल था, तो वहीं पर रह के हमने जो उच्च माध्यमिक स्तर की जो पढ़ाई है जो पूरी कंप्लीट वहीं से की। उसके उपरांत हमारे वहां पे कस्बा पड़ता है तहसील राजगढ़, वहां से स्नातकोत्तर किया। उसके बाद में एमए हिस्ट्री वहीं से किया मैंने, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ से। तो शुरुआत से ही मैं जो शहर की जो आबोहवा है और जो शहर का वातावरण उससे दूर रहा, और ग्रामीण स्तर पर रहने का फ़ायदा ये मिला कि जो बाहर की जो चीज़ें उनको देखने की उत्सुकता शुरू से बनी रही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब बाहर निकले और देखा तो फिर सोचा कि जो अपना गांव है, अपने जो ग्रामीण परिवेश है उसको भी हमको डेवलप करना चाहिए। तो इसके लिए फिर हमने वहाँ पे ग्रामीण लेवल पे अपने काम स्टार्ट किया।
0: पिछले दिनों जो सरकार की तरफ से युवा आइकन पुरस्कार है वो आपको मिला, लेकिन फिर से वही बात है कि वो एक महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अभी जो आपको जिस कैटेगरी में वो पुरस्कार मिला, वो कैटेगरी क्या थी और आपने क्या नवाचार उसमें किया और कैसे वो यात्रा शुरू हुई, उसकी बात अब शुरू करते हैं।
1: जी सर, अभी हाल ही में युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। ये भी राजस्थान सरकार की इसी साल की पहल है कि जो युवा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि और भी युवा आगे बढ़े। तो इसकी शुरुआत मेरी हुई थी 2019 में, कोविड काल से पूर्व हम गांव में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तब हमने देखा कि हमारे आसपास शिक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा, क्योंकि जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र है और वहाँ पे लोग नशे या तंबाकू सेवन जैसे आदतों से भी घिरे हुए थे। तो वो क्या करते थे कि जो उनका जो कीमती पैसा होता था वो अपने बच्चों की पढ़ाई में न लगाकर वो उनको अपने नशे आदि के लिए उनका यूज़ करते थे। तो हमने फिर अपने जो ग्रामीण स्तर है वहीं से एक शुरुआत की और नशे की आदत से उनका छुड़वाने के लिए हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो लोकल जो रिसोर्स पर्सन होते हैं उनके साथ कोलैब करके एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। जिससे कि हमने जो हमारी जो ग्राम पंचायत है कोंडला उसको 2020 के अंदर पूरी पंचायत को टीबी से मुक्त कराने में सफलता हासिल की। तो इससे ये हुआ कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने नशे को छोड़ा और जो अपना कीमती पैसा है वो बच्चों की पढ़ाई में लगाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जब लोग तो जागरूक हो गए हैं पढ़ाई के लिए, पर हमारे वहाँ पे उचित संसाधन नहीं थे जिनके माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके, तो और एक माहौल की कमी थी, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमने कुछ कम्युनिटी लाइब्रेरीज की हमारे यहाँ पे लोकलिटी में स्थापना की। तो उसके लिए हमने सीमित संसाधनों में रहते हुए जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको आकलन किया और देखा कि हम सीमित संसाधनों में रहते हुए क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले हमने लोगों को जोड़ा, इसके लिए हमने एक टीम बनाई, यूथ टीम कोंडला, उसको हमने नेहरू युवा केंद्र संगठन के एक यूथ क्लब के रूप में रजिस्टर करवाया। उसके बाद में एक टीम बनाकर तहसीलदार वीडियो से मिले, फिर हमने देखा कि हमारे गांव में के आसपास जैसे सभी गांव में सामुदायिक भवन कम्युनिटी हॉल सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं, परंतु उनमें कोई सुविधाएं नहीं होती और वो बिना काम के गांव में पड़े रहते हैं। तो हमने देखा और सभी ने सलाह करके हम उन कम्युनिटी सेंटर्स को हमने सरपंच से और जो ग्राम पंचायत की समिति होती है उससे हमने लिया और उनको एक लाइब्रेरी सेंटर कम ट्यूशन सेंटर के रूप में डेवलप किया। तो हम क्या करते थे कि जो पहले तो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद में स्कूल से जब छूट के वो अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त होते थे जिनसे उनकी शिक्षा में अवरुद्ध होता था, तो हम उनको कम्युनिटी सेंटर पे उनको इकट्ठा करते, उनको फ्री ट्यूशन क्लासेस, उनको कैरियर गाइडेंस आदि देकर उनको एक लाइब्रेरी के रूप में वहाँ पे बैठाते, जो स्कूल के बाद में बच्चे वहाँ पे आने लगे। तो ये पहल हमारी काम लाई और फिर धीरे धीरे और जगह के लोग भी हमसे जुड़ते गए और इस प्रकार से हमने अपना काम आगे बढ़ाया।
0: जी नहीं, बेहतरीन, आपने अपनी पूरी जर्नी को बहुत संक्षेप में रखा है, लेकिन मैं आपसे फिर से वही जानना चाहूंगा कि इतना सब कुछ करने के लिए टीम चाहिए होती है और कम्युनिटी सर्विस करने के लिए आप टीम बनाना आवश्यक है, तो आपकी जो टीम है वो आपने कैसे बनाई और आपके युवा मंडल में कौन कौन से सदस्य थे ये मैं जानना चाहूँगा। जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जानना चाह रहे होंगे कि ये खूबसूरत आवाज किस युवा की है, तो हमारे साथ हैं जयदीप पांचाल जी, दुनिया के की नक्शे पे अपनी छाप छोड़ने वाले राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का से के पास के गांव से हैं, कुंडला इनके गांव का नाम है जैसा जयदीप ने बताया। अब कुंडला की तस्वीर कैसे बदली है उस पर बात करेंगे और ये वो जुनूनी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हित को बाद में रखा और सोचा कि मैं कैसे अपने गांव को बेटर बनाऊंगा और अब जब मेरा गांव बेटर हो जाएगा तो मेरा जीवन तो अपने आप ही बेटर होना है। यही एक रिश्ता है जो जुनूनी व्यक्ति समझता है, लेकिन समाज के बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, इस समीकरण को, इस राज को वो नहीं समझ पाते कि ये सबसे बड़ा राज है जीवन का, कि आप कैसे दुनिया को बदलते हुए अपने आप अपना निर्माण करते हैं और यही निर्माण की प्रक्रिया में हमारे युवा जयदीप पांचाल हैं जो अभी राज्य स्तर पर पहुंचे हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने काम के माध्यम से पहुंचेंगे क्योंकि ये राज इन्होंने जान लिया है और ये राज है जुनून का। तो हम जुनून की बात कर रहे हैं, जुनून में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो जशोदा हमसे देर से जुड़े हैं, आप सुन रहे हैं मधुबन रेडियो और मधुबन रेडियो के 107.8 FM पर आपका स्वागत है। तो जयदीप जी।
1: जी सर।
0: हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आपने कैसे संगठन बनाया, तो संगठन बनाने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वही एक फाउंडेशन है, तो वो संगठन बनाने में क्या समस्याएं आपको आई और परिवार ने आपको सहयोग किया कि नहीं किया?
1: जी सर, मैं आपको बताना चाहूँ कि बचपन में जब मैं गांव में रहता था तो मेरे जो दादाजी थे वो गांव के पोस्ट मास्टर थे, तो इस वजह से जो गांव की एक चौपाल के रूप में पोस्ट ऑफिस को जाना जाता था और वहाँ पे सभी गांव के गणमान्य लोग आते रहते थे, तो पूरा जो माहौल था वहाँ पे सामाजिक रूप से समृद्ध था। तो फिर बाद में जब मैंने 2019 में टीम बनाने का सोचा तो इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी मुहैया की, तो देखा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन जो युवाओं को जो सोशल सामाजिक कार्य से जुड़ना चाहते हैं उनका एक यूथ क्लब वो बनाते हैं, तो हमने भी उनके साथ जुड़कर एक यूथ क्लब अपना वहाँ पे बनवाया। तो इसमें सबसे पहले फिर हमने देखा कि इसमें कौन कौन जुड़ सकते हैं, तो जो सामान रोशनी रखने वाले जो हमारे आसपास के युवा थे हमने उनको जोड़ा। उसके अलावा हमने ऐसे युवाओं को भी जोड़ा जो राजकीय सेवा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और उनको काफ़ी हद तक सफलता मिल गई थी परंतु उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, तो ऐसे लोगों को भी हमने अपने क्लब में जोड़ा। तो से हुआ ये कि वो जो युवा है उनको पढ़ाई का काफ़ी अनुभव था, तो वो हमारे जो निःशुल्क ट्यूशन क्लासेस थी उनमें वो पढ़ाने का भी काम कर लिया करते थे। ऐसे करके हमने कम से कम 15 से 20 लोगों की टीम बनाई। फिर उसके साथ में हमने देखा कि जो कोई भी काम करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, तो हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप के थ्रू और जो गांव में लोग रहते थे उनसे हमने खुद जाके रूबरू हुए और उनके हमारे टीम के बारे में बताया, हमारे गोल्स के बारे में बताया। तो धीरे धीरे जब अगर आप कोई भी काम यदि पूरी ईमानदारी और नेक दिल से करते हो तो लोग आपके साथ अवश्य जुड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा करते करते हमारे गांव के बहुत सारे व्यक्ति हैं और आसपास के गांव के हैं जो सरकारी सेवा में पहले से ही कार्यरत थे और अच्छे अच्छे पदों पे थे, तो हमने उनको अपने टीम के बारे में बताया तो वो भी हमसे कनेक्ट हुए। फिर हमने लाइब्रेरी के लिए उनको बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके किसी बच्चे का या फिर किसी दोस्त का या फिर स्वयं का कभी जन्मदिन आता है तो आप उसको जन्मदिन भी मनाइए परंतु आप 1100 रुपये की राशि गांव के सरकारी स्कूल या फिर लाइब्रेरी में आप डोनेट कर सकते हैं जिसके माध्यम से अपन गांव में संसाधन विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे पास करीब 80,000 की हमको शुरुआत में सहायता मिली। उससे हमने लाइब्रेरी सेटअप करने में उसको यूज़ किया। तो धीरे धीरे करते करते हमारा ये जो मिशन है वो स्टार्ट हुआ।
0: बहुत बढ़िया, तो ये से एक शुरुआत थी। तो संगठन में आपने जैसा बताया कि आपने कुछ पढ़ने वाले, कुछ खेलने वाले और कुछ ऐसे बच्चे जो जिनको दिशाहीन थे उनको आपने साथ में युवाओं को लिया और आप एक संगठन बनाया। तो संगठन ये किस नाम से काम कर रहा था और इस संगठन का नाम क्या है?
1: सर हमको उस टाइम ज़्यादा अनुभव नहीं था तो इसलिए हमने टीम का नाम यूथ टीम कोंडला ऐसे ही कुछ रखा था। परंतु बाद में अभी थोड़े दिन पहले हमने उसको एक एनजीओ के रूप में भी करवाया, सरिस्का इंडिया फाउंडेशन। तो अभी उसके साथ मिलके हम पूरे सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया में धीरे धीरे हम एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जब आपने सरिस्का इंडिया फाउंडेशन के नाम से आप बता रहे हैं कि जंगल को लेकर भी आप संवेदनशील थे और आप वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को लेकर भी आप संवेदनशील थे, आपने अपनी बातचीत में कई बार उस संदर्भ में बात की।
1: जी सर।
0: तो मानवीय गतिविधियों का क्या प्रभाव जंगल पे पड़ रहा है?
1: सर मानवीय गतिविधियों का डेफिनेटली काफी बुरा प्रभाव जंगल पे पड़ रहा है। मैं हमारे वहीं के जंगल के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगी, हमारे जो जंगल है एक तो हमारा जो अलवर जिला है दिल्ली NCR में आता है
0: जी,
1: उसके अलावा जो सर इसका टाइगर रिजर्व है वहाँ पे सर पहले तांबे की भी काफी खदानें थी
0: जी,
1: और इसके अलावा संगमरमर जो पत्थर निकलता है उसके भी काफी खदानें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके माध्यम से अगर भारत में यदि कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य है तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में आप कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो वहाँ पे उस कमर्शियल एक्टिविटी बंद होने के कारण कम से कम 100 से 120 खाने खदानें हैं जो बंद हुई थी, परंतु अभी नेताओं ने या फिर पॉलिटिशियंस ने मिलकर उन नियमों में कुछ बदलाव करवाकर दोबारा उन खानों को शुरुआत करवाना वो चाह रहे हैं। तो इससे काफ़ी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उन पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे कि जो फूड चेन होती है वो प्रभावित होती है। फूड चेन प्रभावित होने से जो हमारी फसलें हैं वो बर्बाद होती है, जो किसान है वो फसलें बहुत मेहनत से उगाता है तो वो सर उस पर काफी कुप्रभाव पड़ता है
0: जी। तो आपका संगठन ने क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया है कि आप इन खानों को रुकवाएंगे या आप इस प्रकार का एक्टिविज्म करना चाह रहे हैं?
1: सर अभी फिलहाल हमारा संगठन है जो सरिस्का इंडिया फाउंडेशन है, तो अभी हम जागरूकता और जो ऐसे छोटे मोटे क्रियाकलाप है उनके प्रति अभी हम काम कर रहे हैं कि जो सरिस्का के आसपास के क्षेत्र हैं उसमें जो खाद्य श्रृंखला नहीं टूटे उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि हम जो सरकारी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं उनके साथ मिलके उनको ये जागरूक कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने आसपास के जो वन्य क्षेत्र हैं उनको बचाने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे सर एक आइडिया बताऊं आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि अमूमन यदि सांप दिख जाता है किसी को तो वो उसको मारने के लिए ही प्रेरित होता है, उसको मार के ही मतलब उसको वहाँ पे भगाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों में जागरूकता की कमी है कि ये सांप जहरीला है या फिर ये जहरीला नहीं है। ये जैसे एक सांप होता है जो चूहों को खाता है, तो वो सांप हमारे खेतों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यदि वो खेतों में से चूहों को खाएगा तो उससे चूहे ख़त्म होंगे और खेतों में फसल अच्छी होती है। इसके अलावा बहुत सारी तितलियाँ होती हैं जो अंकुरण के लिए आवश्यक होती हैं, काफ़ी बर्ड्स होते हैं तो वो भी हमारे जो खाद्य संकरा के लिए काफ़ी ज़रूरत है, हम इसके लिए वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान सरकार का एक अभी उन्होंने युवा साथी केंद्र एक संस्था स्थापित की है जो प्रत्येक संभाग पे जो युवाओं को मेंटरशिप का काम करती है, जिसके माध्यम से वो कैरियर काउंसलिंग और मानसिक रूप से युवाओं को कैसे समृद्ध किया जा सकता है उसके प्रति कार्य कर रही है। तो हम उस सेंटर के साथ मिलकर और जो फॉरेस्ट विभाग है वन विभाग की टीम के साथ मिलकर अभी सर जन जागरूकता का काम करते हैं।
0: जी नहीं बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर आप समन्वय और सहयोग के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने गांव की ही नहीं अपने परिवार और अपने स्वयं की भी तस्वीर हो पाएंगे, जीवन को नई राह दे पाएंगे। और यही युवाओं को सामुदायिक सेवा के माध्यम से सीखना चाहिए और देश की युवा नीति भी यही कहती है कि हम सामुदायिक सेवा के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। खैर तो इस पूरी प्रक्रिया में आपने ये सारी बात अपने बताई, लेकिन मेरा एक सवाल मन में रह गया, आपने जब पुस्तकालय बनाया तो आपने कौन कौन सी पुस्तकें लाइब्रेरी में आपने रखी और कैसे उनका चुनाव किया ये मैं जानना चाहूँगा। अब पुस्तकालय का नाम क्या है?
1: सर पुस्तकालय का नाम हमने स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय रखा है और उसमें हमने ये वहाँ पे किया है कि व्यवस्था उसमें अभी जैसे हर पुस्तकालय का हमने एक जैसे क्लास मॉनिटर होता है वैसे मॉनिटर हमने वहाँ पे रखा है। तो वो ये काम करता है कि जब वो जो भी वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो या तो वो छोटी क्लासेस के होते हैं या फिर कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो होते हैं, तो हमने वहाँ पर उनको इंटरनेट उपलब्ध करवाया है जिसके माध्यम से वो अपनी क्लासेस ले सकते हैं। दूसरा हमने वहाँ पे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं उनके लिए काम आने वाली पुस्तकें जैसे सामान्य ज्ञान की किताबें, गणित विषय की, अंग्रेजी की किताबें, उसके अलावा करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और इसके अलावा ऐसी किताबें जिनको हम एक संदर्भ किताब के रूप में मान सकते हैं जैसे राजनीति विज्ञान की लक्ष्मीकांत किताब, लूसेंट, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको हमने चूज़ किया कि उनको जो सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी को समान रूप से कायम आ सकें। इसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो स्वयं की किताब लाते हैं और वहाँ पे रखते हैं। उसके अलावा हमने एक पहल और की है कि जो राज्य के सेवाओं में जो छात्र या फिर जो प्रतियोगी हैं वो चले जाते हैं उसके बाद जो उनके वहाँ पे किताबें बचती हैं तो वो उसको उस पुस्तकालय में डोनेट कर देते हैं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे काफ़ी किताबों का संग्रह हो जाता है।
0: जी तो आपके जो पुस्तकालय है इस पुस्तकालय का खुलने का और बंद होने का समय क्या रखा है आपने?
1: सर काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिन के समय पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं तो वो दिन में काम भी होते हैं, तो हमारी पुस्तकालय एवरेजन सुबह 7 बजे से खुलती है और शाम को 7 बजे तक चलती है। इसके अलावा हम जो वो बच्चे होते हैं क्योंकि पुस्तकालय में काफ़ी कीमती सामान भी होता है तो करीब और छात्र संख्या भी थोड़ी अब बढ़ी है तो दिन में एक साथ सभी का बैठ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो काफ़ी ऐसे जो बड़े बच्चे होते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि उनको हम रात को भी वहाँ पे आने का एक्सेस देते हैं। एक तो उससे सुरक्षा बढ़ जाती है और दूसरा रात में आने से वो अपना बिना रुकावट के वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो सर देखा जाता है कि अमूमन वो 24 घंटे ही खुली रहती है हमारी लाइब्रेरी में।
0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं मधुबन रेडियो का आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे हमें सुन रहे हैं 107.8 FM पर आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन मधुबन रेडियो और हमारे साथ हैं आज एक युवा जुनूनी जयदीप पांचाल। तो जयदीप अपनी यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से बता रहे हैं और हम उनसे समझना चाह रहे हैं कि वे दुनिया को खूबसूरत बनाने के बारे में कैसे योजना बना रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो जदीप, हम ये जानना चाहेंगे, जो आपका संगठन है, डेफिनेटली आपने बनाया है उसको सरिस्का इंडिया फाउंडेशन, तो सरिस्का इंडिया फाउंडेशन जो आपकी यंग टीम है वो कैसे काम को आगे बढ़ा रही है?
1: जी सर, अभी हम सर मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैब में काम कर रहे हैं, तो उनकी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आती रहती हैं, उसके अलावा हमारे भी कुछ आइडियाज़ होते हैं तो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट टीम से ACF सर, CCF, ODFO सर हमारे साथ काफ़ी, क्योंकि वो भी यूथ ही हैं तो उनके साथ काम करने में थोड़ा ठीक रहता है। उसके अलावा राजस्थान यूथ बोर्ड का भी हमें प्रॉपर सहयोग मिल रहा है, और नेहरूया केंद्र जो अभी माई भारत के रूप में जाना जा रहा है, तो माई भारत के साथ भी हम कोलैब करके काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमारे क्षेत्र में करवा रहे हैं। अभी माई भारत के थ्रू कुछ ELPs भी आई हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स, तो उनके साथ भी हम मिलकर ELPs के माध्यम से अपने जो यूथ हैं उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं।
0: जी, आप बता पाएंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम क्या है? मैं अपने श्रोताओं को भी थोड़ा सा बताता हूँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम सेवा से सीखे या कहें कि अनुभव से सीखे एक कार्यक्रम है जो भारत सरकार ने डिजाइन किया है और पूरी दुनिया में युवाओं को आगे लाने के लिए इस प्रकार की इस प्रक्रिया को बेहतर समझा गया है, और इसका मकसद ये है कि युवा अलग अलग छोटे छोटे कार्य करते हुए प्रशासन के साथ, कॉरपोरेट के साथ, समाज के साथ सीखें, और चूंकि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया को ही रियल माना गया है सीखने की दुनिया में, कि आप कुछ करके ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं, और फिर उसको मालूम चलता है उस युवा को उस प्रक्रिया में कि ये कार्य मेरे लिए बना है और इस कार्य को मैं ज़िंदगी भर अपना सकता हूँ, और इस काम को करने के लिए मेरे जिंदगी का मकसद जो है इसी काम से सिद्ध होता है, या मुझे ये कार्य अच्छा लगता है, मैं इसको बिना थके कर सकता हूँ, तो ऐसी समझ उसकी बन सके और वो सही उम्र में सही कार्य को चुन पाए, या कहें कि अपनी पसंद का कार्य चुन पाए, या कहें अपनी प्रवृत्ति या अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य को चुन पाए, उस पेशे को चुन पाए, ऐसा इस कार्यक्रम का मकसद है। और ELP कार्यक्रम से युवा शक्ति को भी एक नई ऊर्जा मिलती है। इस सारी संभावना को देखते हुए भारत सरकार ने ELP प्रोग्राम जारी किया है, और कोई भी युवा माय भारत पोर्टल पर, भारत सरकार के मेरा युवा भारत पोर्टल पर जाकर इस प्रक्रिया से जुड़ सकता है। तो जयदीप ने चूंकि इस विषय को छेड़ा है तो मैंने भी इस पर अपनी बात रखी है, तो जयदीप आप ये बताएं आपका क्या अनुभव रहा ELP कार्यक्रम के साथ और आपके युवाओं का क्या रुझान है, बताएं।
1: सर, हमारे क्षेत्र में हमने युवाओं को जब माय भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया तो हमारे क्षेत्र में युवाओं को इसके प्रति काफ़ी अधिक रुचि थी, तो एक समय ऐसा भी आया जब पूरे देश में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट से थे, तब हमने देखा कि हमारे यहाँ ELP प्रोग्राम्स काफ़ी चलाने चाहिए, तो हमने जो लोकल टीम में जो यूथ है उनसे कंसिडर किया कि हमको आपको किस क्षेत्र में सीखना है, तो उन्होंने बताया कि एक तो हमको जैसे पुलिस विभाग के साथ उनके कार्य जो करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में उनके साथ मिलकर काम करना, तो हमने पुलिस विभाग के साथ में मिलकर ELP प्रोग्राम एक सेटअप किया। उसके अलावा जो राजकीय अस्पताल होते हैं तो उसमें भी हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, उनको हमने वहाँ पे एनरोल करवाया, और वो हॉस्पिटल में किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से लोगों की वहाँ पे सेवा की जा सकती है, तो वहाँ पे अभी वो ELP प्रोग्राम्स हमारे यहाँ चल रहे हैं।
0: जी, मैं आपको बताऊँ कि ELP कार्यक्रम के माध्यम से मेरे जिले करौली जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ वहाँ पर भी एक नया अनुभव ये रहा कि जिस अस्पताल में मैंने कुछ महिला हमारी वॉलंटियर्स को, युवा महिला वॉलंटियर्स को संलग्न किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर महिला चिकित्सकों का अभाव था और वहाँ के लेबर रूम में महिला चिकित्सक ना होने के कारण जो गर्भवती महिलाएं जो थी वो अपने डिलीवरी के लिए या कहें कि अपने जच्चा बच्चा के इलाज के लिए नहीं आ रही थी, और या कहें कि अपने डिलीवरी के लिए उस अस्पताल को नहीं चुन रही थी, और वो जयपुर या किसी और बने बड़े शहर में जाने का प्रयास कर रहे थे जिससे कि उनके जीवन में खर्चीलापन आ रहा था। तो जब हमने हमारे वॉलंटियर्स को वहाँ पर डिप्यूट किया तो एक महीने के अंदर ये रुझान आया कि मालूम चला कि महिला प्रसूताओं की संख्या वहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे मदद के लिए, हमारे सहयोग के लिए यहाँ पर महिला स्टाफ अवेलेबल है, जबकि वो हमारे वॉलंटियर्स थे, और हमारे ELP कार्यक्रम के माध्यम से, चिकित्सक के माध्यम से युवाओं को जानने को मिला कि कौन कौन से ऐसे बचाव हैं, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं या किस प्रकार के टेस्ट हैं या क्या देख रेख करना चाहिए जच्चा बच्चा को, तो ये सब संभावनाएं भी हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से उन परिवारों में पहुंची जिन परिवारों में जागरूकता की कमी सामान्यतः रह जाती है, और उस जागरूकता की कमी के कारण बच्चा कम उम्र में या तो विकलांग या फिर कमजोर हो जाता है। और आपको तो मालूम ही है करौली और कुछ देश के हमारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं का जो विकास है, शारीरिक विकास है, वो देश के स्टैंडर्ड मानकों से कम है, जो कि हम पोषण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से बचाव करने में ईएलपी कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा ही कुछ रुझान हमारा है जो मैंने आपसे साझा किया, और अलवर में भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नए प्रयास होते रहे होंगे। कुछ ऐसी बात जो आपके युवा संगठनों के माध्यम से आपने सीखी, ये आपके जीवन के आगे का मकसद क्या है और आप क्या सोचते हैं, इस पर भी प्रकाश डाले हैं जयदीप जी।
1: जी सर, सर मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जो राजस्थान सरकार है वो एक यूथ डेलीगेशन भेज रही है जापान के लिए, तो अभी उसमें एप्लीकेशन आए हैं। अभी हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ था एसएमएस स्टेडियम में, तो अब फिलहाल तो अभी उसमें मेरा जाना क्या है, आगे देखते हैं क्या रहता है। तो वहाँ पर जो मेरा जो पीपीटी प्रेजेंटेशन का विषय था कि एम्पावर यूथ एम्पावर राजस्थान, तो उसके माध्यम से मेरी एक पहल आगे भविष्य में ये रहेगी कि हम किस प्रकार अपने राजस्थान के युवाओं को स्किल करके उनको सशक्त बनाकर 2047 तक किस प्रकार से हम भारत को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलवाने में अपन किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। तो अभी आने वाले भविष्य में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मेरा जो फोकस एरिया है वो रहेगा।
0: नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाए। तो इस विकसित राष्ट्र की प्रक्रिया में हमें अभी से हमारे समाज के, जैसा आपने बताया कि हमने बच्चों को जागरूक किया, पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, अब आप सोचिए कि जो बच्चा अगर आज स्कूल से ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, वो नहीं पढ़ पाता है, तो निश्चित रूप से जो बच्चा आज 5 साल का है वो 2047 में 30-40 साल का होगा, और वो नहीं पढ़ पाएगा, आज ड्रॉप आउट हो गया है तो वो बच्चा उस समय भी निरक्षर होगा, तो हमारा 2047 का सपना जो है वो टूट जाएगा। तो हमारा एक भी व्यक्ति हमारा निरीक्षर ना रहे, ये 2047 में विकसित होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मानक है। और तो हमें आज ही सभी बच्चों को विद्यालय में पढ़ाना सुनिश्चित करना होगा और उनको एक अच्छी शिक्षा देनी होगी अगर हमें 2047 का सपना पूरा करना है, अन्यथा ये सपना पूरा करना मुश्किल होगा। तो इस प्रक्रिया में आपने बताया है कि हम भी सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सरिस्का और उस आसपास के इलाके में कुछ ना कुछ प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आगे की क्या प्रक्रिया है। जापान तो आप निश्चित रूप से जाएंगे ही, वो तो राजस्थान सरकार आप जैसे युवाओं को लेकर जाती है और ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से ही हम सीखते हैं। और आपको बताऊं कि जयदीप, हमारे आज़ादी के आंदोलन में भी इस यूथ एक्सचेंज का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब हमारे लीडर्स जो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को लड़ा है वो जब यूरोप गए, अमरीका गए, तब उनको मालूम चला, चाहे उसमें लाला हरदयाल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बाबा साहब, जो भी लोग इस आंदोलन में जुड़े रहे उनको मालूम चला कि दुनिया को में कैसे जिया जाता है, युवा को कैसे पढ़ने के लिए 24 आवर लाइब्रेरी मिलती है, कैसे उसको कसरत और व्यायाम के लिए खेल के मैदान मिलते हैं, कैसे वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकता है, वो बाल विवाह से मुक्त है ना, तो किस प्रकार के जो सामाजिक कुरीतियों से वो दूर है, तो उसको किस प्रकार से फ्रीडम और स्वतंत्रता मिलती है। तो जब हमारे युवा बाहर गए जो ये क्रांतिकारी थे, तो उनको मालूम चला कि दुनिया में कैसे जिया जाता है, कि दुनिया में कैसे मानक है, हमारे स्टैंडर्ड हैं, क्या सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें भी आज़ादी का आंदोलन करना है और हमें अपने देश को हमारे हाथों में लेके ऐसे ही विकसित बनाना है। तो तभी यूथ एक्सचेंज की संकल्पना को मजबूती मिली, और यही यूथ एक्सचेंज है, इसी यूथ एक्सचेंज के माध्यम से हम, भारत सरकार चाहती है या राजस्थान सरकार चाहती है, अलग राज्य सरकार चाहते हैं कि हमारे युवा विदेशों में जाएं और सीखें। निश्चित रूप से जब आप जापान जाएंगे तो दुनिया के एक विकसित राष्ट्र में जब जाएंगे तो आपको 2047 के लिए एक विजन मिलेगा, तो वो मौका आपको मिले, ऐसी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन हम आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे, ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे पूछना भूल गया हूँ और आपको लगता है कि आप बताना चाहते हैं, आपकी बात रखना चाहते हैं, वो बताएं। और एक बार आप, हम ये भी आपने एक विषय रखा कि एम्पावर यूथ एम्पावर राजस्थान, तो उसकी संकल्पना क्या है, उस पर आप चाहें तो 2 से 5 मिनट आराम से आप विस्तार से हमें बताएं, हमारे श्रोताओं को।
1: सर, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है कि जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करें तब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए, तो अभी 2025 चल रहा है और 2047 तक आते आते हमारे पास अभी 22 वर्ष का समय है, तो बात करके अपने यूथ को, क्योंकि हमारी जो युवा शक्ति है वो अभी माननीय मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी ने कहा था कि जो राजस्थान की जो युवा शक्ति है वो 65% जो युवा है जो राजस्थान की कुल जनसंख्या में है, तो अभी हम उनको स्किल्स के माध्यम से उनको जागरूक करके और उनको आगे बढ़ाकर अपन विकसित राष्ट्र का, विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि भारत में हर साल करीब 2 मिलियन यूथ जो काम में आता है, जो रोजगार के लिए आगे आता है, परंतु उसमें से देखा जाता है कि 2% से भी कम है तो उस जॉब के लिए रेडी रहते हैं और जॉब के लिए स्किल रहते हैं। अगर भारत को 2047 तक सर विकसित बनाना है तो करीबन 15 बिलियन हमको स्किल लेबर की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमको स्किल के लिए और युवाओं को प्रेरित करना होगा सर। ऐसी कुछ कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जिनके माध्यम से अगर युवाओं को रोजगार स्किल किया जाए तो वो छोटे छोटे अपने रोजगार सर्जित कर खुद को उत्थान कर सकते हैं और धीरे धीरे वो अपने राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं।
0: जी, तो इस एम्पावर यूथ और एम्पावर राजस्थान में आपने बताया कि आप सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से करेंगे, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स युवाओं तक पहुंचेंगे कैसे? आपने जैसा बताया कि आप एम्पावर यूथ और एम्पावर राजस्थान कार्यक्रम में सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से राजस्थान के विकास में कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स युवाओं तक आप कैसे पहुंचाएंगे?
1: हाँ सर, जैसे कि हम एक डेटा देखते हैं कि जो चाइना है आजकल विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है, तो चाइना में एक सेंटर होता है गांव में ग्रामीण स्तर पर टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। तो उसमें क्या होता है कि ऐसी जो जो छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स जैसे अपना रेज्यूमे बनाना, इंटरव्यू प्रेजेंट करना, उसके अलावा इंग्लिश कम्युनिकेशन और ये काफ़ी जो स्किल्स होती हैं उनके बारे में सिखाया जाता है। तो अपने अभी जब जो राजस्थान का 2025 का बजट आया था तो उस बजट में पूरे राज्य से युवाओं को भी मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ पर बुलाया था। तो मेरा वहाँ पर एक सुझाव था कि प्रत्येक ग्राम में एक ऐसे सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए जिसके माध्यम से युवाओं को कनेक्ट किया जाए, उनको शिक्षा के प्रति पढ़ा जाए, उनको खेलों का वहाँ पे व्यवस्था हो, उसके साथ ये खेल मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि यदि युवा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा तो वो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकेगा। साथ में वहाँ पे उनको एक कम्युनिटी, वहाँ पे ऐसे ब्लॉक स्तर पर स्किल सेंटर्स की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पे युवाओं को पहचान कर, चिन्हित कर उन स्किल सेंटर्स के वहाँ पे भेजा जाए और उनको सॉफ्ट स्किल्स या फिर जो भी टेक्निकल स्किल्स

0: ने उनको एक काफ़ी एनजीओ होते हैं जो अभी इस स्किल के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो जैसे ही एक अंबुजा फाउंडेशन है, उसके साथ ही एक ए उस्मान फाइनेंस बैंक है, उनका फाउंडेशन है। तो सर हमारा एक अभी वॉलंटियर है, वो जयपुर का जो ए उस्मान का स्किल सेंटर है तो वहाँ पर सर अभी वो वर्क कर रहा है। तो हम ऐसे युवाओं को चिन्हित करते हैं जिनको स्किल्स की आवश्यकता है, उसके बाद उन युवाओं को उन सेंटर्स के पे भेजते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो सरकारी स्तर पर ऐसे स्किल सेंटर्स की कमी है, तो हम उस सेंटर पे उनको भेजते हैं। वहाँ पर सर एक नॉमिनल 2500 रुपये की फीस बच्चे से लेते हैं, और उसमें 50 दिन का एक स्किल जो भी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं उसमें, तो उन स्किल्स को उनको सिखाते हैं, और उसके बाद में उनको एक रोजगार के रूप में युवाओं को जोड़ते हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। धीरे धीरे करके अभी हमने 20 से 30 युवाओं को वहाँ पे भेजा है, और वो अभी रोजगार भी उनको मिला है। तो ऐसा करके हम यदि सभी लोग प्रयास करें तो ऐसा करके धीरे धीरे बदलाव हो सकता है
1: जी। तो चलते चलते कोई आपका संदेश हमारे युवाओं के लिए और सुनने वालों के लिए हो तो बताएं यदि।
0: सर युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपने देश को विकसित करना है, तो पॉजिटिव वे में रहते हुए नेक दिल से काम करते रहें और नशे आदि लतों से दूर रहें, क्योंकि नशा खुद के साथ साथ परिवार और समाज को भी खाता है। तो सभी चीज़ों से दूर रहते हुए अपने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य करते रहें
1: जी। तो श्रोताओं आप सुन रहे थे हमारा आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून, और जुनून में थे हमारे साथ आज जयदीप पंचाल फ्रॉम अलवर सरिस्का के पास कुंडला गांव से। और चलते चलते बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ना आप हमें थका पाएंगे ना आप हमें हरा पाएंगे, रोक सको तो रोक लो, आंधी अपनी गति से आ रही है। थैंक यू वेरी मच, सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्कार, ओम शांति।

0: हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी सुरेंद्र साय का संबंध उड़ीसा के संबलपुर राजघराने से था। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति ने सुरेंद्र साय को युद्ध का सहारा लेने पर मजबूर किया था। अंग्रेजों ने चिर परिचित अंदाज में छल का सहारा लिया और संधि के बहाने आमंत्रित कर सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। 1857 की क्रांति की लहर का लाभ उठाकर सुरेंद्र साय विद्रोही सैनिकों की मदद से जेल से भागने में सफल हो गए। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। फिर वही छल। अंग्रेजों ने सफेद झंडा फहराकर संधि वार्ता के बहाने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। इस बार वे संबलपुर जेल से 3 दिनों के भीतर ही भाग निकले। 1858 से 1863 तक उन्होंने अंग्रेजों को कई मोर्चों पर हराया और उनकी सेना का विनाश किया। अजय वीर को तीसरी बार फिरंगियों ने नहीं, अपनों ने छला। एक गद्दार अभिन्न मित्र की सूचना पर वे अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गए। 2 बार जेल तोड़कर भागने वाले क्रांतिकारी को तीसरी बार घोर जंगल में बने असीरगढ़ के किले में सघन पहरे के बीच रखा गया। 28 फरवरी 1884 को इसी किले में उन्हें फांसी दी गई। क्रूरता की पराकाष्ठा ये थी कि फांसी से पूर्व उनकी आंखों और कानों को गर्म सलाखों से फोड़ा गया।
3: क्या बात है छोटू, अभी तक काका की परछाई भी इधर नजर नहीं आ रही। काका को ढाबा नहीं चलाना है क्या?
4: अब मुझे क्या मालूम भैया, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। काका आए नहीं आए उससे मुझे क्या।
3: अबे बहुत बोलता है, जा काका को देख कर आ।
4: अच्छा भैया, अब भी आता हूँ। अरे सत्तू भैया, अब समझ आया काका क्यों नहीं आ रहे।
3: क्यों क्यों नहीं आए?
4: अरे अपना रेडियो तो चालू करो जल्दी जल्दी।
3: अबे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। अरे आज तो हिंदुस्तान हमारा आ रहा होगा। बस काका लगे होंगे सुनने।
4: अच्छा हाँ भैया, मैं चाय लगा के आता हूँ। अब जल्दी लगाइए ना, अब बताइए ना किसका आने वाला है।
3: अरे भैया रुक, तो देखने तो दे सुनने तो दे यार। अरे अच्छा, सुरेंद्र साय का आने वाला है।
5: उड़ीसा का संबलपुर गांव, सुरेंद्र साय एक निस्वार्थ निश्चल प्रकृति के इंसान गांव के अपने दोस्त दया से मिलने आए हैं।
6: क्या बात है दया, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो, कुछ हो गया क्या?
7: कुछ नहीं सुरेंद्र, बस यूं ही।
6: यूं ही? यूं ही क्या, कुछ आगे भी तो बोलो।
7: अरे बस इस साल की सारी फसल राजस्व देने में निकल गई, घर में खाने को नहीं है, बहन की शादी भी है, पता नहीं इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे होगी। और तो और, अंग्रेजों ने ऐसी की तैसी कर रखी है।
6: चिंता मत कर, थोड़े दिनों की बात है, हम सब मिलकर अंग्रेजों को निकाल बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एकजुट होंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।
7: वो तो ठीक है, लेकिन
6: लेकिन लेकिन क्या?
7: मैं कह रहा था कि यदि मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मेरा काम हो जाता, घर में कुछ राशन भी आ जाता और बहन की शादी भी करनी है।
6: अरे उसकी चिंता तुम मत करो, जितना चाहिए कल आकर मुझसे महल में ले लो।
7: लेकिन महल में मुझे किसी ने रोका तो?
6: कोई नहीं रोकेगा, तुम आ जाना। कहना राजकुमार सुरेंद्र साय का सबसे जिगरी दोस्त हूँ मैं, दरबान को इसकी सूचना आज ही दे दूंगा।
7: ये ठीक रहेगा।
6: चल अब तो खुश हो जा यार।
5: राजमहल में सुरेंद्र साय की दादी रानी राजकुमारी अपने पोते का इंतजार कर रही हैं और कुछ ही देर में सुरेंद्र साय पहुंचते हैं।
6: आप अभी तक सोई नहीं दादी माँ?
8: तू कहाँ रह गया था रे,
0: कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ।
6: कुछ नहीं दादी माँ, संबलपुर की माटी को सूंघने चला गया था, बस वही दया मिल गया, उससे बातें करते करते देर हो गई।
0: अच्छा, कैसा है दया?
6: अरे क्या बताऊं दादी माँ, बता रहा था कि इस बार वार्नर खुद गांव आया था और सारी फसल ले गया, खाने को कुछ नहीं बचा है और बहन की शादी भी है।
0: अंग्रेजों की नीयत ठीक नहीं है बेटा। जब से ये लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर बनकर आया है, तब से रियासतों पर कुछ ज्यादा ही लगाम कसने की तैयारी हो रही है।
6: दादी माँ, उससे बड़ी चिंता मुझे जनता से उनके व्यवहार को लेकर है, वे अत्याचार कर रहे हैं। राजस्व के रूप में सारी फसल ही नहीं ले रहे, बल्कि रियासत की बहु बेटियों पर अत्याचार भी कर रहे हैं।
0: बहु बेटियों से अत्याचार कर रहे हैं?
6: हाँ दादी माँ, दया कह रहा था कि अगली बार आएंगे तो और ज्यादा कर चाहिए, अगर नहीं मिला तो घर की सारी चीजें जब्त कर लेंगे, यहाँ तक कि बहु बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे।
0: ऐसा कहा उन्होंने?
6: हाँ दादी माँ, मेरा तो खून खौल रहा है, इच्छा हो रही है कि वार्नर जब आए तो मैं उसका खून कर दूं।
0: नहीं बेटा, इतनी हड़बड़ी ठीक नहीं, ऐसा करने से तो स्थिति और बिगड़ जाएगी और हमारे पास सेना भी बहुत कम है।
6: तो नई भर्ती कर लेते हैं ना दादी माँ?
0: अभी सेना की नई भर्ती कैसे होगी, खजाना भी तो लगभग पूरा खाली हो चला है।
6: फिर क्या उपाय हो सकता है दादी माँ?
0: अंग्रेजों से तो छुपके लड़ने में ही दिमागदारी है, बस यही एक उपाय है।
6: लेकिन दादी माँ, क्या ये छल नहीं होगा?
0: जो आपसे छल करे उससे छल करना कैसा छल, वैसे भी ये लड़ाई तो लोकहित के लिए है और लोकहित में साम दाम दंड भेद सब जायज है।
6: लेकिन ये होगा कैसे?
0: सबसे पहले अपने जैसे लोगों को चुनो, उनको रास्ता सुझाओ, उनसे सलाह लो और अंग्रेजों का काम तमाम करो।
6: ये आपने अच्छी राह बताई दादी, मैं कल से ही सक्रिय हो जाता हूँ।
0: इतनी जल्दी नहीं बेटा, पहले खुद को तो साध लो।
6: मतलब
0: ये कि पहले अपना राज तिलक तो करवा लो बेटा।
6: अरे दादी, मुझसे बेहतर तो आप ही हो और जो बेहतर होता है उसी को राजा होना चाहिए ना।
0: अरे अब मेरी उम्र कहाँ रही, कुछ इस उम्र का भी तो ख्याल कर बेटा।
6: ठीक है दादी, जैसी आपकी आज्ञा।
0: बस जल्दी ही मैं मुनादी करवा देती हूँ कि अब सुरेंद्र सिंहासन का अधिकारी होने जा रहा है। अब जा कुछ खा ले और सो जा। अरे जा ना।
6: दादी मैं ये कह रहा।
0: हाँ हाँ बोलो बेटा।
6: कल दया आएगा दादी, उसे कुछ
0: क्या
6: रुपये की जरूरत है, उसने कहा है कल आएगा।
0: ठीक है, देखती हूँ।
8: सुनो सुनो सुनो, आने वाले महीने की 24 तारीख को रियासत के राजकुमार सुरेंद्र साय का संबलपुर रियासत की राजगद्दी पर राज्याभिषेक होने वाला है। सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो।
9: वार्नर साहब, अब तो आपने सुनी लिया ना कि रियासत में सुरेंद्र राय का राज्याभिषेक हो रहा है।
10: हमने सुना कि सुरेंद्र को किंग बनाया जा रहा है। हम तुमसे पूछता है कि तुमको क्यों नहीं बनाया जा रहा है?
9: वो तो रानी राजकुमारी को ही पता होगा।
10: अब मतलब सुरेंद्र तुमसे ज्यादा अच्छा है,
11: ज्यादा काबिल है?
9: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
10: फिर क्या बात है?
9: दरअसल मैं सुरेंद्र मुझसे काबिल नहीं, बस उम्र में बड़ा है, और फिर मैं चचेरा भाई हूँ ना, इसलिए राजा बनने का हक उसी का है।
10: अच्छा, तो तुम्हारे रियासत में ऐसा सिस्टम है?
9: हाँ वार्नर साहब, ऐसा ही होता है।
10: ठीक है, हम तुमको राजा बना देगा, पर बदले में तुम हमको क्या देगा? हुँ?
9: आप जो चाहे साहब, खून मांगेंगे तो खून भी दूंगा।
10: हमको खून नहीं चाहिए, हमको बहुत सारा रुपया चाहिए, यू नो मनी, और हाँ, हमको तुम्हारी सेना भी चाहिए।
9: रुपया लगभग कितना चाहिए?
10: 10 लाख।
9: ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा?
10: राजा बनना आए तो इतना तो देना पड़ेगा, नहीं तो तुम जा सकता है नारायण सिंह।
9: नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं रुपए देने के लिए तैयार हूँ।
10: इट्स गुड, तुम अपने आप को किंग समझाओ।
9: लेकिन अगले महीने तो सुरेंद्र का राज्य अभिषेक है।
10: इसके चिंता मत करो, अपने आप को किंग समझो नारायण सिंह।
9: अच्छा,
10: यालो विस्की पियो, पियो, नाउ यू आर माय फ्रेंड।
9: लेकिन मैं ये पीता नहीं।
10: टेक इट, नाउ यू आर अ किंग।
9: लेकिन
10: ओके, पियो पियो, शर्माओ नहीं।
9: नहीं नहीं वार्नर साहब,
10: पियो पियो बस।
0: अरे सुरेंद्र बेटा, बहुत अच्छे समय पर आ गए तुम।
6: क्या हुआ दादी माँ?
0: ये देखो, कोई चिट्ठी आई है।
6: अरे इसमें तो अंग्रेजों का ठप्पा लगा हुआ है।
0: अंग्रेजों का ठप्पा लगा हुआ है?
6: हाँ दादी, अंग्रेजों का ठप्पा।
0: जरा जल्दी से खोल के देख तो क्या लिखा है इन अंग्रेजों ने।
6: जी दादी, इसमें तो
0: क्या लिखा है बता भी। अब
6: इसमें लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया है कि संबलपुर की रियासत अब सीधे सरकार के अधीन रहेगी।
0: सीधे सरकार के अधीन रहेगी?
6: हाँ दादी, और आगे।
0: आगे क्या है सुरेंद्र?
6: आगे ये भी लिखा है कि अब रानी राजकुमारी को पेंशन दिया जा रहा है, तो वो राजमहल में नहीं रहेंगी।
0: हे राम, दुष्ट अंग्रेज कहीं के।
6: दादी माँ, इसमें ये भी लिखा है कि रियासत का काम काज देखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुंवर नारायण सिंह को नामित किया है।
0: अच्छा?
6: आशीर्वाद दो दादी माँ, मैं इन अंग्रेजों को नहीं छोड़ूंगा, कोई राजमहल में आकर दिखाए तो मैं उसका खून कर दूंगा, और ये नारायण सिंह, इसको तो मैं।
0: ज्यादा उत्तेजित ना हो बेटा, धैर्य से काम लेने का समय है, ये समय समझदारी दिखाने का है, ना कि वीरता।
6: दादी, जिस राजमहल को सजाने में आपने अपनी सारी उम्र निकाल दी, उससे दूर मैं आपको नहीं देख सकता।
0: और जिस सुरेंद्र को मैंने अपनी गोद में पाला हो, उसका बुरा मैं भी नहीं देख सकती, इसलिए मुझे फैसला लेने दो बेटा, जैसा कहती हूँ वैसा कर।
6: तो क्या करना है दादी माँ?
0: मैं राजमहल छोड़ू, उससे पहले तू ये राजमहल छोड़ दे बेटा, क्योंकि अंग्रेज और नारायण सिंह दोनों सबसे पहले तुझे ही मारने की कोशिश करेंगे।
6: अरे मैं अकेला उनके दांत खट्टे करने के लिए काफी हूँ दादी माँ।
0: अभी जोश नहीं, होश की जरूरत है बेटा, बस जैसा कह रही हूँ वैसा करते जा।
6: ठीक है दादी माँ, मैं राजमहल छोड़ दूंगा, फिर आगे क्या करूंगा?
0: आगे तुम्हें अपने जैसे युवाओं की खोज करना है और वतन की सेवा में लग जाना है। जब तक रियासत अंग्रेजों से मुक्त ना हो जाए, तब तक चैन की सांस नहीं लेना।
6: ऐसा ही होगा दादी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
0: विजयी भव बेटा, विजयी भव।
7: मुझे मालूम था महाराज कि राजा बनने के अधिकारी तो आप ही हैं।
12: मेरा क्या, बस मेरी काबिलियत और ऊपर वाले की इच्छा का संयोग समझो।
7: वही तो मैं कह रहा था।
12: कहो, आने का प्रयोजन कैसे हुआ?
7: बस पास से ही गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलकर बधाई देता चलो। महाराज की जय हो। अच्छा तो महाराज, अब मैं चलूं?
12: आइए आइए वार्नर साहब, आइए, बस आपका ही इंतजार हो रहा था।
10: कुंवर नारायण सिंह, तुम्हारा राजपाट कैसा चल रहा है?
12: राजपाट तो ठीक चल रहा है वार्नर साहब।
10: तुम्हें मालूम है कि सुरेंद्र तुम्हारे स्टेट पर अटैक करने वाला है?
12: अच्छा, मेरे राज्य पर चढ़ाई?
10: तुम्हारा नाई नारायण सिंह, हमारा बोलो आवर स्टेट।
12: आप हंस रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र आक्रमण क्यों करेगा?
10: तुम उसका राज्य छीनेगा और वो आक्रमण नहीं करेगा नारायण सिंह।
12: अब क्या होगा?
10: तुमको हम मदद करेगा। तुमको डरने का नहीं नारायण सिंह, तुम तो बस खिलाओ।
12: ये लीजिए वार्नर साहब।
10: तुम कौन हो?
12: ये हमारा मित्र है दया।
10: गुड गुड, ये व्हिस्की बहुत अच्छा है। चीयर्स।
7: क्या कहा?
12: अरे चीयर्स कहो, चीयर्स।
7: चीयर्स।
5: 1833 से 1857 तक का समय सुरेंद्र साय के लिए बहुत उथल पुथल भरा रहा। सुरेंद्र साय ने कई बार अंग्रेजों से लोहा लिया, नारायण ने हर बार अंग्रेजों का साथ दिया। इतिहास गवाह है कि कई स्थानों पर उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 1950 के आसपास अंग्रेजों ने छल से सुरेंद्र साय को संधि के लिए बुलाया और बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। इस दौरान उनकी पत्नी ने अंग्रेजों का सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
10: नारायण, हम तुमको शाबाशी देना चाहता है। 1857 के रिवोल्ट का तुम्हारे स्टेट में कोई ज्यादा असर नहीं।

0: I Pasa एक प्रॉब्लम I
1: अरे समस्या बताइए साहब, मैं चुटकियों में उसका समाधान निकालता हूँ।
0: वो तुम्हारे चुटकी का केलना है नारायण सिंह?
1: फिर कौन है?
0: It's सुरेंद्र सिंह। वो सुरेंद्र सिंह आई जिसने तुम्हारा और हमारा दोनों के नाक में दम कर रखा आई।
1: लेकिन वो तो हजारीबाग के जेल में बंद है।
0: हमको अभी अभी खबर मिला है कि वो अपने आप साथियों के साथ जेल से भाग गया है।
1: अरे बाप रे, अब मरे।
0: तुम डर रहा है नारायण, तुम डर रहा है?
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं।
2: सुरेंद्र दा, आप? वो भी इतनी रात को?
3: हाँ।
2: आओ सुरेंद्र दा, अंदर आओ।
3: मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 8 साथी भी हैं।
2: अरे तो इसमें क्या बात है, आप सभी अंदर आ जाइए।
3: और बता दया, रियासत के क्या हाल है?
2: रियासत के बारे में मुझे ज्यादा खबर नहीं है सुरेंद्र। जब से आप राजमहल से निकले हैं तब से मेरे कदम भी नहीं पड़े वहां।
3: वो तो पता चल ही जाएगा। इस बार बेहतर तैयारी के साथ दुर्ग पर आक्रमण करना होगा। विद्रोह की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना है, इसे भुना लेना चाहिए।
2: हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बार मौके को भुना लेना चाहिए।
4: हजारीबाग जेल से निकलकर सुरेंद्र साय ने अपने साथियों के साथ मिलकर युद्ध शुरू कर दिया। इस बार वो अंग्रेजों के दुर्ग पर अधिकार करने की स्थिति तक पहुंच गए, परंतु इस बार भी अंग्रेजों ने चालाकी से काम लेते हुए दुर्ग पर सफेद झंडा फहरा दिया। संधि वार्ता के लिए जब सुरेंद्र साय दुर्ग में पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और संबलपुर जेल में डाल दिया गया। पर सुरेंद्र सिंह जैसे वीर को साध पाना अंग्रेजों के बस में नहीं था। मात्र 3 दिन के अंदर ही फिरंगियों की आंखों में धूल झोंक कर वो फरार हो गए। इस बार 1858 से 1863 तक उन्होंने अंग्रेजों से कई मोर्चों पर युद्ध किया और हराया। बिहार और मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र भी सुरेंद्र साय ने अपने कार्यक्षेत्र में शामिल कर लिया। सुरेंद्र साय के इन कामों से अंग्रेजी सरकार बौखला उठी।
0: नारायण, तुम अभी तक सुरेंद्र को नहीं पकड़ सका आए, तुम्हारे लोगों पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं आए।
1: सर, ये केवल मेरी विफलता थोड़े है, सुरेंद्र के पीछे लगे तो आप भी हैं, वो भी पूरी सेना के साथ।
0: क्या बकता है नारायण?
1: सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस
0: हम तुमको आदेश देता आए कि 1 महीने में हमको सुरेंद्र सिंह चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारा स्टेट वापस ले लेगा।
1: नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिएगा।
0: तो हमको सुरेंद्र चाहिए, जिंदा या मुर्दा।
1: सर, वो कितना चालाक है ये तो आप जानते ही हो, 2 बार जेल तोड़कर फरार हो चुका है, वो पकड़ में आता ही नहीं।
0: नारायण, हमको इस बार कोई फॉल्ट नहीं चाहिए, नीट एंड क्लीन काम चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारा स्टेट छीन लेगा।
1: मैं कोशिश करता हूँ।
0: कोशिश नहीं नारायण सिंह, आई वांट सुरेंद्र साय।
1: ठीक है सर, सुरेंद्र आपको मिल जाएगा।
0: ग्रेट, सुरेंद्र मिल जाएगा। नारायण, व्हाट्स किलाव?
1: ये लीजिए सर।
0: डोंट बी बनाओ।
1: हाँ हाँ सर।
0: चीयर्स।
1: चीयर्स।
0: सुनो, हम तुमको एक बात बताता है।
1: क्या सर?
0: अगर तुम इंडियन हमारी मदद नहीं करेगा तो हम सरकार चलाने को नहीं सकता।
1: वो तो है सर।
0: चीयर्स।
1: चीयर्स।
4: दया सुरेंद्र साय की रणनीति जानने के लिए बहाने से उन्हें जंगल में बुलाता है।
3: इतने दिन तक कहाँ थे दया के निधि? अभी 3 सप्ताह पहले तुम्हारे घर गया था,
5: लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं था।
2: अरे मैं किसी काम से कहीं बाहर चला गया था, शायद इसीलिए।
5: आज फिर अचानक इस जंगल में मुलाकात करने का प्रयोजन?
2: कुछ नहीं सुरेंद्र भाई, देश प्रेम हिलोरे मार रहा है। फिर तुमसे बड़ा देशभक्त मेरे सामने अभी है भी कौन जिसकी मदद मैं कर सकूं?
5: चलो दया, आखिर उम्र के इस पड़ाव पर तुम्हें देशभक्ति का मतलब तो समझ में आया।
2: बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ?
5: अभी अगले सप्ताह बस्तर से सतपुड़ा तक की तरफ कूच करना।
2: अच्छा,
5: तुम हमारे साथ रहोगे और हमारी कार्य प्रणाली को समझोगे।
2: ठीक है, मैं तैयार हूँ।
5: बस एक बात का ध्यान रखना।
2: वो क्या?
5: कभी मरना भी पड़े तो मर जाना, लेकिन अपने साथियों के नाम अंग्रेजों को मत बताना।
2: लेकिन मुझे अभी कोई जिम्मेदारी चाहिए इसमें।
5: अच्छा ठीक है, ये पत्र तुम्हें बिलासपुर तक सकुशल पहुंचाना, इसके बाद हम सीधे सतपुड़ा में मिलते हैं।
2: ठीक है,
5: काम ठीक से करना, हम जल्द मिलेंगे।
1: अरे वार्नर साहब, ये लीजिए, विस्की पीजिए।
0: What happened नारायण, तुमको क्या हो गया भाई?
1: अरे पता चल गया।
0: क्या पता चल गया?
1: अरे सुरेंद्र का पता चल गया है, आज ही मेरे पास ये दया की चिट्ठी आई है।
0: Great, I can't believe this. Really, दया तो कमाल का आदमी है।
1: अरे पूरे 2 लाख में सौदा हुआ है सर।
0: ठीक है, अगर कब बरसाई है तो 2 लाख में सरकार से दिलवा दूंगा।
1: ये बहुत अच्छा रहेगा सर, ये लीजिए सर, चीयर्स।
0: ये समय विस्की पीने का समय नहीं है नारायण।
1: सर आप कहाँ जा रहे हैं?
0: जिधर आपको जाना चाहिए। फिर भी तुम अच्छा काम किया नारायण सिंह, उसके लिए तुम पियो। यो कैरी ऑन।
1: ठीक है सर।
4: इसके बाद वार्नर ने अपने सहयोगी हैमिल्टन के सहयोग से सुरेंद्र साय को पकड़ लिया। उन्हें पकड़ने के बाद बुरहानपुर के पास असीरगढ़ के अभेद्य किले में कैद कर दिया गया। दया और नारायण के सहयोग से वार्नर ने सुरेंद्र के रिश्तेदारों को भी पकड़ लिया।
0: आखिर तुम हमारी मुट्ठी में आ गया महाराज सुरेंद्र सिंह।
5: तुम तो क्या, तुम्हारी पूरी पलटन की मुट्ठी भी चाहे तो मुझे कैद नहीं कर सकती वार्नर। मुझे तुम जैसे नीच और कायर अंग्रेजों से नफरत है, मैं थूकता हूँ तुम्हारे ऊपर।
0: आपको गाली देता है, हम तुम्हारा टांग खींच लेगा।
5: मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: अभी तुमको फर्क पड़ेगा सुरेंद्र साय। सिपाही कहाँ है सुरेंद्र का फैमिली?
5: मेरे रिश्तेदारों को?
0: यस, तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारा रिश्तेदारों को। देखो तुम्हारे आँख के सामने हम उनका कैसा हाल करेगा।
5: मेरी आंखों के सामने मेरे रिश्तेदारों को कत्ल मत करो, मैं ये सब नहीं देख सकता।
0: ठीक आए, तुम रिश्तेदार क्या, अब तुम कुछ भी नहीं देख सकेगा। आप तुम सिर्फ सुन सकेगा सुरेंद्र साय।
5: कायर अंग्रेज मेरे रिश्तेदारों को सताएगा।
0: ये लो तुम्हारा आ गया सुरेंद्र साय।
5: मेरे कान अभी बाकी हैं कमीने, और मैं सुनना भी नहीं चाहता।
0: ओके, आम तुम्हारा ये विश भी पूरा करता है।
5: ओह ओह।

0: मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: इस प्रकार से असीरगढ़ के किले में सुरेंद्र साय को अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया गया। एक एक करके उनके पुत्रों और अन्य रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद उड़ीसा के इस महान क्रांतिकारी को 28 फरवरी 1884 को फांसी की सजा दी गई और सुरेंद्र साय के विद्रोह का दमन कर दिया गया। लेकिन सुरेंद्र साय ने उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों के मन में स्वतंत्रता की जो अलग जगाई, उसे अंग्रेज कभी नहीं बुझा सके।
2: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
3: You are listening to Sister Dipti from Johannesburg, South Africa, and you are listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. This is being heard on www.radiomadhuban.in. I'm in South Africa, but you can tune into this wherever you are in the world and stay tuned into this wonderful fragrance.
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। जागृति ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट किया हुआ कार्यक्रम है और हम अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पिछले कड़ी में हमने मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है और हमें मदद किया है इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञ हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आप दोनों साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं। लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है अनिद्रा के बारे में। यानी कि कई बार हम ये महिलाओं के अंदर देखते हैं कि दिन भर की मेहनत करने के बावजूद, थकान होने के बावजूद रात को चैन से सो नहीं पाते हैं या नींद नहीं आती है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो किसी बात की चिंता में पड़ी हुई है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कारण कुछ भी है, लेकिन उसका जो रूप है उनके जीवन में वो अनिद्रा के रूप में दिखता है। तो कई बार वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो अनिद्रा का कारण बनता है और हम एक चैन की नींद सोना क्यों जरूरी है और नींद अच्छी होने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है, आज इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ, जैसे हमने कहा कि पिछली कड़ी में हमें जिस तरीके से हर्षिता जी और वीरेंद्र जी ने मदद किया है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से, आप हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में अब अपनी सेवाएँ दे रहे हैं हरियाणा में और आज रेडियो मधुबन पे बने हुए हैं अपने अनुभवों से आप सभी को मदद करने के लिए। तो हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस दूसरे एपिसोड में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद
4: जी। तो हम आज आपसे ये सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक जो कॉमन बीमारी है या शायद इसको बीमारी कहे या ना कहे आप बता सकते हैं, अनिद्रा होना या सो नहीं पाना। महिलाएं दिन भर काम करती हैं बावजूद उनको ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, घर पे ही तो बैठी हुई थी। मगर उसका एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट में ये देखने को मिलता है कि वो सो नहीं पाती है। तो उसका क्या कारण हो सकते हैं और नींद ना होने से उनके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
6: नींद मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इंडिकेटर या सबसे बड़ा इशारा है। एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब वो नींद कितनी उचित है वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीपर होते हैं जो 4-5 घंटे सोकर ही एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं जिनको 10-11 घंटे का नींद चाहिए, बट उन्हें एवरेज अगर देखा जाए तो 7-9 घंटे का नींद जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य को चाहिए होता है अपने अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर कभी भी नींद में कुछ दिक्कत आ रही है, अनिद्रा आ रही है, अनिद्रा हो रही है तो हमें समझना होगा कि वह क्यों आ रही है, उसके कारण हमें ढूंढकर निकालने होंगे। अब अनिद्रा की जो बीमारी है वो या तो प्राइमरी इंसोमनिया हो सकता है जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप आ रही है जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ नींद कम हो रही है। वो या तो सिर्फ नींद कम हो रही है या फिर उम्र के साथ साथ नींद कम होती जा रही है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके नींद का समय कम होने लग पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते थे वो 16 घंटे 17 घंटे 20 घंटे सोते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद की ड्यूरेशन कम होती रहती है। अडल्ट लाइफ आने के बाद में आपकी नींद 7 से 8 घंटे की सेट हो जाती है, वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और जब उम्र ढलने लगती है या जेरियाट्रिक एज ग्रुप आने लगती है, जब आप 50-55 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तब आप नींद आपकी धीरे धीरे कम होकर 5-4 घंटे की रह जाती है। अगर आप उतनी नींद लेकर भी खुद को फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, जब आप सुबह उठे तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ है, फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, आपको काम करने में कोई थकान महसूस नहीं हो रही, तो मतलब आपकी नींद बिल्कुल ठीक ठाक है। पर जब ऐसा नहीं हो रहा तो वो अनिद्रा है। अब अनिद्रा के अगर कारणों में जाएंगे, जिसको हम सेकेंडरी इंसोमनिया बोलते हैं, तो वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब उसके कारण कुछ शारीरिक हो सकते हैं, आपको बुखार है, आपके शरीर में कुछ दर्दें हैं, आपको कोई और शारीरिक परेशानी है, डायबिटीज के अंदर में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाइपरटेंशन में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से निद्रा हो सकती है। या फिर कोई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद ज़्यादा भी होती है कम भी होती है, एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की दिक्कत जिसे बोलते हैं, उसमें भी नींद की दिक्कत आती है, या और कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर, जो ऐसी बड़ी मानसिक बीमारियां हैं, उनमें भी नींद कम या ज़्यादा होती रहती है।
4: जी सर, ये आपने बात तो सही कहा कि बीमारियां हो तो फिर नींद नहीं आती है, वो समझ में आता है कि ये इस कारण से हो रहा है। लेकिन एक आम तौर पे महिलाओं का अगर हम टेंडेंसी देखते हैं, ऐसी बड़ी बीमारियों के आइडेंटिफिकेशन तो उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, चाहे वो उनको आने वाली कल की चिंता हो या पूरे दिन में जिस प्रकार की बातें या फिर जिस तरीके के व्यवहार उसने सामना किया है वो उसको दिमाग में खा रहा है, या जो भी है मन को शांत नहीं कर पा रही है, अगर हम सरल भाषा में कहें, तो उस कारण से भी जब सो नहीं पाती हैं, तो ऐसे में वो क्या प्रैक्टिस करे ऐसे दिन भर में, या फिर रात को सोने से पहले वो ऐसा क्या खुद के लिए वैसा करे जिससे वो मन को शांत कर सके और वो सो सके।
6: अच्छी नींद के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे स्लीप हाइजीन बोलते हैं, जैसे हमारी डेंटल हाइजीन है, फिजिकल हाइजीन है, वैसे ही नींद, अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन होती है। उसके अंदर में कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपकी नींद लगभग ठीक हो जाएगी, अन्यथा वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ चिंता या कुछ कारणों की वजह से आपको नींद नहीं आ रही तो वो उससे ठीक हो जाएगी। उसमें सबसे जो ज़रूरी है वो है आपको अपनी नींद का समय फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे हर रोज इस समय सोने के लिए जाना है और इस समय उठना है, हफ्ते के 7 दिन रविवार को लेकर। अधिकतर हम देखते हैं कि लोग शनिवार रात को लेट नाइट तक जागते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर अगले दिन भी रहता है, अगली नींद भी आपकी खराब होगी। तो रोजाना एक समय पर सोना शुरू करें, रात को 9 बजे के बाद में किसी भी ब्राइट लाइट का एक्सपोजर कम से कम रखें, लाइक मोबाइल फोन का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद, टीवी का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद ना करें, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स स्टेट में चला जाना चाहता है। अगर वो एक्टिवेटिंग स्टेट में है तो हमें कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम बहुत देर तक फोन या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 10, 11, 12 बजे तक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो इमीडिएटली रेस्ट स्टेट में नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक उन्हीं वीडियोस को सबकॉन्शियस लेवल पे घुमाता रहेगा और चलाता रहेगा। इसलिए जब हम सुबह उठेंगे तो हम सो भी गए हैं, साथ वाला आदमी बोलेगा कि तू तो अच्छा खासा सो रहा था, खराटे ले रहा था और ये कर रहा था, बट आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद की क्वालिटी भी खराब हो गई। तो उसको ठीक करने के लिए आपको रात को 9 बजे के बाद ब्राइट लाइट एक्सपोजर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना है। तीसरी चीज जो होती है वो शाम को 5 बजे के बाद कैफीन इनटेक को कम कर दीजिए, जैसे चाय, कॉफी, रेडबुल, जो ऐसी चीजें जो एक्टिवेटिंग या जगाने वाली चीजें हैं, उनका इस्तेमाल शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि ब्रेन को कूल डाउन होने के लिए 3-4 घंटे मिले। अपने बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बिस्तर पे बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, बिस्तर पे बैठ के अगर खाना खा रहे हैं, तो उस चीज का अवॉइड करें, क्योंकि बिस्तर का आविष्कार सिर्फ सोने के लिए हुआ था। तो जब बिस्तर पे सिर्फ सोने के लिए जाएंगे तो ब्रेन को ये ऑटोमेटिक सिग्नल जाएंगे कि यहां पे मैंने सिर्फ सोना है। सोते समय कोशिश करें कि एब्सोल्यूट डार्क रहे कमरा, बिल्कुल अंधेरा रहे, रोशनी ना रहे बिल्कुल भी, टेम्परेचर हमेशा ठीक ठाक हो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा हो। और सोने से पहले कभी भी भारी काम मत करें, मतलब बहुत ज्यादा थकाने वाला काम मत करें कि शरीर में कोई पीड़ा रह जाए, तो उस वजह से भी नींद गड़बड़ होने लग पड़ती है। तो शाम के समय अगर एक्सरसाइज करनी है तो एकदम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, 10-15 मिनट का सैर कर लिया हल्का, बिना शरीर को ज्यादा कष्ट दिए हुए। और आई थिंक ये अगर चीजें करेंगे तो स्लीप हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। डॉक्टर हर्षिता, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं?
5: जब हम सोने जा रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी स्लीप हाइजीन एक हमारे लिए 6 से 7 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे ऐड ऑन करे हैं। इसमें बस मैं 2 से 3 पॉइंट्स और है जो ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका पिलो है उसका मेजर ध्यान रखें कि वो 3 से 4 इंच का पिलो है जो आपके नेक के लिए, और बिना पिलो लिए नहीं सोना है। या तो आप बेडशीट को फोल्ड करके सोएं, क्योंकि आपकी जो गर्दन की शेप है वो उस हिसाब से डिजाइन है, जो पिलो का साइज है वो कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए। आप उतना पिलो लगाकर ही सोएं, आपकी गर्दन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को सोते हुए एक एक्सरसाइज है जो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसको हम जैकॉब्सन रिलैक्सेशन मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो JPMR आप ये लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप करके सोते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको सोने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। ये एक्सरसाइज आप एक ऐसे नाइट रूटीन बना लें कि ये तो मुझे करके ही सोनी है, इसके बिना मुझे सोना ही नहीं है। आप फील करेंगे कि अगर ये पूरी स्लीप हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा और फ्रेश होगा। लास्ट चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब भी हम स्टिल कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, सब कुछ तो कर लिया, एक बुक उठाएं, पढ़ने लग जाएं, नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोरिंग काम हमें लगता है। बोरिंग काम करते हुए हम कैसे बच्चों को नींद आने लग जाती है पढ़ाई के नाम पे। बोरिंग से बुक उठाएं या फिर कुछ ऐसी जो कुछ शिक्षादायक हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव, कोई नोवेल, वो चीजें पढ़ने की जगह आप कुछ पॉजिटिव उठाएं, वो पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आपको जरूर नींद आ जाएगी। एक प्रॉपर 10-12 पॉइंट्स जो हमने मिलके बताए हैं, ये आप अगर करेंगे बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी।
7: जी, ये बहुत सारी अपने टिप्स दी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। वो महिलाएं जो शाम को निकल नहीं पाती हैं या जो भी हैं, ये सारी चीज़ें अपने बाहरी तौर पे एक फिजिकल कंफर्ट दे सकें और एक कॉन्शियस लेवल पे हमको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अभी सोना है तो सोने के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब शाम से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे, रात को मुझे ये सोना है तो ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जो सुबह से हमारे दिमाग में जो लोड है, सुबह से जो कैरी किया है हमने चीज़ें, वो भी कई बार सताते हैं। और जैसे आपने कहा कि लाइट होने से भी नींद नहीं आती है, तो वो भी एक फिजिकल ऐड ऑन वर्क है, लाइट्स बंद कर दिया, सब कुछ बंद किया, लेकिन जो दिमाग में जो चल रहा है, जो पीड़ा वो पकड़े हुए हैं या वो पीड़ा जो सता रही है, अगले दिन की चिंता हो या फिर जो सुबह से बातें हुई है, वो खुद को जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट में उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें?
5: इसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब सुबह से हम उठे, ऐसा तो नहीं है जीवन में चीज़ें होनी बंद हो गई, रिश्तेदारों ने कुछ कहना बंद कर दिया, या फिर परिवार वालों से टोन नहीं मिले, या फिर बच्चों ने कुछ गलत नहीं बोला। नॉर्मल है, सुबह उठते हैं उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, रात तक जब तक वो सोते हैं उनके लिए काम करते ही रहते हैं, और उनके अगले दिन उठने से पहले महिलाएं उठ जाती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आप जिनके लिए काम करते हैं उन्हीं से आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। हमें प्यार तो है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने आसपास के लोगों से, लेकिन जब हम चीजें सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं कि हम हर्ट होते हैं, हमें ये जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं लगती। क्योंकि वो हमें एट द एंड कर तो हर्ट ही रहे हैं, अपनी बातों से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं। अब आते हैं कि चीज़ें हम नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, हम परिवार

0: नहीं बदल सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें कुछ अपने मेंटल हेल्थ में चेंज करना है, वो ये है कि आपको वेंट आउट करना है, अपनी चीजों को बाहर निकालना है। अगर आप बाहर निकालते हैं तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आपको हल्का फील होता है। अब वेंट आउट करने के 3 से 4 तरीके मैं आज आपको बता सकती हूँ। एक जो लोग या महिलाएं लिख सकती हैं, वो एक डायरी राइटिंग करना शुरू करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी आपको कुछ भी ऐसा फील हुआ, जो आपको नेगेटिव फील होता है, किसी की कोई बातें फील होती हैं, वो आप लिखना शुरू करें। बेस्ट सोल्यूशन है अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए। दूसरा, जिनको आलस आता है कि मुझे लिखना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो नहीं लिख पाऊंगी इतना ज्यादा।
1: कई बार हो सकता है वो महिला को लिखना भी नहीं आता हो।
0: हाँ एग्जैक्टली, उसी के लिए मैंने बताया। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपके अंदर जो भी चीजें हैं, आपको किसी को बुरा भी लग रहा है किसी को कुछ कहना, लेकिन आप उसके फेस पे नहीं कह पा रहे, लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो राई का पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको उसको पहाड़ को नहीं बनने देना है, उसको वहीं के वहीं खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए आप बोलिए, आप बात करिए, ठीक है। तीसरा है कि अगर जिनको लिखना आता है वो उस इंसान के लिए डायरी राइटिंग कर सकते, जैसे हमने बोला वैसे ही लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ये 3 सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपके वो जो विचारों का एक लूप चल रहा है, जो टर्न ऑन की जगह ऑफ नहीं हो पा रहा, वो स्विच आप ऑफ कर सकते हैं।
1: जी, तो कुल मिला के यही है कि हम उसको स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हुआ है, जो चीज़ बीत गया है, उसको पकड़ के बैठे तो फिर उसका समाधान नहीं है। या तो हम उसके लिए सोल्यूशन खुद से ढूंढें, अगर नहीं ढूंढ पाता है तो किसी और से सोल्यूशन ले, लेकिन उसको वहाँ पे उसको ख़त्म कर दें।
0: नहीं, अंदर ना रखें, उसको बाहर निकालें। उसको जितना अंदर रखेंगे आप अपने आप को ही खराब कर रहे हैं, उसको बाहर निकालें। जैसे मैंने 4 तरीके बताए, चारों में से ये उनके लिए भी है जो लिख सकते हैं, उनके लिए भी है जो नहीं भी लिख सकते, नहीं भी पढ़ सकते। चारों में से जो आपको सेट बैठता है, आप वैसे वेंट आउट करें, बट करें जरूर। किसी को अपना फ्रेंड बनाएं या कुछ कैसे भी, बट आप वेंट आउट जरूर करें।
1: जी, मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहती हूँ। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें हमारी लाइफस्टाइल में कि ये मेरी नींद की डिसऑर्डर या इंसोमनिया या निद्रा, जिस भी कारण से जो नींद डिस्टर्ब हुआ है, उस कारण से ये मेरी लाइफस्टाइल में चीज़ें आ रही है या फिर मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो कई बार जैसे हेडेक है, क्रॉनिक हो जाता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो कई बार ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मैंने नींद पूरा नहीं किया या फिर टाइम पे खाना नहीं खाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन होकर के उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरीके से होता है। तो फिर ये अनिद्रा से किस प्रकार की हमारी लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर हमारे जीवन शैली में क्या ऐसे नुकसान दिखते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ, मुझे ये नींद ना करने के कारण मेरे अंदर ये दिख रहा है, मुझे सामने वाले व्यक्ति को या किसी को ब्लेम करने की जगह मुझे खुद को ठीक करना है।
2: देखिए, सबसे पहले एक अच्छी नींद का इंडिकेटर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो है अगली सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप सुबह उठे तो आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं अगले दिन के चैलेंजेस को लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपकी नींद अच्छी हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नींद का समय से उतना लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो 5 घंटे सोकर भी अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश होते हैं और कुछ लोग 12 घंटे सोने के बाद में अगले दिन सुबह फ्रेश फील करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठे तो आपका मन कितना शांत है, आपका मन कितना संतुलित है चीजों को हैंडल करने के लिए, अगले दिन के काम करने के लिए। सिर्फ मन ही नहीं, शारीरिक भी। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको शारीरिक रूप से भी थका थका लगेगा, आपको काम करने में एनर्जी महसूस नहीं होगी, जिस तेजी से आप भाग सकते हैं आप उस तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन है अच्छी नींद होने का। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आप बिना बात के बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बातचीत में सबके साथ में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है, किसी की छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बुरी लग रही हैं जो कि पहले नहीं लगती थी, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना होगा कि मेरी नींद ठीक हो रही है या नहीं, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ या नहीं सो पा रही। उसके अलावा अगर आपकी शारीरिक कुछ बीमारियां, अगर आपका हाइपरटेंशन अचानक से बीपी बढ़ने लग पड़ा है, आपकी शुगर ठीक नहीं रह रही, आप खाना ठीक ठाक परहेज कर रही हैं फिर भी दवाई भी ले रही हैं फिर भी शुगर ठीक नहीं रह रही, तो तब भी आपको उसी समय आप ध्यान कीजिए कि आपकी नींद 90% चांस है कि आपकी नींद ठीक नहीं हो रही, क्योंकि नींद से फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज आते हैं। तो आपके जो बीमारियां आपको चल रही हैं थायराइड की, शुगर की, बीपी की, उसमें गड़बड़ आएगी, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप एनर्जी, आपके काम के लिए प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ेगी और आपके बिहेवियर में लोग देख पाएंगे और आपको बोल पाएंगे कि पहले तो तू इतना चिड़चिड़ी नहीं हुआ करती थी, अब तू क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा कर रही है, क्यों हर बात को इतना दिल से लगा रही है, और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
1: जी, सो हमारी जीवन में जब अनयूजुअल बिहेवियर को हम खुद नोटिस करते हैं तो उसमें हम अपनी नींद को चेक करना बहुत जरूरी है।
2: जी,
1: इसके अलावा कोई और मेथड्स या कोई और पैरामीटर्स जो आपको लगता है कि इन चीज़ों पे नींद के लिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, खास करके एज वाइज स्लीपिंग ऑर्डर्स में? जैसे आपने कहा कि एज के अनुसार स्लीप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होते जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आजकल हम यंग एज गर्ल्स को देखते हैं, वो नौकरी के कारण है या जैसे भी, लेट नाइट सोना, और फिर वो लेट नाइट सोने से कई बार हम ये भी डॉक्टर्स के साथ या किसी से सुनने को मिलता है कि मोटापा बढ़ने में भी नींद का बहुत,
2: बिल्कुल मोटापा बढ़ने में, हार्मोन्स चेंज होने में, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है लड़कियों के अंदर में, मोटापा बढ़ता है, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है, हार्मोनल चेंज होने लग पड़ते हैं लड़कियों के अंदर में, वो सबका नींद के साथ में रिलेशन है। तो एक अच्छी नींद जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को आइदर पूरा कंट्रोल कर देती है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कंट्रोल करने में मदद करती है, और दवाइयों का असर भी ज़्यादा बेटर होता है अगर आपकी नींद ठीक ठाक है।
1: जी, ये तो यंग एज गर्ल्स के लिए आपने कहा कि इस प्रकार की बीमारियों से वो बच सकती हैं अगर वो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती हैं। तो ये जो 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे के बाद जो सोते हैं उससे क्या असर पड़ता है लाइफ में?
2: जब आप लगातार 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसा करके, देखिए सबसे पहले हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भगवान ने चीज़ों को बनाया तो दिन और रात जब बने तो रात नींद के लिए दी गई, तो इसलिए समय को उसी तरह से बनाया गया कि हमारे शरीर के अंदर में क्लॉक होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सिकार्डियन रिदम, वो डिसाइड करती है कि हमें कब सोना है। जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारी बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल चेंज होने लग पड़ते हैं अपने आप से, और वो भगवान ने वैसे ही बना के दिए। जब वो केमिकल चेंज आने लगते हैं तो हमें अपने आप से नींद आने लग पड़ती है और हम एक समय के बाद सो जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके बाद फिर से हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होने लगते हैं और हम दोबारा से जाग जाते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन है, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं जो भगवान ने बनाकर भेजी है। पर जब हम उस क्लॉक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, जो किसी भी भगवान की बनाई हुई चीज़ से जब हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस या उसके रिजल्ट तो आएंगे। तो जब हम बहुत देर तक रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पर सोने को अवॉइड कर रहे हैं और उसकी जगह हम लोग उसको दिन में सोने को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो सोने का समय उन्होंने चेंज कर दिया और रात को 3-4 बजे सोते हैं फिर सुबह 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो उसके शरीर को अपने नुकसान होते हैं, उसके शरीर को नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान होते हैं उसके, क्योंकि हम नेचर की बनाई हुई चीज़ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: तो ऐसे में क्या डिस्टर्बेंसेस देखते हैं साइकोलॉजिकली या फिजिकली?
2: लोग बहुत चिड़चिड़े रहने लग पड़ते हैं, बिहेवियरल इशू आने लग पड़ते हैं, जब आप सुबह नहीं उठ रहे, जब आप लेट उठ रहे हैं तो आपका दिन काम करने का बहुत छोटा हो जाता है, आपका लोगों से मिलने का समय बहुत छोटा हो जाता है। देखिए अगर आप 4 बजे तक जाग रहे हैं रात को तो रात के समय तो कोई आपसे नहीं मिल रहा, तो जो आपका ह्यूमन टच का जो काम है जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं वो आपका समय अपने आप से छोटा हो जाएगा अगर आप 2 बजे सोकर उठ रहे हैं, 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक 3-4 घंटे ही आप अपने काम कर पाएंगे, बाकी सब काम ऐसे हैं जो आप अकेले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के लोग बिना वजह गुस्सा रहते हैं, काम करने में उनका जो ध्यान है वो कम होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ती है और उनको जो शारीरिक नुकसान है वो भी होने लग पड़ते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि आपकी बीपी, शुगर की समस्याएं और ये सब प्रॉब्लम भी आने लग पड़ती हैं।
1: लेकिन कई युवा महिलाएं जो इस तरीके

0: और हम तो बचपन से मतलब सिखाया गया है कि सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं सुबह, अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो आई थिंक उससे ज्यादा प्रोडक्टिव समय आपको कोई नहीं मिलेगा।
1: जी, सो लास्ट में व्हाट इज द आइडियल टाइम कि यही लास्ट आवर है, इसके बाद जागना नहीं चाहिए, इस समय वो सोना है एंड दिस इज द लास्ट आवर, इसके बाद सोना नहीं।
0: देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से तो हमें बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। हमारा जो नींद का समय है वो 8-8:30 बजे बनता है और सुबह जल्दी उठना, उसके साथ में लगभग 4-4:30 बजे उठ जाना, तो 8 घंटे की नींद भी हो रही है और हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं। बट फिर भी आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से अगर आप 10 बजे के आसपास भी सो रहे हैं और सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं तो आई थिंक वो समय आपके लिए बहुत ठीक है।
1: जी, लेकिन 10 के बाद फिर जागना कोई फायदेमंद नहीं है।
0: नहीं।
1: थैंक यू सो मच आप दोनों को, वीरेंद्र जी और हर्षिता जी। हमारी जो ये स्लीप हाइजीन, आज एक नया शब्द हमको सीखने को मिला है, और आइडियल टाइम क्या है सोने का और नहीं सोने के कारण समय पे हम और सही तरीके से उससे क्या नुकसान होता है और उसको कैसे ठीक करना है, सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन कि हम उसको कैसे ठीक करें, आज आप दोनों ने हमें उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। अनिद्रा के बारे में, खास करके महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जागरूकता इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक जीवन मूल्य के बारे में हम बात करेंगे और आज हमारे पास जो एक्सपर्ट है उनके पास बहुत सारे अनुभव है। लगभग 24 सालों के सफ़र उन्होंने तय किया है और काफ़ी अनुभवी के धनी है। उनका नाम है अश्मिता दीदी और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप सोच रहे होंगे फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे हम एक घंटा बात कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस मूल्य के बारे में इसको कैसे अपनाया जाए ये आप जानते रहेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी राजस्थान के बालोतरा सेवा केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैनेजमेंट ट्रेनर और राजयोग मेडिटेशन की अनुभवी शिक्षिका भी है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में MSc तथा सेल्फ मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट में MBA की डिग्री प्राप्त की है। बीके अस्मिता दीदी वर्ष 1994 से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं और 2001 से समर्पित जीवन जी रही हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक उद्योगों, सरकारी कार्यालयों, सेना, अर्धसैनिक बलों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट और राजयोग मेडिटेशन जैसे विषयों पर सैकड़ों कार्यशालाएं आयोजित कर चुकी हैं। वर्तमान में आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट विंग की कार्यकारी सदस्य भी हैं और सुरक्षा सेवा विंग की फैकल्टी के रूप में सक्रिय रूप में अपनी सेवाएँ दे रही हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, अस्मिता दीदी हमारे बीच में है। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन रोशनी कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू, ओम शांति।
0: जी तो दीदी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रोफाइल में तो हमने देखा आपने क्या कुछ किया है, तो जब आप जैसे एक फील्ड से दूसरे फील्ड में गए होंगे तो आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा या फ्लेक्सिबल रखा होगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य क्या है इसके बारे में बताएं।
1: फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम हिंदी में लचीलापन कहते हैं
0: जी,
1: और इसका मतलब होता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण को भी बदल पाना
0: जी।
1: क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमें अपने आप को बदलने के लिए डिमांड करती हैं और यदि ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को रिजिड रखते हैं तो फिर हम पीछे रह जाते हैं, और यदि वैसी परिस्थितियों में हम अपने आप को जैसा समय डिमांड कर रहा है हम अपने आप को बदल पाते हैं तो फिर हम उस बहाव के साथ अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो परिवर्तन ये एक नेवर एंडिंग प्रक्रिया है जो निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है। जीवन में बहुत सी बातों को लेकर बदलाव आते रहते हैं, तो ऐसे में हमारे अंदर ये लचीलेपन के गुण का बहुत ही अधिक महत्व होता है
0: जी। तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट दोनों एक है या थोड़ा थोड़ा अलग है?
1: जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है वही एडजस्ट कर पाता है।
0: ओके,
1: तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी में एडजस्टमेंट भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में एक्सेप्टेंस भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में लेट गो करना भी मनुष्य को आता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है या एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, सुना होगा गिरगिट, वो आवश्यकता प्रमाण अपने रंग को बदल सकता है। पत्तों के बीच है तो हरा कलर, डालियों के बीच है तो अपना ब्राउन कलर बना लेता है, तो जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। इसी प्रकार परिस्थितियां कई प्रकार से हमें ठोकर मार देने का प्रयास कर सकती हैं, हमारी टेस्ट लेने हमारे सामने आ सकती हैं
0: जी।
1: लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल हैं, हमें पता है कि ऐसे समय में हमें अपने जीवन में कैसा बदलाव करना है, तो वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में हार नहीं मानता है और वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है
0: जी। बिल्कुल, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाने के लिए सबसे शुरुआती दौर में हमें क्या करना चाहिए?
1: जीवन में फ्लेक्सिबल होने के लिए हमें अपने अंदर अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मान लीजिए मेरे घर में AC है और 24 hours AC ऑन होता है, मैं बहुत वेल टू डू फैमिली से हूँ, लेकिन मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे जो अकोमोडेशन मिलेगा, मान लीजिए मैं माउंट आबू यहाँ आई हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे यहाँ पे 24 hours AC वाला कमरा मिलेगा। तो मेरे अंदर एक मानसिकता होनी चाहिए कि भाई मुझे जब जैसी स्थिति में रहना पड़े आई एम रेडी। हिंदी में कहावत है, कभी घी घणा, कभी जौ चना और कभी वो भी मना। मीन मैं तैयार हूँ
0: जी,
1: मुझे कभी खूब घी खाने को भी मिलेगा, आई एम हैप्पी विद दैट। कभी मुझे जौ चने से मैनेज करना पड़ेगा, आई एम फाइन विद दैट। और अगर मुझे कभी वो भी नहीं मिला कि भी नहीं आज तो फास्टिंग पे रहना पड़ेगा, तो भी मैं खुश हूँ, तो भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो सिर्फ एक इट्स ओनली अ थॉट अवे, एक एक विचार अपने अंदर भरने की जरूरत है कि सब दिन होत न एक समान।
0: जी,
1: जीवन में सदैव सब कुछ नहीं मिल सकता के और हर दिन एक जैसा नहीं होता है। परंतु अगर मेरे में ये समझ है कि भाई ठीक है, जैसे भी बातें मेरे लाइफ में आ रही हैं, मुझे उसके साथ अपने आप को ढाल के खुश रहना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है?
0: खुश रहना।
1: जब मानव जीवन मिला है तो मुझे खुश रहना है, तो जब वो खुशी हमारा प्रायोरिटी बन जाता है तो फिर हम हर चीज में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना, हर बात के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, वो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। तो एक हमारे सामने विजन होना चाहिए, हमारे जीवन में हमें चाहिए क्या, हम खुशी खुशी के साथ अपने प्रतिपल को बिताना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी बिल्कुल। और दीदी ने जैसे कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम धारण करते हैं तो बहुत सारे और मूल्यों को हम आकर्षित करते हैं। तो जो आध्यात्मिक जीवन आप जी रहे हैं और इतने सारे पढ़ाई के बाद आपने इस शिक्षा में और इस पथ पर चलने के लिए आपने निश्चय किया, निर्णय लिया, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ने आपको कैसे मदद किया है?
1: फ्लेक्सिबिलिटी ने बहुत हेल्प किया है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे यदि कोई कार्य करने के लिए दिया जाए तो मैं उसे मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ करती हूँ, लेकिन जब भी हम कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं वो एक टीम वर्क होता है
0: जी।
1: और आपकी टीम में इतने सारे लोग होते हैं, नॉट नेसेसरी कि भी आप जितने टाइम पंक्चुअल है, आप जितना एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं उतनी एक्यूरेसी और उतनी टाइम पंक्चुअलिटी दूसरों में भी हो। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वो चीजें जब सामने वाले में नहीं होता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें समझाया कि भी पांच उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। हम जैसे हैं हर व्यक्ति वैसा हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो आध्यात्मिक समझ कि जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा हम स्वीकार करें, मैं पंक्चुअल हूँ दैट्स फाइन, दूसरा नहीं है दैट्स ऑल्सो फाइन, मैं बहुत एक्यूरेटली करती हूँ बहुत अच्छी बात है, भाई सामने वाला उतना एक्यूरेसी से नहीं कर सकता, दैट्स ओके।
0: जी जी, कई बार देखा जाता है कि सामने वाला अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे कार्य हाँ हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सही तरीके से या सहज रीति से नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें इरिटेशन आ जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इरिटेशन कोई इलाज तो है नहीं
0: जी।
1: हम इरिटेट होके सामने वाले को मजबूर तो नहीं कर सकते कि भाई जल्दी करो। मान लीजिए दूसरा कोई है बहुत स्लो है और मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, क्या मेरे इरिटेट होने से वो फास्ट हो जाएंगे?
0: नहीं,
1: वो तो और ही लो फील करेंगे कि हाँ ये तो कितने है ना कैपेबल है, मैं तो इनकैपेबल हूँ, उनके अंदर का वो जो सेल्फ एस्टीम है वो तो और ही लो होता जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस और ही घट जाएगी। रादर मुझे इरिटेट होने के बजाय वो उस आत्मा की या उस व्यक्ति की मजबूरी है या वो उसकी वीकनेस है, उसको समझते हुए मैं उसे बहुत प्यार से एम्पावर करती हूँ
0: जी,
1: किसी आपकी जो स्पीड है ना थोड़ा सा तो आप बढ़ा सकते हो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि भाई डे वन वो मेरी स्पीड को अचीव कर लेगी, बट हाँ ठीक है, हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम अपने उदाहरण को प्रस्तुत करके उन्हें बता सकते हैं, पता है हम भी कभी बहुत स्लो हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने थोड़ा सा ट्राई किया, अपने पे थोड़ी मेहनत की तो हमारी स्पीड अच्छी हो गई, एंड आई होप आप तो बहुत अच्छे हो। उनके थोड़े इस सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना होगा, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप भी थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, थोड़ी तो स्पीड बढ़ सकती है, तो आपको भी अच्छा होगा, आप इतना टाइम किसी कार्य में लगा रहे हो आपकी कम टाइम में हो जाएगा, आपके पास लीजर आवर बचेगा। तो हम किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, कोई भी चीज की कमी है जिसके कारण हमें दिक्कत हो रही है तो पहली बात है हम उसके साथ एडजस्ट करें, हम फ्लेक्सिबल रहें कि ठीक है वो दो घंटे में करे तो वाह, ढाई घंटे लग जाए तो भी वाह, तीन घंटे लग जाए तो भी वाह, बट एट द सेम टाइम हमें उनको एम्पावर भी करना है, हमें कोशिश भी करनी है कि वो थोड़ा अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके।
0: जी बिल्कुल, लेकिन कई बार हम कोशिश करते हैं तो सामने वाले के ईगो और हमारे ईगो में टक्कर हो ही जाती है, तो जैसे आपने कहा एम्पावर करें, ऐसा कैसे शब्दों में और कैसे बोले कि ताकि उनको भी हर्ट फील ना हो और हम भी मतलब इफेक्ट में ना आए।
1: जी, कई बार हमें परमात्मा की शिक्षाओं में ये सारी बातों की समझ प्राप्त होती है कि किसी को भी हम यदि कोई शिक्षा दे रहे हैं या कोई करेक्शन हम उन्हें बता रहे हैं कि आप ये करिए, तो जो व्यवहारिक जीवन में हमने एक चीज को महसूस किया है कि हमें पहले उनकी तारीफ करनी है।
0: ओके।
1: उनकी दो अच्छी बातों को रिकॉग्नाइज करना है कि देखिए आपने वो इतना डिफिकल्ट काम था पर आपने वो कर दिया, इट वॉज सो गुड, कि भाई आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे से डील किया, इट वॉज टू गुड। और ऐसी एक छोटी सी बात आई, आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, आप चाहे तो इसे इजीली डील कर सकते हो और आप करते भी आए हो, लेकिन पता नहीं उस दिन आपको क्या हो गया, आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इसकी वजह अगर ऐसे कर लेते ना तो बहुत अच्छा हो जाता। तो जब हम उनको प्रेस कर रहे हैं, जब हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। और उसके बाद हम जब उन्हें दो ऐसी और नई बातें बताते हैं जो उन्हें अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो स्वीकार करना उनके लिए बहुत सहज हो जाता है।
0: जी।
1: तो हमने अपने बड़ों से सीखा है कि भाई कभी भी आपको अगर अप्रिशिएट करना है, द अप्रिशिएशन शुड ऑलवेज बी इन द पब्लिक, आप पब्लिक में अप्रिशिएट करिए कि फलाने फला काम किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ये किया। और कभी हमें करेक्शन देना होता है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, तो गलतियां मनुष्य मात्र से हो जाती हैं।
0: जी।
1: तो किसी से हो भी गई और हम उन्हें एम्पावर करना चाहते हैं तो हम उन्हें आराम से अपने पास बुलाएं और प्राइवेट में हम पहले दो तारीफ करके उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं।
0: जी।
1: और फिर हम उन्हें प्यार से बोले कि भाई आपको ये बदलाव लाना है, ये करेक्शन करना है या बेटरमेंट लाना है, तो ये अनुभव कहता है कि अगर हमारी भाषा में नम्रता है, मधुरता है और उस आत्मा के प्रति रहम की भावना है,
0: जी,
1: उसको ऊपर उठाने की भावना है, तो वास्तव में हमारी भावनाएं ही काम करती है और उन्हें हमारी बातों को स्वीकार करना मानना सहज हो जाता है।
0: जी जी बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोई परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती तब फ्लेक्सिबल बनने रहने में ये क्या हमें मदद करते हैं उस परिस्थिति से उभरने के लिए?
1: बिल्कुल। कई बार बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। आज मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत की और मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बहुत मेहनत की कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं सोच के मैं दुखी होती रहूं, या तो मैं ये समझ लूं कि भाई मेहनत का फल कभी बेकार
0: नहीं
1: जाता है, मैं अपने अंदर वो धैर्य बनाए रखती हूँ कि भी मैंने जो मेहनत करी है उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट है, हो सकता है मैं जिस तरीके से और जिस समय रिजल्ट चाहती थी वो मुझे नहीं मिला, बट मेरी मेहनत बेकार बेशक नहीं गई है, उसका भी रिजल्ट मुझे मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक बार एक राजा थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक दिन एक महात्मा उनके राज्य में आए थे तो उनको लगा कि मैं कुछ तो सलाह लूं, पर उन्हें लगा सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, मैं क्या सलाह लूं उनसे। फिर उनको लगा कि भी ठीक है आज सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन कल की क्या गारंटी है, सभी बुरे दिन आ भी सकते हैं। तो महात्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान की और आपकी मेहरबानी से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे राज्य में भी सब कुछ अच्छा है, खुशहाली है, लेकिन मुझे अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भाई बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे वो सलाह दीजिए।
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्हें कागज पे कुछ उन्होंने एक मंत्र लिखा, कुछ एक सुझाव लिखा और राजा ने जो अंगूठी पहन रखी थी उस अंगूठी में जो नग लगा हुआ था उस नग के नीचे उन्होंने कागज को फोल्ड करके उसके नीचे रख दिया और कहा इसे आप निकालना नहीं।
0: जी।
1: जब आपको ऐसी हालात आए और आपको लगे कि अब आगे क्या, तब आप इसे जरूर खोल के पढ़ लीजिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, राजा ने अंगूठी पहन ली। एक बारी राजा के राज्य पर हमला हुआ और हमले में राजा को अपना राज्य हारना पड़ा, गंवाना पड़ा। अब आप सोचिए एक राजा का राज्य ही चला गया तो उसके लिए रहा ही क्या, तो राजा बहुत चिंतित व्यथित थे। राजा को सोच चलने लगा कि अब क्या, तो उनको अचानक से याद आई कि महात्मा जी ने अंगूठी में नग के नीचे कुछ मंत्र लिखा हुआ है जो उन्होंने उसे निकाला और उसे पढ़ा, तो उसपे लिखा था ये समय भी गुजर जाएगा। और जैसे ही उन्होंने इस बात को पढ़ा उनकी आंखों में चमक आ गई
0: जी,
1: उनके अंदर का आत्मविश्वास जो थोड़ा खोने लगा था वो जागृत हो गया, उनके अंदर धीरज आ गया कि ये समय भी
0: बीत जाएगा,
1: ये समय भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने हिम्मत जुटा के फिर से आक्रमण किया, किसी प्रकार से उन्होंने सब कुछ साधन जुटाए और फिर अपना राज्य वापस उन्हें मिल गया
0: जी।
1: तो फिर भाई आज जो समय आया है कल के समय से अलग है, और कल जो समय आने वाला है वो आज के समय से अलग होगा। तो ये सारी चीजें हमें हर परिस्थिति के साथ मुकाबला करने में मदद करती हैं।
0: जी बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जब घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए और हमारी योजना बदल जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे दिखा सकते हैं वहाँ पर?
1: मान लीजिए मैंने आज प्लान किया था कि बच्चों को लेके मैं कहीं पे घूमने के लिए जाऊंगी, लेकिन मेहमान आ गए और मेरे बच्चे बहुत मतलब ईगर थे कि भी आज तो पार्क में जाएंगे, आज तो कहीं जाएंगे, लेकिन अब मेहमान को तो कुछ कह नहीं सकते कि भी आप क्यों आ गए
0: जी।
1: तो उसके कारण हमारा जाना कैंसिल हो गया या फिर नहीं हो पा रहा है,

0: अगर हम अपने मन को प्रिपेयर करते हैं
1: जी,
0: ऐसी अचानक वाली बातें जो हमारे जीवन में आती हैं, उनके साथ अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए, जो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे
1: जी,
0: हमें अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है कि हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन योजनाएं हर समय हमारे अनुसार चलेंगी वो आवश्यक
1: नहीं है,
0: नहीं है
1: जी।
0: तो कभी योजना बदल भी जाए तो हमें उसमें चिंतित नहीं होना है। एक सोच कि भाई जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, आज यदि नहीं जाना किसी कारणवश हो पाया तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, आज मेहमान हमारे घर आ गए तो वो मेरे लिए आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर काम आती है जब हम अपने कंफर्ट जोन को बहुत अच्छा बढ़ा लेते हैं
1: जी। कंफर्ट जोन की बात आज मुझे लगता है हर सोशल मीडिया में आप सुन सकते हैं कि लोग कहते हैं कि फेस करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वो बनने से पहले आप अपने आप को सोमान दो ताकि आप बन गए होकर के अफर्मेशंस दो, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: हमारे मन के विचार एक्चुअली मैनिफेस्ट होते हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। तो जब हम एक विजन बनाते हैं कि हम ये बन गए हैं, हम ये बन रहे हैं, मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है और वो सोच रहा है मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकलता हूँ, तो अपने अंदर जो एनर्जी है या जो कॉस्मिक एनर्जी है, हम जो बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार विजन में लाते हैं, वही चीज़ें घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मुझे क्या दिक्कत है अच्छा सोचने में?
1: लेकिन कई बार लगता है ना हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से।
0: पर झूठ उम्मीद है।
1: ओके।
0: उम्मीद है। ऐसे भी रियल लाइफ केसेस हमारे सामने हैं जहां पर डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया है और कह दिया है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, और वैसे केस में भी पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए
1: जी
0: लोग उस कठिन बीमारी से भी बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये झूठ तो नहीं है ना
1: जी, मनोबल है और होप yes, है जी,
0: ये सत्य हो सकता है। तो एक उम्मीद के साथ हम अच्छा सोच रहे हैं, और जितना अच्छा हम सोच रहे हैं, मान लीजिए उतना पूरा का पूरा ना हो, थोड़ा हो जाए तो भी क्या दिक्कत है
1: जी।
0: तो नेगेटिव सोच के नेगेटिव हालातों को इनवाइट करने से तो अच्छा है पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव हालातों को इनवाइट करें
1: जी। जैसे एक क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स फेस नहीं कर पाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर कई बार आप नए नए ऑफिसेस में गए हो, आप अपने सीनियर्स को फेस नहीं कर पाते हो और कंपैरिजन कॉम्पिटिशन्स के माहौल रहते हैं, तो वहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके फ्लेक्सिबल कैसे बन सकते हैं?
0: सबके व्यवहार एक जैसे नहीं होते हैं। अक्सर यही होता है कि हमें जो अच्छा मिला हुआ होता है ना, हम उस पे गौर नहीं करते हैं। मान लीजिए आज मेरी जॉब एनटीपीसी में है फॉर एग्जांपल, तो एनटीपीसी में बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो मुझे नहीं दिख रहा है, पर वहां जो शॉर्टकमिंग है वो मुझे दिख रहा है
1: जी।
0: मैं कंपेयर करती हूँ कि भाई ओएनजीसी में तो ऐसा है, एनटीपीसी में तो ऐसा चल रहा है, ओएनजीसी फार बेटर है। लेकिन अगर अनुभव कहता है अगर मैं एनटीपीसी छोड़ के ओएनजीसी में जाऊंगी तो ओएनजीसी में मुझे लगेगा एनटीपीसी में तो वो अच्छा था
1: जी,
0: फिर मुझे यहाँ वाली जो अच्छाई है ना वो फिर मुझे याद आने लगती है जो शायद से ओएनजीसी में मिसिंग है। इसलिए कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं
1: जी।
0: तो ये इंसान के मन की फितरत होती है कि जो उसे मिला हुआ है वो उसकी कीमत को नहीं समझ रहा होता है, और जो उसे नहीं मिला हुआ होता है वो उसे बहुत कीमती समझता है। लेकिन जो हमें मिला है यदि हम उसके इम्पोर्टेंस को समझ लें, तो हमें इन चीजों के साथ एडजस्ट करना, लोगों के साथ एडजस्ट करना, वो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। और रही बात लोगों के साथ एडजस्ट करना, मान लीजिए मेरे बॉस हैं थोड़े गुस्सैल हैं या ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, या बहुत ज्यादा वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट हमें देते रहते हैं जिसका बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर होता है। अब हम बॉस को चेंज तो नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन क्या है वो हमें देखना है। हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है इनके कारण से मेरी कैपेबिलिटी
1: बढ़ रही है
0: और बढ़ ही जाएगी, तो अच्छी बात है कि हम थोड़ा फास्ट होना लर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है कि हम थोड़ा और स्मार्ट वे में वर्क करना सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें काम आती है।
1: अपने आप से बात करनी चाहिए निरंतर पॉजिटिव वे में।
0: हाँ जी
1: जी, जैसे कंपैरिजन हर पल हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है क्योंकि ऑफिस के माहौल ऐसा है, आपको उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, आपको सुबह उठने के बाद उन्हीं को गुड मॉर्निंग करना है विद स्माइल, तो कई बार ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो उसमें कैसे एडजस्ट करें फिर हम अपने?
0: हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनकी नेगेटिविटी हमें दिखाई पड़ रही है
1: जी,
0: तो वो नेगेटिविटी जो हमें दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके लिए वो एक नेगेटिव फीलिंग पैदा करती है। तो इसलिए हमें ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि भले किसी व्यक्ति में कितनी ही नेगेटिविटीज क्यों ना हो, उनमें पॉजिटिविटी भी होती है, उनमें अच्छाई भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना हम 10 बुराइयों को इग्नोर करते हुए उनके 4 अच्छाइयों पे फोकस करें
1: जी,
0: ताकि हमारी फीलिंग उनके लिए अच्छी रहे, हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा रहे, हमारी सोच उनके साथ अच्छी रहे। क्योंकि ये सही बात है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, वही बातें हमारे पास लौट कर आएंगी
1: जी।
0: तो फिर हम उनकी पॉजिटिविटी पे फोकस करें तो वो वही व्यक्ति हमें अच्छे लगने
1: लगेंगे,
0: शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ
1: जी।
0: एक बार एक आश्रम था जिस आश्रम में बहुत अनुयायी आते थे, बहुत रेगुलर बेसिस में आते थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, काफी सारे उनके इनमेट्स रहते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि वहां पे लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा, तो अब इनको विचार चलने लगा। ऑफकोर्स जो आते हैं वही फिर वहां के सब बातों की देखरेख करते हैं, तो फिर तो उनका जो सबसे बड़े थे उनको विचार चलने लगा कि भाई क्या है, क्या करा जाना चाहिए। तो वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे सलाह पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि दरअसल बात ऐसी है कि आप जो इनमेट्स हैं, आपके बीच में एक देवदूत है
1: जी,
0: आप उसे ढूंढ निकालिए, आपके सभी बातों का समाधान हो जाएगा। तो वो गए और उन्होंने सबसे कह दिया कि भाई हमारे बीच में एक देवदूत है और हमें उसको ढूंढना है। तो जो आश्रम के परिसर में झाड़ू लगाता था वो बेचारा बहुत कड़ी मेहनत करता था, बहुत बड़ा आश्रम का परिसर था, बड़े प्यार से खुशी खुशी झाड़ू लगाता था। सबको लगा यही शायद देवदूत है, इतनी मेहनत से वो भी इतनी खुशी खुशी और इतने प्यार से वो झाड़ू लगाने का काम करता है। किसी की ड्यूटी थी जंगल से लकड़ियां काट के लाना ताकि खाना बन सके, तो किसी को लगा सर्दी गर्मी बारिश
1: जी
0: ये बंदा अपना काम करता है, बारिश का मौसम है तो लकड़ियों का स्टॉक है ना रहे, उसका ध्यान रखता है, शायद यही देवदूत है। एक बंदे को खाना बनाने की ड्यूटी मिली हुई थी, तो लोगों को लगा 3 टाइम आज कोई काम रुक जाए, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज है जो
1: रोजाना
0: चलता ही रहता है। और इस व्यक्ति को देखो, आज हम बीमार होते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है हम 2 घंटे बाद कर लेंगे ये काम, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज है और हम इतने सारे लोग हैं तो हमें तो हर दिन समय पे भोजन मिलता है
1: जी।
0: तो उसको भी तो परिस्थितियां आती होंगी, तबीयत देर सवेर बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन टाइमली ये व्यक्ति भोजन तैयार रखता, शायद यही देवदूत है
1: जी।
0: तो हर व्यक्ति की नजर दूसरे के लिए क्या बन गई?
1: देवदूत है,
0: देवदूत है। तो पूरे आश्रम में एक बहुत पॉजिटिव माहौल बन गया और धीरे धीरे लोगों का आना भी
1: शुरू हो गया जी।
0: तो इसलिए हम हर व्यक्ति के लिए एक अच्छी फीलिंग, अच्छी नजरिया रखेंगे तो फिर हमें उसी माहौल में उन्हीं लोगों के साथ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और ये कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके लिए
1: दुनिया अच्छी है।
0: तो कहीं हमको लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हमें खुद को जांच करना होगा।
1: बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि कहाँ पे हमें इग्नोर करना चाहिए लोगों को या परिस्थितियों को। और जैसे दीदी ने कहा कि आपको अच्छा बनना है और आप लोगों के साथ अच्छा बनने के लिए उनकी पॉजिटिविटी आप देखिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: सेवा, स्नेह और उत्कृष्टता के 10 वर्ष यही है मावजत अस्पताल। इस विशेष अवसर पर मावजत अस्पताल आपके स्वास्थ्य के लिए लाया है विशेष पैकेज। इंडोस्कोपी 2,500 रूपए, अपेंडिक्स, हर्निया एवं फ्रैक्चर सर्जरी पैकेज 9,900 रूपए से शुरू, दूरबीन से अपेंडिक्स ऑपरेशन 14,900 रूपए से शुरू, दूरबीन से हर्निया व पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन 17,900 रूपए से शुरू, घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी 29,000 रूपए से शुरू। सभी ऑपरेशन में दवाएं, एनेस्थीसिया और जनरल वार्ड चार्ज शामिल है, इम्प्लांट चार्ज अलग से रहेगा। पैकेज 30 अप्रैल 2025 तक मान्य। मावजत अस्पताल, मानसरोवर तालाब के सामने, पालनपुर। कॉल करें 9558200200 या 9558600600। भरोसा मतलब मावजत।
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।

0: थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना, शीशे के बाहर झांक के हैं।
1: जी कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई है? तो इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे मध्य हैं ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी। उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ प्रेरणाएं आपको मिल रही हैं, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के अंतर्गत। दीदी आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। तो दीदी, हम फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य के बारे में जान रहे थे और आपने हमें मार्गदर्शन दिया कि कहाँ पर हमें कैसे फेस करना है, कैसे अफर्मेशंस लेना है, और फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम अपनाते हैं तो और भी अनेक जीवन मूल्य हमारे अंदर आती जाती है, और कैसे परिस्थितियों में हमें कैसे कैसे पॉजिटिव सोचना है वो भी आपने प्रकाश डाला। तो आपसे कुछ और चर्चाएं करेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं कि अगर परिवार के बीच में किसी बात पर मतभेद हो जाए तो इस मूल्य को कैसे वहाँ अपना सकते हैं।
1: विचारों की भिन्नता और संस्कारों की भिन्नता ये एक जायज सी बात है। तो मान लीजिए मुझे कोई बात सही लग रही है, हो सकता है मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य को वो बात गलत लग रही है
0: जी,
1: या मैं चाहती हूँ ये चीज करी जाए और वो चाहते हैं ये चीज नहीं करी जाए, तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। मुझे याद आता है हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने एक बहुत अच्छी बात, हम बहनों की जब ट्रेनिंग होती है तो हमें सिखाया
0: जी
1: कि मान लीजिए एक कमरा है जिस कमरे में दो बहनें सो रही हैं और एक बहन को गर्मी लग रही है, वो कह रही है एसी चालू करो, वो कह रही है पंखा तेज करो, और दूसरी बहन कह रही है कि एसी बंद करो, पंखा कम करो
0: जी,
1: तो क्या करा जाए।
0: कहीं एक बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए।
1: बीच वाला रास्ता मतलब तीन पे रखे पंखे को
0: जी,
1: या वो भी हो सकता है
0: जी।
1: तो दादी जी ने हमें सिखाया जिसको गर्मी लग रही है उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, तो उसके कंफर्ट के अनुसार आप एसी चालू कर लीजिए या पंखा तेज कर लीजिए,
0: फिर ओढ़ लीजिए।
1: पर जिसे हाँ, जिसे ठंडी लग रही है एसी चलाने से या पंखा तेज करने से, उसके पास विकल्प है, वो ओढ़ सकता है। तो ऐसे ही जब हम सामने वाले को सुख देने का एक अपने मन में भावना रखते हैं तो हमें वो बीच वाला रास्ता दिखाई देता है जहां हमें भी तकलीफ ना हो और सामने वाले को भी आराम मिल जाए
0: जी।
1: तो हमें अपने फायदे से पहले दूसरे के फायदे का सोचना है, ये सोच, ये जो सोच है ना कि नहीं मेरा कंफर्ट जितना इम्पोर्टेंट है सामने वाले का कंफर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: तो जैसी हमारी सोच होती है ना फिर हमें वैसे ही ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब जब हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं एसी तो चलेगा ही
0: जी,
1: अब आपको अच्छा लगे ना लगे, फिर हम थोड़े रूड बिहेव करते हैं या बातचीत थोड़ी रफ डफ करते हैं, फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, या फिर ये रिजिड हो जाते हैं कि नहीं पंखा तो बंद नहीं करना पड़ेगा, एसी तो बंद नहीं करना पड़ेगा, पंखा चलेगा ही नहीं, फिर वो आपस में फाइट होनी शुरू हो जाती है
0: जी।
1: लेकिन यदि एक व्यक्ति झुक जाता है तो फिर ऐसी स्थितियां कभी नहीं आती है। इसमें एक उदाहरण मुझे याद आता है कि भाई जब हवा तूफान तेज चलती है तो जो बांस के पेड़ होते हैं
0: जी,
1: क्योंकि उनमें लचीलापन नहीं होता है कि भाई वो बेंड कर सकें, तो यही देखा जाता है अक्सर कि उन्हें जड़ से उखड़ना पड़ता है और वहीं पर तेज हवा में वो पौधे जो हवा के साथ साथ लहरा सकते हैं झुक जाते हैं, तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, वो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो जीवन के लंबे सफर में हम सर्वाइव कर सकते हैं
0: जी,
1: और अगर हमारे में वही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कहीं हमें भी जड़ से उखड़ने वाली नौबत का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आता है
0: जी,
1: झुकता वही है जिसमें जान होती है
0: जी,
1: अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो जीवन है, विचार है हमारे अंदर, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, हम दूसरे की संवेदना को समझ सकते हैं, दूसरे की प्रायोरिटीज को हम समझ सकते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इजीली आ जाती है
0: जी। बिल्कुल, मान लीजिए एक ग्रुप में आप हैं और आपको एडजस्ट करना आता भी है, लेकिन कई बार ऐसे परिस्थितियां आती है कि जहां पर आपको लगता है कि आपका मोरल डाउन हो रहा है या हर बार आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को स्टेबल भी रखें क्योंकि आपको उनके साथ काम भी करना है, तो आप फ्लेक्सिबल भी रहें।
1: अगर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है तो सामने वाला कुछ भी कह के कमेंट करके क्रिटिसाइज करके वो हमें नीचा नहीं महसूस करवा सकता है
0: जी।
1: वो कोशिश जरूर कर सकता है हमें नीचा दिखाने की, हमें नीचा महसूस करवाने की, पर एग्जैक्टली हम क्या महसूस करेंगे वो चॉइस हमारे पास है।
0: ओके,
1: अगर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है तो हम वैसी परिस्थिति में भी अपने आप को ये कमांड दे सकते हैं, ये उनकी सोच है। बट आई नो व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ और कैसी हूँ वो मुझे बेहतर मालूम है, ठीक है ये उनकी सोच है, डज नॉट मैटर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो हमें सामने वाले से वो अप्रिशिएशन की एक्सपेक्टेशन होती है, या फिर हम सामने वाले से वो अप्रूवल चाह रहे होते हैं कि भाई मैंने अच्छा किया, कितना अच्छा किया
0: जी।
1: और फिर जब वो अप्रूवल हमें नहीं मिलता है, वो अप्रिशिएशन हमें नहीं मिलता है, तो हम भी सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि पता नहीं अच्छा किया भी या नहीं। तो वो चीजें तभी आती है जब हमारे अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है। अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा बहुत अच्छा है तो हमें इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है
0: जी। ब्रह्मा कुमारीज में हमने सुना है कि जो राजयोग होता है उससे आपके सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, तो ये मतलब कैसे किया जाता है?
1: वास्तव में राजयोग हमें अपनी वास्तविकताओं का एहसास दिलाता है। राजयोग मतलब अपने आप को समझना, जानना, गहराई से अपने अंदर झांक कर देखना, तो उसमें हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है, साथ में हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता चलता है
0: जी।
1: तो राजयोग हमें अपने आप से जोड़ता है, मतलब आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में थी, बहुत ही शुद्ध, शांत, आनंद, प्रेम स्वरूप, उस स्थिति को हमें ले जाने का एक रास्ता है
0: जी।
1: आज जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, यदि बहुत बारीकी से इन पर गौर किया जाए तो हम यही पाएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुण और शक्तियों की कमी के कारण है। जब वही परिस्थितियां हम अपने गुण और शक्तियों को एलिवेट करके उसे बढ़ा के हम फेस करेंगे तो वो चीजें हमें बहुत मामूली नजर आएंगी
0: जी।
1: तो राजयोग में हम उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं जो शक्ति और गुणों का भंडार है, अनंत स्रोत है, और विज्ञान का एक सिद्धांत है
0: जी
1: कि शक्ति का प्रवाह हमेशा एक हायर सोर्स से एक लोअर सोर्स की ओर होता ही है
0: जी।

0: तो जो मन हमारा कमजोर है, मान लीजिए धीरज की कमी है, सहन शक्ति की कमी है, या एडजस्टमेंट पावर की कमी है, और हम उस परम शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो ये अनुभव कहता है कि वो शक्तियां, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर जब वो शक्ति और गुण हमारे में आ गए, परिस्थिति वही है, लोग वही हैं
1: जी,
0: कुछ नहीं बदला है, हमने सिर्फ अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लिया है। जैसे आजकल हम डिवाइसेस यूज करते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, तो आए दिन अपग्रेड करो अपग्रेड करो अपग्रेड करो आता रहता है, एंड वी अंडरस्टैंड कि हमें अपग्रेड करना बहुत
1: जरूरी है,
0: जरूरी है, अदरवाइज हम उस ऐप का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे
1: जी।
0: तो उसी रीति से समय और परिस्थितियों के प्रमाण हमें अपने वर्जन को भी
1: अपग्रेड करना पड़ेगा,
0: अपग्रेड करने की जरूरत होती है। और जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो नई चीजों को सीखने का प्रयास भी करते हैं, वो ओपननेस भी होता है, और फिर वो सीखते जाते हैं और अपना बहुत ही अच्छा अपग्रेडेड वर्जन अपने आप को बना लेते हैं
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि फ्लेक्सिबल रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम उस पुराने ढांचे में रहते हैं, तो फिर हम इस जनरेशन वाले उस जनरेशन को दोष देते हैं और वो हमें दोष देते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस दीदी को हम पूछते हैं कि दीदी मान लीजिए एक परिस्थिति है कि कहीं हम यात्रा के लिए एक योजना बना रहे हैं और अचानक मौसम खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो हम क्या घर बैठ करके फ्लेक्सिबल होकर के उसकी आनंद ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ वर्तमान में जीने की आदत को बढ़ाना पड़ेगा।
1: ओके।
0: क्योंकि आज मौसम खराब हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गया मान लीजिए,
1: जी
0: इट्स नो वे इन माय हैंड,
1: जी
0: मेरे हाथ में है ही नहीं,
1: जी
0: हो सकता है उससे कुछ नुकसान भी हो रहा हो, मेरा कोई जरूरी मीटिंग हो जो मिस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट जहां पर कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है वहां पर वैसी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेना ही फायदेमंद होता है। कभी भी लाइफ में हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, जो दो ही चॉइस होते हैं, इधर चेंज और एक्सेप्ट।
1: जी
0: क्या ये जो फ्लाइट कैंसिल हो गया इसे मैं चेंज कर सकती हूँ?
1: नहीं,
0: मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं चेंज नहीं कर सकती तो मेरे पास क्या विकल्प बचा? एक्सेप्ट,
1: एक्सेप्टेंस।
0: अब एक्सेप्ट मैंने कर लिया कि ठीक है आज उस मीटिंग को अटेंड करना मेरे उसमें नहीं लिखा है, बट दैट्स फाइन, मैंने जो हमारे सीनियर है उन्हें इंटीमेट कर दिया। इस चीज को तो कोई भी समझ सकता है
1: जी
0: कि भाई ये हमारी मजबूरी रही है जो हम समय पर नहीं पहुंच सके। तो वैसे में हमें उन चीजों के सोच चिंता को छोड़ के वर्तमान में जियो। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है मैं घर पे हूँ, लेट मी एंजॉय माय टाइम विद माय फैमिली मेंबर्स, मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन, अपने ये कुछ अनमोल क्षणों का आनंद ले लूं
1: जी।
0: तो जब मैंने सोच लिया कि भाई ये चेंज नहीं हो सकता तो मुझे एक्सेप्ट ही करना है। दिक्कतें तब आती हैं जब हम चेंज भी नहीं कर पाते हैं और एट द सेम टाइम हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते,
1: हम चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है,
0: तो फिर वो चिड़चिड़ापन आता है, तो फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। मैं पहली फ्लाइट लेने का सोच रहा था, इन्होंने कहा क्या जरूरत है जल्दी जाने की, बाद में भी तो एक फ्लाइट है, आप पहुंच जाएंगे टाइम से, उनके कहने पर मैंने अपना अगला वाला फ्लाइट चूज, मतलब कुछ भी, फिर वो ब्लेम गेम चलता रहता है
1: जी। बिल्कुल। तो और एक सवाल है कि आजकल जब बच्चों की पढ़ाई और उनके बहुत प्रकार के हम देख रहे हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए, तो डिमांड भी बढ़ रहा है, तो एक माता पिता के रूप में फ्लेक्सिबल कैसे बना जा सकता है? जो बच्चे जिद कर रहे हैं उन्हें दे देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए?
0: वास्तव में अगर हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के प्रमाण हर कुछ तभी का तभी मिल जाता है तो ये अनुभव कहता है वो बच्चा डिनायल को कभी फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक उसे सब कुछ बोलते ही प्राप्त होता आया है। कल को वो किसी लड़की को प्रपोज करे और उसने
1: मना कर दिया
0: तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा।
1: जी
0: माना ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है उसके लाइफ में जहां पे उसको डिनायल को फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पर वो उन चीजों को स्वीकार
1: नहीं कर पाएगा,
0: झेल नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो उनके लिए कितना आवश्यक है वो देखा जाए और उसी के अनुरूप उनके डिमांड को फुलफिल किया जाए। भले मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उसके डिमांड को फुलफिल कर सकती हूँ एज अ मदर और एज अ फादर, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इन बातों में थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, मोबाइल मांग रहा है, और मैं यदि मोबाइल उसे न दूं तो वो रोता है, पैर पटकता है, कुछ भी करता है, चिल्लाना शुरू करता है, और जस्ट बिकॉज कि वो चिल्लाए नहीं और रोए नहीं, मैं उसे मोबाइल हर बारी पकड़ा देती हूँ
1: जी,
0: उसकी आदतें
1: बिगड़ जाएंगी,
0: बिगड़ रही हैं, आंखें भी खराब हो रही हैं, उसका जिद भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे को अच्छे संस्कार वाला बच्चा बनाने के लिए हमें इन बातों पर थोड़ा सा अंकुश डालना
1: चाहिए,
0: जरूरी है, और ताकि वो डिनायल को भी स्वीकार कर सके, ताकि वो डिसिप्लिन को भी समझे कि भई हरदम हर कुछ जो हमारा मन कर रहा है करने के लिए वो करने को नहीं मिलेगा अगर वो सही नहीं है। तो कई बार सही होने पर भी नहीं मिलता
1: जी,
0: हो सकता है हमारे माता पिता वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं जो बच्चा चाह रहा है, शायद उसे वो देना सही होता भी
1: जी,
0: परंतु मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी उसे नहीं प्राप्त होता है। तो एक बच्चे को इन हालातों से गुजरने का एक मौका देना चाहिए
1: जी,
0: ताकि जिंदगी के लंबे सफर में ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी उसके लाइफ में आ जाए तो उसे वो इजीली हैंडल कर सके
1: कर सके। अभी यहाँ पर वक्त हो रहा है कि हम अलविदा कहें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस मूल्य के बारे में हमारे श्रोताओं को और क्या कहना चाहेंगे।
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में यदि हमारे अंदर एक मानसिकता डेवलप हो जाए कि कैसी भी परिस्थिति में हमें खुश रहना है
1: जी,
0: और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कैसे भी लोग हमारे संपर्क में क्यों ना आए, लेकिन हमें सबके साथ हिलमिल के प्रेम प्यार से रहना है, तो जो हमारी सोच होती है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे व्यवहार विचार हमारा दृष्टिकोण सब कुछ अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए रिश्तों में तनाव और मतभेदों को खत्म करने के लिए ये लचीलेपन के गुण को अपनाना बहुत आवश्यक है, और ऐसे में कई बार जो संसाधनों पे हम बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं
1: जी,
0: तो अनुभव ये कहता है कभी कभी संसाधनों के होने के बावजूद भी हमें संसाधन के बिना
1: जी
0: अपना काम कर पाने का थोड़ा सा जो प्रयास है, थोड़ी जो आदत है वो बनाए रखनी चाहिए। मान लीजिए लिफ्ट है लेकिन हम लिफ्ट का उपयोग न करें
1: जी,
0: जब तक अति जरूरी
1: नहीं
0: ना हो। एसी है लेकिन जब बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तब तक हम एसी का प्रयोग
1: ना करें।
0: हम बहुत कुछ खा सकते हैं लेकिन हम अपने आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें, नहीं मुझे इतना ही खाना है और इतनी बार ही खाना है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं अपने आप को एक अनुशासन में रखने के लिए, अपने आप को मर्यादाओं में रखने के लिए, अपने आप पर कुछ अंकुश लगाने के लिए। तो ये चीजें फिर जब सही मायने में ऐसी परिस्थिति आएगी कि लिफ्ट नहीं काम कर रहा है तो मुझे वहां दिक्कत नहीं होगी। बहुत लंबे समय तक मान लीजिए कहीं पे साइक्लोन आ गया और 5 दिन तक पावर कट है, ना एसी ना कुछ, तो मुझे उस समय दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपने आप को ढाल रखा है
1: जी।
0: तो आने वाला समय ऐसा होगा जहां पर ये संसाधन काम नहीं करेंगे जो हम आध्यात्मिकता में गहराई से समझते हैं। तो ऐसे समय में ये जो हमारी आदतें हैं कि भाई कुछ है तो वाह, कुछ नहीं है तो भी वाह, आज कुर्सी मिली तो अच्छी बात है, आज कुर्सी नहीं मिली फर्श पे बैठना पड़ा तो भी कोई बात नहीं, आज मुझे बिस्तर मिला, गद्दा मिला, आज मुझे खटिया मिली तो इट्स फाइन, कल नहीं मिला और मुझे जमीन पे ही लिटा दिया गया तो भी फाइन। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात भक्ति में भी कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है
1: जी।
0: तो सिर्फ एक मानसिकता कि जीवन में जब जैसी बातें हमारे सामने आ जाए हमें उसे फेस करना है और उसे फेस करते हुए हमें खुश रहना है और खुशियां बांटनी है
1: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे भी परिस्थिति हो उसमें एडजस्ट करके खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है और ऑटोमेटिक आपको रास्ते मिल जाएंगे। जब आप थोड़ा 1 मिनट साइलेंस में रह करके सोचेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, आगे हम और क्या कर सकते हैं। दीदी ने जैसे कहा कि आप प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट के बारे में ही सोचिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति। और जब भी आप शांतिवन परिसर में आए तो जरूर हमारे श्रोताओं के साथ एक बार बातचीत करिए।
0: जरूर, इट विल बी माय प्लेजर।
1: थैंक यू। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये कार्यक्रम आप फ्राइडे को 12 बजे फिर से पुनः प्रसारण में सुन सकते हैं। नमस्ते।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बनाए।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबके लिए अपना और आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हम राही। जी हाँ, हम राही, वही प्रोग्राम जिसमें कहानियां होती हैं दिव्यांग साथियों की, जिसमें कहानियां होती हैं जीवन साथी की तलाश में आने वाली चुनौतियों की, और जीवन साथी मिलने के बाद किस प्रकार जीवन आगे बढ़ाया जाता है, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, और ऐसे में अगर जब पति पत्नी दोनों ही बेरोजगार हों तो उसके बाद परिस्थितियां कैसी होती हैं। आज का कार्यक्रम कुल मिलाकर के इन्हीं सब बिंदुओं पर आधारित है, और पिछले कुछ कार्यक्रमों से आप देख रहे हैं लगातार इस तरह की कहानियां आ रही हैं। हम क्या करें साथियों, संयोग ही कुछ ऐसा बन रहा है कि पहले आपने पंडित रामशरण पाराशर जी और उषा जी को सुना, फिर आलोक शर्मा जी और नीतू जी को सुना, और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एक छोटा सा गुजराती परिवार है, राजकोट गुजरात से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, कल्पेश करेलिया सर एवं अक्षिका करेलिया मैडम। तो कल्पेश जी और अक्षिका जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू संदीप जी, और रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब के सभी साथियों को हमारी ओर से नमस्कार।
2: थैंक यू मधुबन रेडियो और संदीप जी, और हमारी ओर से भी नमस्कार
0: जी। तो श्रोताओं, आपने सुना हमारे दोनों मेहमानों को, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, और हर किसी के चेहरे पर खुशियां लाते रहो, यही हम सब का मूल मंत्र होना चाहिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अक्षिका जी, सबसे पहले हमारे सुनने वालों को आप अपने बारे में कुछ बताइए जरा।
1: जी सर, मेरा गुजरात के द्वारिका में हुआ है, सभी ने नाम सुना ही होगा आप लोगों ने
0: जी।
1: और मैं बाय बर्थ ही ब्लाइंड हूँ, टोटली ब्लाइंड हूँ, और मेरी पढ़ाई 9th तक बहरीन में हुई है, जो कि गल्फ कंट्रीज में आता है।
0: क्या बात है
1: जी। तो 9th तक मेरी पढ़ाई अरेबिक लैंग्वेज में हुई है।
0: वाह
1: जी, थैंक यू। और उसके बाद गुजरात में आकर मैंने 10th यहाँ पे भावनगर में एक ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे किया, और उसके बाद मैं सुरेंद्रनगर जो है पंकज जी और मुक्ता जी, उनके वहाँ पे मैंने म्यूजिक में विशारद और थोड़ा बहुत होम साइंस और 12th तक पढ़ाई, वो सब मैंने वहाँ से किया। और ये जो इंस्टीट्यूट है, आप कई लोग जानते होंगे कि शादी भी कराते हैं ब्लाइंड कपल की, तो वहाँ से ही हमारी शादी।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो मतलब आज का कार्यक्रम तो एक तरह से कई भाषाओं के इर्द गिर्द है, मतलब हालांकि मुझे तो ना तो गुजराती ही आती है ना मुझे अरबी आती है, लेकिन आपने तो अरबी भी सीखी है।
1: जी सर जी।
0: क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूब। इसके अलावा मतलब एजुकेशन में क्या रहा है आपका?
1: एजुकेशन में 12th तक मैंने किया है, और म्यूजिक में हारमोनियम और वोकल में विशारद किया है।
0: अच्छा, 12th के बाद फिर पढ़ाई नहीं कर पाए आप?
1: नहीं कर पाई मैं।
0: ओके, चलिए कोई बात नहीं, बहुत खूब। लेकिन जबरदस्त अनुभव बताया आपने बहरीन वाला, आगे जानेंगे आपसे इसके बारे में भी। कल्पेश जी।
2: हाँ जी।
0: अक्षिका जी ने तो बताया अपने बारे में, आप भी बताइए जरा।
2: मैंने सुरेंद्रनगर में प्राथमिक शाला जो एमटी दोषी अंध विद्यालय है, वहाँ मैंने 1 से 7 तक पढ़ाई की है प्राथमिक स्कूल में। बाद में मैं अहमदाबाद नवरंगपुरा में आया, वहाँ मैंने 8वीं में एंट्री ली, लेकिन वहाँ गर्मी ज्यादा रहती थी, वो मुझे नहीं यहाँ
1: सेटल नहीं हो पाए वहाँ पे,
2: तो वहाँ 6 महीने निकाला। बाद में फिर अमरेली एक स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल अमरेली में गुजरात में है, वहाँ मैंने 8 से 10 तक पढ़ाई की, और बाद में संगीत भी वहाँ मैंने किया है, मतलब।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो आजकल क्या कर रहे हैं कल्पेश जी फिर आप?
2: आजकल तो बस यहाँ मैं राजकोट में ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सभी ऑर्केस्ट्रा में जो मैरिज फंक्शन होते हैं उसमें कीबोर्ड बजाने का काम भी कर रहा हूँ और साथ में जो सप्ताहें होती हैं भगवत सप्ताह भागवत कथा होती है या राम कथा होती है उसमें भी मैं कीबोर्ड बजाने के लिए शास्त्री जो लोग होते हैं पंडित लोग उनके साथ मैं जाता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो आप दोनों ही दृष्टिबाधित हैं?
1: जी बिल्कुल, दोनों ही टोटल ब्लाइंड
0: हैं। तो जी, जो आपकी जो बीमारी है उसका क्या नाम है, डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं इसको?
1: सर इसका नाम तो मुझे खैर नहीं पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नब्ज है वही सूखी हुई है, जो मतलब आईज का प्रॉब्लम नहीं है।
0: तो कभी जांच वगैरह हुई डॉक्टरों के पास जाकर के?
1: बिल्कुल, बहुत जब मैं छोटी थी तब द्वारिका में मेरे दादाजी ने और फैमिली वालों ने बहुत ही कोशिश की, अहमदाबाद और नवसारी और बॉम्बे पे मतलब बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता।
0: अच्छा अक्षिका जी, ये द्वारिका तो धार्मिक नगरी है।
1: जी सर।
0: तो मतलब ये धर्म के हिसाब से भी कई जगह प्रयास हुए होंगे आपकी आंखों की रोशनी आ जाए, ऐसा भी कुछ रहा या नहीं?
1: नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं रहा।
0: ये बहुत अच्छी बात है, वरना तो मतलब ऐसा होता है ना कि वो उसके पास जाना है, उसके पास जाना है, यहाँ ये चढ़ाना है, वहाँ वो चढ़ाना है, तो
1: सही बात है। नहीं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ।
0: ये बहुत अच्छी बात है कुल मिला करके। और कल्पेश जी, आप भी जन्मजात दृष्टिबाधित है?
2: हाँ जी, मेरे इसे ऐसा हुआ है कि जन्म से मैं दृष्टिबाधित नहीं था। पहला जब मेरा जन्म हुआ तब मैं 2 महीने तक दिखाई दिया था मुझे।
0: अच्छा।
2: 2 महीना जो कहते हैं उसको
0: जी।
2: तो उसके बाद ये हुआ कि एक अंधश्रद्धा से जुड़ा हुआ भी इसमें मामला है।
0: जी जी।
2: कि हम लोग राजकोट आ रहे थे, ये मुझे मेरी मदर ने बताया था मुझे कि भाई हम लोग राजकोट आ रहे थे, तब एक बस में कोई दो बहन दो लेडी थी, उन्होंने एक पानी मुझे, क्योंकि बालक जब बच्चा जब नाना छोटा सा होता है तब ये रोता है, तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे बहुत रोता है तो एक हमको दीजिए। और ये दो लेडी थी वो अनुभवी थी, वो मतलब
0: अच्छा
2: थोड़ी उम्र से बड़ी
0: थी, मतलब थोड़ी
2: हाँ बुजुर्ग थी। तो उन्होंने मुझे गोद में लिया, पानी वानी पिलाया, तब मैं बंद भी हो गया रोना मेरा,
0: क्योंकि म्यूजिक रोना बंद हो गया और घर वालों का रोना चालू हो गया, ऐसा तो नहीं?
2: वो तो है। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने पानी वानी पिलाया और जब हम लोग राजकोट आए तो राजकोट में फिर मेरा रोना शुरू हो गया। और जब बाहर हम निकले तो मेरे पापा ने और मेरे जो बड़ी मम्मी है उनको आँख में से कुछ सफेद दाना जैसा कुछ दिखाई दिया। तब यहाँ राजकोट में एक केशु भाई करके एक डॉक्टर है, यहाँ उनको बताया तो उन्होंने ये बताया कि भाई देखो उनको एक बड़ी हॉस्पिटल है डॉक्टर ध्रुव, उनके पास ले जाइए। तो वहां मुझे डॉक्टर ध्रुव के पास ले गए और वहां मेरे आंखों को मशीन के द्वारा तलाश किया गया, तो बताया गया कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो आंखों से उनकी रोशनी चली गई है। तो मेरे दादाजी है वो बहुत चिंता में पड़ गए, बहुत टेंशन हो गया उनको कि हमारे तो ये परिवार में पहला ये ऐसा मामला हुआ है।
0: जी जी जी जी जी जी।
2: तो और बस वहां से मेरी कहानी शुरू हो जाती है जो दृष्टिहीन की बातें हैं।
0: वहां से जो है संघर्ष शुरू हुआ जो अब तक जारी है, क्यों?
2: हाँ जी, बस वही।
0: तो जैसा कि हमने जाना आप दोनों के अनुभवों से कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही संगीत से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप दोनों की परिस्थितियों से मिलता जुलता कोई गीत याद आ रहा है इस वक्त जो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा सकें आप दोनों की ही आवाज में, और उसके बाद में फिर जो है आपके मिलने की कहानी पर आते हैं।
1: जी
0: जी, चाहे तो आप द्वारिकाधीश की नगरी से हैं तो कोई कृष्ण भजन भी सुना सकते हैं
1: जी,
0: और नहीं तो कोई भी गुन धुन जो अभी दिमाग में आ रही हो उसको गुनगुना दीजिए। चलिए तो कोई बात नहीं, आगे सुनेंगे फिर आपसे। इसका मतलब ये है
1: जी, अभी कुछ याद नहीं आ
0: अभी, ऐसा होता है कई बार जब मौका आता है तो याद नहीं आता है। तो चलिए अक्षिका जी, अब आप दोनों के मिलने की कहानी पर आते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई?
1: शुरुआत में ऐसा है सर कि मैं जहाँ पे थी सुरेंद्र नगर स्कूल में, तो वहाँ पे मेरे जो गुरु थे जिनसे मैंने संगीत सीखा विपुल व्यास जी करके
0: जी,
1: तो वो वहाँ पे टीचर थे। और अमरेली के बारे में इन्होंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे एड्स से बाद इन्होंने पढ़ाई की, तो वहाँ पे ये विपुल जी और ये इनके दोनों साथ में पढ़ते थे पहले। तो ये विपुल जी है वो इनको भी जानते थे और मुझे भी अच्छी तरह से जानते थे
0: जी,
1: तो इन्होंने हमारा मतलब कांटेक्ट करवाया।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मैं जब सुरेंद्रनगर छोड़कर यहाँ राजकोट सेटल्ड होने के लिए आ रही थी तो विपुल जी ने इनको फोन किया कि ये मेरी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एज एन असिस्टेंट भी काम किया था थोड़े 2-3 साल
0: जी,
1: तो उन्होंने इनको बताया कि ये मेरी ये असिस्टेंट टीचर है, मैं इनको भेज रहा हूँ राजकोट में
0: जी।
1: और मुझे उस टाइम गाइडेंस चाहिए था कि राजकोट में म्यूजिक के फील्ड में क्या किया जा सकता है मतलब। तो ये पहले से ही राजकोट में सेटल्ड थे तो इनके पास विपुल जी ने मुझे गाइडेंस के लिए भेजा था।
0: कब की बात है ये?
1: ये 2011 की बात है।
0: अच्छा, और आपका विवाह कब हुआ?
1: 2012 29 जनवरी।
0: चलिए अच्छी बात है। तो मतलब अक्षिका जी या कल्पेश जी के बारे में बात होने से पहले भी क्या कहीं चर्चाएं हो रही थी या शादी के बारे में आप या आपका फैमिली में से कोई सोच रहा था?
1: जी सर, सोच रहे थे पहले भी और ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन कहीं हो नहीं सका, मतलब ढूंढ नहीं पाए। लेकिन मेरा विचार तो ये था पहले जब मैं सुरेंद्रनगर में थी तब कि मुझे अगर जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मैं उस टाइम में म्यूजिक कर रही थी और मेरा विचार तो ऐसा था कि इसी में मुझे जॉब लेना है। तो मेरा विचार ऐसा था कि अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं मतलब अपने पेरेंट्स का ख्याल रखूंगी और बस ऐसे ही मतलब रहना चाहती थी मैं, शादी करना नहीं चाहती थी, ऐसा पहले मेरा विचार था।
0: अच्छा,
1: ये है सर।
0: नहीं तो जब विचार चल रहा था तो कहीं पे चर्चाएं भी हुई थी क्या?
1: चर्चाएं तो हुई थी, एक दो रिश्ते भी देखे लेकिन वो नहीं ठीक थे, मतलब
0: वो टाइटेड थे या ब्लाइंड ही थे?
1: ब्लाइंड ही थे, एक ही रिश्ता
0: था, ब्लाइंड थे। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया किसी के भी मन में, फैमिली में आपके, कि भाई मतलब लड़की तो ब्लाइंड है, जो पति हो वो साइटेड होना चाहिए या थोड़ा सा मतलब?
1: नहीं नहीं, ऐसा है इसमें कि मेरी मदर जो है वो मतलब मुझे बहुत सपोर्टेड है पहले से
0: जी, जी, जी।
1: तो उनको ये पता था कि हमारी बच्ची ब्लाइंड है तो उसको इसके जैसा ही मिलेगा तो वो ठीक से रह पाएगी, हम उनका ये विचार था। और पढ़ाई में भी ऐसा हुआ था संदीप जी, बहरीन में जब मुझे एक स्कूल में भेजने की बात आई थी तब मेरे बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं मेरे यहाँ के, मेरे यहाँ तक के मेरे फादर भी और उनके बड़े भाई और वो सब, वो ऐसा मानते थे कि ये तो ब्लाइंड है, ये क्या करेगी, क्या पढ़ेगी, ये इसको घर में रहने दो, एक कोने में बैठेगी खेलेगी। तो ये विचार था, लेकिन मेरी मदर ने संघर्ष करके सबके साथ और कुछ भी करके मतलब मुझे पढ़ाया। इस हिसाब से उसकी वजह से मैं यहाँ पर मतलब जो भी पहुंच पाई हूँ मैं आज उनकी वजह से।
0: कभी आपके दिमाग में आया अक्षिका मैम कि मैं मम्मी से ये प्रश्न पूछूं, जैसे आपने कहा कि माताजी का यही मानना था
1: जी
0: कि आपका जीवन किसी दृष्टिबाधित के साथ ज्यादा अच्छा हो सकता है
1: जी,
0: तो कभी मन में आया आपका ये प्रश्न पूछने का कि मैं पूछूं मम्मी ऐसा क्यों है, मतलब साइटेड के साथ क्यों नहीं हो सकता या किसी और के साथ क्यों नहीं हो सकता है?
1: उनका मानना ये था, मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन हम जब कभी बातें करते थे तो वो मुझे बताती थी कि मैं देखती हूँ कि मतलब जो साइटेड लोग होते हैं वो अगर मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन तो उनका मानना था कि वो कभी क्या कर देंगे, कभी क्या कर देंगे, तुम थोड़ी देख पाओगी, तुमको कैसे पता चल सकेगा, और थोड़ी 2400 कलाक उनके पीछे घूम सकते हैं।
0: असुरक्षा की कहीं ना कहीं भावना मतलब उनके हिसाब से थी।
1: जी सर।
0: जी जी जी, चलिए बहुत खूब। तो

0: जब मतलब प्रस्ताव आया कल्पेश जी की तरफ से आया होगा मेरे ख्याल से तो।
1: सर उसमें ऐसा हुआ था, मैं
0: अब भाई आप नहीं बताओगे तो क्या करें, मुझे निकलवाना पड़ेगा ना। जी
1: तो जब मैं सुरेंद्रनगर छोड़ रही थी और उस टाइम मैं मतलब अपना सामान लेने, मैं और मेरी सिस्टर आए हुए थे।
0: जी
1: तो वो सामान लेने के बाद हम लोग, जो मैंने आपको बात किया ना विपुल जी के बारे में,
0: जी
1: उनके घर गए और मैंने जब बात किया गाइडेंस के बारे में,
0: जी
1: तो विपुल जी ने सीधा इनको फोन लगाया और इनको बोला, और उन्होंने फोन उस टाइम स्पीकर रखा था इसलिए हम सुन पाए ये सब। उन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसे अपनी एक असिस्टेंट है उसको वहाँ भेज रहा हूँ, आप उनको गाइडेंस कीजिएगा। तो उन्होंने बताया कि वो तो सब ठीक है सर, लेकिन हमें हमारी लाइफ के बारे में भी कुछ अब सोचना पड़ेगा ना इसका।
0: गाइडेंस वाइडेंस तो होती रहेगी, या तो शादी की उम्र हो गई है
1: जी।
0: मतलब पता चला कि गाइडेंस भी दे दी और हुआ कुछ नहीं।
1: तो विपुल जी ने फिर उनको बताया कि पहले आप इतना तो कीजिए, उसके बारे में हम बाद में उनके मदर फादर से बात करके कुछ देखते हैं।
0: बाप रे बाप, मतलब विपुल जी तो सोच रहे थे कि बस जो है आ गया लड्डू हाथ में खा लो अब तो। हैं कल्पेश जी,
2: वो क्या हुआ कि भाई जब ये विपुल जी बातें ला रहे थे,
0: हाँ।
2: ये मुझे फोन पर ये बातें सब बताई,
0: हाँ।
2: मैंने यार ये क्या हुआ कि जरा मेरे पूरे बम फूट गए यार, मैंने पिस्तौल फोड़ी दिया। तो भाई हमारे लाइफ के बारे में तो कुछ सोचो, बाकी तो सब ये मार्गदर्शन ये तो सब होता रहता है, यहाँ सब मार्गदर्शन लेने के लिए आते
0: हैं। देने का मार्गदर्शन तो है। अरे बाप रे बाप। आपने हाँ कहीं इसीलिए तो नहीं की थी कल्पेश जी कि भाई मार्गदर्शन तो देना ही है, हो सकता है कि मतलब अपना काम भी हो जाए, ऐसा तो नहीं था?
2: नहीं नहीं ऐसा भी नहीं हुआ था, क्योंकि संदीप जी पहला तो ये तो सब विपुल जी के साथ मेरा हम लोग मित्र में है, फ्रेंड्स है, तो ये तो सब ये तो होता था, मजाक की बातें तो होती थी हमारी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये मेरी यहाँ असिस्टेंट है और उनको स्कूल के या ऑर्केस्ट्रा जो भी कोई प्रोग्राम है
1: तो क्या करना चाहिए राजकोट में म्यूजिक के फील्ड में।
2: हाँ तो मैं मुझे इस समय बताया गया था कि उनको स्कूल में जॉब ढूंढनी है, तो मेरे पास एक स्कूल भी आया था कि वहाँ एक लेडीज की जरूरत थी, म्यूजिक लेडी की।
0: जी जी जी जी।
2: तो उनकी जरूरत थी वहाँ, तो मैंने ये बताया कि भाई देखो ये यहाँ तो कैसा होता है संदीप जी की प्राइवेट स्कूल जो ज्यादा देता नहीं है,
1: सैलरी
2: नहीं देती, या 5,000 या 10,000, 10,000 में भी आपको बहुत कम ये स्कूल मिलेगी यहाँ। तो एक स्कूल आया तो वो सिर्फ ये ही बातें कर रहे थे कि देखो हम 2,500 से ज्यादा हम नहीं दे सकते, तो हम भी जानते हैं आजकल के 2,500 में तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता।
0: बिल्कुल सही है।
2: तो मैंने उनको ये मतलब हमारी जो व्यास जी है मेरे मित्र, उनको मैंने बताया कि देखो ये स्कूल में तो जॉब नहीं करेगी, उनको हमारे एक बार हमारे पास भेजो और उनको मैं बताऊंगा कि आप ऑर्केस्ट्रा में अगर काम करेंगी या म्यूजिक क्लास घर में अब आप शुरू कर देंगे तो स्कूल पे प्राइवेट जॉब है उनसे ज्यादा ये हो सकता है,
1: हो सकता है।
2: तो मैंने ये बताया और बस उन्होंने बताया कि देखो फिर मुझे यहाँ भेजा और मेरी साड़ी भी आई थी, मेरी साली उनके साथ आई थी। तो उन्होंने ये बात की कि देखो मुझे म्यूजिक में शास्त्रीय, उनका म्यूजिक शास्त्रीय संगीत का इंटरेस्ट में ज्यादा,
1: क्लासिकल में ज्यादा मुझे, मैं रुचि रखती हूँ।
2: तो मुझे लगा कि देखो ये ऑर्केस्ट्रा में तो काम नहीं करेंगी,
0: मुश्किल है,
2: क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में क्लासिकल की जगह बहुत कम होती है,
0: ऑर्केस्ट्रा में तो थोड़ा धूमधड़ा का चाहिए होता ना।
1: हाँ वही वही।
2: तो मुझे मुझे ये आ गया था कि भाई चलो उनको शास्त्रीय संगीत के बारे में ही है, तो क्लास शुरू करने का ये मुझे आइडिया आया था तब। और बस ये बाद में जब शादी हुई तब एक दो लड़के भी आए थे और थोड़ा क्लास भी शुरू किया था। लेकिन देखो वो क्या है कि हम क्लास भी शुरू करते हैं लेकिन मकान को भी बदलना पड़ता है ना जो।
0: अच्छा घर घर अभी आपका अपना नहीं है, आप किराए पे रह रहे हैं मतलब?
1: किराए पे रहते हैं संदीप जी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मकान हमने रखा हुआ था उसमें ये गाते करते हैं सब म्यूजिक का।
0: किराए मकान की कई सारी परेशानियां होती हैं, आप जानते हैं इस बात को। कुल मिलाकर के स्थायी रूप से कोई भी मतलब वो नहीं है ठिकाना नौकरी का। अच्छा अभी कोई, अब तो मिल भी गए, शादी भी हो गई और गाइडेंस भी दे दिया, कोई गीत गा रहा है? जी तो हाँ। कोई आ रहा है गीत इस सिचुएशन पर, दो लाइनें अगर गुनगुना सकें आप दोनों? कल्पेश जी खुद बजा रहे हैं जी।

0: मेरे सफल, मेरे सफल, मेरे सफल, मेरे।
1: वाह, बहुत खूब, जबरदस्त, क्या बात है। तो ये मतलब आप दोनों का एक दूसरे से वादा भी है, तो कल्पेश जी ने ये भी सोचा होगा ना कि ऑर्केस्ट्रा तो मैं करता हूँ तो ये शास्त्रीय ही कर ले तो ठीक है, क्या जरूरत है दोनों को ऑर्केस्ट्रा करने की, क्यों
2: जी।
1: अच्छा कल्पेश जी, मतलब जो है कि कोई आपने परीक्षा भी ली थी क्या, कोई गाना वाना सुन के सुना के बताओ तब जा करके मतलब पसंद करेंगे, ऐसा कुछ था या नहीं, बस ठीक है सब।
0: नहीं, ये सब हुआ था कि जब हमारे घर में ये लोग आए थे तब मेरे पापा भी संगीत के ज्यादा ये जो है शौकीन है।
1: अच्छा अच्छा, वाह।
0: तो वो भी बैठे थे तो मैं तो ये जब उनकी जो मुलाकात ले रहा था पापा ने बोला कि देखो भैया आप उनको गाना बना जरा गवाओ, तो पता चले कि ये लड़की कैसा गाना गाती है कि नहीं है। तो फिर मैंने पूछा देखो आप एक गाना मुझे सुनाइए, तब पता चलेगा कि ऑर्केस्ट्रा में आवाज की ज्यादा होती है, साउंड डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि बड़े बड़े साउंड पर गवाया जाता है। यहाँ तो थ्री वे सिस्टम है या फोर वे सिस्टम, इसमें ये लोग गाना गवाते हैं आजकल। जो मैरिज फंक्शन में हो, रिसेप्शन के तौर पे तो ये साउंड चलता है। तो उन्होंने एक गाना सुनाया था, पहला गाना था उनका, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: वो गाना मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, उनका पहला गाना। तो और मैंने मैंने मैंने तो समझ लिया था कि आपकी काबिल क्या है।
1: वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि आपके कानूनों ने समझा। तो अक्षिका जी सुना दीजिए फिर दो लाइनें।

0: जिंदगी में कर लिया मुझे धड़कन ठहर जा मुझे आपकी नजरों ने समझा।
1: बहुत जबरदस्त जबरदस्त समझाना। और तक मतलब इसी सिलसिले को
2: आगे बढ़ा रहे हैं आप दोनों, ये बहुत अच्छी बात है। और ये कहीं ना कहीं हम सब का भी बहुत फेवरेट गीत है। तो गीत की बात हुई, क्षिका जी क्या आपने भी कभी ख्वाहिश जताई थी कि भाई मैं भी कुछ सुनूं? उसकी जरूरत नहीं पड़ी?
3: नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब मैं इस गाने के बाद हमने इनको एक मैंने और मेरी सिस्टर ने गरबा सुनाया था
2: अजा।
3: उसके साथ वो मतलब गुनगुना रहे थे तो मुझे तभी पता चल गया
2: था। अच्छा, कि बढ़िया है कि तभी मतलब कि ठीक है, गाना वाना आता है मतलब आपने समझ लिया। अच्छा क्या बात है। तो मतलब कुल मिलाकर के आप दोनों के परिवार खुश थे, संतुष्ट थे और सहमत थे?
3: जी सर बिल्कुल, मेरा परिवार तो पहले से ही, मैं बीच में आपको एक बात बताना भूल गई थी।
2: बताइए बताइए।
3: जब इनको कॉल किया था वो विपुल जी ने, मैंने आपको अभी बताया पहले, तो वो कॉल खत्म होने के बाद विपुल जी ने हमको बता दिया था, मुझे और मेरी सिस्टर को, कि मतलब उन्होंने तो मतलब उनके दिमाग में तो 4-5 साल से ये बात चल रही थी हम दोनों को मतलब
2: 4-5 सालों से मतलब कल्पेश जी गाइडेंस दे रहे थे। लेकिन जो है वो गाइडेंस जो है यहाँ पर आकर के सफल हुआ मतलब।
3: जी तो उन्होंने हमको बताया था कि ये मतलब अच्छी जगह है और पर्सन भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग देख लीजिए एक दूसरे को, परिवार को मिलाकर अगर आपको ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाना, मतलब ये बात
2: मतलब उनकी तरफ से तो पूरा कंफर्म ही था सारा कुछ।
3: जी जी,
2: वो तय आपको करना था, आपकी फैमिली को करना था।
3: जी सर।
2: तो कल्पेश जी,
4: हाँ जी,
2: कितनों को गाइडेंस दिया आपने अक्षिका मैम से पहले ये बताइए।
4: गाइडेंस देने में तो मैं ऐसा है कि ज्यादा गाइडेंस तो उन्होंने ये अक्षिका जी को दिया है। दूसरे लोगों मेरे पास गाइडेंस सिर्फ ही गाइडेंस में ही आते थे।
2: अच्छा, और कुछ नहीं था मतलब?
4: और कुछ नहीं था, और उनको मैंने ज्यादा गाइडेंस दे दिया है। जो दे दिया है वो आजकल हम लोग साथ में है। और ये
2: तो एक बात बताइए ना,
4: हाँ,
2: कि भाई जो कहते हैं ना एक वो एक दिल में जो धक-धक होती है,
4: हाँ जी,
2: वो किसी और को भी गाइडेंस देते हुए हुई थी कि भाई यहीं पर ही हुई वो?
4: ना वो इसलिए क्योंकि हमको एक हमारी जो स्कूल जो है
2: जी,
4: उसमें तो एक सिखाया गया था कि भाई मेरे जो गुरु है अजीत सिंह वाघेला करके,
2: क्या बात है,
4: म्यूजिक के,
2: जी जी जी,
4: तो उन्होंने बताया था, क्योंकि जब ये सब मुझे संगीत सिखा रहे थे तब हम लोग हमारी एमटी दोसी स्कूल में दो लोग हम साथ में ही थे, लेडीज लोगों को और जेंट्स लोगों को साथ में ही सिखाते थे।
2: जी जी जी जी।
4: तो ये भी होता था कि भाई हमारे अजीत सर को कभी कभी, क्योंकि उनके उनके डायबिटीज था उनको, तब कभी कभी ये बीमार रहते थे तो कभी उनको संगीत क्लास में नहीं आते थे पीरियड लेने के लिए।
2: जी जी जी।
4: वो ज्यादा जो कहते हैं ना रजा पर रहते थे, उनकी हाजिरी नहीं होती थी। तो मुझे बताया गया था कि जब आप कोई लेडीज को भी म्यूजिक सिखाओ तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम बस यही एक काम करेंगे, कि जो
2: हमारे कोई गलत भावनाएं मन में नहीं आनी।
4: हाँ, बस बस बस वही।
2: बहुत और कोई जब अपने गुरु को याद करता है ना तो बहुत खुशी होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और गुरु की शिक्षा को आपने अक्षरशः उसका पालन किया, ये बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत कम लोगों में होता है ऐसा, लेकिन होना यही चाहिए। और जिन लोगों के अंदर ये भावना होती है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहते हैं, और वो सब के सब सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि गुरु का आशीर्वाद उन सबके साथ होता है। खैर, तो संघर्ष का दौर शादी के बाद से ही शुरू हो गया था या फिर सब कुछ सही चल रहा था?
3: सर इसमें ऐसा है कि शादी के बाद ही संघर्ष वैसे बोले तो शादी से पहले ही हो गया था, क्योंकि शादी जब इनको मतलब हमने शादी करनी थी हमको, तो थोड़ा बहुत मतलब फ्रेंड सर्कल से और सबसे मतलब उधारी वो सब करना पड़ा था, तो वो जो हमको है वो चुकाने में शादी के बाद 3 साल लगे थे सर। तो ये संघर्ष की बात है, उस वो 3 साल के बाद हम लोग
4: धीरे धीरे
3: करके हम लोग मतलब प्रोग्रेस में थे अपना मकान या कुछ करने के लिए, या थोड़ी बहुत बचत भी बड़ी करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि इनका जो है वो ऑर्केस्ट्रा का काम तो ऐसा है कि जो मानसून के 4 महीने होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है मतलब प्रोग्राम वगैरह,
2: ठीक है,
3: तो सितंबर महीने से शुरू होता है ये भागवत सप्ताह वगैरह और जून महीने तक चलता है, तो इस दरमियान जो भी मतलब अर्निंग होता है हम उसमें से थोड़ी बहुत बचत करते हैं और रूटीन खर्च में थोड़ी बहुत खर्च होती है, तो 4 महीने में जो हमने बचत की होती है वो सब मतलब यूज हो जाती है, फिर सितंबर महीने से हमें 0 से शुरू करना होता है।
2: यानी कुल मिला के संघर्ष तो तभी से पता था कि होगा आगे, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाने का जो वादा किया है
3: जी सर,
2: उसके आगे वो संघर्ष जो है वो फीका है, बचत आप करके 4 महीने तो चला लेते थे, लेकिन इस बार तो पूरा साल ही ऐसा निकल गया, तो कैसे फिर काम चलाया आप लोगों ने, जरा अगर आप लोग बताना ठीक समझे तो बताइए हमारे सुनने वालों को।
3: सर ऐसा है कि अभी यहाँ पे गुजरात में कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, ब्लाइंड कपल्स और ब्लाइंड फ्रेंड्स, तो जिनको हमारी परिस्थिति का पता था उन्होंने जिनसे जितना हो सका उतना हमको हेल्प किया है अपनी ओर से
2: जी।
3: तो जैसे तैसे करके चल रहा है सर।
4: फिर यहाँ तो ऐसा है संदीप जी की, ये तो शहर है राजकोट, तो उसमें क्या होता है कि जो किराए का मकान होता है तो वहाँ मकान मालिक जो होते हैं वो हम थोड़ा कम भी किराए दे या तो वो ये लोग ये सोचते हैं कि आप खाना वाना कम खाइए, मतलब हमारा किराया जो है वो पहले दे दीजिए।
2: अच्छा, यानी किराएदारों का तो खैर वो मकान मालिक का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है,
3: और एक प्रॉब्लम वो हमने ये मतलब एक्सपीरियंस किया सर कि ब्लाइंड होने की वजह से जल्दी से कोई
4: मकान नहीं मिलता,
2: ये बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर विषय है ये श्रोताओं, आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित है, पति पत्नी है, तो उनका क्या कसूर है, लेकिन लोग इस आधार पर उनको मतलब मकान देने तक से कतराते हैं, ये थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है,
3: क्योंकि हम ये सोचते हैं संदीप जी कि अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो इसका तो हम सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका क्या किया जा
2: सकता है? इसका क्या किया जा सकता है? वो लोगों ने एक दुर्भावना मन में मतलब ऐसी उनके घर कर गई है।
3: जी जी,
2: ये बहुत ही गलत है, लेकिन ये
4: और संदीप जी दूसरा तो ये है कि हम जब कोई भी किराए का मकान लेते हैं तब हमको ये कहना पड़ता है कि देखो आप उन लोगों को एक ये होती है बात के ये लोग साफ सफाई रखेंगे या कोई ये छोड़
3: या
4: देंगे,
3: कोई गिर गए या दुर्घटना हो गई तो ये हम पर आ जाएगा सब, या ऐसे 2-3 रीजंस हो सकते,
2: मतलब वही मतलब जो कहते हैं ना कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए मैं हमेशा से यही बात मानता हूँ कहता हूँ कि मतलब हमारे अपने समाज को जागरूक करने से ज्यादा जरूरी है कि हम ये मुख्य धारा का जो समाज है ना उसको जागरूक करें।
3: जी बिल्कुल।
4: फिर उनको ये भी बताना पड़ता है मकान मालिक को, देखो आप हमें एक बार मकान दे दीजिए, 2 महीने या 3 महीने के बाद हम फिर अगर मकान को हमें बदलना है तो ये जोखम हमें उठाना है, हम ब्लाइंड लोग हैं तो हमें जोखम
3: चांस दीजिए हमको मतलब,
4: तो उनको डेमो बताना पड़ता है कि ये लोग साफ रखते हैं।
2: बताइए, बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है अक्षिका जी।
3: जी सर,
2: कि खासकर महिलाएं और उनके फैमिली के लोग इस बात की चिंता करते हैं, समझते हैं कि भाई शादी के बाद लड़की का जीवन जो है वो कैसा रहेगा, उसको तकलीफ तो नहीं होगी। आप जब ये बता रही हैं कि संघर्ष कहीं ना कहीं शुरू से ही था,
3: जी सर,
2: फिर भी आपकी फैमिली को या आपको कभी लगा नहीं कि यार आगे चल के कैसे काम चलेगा, कैसे होगा, ये बात कभी मन में नहीं आई?
3: वो सर इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है।
2: हाँ बताइए बताइए।
3: शादी से पहले जब हमारा मतलब शादी फाइनल हुई तो मेरी फैमिली वाले गए थे इनकी इनके घर पे देखने के लिए
2: जी।
3: तो उस वक्त मेरे क्योंकि पहले मुझे मैं सच कबूल करूं तो मुझे पहले खाना बनाना या कुछ नहीं आता था शादी से
2: जी,
3: पहले
2: जी जी जी जी।
3: तो मेरे फादर ने उनका मतलब स्वभाव थोड़ा स्ट्रिक्ट है
2: जी।
3: तो उन्होंने जब वहाँ देखने के लिए गए थे तो उनको बताया था सबको कि मेरी बेटी है वो अर्निंग करने में आपके बेटे को जरूर हेल्प करेगी लेकिन वो खाना कभी नहीं बनाएगी।
2: अच्छा अच्छा
3: जी ऐसा बोल दिया था मेरे फादर ने।
2: ओके।
3: और तो ये मेरे मतलब मेरी देवरानी है तो उन्होंने कहा था कि भाई ये रसोई नहीं आती इसको तो ये क्या करेंगे ये लोग मतलब। तब ये जो साहब हैं वो खड़े हो गए कि उनको नहीं आती वो सीख लेगी कोई बात नहीं जिंदगी हमें निकालनी है।
2: बिल्कुल सही है।
3: तो वहां से मेरी मदर और सभी को मतलब ये विश्वास हो गया था कि कुछ भी हो जाए ये इनको भूखी नहीं रखेंगे या दुखी नहीं रखेंगे।
2: ये बात सुनकर के मतलब आपके पिताजी भी प्रभावित हुए
3: जी।
2: जब ये बात ठीक है कल्पेश जी को तो गाइडेंस तो देनी थी चाहे चाहे गाने की दो चाहे खाने की दो
4: नहीं वो क्या है संदीप जी के मारे मेरे मित्र है विपुल व्यास जो उन्होंने उनका जो गुरु है वो तो उनके उनका और उनकी पत्नी जी है मेरी भाभी
2: जी।
4: तो उनका भी मुझे एक सपोर्ट था कि देखो अक्षिका जी को खाना वाना नहीं आएंगे उनको खाना नहीं आता है तो हम लोग इसमें हेल्प करेंगे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है
2: जी।
4: तब मुझे ये एक प्रकार का एक हिम्मत मिला था कि चलो ये हमारे भाई साहब है वो मुझे लाइफ में पूरा सपोर्ट करेंगे
2: जी जी जी
4: करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो संदीप जी ये खाना उनको आए आता है या ना आए लेकिन म्यूजिक मेरा फेवरेट विषय था मुझे तो यही एक बात है कि
2: संगीत के रूप में खाना मिल ही गया वैसे ही क्या
4: बस
2: संगीत की साधना करने वाला व्यक्ति मिल गया तो खाना बनाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।
4: और दूसरी बात ये कि उन्होंने जब पहली मेरी मुलाकात थी तब उन्होंने मुझे एक तबला ये आजकल लेडीज लोग तबला कम बजाते हैं संदीप जी।
2: हाँ हाँ हाँ ये हमने भी काफी कम सुना है और तो अजमेर में देखा है हमने एक व्यक्ति को जी।
4: तो उनके पास एक बहुत अच्छा ये हुआ कि भाई म्यूजिक में उनको तबला बजाना आता है तो लेडीज लोग जब तबला बजाती है तो उनके हाथ तो वैसे ही कोमल होते हैं
2: जी
4: तो तबला भी अच्छे तरीके से बजता है।
2: क्या बात।
4: लेकिन हाँ ये जब तबला बजाती है तो लगता है कि नहीं ये कोई मर्दाना हाथ पड़ा है तबले पर।
2: वाह ये जब तबला बजाती है तो आप बच जाते हैं फिर चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आप कीबोर्ड बजाते हैं अक्षिका जी तबला बजाती हैं और आप दोनों गा भी लेते हैं तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी तो छोटी मोटी आपके घर में ही हो गई।
4: हम हमारे घर पे तो करते हैं लेकिन
2: मकान मालिक बर्तन बजा देते हैं तो काम पूरा हो गया। सही है
4: तो लेकिन हमारे
2: अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी अक्षिका जी गुजराती गरबे की
3: जी सर।
2: गुजराती परिवार है और जो है अच्छा माहौल है
3: जी
2: तो
3: सर।
2: थोड़ा सा गरबे की भी झलक हो जाए हमारे सुनने वालों के लिए
3: जी। बिल्कुल सर
2: जी।

आसमान रंगीन चुंदरी चुंदरी रे मानी चुंदरी।

0: वाह जबरदस्त,
1: क्या बात है, पूरा माहौल गरबामय हो गया।
2: थैंक यू
1: जी। तो श्रोताओं, आप सब समझ रहे होंगे कि कार्यक्रम बहुत मस्ती से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप सब ने भी यहाँ तक इस कार्यक्रम को सुना है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आप सबका प्यार है इस कार्यक्रम के प्रति। लेकिन मैं बताऊं आपको श्रोताओं कि जितना आसान जीवन हम समझते हैं उतना आसान है नहीं। अभी इन दिनों पिछले कुछ महीनों से जिस संघर्ष के साथ इन दोनों का जीवन चल रहा है, वो संघर्ष कार्यक्रम में मतलब बता पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अक्षिका जी की प्राइवेट जॉब भी हुआ करती थी, वो जॉब भी चली गई, और अब बहुत ज्यादा मुश्किलें इस परिवार के ऊपर हैं। फिर भी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान से ये परिवार आगे बढ़ रहा है। अक्षिका जी, ये जॉब वाली कहानी क्या है, जरा बताएं हमारे श्रोताओं।
2: जी सर, जॉब में ऐसा है कि जो मेरी सिस्टर है वो एक स्कूल में जॉब करती थी, नचिकेता स्कूलिंग सिस्टम करके, जो कि यहाँ पे एक कॉमेडी आर्टिस्ट है हमारे गुजरात में, साईराम दवे करके, उनकी खुद की स्कूल है ये। तो मेरी बहन इसमें जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे जब म्यूजिक के लिए वैकेंसी हुई म्यूजिक टीचर की, तो उसने मैं उनको बात की साईराम जी को कि मेरी सिस्टर है ऐसे म्यूजिक के लिए, मतलब सब कुछ बताया मेरे बारे में उसने
1: जी।
2: तो मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरी जॉब लग गई वहाँ पे
1: जी।
2: वो उसमें मैं इसको मतलब आभारी हूँ उसकी, मेरी सिस्टर की वजह से मेरी ये छोटी सी जॉब हो गई
1: जी।
2: लेकिन बच्चे नहीं आ रहे और फीस भी नहीं आ रही, तो कुछ वेतन भी नहीं आ रहा है वहाँ पे।
1: कुछ ऐसा आश्वासन है अक्षिका जी कि जब बच्चे आ जाएंगे, स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो आपको वापस रख लिया जाएगा, या उसकी भी कोई संभावना नहीं है?
2: नहीं सर, ऐसा तो है, उन्होंने बताया कि हम किसी को भी मतलब नौकरी अभी छोड़ेंगे नहीं, स्कूल शुरू होगा तब देखा जाएगा, ऐसा बोला।
1: अच्छा अक्षिका जी, आपने शुरू में जिक्र किया था कि बहरीन में आपने अध्ययन किया है।
2: जी सर।
1: तो वहाँ पे विशेष विद्यालय में आपने अध्ययन किया?
2: जी, ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे।
1: वहाँ के विद्यालयों में, और आपने गुजरात में विद्यालय देखे होंगे, हो सकता है गुजरात के बाहर तो आपका जाना नहीं हुआ होगा इंडिया में।
2: नहीं, नहीं, नहीं।
1: लेकिन बहरीन में और गुजरात में आप क्या परिवर्तन आपने देखा, वहाँ पे स्थिति क्या थी और यहाँ क्या है, थोड़ा सा ये भी श्रोताओं को सुनना जरूरी है।
2: जी सर बिल्कुल। तो वहाँ पे ऐसा है सर कि यहाँ ब्रेल की शुरुआत जब शुरू से की जाती है सिखाने की, वहाँ पे ब्रेलर पर की जाती है, सिखाया जाता है सीधे।
1: अच्छा, वहाँ पे ये जो स्लेट वगैरह सिस्टम है, 2 लाइन 4 लाइन या 27 लाइन, ये सब नहीं है वहाँ पे?
2: कुछ भी देखने को आपको बहुत ही कम मिलता है वहाँ पे।
1: अच्छा तो बच्चा ब्रेलर, जैसे पहली क्लास के बच्चे को हमारे यहाँ कीबोर्ड वगैरह सिखाया जाता है
2: जी,
1: वहाँ पे कुछ नहीं ऐसा?
2: नहीं, बस ब्रेलर से ही सिखाया जाता है सीधे।
1: अच्छा
2: जी
1: जी जी जी। फिर इसके अलावा?
2: और फिर उसके अलावा तो मतलब फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं यहाँ।
1: हाँ, उसी मामले में हम पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ के विद्यालयों में आपने सुविधाएं ज्यादा देखी या ऐसा नहीं है?
2: बहुत सुविधाएं तो बहुत मिली वहाँ पर मुझे। सबसे पहले तो स्कूल बस भी आती थी लेने और छोड़ने के लिए, स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक।
1: हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं थी?
2: नहीं, हॉस्टल में जरूरत नहीं थी, और जरूरत हुई थी एक बार, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे रह नहीं सकती थी, क्योंकि उनका जो खाना होता है सर वो तो नॉनवेज होता है। तो ये हॉस्टल में मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए, वैसे मेरे फैमिली भी वहाँ पे थी, तो मैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी हॉस्टल में रहने की।
1: अच्छा, लेकिन आप डे स्कॉलर थे तो आपके लिए बस आती थी?
2: जी, सभी के लिए, मतलब जो बाहर रहते थे उनके लिए बस आती थी, और क्लास में एसी था सर, उसके बाद बस में भी एसी था, और घर पहुंचे तो घर में भी एसी था।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह,
2: सुविधा का लाभ मिला था मुझे।
1: वाह, एसी का पूरा माहौल था मतलब।
3: मतलब मुझे एसी लेना पड़ेगा अभी।
1: ये इशारा समझ लो कल्पेश जी आप। मतलब बहरीन और गुजरात में अंतर देख लो आप। तो कुल मिलाकर के ये है कि मतलब एक तरह से माहौल, मतलब जो रहा वहाँ का, आपको वहाँ पर एडजस्ट होने में दिक्कत नहीं आई?
2: दिक्कत आई थी सर, क्योंकि पहले तो ये लैंग्वेज ही सबसे पहले तो मुझे वो स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिल रहा था क्योंकि एज एन इंडियन वो किसी को नहीं, मतलब वहाँ पे जो वहाँ के अरब कंट्रीज के जो होते हैं उनको ही एडमिशन देते थे, और मुझे एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो बोहरा समाज की थी, तो उनकी वहाँ पे पहचान थी, तो उनकी रिक्वेस्ट से मुझे एडमिशन मिला था वहाँ पे। और अरबी लैंग्वेज सीखने में भी मुझे 6 साल लग गए थे।
1: अरे बाप रे बाप, अच्छा।
2: जो ये, लेकिन जब आई तब इतनी अच्छी आ गई कि ये मैं नहीं बोलती, लेकिन वहाँ पे रेडियो स्टेशन पे जब मैं पार्टिसिपेट करती थी कॉलिंग लाइव कॉलिंग प्रोग्राम, तो वो लोग बताते थे कि आपकी बोलने से ऐसे पता नहीं चलता कि आप अरेबिक नहीं हो, अरेबियन नहीं हो।
1: अच्छा, आप बोल के बताइए जरा कि रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, रेडियो मधुबन।
1: हो गया, सुनते रहो मुस्कुराते रहो भी आ गया।
2: नहीं वो तो नहीं आया क्योंकि ऐसा है कि
1: भी समझ गए यार,
2: 20 साल हो गए छोड़े हुए तो फिर वो भूल चुकी।
1: ये तो है, ये तो है। अच्छा, अरबी गीत तो आते होंगे आपको संगीत, क्योंकि आपने कहा शुरू से आपको था, तो हो जाए फिर 2 लाइनें किसी अरबी गीत की भी।
2: जी बिल्कुल।

0: वाह बहुत जबरदस्त। तो वहाँ पे आपके जो दोस्त वगैरह बने थे उनसे संपर्क में हैं आप आज भी या नहीं, आप किसी से कोई संपर्क नहीं है?
1: अब तो बिल्कुल ही संपर्क छूट गया वहाँ से तो।
2: कभी मतलब क्या परिस्थितियों की वजह से नहीं हो पाया या फिर मतलब वहाँ के लोगों में इस तरह की भावना नहीं थी, क्या वजह है?
1: नहीं नहीं परिस्थितियों की वजह से भी नहीं और वो कोई भी रीजन नहीं है, लेकिन पता नहीं अब पहले थोड़ा बहुत संपर्क था लेकिन वहाँ पे अभी बहुत कुछ चेंजेस हो गए नंबर्स में और तो इसकी वजह से मैं मुझे कुछ मिल नहीं पाया संपर्क।
2: वाकई में बड़ा मतलब परिस्थितियां बड़ी ही आप दोनों की ही जो है वो अजीब सी रही हैं और वो संघर्ष का दौर आज भी जारी है। कार्यक्रम के अब बिल्कुल अंतिम हिस्से में हैं हम लोग अक्षिका जी।
1: जी सर।
2: और आपने जो एक जिक्र किया था मैं चाहूंगा थोड़ा सा 2 मिनट उस पर भी चर्चा हो जाए ताकि हो सकता है आज का ये कार्यक्रम सुन करके, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हर किसी के मतलब का कुछ ना कुछ हो हमारे इस हमराही कार्यक्रम में इस गुलदस्ते में। तो आपने बताया एक फैमिली के बारे में जो फैमिली विवाह कार्य में लगी हुई है, दृष्टि बाधितों का विवाह वो करवाते हैं
1: जी,
2: तो क्या प्रक्रिया है?

0: मैं वहां तक पढ़ाते हैं और होम साइंस भी सिखाते हैं, म्यूजिक, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, ऐसी बहुत सारी मतलब चीजें सिखा कर उन उसको ये काबिल बनाते हैं कि वो समाज में कुछ अपना अपने बल पर कर सके, इस योग्य बनाकर उसकी शादी भी की जाती है। और शादी भी ये लोग जो लड़के होते हैं उनको उनको पूरी तरह जांच करके देख करके और दोनों परिवारों को मिला करके वो ग्रुप मैरिज करवाते हैं। और उसमें भी जो चीजें होती हैं वो सुई से लेकर अलमारी तक सभी चीजें वो देते हैं।
1: क्या बात है, वाह, मतलब गृहस्थी बसाने में पूरा वो अपना सहयोग देते हैं। अच्छा अक्षिका जी, आपने आजकल सीख लिया खाना वाना बनाना कि नहीं?
0: नहीं नहीं सर, मैंने सीख लिया था, जो ये विपुल जी हैं उनकी वाइफ है।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस ये सीखने में। थोड़े टाइम में उनके एक आध हफ्ता रही थी और उन्होंने मुझे जितना जरूरी था वो मैंने सीख लिया है। तो दाल चावल सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, एक चपाती में वो सब थोड़ी तकलीफ होती है अभी भी।
1: नहीं तो फिर आ जाए हमारी टीम खमन ढोकला खाने फिर आज।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो बना लेते हैं आप, मतलब
0: थोड़ा बहुत बना लेती है।
2: ये आलू पोवा बहुत अच्छा बनाती है।
1: अच्छा अच्छा, चलो पोहे खाने फिर रेडियो मधुबन की टीम आ रही है गुजरात में।
0: जी बिल्कुल स्वागत।
1: फिर आपने कहा ही नहीं कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में।
0: वो तो अमिताभ जी जैसे बड़े लोग ने बोल दिया तो हमको बोलने की जरूरत नहीं रही।
1: ये भी ठीक है। तो अब बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगा कि आप दोनों, आपकी समाज से, हमारे सुनने वालों से अगर कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ संदेश है, या आप चाहें कि लोग आपसे जुड़ें, ऑर्केस्ट्रा में इनवाइट करें, तो कल्पेश जी बताएं जरा अपने बारे में। आप अपना नंबर भी चाहें तो दे सकते हैं ताकि आपको हमारे देश भर के श्रोता जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, जो इतना प्यार देते हैं, अगर किसी कार्यक्रम में आपको इन्वाइट करना चाहें तो।
2: हमें ऑर्केस्ट्रा में कीबोर्ड बजाता हूं, तो आप हमें भी इन्वाइट कर सकते हैं या हम आपको भी इन्वाइट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9925371970, ये मेरा मोबाइल नंबर है।
1: 9925371970 जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ श्रोताओं, आप चाहें तो इनसे बात करके इनको मदद भी कर सकते हैं। 9925371970।
2: बस वही
1: संदेश आपका कल्पेश जी, आप कुछ अपनी तरफ से, अपने दिल की बात जो शायद हम नहीं पूछ पाए और आप कहना चाह रहे हो इस कार्यक्रम के माध्यम से।
2: हाँ, तो ये बात मुझे एक कहना है कि देखो, हम लोग ने हमारी एक बात, हमने शुरू से यह बात रखी कि भाई हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, तो किराए के मकान में रहते हैं, तो आजकल ये मोदी जी की एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना
1: जी,
2: मैंने वहाँ दो बार फॉर्म फिलअप किया है
1: जी।
2: तो पिछले साल वो ड्रॉ हो रहा है तो उसमें भी नहीं हो रहा है, हो पाया, लेकिन अब भगवान के ऊपर हमने ये छोड़ दिया है कि बस अगर लगता है तो ये एक मकान मिल जाए तो इसमें म्यूजिक क्लास शुरू करके भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि किराए के मकान में संदीप जी हमने तो बताया
1: आपकी बात कल्पेश जी। ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे उन जागरूक साथियों से जो गुजरात में हैं, कि आप लोग जो जानते हैं इस बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो राजकोट शहर के अगर कोई साथी हो जो एक्टिव हो और किसी भी संगठन के माध्यम से अगर इस परिवार की मदद आप लोग करवा पाए तो मुझे लगता है आज के इस कार्यक्रम को हम सफल कह सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी आप सबकी, कोई भी व्यक्ति जो राजकोट में हो वो इस बारे में इनकी मदद करे, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से कई बार उदासीनता हो जाती है और अधिकारी कई बार सुनते नहीं है, ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब दो चार लोग, पढ़े लिखे लोग जब जाते हैं उनके सामने, तो फिर अधिकारियों की बोलती बंद होने में भी देर नहीं लगती है, इसीलिए आप सबकी मदद की आवश्यकता रहेगी जी। अक्षिका जी, आप भी अपना संदेश दे दें हमारे सुनने वालों को।
0: बस यही के रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से जो ये प्रोग्राम हो रहा है हमारा ही, तो इसमें मैं ये चाहूंगी कि हम ब्लाइंड लोग तो सुनते ही हैं ये प्रोग्राम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दृष्टिवान लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचे और हमारी जो समस्याएं होती हैं वो उनको समझ सके, जागरूकता आए उन लोगों।
1: बहुत अच्छा लगा आप दोनों को आज इस कार्यक्रम में सुन करके, और आपके संगीत को भी सुना, आपकी बातों को भी सुना, आपकी परेशानियों को भी सुना, और आप

0: की खट्टी मीठी अच्छी यादों को भी हमने जाना। तो
1: हमें भी जी, हमें भी अच्छा लगा कि भाई बस ये रेडियो मधुबन के अंदर
2: माध्यम से हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला।
0: जी, निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद में आप लोगों के आने वाले जीवन में परेशानियां कम हो जाएं और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आती रहें। तो श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। तब तक रेडियो मधुबन को ट्यून इन करके रखें और अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, शिकायतें देने के लिए डायल करें 94-14-15-14-15। और बस मैं भी जाता हूँ, खमन ढोकला खा के आता हूँ।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है बहुत ही खूबसूरत क्योंकि जिंदगी से प्यार करना सिखाता है, खुद से हमें मिलवाता है, एक ऐसे डायरेक्शन में हमें ले जाता है जहाँ पे हम भूल जाते हैं कि उन परेशानियों को पहाड़ जैसा बनाते बनाते कहीं उसी में खो तो नहीं गए हम, बल्कि वापस आ जाते हैं खुद की तरफ, वापस आ जाते हैं खुशियों की तरफ। और आज इस कार्यक्रम में हम खुद से प्यार करना थोड़ा सा और सीखेंगे। कहते हैं वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता जो खुद से प्यार करना न जानता, और हम तो अपने रिश्तों में, जिंदगी में न जाने कितने लोगों से प्यार करते आए, तो क्या कुछ ऐसा प्यार भी है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक? आइए जानते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं कल्पना जी ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद अरुषि जी, फिर से एक बार श्रोताओं से मिलकर हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है।
0: थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए अपना समय निकालकर। और हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी, जो कि जाने माने रेडियो मधुबन के आरजेपी हैं और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। कल्पना जी नमस्कार, सभी हमारे श्रोता मित्रों को नमस्कार। हर बार रेडियो के जरिए ही सही, जब हम एक दूसरे से ऐसे मुलाकात करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हम एक दूसरे के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं, और यही हम सबको करना भी चाहिए।
0: और आजकल हम प्यार दिखाने का, दर्शाने का बहुत सारा मटेरियल भी हमें मिलता है ना। आजकल हम YouTube पे रील्स में भी देखते हैं, सरप्राइज करना, कुछ नया करना, कुछ बड़ा करना, कुछ क्रिएटिव करना, बहुत सारे तरीके हम अपना रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले अगर जानने की कोशिश करें कि, क्योंकि वर्ड सेल्फ लव शायद कुछ साल पहले तक हम इस बारे में बातचीत नहीं करते थे, पर सोशल मीडिया का कल्चर आज इतना है कि ये वर्ड जगह जगह सुनाई देता है, तो ये वर्ड है क्या सही मायने में, जो शायद 30 सेकंड की रील्स में हमें नहीं पता पड़ पाता कभी कभी, अगर आप लोग इसे डिफाइन करें कि क्या है ये सेल्फ लव?
1: धन्यवाद आरुषि जी, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। कहा जाता है वो व्यक्ति अपने आप में खुश और संतुष्ट रहता है जो खुद से प्यार करता है। हम जब भी किसी से प्यार करते हैं तो हम उस व्यक्ति को पहचानते हैं, इसलिए उनसे प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि उनके अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, और उनसे कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं, तब हमें उनसे प्यार होता है। और जब हमें किसी से प्यार होता है, चाहे वो दोस्त हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, परंतु जब हमें किसी से प्यार होता है तब हम उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करके वो जो है जैसा है उसे स्वीकार करते हैं। तो वही चीज जब हम खुद से प्यार करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मैं जो हूं जैसा हूं अपने आप को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आरुषि जी या श्रीनिधि भाई भी, सॉरी श्रीनिधि जी भी मेरे से सहमत होंगे कि खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है। अरे आप अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर आप खुद ही खुद से प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो वो डेफिनेटली प्योर भी होगा, 100% भी होगा, सच्चा भी होगा, है ना? क्योंकि आप अपने आप से ऐसा प्यार कर सकते हैं जिस प्यार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत प्यार करने वाला हो, मुझे रिस्पेक्ट देने वाला हो, मेरी केयर करने वाला हो, मुझे समय देने वाला हो, मुझे अंडरस्टैंड करने वाला हो। सो जब हम अपेक्षा रखते हैं दूसरों से ऐसे, चाहे वो फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, तो कई बार हमें निराशा मिलती है और फिर उस निराशा में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, या वो जो निराशा है उसको हम कैरी करते हैं अपने लाइफ में। क्यों ना हम सबसे पहले खुद से प्यार करें? खुद से प्यार करने का मतलब सबसे पहले मैं जो हूं जैसा हूं अपने आप को एक्सेप्ट करना, है ना? कुदरत ने हम सभी को बहुत सारे गुण, शक्तियां और पोटेंशियल से नवाजा है, अगर हम अपने आप में देखें कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ये कला है, मैं इसमें माहिर हूं, तो मैं अपने आप को अच्छी तरह से प्यार से सबसे पहले एक्सेप्ट कर पाऊंगा।
0: वंडरफुल। अब मैं श्रीनिधि जी आपसे भी जानना चाहूंगी, जैसे सेल्फ लव का मीनिंग बताया कल्पना जी ने बहुत ही सुंदर, ये क्यों कहा जाता है कि जो खुद से प्यार करना नहीं जानता वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता? क्योंकि हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने सिबलिंग्स से, भाई बहनों से, दोस्तों से, कितने लोगों से, लेकिन खुद से प्यार करना के बारे में सोचा नहीं होता कभी। तो ये लाइन, इसका मतलब क्या है और क्या ये सच है?
2: जैसे अभी कल्पना जी ये बात कह रहे थे तो मेरे को वो शेर याद आया, खुद से ही जब मोहब्बत हो, खुद से ही जब मोहब्बत हो गई तब हर गम से राहत हो गई, ये बात कही जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि हम दुखी होते हैं या हमें किसी प्रकार का गम जिंदगी में देखने को मिलता है तो हम ये सोचते हैं कि उसकी वजह कोई और है। हम कहते हैं कि मुझे वो नहीं मिला या ये चीज नहीं मिली, या हम जो चीजें हमारे पास कमी पेशियां हैं उसकी वजह से हम नाराज या गमगीन होते हैं। अक्सर कभी कभार ये भी चीज देखने को मिलती है कि कुछ खराब हालतों में लोगों की सोच ऐसी हो गई होती है कि किसी और को मिला और वो चीज मुझे नहीं मिली, इसलिए वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो यहां पर देखने वाली बात यही है कि हमारा गम आखिर है क्या, हमारा गम कमी है किसी चीज की। हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी से हमें कोई चीज मिले, जरूरी नहीं ये चीज कोई फिजिकल चीज हो, ये मोहब्बत हो सकती है, प्यार हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, किसी ने मेरे मुझे पूछा नहीं, ये सिंपल सी बात पर भी लोग नाराज हो जाते हैं या वो दुखी हो जाते हैं। तो ये तब होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से होती है। मैं ये सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा, हालांकि कल्पना जी ने रिलेशनशिप्स का जिक्र किया, आज हम रिलेशनशिप्स में भी एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि सामने वाला या सामने वाली मुझे ये चीज दें और इस तरीके से मेरे साथ पेश आए। तो हमारी उम्मीदें दूसरों से कोई चीज की जो है वो हमें अक्सर परेशान करती है जब वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो अगर मुझे खुद ही से मोहब्बत हो जाए, जैसे ये शेर कह रहा था कि अगर मुझे अपने आप से मोहब्बत है तो मैं हर गम से मेरी राहत हो गई है, मतलब मुझे राहत मिल गया, अब मुझे किसी और से गम ही नहीं है क्योंकि मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूं। मुझे प्यार की जब बात कही जाती है, या प्यार का मतलब आई लव यू कहना नहीं है कि हर दिन हम आईने के सामने खड़े हो जाएं और सुबह सुबह उठ के बोले आई लव यू, हालांकि कहना भी चाहिए, अच्छी बात है, यदा कदाप कर भी लें, मगर कहने का भाव वो नहीं है कि मैं अपने आप को प्यार से इतना भरपूर कर लूं कि मुझे कहीं और से प्यार की तमन्ना या प्यार को भरने की जरूरत नहीं पड़े। अब जैसे आप ये बात कह रहे थे आरुषि जी, मैं आपके सवाल पर आता हूँ। जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो हम माँ बाप से प्यार करते हैं, भाई बहनों से प्यार करते हैं, हमारे दोस्तों से प्यार करते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने परिवार में बीवी बच्चों से या अपने पति से, सबसे आप प्यार करते हैं। अगर आप मैरिड नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी संबंध आप हैं, आप प्यार तो करते ही होंगे, मगर कभी कभार इंसान प्यार की कमी महसूस करता है, किसी से नाराज हो जाता है या किसी ने टाइम पे मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे से ठीक से बात नहीं की, मेरी बात नहीं सुनी, तो इन लम्हातों में हम प्यार की कमी महसूस करते हैं क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं कि वो तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि प्यार देने का सिलसिला है, अगर हम उसे लेने के बारे में सोचने लगे तो शायद हमें तकलीफ होने लगती है। अक्सर करके हमें माँ बाप के प्यार की कमी महसूस नहीं होती, खासकर तब, समझ ले अगर हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हमारे साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो कभी कोई बच्चा अपने माँ बाप से ये शिकायत नहीं करता, मम्मी आप मेरे से प्यार नहीं करते, पापा मेरे से प्यार नहीं करते, नहीं करता है सब। हाँ, छोटे बच्चे जब घर में दो बच्चे होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, तो तब जरूर कंपेयर कर लेते हैं, आप मेरे से ज्यादा तुम भाई को प्यार करती हो, मेरे से ज्यादा तुम बहन को प्यार करती हो, ये जरूर कह सकते हैं, मगर ये नहीं कहते कोई भी बच्चे कि माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते। हालांकि आप रिलेशनशिप्स में ये जरूर सुनेंगे कि एक समय के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी जिस प्रकार के संबंध है, पति पत्नी जो भी संबंधों में वो है, एक समय के बाद में लोग कह रहे थे तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते।
0: सालों बाद ऐसा डायलॉग सुनने को मिलता है।
2: क्यों? क्योंकि माँ बाप का प्यार देने का प्यार है, वो हमेशा ही इसे देते रहते हैं, उनसे उनको कभी उम्मीद नहीं होती कि बच्चे उनके लिए कुछ करें या उन्हें कुछ रिटर्न करें, नहीं। और दूसरे संबंधों में जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई नहीं वो हमसे प्यार नहीं करते, जब हम ये समझने लगते हैं इसका मतलब ये है कि हम उनसे उम्मीद लगा बैठे थे और वहां से वो चीज मिली नहीं। और इसलिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है कि जब मैं खुद को खुद मोहब्बत करने लगूं, यानी खुद ही अपने आप को फुलफिल रखूं, मैं उस प्यार का स्रोत बना रहूं और अपने आप को भरता रहूं। हम प्यार तो देने का नाम है, ये कहते भी हैं कि हम प्यार देते हैं दूसरों को, मगर कभी कभार अगर हम अपने आप को भर लें, अपने आप को दे दें प्यार, शायद हम खाली होंगे ही नहीं, किसी और से मांगने की उम्मीद ही नहीं होगी।
0: मतलब वो भरपूर रखता है हमें जब हम खुद से प्यार रखते हैं, खालीपन की महसूसता नहीं होती। कल्पना जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी कभी ऐसा होता है रिलेशनशिप्स की क्योंकि बात की कि मान लीजिए प्यार तो बहुत है लेकिन किसी ने मान लीजिए फोन नहीं उठाया, और कोई फोन ना उठाए उसमें इतना पैनिक हो जाता है कि उसको मतलब 40 बार 50 बार 100 बार भी कॉल मिला देते हैं, कैसे नहीं उठाया या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में या क्या कर रहे होंगे, मुझे क्यों नहीं बताया। वो जो एंजाइटी हो जाती है या वो ऊपर नीचे हो जाते हैं इतने सारे थॉट्स, और तब तक कुछ और नहीं सोचता जब तक वो बात ना हो जाए, तो क्या ये भी इस लेवल का प्यार है जो लेकिन वो मतलब ये सब चीजें भी लेकर आता है प्यार, उतार चढ़ाव ऐसी चीजें भी लेकर आता है प्यार?
1: आरुषि जी, जिनसे हम प्यार करते हैं चाहते हैं कि उनके साथ हम हमेशा जुड़े रहे, उनका अटेंशन हमें हमेशा मिलता रहे, ये तो एक कपल्स के बीच की बात है, अटेंशन प्यार मुझे चाहिए उनका। लेकिन बाकी सभी रिलेशंस में जब हम फोन करते हैं और बहुत लंबे समय तक हमारा फोन नहीं उठाया जाता है, समझो कि एक लड़की घर से निकलती है कॉलेज के लिए और शाम को वापस नहीं लौटती है, तो उसके माता पिता उसको हजारों बार कॉल करेंगे, और बेदरकार वृत्ति से अगर लड़की उन्हें जवाब न दे तो माँ बाप क्या सोचेंगे, सोचेंगे ना कि कहीं कुछ गलत हो गया है। सो इसलिए वो एंग्जाइटी तो नॉर्मल है, नेचुरल है, होगी ही। परंतु कोई व्यक्ति काम पर गया है, बिजी है, लोगों के बीच में है और वो हमारा फोन अटेंड नहीं कर रहा है केवल इस अहंकार के कारण कि मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड किया, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया,
0: मुझे इग्नोर कैसे
1: इस
0: किया?
1: बात को लेकर इग्नोर कैसे किया, तो ये दर्शाता है कि आप अंदर से कितने खाली हैं। तो अंदर से खाली जो व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों के अटेंशन, प्यार नहीं कहेंगे हम, अटेंशन के बारे में इनसिक्योर रहता है, उसको अटेंशन भी चाहिए, उसको पजेसिवनेस भी होती है कि ये व्यक्ति केवल मेरा है, ये किसी और से बात नहीं करना चाहिए, किसी और से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये मेरी अमानत है और हर समय मेरी आसपास रहनी चाहिए। तो ये जब चीजें आती है लाइफ में तब हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहना शुरू होते हैं, है ना। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? सो सेल्फ लव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें अपने आप के साथ दोस्ती करनी चाहिए, अपने लिए एक बेस्ट फ्रेंड मैं बन जाऊं तो मैं अपने साथ टाइम, अकेले में टाइम बिताने में बहुत खुश रहूं, और मैं ढूंढू कि कब मैं लोगों से फ्री हूं और खुद के साथ टाइम स्पेंड करूं। जब हम खुद के साथ अकेले में बिना कुछ मोबाइल वगैरह यूज किए नेचर के सानिध्य में बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत सारी बातें हम अपने आप में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं, पुरानी घटनाओं से मिली हुई शिक्षा को दोहरा सकते हैं, प्रकृति के साथ संबंध बना सकते हैं, अपनी हार्ट बीट्स को सुन सकते हैं, अपने शरीर की जो कई बार शरीर चीख पुकार करता है, कई बार शरीर मैसेज देता है, उनको हम साइलेंस में सुन सकते हैं। शरीर के साथ हम अपने मन की बात को सुन सकते हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मेरा मन किस में लगता है, मुझे खुशी किस चीज में मिलती है। जब हम खुद के साथ बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं, तो अपने आप से हमारी दोस्ती होने लगती है। मेरे साथ अक्सर पहले ये होता था कि जब भी मैं कभी फ्री होती थी तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था कि अरे कोई नहीं है, मैं किससे बात करूं, मैं अकेली फील कर रही हूँ, लोनलीनेस आ रहा है, और मुझे बहुत रोना आता था कि अरे मैं अकेली हूँ, कोई आसपास नहीं, मैं किससे बात करूं। मैं जाकर किसी से बात करती थी या फोन करके किसी को। तो लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि आपके लिए कोई भी हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता है
0: जी।
1: आपको खुद के लिए खुद अवेलेबल रहने की आवश्यकता है। सो मैं अपने लिए अवेलेबल नहीं हूँ, बाकी सबके लिए अवेलेबल हूँ। जैसे मैं मदर्स की बात करूं, तो किसी भी मदर को पूछो कि आपको क्या चाहिए। मैं अपने बच्चों की, परिवार की खुशी चाहती हूँ, उनकी प्रोग्रेस। मैं फिर से पूछती हूँ उनको, आपको अपने लिए क्या चाहिए। नहीं, मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद ना मिले चलेगा, मुझे खाना ना मिले, कोई खाना नहीं बचे और मेरे बच्चे प्यार से खा ले, मुझे चलेगा। मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं आराम नहीं करूंगी जब तक मेरे बच्चों को मैं स्टेबल या सेटल नहीं करूं।
0: बिल्कुल।
1: सो ये है महिलाओं के बीच में, माताओं के बीच में, स्पेशली अभी अभी रिसेंटली हमने मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया। और जब ये खुद को निग्लेक्ट करती है मदर्स अपने बच्चों के या अपने परिवार के खातिर, तो वो वहां पर सेल्फ लव को डेवलप करने की जरूरत है। उनको चाहिए कि अपने लिए कुछ क्षण फुर्सत के निकाले, खुद के साथ टाइम स्पेंड करे। मुझे चाय पसंद है, चलो ना मैं अपने लिए चाय बनाऊं और बैठकर कहीं आराम से गा। मदर्स की जब हम बात करते हैं, कभी अपने लिए नहीं सोचती है कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मुझे आजकल थकावट हो रही है, मेरे घुटने और पैर दर्द कर रहे हैं, मेरा सिर दर्द होता है, मुझे नींद पूरी नहीं मिल रही। तो किनारे करके अपने बच्चों के लिए दिन रात, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। परंतु ऐसी ही मदर्स को चाहिए, सेल्फ लव का मतलब है कि थोड़ा सा टाइम 24 घंटे में अपने लिए भी निकाले। जब आप अपने मनपसंद की चीज बनाकर खुद एकांत में बैठ के आराम से एंजॉय करें
0: जी,
1: तो हमें अपने आप के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है।
0: और बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपने बातें बताई कल्पना जी, मुझे ये समझ में आया उससे कि खुद के साथ टाइम बिताने को हम कभी कभी, खुद के साथ प्यार करने को हम ये समझते हैं जैसे किसी और का शेयर हमें बांटना पड़ेगा, इससे अच्छा बच्चों को प्यार कर लें, इससे अच्छा रिश्तों को प्यार कर लें। लेकिन ऐसा है नहीं, खुद के साथ प्यार करेंगे तो उनको भी ज्यादा दे पाएंगे। तो वो टाइम स्पेंड करना कितना जरूरी है खुद के लिए, वरना हम खाली होते जाएंगे तो प्यार देना मुश्किल होता जाएगा। जैसा आपने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात। श्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी श्रीमति जी कि सेल्फ लव क्या, हमने कोई चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती कभी कभी, तो कैसी महसूसता होती है, मतलब क्या फील होता है जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, क्या अनुभव कैसा होता है वो?
2: सबसे पहला तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि कभी क्या मैंने अपने लिए वक्त निकाला है, कभी मैं नेचर में, प्रकृति के सानिध्य में, कहीं बगीचे में, कहीं बाहर सैर करने के लिए मैं निकलूं, कभी मैंने अपने पसंद का संगीत सुना, कभी मैंने अपने लिए वक्त निकाल कर मैंने अपनी दिल की धड़कनों को सुना हो। जब वो ये बात कह रहे थे तो मैंने कहा कि जब भी मैं ये चीज करता हूं अपने लिए, और मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूं जो प्रकृति के सानिध्य को पसंद करते हैं और मेरे आसपास प्राकृतिक सौंदर्य की छटाएं हर दिन मौजूद हैं, मैं एक हिल स्टेशन पर रहता हूं, तो इस वजह से मैं आबू की इन पहाड़ियों का लुत्फ लेता हूं और लगभग हर दिन ही मैं लेता हूं। और मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं इस सौंदर्य को, ये जो खूबसूरती कुदरत ने बख्शी है इसका आनंद खुद लूं और अपने लिए मैं लेता हूं ये चीजें। और जब भी हम अपने लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो हम सभी को अच्छा लगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे जब कल्पना जी बात कह रहे थे कि अपनी धड़कनों को कभी सुनना चाहिए, तो मुझे कैफी आजमी के लिखे हुए आशार याद आते हैं। उन्होंने कहा कि तू अपनी दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। बहुत ही सुंदर गाना भी है, फिल्म में इसका इस्तेमाल किया गया,
0: बहुत सुंदर गीत।
2: तो ये लाइनें याद दिलाती हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये रोमांटिक गाने जो लिखे गए हैं वो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए लिखे हैं, मगर कभी कभार अगर आप अपने लिए इन लाइनों को अप्लाई करके देखें तो अपने लिए भी कभी कभी जांच करके देख लें कि दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं नहीं, कि अपने लिए मैं कुछ कर रहा हूं या नहीं, ये भी पूछना बहुत जरूरी है। जब हम ये चीजें करते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि अपने साथ जो हमने वक्त बिताया है वो कितने खूबसूरत लम्हात हैं और वो लम्हे बेशकीमती होते हैं। कभी कभार आप देख रहे होंगे कि घर में कोई गृहिणियां होती हैं, घर का काम कर रही होती हैं, मगर वो अपने पसंद का म्यूजिक लगाकर या फिर रेडियो सुनते हुए झूमते हुए गाना गाते हुए काम कर रही हैं, वो वही घर का काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही होंगी या घर की साफ सफाई कर रही होंगी या खाना बना रही होंगी, मगर वो एंजॉय करते हुए चीजें कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर दिन ऐसा कर पाना संभव है या नहीं, मगर जिस रोज उन्होंने इस तरीके से अपने काम को एंजॉय किया होगा उस दिन के बारे में अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ये कहेंगे वाह आज का दिन तो क्या दिन गया है,
0: क्या दिन गया है।
2: तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, जरूरी नहीं कि हम हॉलीडे पे चले जाएं, हम सोचें कि भैया चलो श्री जी माउंट आबू में रहते हैं हम भी चले जाएं माउंट आबू में और ऊपर नक्की झील के किनारे
0: पहाड़ों पे जाके सेल्फ लव हो पाएगा,
2: नहीं ऐसा नहीं है,
0: ऐसा नहीं है।
2: बिल्कुल आपको कभी कभार अपने लिए ब्रेक लेना चाहिए, बिल्कुल जरूरी भी है, और इसलिए मैंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे आसपास ये चीजें मौजूद हैं। आपके पास भी ऐसे बहुत सारी चीजें मौजूद होंगी। मैं आज से कई सालों पहले मैं बैंगलोर में रहता था और बैंगलोर को जैसे आप जानते होंगे उसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कि भारत की उद्यान नगरी उसको कहा जाता है कि इतने सारे बगीचे और बाग और पार्क्स बैंगलोर में हैं जिसकी वजह से उसे उद्यान नगरी कहा जाता है। तो कितने लोग होंगे जो बैंगलोर के इतने बड़े शहर में रहते हो अपने आसपास के बगीचे को जानते होंगे या पार्क को जानते होंगे और कितने लोग हर दिन अपना समय वहां बिताने जाते होंगे। ये भी एक प्रकार का सेल्फ लव है, आप अपने लिए समय निकालकर बाहर जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो। चलिए आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस से आने के बाद भी या ऑफिस जाने से पहले आप अपने लिए क्या 5 मिनट 10 मिनट निकाल पा रहे हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि हम एक्चुअली में क्या चीजें हम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अपने आसपास ही कर सकते हैं, जैसा आपने बताया अलग अलग शहरों का भी बताया, तो भले हम ट्रिप्स पे भी जाएं लेकिन अपने आसपास का वेट ना करें कि ट्रिप पे जाएंगे तो ही खुद के साथ समय बिताएंगे, अभी भी छोटी छोटी खुशियां छोटी छोटी चीजें अपने लिए करना शुरू कर दें और वो अनुभव करें कि खुद से प्यार करना कैसा होता है। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी, आप दोनों ने मुझे लगता है हम एक्सपीरियंस कर रहे थे आप जो जो बोल रहे थे साथ साथ, तो कुछ एक स्टेप तो और आगे लेंगे ही, क्योंकि अगर जिंदगी इससे बेहतर होती है खूबसूरत होती है सिर्फ इतना सा कदम बढ़ाने से, तो क्यों ना बढ़ाएं हम खुद से प्यार सबसे पहले, क्यों ना निभाएं हम। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज स्टूडियो में,
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आरुषि जी, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज आप अपने लिए कुछ कीजिए, अपने आप से प्यार करने के मायने समझें, अपने पसंद का गाना लगाइए, थोड़ा झूम लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, घर से बाहर निकलिए या घर के काम करते हुए भी आपकी पसंद की चीजें जो हैं वो करें और आप ये समझें कि मैं अपने आप को प्यार करते हुए ये चीज कर रहा हूं। अगर आपको ये सारी चीजें मुश्किल लगे तो आईने के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कभी कभार ये भी चीज कर लेने से हमारा दिन बेहतर हो जाता है।
0: मैं तो डेफिनेटली जाके अभी अपना फेवरेट गाना प्ले करने वाली हूँ और अकेले में उसे एंजॉय करने वाली हूँ। तो दोस्तों आप भी जरूर कीजिएगा ये और बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। हमें व्हाट्सएप में मैसेज करके, हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी से कह दीजिए लव यू जिंदगी।
3: दिल को संभाल, तू गम न पाल, दबे दबे सोए सोए अरमान निकाल।

0: करके टोना टोटका सब तूने हिम्मत हारी। बस में तेरे आज तक आई ना चंचल नारी। दे दे साड़ी एक छपा के बात बने अलबेले,
1: हर बात बने अलबेले।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है, ये समझ में आएगा। ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

0: एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं वीर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की साहस भरी कहानी। वो शूरवीर जिनके फांसी पर चढ़ते हुए आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। ये एक ऐसा मंत्र था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में जबरदस्त ऊर्जा भर दी थी। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया तो ये पूरे राष्ट्र की आवाज बन गया। तमिलनाडु में भारतीय, पंजाब में क्रांतिकारी, सभी इससे प्रेरित हुए। ब्रिटिश पाबंदियों के बावजूद लोग इसे गाते एवं गुनगुनाते रहे। यहाँ तक कि 1906 के बारीसाल आंदोलन के रक्तपात के बीच भी यही मंत्र गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज और 1946 के नौ सैनिक विद्रोह में गूंजता रहा। खुदीराम, अश्वाकुल्ला, आजाद और तिरुपुर कुमारन, सभी का नारा एक ही था, वंदे मातरम। जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार किए और अपनी आवाज उठाना एक अपराध बन गया, जब लाठीचार्ज, गोलियां और जेलें भी भारतीयों को रोक नहीं पाई, तब हमारे क्रांतिकारियों ने पुकारा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो जानते थे कि वंदे मातरम की गूंज में डर के लिए कोई जगह नहीं है। तभी तो मृत्यु को सामने खड़ा देखकर भी क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा का साहस नहीं टूटा।
1: दीदी, सच में मदन लाल का साहस देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
2: यही तो वीरों की विशेषता होती है बन्नो, वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। पुलिस हिरासत में जाने से लेकर अदालती कार्यवाही शुरू होने तक मदन लाल के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई।
0: वाइली की मौत की जांच कैंसिंगटन टाउन हॉल में कोरोनर सी लक्समूर ड्रू के सामने चल रही थी। वहां ब्रैड्सफोर्ड गार्डन्स हैम्पस्टेड के एक पूर्व सैनिक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स रोलरटन वहां मौजूद थे, लेकिन मदन लाल ने इस कार्यवाही में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। कोर्ट में एक गवाह ने ढींगरा पर कुछ अजीब से आरोप लगाए।
3: ढींगरा ने शायद भांग नाम का नशा किया था, क्योंकि वे थोड़े सुस्त और खोए खोए से थे। भारतीय लोग इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले अक्सर भांग का सेवन करते हैं।
4: क्या आपने ढींगरा को किसी नशे के असर में देखा था?
5: नहीं, ढींगरा बिल्कुल सामान्य स्थिति में लग रहे थे और पूरी तरह शांत थे।
0: मुकदमे के दौरान मदन लाल ढींगरा की मकान मालकिन हैरिस ने भी अपना पक्ष रखा।
6: मुझे नहीं लगता कि ढींगरा किसी तरह का नशा करते थे।
0: वॉक्सहॉल ब्रिज के डॉक्टर जॉन बुकानन हत्या की जगह पर पहुंचने वाले पहले डॉक्टर थे, उन्होंने भी गवाही दी।
7: भीड़ में वह सबसे शांत व्यक्ति लग रहे थे।
0: मुकदमे के दौरान मदन लाल ढींगरा की मानसिक जांच मनोचिकित्सकों द्वारा की गई थी, ताकि ये पता चल सके कि क्या उनकी मानसिक स्थिति सामान्य से कमजोर है। लेकिन जांच के नतीजे सामान्य आए। जब वेस्टमिंस्टर के कोरोनर जॉन ट्राउट बेक के सामने जांच हुई तो ढींगरा ने अपना पक्ष रखा।
8: मुझे लाल काका की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा अफसोस है। अगर वे बीच में ना आए होते तो उनकी जान न जाती।
0: ढींगरा को वेस्टमिंस्टर पुलिस कोर्ट के मजिस्ट्रेट हॉरिस स्मिथ के सामने पेश किया गया। वहां उन्होंने कहा,
8: मैं दया की भीख नहीं मांगता और ना ही मैं अपने ऊपर आपके अधिकार को स्वीकार करता हूं।
0: ढींगरा का मामला सेशंस कोर्ट को सौंप दिया गया। उन्होंने कोर्ट से सीधे सीधे पूछा,
8: अगर जर्मनों को इंग्लैंड पर राज करने का कोई अधिकार नहीं है तो फिर अंग्रेजों को भारत पर राज करने का क्या अधिकार है?
0: मुकदमे के दौरान भारतीयों को कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अपने अंतिम दिनों में मदन लाल ढींगरा ने इच्छा जाहिर की थी कि अपने कपड़े, किताबें और अन्य सामान बेच दिए जाएं।
9: उससे जो भी पैसा मिले उसे नेशनल फंड में जमा करा दिया जाए। हालांकि इन्हें लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जब्त कर लिया। दो ट्रंक चीफ इंस्पेक्टर मैकार्थी ले गए। ढींगरा ने चिट्ठी दी थी जिसमें उन्होंने नितिन सेन द्वारका दास को अपनी निजी चीजों का मालिक बनाया था, लेकिन लंदन टाइम्स की 1 जनवरी 1910 की एक रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 1909 को जब ये मामला बो स्ट्रीट मजिस्ट्रेट की अदालत में आया तो उन्होंने फैसला सुनाया कि पुलिस ढींगरा की चीजें नितिन सेन को लौटाने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि मदनलाल ढींगरा ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी।
1: दीदी, क्या किसी ने मदनलाल ढींगरा को बचाने का प्रयास नहीं किया? और सावरकर जी ने?
2: बुरे वक्त में ही अपनों की असल पहचान होती है बन्नू। खुद मदनलाल के भाई भजनलाल ने उनका साथ छोड़ दिया जबकि वे लंदन में ही कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सावरकर जी ने साथ नहीं छोड़ा।
9: असल में 5 जुलाई 1909 को कैक्सटन हॉल में मदनलाल ढींगरा की निंदा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भजनलाल भी शामिल थे। सभा की अध्यक्षता आगा खान कर रहे थे। भावनगरी ने प्रस्ताव पेश किया था और अमीर अली ने उसका समर्थन किया था। जब प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो कई लोगों ने हाथ ऊपर उठाए। आगा खान को घोषणा करनी पड़ी कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। तब सावरकर ने उसका पुरजोर विरोध किया और कहा,
10: नहीं, सर्वसम्मति से नहीं, इस प्रस्ताव के विरोधी भी मौजूद है, मेरा नाम दर्ज करें, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।
11: पकड़ो इसे।
2: जानती हो, इस बात पर वहां भारी हंगामा मच गया। भावनगरी गुस्से से आग बबूला हो गए और सावरकर को पकड़कर हॉल से बाहर निकालने की कोशिश की। तब आगा खान ने उन्हें फटकार लगाई। पामर नामक एक यूरेशियन व्यक्ति ने सावरकर पर वार किया, उनके शरीर से खून बहने लगा। इसके बावजूद सावरकर ने कहा,
10: मैं अब भी इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।
9: तभी सावरकर के मित्र एमपीटी आचार्य ने छड़ी से पामर पर वार कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस घटना पर अपना रोष व्यक्त किया।
12: सावरकर को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार था। उन पर हमला करना अत्यंत निंदनीय और घोर अन्यायपूर्ण है।
9: इस घटना के बाद सावरकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने टाइम्स और अन्य समाचार पत्रों को एक पत्र लिखा।
10: चूंकि यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सार्वजनिक रूप से इस मुकदमे पर चर्चा करना और इसके लिए अपराध तथा अपराधी जैसे शब्दों का प्रयोग करना कोर्ट की अवमानना के समान है।
9: सावरकर का यह पत्र 6 जुलाई 1909 को टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। उधर मदनलाल ढींगरा की निडर देशभक्ति ने कुछ अंग्रेजों को इतना प्रभावित किया कि वो उनके लिए दया की अपील तक करना चाहते थे। उनमें से एक थे रिव्यू ऑफ रिव्यूज के संपादक W.T. स्टेड। स्टेड सावरकर के प्रशंसक और भारत की आजादी के समर्थक दोनों ही थे। उन्होंने अपने घर पर बिपिन चंद्रपाल के भारतीय सभ्यता पर व्याख्यानों का आयोजन किया था, लेकिन दया याचिका दायर करने की बात कहने की वजह से स्टेड को 3 महीने की जेल काटनी पड़ी। बाद में ऑब्जर्वर को लिखे एक पत्र में स्टेड ने तर्क दिया,
12: ढींगरा ने पागलपन के दौरे में यह हत्या की थी, इसलिए उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए।
9: स्टेट के अलावा सचिव मौर्ले के परिषद के कई सदस्य मदनलाल ढींगरा की मौत की सजा के बजाय आजीवन कारावास देने के पक्ष में

0: उन्हें डर था कि उनकी शहादत से हिंसा और भी भड़क सकती है। कैबिनेट के कुछ सदस्य भी आजीवन कारावास के पक्ष में थे, लेकिन मॉर्ली अपने बात पर अड़े रहे।
1: जो भी हत्यारा पकड़ा जाएगा उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। ढींगरा का भी यही हश्र होगा।
0: ढींगरा की बहादुरी ने सम्राट एडवर्ड सेवन को भी बेहद क्रोधित कर दिया था। 17 अगस्त 1909 को लिखे एक पत्र में उन्होंने मॉर्ली को सख्त निर्देश दिया।
2: भारतीयों को बिना किसी ठोस कारण के इंग्लैंड आने से रोक दिया जाए। ऐसे छात्र इंग्लैंड में रहते हुए राजद्रोह सीखते हैं और अपने देश लौटकर दूसरों को भी भड़काते हैं।
0: आखिरकार 17 अगस्त 1909 का दिन आ ही गया जब ढींगरा को फांसी पर चढ़ाया जाता। उनके कई दोस्तों ने पेंटन विले जेल में उनसे आखिरी बार मिलने की कोशिश की। सावरकर के सुझाव पर मुंबई से निकलने वाले गुजराती दैनिक पारसी के संपादक जे एस मास्टर ने लंदन के अंडर शेरिफ और गृह मंत्रालय को एक लिखित अर्जी भेजी और जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन दोनों ही जगहों से उनकी अर्जी ठुकरा दी गई। जेल में मदन लाल को इसकी भनक लगी।
3: मुझे पता है कि मैं अपने दोस्तों से मिले बिना ही इस दुनिया से चला जाऊंगा।
0: जेल के अंदर और बाहर दोनों ओर इस चर्चा ने काफी जोर पकड़ लिया था। कई भारतीय नौजवान जेल के दरवाजे के बाहर उदास जमा हो गए थे। उन्हें जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। यहाँ तक कि बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया था।
4: गजब का तेज है मदनलाल के चेहरे पर। अपनी मौत को सामने देखकर भी वे कितने शांत और संयमित हैं।
0: फांसी से एक दिन पहले मदनलाल चैन की नींद सोए थे। फांसी वाले दिन उन्हें जगाना पड़ा था। उन्होंने रोज की तरह अपने सुबह के कामकाज निपटाए और पेट भर नाश्ता किया। ठीक 9 बजे मदन लाल फांसी के फंदे पर लटकने के लिए निकल पड़े। हटसन नाम का एक ईसाई पादरी उनके पास आया, लेकिन मदन लाल ढींगरा ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि वो एक हिंदू हैं। तब लंदन के डिप्टी अंडर शेरिफ मेटकाफ ने पेंटन विले जेल के डिप्टी गवर्नर हेल्स की मौजूदगी में ढींगरा को उनकी मौत का वारंट पढ़कर सुनाया और उनसे कुछ औपचारिक सवाल पूछे। मदन लाल ढींगरा ने उनके सवालों पर कोई ध्यान नहीं दिया और शांत कदमों से फांसी के फंदे की ओर बढ़ गए। उनकी इस बहादुरी को देखकर उनके साथ चल रहे अधिकारी भी हक्के बक्के थे। ढींगरा ने वहां खड़े जल्लाद पियर पॉइंट को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फांसी के तख्ते की सीढ़ियां चढ़ गए। उन्होंने खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। इस दौरान मुख से सिर्फ 2 शब्द निकले, वंदे मातरम,
5: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।

0: दीदी, क्या मदन लाल जी का शव उनके दोस्तों या रिश्तेदारों को दिया गया?
1: रिश्तेदार कैसे, मदन लाल को फांसी दिए जाने के कुछ ही समय बाद उनके भाइयों ने ढींगरा उपनाम छोड़ दिया, सिवाय डॉक्टर बिहारी लाल के।
0: फिर किसे मिला शव?
1: मास्टर जी को मदन लाल ढींगरा के शव का पोस्टमार्टम देखने की इजाजत दी गई, लेकिन उन्हें ढींगरा का शव ले जाने की इजाजत नहीं मिली, जबकि ढींगरा की इच्छा थी कि उनके शव का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया जाए, यानी दाह संस्कार हो। कई लोगों ने गृह सचिव हर्बर्ट ग्लैडस्टोन से इसकी गुजारिश की, लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया। ये कैसी विडंबना थी बन्नो, कि फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले एक इंसान की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी गई। उनके शव को एक ताबूत में बंद करके जेल परिसर के अंदर ही दफना दिया गया।
0: क्या इस जेल में और भी क्रांतिकारियों को सजा दी गई?
1: हाँ बन्नो, इस जेल में दो भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटकाया गया था।
2: मदन लाल की फांसी के बाद मास्टर जी जब अंडर शेरिफ के साथ जेल के बाहर गए तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। डेली मिरर के संवाददाता ने मास्टर जी से पूछा,
3: क्या भारतीय लोग ढींगरा को शहीद मानेंगे?
4: बिल्कुल, उन्होंने अपने देश की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। अब भलाई के बारे में उनका जो नजरिया था वो सही था या गलत, ये तो अपनी अपनी राय की बात है।
2: अगस्त 1909 के द टाइम्स लंदन के पेज 7 पर एक रिपोर्ट छपी कि 9 बजे के कुछ ही देर बाद मदन लाल की मृत्यु की घोषणा की गई। पियर पॉइंट जल्लाद था। शव का दाह संस्कार करने की इजाजत के लिए दी गई अर्जी को नामंजूर कर दिया गया था। इस कारण जेल की चार दीवारी के अंदर ही आम रिवाज के मुताबिक शव को दफनाया जाएगा। इससे पहले इसी अखबार ने 24 जुलाई 1909 को ढींगरा की सजा शीर्षक के नाम से एक संपादकीय लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हत्यारे ने जिस बेपरवाही का प्रदर्शन किया वो इस तरह की थी जो सौभाग्य से इस देश में होने वाले ऐसे मुकदमों में आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने जानबूझकर अपनाई गई उदासीनता और अवज्ञा का रवैया बनाए रखा। वो मुस्कुराते हुए कटघरे से बाहर निकला। ज्ञानचंद वर्मा की इच्छा के अनुसार सरदार सिंह राणा ने मदन लाल ढींगरा का अंतिम बयान एक पोस्टकार्ड पर उनकी तस्वीर के साथ प्रकाशित करवाया। उनका ये अंतिम बयान भी कम प्रेरणादायक नहीं था। चुनौती शीर्षक वाले इस बयान में मदन लाल ने लिखा था,
5: मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने देशभक्त भारतीय युवाओं को अमानवीय तरीके से फांसी दिए जाने और देश निकाला दिए जाने के बदले में एक विनम्र प्रतिशोध के तौर पर अंग्रेजों का खून बहाने का प्रयास किया। इस प्रयास में मैंने अपनी अंतरात्मा के अलावा किसी से सलाह नहीं ली। मैंने अपने कर्तव्य के अलावा किसी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र जिसे विदेशी संगीनों के जोर पर गुलामी की बेड़ियों में जकड़कर रखा गया हो वह हमेशा युद्ध की स्थिति में रहता है। चूंकि एक निहत्थी कौम के लिए खुले मैदान में युद्ध करना असंभव है, इसलिए मैंने अचानक हमला किया। चूंकि मुझे बंदूकें रखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। एक हिंदू होने के नाते मुझे लगा कि मेरे देश के साथ किया गया कोई भी अन्याय ईश्वर का अपमान है। उसका उद्देश्य ही श्री राम का उद्देश्य है, उसकी सेवा ही श्री कृष्ण की सेवा है। स्वास्थ्य और बुद्धि से कमजोर मुझ जैसा एक पुत्र अपनी माँ को अपने रक्त के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मैंने उसी रक्त को उसकी वेदी पर अर्पित कर दिया। वर्तमान में भारत को केवल एक ही पाठ सीखने की आवश्यकता है, वह है मरना कैसे है, और इसे सिखाने का एकमात्र तरीका है स्वयं मर जाना। इसलिए मैं मरता हूं और अपनी शहादत पर गर्व करता हूं। ईश्वर से मेरी एकमात्र प्रार्थना यही है, काश मैं इसी मां की कोख से पुनः जन्म लूं और इसी पवित्र उद्देश्य के लिए बार बार अपने प्राणों की आहुति देता रहूं। तब तक जब तक कि यह उद्देश्य सफल न हो जाए और भारत माता मानवता के कल्याण तथा ईश्वर की महिमा के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होकर खड़ी न हो जाए। वंदे मातरम,
6: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: यही है वंदे मातरम की ताकत, हमारी संस्कृति की विरासत और चेतना की अभिव्यक्ति है। ये हमारी मिट्टी की धड़कन, अस्तित्व की पहचान है। ये हमें याद दिलाता है

0: भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि 2000 साल बाद भी मदनलाल डिंगरा को याद किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हम रेगुलस, कैरेक्टिकस और प्लूटार्क के नायकों को याद करते हैं। चर्चिल ने डिंगरा के आखिरी शब्दों को भी दोहराया।
1: मदनलाल डिंगरा का ताबूत 12 दिसंबर 1976 को भारत के तत्कालीन कार्यवाहक उच्चायुक्त नटवर सिंह की उपस्थिति में कब्र से बाहर निकाला गया। इस ताबूत को फिर हवाई मार्ग से भारत लाया गया। आज की कड़ी में इतना ही। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और वीर क्रांतिकारी से।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्ते, राम राम।
2: राम राम साहब, राम राम।
1: मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, सभी वर्गों से मिलते हैं, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे नरेगा हो, सभी से मिलते हैं, क्योंकि
2: आध्यात्मिक के बाद में भौतिक जगत से मिलते हैं।
1: क्योंकि आध्यात्मिक तो हम रहते हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर जब जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही है सब तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन हर समय उपस्थित रहता है। तो आज किवली में पहुंचे, किवली का जो सुशांत वाटिका है वहां से हम आपको कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि बहुत शानदार परिवेश है और किवली के महान अनुभवी पर्यावरणविद और जिला शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्त होकर अभी ईश्वरीय सेवा में व गांव का हित में जनहित में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सर आपको स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से, आप अपना परिचय दीजिए।
2: सर मैं आत्मा होकर के अपना परिचय आपको दे,
1: क्या बात है,
2: क्योंकि पर्यावरण पर बातचीत करते हुए आपके ये लगभग 16वां एपिसोड है, तो पर्यावरण पर चर्चा करते हुए मैं बहुत खुशी होती है
1: जी जी
2: कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दे को उठाया गया है और पिछले कई वर्षों से 100 साल से भी अधिक समय से इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग्स हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और किस तरह से ये कारवा मीटिंगों में और सीओपी में होते हुए 1972 की बैठक के बाद में तेजी से ये आगे बढ़ा, रिया डिजाइनरों की पृथ्वी सम्मेलन और उसके बाद में जो सीओपी अब तक हुई है कंटिन्यूस, उन पर जो बातचीत चल रही है उसके तहत भारत में भी क्लाइमेटिक चेंज को नेशनल लेवल पर स्वीकार किया गया। सर आपको नई चीज बताएं कि इन पिछले जो एपिसोड्स में जो पूर्व में हुए उनमें आपके साथ में ये चर्चा की कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए और व्यक्तिगत शांति के लिए और आगे बढ़ने के लिए कितना आवश्यक है, ये चीज उसमें रेखांकित की गई है और आपने अच्छे से लोगों तक इस बात को रेडियो मधुबन के द्वारा
1: जी
2: जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण विंग है जो सामुदायिक सेवा में तत्पर रहती है, इसका पूरा दल बीके यशवंत भाई, बीके कृष्णा बहन, आरुषि बहन, शुभश्री बहन और हमारे फील्ड के मास्टर योद्धा संघर्षरत है, जो लोगों के साथ में
1: क्या बात,
2: बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो अलेख भाई के साथ में रहने वाले बीके पवित्र भाई
1: आपके पास पहुंच जाते,
2: वो कैसे भी करके पहुंच जाते हैं। सर रिमोट एरियाज में मैं भी आपके साथ में रहता हूँ और इस बात को करते हुए मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैंने जो पृष्ठभूमि आपको बताई है कि सरकारें इतनी चिंता कर रही है, इतना चिंतन हो रहा है राष्ट्रीय लेवल पर, इतना चिंतन हो रहा है सर कि किस तरह से हमारा जो विकास है उसको प्रकृति के साथ में मिला करके मानव के कल्याण के लिए किया जाए, मतलब विकास तो होना ही चाहिए लेकिन उसमें प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ एक सीमा तक होनी चाहिए।

0: अगर प्रकृति में अगर आपने अतिक्रमण कर दिया तो जिस तरह से पड़ोसी आपके साथ में झगड़ा करता है तो वही द्वंद्व फिर मानव और प्रकृति के बीच में शुरू हो जाएगा।
1: क्या बात?
0: तो फिर सर आपकी शांति भंग होनी तय है।
1: क्या बात?
0: और इसी बात को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भलीभांति स्वीकार करते हुए और पूरी दुनिया में विश्व के 140 देशों में हेडक्वार्टर बनाते हुए जिनका मुख्यालय हमारे आबू पर्वत में है, सब जगह एक साथ सामुदायिक कामों के साथ में इस प्राकृतिक काम को टॉप पर रखा
1: जी।
0: सर 2024 में शिखर सम्मेलन यहाँ पर आया जी, दुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का
1: जी जी।
0: तब से मेरी उत्कंठा और बढ़ी कि जब ये सारा इतना हो रहा है तो हम हमारे क्षेत्र में ये काम क्यों नहीं करें। सर सेवा में रहते हुए हमने बहुत काम किया इस पे, वृक्षारोपण प्रतिवर्ष होता है सर, वन विभाग पौधे उपलब्ध करवाता है, हम सभी लगाते हैं, अब उसके बाद में बचते कितने ये सर चिंतन का विषय, चिंता का विषय नहीं है सर, ये चिंतन का विषय है। तो सर यही बात को लेकर के मैं यहाँ पर भाई साहब के साथ सुशांत वाटिका में उपस्थित हूँ। सर सुशांत वाटिका में इतनी प्रगति है कि यहाँ हम जिस प्राकृतिक वातावरण के बीच में बैठे हैं उसको आप देख सकते हैं।
1: दिखाते हैं,
0: दिखाइए सर, दिखाइए वातावरण तो दिखाइए कि सर ये प्रकृति क्या कहती है, किस तरह से यहाँ पर सर जहाँ कई बार लोग कहते हैं कि मनरेगा के अंदर
1: जी
0: काम कम होता है, लेकिन सर यहाँ पर तो सब लोग मनरेगा वाले सरकार की धनराशि का इतना अच्छे से उपयोग कर रहे हैं कि यहाँ हर पल इन सारे पेड़ों के पास में निराई करते हैं, इनकी गुड़ाई करते हैं और इनमें सिंचाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, जिला स्तर पर भी इस तरह बहुत अच्छा बजट आवंटित हुआ है
1: जी सर।
0: और सुशांत वाटिका डेवलप करने के बाद में ये जो बाहर की तरफ जो ये वाटिका बन रही है, ये सर इसकी बाउंड्री वॉल अब भी बन रही है, आज भी उसमें निरंतर कार्य में प्रगति जारी है सर, गांव वाले और समस्त प्रशासनिक अधिकारी सभी इससे अति प्रेरित है, उत्साहित है। और सर ये चीज हम बार बार इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये प्रकृति क्यों आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण में जो गैसों से जो नुकसान हो रहा है उससे हम कैसे लड़े या वो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत अवसर नहीं डाले, विपरीत प्रभाव नहीं डाले, उसके लिए इस चीज को हम दिखाना चाह रहे हैं, जो सभी के सामने हम दिखाएंगे तो ही जाकर के ये चीज सामने आएगी।
1: सही बात
0: सर, ये माध्यम आपके माध्यम से इसलिए चुना हमने कि कमरे में बैठकर, कई बार लोग कहते हैं कि एसी कमरे में बैठकर, सर एसी कमरे में बैठकर ये जो परियोजना बनी है, ये जो प्रोजेक्ट आए हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, ये सरकार की दूरदर्शिता है। और सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको जवाब देना है, अब तो सर ये स्थिति हुई है कुछ समझौतों में तो कि आपने इस पर कितना बजट खर्च किया है सर, अब तो ये पूछ रहे हैं। जैसे अभी जो बेलेम में सम्मेलन हुआ COP 30 जिसमें हमारे पर्यावरण मंत्री उपस्थित हुए थे, वहां पर सिर्फ ये कहा कि आपने कितना पैसा खर्च किया, पहले तो ये कहते हम ये कर देंगे वो कर देंगे कार्बन की कटौती कर देंगे ऐसे कहते थे, लेकिन अब सर ये कहते हैं, जैसे मैं खुद भी कहता हूँ कि कितना अचीव किया
1: जी,
0: तो कितना बजट खर्च हुआ इस पर कमिटमेंट हमारी सरकार ने किया है और वो कमिटमेंट इस तरह से बिल्कुल धरातल पर आ रहा है। और सर इस तरह की वाटिकाएं कई जगह जैसे हमने सुना है शिवगंज की तरफ भी है, हमारे अनादरा की तरफ भी बनी हुई है और काफी लिमिटेड एरिया में जहाँ भी है जैसी भी है
1: सर, तो देखते हुए
0: बिल्कुल सर उस
1: संसाधन को देखते हुए
0: संसाधनों को देखते हुए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्रदूषण को रोकने में बहुत एक लेवल तक
1: किला जैसे काम करेगा,
0: जबरदस्त काम करेगा। हाँ, हमारे हमारी रक्षा करेगा ये
1: सर, राजा महाराजा लोग अपना राजस्थान में किला करते
0: जी,
1: कोई आक्रमण नहीं करे,
0: कोई आक्रमण। हाँ तो सर ये बाहरी प्रदूषण हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करे,
1: केवल लिखा
0: बिल्कुल सर,
1: पूरा नदी का किनारे में जो सुशांत वाटिका है, कितना नाम है जितना सुंदर है उतना ही महसूस होता है। और जब हम यहाँ से आपको कवरेज दे रहे हैं
0: बिल्कुल सर,
1: और उस समय मैंने देखा है चारों तरफ कितना हरियाली है, और मैं जानना चाहूंगा और हमारा श्रोता मित्र की तरफ से
0: जी सर,
1: जी सुशांत वाटिका का जो परिभाषा कैसे नामकरण हुआ
0: जी, हाँ, जी, हाँ,
1: और
0: जी,
1: ये कितना एकड़ में जमीन में पहले क्या था,
0: बिल्कुल सर,
1: इसका पहले 5 साल की 10 साल पहले क्या,
0: बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल,
1: आज जो हरा भरा आपको देखा है
0: जी सर,
1: ऐसा सोच कैसे बदला और सोच में परिवर्तन कैसे आया
0: सर। यहाँ जो आपने पूछा कि बिल्कुल ये निर्जन स्थान बंजर भूमि जैसा स्थान और यहाँ पर सिर्फ शमशान का एरिया हुआ करता था,
1: आप सबको जानते हैं शमशान में लास्ट गांव का पूरा दूरस्थ जगह में,
0: दूरस्थ जगह
1: सुनसान जगह,
0: सुनसान जगह थी और शमशान था यहाँ पर, जहाँ लोगों का शव जलाने का कार्य होता था। तो ये जो शोक का स्थान था सर, आज भी है, तो शव की जो अंतिम जो है दाह संस्कार वो यही होता है, और इतनी सुंदर जगह पर है ये, कि बनास नदी के तट पर, यहाँ भी सर संगम है, दो नदियों का संगम है, यहाँ पर एक सुकली नदी आती है और एक वेस्टर्न बनास आती है, इनका संगम स्थल पर
1: माउंट आबू का है पानी,
0: माउंट आबू का पानी, आबू पर्वत का पवित्र पानी यहाँ पर,
1: अरावली क्या नाम, अरावली तो पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया,
0: उस पर भी बात करेंगे। तो सर यहाँ पर पहले सर बेर का पेड़ हुआ करता था, जबरदस्त सर घनी बेर की पेड़ थे, झाड़ियां नहीं सर, बेर की झाड़ी भी होती है, पेड़ यहाँ पेड़ थे सर, और इतने अच्छे पेड़ थे। जब हम छोटे थे, मैं स्वयं छोटा था सर, हम जब पढ़ाई करते थे उस समय खेलने के लिए इन बेर के पेड़ों के बीच में आ जाते थे और आकर के यहाँ पर बेर बीनना करना खाना ये हमारा काम करता था सर।
1: 1990
0: ये समय होगा सर 1970
1: के करने के लिए आते थे, जमीन पे
0: 80 तक सर, ये
1: आज कितना
0: है? और सर वो धीरे धीरे सर क्या हुआ उसमें, क्लाइमेटिक सर इसको चेंज ही कहेंगे सर, वो सारे बेर के पेड़ अपने आप नष्ट, या तो लोगों ने उनकी कटाई कर दी, लोगों ने काट दिया, उस समय ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं थी, तो मतलब हमें चेतना नहीं थी, तो लकड़ी काटने को लेकर या शमशान के लिए ही जब लकड़ी चाहिए तो उसको लेकर के उसको काटना जब शुरू किया, तो धीरे धीरे करके वो सर आज की तारीख में सर यहाँ देखने के लिए मात्र बेरी के दो पेड़ लगे हुए हैं इस पूरी सुशांत वाटिका मात्र, जबकि पूरा भरा हुआ था जंगल की तरह। तो सर उसमें सर एक जानवर हुआ करता, सियार लकड़बग्गा, वो भी यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन वो समय के साथ में सब विलुप्त हो गए। तो सर ये मैं ये कह रहा हूँ कि वो पारिस्थितिक तंत्र है वो बिल्कुल ही समाप्त हो रहा है सर। ये जो नदी बह रही है ये सदावाही नदी थी हमारे यहाँ पर, जिसमें
1: गर्मी के टाइम में भी,
0: गर्मी के टाइम पर भी सर जो आज पानी देख रहे इससे भी दुगुना पानी रहता था उसमें, हम रोज स्नान, मैं स्वयं यहाँ पर नहाया हुआ हूँ इसी नदी के अंदर, जो हमेशा नहाने का काम होता था वो धीरे धीरे धीरे करके सर देखिए वो पेड़ भी गए,
1: पानी
0: उस नदी का पानी भी बिल्कुल कम हो गया ड्यू टू मच मोर एक्सप्लॉयटेशन, तो सर वो पानी भी कम हो गया। और अब सर ये जो फर्क पड़ा तो फिर इसके गर्मी भी बढ़ी, तो पृथ्वी जल तेज वायु प्रदूषण भी बढ़ा ही बढ़ा है, क्योंकि आसपास फैक्ट्रीज खुल गई,
1: जीव जंतु का भी नुकसान,
0: पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश में सर यहाँ पर अब तो वो जो पहले जो ढोल बजते थे उसके स्थान पर क्या बजते हैं सर, डीजे बजता है, तो सर इससे जो पॉल्यूशन बढ़ा है, और सर निश्चित रूप से यही पॉल्यूशन है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि पर्यावरण का पॉल्यूशन क्या है, और ये पॉल्यूशन विचारों के पॉल्यूशन को बढ़ाता है, अंततः है तो अपने कर्म में जो विचार है वो गड़बड़ हो जाते हैं, फिर व्यक्ति अशांत हो जाता है, बीमारियों से घिर जाता है, मानसिक बीमारियां हो जाती है। तो इस तरह से सर ये जो है संकल्प हम लोगों में कब आया, जब पर्यावरण जब हम पढ़ते थे सर पर्यावरण के प्रति सब सचेत रहे, लेकिन अब इसमें एक बाढ़ सी आ गई है सर। मैं ये मानता हूँ आप जब तब कहते हैं कि ईश्वर काम करने लग गया है, तो सर हजारों हाथों से हजारों लोग मिलकर के जो अच्छा कर्म करने वाले हैं वो प्रकृति की ओर ध्यान देते हैं, वो सब मिलकर के पॉल्यूशन कंट्रोल पर भी काम कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आते हैं, इस बार हमारी जिला कलेक्टर यहाँ पर, इनके यहाँ पर पोस्टिंग के बाद में 4 बार आ चुके हैं,
1: क्या बात,
0: हमारे उपखंड अधिकारी जी वो भी लगभग 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं, और कई बार आते हैं हम सुनते भी हैं। तो इस तरह से अधिकारियों का भी सर निरंतर बीडीओ समेत तहसीलदार समेत सभी का निरंतर दौरा रहता है, तो लोग भी ग्राम पंचायत भी सर ध्यान देते, गांव भी ध्यान देता है सर। यहाँ इस सुशांत वाटिका के चारों ओर सर जिसको शमशान भूमि कहा था सर, चारों तरफ पहले कंटीली बाढ़, हमारे गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर के इसको क्लीन करवाया था, उसके बाद इस पर प्लांटेशन किया गांव वाले हम लोगों ने किया, उसके बाद इसमें पानी की व्यवस्था की सर टैंक बना करके, वहां तक तो काम हमने ही देखा, 4-5 लोग थे उन्होंने देखा, उसके बाद में सर स्थायी रूप से इसमें लाइन डाल दी, और फिर सर मनरेगा को कहा गया, और मनरेगा के द्वारा फिर सर जब ये सर सूरज उगता है ना तब सब उस पर ध्यान देने लगते हैं, तो फिर गांव का ध्यान गया, और यहाँ पर सर सेटिंग के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है की यहाँ पर पक्षी भी खूब आते हैं, और अब तो सर जो दूसरी वाटिका का दूसरा भाग है उस पूरे एरिया को भी कवर करने का काम आज भी दीवारों का काम जारी है सर। फलदार नींबू के प्लांट भी लगाए हुए हैं, जो आप वाटिका के बाहर देख रहे थे उसका जो अगला पोर्शन है उसके अंदर नींबू के प्लांट्स है, बाकी अमरूद है, अनार है, जैसे ड्रम स्टिक्स है आपने अभी देखा, जामुन है, और विभिन्न प्रकार के फूल
1: छायादार भी है, फलदार
0: छायादार फलदार सब तरफ के, और
1: फूलों भी
0: पूरा पूरा सर नरेगा के लोग यहाँ पर निरंतर और सुरक्षा कर्मी भी
1: निरंतर यूज हो रहा है
0: सही यूज सर सर नरेगा के पैसे का एक जबरदस्त सदुपयोग जिसको कहते हैं वो हमारे इस गांव के अंदर हो रहा है। और सर ये सर आपके विश्वविद्यालय को देख करके हम लोग वहां से सीखे हैं, आपका आना हमको बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह से गांव वालों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है जो कि खुद के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेप्रद है, पक्षी भी इस पर अपना रैन बसेरा करते हैं और हम भी आनंद के साथ में ताजी हवा वगैरह जो भी है प्रकृति का आनंद उठाते।
1: जानेंगे और कुछ बात की था कुछ संक्षिप्त खासकर सुशांत भाटी के जो पहले एक संसन का भूमि था और अभी भी भूमि लेकिन उसको थोड़ा स्वर्ग द्वारा जैसे बना दिए और एक वाटिका में जो अशोक वाटिका तो अशोक वाटिका जैसे बना दिया।
0: बिल्कुल सर अशोक जिसमें कोई शोक
1: शोक नहीं है,
0: यहाँ आने पर शोक हुआ करता था शमशान पर, अब कोई शोक नहीं है, वो शांत है और अशोक वाटिका टाइप बना हुआ है।
1: अच्छा लगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद क्या नुकसान मतलब क्या खोया और क्या पाया जानेंगे, क्या खोया और क्या पाया और इसमें किसका नुकसान, भाई कुछ तो मेरिट डिमेरिट होता ही हर चीज में
0: होता है
1: लेकिन ज्यादा प्रॉफिट होता है तो थोड़ा सा नुकसान कम मायना नहीं रखते जानेंगे और कुछ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा सभी श्रोता मित्र और हमारा सभी दर्शक को भी धन्यवाद देते हैं हमारा कार्यक्रम को सुंदर में सुन रहे हैं और देख रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है। तो आज हम सुशांत वाटिका में बैठकर अपना विचार को रखकर, प्रकृति हमारा साथ दे रहा है क्योंकि हवा, शुद्ध हवा मिल रहा है और छाया तो गजब को एसी का भी काम नहीं करेगा।
2: नमस्कार।
1: और ये केवल लिखा है तो नामकरण जैसे आप सबका जो सहयोग से, आज
2: सबके सहयोग से
1: हुआ, सरकार का सहयोग, मनरेगा
2: का, सरकार का भी पूरा सहयोग, प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा सहयोग, जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग और विश्वविद्यालय का पूरा सहयोग
1: और रेडियो मधुबन का सहयोग,
2: पूरा पूरा सहयोग।
1: तो आज प्रशासन भी दे रहा, हमारे प्रशासन इस कार्यक्रम को देख रहे, सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इसे हमारा हर ग्राम पंचायत बनेगा तब जाकर ये होगा। हमारा लक्ष्य क्या है
2: सर,
1: आज हमने इसको जागरूक कराने के लिए, देने के लिए वार्तालाप का माध्यम से आवश्यकता क्यों पड़ी
2: सर? ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि यूनेस्को से एक बहन अपने यहाँ पर आए थे, नाम आप याद करवाएंगे, जो अपन यहाँ गांव के अंदर कुएं पर गए थे, जो मेस्कुलरेशन के लिए आए थे, उनका नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
2: मैं बिल्कुल सर प्रैक्टिकल बात ही करूंगा, बस जो भी करूंगा इधर उधर नहीं। वो जो यूनेस्को की तरफ से कहीं यूनिवर्सिटी में कहीं हेड पर्सन है वो, और वो आए थे और तब आपने मुझे बुलाया था और हम लोग वहाँ पर मैस्कुलरेशन पर बात करने के लिए पहुँचे थे। वहाँ पर कृष्णा बहन
1: मार्दांगी पर,
2: हाँ हाँ, तो कृष्णा बहन और अरुषि बहन भी उसमें थे, आप भी थे और एक बहन और भी थे जो एक यूनेस्को के इतने बड़े प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर इस गांव में आए। तो उस समय फिर आपसे बातचीत करते हुए आरुषि बहन ने जब ये बात करी कि सर हम अपनी सारी बात रेडियो मधुबन के द्वारा पहुँचाना तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर सर एक बात समझ में मेरे आई कि रेडियो कितने लोग सुनते हैं। सर उसी दिन स्ट्राइक हुआ था मेरे दिमाग में, काम तो कर ही रहे हैं, काम ये हो ही रहा था, जैसे विश्वविद्यालय काम कर रहा है विश्व के 140 देशों में, यही पर्यावरण पर काम कर रहा है, अंतः चेतना पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन और लोग कैसे बढ़े, ये चीज उस दिन मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई जबरदस्त। और मैंने पवित्रा भाई से बातचीत कर ली, तब बहन ने हमको वहां बुला लिया कि आप आइए, और जब हम वहां गए तो पवित्रा भाई और आपने मिलकर के पर्यावरण पर कुछ क्लिप्स बनाने की बात करी, तो मुझे बड़ा आनंद आया कि चलो रेडियो मधुबन के माध्यम से ही सही, जितनी पहुंचे उतनी ही सही। तो
1: क्योंकि हमारा उसमें एक सोच चलता है,
2: बिल्कुल सर,
1: उसी हिसाब से हम लोग उसको आपका जो विचार को रखें, नई दुनिया,
2: बिल्कुल सर बिल्कुल,
1: मैंने ये पुराना हो गया, जैसे आपको बताया था ना भाई दीवार का, उसमें ये नया है,
2: ये नई दुनिया बन रही है, नई विचारों की दुनिया, बिल्कुल सर।
1: तो ये तो प्रोग्राम चलता है जिससे हमारा पशु पक्षी कैसे होना चाहिए,
2: जी बिल्कुल,
1: ऐसे थोड़ा शांत नहीं करने वाले,
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: शांत रहने वाले। लेकिन आज घर में मैंने कहा कोटेशन कोई ने लिखा था, हमने पढ़ा था, अपना घर में,
2: जी हाँ,
1: पड़ोसी, अपना परिवार में पड़ोसी होगी बहुत,
2: ठीक है,
1: पहले के जमाने में था कोरोना में, अपना पड़ोसी भी अपना था,
2: बिल्कुल पड़ोसी भी अपना था, पड़ोसी बाहर हो,
1: पहले पड़ोसी तो बाहर होगी, अपना घर वाले भी एक एक पड़ोसी होगी,
2: बिल्कुल बिल्कुल, उनके बीच में भी
1: विचार का,
2: विचारों का एक दीवार,
1: उसमें विचार दोनों था बराबर, गांव का पूरा विचार था, गांव का
2: सर। आज भी सर हमारे पूरे गांव में सर निवेदन करूं, एक विचारधारा की बात कर रहा हूं, पूरे गांव में कहीं भी दुख सुख होता है ना, तो हम सब एक दूसरे के दुख सुख के लिए वहां पर पहुंचते हैं,
1: पहुंचना चाहिए।
2: पर सर अच्छा, अब धीरे धीरे, अभी गांव में तो ये परिपाटी है, लेकिन सर शहर में जैसे मेरी सेवानिवृत्ति के बाद ही एस्टेब्लिश होने वाली बात आई, तब मैंने भी मना कर दिया और कई लोगों ने भी जो मेरे परिवार वाले कि नहीं यार शहर तो नहीं जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि शहर खराब है वो, लेकिन वास्तव में शहर जो पास का व्यक्ति है वो शहर वाला वो ध्यान नहीं रखता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो सर ये गांव का कल्चर सर कुछ एक अलग, ऐसा नहीं है कि शहर में ऐसा नहीं है, शहर भी अच्छे हैं, उनका कल्चर भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने बिजी हो जाते हैं कि दूसरे के प्रति उनका सोच में थोड़ा सा या सहयोग, या सहयोग करेंगे तो सहयोग मिलेगा, तो फिर वो इस तरह से आइसोलेट रहने लग जाते
1: हैं। जैसे आपने बताया ग्राम पंचायत की ओर लिखा, इतना जो सोच बदला, परिवर्तन हुए और वो जगह को आज एक सुशांत वाटिका नाम देकर अच्छा से बना दी,
2: जी सर,
1: ऐसे सभी प्रयास कर रहे हैं, अभी हमें कभी मौका मिलेगा तो जरूर हमें उस चीज को देखें, हम तो यहीं पर रहकर हमें काम बोलेंगे, लेकिन दूसरे काम में कोई किया होगा हमें वेलकम करिए, हम भी जाकर वहाँ पर पर्यावरण को थोड़ा देखेंगे,
2: जब आप बताएंगे तभी जाएंगे ना,
1: जाएंगे।
2: डीके पवित्र भाई की जो नंबर है, नंबर बोलिए आपके सर,
1: 8302352272 8302 2352
3: तो सर इस नंबर पर आप कॉल करिए तो हम वहाँ पहुँचेंगे भाई साहब हम लेकर के।
1: इस तरह आपका आपका भी प्रचार प्रसार हो कैसे मेहनत करते हैं
3: सर
1: और उसको जन जन तक पहुँचाएंगे तो आपको खुश ना इतने मेहनत करते हैं जैसे आज आपने हमें बुलाया।
3: बिल्कुल सर बिल्कुल सर।
1: तो इस बात इतना मेहनत करके इतना लोग तक सीमित क्यों रहे पूरा अबरोड ब्लॉक
3: बस सर यही थीम लेकर के जब मैं आपसे निवेदन किया था तो ये लोग कैसे सुने तो सर हमने ऑडियो बनाई तब मैंने आपसे फिर निवेदन किया कि नहीं सर कहीं विजुअल भी होना चाहिए क्योंकि सर बच्चे सर वो सर आपने आपके द्वारा मैंने प्रैक्टिकल देखा है आप हमें लेके गए थे स्कूल्स में
1: जी
3: और स्कूल्स में जब बच्चों से रिटर्न पर नहीं आता जबकि मैं लोकल बोली में बात कर रहा हूँ इस पे बात कर रहा हूँ पर्यावरण पर तो बच्चों का उत्तर नहीं आना ये बताता है कि उसका जो सर अभी क्या हुआ है कि मटेरियल तो खूब है
1: जी जी
3: बच्चों के पास ज्ञान भी खूब सरकार बांटने का प्रयास कर रही है एनईपी में भी खूब है लेकिन सर वो बच्चा कितना उस काम को कर पा रहे हैं उस पर काम ध्यान देने की जरूरत है सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर के सभी विभाग वाले अगर इस पर ध्यान देंगे
1: जी जी
3: इसकी मॉनिटरिंग सर ध्यान कैसे इसकी मॉनिटरिंग
1: ध्यान तो नहीं लेकिन मॉनिटरिंग करना
3: इसकी मॉनिटरिंग नहीं तो सर क्या वो अपने अपने काम में लगे हुए बच्चा सर रट करके 100 में से 100 नंबर ला रहा है ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी सर होलिस्टिक डेवलपमेंट सर्टिफिकेट वाली थीम एनईपी में दी हुई है जिसमें सर बच्चा क्या कर रहा है उस पर नंबर देने वाली बात है अंक तो उसके आएंगे लेकिन वो क्या कर रहा है फील्ड के अंदर तब जाकर के सर ये उस बच्चे के दिल और दिमाग में बैठ जाएगा और वो फिर इस पर और इसी पर सर इसी सोच ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और इसलिए सर मैं ऑडियो के बाद अब विजुअल की बात करने लगा सर विजुअल इसलिए कि विजुअल में सर बुक्स तो है
1: जी
3: बच्चा पढ़ता नहीं है और पढ़ता क्यों है सर सिर्फ पास होने की
1: तो अनुभव
3: बात सर वो अनुभव ही तो मुझे इस चिंतन के लिए प्रेरित कर रहा है आपके माध्यम से तो सर वो जो उसको एग्जीक्यूट करेगा लाइफ में करेगा काम को नीचे बैठ के करेगा जैसे आप प्रकृति में बैठ करके काम कर रहे हैं पहुंच करके काम कर रहे हैं तो सर वो एग्जीक्यूट होगा तो निश्चित रूप से के प्रति वो काम करने लगे तब जाकर के सर पॉल्यूशन कंट्रोल तब जाकर के अंतःचेतन उनका विचार परिवर्तन होगा उनमें संकल्प आएगा और वो संकल्प विचार परिवर्तन के हमें हमारे लिए कुछ करना है मैं तो ये कहूँ स्व के लिए कुछ करना है क्योंकि वो स्व से दूर जा रहा है हम सर ये जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए कर मैं जो काम कर रहा हूँ आप जो काम कर रहे हो वो अपने लिए ही तो कर रहे हैं ईश्वर अपने लिए ही तो करा रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत कैसे होंगे जब अंतः चेतना आएगी तो सर वो अंतः चेतना बच्चों में जागृत हो तब इस पर हमने काम करना शुरू किया और इसलिए सर विजुअल की मुझे आवश्यकता पड़ी। विजुअल में सर क्या होगा कि हम जा करके देखेंगे हम जा करके उसको उठाएंगे जा करके उस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे
1: तो ऑडियो विजुअल का
3: क्योंकि सर इसकी जरूरत पड़ी पहले पढ़ करके पहले सर सुन करके हुए लोग कर लेते थे अब नहीं करते रेडियो से सुन करके कर लेते थे अब नहीं करते
1: समय मांगे अभी समय का अंतर हमको बदलना पड़ रहा है
3: ये बदलना पड़ रहा है सर इसलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव अगर आएगा जो कभी कभार छोटी सी चीज अगर हमने विजुअल से दिखा दी तो मुझे लगता है सभी गांवों में सभी पंचायत इस तरह का अगर काम करे
1: जी जी
3: सर प्रेशर से तो काम होता नहीं है अगर प्रेम से खुद के लिए करे खुद के स्वास्थ्य के लिए करे तो सर गांव से एक एक व्यक्ति को बीड़ा उठाना पड़ेगा पर वो पवित्रा भाई को फोन करके बुलाएंगे हमारे श्रोतागण तो अपने अपने गांव में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है।
1: जी जी।
3: सर मेरा निवेदन ये और मेरे बैठे बैठे मुझे याद आ गया
1: जी।
3: सर अभी मैंने स्टडी की सुन रहा था कहीं सर 2 साल पहले 40 लाख पेड़ अहमदाबाद में नगर निगम ने प्लांट किए
1: बहुत अच्छा
3: उन्होंने प्लानिंग कैसे की वो सारी मैंने बैठ करके उसको नोट कर ली तो मेरा दिमाग तो ऐसा ही काम करता है सर उसमें से उन्होंने 20 लाख एक जगह लगाए और बाकी वार्ड वाइज फॉरेस्ट से लेकर के उसकी प्लानिंग की पूरे सिस्टम को लगा दिया और सर उसमें से आज भी सही आंकड़े के अनुसार 90% पेड़ जिंदा है। सर अभी एक और निवेदन करूं कि मैं जब अबू पर्वत पर था नौकरी में था सर उसमें ब्रह्मा कुमारीज ने सहयोग करके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी विभागों के सहयोग से ब्रह्मा कुमारी के आबू रोड जो ये जो सर है ना शांतिवन यहाँ से लेकर के अबू पर्वत तक 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था। सर मैं अब आपको क्या कहूँ कि उसमें से कितने जिंदा है उसका अगर हमको आंकड़ा मिल जाए अब सर इस पर ये विचार इसलिए करना पड़ रहा है कि उनमें से अधिकांश पौधे मर गए तो फिर लगाने का औचित्य क्या लगाने का औचित्य क्या मतलब हम आप और हम ज्ञान बांटे उसका रिजल्ट तो आना चाहिए आप इतना तप रहे हैं इतना दौड़ रहे हैं
2: इतनी मेहनत की, उसका रिजल्ट तो आना चाहिए। तो सर जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा,
3: नहीं सर रिजल्ट तो आएगा सर, एक बार डाउन हुआ दूसरी बार आएगा। तो सर जितने पौधे लगे उनकी मॉनिटरिंग, पौधे सर लगते हैं, पेड़ पौधे लगते हैं बरसात में लगते हैं, उसके बाद बात खत्म हो जाती है।
1: तो सर हमको कुछ दो साल एक साल के लिए
2: उसके सर मॉनिटरिंग होनी चाहिए,
1: मॉनिटरिंग उसका फॉलोअप होना चाहिए, और क्या आवश्यकता है और उसको बार बार जाकर
2: सर उसका अभियान टाइप चलना चाहिए। जैसे साल में दो चार बार पूछा जाना चाहिए कि कितने बचे, तो उसमें एक्चुअल आंकड़ा आना चाहिए। आंकड़ा तो आ जाएगा,
1: दस से एक बच जाता है तब भी मान लीजिए वो एक काफी हो जाता है, मतलब 10 से 1 भी बच जाएगा।
2: ये होना चाहिए,
1: मैं 10 नहीं बचे कुछ कारण से,
2: अब ये इसलिए लोगों में विचार शक्ति भी हो तब जाकर के, थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी भी हो तब जाकर, और सभी सर विभाग मिल करके, सभी विभाग फॉरेस्टी क्यों, कलेक्टर ही क्यों,
1: सभी लोग
2: उपखंड अधिकारी ही क्यों, सभी लोग मिल करके उसको लगाएंगे, उस पर मॉनिटरिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से वो जिंदा रहेंगे। तो सर इस तरह की स्पिरिट जो डेवलप,
1: इसमें क्या है लोग का थोड़ा मानसिकता को बदलना पड़ेगा।
2: तो सर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सर मानसिकता को बदलने के लिए एक साल में जजेस से लेकर के हमारे राजनेताओं से लेकर के अधिकारियों के और सभी की यहाँ पर विचार शुद्धि की ट्रेनिंग करवाता है,
1: सब जानते हैं।
2: तो सर
1: जब जाते हैं ना सर बोला अगर आत्मा और परमात्मा चेतना हम क्या मालूम नहीं क्या मालूम है सब,
2: फिर
1: हम कर नहीं पाते हैं।
2: तो ये यही तो चाह रहे हैं कि वो करें,
1: हम नहीं करेंगे वो करेंगे ना,
2: कौन
1: वो दूसरे को करना, आपने खुद कोई नहीं देखा सब तो करेंगे। केवली का तो पवित्र क्यों करेगा, यहाँ आकर केवली का जगह है सुशांत वाटिका, तो केवली वाले करेंगे।
2: तो यही वैल्यू डेवलप करना है, और इसके लिए सर ये विजुअल्स आपके द्वारा बनवाए जा रहे हैं, यही चिंतन है, यही चिंतन। वैसे तो ऊपर वाला करेगा, लेकिन हमको इतना तो करना पड़ेगा कि उनमें सर चिंतन डेवलप करना, यही मेरी हर बार मेरी लड़ाई यही है कि सब कुछ है सर,
1: आंदोलन
2: लड़ाई ये है कि इनको इतना पवित्र जो कम से कम यहाँ आ जाए।
1: नहीं सर प्यार से लड़ाई,
2: नहीं सर प्यार ये लड़ाई नहीं है प्यार सर, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज यहाँ पर ला करके उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो सर क्या
1: प्रशिक्षण दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बीज डाला नहीं सोचा था होगा, बल हम जल्दी बारिश का इंतजार नहीं
2: करेंगे सर, होगा पर सर थोड़ा
1: जल्दी
2: थोड़ा जल्दी होगा, थोड़ा
1: अच्छा बहुत अच्छा लगा, और
2: यही प्रेरणा चाहिए।
1: ठीक है बहुत अच्छा लगा, और हमारा श्रोता मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुशांत वाटिका से हम आपको कवरेज दे रहे थे, और इसका पहले भी कवरेज दिया था ऑडियो के माध्यम से, तो आज ऑडियो और विजुअल दोनों
2: बिल्कुल सर
1: रिकॉर्डिंग हो रहा
2: है, बहुत और
1: हम ऑडियो में ही विजुअल को भी हमारा श्रोता मित्र को अपना संकल्प से बुद्धि से ही आ जाइए, हम जैसे बात कर रहे हैं उसमें बुद्धि से देखिए, क्योंकि हम आपको ऑडियो में नहीं देखा पा रहे भी
2: बस बस बस सर, इसमें असर पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा असर होगा।
1: अरे ये तो ऑडियो चैनल है, ये वीडियो का बात कहाँ से आया, इसलिए हमको दोनों आवश्यक पड़ रहा है,
2: जहाँ भी जरूरत है कहीं कहीं
1: वीडियो और ऑडियो से इधर में रहिए। अब तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं इस एपिसोड में, खासकर सुशांत वाटिका का जो
2: धन्यवाद सर, धन्यवाद
1: सौंदर्यकरण और जो प्लांटेशन जो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण करने के लिए, प्रकृति भी बारिश अच्छा से कराएगा, क्योंकि जब पेड़ होगा तो बारिश अच्छा
2: सर होना ही है,
1: हवा भी अच्छा सूर्य देगा, और बनास नदी है यह केवल तो नाम से ही प्रसिद्ध है। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे सर, धन्यवाद
2: धन्यवाद,
1: अगला एपिसोड में मुलाकात होंगे,
2: धन्यवाद।

0: ओए रुकत,
1: रुक।
2: हाँ कहिए।
0: अजी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
2: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम में किसान भाइयों आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप जानते हैं कि हम हर रोज एक नए डॉक्टर से बात करते हैं और नई जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हमारे शो में डॉक्टर करमचंद जी हैं, जो खास करके उप कृषि निदेशक है और पलवल हरियाणा से बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छा उनका एक अनुभव है, बहुत लंबे समय से इस एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे बात करेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में। आप सभी किसान भाइयों अच्छी तरह से जानते हैं कि बायोगैस प्लांट से आपको अच्छी खाद मिल सकती है, उसका बिजली में उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे ही। तो मैं आप सभी की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में मेरा गांव मेरा अंचल में। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। सभी ग्रामीणों से और किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं।
0: जी,
1: जैसा कि आपने जानना चाहा है बायोगैस प्लांट क्या है। बायोगैस गैस के रूप में सस्ता और स्वच्छ ईंधन है। इसमें 55-70% तक ज्वलनशील मीथेन गैस होती है। इसे मवेशियों के गोबर से डाइजेशन प्रक्रिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में बनाया जाता है। बायोगैस संयंत्र को आमतौर से गोबर गैस संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में गोबर की खाद के रूप में उपयोगिता घट नहीं बल्कि बढ़ जाती है। जो खाद गोबर की खाद इस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है वो अति उत्तम और खेती के लिए बहुत बढ़िया होती है। इस प्रकार बायोगैस संयंत्र के गोबर का ईंधन और खाद दोनों कार्यों के लिए एक साथ उपयोग हो जाता है। साथ ही महिलाएं और बच्चे ईंधन के लिए रोज लकड़ियां जमा करने, उन्हें सिर पर लाद कर लाने और बरसात में उन्हें गीला होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखने की तकलीफों से भी बच जाते हैं। उन्हें रसोई घरों में आंखों और फेफड़ों की बीमारियां पैदा करने वाले धुएं से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही खाना बनाने में वक्त की बचत होती है और कालिख न लगने के कारण बर्तनों की सफाई भी आसान हो जाती है। अगर शौचालयों को भी इन संयंत्रों से जोड़ दिया जाए तो गांव में सफाई की स्थिति भी सुधारी जा सकती है। इस समय हमारे देश में लगभग 10 लाख बायोगैस प्लांट काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में और भी कई संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने बायोगैस के विकास के लिए काम को काफी तेज किया हुआ है। बायोगैस का प्रयोग करने वालों को कुछ उपयोगी बातें मैं बता रहा हूं।
0: जी जी।
1: उचित क्षमता का बायोगैस संयंत्र उचित स्थान पर लगाएं। जैसा कि इस संयंत्र को लगाने के लिए ऊंचा, शुष्क और खुला स्थान चाहिए, जहां दिन में ज्यादा समय तक धूप रहती है। अच्छा। यह रसोई और मवेशियों के बाड़े के पास होना चाहिए। भूमिगत जल का स्तर कम से कम 2 मीटर नीचे होना चाहिए। गैस संयंत्र के 15 मीटर के दायरे में पानी के कोई भी कुआं या हैंडपंप आदि नहीं होना चाहिए। बायोगैस संयंत्र का चुनाव, अब बायोगैस संयंत्र का चुनाव मवेशियों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से कर सकते हैं। यदि किसी परिवार में 8 से 10 सदस्यों की संख्या है तो हमें 6 से 7 मवेशियों की जरूरत पड़ती है, यानी कि 75 किलो गोबर प्रतिदिन की जरूरत पड़ती है। इस संयंत्र को लगाने के लिए इसकी क्षमता 3 से 4 घन मीटर बहुत फायदेमंद है। बायोगैस संयंत्र के प्रयोग द्वारा स्वीकृत डिजाइन कई प्रकार से हैं, जैसे KVIC जनता संयंत्र, दीन बंधु संयंत्र, गणेश मॉडल, 4-5 हैं। लेकिन पर्टिकुलर हरियाणा की जहां तक मैं बात करता हूं, यहां पर दीन बंधु मॉडल जो मटका टाइप, अच्छा, मटका होता है गड़ा, इसके आकार का बनाया जाता है।
0: अच्छा।
1: ये बहुत ही किफायती और सस्ता मॉडल है और टिकाऊ है। स्वच्छ शौचालयों से अगर बायोगैस प्लांट को हम जोड़ देते हैं तो इसमें स्वच्छता की स्थिति में भी और सुधार होता है। शौचालयों को संयंत्र से जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निकास टंकी में पानी का जल सलरी के निकास के ऊपरी स्तर से कम 30 सेंटीमीटर ऊपर रहे। ये तो जब बायोगैस प्लांट लगाया जाता है तो एक कारीगर है, एक्सपर्ट, उसके द्वारा ही लगाया जाता है और वो इसमें पूर्णतः निपुण होते हैं। ये ट्रेंड कारीगर के द्वारा ही लगाया जाता है। इस संयंत्र को आम जो मिस्त्री हैं वो नहीं लगा सकते।
0: सही बात।
1: संयंत्र के चार पांच भाग होते हैं। नंबर वन, मिश्रण, जो गोबर और पानी को मिश्रण करने वाली टंकी और प्रवेश द्वार, डाइजेस्टर जहाँ पर उसमें गोबर और गैस का मिश्रण बनता है, गैस होल्डर तथा गैस जमा करने वाला गुंबद, निकास और कंपोस्ट के लिए गड्ढा, गैस का मुख्य निकास वाल्व, पाइपलाइन, पानी की फिटिंग, गैस चूल्हा, लैंप और अन्य बायोगैस से जलने वाली वस्तुएं। आप इस बायोगैस संयंत्र को लगाते समय जो इनलेट पाइप जिसको बोलते हैं प्रवेश द्वार, वहां पर गोबर डालते हैं। गोबर और पानी बराबर मात्रा में डालकर उसको पूर्णतः मिक्स किया जाता है अच्छी तरह से, ताकि वो बिल्कुल तरल पदार्थ के रूप में डाइजेस्टर के अंदर चला जाए। डाइजेस्टर में जैसे ही वो गोबर चला जाता है, उसके बाद गोबर और पानी को एक टंकी में मिला के जैसे अंदर जाता है तो उसमें एक उबाल सा आता है, भभका उठता है जिसको बोलते हैं, और बायोगैस बनती है। डिजाइन के अनुसार गैस होल्डर या भंडार गुंबद जो बना होता है उसमें जमा हो जाती है। गैस बनने में प्रयुक्त हो चुकी सलरी संयंत्र से पाइपलाइन के जरिए इसके इस्तेमाल की जगह तक पहुंच जाती है। प्रयुक्त हो चुकी सलरी का सीधे कृषि के फालतू उत्पादों के साथ कंपोस्ट खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। गहराई के डाइजेस्टर का चुनाव एक अति उत्तम है। डाइजेस्टर की गहराई या आयतन का चुनाव गैस को रखे जाने की अवधि के आधार पर किया जाता है। यह अवधि आसपास के क्षेत्र के तापमान पर निर्भर करती है। अवधि के आधार पर तीन तरह के संयंत्र हो सकते हैं। उसकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। 30 दिन तक रखे जाने वाले गैस संयंत्र, 40 दिन तक रखे जाने वाले गैस संयंत्र और 55 दिन तक रखे जाने वाले गैस संयंत्र। हमारा हरियाणा और राजस्थान में ज्यादातर 40 से 55 दिन तक गैस रखे जाने वाले संयंत्र काम करते हैं, और इनमें दीन बंधु मॉडल, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, हरियाणा में ये जो मॉडल है बहुत
0: ज्यादा
1: पॉपुलर है, किफायती है, सस्ता है, काम कर रहा है इस समय, तो इसका चुनाव हम कर सकते हैं। बायोगैस लगाने की लागत और बैंक ऋण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यदि कोई किसान भाई
0: जी
1: इस गैस को सरकारी सहायता से लगाना चाहता है तो वो बायोगैस प्लांट के लिए सहकारी समितियों द्वारा बैंक, ग्रामीण बैंकों से इस पे लोन की सुविधा भी हरियाणा सरकार या भारत सरकार के माध्यम से या नेबार्ड जो बैंक हैं उनके माध्यम से सभी किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है।
0: इसका सिस्टम क्या है सर?
1: ये
0: किसान अगर कोई चाहे बायोगैस प्लांट लगाना चाहता है तो वो किस तरह से लोन लेने का प्रक्रिया में क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या पेपर्स जमा करने पड़ते हैं?
1: हाँ जी, इसके लिए संबंधित हर राज्य के अंदर अलग संस्था है। वो संस्था इसका देख रेख और इसको लगाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी।
0: बताइए,
1: व्यावसायिक और सहकारी बैंक संयंत्र लगाने के लिए ऋण देते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नेबार्ड जिसको बोलते हैं वो भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है किसानों के लिए। इसमें हमारे किसानों को एक आवेदन फॉर्म और जगह का चुनाव की मेरे पास इस संयंत्र को लगाने के लिए पर्याप्त जगह है, इतने सदस्यों की संख्या है, इतने मवेशियों की संख्या है, मैं लगाना चाहता हूँ, जो भी एजेंसी जिस भी राज्य में इस बायोगैस को लगाने की जिम्मेदारी रखती है और उसको सुनिश्चित कराती है उनका एक एक्सपर्ट कर्मचारी जगह का चुनाव देखता है और उसके बाद उसको डिजाइन के अकॉर्डिंग बता देता है कि आपके यहाँ ये बायोगैस लग सकता है। यदि किसान के पास पर्याप्त मात्रा में धन है, क्योंकि इस बायोगैस संयंत्र पर 20 से 25 हजार रुपए तक ही खर्च आता है और विभिन्न राज्यों में 25 से 40% तक इस पर अनुदान भी दिया जा रहा है। जहां तक मैं हरियाणा की बात करता हूं, यहां पर 8000 रुपए प्रति बायोगैस प्लांट हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को अनुदान दिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और यदि कोई किसान शौचालय साथ में जोड़ना चाहता है तो 1000 रुपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसके अलावा यदि कोई किसान डीजल इंजन इस बायोगैस संयंत्र के माध्यम से सहायता से चलाना चाहता है उसे 5000 अतिरिक्त और अनुदान दिया जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो आज के समय की ये बहुत जरूरत है, जिस तरह से एनवायरनमेंट पर्यावरण प्रदूषण खराब हो रहा है, दिन प्रतिदिन ईंधन के लिए जंगलों का कटाव किया जा रहा है और पर्यावरण खराब हो रहा है, उस दिशा में ये बायोगैस संयंत्र बहुत किफायती है, बहुत पर्यावरण हितैषी है, हमारा मित्र है। इसके लगाने से हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में जो गंद इधर उधर गोबर या अन्य चीजें फैलती हैं उसको इस संयंत्र के माध्यम से एक उचित खाद के रूप में भी बदल सकते हैं।
0: और ये मेरा कितने टाइम में बन सकता है, लगा के हो जाता है, कितना पीरियड लगता है इसको बनाने में?
1: इसके बनाने में जैसे 8 से 10 दिन तक का समय लगता है, क्योंकि ये जो बायोगैस प्लांट है थोड़ा धीरे धीरे बनता है, मटका टाइप है, इस पे चिनाई का जो कार्य है थोड़ा सा समय लगता है, रुक रुक के बनाना ही पड़ता है, तो 8 से 10 दिन में बनकर ये तैयार हो जाता है बिल्कुल।
0: अच्छा अच्छा। एक चीप से चीप माना कितना खर्चा आता है, जो एकदम किसान जो कम इकोनॉमिकली है, माना आर्थिक रूप से कमजोर है, उस व्यक्ति को कितना अगर कम से कम में आ जाएगा, ऐसा कोई एग्जांपल के तौर पे अपने भाषा में बताइए थोड़ा।
1: अगर परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 5 है तो उसे 50 किलो गोबर प्रतिदिन की जरूरत पड़ती है और उसे 2 से 3 घन क्षमता का बायोगैस संयंत्र की जरूरत है और वो उसके लिए सफिशियंट है।
0: अच्छा।
1: इसमें 15,000 पे मिनिमम खर्च आ सकता है।
0: एक 15,000 जिसके पास है वो भी बायोगैस प्लांट लगा सकता है?
1: बिल्कुल लगा सकता है।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके, और जो भी आपने जानकारी दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपसे इस तरह की जानकारी जानना चाहेंगे और भी अलग अलग विषय पे, तो हम आशा करते हैं कि आप फिर से रिकॉर्डिंग हमें देंगे।
1: थैंक यू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे किसानों से ग्रामीणों से रूबरू होने का मौका दिया उनको बात करने का।
0: और एग्जांपल कुछ है क्या जिनके पास अभी बायोगैस प्लांट हरियाणा में जो लगे हुए हैं उनके कुछ उदाहरण बता सकते हैं क्या सर?
1: बिल्कुल, हर जिला में लगभग 100 से 150 की संख्या में बायोगैस प्लांट इस समय लगे हुए हैं
0: और उनका जो आर्थिक स्तर कैसा है और कैसे वो फील कर रहे हैं?
1: इसमें ज्यादातर जो लोग ढाणियों और डेरों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, उनके पास जगह खुली होती है, वो इसको ज्यादा
0: प्रेफर करते हैं,
1: तवज्जो देते हैं, प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा लगाना चाहते हैं और इसमें वो ज्यादा बड़े स्तर के बायोगैस प्लांट लाते हैं, क्योंकि उनके पास मवेशियों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है और परिवार के सदस्यों की संख्या भी, तो वो इस पे ज्यादा मतलब तवज्जो देते हैं इसको और वो वहाँ लगाना उचित समझते हैं।
0: और ये
1: हरियाणा में तो बहुत कारगर है ये, जहाँ तक मैं कई जिलों में सर्विस कर चुका हूँ, बहुत अच्छा रुझान है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ठीक है, धन्यवाद।
0: मेरा गांव मेरा अंचल में हम बात कर रहे थे डॉक्टर करमचंद जी से जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव उनका था और उन्होंने बायोगैस प्लांट के बारे में हमें सारी जानकारी दी। और बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चे की भी जरूरत नहीं, सिर्फ 15,000 रुपये आपके पास हो तो आप अपने खेती में इसको लगा सकते हैं और ख़ास करके इसमें जो विधि विधान है ये एक्सपर्ट से ही आप लगवाएंगे तो अच्छा है, अपने मिस्त्री या कोई भी कड़िया से नहीं कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट से बात करके ही इस चीज को लगाए और इसका उपयोग करें, क्योंकि इससे 3 चीजें आपको तो ऐसे ही मिल जाता है, एक आपको खाद मिल जाता है और बहुत ही अच्छी खाद आपको मिल जाती है, दूसरा है आपको बिजली मिल जाती है और तीसरा है आपका खाना जल्दी बन जाता है और खाना बनाने के लिए जो गैस चाहिए वो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, वो आपके अपने घर में ही बनेगा। और चौथी बात यह है कि वो बहुत बड़ा फायदा यह है, ये सब तीनों चीज़ तो आपको अपने लिए मिल जाता है लेकिन चौथी बात है वो सबके लिए आप करते हैं, यानी पर्यावरण की सुरक्षा को आप मेंटेन करते हैं बायोगैस प्लांट से, तो एक बहुत बड़ी विश्वस्तरीय जो समस्या आज है उसको भी आप नियंत्रण में ला सकते हैं बायोगैस प्लांट से। तो किसान भाइयों, ये इतना अच्छा एक सुनहरा अवसर है हम सभी के लिए कि हम सभी को गवर्नमेंट भी इसके ऊपर अनुदान जो 8-10 हज़ार का दे रहा है, तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके इसकी अधिक जानकारी अवश्य लें और कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं, हमारा नंबर है 94-1415-1415। जी हाँ किसान भाइयों, आप सभी का जीवन उच्च स्तर का हो, आप सदा खुश रहिए, आर्थिक समस्या से आप मुक्त हो जाए, इसीलिए हम आपको ये सारी बातें सुना रहे हैं और इन सारी बातों का आप लाभ उठाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ सदा आप आगे बढ़ते रहें। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मेरा गांव मेरा अंचल। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: दोस्तों, मैंने, आपने और मैं समझता हूँ हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर ये बात सुनी है कि सेवा जैसा सुख किसी और चीज में नहीं। सेवा में जो सुख है वो ऐसा कौन सा सुख है जो आत्मा में ऐसी तृप्ति लाता है जो कि किसी और चीज से नहीं प्राप्त होता। दरअसल दोस्तों, वो है दूसरों की खुशी। जब हम सेवा करते हैं किसी और की, तो उसे जो खुशी प्राप्त होती है वो खुशी दुआओं जैसा काम करती है, और मुझे या आपको जो उस सेवा को कर रहा है वो दुआ प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हमें बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा ही सुकून महसूस होता है। और यही अनुभव जो है हमें और भी सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड में हम एक ऐसे ही सेवक को आपके बीच में लेकर के आए हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना NSS नेशनल सर्विसेज स्कीम के तहत कई युवा जो है भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में NSS से जुड़ करके बहुत सेवा आदि करते हैं। उनमें से एक छत्तीसगढ़ के भोथली गाँव की कुमुदिनी साव है, जिन्हें हाल ही में भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया उनकी सेवाओं के लिए। आइए मिलते हैं कुमुदिनी जी से। कुमुदिनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत सारा स्वागत है, एंड सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला और हमारे बीच में आए। नमस्कार।
2: नमस्कार सर, जय हिंद आप सभी को।
1: जय हिंद। कुमुदिनी जी, जैसे कि हम सब ने अभी सुना आपके बारे में कि आप महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा हाल ही में पुरस्कृत की गई हैं।

0: के सेवाओं के लिए एनएसएस कहते हैं, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना या नेशनल सर्विसेज स्कीम। तो हम जानना चाहेंगे कि सोशल सर्विस में, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे शुरू हुआ, क्या आपकी स्टोरी है, वो आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, आपकी कहानी।
1: जी सर, पहले तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जो आपने मंच प्रदान किया कि मैं अपनी बात जनता तक, बाकी लोगों तक पहुंचा पाऊँ। जी, मेरा नाम कुमुदिनी साव है, मैं ग्राम बोतली जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं मुझे इसी साल 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना उत्कृष्ट स्वयं सेवक पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से प्राप्त हुआ है। जी, इसके बारे में मैं संक्षेप में बताऊं कि मुझे इस यह अवार्ड पुरस्कार क्यों मिला है। तो हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना एक संस्था होती है, ये हर पूरे देश में हर शिक्षण संस्थानों में ये योजना होती है। ये 11वीं 12वीं से लेकर के उच्च जो संस्थान है, उच्च शिक्षा, उसमें ये एक इकाई है जो मेनली उनका मोटो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस। इस समाज सेवा के द्वारा हमको अपना व्यक्तित्व निखारना है। तो इस संस्था में मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी कॉलेज से। मैंने श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनवानी भिलाई से 2022 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। तो 2018 में मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना ज्वाइन किया। वहाँ हम जब बैठते थे, वहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ हम जमीनी स्तर में काम करने से लेकर के हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के मंच प्रदान होते हैं। तो इंडक्शन प्रोग्राम में, पहले तो मुझे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, कॉलेज के इंडक्शन प्रोग्राम में हमें ये बताया गया कि हम पढ़ाई के साथ साथ जो हमारा खाली टाइम बचता है उसमें हम समाज सेवा कर सकते हैं। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम बचपन से गांव में रहते हुए ऐसा परिवेश था कि हम कुछ ना कुछ संस्था से जुड़े होते थे, जैसे स्काउट गाइड हो गया, रेड क्रॉस हो गया, और अदर जो होते हैं गायत्री परिवार हो गए, ये बहुत सारे संस्था से मिलकर हम काम करते थे। तो बचपन से अंदर में एक था कि कुछ तो करना है, और कॉलेज में पढ़ाई के अलावा ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी मुझे दिखी। तो मैंने 2018 में एनएसएस ज्वाइन किया। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि इसमें समाज सेवा होते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं जो हम गांवों तक पहुँचाते हैं, ऐसे गांवों को हम इसमें गोद लेके वहाँ का डेवलपमेंट वर्क करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगी और मैंने इसमें काम करना शुरू किया। हमारी पूरी यूनिट बहुत 2010 से काम कर रही है, 2010 में हमारी यूनिट बनी हुई थी। पूरी यूनिट हम मिलकर सोशल एक्टिविटी करने, रेगुलर एक्टिविटीज हमारे डिफाइन होती है, जैसे प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, और मतलब गांवों में ये शिविर लगाना, चिकित्सा शिविर, ये सब रेगुलर वर्क में आते हैं। तो ये करने के साथ साथ हमें एक अलग चीज करनी होती है, अलग एक फील्ड चूज करना होता है। तो मेरा फील्ड था बच्चों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। तो ये दो फील्ड मैंने चूज किया। जब ये मेरे अंदर तब जागा जब कोविड का दौर था। कोविड के दौर में जब हम सब घर पे थे, तो ये एक ऐसी संस्था थी जो युवा वर्ग था, वही ये सब कामों में, सोशल वर्क में एक्टिव हुए। तो उस दौरान मैंने अपने गांव में पहले एक मास्क बांटने का अभियान चलाया था। मेरे पापा जब खेतों में जाते थे तो वहाँ वर्कर्स आते थे, और गाँवों में स्टार्टिंग फेज में कोविड के टाइम पे किसी को आइडिया नहीं होता था कि कैसे क्या होता है कोविड, ये तो ऐसी है बीमारी है या क्या चीज़ है, कुछ आइडिया नहीं होता था। तो मैंने अपने गांव में अपने खेत में काम करने वाले वर्कर्स के लिए 10-15 मास्क दिले और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, मेरे यूनिट ने बहुत सराहा कि हाँ आप मतलब अवेयर कर रहे हैं, आप ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने अपने फैमिली के लिए किया था कि मेरे पापा को कोविड ना हो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, हाँ गांव में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जगह गैदर होते हैं, मनरेगा वगैरह चलता है, इसमें कोई और नहीं है, तो बाकी लोगों की तो फैमिली है। तो हमने 4-5 सहेलियों ने मिलकर ये सोचा कि हम पूरा मास्क सिलते हैं बहुत सारे, और पूरे गांव में जाके बांट के उनको अवेयर करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे 250 से ज़्यादा मास्क घर पे सिले, हमारी 4-5 सहेलियों ने मिलकर गांव के सरपंच से बात करके डोर टू डोर कैंपेन चलाया, उनको अवेयर किया कि हाँ कोविड क्या होता है, उनको मास्क के बारे में बताया। तो वहाँ से मेरा अंदर एक और कम्युनिटी सर्विस का वो जागा कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, एक अलग से भाव आया कि और कुछ कर सकते हैं। तो पूरे कोविड के दौरान हमारी पूरी यूनिट के जितने भी वॉलंटियर्स है सब एक्टिव रहे, और हमने वैक्सीनेशन ड्यूटी और जितने भी वर्क होते हैं कोविड से रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन, वैक्सीनेशन ड्यूटी, ये सब किया। तो ये एक फेज था। वैसे ही हम लोग गाँव में जब कैंप वगैरह में जाते थे तो हम देखते थे कि महिलाएं थोड़ी संकोची स्वभाव की होती थी, और मैं खुद गाँव से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता होता है कि घरेलू हिंसा एक चीज होती है जो वहाँ गाँव की महिलाओं को बहुत काउंटर करती है, वो अपना आवाज नहीं उठा पाती है। तो हम लोग, हमारी पूरी यूनिट एक काम करती थी जिसमें कैंपों में जब हम कल्चरल प्रोग्राम करते थे तो बहुत सारी महिलाएं गैदर होती थी रात के टाइम पे। तो उस टाइम हम दुर्ग पुलिस रक्षा टीम को इनवाइट करते थे, वे रक्षा टीम आके पूरी महिलाओं को जागरूक करती थी, पूरे बच्चों को बैड टच फुट टच और हेल्पलाइन नंबर्स ये सब के बारे में अवेयर करती थी। तो ऐसे उनके महिलाओं में थोड़ा आत्मविश्वास आया गाँव की महिलाओं में, क्योंकि हमारा कैंप हर साल अलग अलग गांव में लगता है। तो ये हर साल हम दुर्ग पुलिस हमारी आती थी अलग अलग गांव में, ये कैंपेन चलाती थी, तो इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आया। तो ऐसा हमारा सोशल सर्विस करने का वो जगह, और इन्हीं दो मेन काम के वजह से मुझे महामहिम जी से राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जिसमें मैं मानती हूँ कि इसमें हमारे पूरे यूनिट का हाथ है, हमारे सब एक एक वॉलंटियर्स का हाथ है, और जिन्होंने मुझे गाइड किया उनका भी हाथ है। ये तो मेरी जर्नी थी।
0: तो कुमुदिनी जी, जो आपने कहानी सुनाई आपकी, वो कहानी मैं समझता हूँ कोविड के पहले से शुरू हुई होगी, लेकिन जो उसमें एक्सेलरेशन है या उस गाड़ी में जो स्पीड पकड़ी वो कोविड के दौरान पकड़ी, लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत शायद बहुत बचपन में हुई होगी, जब आपके माता पिता ने आपको ऐसे संस्कार दिए होंगे जहाँ पर खुद से ज्यादा किसी और के बारे में सोचना, किसी और के लिए कुछ कर पाना, उसके लिए समय निकालना, ये सब आपके अंदर पहले से था। तो आपका बचपन कैसा रहा?
1: जी बिल्कुल, ऐसा बोलते हैं कि अपने आसपास का परिवेश जैसा होता है, जैसा माँ बाप का संस्कार होता है वैसा बच्चों में कुछ दिखता है। ये तो आप बिल्कुल आपने जो कही बात में मैं मानती हूँ जी। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, हम 8 लोग हमारे परिवार में रहते हैं। तो हमारा परिवार शुरू से ही मतलब शिक्षित परिवार था, हम गांव में रहते हैं, तो वहाँ जब भी कुछ एक्टिविटी होती थी तो घर वाले कभी ऐसा रोकते नहीं थे, कि वो बोलते थे कि जाओ जो करना है समझो समाज को वो करो। हमारे घर में भी सब सोशली एक्टिव है, मेरी बड़ी मम्मी जो है वो टीचर है, तो उनसे भी बहुत सीखने मिला। मेरी मम्मी जो भी है वो भी थोड़ा बहुत कम्युनिटी सर्विस घर के आसपास करती थी, तो उन सबको देख देख के मैंने सीखा कि हाँ दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और पापा भी बहुत सोशली एक्टिव रहते हैं, तो उनसे भी मैंने नेतृत्व करने का गुण सीखा कि हाँ समाज के बीच जाके कैसे उनकी हेल्प करते हैं, ये सब चीज़ करते हैं। तो बचपन मेरा वही गुजरा है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी गाँव के आसपास जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ, हमारे गांव में सिर्फ 5वीं तक की कक्षाएं हैं, तो मैंने 3री से 5वीं कक्षा गांव के सरकारी स्कूल में की है। उसके बाद फिर मिडिल स्कूल के लिए मैंने हमारे गांव से 2 किलोमीटर की दूर शासकीय माध्यमिक विद्यालय रूदा में मैंने अपना पूरा मिडिल स्कूल बिताया है। उसके बाद फिर 9वीं से 11वीं के लिए फिर तीसरे गाँव जाना पड़ता था, वो भी 2 किलोमीटर दूर ही था, वहाँ से मैंने हायर स्टडीज की है। तो मेरी पूरी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। गवर्नमेंट स्कूल में रहते हुए हम सब सहयोग की भावना, मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा सीख पाते हैं, क्योंकि गांव में रिसोर्सेज बहुत कम होती है, तो हम आपस में साझा करके रहना, आपस में एडजस्ट करके रहना और आसपास से मेलजोल में रहना, ये अपने आप अंदर आ जाता है गांव में रहते हुए। इसके बाद मैंने हायर स्टडीज के लिए जो तकनीकी शिक्षण संस्थान शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनानी भिलाई में एडमिशन लिया और वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो प्रारंभिक शिक्षा का मैं मानती हूँ कि हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं उनका भी ये योगदान है कि उन्होंने हमको ये परस्पर मेल जोल ये भावनाएं हमारे अंदर विकसित की।
0: ये जो आपने बात कही कि गांव में भले ही साधन कम होते हैं, लेकिन लोगों के दिल में एक दूसरे के साथ मेल बांट करके रहना या साझा जीवन जीने की जो कला है वो गाँव में सीखने को बहुत सहज प्राप्त होती है। जब आप ये आपने जब अपना उच्चतम शिक्षा के लिए जब आप शहर की तरफ गए, जैसे आपने बताया कि आप लाइक की ओर गई, लेकिन उसके पहले की जो सारी शिक्षा दीक्षा थी आपकी वो गांव में हुई, तो जो परिवेश का जो डिफरेंस दिखा होगा आपको, एक गांव का वातावरण, गांव का व्यवहार या गांव का जो एक माहौल होता है, उससे बिल्कुल भिन्न रहा होगा, प्लस पढ़ाई भी डिफरेंट रही होगी, है ना? तो इन दोनों के बीच में आपने तालमेल कैसे किया?
1: जी सर बिल्कुल, जब मैं गांव से निकल कर जब मैं शहर में गई पढ़ने के लिए, तो वहाँ मैं हिंदी माध्यम से थी, मतलब हिंदी मीडियम से मेरा पढ़ाई हुआ है, और इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। तो शुरुआती 2-3 महीने तो ऐसा लगा था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, यहाँ सब बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम हिंदी मीडियम वाले 3 बच्चे हैं पूरे क्लास में, कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे। तो उसके बाद हमने सीखा कि नहीं, कुछ भी चीज सीखने की ललक अगर हो तो कोई भी चीज आपके किसी भी चीज के लिए बैरियर नहीं बनती। तो वहाँ 2-3 महीने लगा एडजस्ट करने में, लेकिन आसपास रहते हुए पढ़ाई करते हुए हमने कॉम्पीट किया और अपने मतलब इन्वायरमेंट में ढल गए थे। लेकिन एक चीज हमने देखी कि शहरों में रिसोर्सेज बहुत है, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स चलती हैं, ये सब अप्रोच है, लेकिन गांव में हम बच्चों को आइडिया नहीं होता है, हम कैरियर गाइडेंस भी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने अभी अपने गांव में, मैंने अपने गांव में जाके बच्चों को मतलब देखा ये सब, उनको बताया कि ये स्कीम होती है जितना हो सकता था। और अभी मेरा आगे का ये स्कीम है कि मैं गांव में जितनी रिसोर्सेज होती है वो मतलब शहरों में जितनी रिसोर्सेज होती है वो अपने गांव में जोड़ सकूँ। तो शुरुआती 2-3 महीने तो एडजस्ट करने में लगा, लेकिन हाँ जब सीखने की ललक हो गई उसके बाद पूरा हो जाता है एडजस्ट।
0: आपने जो ये बात बताई इसमें दो चीज मुझे समझ में आती है, एक तो ये कि व्यक्ति के अंदर खुद का हौसला होना चाहिए कि चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसका सामना करने के लिए अपने अंदर आत्मिक शक्ति होनी चाहिए कि हम इसका सामना कर सकते हैं और इस परिवेश में भी हम खुद को ढाल सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है और ये जो आत्मिक शक्ति जो है ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, कि चाहे हम कैसी भी परिस्थिति से निकल के आए हैं, अगर हम पहुंच गए हैं तो ज़रूर उस परिस्थिति ने हमें इतना काबिल तो बनाया है कि हम इस नई परिस्थिति में आ सके। तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है आपके जवाब से, लेकिन मुझे यहाँ ये जानने का मन करता है कि आपके अंदर ये खूबी है कि आप इस माहौल में ढल गए, लेकिन मान लीजिए आज के दिन कोई बच्चा किसी ऐसे परिस्थिति, चाहे वो दक्षिण भारत में हो या उत्तर भारत में हो या किसी भी देश में किसी भी हिस्से में हो, वो जब गांव से शहर की ओर जाता है पढ़ने के लिए या रोजगार के लिए, कई बातों का वो सामना करता है, जैसे कि लोग अलग होते हैं, थोड़े से उनके मिजाज अलग होते हैं, खान पान रहन सहन थोड़ा अलग होता है, भाग दौड़ थोड़ा ज्यादा होता है शहरों में। ऐसे में आप उनको कौन सी 2-3 बातें बताना चाहेंगे जिससे कि उनको ढलने में आसानी हो?
1: इस सिचुएशन के लिए मैं यही चीज समझी कि इंसान के अंदर 3 चीज अगर हो तो वो किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है। पहला है उसको खुद का आत्मविश्वास, जो आपने कहा कि अगर व्यक्ति में खुद का आत्मविश्वास है कि नहीं मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी सबके जैसा हूँ, बस मुझे थोड़ी सी उसकी जानकारी नहीं है, तो आस पास से जानकारी जुटाएं और उस परिवेश को समझने की कोशिश करें तो आप उस परिवेश में ढल पाएंगे। तो ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। दूसरा चीज ये है कि हाँ परिवेश भले अलग हो सकता है लेकिन उनमें सीखने की जो ललक होती है ये चीज दूसरों से आपको अलग बनाती है, ये आपने भीड़ में सबके साथ रहते हुए आपको ऊपर उठाती है। तो दूसरी चीज सीखने की ललक आपने होनी चाहिए कि आप किसी भी परिवेश में जाएं तो वहां से सीखे उसके परिवेश में क्या अच्छा है, वो चीज अपने ऊपर आत्मसात करे और ये भी देखे कि क्या चीज बुरा है उसे ना मना कहे। तो दूसरी चीज मैं कहूंगी कि आत्मविश्वास, दूसरा सीखने की ललक, ये 2 चीजें बच्चों के अंदर होनी चाहिए तो वो किसी भी परिवेश में ढल सकते हैं। और तीसरा अपने आप को कभी भी कमतर ना आंकना, अपने आप को निराश नहीं करना कि मैं कम हूँ या मुझे नहीं आएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, यहाँ ये अलग है वो अलग है। ये जो शिकायत करने वाला जो गुण होता है, मतलब शिकायत करने की जो प्रकृति होती है, ये हमें हताश करती है। तो कभी भी हताश ना होए क्योंकि भगवान जो भी करता है, ईश्वर जो भी करता है वो सोच समझ के करता है। तो ये मान के चले कि हाँ जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, इससे मुझे क्या सीखने मिलेगा। तो ये तीनों चीज में अगर सामंजस्य बनाकर चले कि आत्मविश्वास, अपना खुद को सीखने की ललक और अपने को निराश ना करना, सब में पॉजिटिव अप्रोच रखना, कि सब चीज अच्छा हो रहा है। तो ये तीन चीजें व्यक्ति में हो तो वो दुनिया में कहीं भी जाके एडजस्ट हो सकता है, किसी भी परिवेश में ढल सकता है, मुझे ऐसा लगता है।
0: ये जो तीन बातें आपने बताई, ये इतनी बेशकीमती तीन बातें आपने हमारे श्रोताओं के सामने रखी है। श्रोता साथी, आप जो भी सुन रहे हैं आज, अगर आप भी इस तरह के किसी माहौल में हैं जहाँ पर आप नए नए आए हैं और आपको एडजस्ट होने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो ये तीन बातें जो कुमुदिनी जी ने बताई उसको याद रखने की आवश्यकता है कि अपने भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए, नया सीखने का ललक होना चाहिए, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा भला है ये समझ लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो आगे बढ़ना है वो मुश्किल बिल्कुल ही नहीं होता है और ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो जाता है, जैसे कि कुमुदिनी जी के साथ हुआ। आज कुमुदिनी जी अपने आप में न केवल अपने गांव पोथली के कितने ही कन्याओं के लिए, कितने ही युवाओं के लिए एक मार्ग प्रदर्शिका बनी है, लेकिन उनको देख करके कितनों के अंदर ये उम्मीद जगी है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जीवन में जिससे मैं भी, जैसे कुमुदिनी जी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऐसे उन्हें भी सम्मानित किया जाए, चाहे वो कोई सा भी सम्मान। लेकिन व्यक्ति अगर लक्ष्य रखता है तभी उसकी ओर आगे बढ़ता है, और लक्ष्य रखने के लिए अगर उसके आसपास ऐसे प्रेरणादायी लोग होते हैं तो वो लक्ष्य क्रिएट कर पाना उनके लिए बड़ा ही ईजी हो जाता है, सरल हो जाता है। कुमुदिनी जी, आपके लिए अगर मैं पूछूं वर्तमान में या भूत में कोई ऐसा व्यक्तित्व जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, कौन सा है वो व्यक्तित्व?
1: मैं ऐसे एक व्यक्तित्व तो नहीं बता सकती हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को, जहाँ मैं जाती हूँ या मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, मुझे उसमें जो चीज अच्छी लगती है, ये चीज मैंने अपनी माँ से सीखा है, मम्मी से। वो कहती थी कि बचपन से ये कहती थी, जिस चीज जो चीज अच्छी लगती है वो खुद एक्सेप्ट कर लो। ये एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी कि बचपन में मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, और जब कॉम्पिटिशन्स होते थे हैंडराइटिंग वाली, तो गांव में ऐसे वो नकल लिखवाते थे, तो मैं देखती थी सबका राइटिंग अच्छा है, मेरा खराब है, नहीं बनता है। फिर मैं बहुत लिखती थी, नहीं बनता था, मैं ऐसा कर निराश हो जाती थी कि मेरे से नहीं बन रहा है। तो उस टाइम मम्मी ने मुझे एक बात कही थी कि जिसका जो अक्षर अच्छा लग रहा है, तेरे को पसंद आ रहा है, वो अक्षर बनाने की कोशिश करो, जिस चीज की जो जो अच्छा लगता है किसी भी चीज में उसको खुद एक्सेप्ट कर लो। तो ये चीज मैंने गांठ बांधी, और अभी मतलब उसके बाद फिर मैंने जो जो जिसका जिसका जो जो अक्षर अच्छा लगता था मैं उसे बनाने की कोशिश करती थी। इसके बाद मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छे से सुधरी, तो ये चीज मैंने एक्सेप्ट कर ली। और अभी भी मेरा कोई एक प्रेरणा स्रोत मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे आसपास से जहाँ किसी से भी कुछ भी सीखने मिलता है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उससे सीख लेती। तो सभी आसपास की चीजें, प्रकृति और जो मेरे आसपास लोग हैं, सभी प्रेरणा स्रोत हैं। बस एक नजरिए की बात होती है कि आप उससे से अच्छा चीज सीख रहे हैं या बुरा चीज।
0: कौन सी बात मेरी जहन में जगह बनाती है वो डिपेंड करता है हमारी सोच पे, कि हमने हमारी जहन में किस चीज को जगह दी है, किसी की अच्छाई को या किसी की बुराई को, या कौन सी चीज को मैंने जगह दी है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आपकी माता जी ने बहुत सुंदर एक प्रेरणा दिया आपको कि जो भी अच्छा नजर आता है उसको ग्रहण करने का प्रयास करो, और वही जीवन में सफलता का कारण बनता है। अक्सर ये देखा गया है कि माएं जो हैं वो अपने बच्चों को इस प्रकार के जब संस्कार भरती हैं वो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, चाहे वो शिवाजी का उदाहरण लीजिए या विवेकानंद जी का उदाहरण लीजिए या आपका ही उदाहरण ले ले। आपकी माता का जो संस्कार, जो शिक्षा थी वो आपको आगे बढ़ाती है। ऐसे में आज के परिप्रेक्ष्य में जब शायद माताएं जॉब आदि कर रही हैं या घर का काम संभाल रही हैं तो शायद बच्चों के प्रति टाइम उतना नहीं दे पाती, और बच्चे भी मम्मी पापा का उतना नहीं सुनते क्योंकि वो शायद फोन और बाकी की चीज़ों में बहुत बिजी होते हैं। तो पेरेंट और चाइल्ड, इसका जो एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप है अभिभावक और बच्चों का, उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, शायद मैं थोड़ा कह रहा हूँ लेकिन सुनने वाले कई सोचते होंगे, बहुत ज्यादा दरार आई है या दूरत्व आया है, और हो सकता है मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा दूरत्व आया है, लेकिन हो सकता है आज भी ऐसा है। आपका क्या मानना है?
1: ये बात तो बिल्कुल सच है कि आज का जैसा परिवेश बन चुका है, एक ओपन माइंड एक वर्ड यूज होता है हम टीनेज में, जब भी हम कॉलेज जाएं या हमारे आसपास जब भी पढ़ने जाएं, जब यूथ इकट्ठा होते हैं तो ओपन माइंड ये एक वर्ड होता है

0: ओपन माइंड होने का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं, उनको लगता है ओपन माइंड होने का मतलब ऐसे कूल दिखना, जो आज पर रील्स में जो मटेरियल दिखाया जा रहा है या इंटरनेट में जो प्रचलन में चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेने से हम कूल बन जाते हैं। और इसमें क्या है कि अभिभावकों पर बच्चों का दबाव पड़ जाता है, जैसे हम बच्चे हैं हम आसपास की चीजें ऐसा देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अभिभावक भी वैसे बने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रहे या ऐसा बात करे। हम नॉर्मल जो घर में बात करते हैं वैसा बाहर बात ना करें। घर में अगर हम अपने मदर टंग में बात करते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ी में बात करती हूँ, तो बाहर जाके ऐसा हो जाएगा कि नहीं मम्मी आप हिंदी में बात करो। ये सब चीजें दिखावा, पूरी चीजों का मतलब है ये एक दिखावा आवरण आज के परिवेश में आ गया है। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये सब चीजें जो मटेरियल हम सोशल मीडिया जो बोलते हैं इसके कारण आया हुआ है। तो मैं एक ही अपील कर सकती हूँ जो युवा हमें सुन रहे हैं या अभिभावक हमें सुन रहे हैं कि ये जो इंटरनेट में जो प्रचलित हो रही है ये सब दिखावे वाली चीजें वो ना करें। आपसे आपको जो अच्छा लगता है, सामने वाले को जो अच्छा लगता है वो दिखाएं। अभिभावक से वैसा बात ना करें कि हाँ मेरी अभिभावक कूल है ये है वो। जैसा आपके अंतर में रिलेशन है वैसा ही आप बना के रखें तो ये चीजें थोड़ी कम हो सकती हैं। और युवाओं से भी ये अपील करती हूँ कि वो ऐसा कूल बनने के चक्कर में जो गलत आदतों में पड़ जाते हैं उसमें बिल्कुल ना पाए। जैसे कोई सिगरेट पीने से कोई कूल नहीं हो जाता है, वो बुरी चीजें हैं, तो ये सबसे दूर रहे। ये कूल वो होता है जो अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए इज्जत बनाए, अपने समाज में एक जगह बनाए और दूसरों की मदद करे। तो ये दिखावे वाली जो आचरण है उसको हम दूर करने का प्रयास करें, यही मेरे युवाओं से अपील है।
1: श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम, और जिसमें आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे बीच में है कुमुदिनी साहू जी, जो कि छत्तीसगढ़ के खोतरी नाम के छोटे से गांव से आती हैं। लेकिन ये छोटे से गांव की सुपुत्री आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। क्यों? उनके समाज सेवा के सद्भाव के लिए। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं और उसमें उन्होंने अभी बहुत एक बड़ी बात कही कि ओपन माइंड होना, अर्थात एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। ओपन माइंड मतलब ये नहीं कि जो भी आपने टीवी में या फिल्मों में या फोन पे जो भी आप देखते हैं उसको तुरंत ही कॉपी कर लेना, पहले उसको देखिए, समझिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि इससे मेरा और मेरे संस्कृति का क्या होने वाला है, भला या नुकसान, और उसके बाद उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया, स्मोकिंग, गैस सिगरेट पीना या बीड़ी पीना, धूम्रपान जो है उससे कोई भी व्यक्ति कूल या फैशनेबल नहीं बन जाता, ये व्यक्ति की मूर्खता का परिचायक होता है, ये उसकी कमजोरी का परिचायक होता है कि वो कैसे अपने परिवेश में अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ों का आधार ले रहा है जो उसके लिए ही नहीं अपितु आसपास के लोगों के लिए एवं पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। कुमुदिनी जी, एक चीज मुझे ये यहाँ आप समझाइए कि जैसे युवाओं की आपने बात की, उनके पास पढ़ाई करना है, जॉब करना है, साथ में फिर सोशल लाइफ भी है, उनका टीवी, फोन, व्हाट्सएप आदि आदि ये सब बहुत कुछ है। ये सब होते हुए आप भी एक युवा ही हैं, आपने कैसे अपने लिए समय निकाला कि भाई मुझे समाज सेवा करना है? एक तो है कि आपके माता पिता के दिए संस्कार है जो कि मैं समझता हूँ सभी युवाओं को प्राप्त है, और भारत में तो स्पेशली सेवा ही दान धर्म पुण्य ये सब में सेवा को बहुत बड़ा दर्जा मिला हुआ है। तो सभी युवाओं को ये ज्ञान तो है कि ये करना अच्छी चीज है, लेकिन इसके लिए समय कैसे निकाले, खुद को इसके लिए तैयार कैसे करें?
0: इस सब के लिए मैं जो करती थी पहले रील हो गया, फोन हो गया, ये सब की वो जब नई नई चीजें आती हैं, मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मैं गांव में जब रहती थी एक तो नेटवर्क का बहुत इशू रहता था, तो इंटरनेट की उतनी पहुंच थी नहीं, तो मैं इस सब चीजों से बहुत बची हुई थी। ये सब चीजें मैं जब कॉलेज में गई तब मेरे हाथ में फोन आया, तो उससे मुझे तो बहुत कम लत लगी थी। लेकिन आजकल का परिवेश ऐसा है कि गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी है और बच्चे-बच्चे के हाथ में फोन है, तो इस लत से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये चीज हम ये कर सकते हैं कि बच्चों का एक कम्युनिटी बना के या युवाओं को जो रियल हैप्पीनेस है जो असली खुशी है उससे परिचय करें, जो फोन में देख के उनको रील्स देख के या कुछ भी चीजें देख के हाँ ये अच्छा हो रहा है उसको खुशी मिलती है, लेकिन अगर हम उन्हीं युवाओं को उससे बाहर निकालकर मेन समाज में कुछ अच्छा काम करने को कहें तो उनको जो अंदर से खुशी महसूस होती है उनको जगाने की जरूरत है। हमारे कॉलेज में इतने सारे 4,500 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से एनएसएस में हम करीब 500-600 बच्चे रजिस्टर होते थे। हम जब गांव में जाते थे, वहां का परिवेश देखते थे और उनके लिए कुछ करते थे तो हमारे अंदर से खुशी होती थी कि हम कुछ अलग कर रहे हैं और हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, इसमें असली खुशी है। तो हम मोबाइल के लत से और ये सब दिखावे से बाहर आके जितने युवा ये एक बार भी जिन्होंने किया है वो सोशली एक्टिव हो जाता है। तो युवाओं को बस एक ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनको असली खुशी से परिचय करवाए, और ये तभी हो सकता है जब वो किसी कम्युनिटी से जुड़े या एक साथ वैसा मंच बने, क्योंकि अगर घर में वो रह के फोन वगैरह चलाएंगे तो उससे तो उनको बाहर नहीं लाया जा सकता। उन्हें एक कम्युनिटी के थ्रू उनको बताना पड़ेगा कि रियल हैप्पीनेस क्या है। जैसे मुझे एक फिर से एक इंसिडेंट याद आया है कि हमारे एक दोस्त है, यहाँ मैं जब बिलासपुर में आगे की पढ़ाई करने के लिए आई तो एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था। हमारे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने कभी ब्लड दिया नहीं था, उनमें से डर का भाव बैठा हुआ था, उनमें कभी भी ऐसा कोई भी सोशल एक्टिव को सोशल अवेयरनेस का काम नहीं किया था। तो मुझे पता चला कि यहाँ हमारी जो एक और नेशनल अवॉर्डी है अलीसा अंसारी, उन्होंने कैंप लगाया था। तो मैंने सभी दोस्तों से कहा कि चलो यार एक बार दे के आते हैं ब्लड, और उन लोग पूछे क्यों, मतलब खून निकाल के देना है, उनमें एक अवेयरनेस नहीं था। उसको हमने अवेयर किया कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, तुमको कुछ नहीं होगा, 2 दिन में ब्लड फिर से बन जाते हैं। तो फिर भी कुछ लोग जाने तैयार नहीं थे, तो उसमें एक गिफ्ट वाउचर रखा गया था कि जो भी ब्लड देगा उसको ब्लूटूथ ईयरफोन दिया जाएगा। तो वो ऐसा हमने उनको बोला तो बहुत सारे लोग चले गए। हम गए वहां जाके वो बोले कि नहीं नहीं नहीं दे पाएंगे, हम डर लग रहा है खून निकलेगा ये है। उनको हमने एकदम मोटिवेट किया, बैठाए, उनसे रक्तदान करवाया। एक बार जब उन्होंने रक्तदान कर लिया तो उन्होंने खुद मैसेज करके और सामने भी उनको थैंक यू बोला और बोला कि पता नहीं अंदर से खुशी हुआ देखे कि हमारे वजह से किसी की जान बच जाएगी, हम हर 3 महीने बाद हम ब्लड डोनेशन करेंगे। तो इससे एक इंसिडेंट याद आता है कि हाँ हम युवाओं को उस चीज से बस एक बार अवगत कराना है, फिर वो युवा खुद ही सोशली एक्टिव हो जाएगा। तो उनके लिए एक कम्युनिटी बनाने की जरूरत है।
1: ये आपने कितना प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसको बस थोड़ा सा मदद करने की आवश्यकता है, आगे फिर वो खुद ही अपने क्षमता से आगे बढ़ सकता है। जैसे आपने बताया कि युवाओं में ऑलरेडी चाह है, ललक है कुछ अच्छा करने की, केवल हमें एक कम्युनिटी, एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करना है जिसमें कि उनको अपने आप रुचि आए, और वो रुचि एक बार अगर जगा दी गई तो वो रुचि जो है लंबे समय तक उस व्यक्ति का साथ निभाएगी और उसको कई फिजूल चीजों से बचा लेगी। तो मैं समझता हूँ जो भी आज ये सुन रहे हैं, या तो खुद के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए या ढूंढिए कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म और उससे जुड़िए। जो भी सामूहिक रूप से किया जाने वाला समाज सेवा है उसमें जुड़िए। अकेले करने का प्रयास करने के लिए अंदर बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। कई बार शुरू में ये डिफिकल्ट हो सकता है, मुश्किल हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर 10 लोग कोई काम कर रहे हैं उसमें जाके थोड़ा सा हाथ बटाने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, और एक बार आपने हाथ बटा लिएगा तो आपका हाथ अपने आप आगे बढ़ता जाएगा औरों की मदद करने के लिए, और आपके लिए एक नया जीवन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसी जीवन के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए कुमुदिनी जी ने कितने ही लोगों तक प्रेरणा पहुंचाई है, कितने ही लोगों की सेवा की है, वृक्षारोपण किया है, रक्तदान कराया है, कोविड में मास्क बांटे हैं। आप जिस प्रकार की सेवा का सोच रहे होंगे हर प्रकार की उन्होंने सेवा की, घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, या उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुई जो भी समस्याएं होती हैं उनको लेकर के जागरूक करना, ये सब कुमुदिनी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर NSS नेशनल सर्विसेज स्कीम या राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना के तहत किया। और आज मैं समझता हूँ कि कुमुदिनी जी के पास ढेरों ऐसी कहानियां हैं, ढेरों ऐसे अनुभव हैं जहाँ पर लोगों ने उनसे प्राप्त जो लाभ है, जो खुशी उनको मिली है, उसको ही, दूसरों की खुशी जो ओरिजिनल है, उसको देख के जो आप खुश होते हैं, उसको ही उन्होंने नाम दिया है रियल हैप्पीनेस, सच्ची खुशी जो कि सेवा से आती है। दोस्तों, आप भी रेडियो मधुबन में फोन करके या हमें बता सकते हैं कि आप कौन सी सेवा में बिजी हैं, कौन सा सेवा करना आपको अच्छा लगता है, क्या वो प्रकृति की सेवा करना है, या लोगों की सेवा करना है, बुजुर्गों की सेवा करना है, या कौन सी सेवा, या अगर आप करना चाहते हैं और आपके पास पता नहीं कहाँ से शुरू करें ऐसा उलझन है, तो आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। और जैसे कि रेडियो मधुबन में अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे कि एक कार्यक्रम ये है यशस्वी भारत, ऐसे ही कितने ही अनोखे प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत आपको मार्गदर्शन मिलती रही। कुमुदिनी जी, आप भारत के एक ऐसे राज्य से आती हैं जिस राज्य का अकेला नाम नंबर से शुरू होता है, राइट? छत्तीसगढ़ जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका नाम 36 है, 36। बाकी भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका नाम किसी नंबर से शुरू होता है। आप छत्तीसगढ़ के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: जी, आपने ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब भी हम नेशनल कैंप्स वगैरह अटेंड करने जाते थे, वहाँ पूरे भारत के कोने कोने से, सभी राज्यों से हमारे वॉलंटियर्स आते थे। तो मैंने देखा है कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक इमेज बना हुआ है पूरे इंडिया के अंदर कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, हम, हमारे राज्य में आदिवासी बहुत है, और हम उनके मतलब दिमाग में अभी भी ये चीजें बनी हुई है कि हम पत्ते पहन के घूमते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ही संस्कृति संपन्न राज्य है। हम अपनी संस्कृति को अभी भी संजो कर रखे हैं और बचा कर रखे हुए हैं। आप कभी छत्तीसगढ़ घूमने आए या कभी देखने आए, तो आपने इसमें इतनी सारी विविधताएं दिखेगी। ऐसा बोलते हैं घाट घाट में पानी बदलता है, ऐसा माहौल आपको छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगा। हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नाम के बारे में बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। ऐसा बोला जाता है कि पुराने जमाने में, राजाओं के जमाने में, रतनपुर राज्य में 18 गढ़ और जो रायपुर राज्य होते हैं उसमें 18 गढ़, तो दोनों को मिला के पूरे 36 किले थे। तो 36 किले के नाम पर हमारे राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा ऐसा फेमस है, धान के कटोरे के लिए हमारे राज्य में धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उन्हें धान का कटोरा भी कहते हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही ज्यादा संस्कृति से संपन्न है। आप एक बार आइए, यहाँ न युवाओं के प्रतिभाओं की कमी है, ना संस्कृति की कमी है, ना पर्यटन की कमी है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक संपन्न राज्य है। यहाँ के लोगों में जो प्रेम भाव है वो आपको यहाँ आकर अनुभव करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं कह सकती हूँ कि अगर आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो आप छत्तीसगढ़ के लोगों को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, तो ये हमारी संस्कृति और हमारे जो लोगों का प्रेम भाव है, इसलिए लोगों के मन में ये भाव आ ही जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। बस हमें अभी प्लेटफॉर्म, मंच वगैरह के बारे में बहुत ही कम पता होता है, जिसके कारण हम नेशनल लेवल पे हम अपना प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। तो बस ये चीज की कमी हमारे छत्तीसगढ़ में है, जो हम धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं। एक बार छत्तीसगढ़ आके विजिट जरूर करिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: और जैसे आपने अभी सुना छत्तीसगढ़ के बारे में, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में भी आप तभी जान पाएंगे जब आप वहाँ खुद जाएंगे। किसी भी राज्य में जाकर के जब आप वहाँ के जनमानस से मिलते हैं, तभी वहाँ की संस्कृति का सही पता चल पाता है। केवल स्थूल संस्कृति जो होती है, जैसे कि बिल्डिंग आदि, ये सब मंदिर, महल, किले आदि, ये देखने में आपको जो चीजें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, वो कुछ ही हद तक आपको उस राज्य के बारे में बताती है। दरअसल असल उस राज्य का जो टेस्ट है दोस्तों, वो तभी मिलता है जब आप वहाँ के लोगों के साथ जाके मिलते हैं। तो ये जो हमारा भारत देश है जिसके पास इतनी विविधता है कि आपका, कहते हैं ना 13 पर्व हैं लेकिन 12 महीने हैं, मतलब इतनी विविधता है कि आप कभी भी बोर तो नहीं हो सकते। आप अपने ही राज्य में घूमना अगर शुरू करें तो भी आप उसको कभी पूरा शायद ही कर पाए, तो भारत तो फिर कितना बड़ा देश है। ऐसे में कुमुदिनी जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, भारत में इतनी विविधताएं हैं, चाहे संस्कृति की विविधता हो, भाषा की विविधता हो, लोगों के रहन सहन, पहनावे, हर प्रकार से इतना विविध है। लेकिन आपके नजरिए से कोई एक चीज अगर पूरे भारत को एक बनाती है, वो कौन सी चीज है जो हर जगह एक जैसी ही लगती है आपको?
0: जी, पूरे भारत में जो एक चीज है वो है कि देश के लिए निष्ठा। जो हम भारत के कोने कोने में भी जाएं, अच्छा बोलते हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। तो अगर भारत के लिए कुछ चीज होती है तो पूरा देश एक हो जाता है। इसे हमें देश के प्रति निष्ठा कह सकते हैं कि हम भले राज्य अलग होंगे, भाषा अलग होगी, हम सभी की संस्कृति अलग होगी, लेकिन पूरे देश में, जैसे एग्जाम्पल है कि क्रिकेट जब होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो पूरा देश यूनाइट हो जाता है। तो ये होती है एकता, अपने देश के प्रति निष्ठा। तो ये पूरे भारत में आपको एक जैसी ही मिलेगी। भले इसमें विविधता है, लेकिन हमारे में एकता है। अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। ये हमारे भारत का मेन मोटो है, ऐसा मुझे लगता है।
1: और अगर इसी में एक और कदम आगे जाए तो इस पूरे भारत को अगर आपको यशस्वी बनाना है, ग्लोरियस बनाना है, तो आपके लिए ऐसा कौन सा महामंत्र है, कौन सी चीजें हैं जिनको करने से आपको लगता है हर व्यक्ति भारत को यशस्वी बनाने में अपना योगदान दे पाए?
0: सबसे पहले शुरुआत मुझे जैसा लगती है कि संदूषकों को ना बदलकर स्वयं को बदलना। अगर हम अपने ऊपर काम करें, स्वयं को ऐसा बनाएं कि हम कुछ अपने व्यक्तित्व को निखारे, तो ऐसा अगर हर व्यक्ति अपने अंदर बदलाव लाए, तो फिर ऐसा हो सकता है कि पूरा देश ही बदल जाए। उसमें देश प्रेम और समाज में कुछ करने की ललक, ये सब तो होता है, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है कि वो खुद पे भी काम नहीं करते हैं। हमारे आज युवा भारत की सबसे बड़ी यही समस्या है कि वे खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए गलत है। एक मानव संसाधन जो हमें अपने देश को उन्नत बनाती है, वो हम मानव संसाधन कम हो रहे हैं। देश में जनसंख्या बढ़ रही है, देश में युवा भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी क्यों पूरे विश्व में, हमारी जनसंख्या, अब हमें पता चली कि हम चीन को भी काउंटर कर चुके हैं, हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में सर्वाधिक है, लेकिन क्यों हम पिछड़े हुए हैं? क्योंकि हम मानव संसाधन नहीं बन पाए हैं। और मानव संसाधन हम तभी बन पाएंगे जब हम खुद के ऊपर काम करें। खुद को हमें सोचना है कि हमें कहाँ तक जाना है। एक हमको टारगेट सेट करना है, खुद के व्यक्तित्व को निखारना है, उस टारगेट को अचीव करना है, तो हम एक मानव से मानव संसाधन बनेंगे। और इस प्रोसेस में अगर एक-एक लोग अपने आप को सुधार लेंगे, तो समाज भी अपने आप सुधर जाएगा, देश भी अपने आप सुधर जाएगा।
1: दोस्तों, कुमुदिनी साहू जी ने इतनी सुंदर बात कही कि भारत को यशस्वी बनाने के लिए स्वयं पर ध्यान दीजिए, खुद को यशस्वी बनाइए, खुद को ऐसा काबिल बनाइए कि आपके योगदान से, आपके हर छोटे कर्तव्य से भारत देश का नाम आगे चमचमाता रहे। दूसरों पे ध्यान देना, दूसरों के मुकाबले, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करेंगे तो भारत अपनी भारतीयता खो देगा। इसलिए अपनी यूनिकनेस, अपनी जो अनोखी बात है, वो यही है कि हम खुद पे आध्यात्म जो है भारत का, इतना एक सुंदर कहेंगे भारत की देन है विश्व को, और वही आध्यात्म जो है हमें ये सिखाती है कि पहले स्वयं की ओर हमारा ध्यान जाए। क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा जीवन जीऊं जिससे मेरे आसपास के लोगों में भी परिवर्तन आए और मेरे देश के लिए भी ये एक हितकारी कदम। यशस्वी भारत कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव में कुमुदिनी जी से हम पूछेंगे कुछ रैपिड फायर सवाल और देखते हैं कुमुदिनी जी उनका कैसे जवाब देती हैं। तो आप
0: जी,
1: रेडी
0: जी
1: हैं कुमुदिनी जी?
0: बिल्कुल।
1: पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: तो मेरे हिसाब से सेवा दूसरों की मदद करके खुद के लिए खुशी, खुद को खुशी होना ही सेवा है।
1: दूसरों की मदद के द्वारा खुद को सुख पहुंचाना, ये सेवा है। बहुत अच्छा। सुख क्या है?
0: ये है कि सुख संतुष्टि है, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम संतुष्ट हैं, तो हम सुख हैं, सुखी हैं।
1: बहुत बढ़िया। ज्ञान क्या है?
0: ज्ञान वो है, ज्ञान अनुभव है, जो हम आसपास की चीजों से सीखते हैं। ज्ञान एक प्रकार का अनुभव है जो जीवन में काम आए।
1: अनुभव ही ज्ञान है दरअसल, कि कितना भी पोथी पढ़ पढ़ जब मुंह हाथ कहते भी है ना, तो अनुभव ही नहीं हो तो वो ज्ञान ही कैसा। तो अनुभव ही ज्ञान है, बहुत सुंदर था आपने। शांति क्या है?
0: जब कुछ कार्य करके आपको एक आपको सुख का अनुभव हो, ऐसा लगे कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, सुख का अनुभव हो, तो वही शांति है। जी?
1: घर किसे कहेंगे आप?
0: मेरे हिसाब से घर वो है जहाँ सब अपना लगे, अपनत्व हो, वहाँ वो घर है।
1: बहुत खूबसूरत, जहाँ अपनत्व की भावना हो, जहाँ अपनापन हो, वही घर है दोस्तों। फिर चाहे वो पेड़ के नीचे ही हो, चाहे आप जमीन पे भी सो रहे हो, लेकिन अगर अपनेपन के साथ आप जमीन पे सो रहे हैं 5 लोगों के साथ, तो वो भी आपको घर जैसे ही महसूस होगा। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है अब तक कुमुदिनी जी ने। अगला सवाल आपसे ये है कि युवा कौन है?
0: युवा वो है जो जीवंत है।
1: जो जीवंत है वही युवा है। तो इसमें शारीरिक उम्र की बात नहीं आती दोस्तों, ये जीवंत की बात है। आप जितने चीयरफुल हैं, एक्टिव हैं, जितने जिंदा दिल हैं, आप उतने ही युवा हैं। तो आप चाहे शारीरिक उम्र से आप 80 साल के भी हो सकते हैं, या शारीरिक उम्र से आप 8 साल के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की जिंदा दिली तय करती है कि आप कितना युवा है। कुमुदिनी जी ने युवाओं का इतना खूबसूरत डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है, जो मैं समझता हूँ आज सारे युवा जो सुन रहे हैं वो बड़े खुश हो रहे होंगे। जो दिल से भी युवा है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आखिरी सवाल है, नहीं आखिरी से थोड़ा पहले, देश क्या है?
0: देश वो है जहाँ एकता है, और अपनेपन की भावना जब बहुत से लोगों में हो जाती है तो वो देश कहलाता है।
1: बहुत सुंदर। भारत क्या है?
0: भारत माँ है जो अपने बच्चों को समेटे हुए रखी है अपनी संस्कृति के साथ, अब अच्छे संस्कार देके।
1: आखिरी सवाल, कुमुदिनी कौन है?
0: जी ये सबसे कठिन सवाल है। जी कुमुदिनी एक इंसान है, एक मानव है जो अच्छे समाज के लिए सोचती है और अपने आसपास खुशी बांटना चाहती है।
1: तो कुमुदिनी जी के इस जवाब से ये पता चलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास में लोगों के बीच में खुशी बांटना चाहता है, इंसानियत को समझता है और मानव धर्म को जानता है, वो व्यक्ति कुमुदिनी के समान है, और कुमुदिनी जी अपने आप को वैसा देखती हैं। बहुत अच्छा लगा कुमुदिनी जी आपसे बात करके, और हम ये उम्मीद करेंगे कि केवल एक यही मौका ना हो हमारे श्रोताओं का आपके साथ मिलने का, दोबारा आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत करें, हमसे मिलते रहें। और जैसे कि आपने न्योता भी दिया है सब साथियों को जो सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आकर के छत्तीसगढ़ देखे जरूर, ऐसे ही मैं चाहूंगा कि आप कोई अगर मैसेज देना चाहते हो लोगों को तो वो एक मैसेज दे दें।
0: जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मंच प्रदान किया। तो मैं इस मंच से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि एक बार खुशी लीजिए, अनुभव कीजिए कि किसी को देने में और किसी की मदद करने में कितनी आंतरिक अंतर से जो खुशी होती है वो एक बार अनुभव जरूर करके देखिए। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये चीज़ एक बार अनुभव कर लेंगे तो आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी और आप अपने आस पास सबको खुश रखना चाहेंगे, तो करके देखिए, अच्छा लगता है।
1: जैसे कुमुदिनी जी ने कहा कि एक बार सच्ची खुशी का अनुभव जरूर कीजिए और उसको करने के लिए देने का गुण अपने अंदर धारण कीजिए। जब आप किसी को कुछ भी देते हैं, चाहे वो धन देते हैं, चाहे वो ज्ञान देते हैं, गुण देते हैं या मदद देते हैं, कुछ भी जब हम देते हैं तो जो सुख हमें मिलता है वही सुख जो है सच्चा सुख है। और जैसे कुमुदिनी जी ने बताया कि ये जो रियल खुशी है, ये जो आंतरिक खुशी है, यही व्यक्ति के विकास के लिए असल खुराक है, असल नरिशमेंट है। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी एक दवाई का भी काम करती है। दोस्तों मैं समझता हूँ आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के इस एपिसोड से आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं और सीखी भी होंगी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ मिल करके कुमुदिनी साहू जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे उनके भविष्य के लिए, ताकि वो ढेरों लोगों तक पहुंच सके और अपने जैसी कई कुमुदिनियों को तैयार कर सके, कई युवाओं को तैयार कर सके जो भारत देश के निर्माण में, भारत के समृद्ध काल में, भारत देश को यशस्वी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम आप सुन रहे थे दोस्तों 107.8 FM रेडियो मधुबन पर। और जैसा कि आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें जानी सेवा के संबंध में, युवाओं के संबंध में और जाना कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को फिजूल समय व्यर्थ गवाने से बचा

सकता है, देश को अपना वो समय दे सकता है। दोस्तों, आप भी अपने आसपास में कोई ना कोई ऐसा कारण अवश्य ढूंढ निकाल सकते हैं जिसमें आप अगर अपना समय दें, अपना सामर्थ्य दें, तो देश की प्रगति में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आरजे शांतनु आपसे लेता हूँ अलविदा। दोबारा मिलूंगा एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नए सुपुत्र के साथ, सुपुत्री के साथ भारत देश की, जिन्होंने भारत को यशस्वी बनाने में अपना जीवन लगाया हुआ है। तब तक सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: में से ये कोई हो।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए, आज जो है संडे है और संडे हम लोग अलग अलग डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराते हैं और पूरा 9 से 10 बजे तक जो है हम डॉक्टर के साथ बातें करते हैं और आप भी 94 14 15 14 15 इस नंबर पर जुड़कर अपनी बातें पूछते रहते हैं तो आपको घर बैठे जो है कंसल्टेशन मिल जाता है और बहुत सारा स्वस्थ रहने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हमारे साथ है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दिलीप निलगे जी, जो एमपी रतलाम में अपनी प्रैक्टिस, वो मेडिकल प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेद कॉलेज में, और साथ ही साथ राजयोगा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो ऐसे डबल डॉक्टर हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आज के समय में जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीजनल डिजीज़ के बारे में बात करें, आयुर्वेद आचार्य में क्या सिस्टम है और कैसे उसको कंट्रोल या क्योर किया जा सकता है। कई बार अभी देखते हैं सीजन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और खांसी हो जाते तो टॉन्सिल हो गया ना खांसी हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, खौ खौ चालू ही है, गोलियां भी खा रहे हैं दवा भी पी रहे हैं लेकिन वो देख रहा है कि आदमी 15 दिन हो गया अब तक खांसी जा नहीं रहा है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है और ऑफिस में अगर आप अच्छे पोस्ट में हैं और खो खो करता रहेगा तो क्या लोगों के ऊपर असर होता है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें होती हैं तो इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या ऐसे कुछ आयुर्वेद नुस्खे हैं जिससे हमें उस समय जैसे हम काम कर रहे हैं तो अगर हम कुछ खा लें या कुछ चूस लें या कुछ ऐसे काढ़ा बना के पी लें जिससे हमारा वो 4-5 घंटे कम से कम ऑफिस आवर्स में कंट्रोल में रहें, तो वो सारी बातें भी हम लोग करने वाले हैं। तो डॉक्टर दिलीप निलगे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: ओम शांति, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी आपका।
0: जी जी जी जी, हमें खुशी हुई कि आप हमारे साथ आज एक घंटा समय देंगे और हमारे सभी श्रोता बंधु जो हमें सुनते हैं, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, जो रेगुलर लिसनर्स भी हैं, वो भी फोन करके आपको जरूर पूछेंगे, हेलो हाय करेंगे, तो अच्छा लगेगा हमें। तो आइए, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप आयुर्वेदाचार्य है तो वर्तमान समय कहाँ है और इससे पहले कहाँ थे, थोड़ा सा अपना परिचय शिक्षा दीक्षा के बारे में जरूर बताइए ताकि हमारे श्रोता बंधु आप ये है ये समझ जाए।
1: जी बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मुखातिब होने का ये एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: रेडियो मधुबन के माध्यम से।
0: जी जी जी,
1: मैं डॉक्टर दिलीप नलगे, बेसिकली मैं मुंबई से हूँ, लेकिन वर्तमान समय में मैं रतलाम में आयुर्वेद महाविद्यालय है, पंडित डॉक्टर शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज, वहाँ पे एक साल से ऊपर मुझे अभी हो गया, एज अ प्रिंसिपल मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो लगभग मुझे आयुर्वेद के क्षेत्र में 95 से हूँ मैं, मतलब लगभग 30 साल हो गए मुझे आयुर्वेद से जुड़े हुए, और लगभग उसी के दरमियान मेरा राजयोग मेडिटेशन से भी कनेक्शन हुआ था।
0: अच्छा,
1: तो उसके लगभग 2-3 साल बाद में मेडिटेशन से जुड़ा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आप राजयोग से जुड़े और पिछले काफ़ी लंबे समय से आप जो है मेडिकल फील्ड में, खास आयुर्वेद के फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा अनुभव आपके पास है। और मैं चाहूँगा जो सीजनल डिजीज़ है, ऋतु जो संस्कृत में कहते हैं कि ऋतु के अनुसार हमारे जीवन में या हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, उसका इफेक्ट होता है
1: जी।
0: तो अब जैसे कि ठंड का समय है, ऐसे में बड़ी दिक्कतें हो जाती है कि एक तो ठंड भी है और ऊपर से सर्दी जुकाम या खांसी हो जाती है
1: जी।
0: तो ये सारी चीज़ें चलते हैं और कई बार हम देखते हैं कि ठंड के समय में खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग हो जाता है और वो बड़ा अनकम्फर्ट लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं
1: जी जी,
0: तो उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि हमारे श्रोता बंधु इस बात को समझ लें।
1: बिल्कुल रमेश भाई जी, आयुर्वेद में देखिए उसका जो पर्पस बताया है ना,
0: जी जी जी, हाँ हाँ हाँ,
1: वो दो चीजें बताई है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम माना स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जिसको हम आजकल की भाषा में प्रिवेंशन कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, माना अब बीमारी आ गई है तो उसको ठीक कैसे करना है। तो आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है, हमारा हजारों साल पुराना ये विज्ञान है, जिसमें प्रतिबंधात्मक या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इतना अच्छी तरह से बताया है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा, लेकिन आयुर्वेद में ये बात भी बताई हुई है कि अलग अलग ऋतु के अनुसार हमें अपना आहार और विहार चेंज करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि जैसे देखिए बाहर परिवर्तन आ रहा है, है ना, तो बाहर जो परिवर्तन आ रहा है उसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, हमारे जठराग्नि के ऊपर पड़ता है, हमारे शरीर के एक एक सेल के ऊपर पड़ता है। तो जो असर पड़ता है उसको कैसे हम मतलब उससे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन ऋतुचर्या नाम से आयुर्वेद में किया गया है।
0: जी जी, जी।
1: अब ऋतुचर्या के लिए पहले तो ये पता होना आवश्यक है कि भाई ऋतु कितने होते हैं, क्योंकि आप अगर किसी को भी पूछेंगे कि भाई कितने ऋतु होते हैं, तो लोग कहते हैं 3 ऋतु होते हैं, गर्मी सर्दी और बरसात, या तो कोई कोई कहते हैं 4 होते हैं, कोई कहते हैं 5 होते हैं, मना ऐसे अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना, लेकिन वास्तव में ऋतु जो है ना वो 6 बताए गए हैं आयुर्वेद।
0: बिल्कुल,
1: है ना, तो हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इस प्रकार से ये छह ऋतु जो है वो वर्णन किए गए हैं और अलग अलग ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन आते हैं हमारे शरीर में ना तीन दोष होते हैं वात पित्त और कफ। ये तीन दोष अगर साम्यावस्था में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और ये तीनों में अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है आयुर्वेद का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सीजन के हिसाब से क्या होता है कि इन दोषों में भी परिवर्तन आता है और फिर उस अनुसार हमें बीमारियां होती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे अभी ये ठंड का समय चल रहा है तो ठंड के दिनों में क्या होता है बाहर के वातावरण में ठंड माना शीत गुण बढ़ जाता है, रुक्ष गुण बढ़ जाता है। तो ये जो शीत और रुक्ष गुण जो बढ़ जाता है उसकी वजह से शरीर में भी जो है ना वो वात जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसके अनुसार कुछ कुछ वात और कफ की बीमारियां जो है वो हो जाती है। आपने ये चीज नोट की होगी। देखिए लॉकडाउन जो लगा कोरोना की वजह से
0: जी
1: कौन से महीने में लगा पहला लॉकडाउन
0: मेरे ख्याल से
1: मार्च में है ना। और मार्च में ही क्यों लगा उसका भी आंसर आयुर्वेद दे सकता है।
0: अच्छा
1: मार्च में क्या होता है कि ठंड कम हो जाती है और गर्मी की शुरुआत
0: हो जाती है।
1: और उस समय क्या होता है कि शरीर में जो कफ जमा हो गया ठंड के दिनों में हमने जो चीजें खाई उसकी वजह से कफ जमा हो गया वो जैसे उसको गर्मी लगती है ना वैसे पिघलना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और कफ की बीमारियां शुरू होती है उस समय में। इसलिए उसको कफ प्रकोप का काल कहा गया है।
0: अच्छा।
1: कि हमारे शरीर में कफ दोष प्रकोपित हो जाता है। तो नेचुरली मार्च और अप्रैल ये महीनों में सभी के शरीर में जो है ना कफ पिघलने लगता है और सर्दी खांसी ये नेचुरली होता है।
0: जी
1: और इसीलिए उस दौरान फिर कोरोना ज्यादा बढ़ गया था और लॉकडाउन लगाना पड़ा।
0: सही बात है जी। और बहुत ही अच्छी बात है आपने बता दिया कैसे हम लोग जो है ये चीज़ें हमारे बीच में आती है। और लेकिन ये काफ़ी जैसे सर्दी खांसी या जुकाम के लिए बात करें
1: जी
0: तो कितने दिन में ये ठीक हो जाना चाहिए या फिर नहीं हो रहा है इतने दिन के बाद तो हमें इलाज करने की ज़रूरत है।
1: जी जी जी
0: जी जी, जी।
1: देखिए आयुर्वेद में तो है ना आहार को ही औषधि कहा गया है।
0: अच्छा हाँ हाँ
1: डाइट इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन प्रॉब्लम ये है
0: उसको
1: कि उसको यूज कैसे करना
0: कैसे
1: है
0: करे, वो समझ में नहीं आता है।
1: ये हमें पता नहीं होता है
0: जी।
1: अब देखिए आयुर्वेद में एक संस्कृत श्लोक बताया है पथ्ये सती गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैहि पथ्ये असती गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैहि। आप बोलेंगे आपने ये संस्कृत में क्या बोला
0: क्या बोला कुछ बल्ले ही नहीं पड़ा।
1: इसका मतलब ये है कि अगर हम सही आहार लेते हैं तो हमें दवाई की क्या आवश्यकता।
0: सही बात है।
1: और अगर हम सही आहार नहीं लेते हैं तो भी दवाई क्या काम करेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सही आहार लेना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू माना गया है स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में। और इसीलिए आयुर्वेद में आहार के गुणधर्म बताए हैं। जैसे हम खाना खाते हैं ना वो दो प्रकार की तासीर होती है उसकी। या तो ठंडी तासीर होती है या तो गर्म तासीर होती है और उस अनुसार उसका असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो अब जब शरीर में कफ बढ़ता है तो उस समय कौन से तासीर वाला खाना खाना चाहिए। तो नेचुरली गर्म तासीर वाला खाना खाना चाहिए। ठंडी तासीर वाला खाना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि ठंडी तासीर किसकी गर्म तासीर किसकी तो क्या करेंगे। हम गलती कर बैठते हैं और इसीलिए फिर बीमारी बढ़ जाती है।
0: सही बात है।
1: अब जैसे हमें ये पता ही नहीं ना कि चावल की तासीर ठंडी होती है और हमें कफ बढ़ रहा है और हम चावल खाए जा रहे हैं हम दूध पिए जा रहे हैं जो ठंडी तासीर वाली चीजें हैं।
0: जी जी जी।
1: और गर्म तासीर वाली चीजें कौन सी होती है। जैसे देखो हम किचन में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं उसमें से जैसे अदरक है गर्म तासीर है काली मिरी है गरम तासीर है और जो दालचीनी है गरम तासीर वाली चीज। तो गरम मसाले के लिए भी जो चीजें यूज की जाती है ना, जिसको हम गरम मसाला कहते हैं किचन में, तो ये गरम तासीर वाली चीजें हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हर एक के पास रहता भी है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में कहां इतने फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे,
0: नहीं हुआ करते थे बिल्कुल।
1: पहले के जमाने में तो दादा दादी और नाना नानी यही डॉक्टर हुआ करते थे और वो अपने अनुभव के आधार से घर में से ही कोई ऐसी चीज निकालते थे, उसकी दवाई बना के पिलाते थे और लोग ठीक हो जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए आज ये समय आ गया है कि हम हर एक व्यक्ति को भी आयुर्वेद का थोड़ा बहुत ज्ञान वो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रखेंगे तभी हम अपना बचाव कर सकेंगे बीमारियों से, है ना। क्योंकि शरीर में देखिए जो तीन दोषों की मैंने बात की,
0: जी जी जी,
1: तो ठंडी तासीर से वात और कफ बढ़ता है और गर्म तासीर से पित्त बढ़ता है।
0: अच्छा।
1: तो अगर हमारे शरीर में ऐसा हो गया है कि भाई पित्त बढ़ गया है तो हमें ठंडी तासीर वाली चीजें फायदे की है, जैसे नारियल है ठंडी तासीर है, दूध है ठंडी तासीर है, तो ये पित्त को कम करने में मदद
0: करता है।
1: तो ये बेसिक चीजें हमें पता होना बहुत आवश्यक है
0: जी जी।
1: तो हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को ठीक रख सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चल, बहुत ही अच्छी बात आपने बता दिया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप भी जो है अपनी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है हमें फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि किस तरह से आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपको पूरी डिटेल बताएंगे अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा होगा। आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वो कुछ पूछेंगे तो बात हो जाएगी। हेलो जी नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार, ओम शांति, मैं दयाराम बोल रहा हूँ राजस्थान रामपुरा से।
0: जी जी जी जी, दयाराम जी बोलिए, कैसे हैं आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है और सभी मित्रों की, भाइयों की, बहनों की, और आप, आपका और हमारे
0: डॉक्टर साहब, जी जी,
2: डॉक्टर साहिबा का रेडियो मधुबन स्टूडियो में तहे दिल से उनका भी स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: तो डॉक्टर साहब आते हैं तो हमारे कोई जो समस्या होती है तो हम उसका हल ढूंढने के लिए डॉक्टर से बात करते हैं।
1: जी।
2: तो डॉक्टर साहब जी, हमारे जो एक बहन जी है तो उनके पैर से, घुटने से नीचे और पैर के बीच में जो हड्डी है तो उसमें दर्द हो रहा है, तो वो कभी कभी दर्द होता है, थोड़ा चलने में भी दिक्कत होती है उनको, तो उसके लिए डॉक्टर साहब जी क्या करना पड़ेगा?
1: एक तो सबसे पहली बात, उनकी उम्र क्या है अभी?
2: उसकी उम्र तो 45 साल है जी।
1: अच्छा, तो देखिए क्या होता है ना कि मैंने जैसे आपको बताया कि तीन दोष होते हैं शरीर में, वात, पित्त और कफ। तो बचपन का हमारा जो समय होता है ना वो कफ का समय होता है, तो कफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है शरीर में और इसीलिए कफ से संबंधित बीमारियां ज्यादा होती है। हमारी जो युवावस्था रहती है ना वो पित्त का काल रहता है, तो इसीलिए शरीर में पित्त की समस्याएं ज्यादा बढ़ती है। और ये जो आफ्टर 40-45 जो है ना वो शरीर में वात ज्यादा बढ़ने लगता है, और जो वात बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, वात की निशानी क्या है, माने शरीर में जो दर्द होता है ना, जैसे खास करके हड्डियों में, घुटनों में, घुटनों के नीचे, पैरों में, तो ये मुख्य रूप से वात की वजह से होता है। तो जो वात बढ़ा हुआ है उसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो वात के लिए सबसे उत्तम औषधि जो बताई है आयुर्वेद में वो है ऑयल, लेकिन ऑयल भी कौन सा यूज करना चाहिए ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो जैसे अलग अलग प्रकार के ऑयल आते हैं, सबसे सरल और सबसे अच्छा जो है वो तिल्ली का जो तेल होता है, तिल्ली का तेल गर्म तासीर वाला भी होता है और उससे वात को कम करने में भी मदद मिलती है, एब्जॉर्प्शन भी उसका अच्छा होता है। तो अगर घर में तिल्ली का तेल है, चलो तिल्ली का तेल नहीं, आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। तो सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक मिला के उसको अगर रेगुलरली अगर उससे मसाज करेंगे जहां पे भी दर्द हो रहा है, तो अगर वो ज्यादा पुराना दर्द नहीं होगा ना तो इतने से उपाय से भी वो शांत होने लगेगा। लेकिन ये कब करना है? स्नान करने से पहले करना है, और ये करने के बाद में थोड़ा सा गर्म गर्म पानी से उसको सेकना है। तो आयुर्वेद में इसको स्नेहन और स्वेदन ऐसे कहा गया है। तो ये मैंने आपको घर ही घर में कैसे आप कर सकते हैं ये बताया। बाकी अगर आपके आसपास कोई पंचकर्म चिकित्सा करने वाला अगर चिकित्सक अवेलेबल है तो उसकी सलाह लेकर भी आप इसको कर सकते हैं, और उनके वहां जाके भी आप इसको करवा सकते हैं। वहां जाएंगे तो वो अलग अलग ऑयल यूज करते हैं, जैसे सबसे फेमस इसमें एक तेल है जो आपने शायद नाम सुना भी होगा, महानारायण तेल। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध तेल है वात रोगों के लिए। तो कहीं भी शरीर में दर्द हो रहा है ना, तो वो तेल को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने से पहले उसको थोड़ा गर्म करना आवश्यक होता है। तो ये भी कर लेंगे ना तो उससे भी काफी उनको राहत मिलेगी।
2: शरीर में कहीं की कौन सी जगह पे हो तो हम उसकी मसाज करने से वो थोड़ा दर्द कम होगा जरूर।
1: जी
2: जी सर, धन्यवाद धन्यवाद सर आपका, बहुत ही आपका हमारी समस्या का हल बताया आपको, धन्यवाद, थैंक यू।
1: जी जी जी,
0: चलिए दयाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आपने देखा दयाराम जी ने अपनी समस्याएं बताई और डॉक्टर दिलीप नलगे जी ने उन्हें समस्या का समाधान सुनाया। तो निश्चित तौर पे आप भी अगर किसी तरह की कोई बीमारी से परेशान हो तो ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैं अभी खांस रहा था, ये खांसी 3-4 दिन से है।
1: अच्छा,
0: तो इसके लिए क्या है कि वो खत्म नहीं हो रहा है?
1: बिल्कुल, 10 दिन हो गया। मैं आपको बहुत सरल उपाय बताता हूँ इसके लिए। देखिए, अदरक का जूस निकाल के उसमें शहद मिला करके रात को सोने से जस्ट पहले उसको चाटना है।
0: अच्छा,
1: हाँ। तो जितना शहद का जूस, जितना शहद उतना ही अदरक का जूस।
0: ओके ओके।
1: और सुबह भी एक बार उसको चाटना है। Okay. 2-3 दिन में आपकी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, एक दो डोज में ही हो जाएगी।
0: अरे वाह,
1: ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है।
0: हुआ है तो फिर अपन बात करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, नमस्ते।
3: नमस्ते, ओम शांति।
0: ओम शांति जी, बोलिए।
3: सगुना बेन
0: जोटाना से स्वागत है। स्वागत है, डॉक्टर दिलीप नलगे जी से बात कीजिए, सुन रहे हैं जी।
3: डॉक्टर जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्ते जी,
0: ओम शांति।
3: साहब मुझे ना सर्दी हो गई है
1: जी,
3: 4-5 दिन हो गया
1: जी,
3: और इसके पहले भी हो गई थी, 1 साल हो गया अब
1: जी।
3: वो पहले कभी नहीं हुआ, अभी ऐसी सर्दी हो गई तो ऐसे कफ, खांसी तो आती है लेकिन कफ निकलता नहीं, अंदर आवाज थी आपकी सोचती ना तो अंदर कफ की आवाज आती और निकलता नहीं है। अभी मैं दवा लाती हूँ, फिर भी कोई आराम नहीं हुआ है, 2-3 हो गया दवा लाई लेकिन अंदर खांसी आती है ना तो निकलता नहीं कफ।
1: अच्छा, माना जम गया है कफ।
3: हाँ।
1: अच्छा, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ। किसी को भी ऐसा अगर होता है ना कि जैसे खांसी तो आ रही है लेकिन कफ निकल नहीं रहा है, मतलब जैसे अंदर जम गया हो, तो उसके लिए तिल्ली का तेल या सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके उसमें नमक मिला करके चेस्ट को मसाज करना है। अपनी चेस्ट को जो है वो मसाज करना है और गरम गरम पानी से थोड़ा सा सेक करना है। उससे जो कफ जमा हो गया है ना उसको पिघलने में मदद मिलती है, पिघलने में मदद मिलती है और वो पिघलने लगता है। और उसके साथ साथ आपको रात को सोते समय अदरक का रस निकाल के उसमें उतना ही शहद मिला करके और थोड़ी सी हल्दी, ये आपको चाटना है रात को सोते समय भी और सुबह उठने के बाद भी। ऐसा 2 टाइम आप करेंगे। चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए, चावल आपको नहीं खाने हैं। जब तक आपको सर्दी खांसी है तब तक आपको चावल नहीं खाने हैं, ठीक है?
3: हाँ।
1: है ना, इतना आप कर लेंगे तो भी आपको बहुत उससे राहत मिलेगी और आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। तिल्ली या सरसों के तेल में से कोई भी तेल चलेगा, उसको थोड़ा गर्म जरूर कर लीजिए।
3: हाँ।
1: और उसमें फिर नमक मिला करके उससे मसाज करना है।
3: हाँ,
1: जी मसाज जी, और मसाज करने के बाद फिर थोड़ा गर्म पानी से सेक करना है, ठीक है? तो उससे अपने आप जो कफ है ना वो आने लगेगा, माना बलगम निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कफ को बाहर निकालना आवश्यक है।
3: ऐसे खांसी इतनी ज्यादा भी नहीं आती है, कभी कभी आती है थोड़ी
1: जी।
3: तो मैंने सोचा क्या

0: मालूम क्या हो गया है, अभी डॉक्टर को दिखाया तो बोले दवाई दिया तो बोले हो जाएगा ठीक, लेकिन अभी 2 दिन हो गया
1: जी
0: दवाई भी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने बोला डॉक्टर साहब से बात करते हैं।
1: हाँ, आप,
0: तो आप आते ही रहते हैं।
1: जी जी जी अदरक का जूस लेना आप शुरू करो शहद के साथ, और चावल बंद कर दो पूरी तरह से, कोई भी तली हुई चीज भी नहीं खानी है बिल्कुल भी, ठीक है? है ना, गरम ही पानी पी रहे होंगे मुझे लगता है। पानी गरम पीना बहुत आवश्यक है, ठीक है? जी जी जी
0: ओम शांति
1: जी, ओम शांति
2: जी। शुक्रिया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए, आपने अच्छा सवाल पूछा कि कैसे हम लोग जो है सर्दी खांसी जुकाम और ये ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए और किस तरह का हमारा डाइट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। हम कभी कभी डाइट को भूल जाते हैं, और जैसे एलोपैथी में तो डाइट बताते ही नहीं है
1: जी।
2: कि ये नहीं खाना, ये नहीं, सब खाओ और ये दवा भी खाओ बोलते हैं। तो वो बड़ा आसान लगता है, तो हम लोग आसान चीज़ों पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं।
1: देखिए मैं आपको बताऊँ, ये डॉक्टर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप परहेज मत करिए और हमारे पास आते रहिए, हमारी फीस देते रहिए।
2: जी जी जी जी। आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
3: हाँ, बुरा राम बोल रहा हूँ रमेश भाई। राम राम है सुबह सुबह।
2: राम राम, बुरा राम जी, स्वागत है आपका, बोलिए।
3: डॉक्टर साहब से बोले तो थोड़ा मेरे को बात करने का था।
2: ठीक है, डॉक्टर साहब सुन रहे, बात कीजिए
1: जी, बोलिए। बोला राम जी,
3: नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: अच्छा, मेरे को कम से कम ये दो महीने से ज्यादा ये सांस की बीमारी हो गई है, तो कोई भी काम करता हूँ या सीढ़ी चढ़ता हूँ उतरता हूँ तो मेरे को ये सांस फूल जाता है और नहीं ये काम कर सकता हूँ।
1: अच्छा,
3: इसके लिए कोई दवाई है तो?
1: उम्र क्या है आपकी बोला राम जी?
3: हाँ,
1: उम्र उम्र एज
3: उम्र है मेरा 75।
1: अच्छा, और आपका हीमोग्लोबिन वगैरह आपने चेक करवाया था कभी?
3: खून दवा लेता हूँ लेकिन वो थोड़ा रिलीफ मिलता है लेकिन वापस चालू हो जाता है।
1: हाँ, देखिए सांस फूलने के दो कारण हो सकते हैं। अगर शरीर में खून शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से भी सांस फूल सकता है, और या तो फिर दमा की बीमारी अगर हो गई तो भी सांस फूल सकता है।
3: तो दमे एक तरीका है मेरे को।
1: अच्छा, तो आपको ये कैसे पता चला कि आपको ये मना दमे जैसा प्रॉब्लम हुआ है? क्या ठंड में आपको ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, ऐसा होता है क्या?
3: ऐसा बोले तो क्या है कि ये पहले तो थोड़ा थोड़ा मेरे को सर्दी खांसी तो हमेशा इसी मतलब नाक
1: अच्छा,
3: तो रहता मेरा।
1: अच्छा,
3: और अभी पहले खांसी थी लेकिन मैंने वो पहले सिगरेट बीड़ी पीता था तो वो बंद कर दिया तो कम हो गई मेरे को खांसी, कम है अभी
1: जी,
3: लेकिन ये सांस फूलना ये ज्यादा हो गया।
1: जी जी जी जी। अभी तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक तो देखिए त्रिकटु चूर्ण आता है, उसको त्रिकटु चूर्ण आता है, या तो सौंठ जो होती है ना, सौंठ सौंठ है, मिरी है, पीपर है, है ना, ये तीनों को मिला के त्रिकटु कहा जाता है।
3: अच्छा, सौंठ और क्या?
1: सौंठ, मरी मरी, काली मरी,
2: काली मरी,
1: काली मरी।
4: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल,
2: हेलो,
4: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे,
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मैं बात क्यों बंद होगी?
2: हाँ वो अपने आप ही बंद हो गए, बोलिए बोलिए आप। हाँ, काली मिरी
1: सौंठ,
2: सौंठ
3: काली, हाँ,
2: काली मिरी सौंठ और
1: पीपर,
2: पीपर पिपली, पिपली का पाउडर,
1: ये ना त्रिकटु चूर्ण नाम से मिलता है, आप अगर देखें
2: बाजार में आपको मिल जाएगा डायरेक्टली रेडीमेड, त्रिकटु नाम लिख लीजिए,
1: त्रिकटु
2: त्रिकटु त्रिकटु
3: त्रिकटु
2: त्रिकटु त्रिकटु। हाँ
3: अच्छा,
2: त्रिकटु
3: त्रिकटु ने,
2: हाँ हाँ
1: हाँ हाँ, ये सुबह शाम है ना, आप आधा आधा चम्मच ले लीजिए।
3: अच्छा,
1: शहद में मिला करके।
3: शहद में मिला के ना।
2: हाँ बिल्कुल।
1: और कनकासव नाम की एक दवाई आती है।
3: हाँ
1: कनकासव,
2: कनकासव ये लिक्विड है।
1: कनकासव हाँ, कनकासव
2: बोतल।
1: ये सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात के भोजन के बाद 15-15 ml उतने ही गर्म पानी में मिलाकर,
3: अच्छा
1: माना 3-4 चम्मच, तीन से चार चम्मच गर्म पानी ऐसे मिला करके उसको आप लेना शुरू कर दीजिए।
3: अच्छा अच्छा।
1: और ठंडी तासीर वाली चीजों से परहेज रखिए।
3: हाँ ठंडी आई इससे ज्यादा हो जाता है।
1: हाँ चावल वगैरह आप मत खाना है ना,
2: जब तक ठीक नहीं हो रहा है तब चावल बंद करना। अच्छा
3: अच्छा।
2: ठीक हो गया तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते, ठीक है।
3: ओके
2: बुराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने का।
1: जी
2: ओम शांति।
1: ओके ओम शांति।
2: चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करेंगे।
5: महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद, अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का एक ही इंजेक्शन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं। गर्भावस्था के दौरान दूसरी और तीसरी तिमाही में खून की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे थकान, कमजोरी, भूख में कमी और अन्य जटिलताओं तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब FCM इंजेक्शन की एक ही खुराक काफी है।
6: FCM यानी फेरस कार्बोक्सी माल्टोस खून की कमी को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, तो बिना देर किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही FCM का इंजेक्शन लगवाएं और स्वस्थ रहें।
5: हर रोग का मिटे नामो निशान, ये है संकल्प, स्वस्थ रहे राजस्थान। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेलो जी नमस्कार। हेलो हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा आपका फोन चालू है, शायद आप दूसरे से बात कर रहे हैं, एक बार फोन कट कर लीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, बुराराम जी का फोन चालू ही रहा गया और शायद वो बातें भी कर रहे हैं। तो आइए, आज रविदास जयंती है तो ललिता जयंती भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी बातें, जैसे हम लोग अभी सर्दी खांसी जुकाम की बातें चल रही थी, अब बात करते हैं वात पित्त के बारे में भी। ये भी क्या सीजनल होते हैं, ऋतु इसके साथ भी जुड़ा हुआ है क्या, अगर ऐसा है तो फिर कैसे इसके ऊपर काम करें। जी
1: देखिए, आयुर्वेद में जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बताई है डेफिनेशन, उसमें उन्होंने कहा है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक क्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ये महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में 5000 साल पहले ये चीज लिखी हुई है।
2: अच्छा,
1: तो उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि अगर हमारे शरीर में जो तीन दोष हैं वात पित्त और कफ, ये तीनों अगर बैलेंस में रहते हैं, हमारा अग्नि माना डाइजेस्टिव फायर ये भी अगर सही रहता है, समदोषा समाग्निश्च समधातु, हमारे शरीर में जो 7 धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये भी अगर बैलेंस में रहते हैं, मलक क्रिया माना हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है, हमारी आत्मा मन और इंद्रियां ये प्रसन्न रहती है, तो हम स्वस्थ कह सकते हैं अपने। तो उस दृष्टि से वात पित्त कफ का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और इसीलिए ये समझना हमें आवश्यक है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ये कफ जो है वो बढ़ता है, उसका सीजन होता है जैसे ठंड का जो एंड है ना, और गर्मी शुरू हो जाती है मार्च में, तो ये कफ के प्रकोप का समय रहता है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: ऐसे ही पित्त के प्रकोप का जो समय रहता है वो सितंबर अक्टूबर, जिसको शरद ऋतु कहा जाता है। जैसे ही बरसात खत्म होने लगती है और बरसात खत्म होने लगती है और थोड़ा सा उस समय भी गर्मी बढ़ जाती है, तो वो जो सितंबर अक्टूबर का समय है, जैसे कहते भी है ना कि अक्टूबर हीट, तो उस समय में गर्मी जो है वो बढ़ जाती है और शरीर में जो पित्त दोष है वो प्रकोपित हो जाता है, और इसीलिए उस दौरान पित्त से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती है, है ना, जैसे एसिडिटी है, स्किन डिसीजेस है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और उसकी वजह से माना एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाना, फोड़े फुंसी आ जाना शरीर पर, ये सारी पित्त की बीमारियां हैं। तो ये पित्त की बीमारियां उस दौरान बढ़ती है। और वात की बीमारियां कब बढ़ती है, आपने भी ये देखा होगा कि हमें देखिए काफी साल पहले कोई जगह पे जो है वो लग गया था और वो दर्द बाकी समय में नहीं दर्द आता है, लेकिन बरसात जब होने लगती है ना तो वो दर्द उभर के आता है
2: ठंड में उभर के आता
1: जी
2: है।
1: तो ये बरसात का समय जो होता है ना, ये एक वात के प्रकोप का काल होता है।
2: अच्छा अच्छा आइए इस बीच हम लोग हमारे कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद फिर वात पित्त के बारे में जो बातें कर रहे थे उसको भी समझ लेते हैं। हेलो जी नमस्कार।
7: हाँ जी साहेब नमस्कार, रमेश भाई
2: नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए।
7: તો હું એમ કેતો હતો, મારા હું તકલીફ એ થાય છે, પણ આ ઘડી વસ્તુ કહું ને, ગરપણ તો એનાથી મારા પેલું ટાબડિયા જેવું શું થાય છે, શ્વાસમાં લેવા શ્વાસ લેવા
1: હિન્દી મેં નહીં વાત કરી શકતે આપ, હિન્દી મેં હિન્દી મેં
7: હા હિન્દી મેં તો મેં બોલતા હું, ગુડ ગુડ વાળી જો ચીજ આતી છે ને, મીઠાઈ વાલી, તો મેં ખાતા હું ના તો મેરે કો તકલીફ હોતા હૈ શ્વાસ લેને મેં।
1: અચ્છા
7: જો ગુજરાતી મેં ઉસકો બોલતે હૈ, છોટે બચ્ચે કો નહીં હોતા ટાબડિયા,
1: હા
7: યે એસા મેરે કો હોતા હૈ।
1: અચ્છા
7: મેં ડોક્ટર કો બતાયા, રિપોર્ટ કરવાયા, મગર ઉસને બોલા જો મીઠાઈ વાલી ચીજ કમ ખાના, વો ખાના હી નહીં। તો મેં જો ખિચડી બોલતે और आलू बोलते वो भी खाता हूँ तो भी होता है। तो इसके लिए साहब को
2: क्या कुछ उपाय बताए।
1: आपकी उम्र कितनी है?
7: 44 वर्ष।
1: अच्छा, और कब से आपको ये तकलीफ हो रही है?
7: ये मेरे को साल ही लगा है, एक साल।
2: एक हाँ, साल हो गया।
1: तो आप ये समझ लेना कि ये कफ के बढ़ने से हो रहा है।
7: हाँ, हाँ,
1: हाँ। है ना, तो आलू हाँ। खाने से भी, चावल खिचड़ी खाने से भी कफ बढ़ता है शरीर में।
7: हाँ, जो जो सब्जी में भी मिठाई आती है ना वो भी खाता हूँ ना। हाँ। आलू खाओ खिचड़ी खाओ तो भी।
1: आपको मैं एक मीठी चीज बताता हूँ, वो आप खा सकते हो जो कफ नहीं बढ़ाती है।
7: हाँ बोलो बोलो।
1: गुड़ जो होता है ना, गुड़।
7: हाँ गुड़ गुड़।
1: लेकिन वो भी कैसा?
2: ब्लैक।
1: ब्लैक जो होता है जो नेचुरली जो बनाया
2: हुआ, ऑर्गेनिक, आयुर्वेद,
1: ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक गुड़,
2: देसी गुड़,
1: देसी गुड़, बिना केमिकल वाला है ना, उसको आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपके कफ को बढ़ाएगी
2: ये नहीं
1: और आपको तकलीफ होगी, तो इसीलिए बाकी सारी मीठी चीजें आप अवॉइड करो।
7: हाँ तो ये तो बंद कर दिया है
1: ना, लेकिन बहुत ही क्रेविंग जैसे होता है ना, जिसको जो चीज पसंद आती है अगर पूरी तरह से बंद करो तो उसको एकदम अजीब लगने लगता है। तो इसीलिए आपको जब भी ऐसा लगे मीठा खाने की इच्छा हो तो थोड़ा सा गुड़ आप खा सकते हो,
2: देसी गुड़ खा लेना, वो रख लेना अपने घर में, और जब ऐसा मन करे तब खाना, रेगुलर खाने की जरूरत नहीं है।
7: बाकी और मैं जो आदू आता है, आदू और गुड़ हाँ, मुंह में रखता हूँ ना हाँ, तो इससे ठीक होता है।
1: हाँ, तो आदू भी कफ कम करता है।
7: हाँ, आदू और गुड़ दोनों में
2: दोनों का उपयोग सही है।
1: हाँ,
7: मुंह में रखता हूँ तो इससे ठीक होता है। हाँ, और बाद में तो जो ज्यादा वो होता है तो मेरे गोली खाना पड़ता है।
1: तो इसीलिए अदरक और गुड़ ये आपके लिए काम की चीजें हैं।
7: अदरक गुड़
1: हाँ ठीक है,
7: दोनों रखूं।
1: हाँ, लेकिन गुड़ भी बहुत ज्यादा प्रमाण में नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है।
7: हाँ
1: ठीक है।
7: हाँ ठीक है,
1: हाँ हाँ हाँ
2: ओके जी, थैंक यू।
1: ओके
2: हाँ, तो ये थे हमारे दोस्त जो कफ के चक्कर में आ गए हैं, बड़े परेशान हैं
1: जी,
2: तो उनके लिए रेगुलर जो है चीनी या फिर चावल ये सारी
1: मीठा खाने से भी कफ बढ़ता है।
2: बढ़ता है बिल्कुल, और चावल वगैरह भी खाने से बढ़ जाता
1: जी,
2: है।
1: चावल आलू
2: आलू ये सारी चीजें थोड़ी सी कम कर दे
1: जी,
2: जब तक आप नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आए तब तक। और गुड़ अदरक ये सारी चीजें थोड़ा सा रख लीजिए आपकी जो है बैलेंस करने के लिए। आइए, आप बात कर रहे थे हम लोग पित्त और वात के बारे में, तो वो जैसे कि बात चल रही थी तो वो पूरा कर लेते हैं जी।
1: तो देखिए, वात दोष हमारे शरीर में कुपित होता है बरसात के समय में। तो बरसात के समय में पुराने पुराने दर्द जो है ना वो उभरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अरे साल भर तो मुझे कुछ
2: कुछ नहीं हुआ, अभी कैसे हुआ,
1: अभी ये जैसे ही बादल आ गए, बरसात होने लग गई तो दर्द ये बढ़ गया। क्योंकि उसका रीजन ये रहता है कि उस समय शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात का कनेक्शन दर्द के साथ है। तो जहां जहां भी दर्द है वो वात की वजह से ही होता है, वात के प्रकुपित होने की वजह से होता है।
2: बिल्कुल।
1: जहां जहां बर्निंग सेंसेशन है, जिसको आयुर्वेद में दाह कहा गया है, वो पित्त की वजह से होता है, बढ़े हुए पित्त की वजह से। और जहां जहां खुजली है, कंडू है, वो बढ़े हुए कफ की वजह से होता है। तो इसीलिए ये चीजें भी हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। और एक बात मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि हमारे खाने में जैसे जो 6 रस होते हैं ना, ये 6 रस भी इन दोषों को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं।
2: अच्छा।
1: जैसे देखिए, 6 रस कौन कौन से होते हैं? मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कशैला। ठीक है। तो ये जो तीखा, कड़वा और कशैला है और गर्म तासीर वाली चीजें हैं, ये कफ को कंट्रोल में रखने में मदद करती है। मीठा, खट्टा, नमकीन और गर्म तासीर वाली जो चीजें हैं, ये वात को नियंत्रण में रखने में मदद करती है। मीठा, कड़वा और कशैला और ठंडी तासीर वाली चीजें पित्त को नियंत्रण में रखने में मदद करती है।
2: एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
8: नमस्ते सर, कैसे हो?
2: बढ़िया बढ़िया, बताइए आप कैसे हैं?
8: हमारे दिलीप सर को भी हमारी तरफ से नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नमस्ते।
8: और जी, मेरा तो सवाल था लेकिन मुझे तो जवाब मिल गया इसमें से।
1: अच्छा।
8: कि कई सारे सवाल था लेकिन फिर भी एक सवाल में सभी जवाब मुझे मिल गया है। पहले तो मैं आपको बात करना चाहता था कि वो कफ के बारे में, तो
1: जी
8: वो तो हमारा सगुना बहन ने जो बात की और हमारे जगदीश भाई ने भी बात की, तो इसमें भी मेरा जवाब मिल गया कि मेरे भी थोड़ी कफ की तकलीफ है। लेकिन मैं जो आपने बताया गुड़ की बात, तो सही है, बिल्कुल मैं गुड़ खा लेता हूँ कभी कभी, तो गुड़ से अच्छा रहता है
1: जी।
8: और देसी गुड़ आता है, बहुत अच्छा रहता है। मैं मीठा तो नहीं खाता हूँ, मुझे मेरे भी डायबिटीज का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मीठा तो मैं नहीं खा सकता हूँ। और दूसरी बात सर बताई, मेरा तो सवाल ये था जो आपने शुरुआत में बताया कि सरसों का तेल की बात की, तो बिल्कुल सही बात है सर। सरसों का तेल हम भी हमारे घर में डालते हैं, क्योंकि मैं बताते हमारी पत्नी को नीचे जब पक्के तलवे आते हैं तो उसमें बहुत दर्द रहता था। तो एक बार आपने बताया था वो सरसों का तेल, तो इसमें हमको इसका हम तो उपयोग किया हमने
1: जी,
8: उसको गर्म करके जो मीठा डाल के तो जो नीचे मालिश करते हैं पैरों में के तलवे, तो इससे बिल्कुल ठीक हो गया सर
1: जी।
8: आज वो बिल्कुल नहीं कहती कि मुझे दर्द हो रहा है
1: जी।
8: तो 5-7 दिन 7-8 दिन तक हमने लगवाया वहाँ इसके बाद से, तो वो अभी बिल्कुल ठीक है और बोलती नहीं है कि मुझे कोई दर्द होता है।
1: वेरी गुड।
8: तो इसे आपने जो आपने बताया था सर, आपने पहले बताया था, तो ये दवाई हमने की है वो देसी दवाई, तो हमने
1: जी
8: यही वो जो सरसों तेल से बिल्कुल अच्छा है, इसकी मालिश करना भी अच्छी है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा जो गर्दन के पास थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, दर्द होता था, लेकिन हमने भी वहाँ वो सरसों का तेल की मालिश की तो अब ठीक हो गया
1: जी। जी जी,
8: तो बहुत सरसों का तेल बिल्कुल अच्छा है, दवाई ये की है
1: बहुत अच्छा। आपने अभी जैसे सरसों के तेल की बात की ना, ऐसे और एक तेल है जो बहुत ही फायदेमंद है लेकिन उसके बारे में लोग उतना जानते नहीं है या उसका उतना उपयोग नहीं करते हैं,
8: तो आप बताइए।
1: वो है कैस्टर ऑयल।
8: क्या?
1: कैस्टर ऑयल।
8: कैस्टर ऑयल,
1: हाँ, एरंडी का तेल,
8: अरंडी का तेल
1: है ना,
8: बाजार में मिलता होगा मेडिकल में
1: जी। तो अरंडी का तेल पीना भी चाहिए।
8: अच्छा, वो हमारे एरंडी का तेल आता है, सही है, उसको हम दिवाल भी बोलते हैं, दिवेल भी बोलते हैं।
1: हाँ, राइट।
8: तो हमारे यहाँ दिवेल भी बोला जाता है। हाँ। जो गेहूँ के जो गेहूँ बोने गेहूँ को तो रगड़ने के लिए जो
2: यूज करते हैं। बराबर बराबर,
1: सप्ताह में एक बार जरूर पीना चाहिए, उससे पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है।
8: बिल्कुल जी, मैं बताऊं सर, तो हमारे पहले हमारे पिताजी जैसे दादाजी थे वही करते थे कि 10-15 दिन होता था तो एक बार जो चाय में डाल देते थे, दो चार बूंद डाल देते थे वो चाय में
1: जी।
8: तो इससे कई सारे फायदे होते थे, एक तो पेट आपका साफ हो जाता था, कभी जब की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी और पेट का दर्द भी मिट जाता था।
1: बिल्कुल
8: सही बात है आपकी।
1: आधी बीमारियां तो पेट से ही शुरू होती है, तो पेट को अगर ठीक रखेंगे तो वैसे ही आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी।
8: सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, सभी बीमारियां पेट से शुरुआत होती है।
1: जी,
8: तो आपने बहुत अच्छा एक ताजा हमको कर दिया वो दवाई आपने, क्योंकि हम तो भूल गए थे, पहले जमाने की बात है, पहले तो लोग यही करते थे, कोई ऐसी कोई दवाई के डॉक्टर के पास नहीं जाते थे।
1: हमारे भी दादाजी जो है ना, हमें याद है बचपन में सबको जब छुट्टी का दिन रहता था ना, सारे बच्चों को घर में जितने लोग हैं सबको अरंडी का तेल पिलाते थे और धूप में बिठाते थे, और उसके बाद फिर थोड़ा पेट वगैरह अच्छे से साफ हो जाता था, सब बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी।
8: सही है, बिल्कुल, ये अच्छी दवा है, 100%
1: गारंटी वाली। जी बिल्कुल, और आजकल जैसे सायटिका का प्रॉब्लम भी जो देखा जाता है ना,
8: जी,
1: तो सायटिका की भी अगर शुरुआत हो रही है तो उसके लिए अरंडी का तेल ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है।
8: बेस्ट, हाँ, सबसे बेस्ट है,
1: सही माना है, इतना इजीली अवेलेबल है लेकिन इतना उपयोगी है, मेरा खुद का भी अनुभव है और मैंने कई पेशेंट्स को भी ये दिया हुआ है।
8: सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है सर, अरंडी का तेल तो देखो एक लाजवाब कहते है ना, लाजवाब जैसी एक
1: जी,
8: वो
1: जी,
8: है
1: जी,
8: वो,
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
8: बहुत अच्छा बताया सर आपने, धन्यवाद आपका।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने आयुर्वेद के बारे में अपना अनुभव जो है वो सबके साथ शेयर किया।
8: जी, लोगों को भी पता चले सर आपने जो अरंडी का तेल बताया मुझे, मैंने सरसों का तेल बताया, वो लोगों के लिए फायदा कारक है, वो भी समझ पाए कि भाई सही है, वो करने से हमको कई सारी बीमारियां एक से हम बच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
8: कई सारी बीमारियां इसमें से जो गुम हो जाती है डिवेल से।
1: हाँ बिल्कुल
2: बिल्कुल, चलो सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू।
1: देखिए ये जो बात कर रहे थे ना अभी
2: सुरेश जी,
1: वास्तव में हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है ना, वो आधे से ज्यादा बीमारियां पेट से ही शुरू होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसके लिए बहुत अच्छी बात किसी ने कही है
2: जी,
1: कि भाई स्वस्थ किसको कहेंगे, जिसके हाथ पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा,
2: अरे वाह,
1: तो डॉक्टर को लगाओ डंडा। माना अगर हमारे हाथ पैर गर्म है, पेट नरम कब रहेगा, जब साफ रहेगा तभी तो नरम रहेगा।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन आजकल क्या हो गया है, हाथ पैर हो गए ठंडे, पेट हो गया है कड़क और सिर हो जाता है छोटी छोटी बातों में गर्म। तो ये तीन चीजों को अगर हमने मैनेज कर लिया ना, तो हमें स्वस्थ रखने से कोई भी रोक नहीं सकता है, स्वस्थ रहने से।
2: सही बात है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बता दिया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आज विशेष एक तारीख है और अच्छा दिन है, और पहली तारीख में आपको सारा ज्ञान मिल गया सेहत का, और अपने सेहत को अच्छा रखने से आपका पूरा जो साल है वो अच्छा बीतेगा, महीना भी अच्छा बीतेगा। हेलो जी, नमस्कार।
9: नमस्कार
2: जी, नमस्ते सर जी,
9: मैं दत्ता जी बोल रहा हूँ।
2: दत्ता जी बोलिए, स्वागत है आपका।
9: मेरा अभी एक महीने से लेफ्ट साइड वाले पैर पे सांधे पे उसका नस दबी है, उसके लिए क्या करना है?
1: आपको तकलीफ क्या होती है उसकी वजह से?
9: मैं छींक आए तो भी पेन हो रहा है, पाँव उठाए तो भी पेन हो रहा है।
1: अच्छा,
9: डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बोला है।
1: अच्छा, कौन सी सिर दबी है आपकी, मना कुछ ऐसा उसमें आया है रिपोर्ट में?
9: हाँ, रिपोर्ट में आया, वो तो रीढ़ की हड्डी वाला, वो तो L5 में।
1: ओके, L5 में।
9: और दूसरा जो सांधा जो है, जहाँ अपना पैर घूमता है ना।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ,
9: उधर
1: माना घुटने के पास, घुटने के पास।
9: हिप।
1: अच्छा, हिप माना पीछे की तरफ से दर्द हो रहा है ना आपको?
9: हाँ हाँ, उसके अंदर नस दबी है, वो उठानी है
1: जी। तो माना सायटिका जैसा ही आपका ये समस्या मुझे दिख रही है, ठीक है? तो आपको भले ही एक डॉक्टर ने ये राय दी हो ऑपरेशन की, लेकिन मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी भी डॉक्टर से आपको ये राय दी जाती है ऑपरेशन की, तो आप कम से कम और दो डॉक्टरों से जरूर सलाह ले। हो सकता है कि ऑपरेशन से बचने का आपको कोई रास्ता उससे मिल जाए।
9: उन्होंने ही बताया है 10 दिन की दवाई दे 10 तारीख तक, उसके बाद ठीक हुआ नहीं तो ऑपरेशन करना।
1: नहीं नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि एलोपैथी में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वो ऑपरेशन के सिवाय कोई चारा नहीं ऐसा लगता है, लेकिन वो आयुर्वेद से ठीक होती हुई दिखाई देती है, ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। तो इसीलिए भले ही एक डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा

0: कि आप जरूर पास में कोई आयुर्वेद चिकित्सक से भी एक बार सलाह अवश्य लें। हो सकता है कि आपको उसके राहत मिल जाए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। और मैं यहाँ से भी आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ये समस्या कितने समय से आ रही है? अभी
1: 28 दिन से।
0: माना ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसीलिए
1: मैं 28 दिन से तो चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा।
0: अच्छा, बैठ भी नहीं पा रहे?
1: हाँ।
0: सो भी नहीं पा रहे?
1: साइड वाला जो हिप है तो उसके ऊपर ही हुआ है ना ज्यादा।
0: तो कंटिन्यूअस पेन है क्या? कंटिन्यूअस है?
1: हाँ, कंटिन्यूअस पेन है।
0: अच्छा, ओके। तो आपका पेट वगैरह ठीक है, साफ है?
1: सवेरे शाम फर्स्ट क्लास साफ होता है।
0: ओके। फिर भी आप अपने पास में पंचकर्म ट्रीटमेंट करने वाले जो आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं, ऐसे किसी एक चिकित्सक को अवश्य दिखा दें, ये मेरी सलाह है आपको। ठीक है?
2: ओके दत्ता भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हाँ नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। और देखिए कैसे कैसे जो है प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आ जाती हैं, तो ऐसे में हमें जो है दो सलाह जरूर लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो हमें आगे बढ़ भी जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि उन चीज़ों को करने से आपको आगे भी कोई तकलीफ ना हो, ऐसा भी एक जो है एश्योरेंस आप देखना पड़ेगा। कई बार हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं, महीना दो महीना ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से कुछ नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं या साइड से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वाली बातें ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो वो थोड़ा सा जो है, इसलिए दो तीन लोगों से आपको राय सलाह करने की बात होती है, तो आप पूछने से दोनों चीज़ें बिफ़ोर एंड आफ्टर सर्जरी की बात होनी चाहिए, ताकि आपको सब चीज़ों का ज्ञान हो, ताकि आप उन चीज़ों को करें भी तो आपको ये अंडरस्टैंड हो, हाँ इसके बाद ये चीज़ें होगी, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बाद ये चीज़ें हो सकती हैं, इसके लिए मुझे इस तरह से उसको मैनेज करना है, तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को आज रेडियो के माध्यम से आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी अच्छी बातें उनको सुनने को मिला, और सीजनल डिजीजेस के बारे में हमने बातें की, ऋतु के अनुसार जो बीमारियां होती हैं वो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर वात पित्त कफ, इन सभी चीज़ों पर हमने बातें की। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है अलग भी हो सकती हैं, जैसे कि हमने अभी पेन के बारे में, दर्द के बारे में कभी फिर विषय लेकर स्पेशली उसी पर बात कर सकते हैं, दर्द क्यों होता है, क्या कारण है, उसे कैसे हम बच सकते हैं। ऐसा कहा गया एलोपैथी में सबसे बड़ा बिजनेस जो है पेन किलर से हो रहा है उनकी, अलग अलग ऐसा देखा गया कि पूरी वैरायटी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें ज़्यादा जो वैरायटी है वो दर्द वाली दवाओं से बनी है, तो उसको लेकर लोग जो है ठीक होते हैं। कई बार हमने देखा मेडिकल स्टोर में एक एक आदमी जो है ऐसे पूरे प्लास्टिक डब्बा भर के दवाइयाँ ले जाते हैं 6 महीने का, वो ख़त्म होने के बाद फिर से डब्बा ले जाएगा, फिर भर लेगा, फिर चला जाएगा, और वो कंटिन्यू उनकी चलती रहती हैं, और वो डब्बा ख़त्म नहीं होता, उसके साथ और एक डब्बा 6 महीने के बाद बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी गोलियां वो पहले खा चुके हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के और कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें जो है आयुर्वेद या फिर घरेलू नुस्खा या फिर हमारा जो जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल जो है, उसको अगर हम बदलाव करते हैं, हमारे खान पीन में बदलाव करते हैं, जैसे ऋतुचर्या को समझ कर हम अगर खाने को चेंज करते हैं, तो इससे हमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम अपने आप भी ठीक होते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए, आप कुछ बता रहे
0: हैं। हाँ, मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था कि अगर हमें स्वस्थ रहना है ना, तो अगर हम थोड़ा सा ये चीज़ों पर भी ध्यान दें,
2: बिल्कुल,
0: कि हम खाना ऐसा खाएं जिसमें कुछ ना कुछ फाइबर्स जरूर
2: हो,
0: है ना, जैसे फल जरूर खाएं, कच्ची चीजें थोड़ी खाने में शामिल करें, ताकि हमारा पेट जो है वो साफ रहे।
2: बिल्कुल,
0: जैसे मैंने बताया ना, पेट नरम, हाथ पैर गरम रखने के लिए कोई ना कोई योगा, कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें, और सिर को ठंडा रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें। तो इतना भी अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहने में इसकी बहुत मदद मिलेगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। और कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
2: सही
0: ना, बीमारी होने के बाद उसका उपाय करने से अच्छा है कि बीमारी हो ही नहीं, ऐसा कुछ
2: इलाज कर ले। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया। और हमारे दयाराम जी, सुरेश जी और भी बहुत सारे लोग, सुगना बहन और लक्ष्मण जी और बुराराम जी, सभी ने फ़ोन करके पूछा, सभी को सही जवाब मिला होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप इसका उपयोग करें, अगले हफ्ते ज़रूर हमें अपने अनुभवों को साझा कीजिएगा। तो डॉक्टर दिलीप नलगे सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज कुछ देना चाहें तो ज़रूर।
0: जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आहार का ज़रूर ध्यान रखें। अपना आहार जो है ना, उसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आजकल फास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पहले के ज़माने में हमारा आहार सही था, इसलिए बीमारियाँ कम थी। अभी आहार बहुत गड़बड़ हो गया है, तो इसीलिए बाहर का खाने से बचे। और हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, क्या हम भूख के अनुसार खा रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। पानी जरूरत से ज्यादा ना पिए, जितना आवश्यक है उतना ही पिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जैसे हाथ पैर हमारे गर्म रहने चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करें। और निश्चित रूप से हमेशा सकारात्मक रहे हर परिस्थिति में, अपना जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रखें और हमेशा आशावादी रहें जीवन के प्रति। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा अनुभव कर सकते हैं, बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी आप सबके प्रति यही शुभकामना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहे।
2: चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप नलगे सर, और स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले संडे कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ख्वाबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आपको मिलवाएंगे मावल के रहने वाले शांति देवी शर्मा। जो आप मावल में रहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि आप कढ़ाई का काम, बुनाई का काम, सिलाई का काम सब कर लेते हैं, पढ़ाई आपने नहीं की हुई है, बाकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आइए इन्हीं के द्वारा

0: जानेंगे। शांति जी, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हो आप?
1: ठीक हूँ।
0: अच्छा शांति जी, अभी आप वर्तमान में क्या क्या काम करते हैं?
1: अभी तो घर पे ही रहते हैं।
0: जी, घर पे तो रहते हैं, लेकिन घर पर रह करके क्या क्या काम कर लेते हैं? किस तरह के काम करते हैं आप?
1: अब बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उठते हैं, झाड़ू पोता है, घर का काम है, कपड़ा लेता है, ये खाना बनाना है।
0: जी जी, कढ़ाई बुनाई सिलाई सब करते हैं?
1: हाँ, सिलाई आई है, मशीन है, सिलाई भी कर लेते।
0: सिलाई मॉल की करते हैं?
1: नहीं नहीं, अपने घर की करते।
0: अच्छा, घर की करते हैं तो अच्छा है ना, बचत हो जाती है।
1: अपने घर की करते हैं, बाहर की नहीं करते।
0: जी जी, तो शांति जी चलिए अभी आप क्या करते हैं और भी आपसे जानेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पे बीता?
1: बचपन तो मेरे गांव में बीता।
0: कौन से गांव में बीता?
1: गांव तो जिला बदायूं है, नाम गांव का बछेली।
0: अच्छा, आप यूपी के रहने वाले?
1: हाँ, यूपी के रहने वाले।
0: तो जिस गांव में आप रहते थे वो गांव कस्बा है, शहर है या छोटा सा गांव है?
1: छोटा सा गांव है, देहात है।
0: और आप कितने भाई बहन हो?
1: हम चार बहन चार भाई।
0: आठ भाई बहन, उसमें आपका नंबर कौन सा आता है?
1: हमारा मंझले है, दो भाई से छोटे।
0: पांचवा नंबर आता है आपका। अच्छा, तो आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: नहीं, गांव में हम छोटे हैं तो गांव में स्कूल नहीं था। हमारा
0: स्कूल ही नहीं है, तो कोई भाई बहन ने नहीं की पढ़ाई?
1: नहीं नहीं, वो जब हम बड़ा भाई है वो दूसरे गांव में, हमारे ताऊ जी रहते, उनके वहाँ भेज दो तो उधर पढ़ाई की। बहन हमारी नहीं पढ़ी, सबसे छोटी है तो हमारे भाई ने स्कूल खोल दो तो उसमें पढ़ाई की, प्राइवेट स्कूल हमारे भाई ने खुलवा दो। सबसे छोटी आ रही नहीं, उसने पढ़ाई करी। तीन बहन नहीं पढ़ी।
0: और भाई बाहर जाते थे पढ़ने?
1: हाँ, भाई हमारे बाहर पढ़ाए, हमारे ताऊ जी रहते उनके यहाँ।
0: तो आप बहनों को नहीं भेजा?
1: नहीं नहीं, हमारे गांव में स्कूल नहीं तो नहीं भेजो।
0: जी जी, बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा?
1: नहीं नहीं, डराते, छोटे से गांव, बूढ़े जैसे हमारे इधर भेड़िया आड़िया पहले छोटे छोटे, वो पेंदुआ भेड़िया ज्यादा है, इसलिए मेरे मम्मी पापा डरते, इसलिए नहीं भेजो।
0: अच्छा, तो आपके पापा क्या काम करते थे उस समय?
1: हमारे पापा खेती बाड़ी करते।
0: मम्मी भी करते है?
1: नहीं नहीं, मम्मी घर का काम करती, भैंस गाय घर का है, भैया बहन खाना बनाना घर का काम।
0: और आपके पापा खेत संभालते है, आप लोग भी हेल्प करते?
1: हाँ, छोटे है तो जाते, बड़े हुए तो नहीं जाते।
0: बड़े हुए तो क्यों नहीं जाते खेतों पर?
1: नहीं, बड़े हुए तो हमारे इधर नहीं, लड़की को भेजते हैं खेत पर, छोटे है तो जाते थे। हाँ।
0: अच्छा, तो फिर जैसे आप बड़े हुए तो फिर आप घर का क्या क्या काम कर लेते हैं?
1: हाँ, सिलाई बिनाई, ये पंखा बनाते थे, कपड़ा सिलते थे, और घर को काम है जैसे सब, अपनी मम्मी की हेल्प करते है।
0: तो जैसे कि आपने पढ़ाई नहीं की, पूरे गांव में कोई लड़कियों ने पढ़ाई नहीं की?
1: नहीं नहीं, जब छोटे छोटे हमारे स्कूल ही नहीं तो किसी ने पढ़ाई नहीं की।
0: तो कभी आपकी इच्छा हुई पढ़ने की?
1: हाँ हुई थी, लेकिन जब स्कूल नहीं तो क्या जाते पढ़ने के लिए, पढ़ाई को मन करते थे लेकिन स्कूल नहीं तो कहाँ जाते, बाहर मम्मी पापा नहीं भेजा।
0: तो आपको जैसे लिखना पढ़ना आता है थोड़ा बहुत? सीखा आपने घर पर बैठ कर? नहीं
1: नहीं नहीं, नहीं सीखा, खाली अपने घर का काम करते, कढ़ाई बुनाई, और फिर नहीं हो तो अपने मस्ती मौज मस्ती करते, खेलते सहेली छोटी छोटी लड़की उनके संग में घर पे। अपने
0: कौन कौन से खेल खेलते थे आप?
1: गुड़िया गुड्डा को गुड़िया गुड्डा छोटी छोटी लड़की अपने घर पे खेलते, बाहर हमारे भाई हमारे पापा नहीं जानते थे।
0: सारी लड़कियां आपके घर पर आती थी मोहल्ले की?
1: हाँ, सारी लड़कियां हमारे घर पर आती, लेकिन मेरे भाई पापा दूसरे घर पर नहीं भेजते, दूसरी लड़की आई आती थी हमारे घर पर।
0: तो पूरे दिन खेलने में बीतता था?
1: नहीं नहीं, घंटा दो घंटा खेलते, उसके बाद काम करते अपनी मम्मी के संग, दादी के संग।
0: दादी दादा सब परिवार में जॉइंट परिवार था?
1: हाँ, दादी दादा है, मम्मी पापा चाची चाचा, हमारा बहुत बड़ा परिवार।
0: तो सभी चाची चाचा के बच्चे भी सभी आप साथ में ही बड़े हुए?
1: हाँ, सब हमारा बहुत बड़ा परिवार है, खूब बड़ा घर है, एक एक घर में सब बड़े पले, सब सलाह से प्रेम से रहते सब।
0: तो आप भाई बहन और कौन से मतलब किस तरह रहते थे, इतने सारे भाई बहन हो तो कैसे रहते थे आप?
1: प्रेम से रहते सब, एक दूसरे की सब अपने जो चीज भाई ला दो तो सब बहन देते, बहन लेती तो अपनी बहने सब मिलके खाते, मिलके रहते ऐसे। दादी मेरे बाबा है, एक चीज दिवाते सबको दिवाते, हमारे मम्मी पापा लाते तो सबको चीज देते ऐसे।
0: जी, जो भी बाहर जाते तो सभी के लिए लेके आते?
1: हाँ, सभी के लिए लेके आते, हमारे भाई लेके आते सबको देते, पापा लेके आते सबको देते।
0: तो जैसे कि आप गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे है ना, और भी कोई खेल खेलते थे कि सिर्फ गुड्डा गुड्डी का?
1: नहीं नहीं, खाली गुड्डी गुड्डा। और कुछ नहीं खेल खेलते।
0: अच्छा, और इस तरह आप कितने बड़े हुए फिर आपकी शादी हुई?
1: हमारी तो याद नहीं है, मान लो ऐसे 17-18 साल की तो उम्र हुई थी हमारी शादी हुई थी।
0: अच्छा, तो आपके मम्मी पापा आपको किस तरह की शिक्षा संस्कार देते थे उस समय?
1: मम्मी पापा बोलते कहीं बाहर नहीं जाने का, अच्छे से घर में काम करने का, कढ़ाई बिनाई सीखने का, किसी की बात नहीं सुनने की, किसी घर पे नहीं जाने का।
0: जी, और आप किस शादी मतलब कौन से शहर में हुई?
1: नहीं है, थोड़ी दूर पे हमारे गांव से थोड़े दूर गांव है, दूसरे गांव में करी।
0: वो भी गांव ही है?
1: हाँ, वो भी गांव है, शहर कस्बा नहीं है, गांव है।
0: तो आपकी शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
1: सही आओ बढ़िया है, सास है, ससुर है, एक जिठानी है, जेठ है, देवर हो, दो ननद है।
0: उधर भी बड़ा परिवार है?
1: हाँ, फिर दोनों ननद की शादी हमने करी, एक देवर की शादी करी। हम तीन दिन जिठानी अभी साजी रह रहे हैं, अभी 2-4 साल से अलग हुए हैं, मान लो अब हम बाहर रह रहे हैं, वो घर पर रह रही।
0: तो आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं?
1: हमारे हस्बैंड इधर कंपनी में काम करता है, ठेका चला रहे हैं
0: राजस्थान में। तो आपकी शादी के बाद तुरंत आप इधर आ गए या फिर उधर रहे?
1: घर पर 10 साल रहे।
0: 10 साल आप घर पर रहे और आपके हस्बैंड इधर राजस्थान?
1: हम घर पर रहे, हमारे घर वाले इधर अहमदाबाद में काम कर रहे थे। हम सास ससुर के पास रहे, अपने मम्मी पापा के पास रहे, अपने भाई के पास रहे।
0: और जैसे कि शादी करके ससुराल जाते हैं, इतना बड़ा परिवार है, पियर में तो फिर भी फ्रीडम होती है, ससुराल में तो बहुत सारा काम करना पड़ता है।
1: नहीं, मिलके करते हैं, हमारी जिठानी, हम जिठानी दोनों सलासर आते, दोनों मिलके एक झाड़ू लगाती, बर्तन एक मांजती थी, एक धोती थी, एक आटा लगाती थी, एक रोटी सेकती, एक बेलती, ऐसे करके अभी भी जाते हैं। हम दोनों दिन जिठानी तीनों मिलके काम करते हैं, सलासर कभी झगड़ा नहीं हुआ।
0: जी, बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि मिल करके काम करते काम भी जल्दी होता है, फटाफट भी होता है और स्नेह भी बढ़ता है।
1: अभी मेरे 4-5 बच्चे हैं हमारे, हमारी जिठानी के भी बच्चे हैं, लेकिन हमारे कभी बच्चे ने झगड़ा, वो अपने बच्चे डांट देती हैं, हम अपने बच्चे डाए, हम कभी नहीं झगड़ा करता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है शांति जी, आधे झगड़े तो बच्चों की वजह से होता है, बच्चे झगड़ते हैं तो माताएं क्या अपने अपने बच्चों का पक्ष लेती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: नहीं होना चाहिए, बच्चा गलती कर रहे हैं तो दोनों को डांट देना चाहिए, और फिर नहीं डांटे तो हमने अपने को डांट दिया, उन्हें अपने डांट दिया, अपने खेलेंगे बच्चा तो खेलेंगे, न लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक होंगे, बच्चों को पीछे नहीं लड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतना प्यार से रहते हैं।
1: हाँ, प्यार से रहते, इधर भी बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, बता रहे हैं अच्छे से रहना, किसी बड़ा आए तो उसे दीदी अरे दीदी बोलने का, बड़ी मम्मी बोलने का, भाई है तो भाई बोलने का, चाचा है तो चाचा बोलने का, किसी से झगड़ा नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का।
0: बहुत अच्छी बात है शांति जी, बहुत अच्छे शिक्षा और संस्कार आप दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो ऐसे ही अगर हर माँ अपने बच्चों को देवे तो ये सारे दुनिया के झगड़े खत्म हो जाए। तो शांति जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो प्यारे श्रोता बंधु बने रहिएगा वंदे मातरम में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे शांति देवी जी से, और आइए और भी बात करेंगे मावल में ही। तीजा जी बेरवा, इनसे बात करेंगे। तीजा माता जी आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
5: धन्यवाद।
4: माता जी आप कैसे हो?
5: हाँ हम ठीक हैं जी।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, माता जी की उम्र 70 के आसपास होगी, फिर भी माता जी बड़े खुश रहते हैं हमेशा। माता जी आप थोड़ी देर के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पे बीता?
5: हमारा बचपन तो अबरूड में बीता है। हाँ, हम राजी खुशी रहते थे, 8 बहन भाई हैं।
4: अच्छा आपका बचपन आबू रोड में बीता, क्या बात है, आप तो आबू गए हैं। और आपका नंबर कौन सा आता है?
5: मेरा चौथा नंबर।
4: आप चौथे नंबर के, तो आप 8 भाई बहन कैसे रहते थे आपस में?
5: आपस में राजी खुशी रहते थे, लड़ना झगड़ना कोई जानते ही नहीं था। जब बस माँ बाप थे, छोटे छोटे के मर गए, बस भाई थे, 5 भाई थे, 4 बहन थी, 9 बहन भाई थे, पर वो सब 4 बहन भाई मर गए, 2 भाई है।
4: जी जी, वो तो कहते हैं समय के साथ उम्र होगी तो सभी को जाना ही पड़ेगा। पर आपके बचपन की बातें चल रही है कि उसमें 8 भाई बहन, आपस में आप प्यार से रहते थे।
5: प्यार से रहते थे, अब लड़ना झगड़ना तो कोई जानता ही नहीं था जब छोटे छोटे थे जो।
4: जी जी, और आपने पढ़ाई की हुई?
5: नहीं जी, पढ़ाई नहीं करी।
4: आपके जमाने में पढ़ाई नहीं कराते थे?
5: पढ़ाई करवाते थे, पर अपने छोटे छोटे एक तनखा में हमारा पूरा नहीं पड़ता, तो वैसे घर का ही काम करते थे।
4: आपके पिताजी क्या काम करते थे?
5: हमारे पिताजी ये गाड़ी चलाते थे, फिर पोलमैन थे।
4: अच्छा, ट्रेन चलाते थे। और सिर्फ पिताजी काम करते थे या माताजी भी करते?
5: नहीं, माताजी तो कभी ये खेत में जैसे नाज हुआ तो काटने जाते थे, घास वास काटे, कोई सल्ला बीन लेते ऐसे।
4: जी जी, तो पिताजी की कमाई पर आप क्या 8 भाई बहनों की पालना करनी होती थी, तो इस वजह से पढ़ाई नहीं की?
5: हाँ, और जब लड़कियों कोई पढ़ाता ही नहीं था।
4: तो आपने ही नहीं की या आपके भाई बहनों ने की या नहीं की?
5: सबने की है, छोटी बहन ने तो उसने भी करी, बड़ी बहन थी तो उसने भी नहीं करी थी, मेरी जैसे ही थी।
4: हाँ। अच्छा, आपने और आपकी बड़ी बहन ने नहीं की, भाइयों ने की?
5: सब भाइयों ने की थी।
4: तो उस समय बेटियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था?
5: रिवाज था ही नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, और था बड़े बड़े लगे जगह था, और हम छोटे जगह था ना, तो जाने नहीं दिया। बच्चे थे छोटे छोटे, माँ काम करने चले जाती तो हम खिलाते थे भेड़ भाइयों को।
4: छोटे भाई बहनों को रखना पड़ता था?
5: हाँ, रखना पड़ता था।
4: बिल्कुल आपने सही कहा है कि माताएं काम करती थी और छोटे भाई बहनों को कौन खिलावे,
5: एक तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता तो फिर क्या करें।
4: तो आप और पढ़ाई तो आपने की नहीं, फिर आप क्या करते थे, पूरे दिन कैसे बिताते थे आप?
5: बस वैसे ही खेलते थे, कोई चूड़ी खेलते, कोई क्या खेलते, चंगाफो खेलते, ये गुजारा करते थे बस।
4: अच्छा, चूड़ी कैसे खेलते थे?
5: वैसे ही चूड़ी होती है ना, कुंडाला बना के और एक एक चूड़ी,
4: चूड़ियों के टुकड़ों से।
5: हाँ, टुकड़ों से बस।
4: ओके, अच्छा तो आपके जैसे कि भाई आपसे बड़े थे तो भाभियां भी आ गई होगी?
5: हाँ, 2 भाभी आ गई थी।
4: तो घर में काम आपको करना पड़ता था?
5: नहीं, भाभी आई जब, जिसके बाद तो नहीं करना पड़ता था। जब तो मैं ससुराल आ गई थी, एक भाई की शादी हुई, हमारे ससुराल के साथ भेज दी थी।
4: अच्छा, आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
5: हमारे 15 साल की।
4: 15 साल की उम्र में शादी हुई। तो आपके खेती बाड़ी पे जैसे आपके मम्मी जाते थे, आप भी जाते थे?
5: नहीं,
4: आप घर का ही काम करते थे। अच्छा, घर में और आप क्या कर लेते थे? सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ करते थे?
5: नहीं, बस ये कभी हमारी मम्मी वो स्वेटर बनाती थी, वो स्वेटर बनाते थे, कभी ये कसीदा निकाल लेते थे।
4: अच्छा, कसीदा आप निकालते थे मम्मी का देख देख के, और स्वेटर भी बना लेते थे?
5: लेते थे।
4: तो स्वेटर भी देख देख के बनाते थे?
5: नहीं, फिर तो हमको आ गया था ना।
4: हाँ, जैसे मम्मी से ही सीखा?
5: हाँ, मम्मी से सीखा। मम्मी सीखा, अड़ोसन पड़ोसन बस बैठ जाती, भाई इधर आओ भाई इधर आओ, तो वो बैठ जाती, तो उनके साथ में सीख लेते।
4: अच्छा, तो स्वेटर आप किसके लिए बनाते थे, खुद के लिए या भाई बहनों के लिए?
5: जैसे मम्मी बनाती थी तो उसमें सारा लगा देते थे,
4: मदद करते थे। अच्छा, और पहले के जमाने में गीत गाने का बहुत रिवाज था, माताएं बहने कुछ भी काम करती जाते थे और गीत गाते थे, तो आप भी गाते थे?
5: हाँ, गीत तो मैं अभी भी गाती हूँ।
4: तो आप लोग गीत गाते हुए काम करते थे, है ना?
5: वैसे राती जगह होता है, बजना होता है, तो उनमें गाते हैं सबसे मिलकर।
4: हाँ जी, राजस्थान में रात्रि जागरण का बहुत रिवाज है, तो राती जगह में आप गीत गाते थे। तो राती जगह में तो कहते हैं कि माताएं जाती है, बेटियां नहीं जाती है, तो आप भी जाते थे?
5: जब नहीं जाते थे, आप ससुराल में जाना पड़ा ना।
4: ससुराल में तो जाना पड़ेगा। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपका बचपन कैसे बीता और आप क्या क्या करते थे?
5: कुछ नहीं, खेलते थे, मस्ती मारते थे।
4: और आप 15 साल के हुए और आपकी शादी हो गई, तो शादी करके ससुराल या मावल है या फिर कहीं और?
5: नहीं, मावल में गेट है, मतलब ढाई में क्या है, थोड़े 2 किलोमीटर वहाँ है।
4: क्या नाम है उस गांव का?
5: आवल, आवल, आवल।
4: अच्छा, आवल। आवल से फिर आप मावल आ गए रहने?
5: हमारी सास वहाँ गुंटे पे काम करती थी, झंडी बताती थी गाड़ी पे। हमारा ससुर मर गया ना, तो उनकी जगह मिल गई थी, तो वो रिटायर हुए तो हमने गांव बना लिया।
4: अच्छा, तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए, थोड़े बताएंगे?
5: ये तो मेरे को नहीं। परिवर्तन तो क्या, ससुराल में रहते थे, 3 जने थे, खाते पीते बजे।
4: ससुराल में छोटा परिवार था?
5: हाँ, छोटा परिवार। वैसे परिवार तो बहुत बड़ा, हमारे घर में 3 जने थे, मैं थी, मेरी सास थी और हमारे बाबूजी थे।
4: अच्छा, तो आपके ननन देवर जेठ कोई नहीं थे?
5: ननन थी, बड़ी बड़ी ससुराल थी, बस आज गुजर गए थे।
4: इतने बड़े परिवार से आप आए छोटे से परिवार में, तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा?
5: लगा नहीं, कोई नहीं था, गांव की बस्ती थी, गांव में चोरी आ जाती, लुगाई आ जाती तो मन लग जाता था, नहीं तो जंगल में एक गुंटी में पड़ी रहते थे।
4: तो आपके पतिदेव उस समय क्या काम करते थे?
5: वो बच्चों को पढ़ाने जाते थे, टीचर थे।
4: अच्छा, टीचर थे, तो ये तो अच्छी बात है। आपके सास भी जॉब करते थे, आपके हस्बैंड भी जॉब करते थे, आप घर में अकेले पड़ जाते थे?
5: अकेले।
4: तो फिर कैसे आप समय व्यतीत करते थे?
5: गांव था ना, गांव पास में, तो सब आ जाती थी, वहाँ गेट था ना, गेट पे सब इकट्ठी होके बैठ जाती थी, फिर हम भी बैठ जाते वहाँ, सुबह शाम काम कर लेते और दिन में मस्ती मारते।
4: अच्छा, सुबह शाम काम करते और दिन में सभी बैठ जाते थे और बातचीत करते थे। तो बातचीत करते थे और साथ ही कुछ करते थे या सिर्फ बातें ही बातें करते थे?
5: नहीं, बातें ही, कुछ नहीं करते। इधर 2 किलोमीटर इधर झाड़ना, 2 किलोमीटर झाड़ना, शाम को 2-12 बजे तक काम कर लेते और फिर बैठ जाते खाना।
4: और आपके सासू माँ कितने देर बाहर रहते?
5: बाहर क्या, वो तो गेट पे रहते थे, वो सांप आते तो झंडी बताते थे, और वैसे सफाई करते, मतलब 2 खंबे इस तरफ, 2 खंबे इस तरफ, हम भी मदद करते थे, घास वास उपाड़ना करना, लेन पे कचरा होता तो उसको घास उपाड़ना, ऐसे रस्सी होती है ना अंगले से वो।
4: अच्छा, तो आप भी इस तरह मदद करते थे, बहुत अच्छी बात है माता जी। आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का। तो प्यारे श्रोता बंधु, आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मावल की कुछ बहनें हमारे साथ बने हुए हैं, जिनका नाम है तीजा देवी जी और शांति जी शर्मा, तीजा जी बेरवा हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए शांति जी से फिर से बात करेंगे। शांति जी, आपका फिर से स्वागत है वंदे मातरम में।
3: स्वागत है।
2: अच्छा शांति जी, आप बता रहे थे कि आपके गांव में सड़कें वगैरह नहीं थी।
3: छोटा सा गांव है, भूड़ है, रेती जैसी है, और सड़क नहीं थी, कच्ची रास्ता, बैलगाड़ी चलती, पैदल भी जाने पड़ते।
2: अच्छा, पैदल कहाँ जाते थे आप?
3: थोड़ी दूर हो, जैसे इधर से आबू रोड है, इतनी दूर सड़क की कच्ची रास्ता, चले जाते आराम से, मस्ती मस्ती सब लोग।
2: मावल से?
3: मावल से जैसे आबू रोड है इतनी दूर तक,
2: उधर यूपी में
3: रास्ता है। हाँ, उधर पापा के साथ में, चाचा के, भाई के, सबके साथ में जाते, बैलगाड़ी से भी जाते, पैदल भी जाते।
2: बसें वगैरह नहीं आती?
3: नहीं नहीं, बस नहीं चलती।
2: अच्छा, और आपके ससुराल में?
3: ससुराल में तो देखो ये टेम्पू चलते हैं, गाड़ी भी चलती है, रिक्शा चलता है, बड़ा बुग्गी चलती है।
2: तो फिर आज भी आप आपके मायके जाते हो तो क्या करते हो?
3: अब मायके जाते हैं तो अपने बस से जाते हैं, और फिर अपने जैसे बस से जाके गाँव को जाते हैं तो हमारे भाई की ट्रैक्टर है, वो ले जाते हो, नहीं कोई गाड़ी आड़ी कभी मिल जाते सवारी तो उससे चले जाते, नहीं पैदल चले जाते।
2: ओहो, पर आज भी आप कह रहे हो ना कि अभी भी बसें नहीं चलती है?
3: अभी भी सड़क पर ही है, पर कहीं कहीं टूटी है, ये सही नहीं है, जैसे खूब बढ़िया रोड है वो रोड नहीं है अभी पर,
2: आज भी मुश्किल पड़ता है।
3: हाँ, अभी जाते हैं तो सवारी बहुत कम मिलती है, तो अभी भी पैदल जाने पर। तो वैसे तो मेरे भाई ने जैसे आबू रोड है ऐसे मकान ले लो उधर रात पर, जैसे गांव में मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं, छोटा भाई रह रहा हो तो उधर जाने पर, तो तीन भाई ऐसे कस्बा में रह रहे हैं, और मम्मी पापा भी गांव बहुत जमीन है घर है, इसलिए वो छोड़ के नहीं, तो उनके पास तो जाना पड़ेगा।
2: जी जी बिल्कुल। और आप, आपके गांव से राजस्थान की तरफ आपने रुझान किया, कितने समय हो गए राजस्थान में रहते हैं?
3: यहाँ मैं 6 साल हुई है।
2: अच्छा, 10 साल उधर रहे?
3: घर पे रहे, घर पे तो 10-12 साल घर पे रहे।
2: अच्छा, उसके बाद आप इधर आए राजस्थान?
3: हाँ, उसके बाद गुजरात में भी रहे, गुजरात में रहे 5-6 साल गुजरात रहे।
2: गुजरात रहे, गुजरात में कहाँ?
3: गुजरात में भी कंपनी में काम करते।
2: कौन से शहर में रहे?
3: अहमदाबाद कलोल।
2: अच्छा, अहमदाबाद कलोल रहे, तो ये कड़ी कलोल।
3: हाँ, कड़ी कलोल।
2: तो ये आप जैसे कि उधर से हिंदी भाषा है ना, आपके कौन सी भाषा चलती, भोजपुरी या हिंदी?
3: नहीं, हम तो हिंदी बोलता,
2: तो हिंदी भाषा बोलते हैं। फिर इधर गुजरात में गुजराती भाषा, तो कैसे आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा?
3: नहीं, यहाँ अटपटा लगा तो, पर अपने बोलते तो बहन जी सब गुजराती की सब अपने हिंदी में ही बोलती, बात करती। अपन में बोलती तो गुजराती बोलती, हमसे बोलती तो हिंदी में बोलती।
2: तो आपका इधर आके मन लग गया?
3: हाँ, अच्छा लग रहा है, रह रहा है। अब नौकरियाँ पति देव रहेंगे, हुए हमें रहना पड़ेगा।
2: जी जी बिल्कुल। और फिर कलोल रह करके फिर आप मावल आए?
3: हाँ, पहले कलोल में रह रहे थे, उसके बाद इधर आए। अब इधर बच्चा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं।
2: अच्छा, कितने बच्चे हैं?
3: हमारे पांच बच्चे हैं, पांच लड़का लड़की नहीं।
2: पांचों ही लड़के हैं?
3: पांच लड़का लड़की नहीं।
2: अच्छा, तो लड़की की कमी खलती नहीं है बेटी की?
3: हाँ, बेटी की खलती है, इसलिए बेटी एक रात देखा देगा तो पांच लड़के हुई है, एक लड़की जो रहे थे।
2: जी जी, तो इस तरह पांच बेटे हो गए बेटी की राह देखते देखते। तो पांचों लड़कों को पढ़ा रहे हैं आप?
3: नहीं, सबसे बड़ा है वो अपने पापा संग काम कर रहा हुआ, चार छोटे छोटे वो चारों पढ़ रहे हैं।
2: तो जैसे कि आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो आपको कभी महसूस होता होगा कि काश मैं भी पढ़ती तो?
3: हाँ, महसूस होता, पढ़े होते तो हम जाते तो अंगूठा लगा देते, पढ़े होते तो हम भी साइन कर देते।
2: तो आप अपने बच्चों से पढ़ाई सीख सकते हैं ना?
3: हाँ, बच्चा बोलते हैं मम्मी तुम अपना नाम लिखनो देखो, सीख लिया हम सिखा देंगे। हम बोलते हैं नहीं, क्या करने अब, तो अब बच्चा पढ़ लेंगे वही बहुत है हमारे लिए, क्या करने अब, इतनी कटी रही वो भी कटी आई, बच्चे नहीं पढ़ाई जरूरी है, बच्चा पढ़ जाएंगे तो बस।
2: तो जैसे आप एक छोटे से गांव से आप कड़ी जैसे कस्बे में आए, फिर कड़ी से वापस मावल गांव में आ गए, तो आपका मन लग गया इधर आके?
3: हाँ, मन तो लगे, अब जहाँ रहेंगे तो मन तो लगे, अच्छा लगे। अब सबके संग में यहाँ बैठते हैं उठते हैं, प्रेम सराहते हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं तो अच्छा लगता।
2: आपके रिश्तेदार सब उधर यूपी में?
3: हाँ, रिश्तेदार तो कोई रह रहे हैं, पर हम किसी से रिश्तेदार से अपने अपने घर में रहते हैं, जो बात करे उससे करते, नहीं तो अपने घर में ही बस।
2: लेकिन आपके घर वाले तो सब उधर ही है ना?
3: हाँ, हमारे घर वाले कलोल में ही काम कर रहे हैं।
2: अच्छा, कलोल है, और आप यहाँ पर?
3: ये रह रहे थे पर इधर काम छोड़ दिए तो आप कलोल में पहुँचिए, तो अभी कलोल में रह रहे हैं हम, यहाँ बच्चा पढ़ रहा है इसलिए यहाँ रह रहे हैं।
2: तो क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड?
3: हमारे वो प्लास्टिक कंपनी है ना, उसमें ठेका आदमी को बुला के ला के उन पर काम करवाता, ठेका चला रहे हैं।
2: अच्छा, तो इसमें भी ट्रांसफर सिस्टम है क्या, पहले कलोल फिर अभी आबू मावल?
3: ऐसा है, जैसे अभी इधर कंपनी में काम लिया तो उसमें सेठ पैसा नहीं बढ़ा रहा हुआ, जैसे कम पैसा दे रहे हैं, अब लेबर हमारी ज्यादा मार रही है, इसलिए इधर छोड़ दिया तो उधर दूसरी जगह ले लो, वैसे उधर कर रहे हैं।
2: जी जी, आपके पांच बच्चे हैं, आपके हस्बैंड कमाते अकेले हैं, फिर वो आपके घर में चल जाता है?
3: हाँ, बच्चा नहीं है पर पूरा हो जाता खर्चा पानी, बच्चा है सब खर्चा है, भाड़ा किराया है सब।
2: आप भी कुछ करते हैं?
3: नहीं नहीं, हम तो घर पे ही रहता, हम कुछ भी नहीं करते,
2: बस आप अपना छोटा मोटा काम करते हैं घर का?
3: हाँ, अपना छोटा मोटा काम है, बच्चन को बस सुबह उठाओ, तैयार करो, नाश्ता पानी बनाओ, नहीं स्कूल भेजना है, झाड़ू पोता पानी काम करना।
2: जैसे आप यूपी में रहे, फिर गुजरात में रहे, अभी राजस्थान में रहे, आपको सबसे अच्छा मन कहाँ पे लगा?
3: अब अच्छा तो गुजरात में भी अच्छा लगता रहा है, इधर भी अच्छा लग रहा हूँ।
2: नहीं, कहते हैं कि एक तो भाई जहाँ अपना बर्थ प्लेस होता है, जहाँ जन्म स्थान होता है, वहाँ से ज्यादा लगाव रहता है।
3: वो तो रातों में मम्मी पापा की, भाई की, भाभी की, सबकी याद आती है कि अपना कैसे इधर रह रहे हैं, तो घर पे जाए, सब बार बार याद आती है उनकी।
2: तो कितने समय से आप जाते हो अपने घर पर?
3: एक साल हो जाए, दो साल, तीन साल ऐसे हो जाती है तब जाते।
2: तो फिर वो लोग आते हैं मिलने इधर?
3: नहीं नहीं, इधर दूर पड़ते, हमारे भाई खेती बाड़ी है, सब नौकर पैसा उधर काम करते थे, इधर नहीं आता, वो तो घर पे ही रह रहे हैं सब। हमारे चार भाई है, चार भाभी है, और चार बहन है, एक दिल्ली रह रही है, एक बरेली में, एक मियाऊ में, और हम इधर रह रहे हैं।
2: सभी आपसे दूर है?
3: सभी दूर है। हाँ, भाभी है, सब बहुत याद आती है भाभी की, भाई की, फोन कर लेते हैं, बात कर लेते।
2: जी जी, आजकल तो फोन का सिस्टम अच्छा है कि चलो याद आई और फोन किया।
3: भाई भी बात कर ले, भाभी कर ले, दीदी कर ले, सब लोग कर ले, मम्मी कर ले, पापा कर ले, सब। अब मम्मी भी है, पापा भी है, चाचा है, चाची है, सब लोग।
2: जी, और आपके सासू जी, आपके जेठानी वगैरह भी आते हैं इधर मिलने आपसे?
3: नहीं, नहीं, वो नहीं, सासू ससुर तो नहीं है, जेठानी है, जेठ है, देवर है, देवरानी है,
2: वो सभी आपके गांव में ही रहते हैं या अकलौल रहते हैं?
3: नहीं, वो तो घर पे रह रहे हैं। जिठानी है, माँ जेठ है, वो घर पे रह रहे हैं। वो सब लोग घर पे रह रहे हैं, हम अकेले रह रहे इधर।
2: अच्छा, तो फिर उनकी भी तो याद आती होगी ना?
3: हाँ आती है, बात कर लेते मोबाइल से। दो ननद है, ननद अपने अपने घर है, उनसे बात कर लेता, नंद से, नंदोई से।
2: अभी कितना समय हो गया उधर गए हुए?
3: अभी अभी तो ये अप्रैल में गए थे, भतीजी की शादी उसमें गए थे।
2: फिर सभी जगह जाते हो, मिल के आते हो?
3: हाँ, जब जाते तो सभी जगह मिल के आते, जाते मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, अपने ससुराल सिगरे।
2: अच्छा, और आप अपने बच्चों के प्रति क्या लक्ष्य रखते हो? उनको अच्छा पढ़ा लिखा करके अच्छा मतलब अच्छी पोस्ट तक पहुंचाना चाहते हो, जॉब करवाना चाहते हो या फिर बिजनेस करवाना चाहते हो, क्या लक्ष्य बनाया आपने?
3: अब पढ़ाना तो चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चा खूब पढ़े लिखे हैं, नौकरी हो, लेकिन प्राइवेट नौकरी है तो अब प्रति हमारे इतना कमा तो उसमें खर्चा पानी पूरा मुश्किल से बात हो, इसलिए प्राइवेट नहीं पढ़ा पा रहे, सरकारी में पढ़ रहे हैं। खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है।
2: कोई बात नहीं, देखो आगे जाने वाले बच्चे तो सरकारी में से भी निकल पड़ते हैं, वो भी आगे बढ़ जाते हैं।
3: पर पढ़ाते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं, और देखो ट्यूशन लगा दी, दो की छोटे छोटे ट्यूशन जाता पड़ा।
2: तो चलिए शांति जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मावल की बहने हमारे साथ बने हुए हैं, शांति जी, तीजा माता जी। तो आइए फिर से हम बात करेंगे तीजा माता जी से। तीजा माता जी, आप बता रहे थे कि आबू से विवाह करके आप आवल में आ गए।
1: हाँ जी, हाँ, आबू से विवाह करके आबू मावल में आ गए।
0: नहीं, आवल आए ना, पहले तो आवल रहते थे।
1: वैसे शादी तो वहाँ ससुराल में हुई थी, केसरगंज में, फिर यहाँ आ गए थे।
0: कहाँ पे आपका ससुराल?
1: केसरगंज।
0: केसरगंज
1: सिरोही के पास में, सिरोही के पास में।
0: हाँ, तो केसरगंज आपका ससुराल था।
1: हाँ।
0: फिर वहाँ से इधर आए।
1: हमारी सास गेट पे थी, तो गेट पे से रिटायर हो गई, तो यहाँ आ गए।
0: जी जी, तो आवल रहे, फिर आवल से मावल आए।
1: आबूर से मावल आए।
0: तो आपके सास रिटायर हो गई, उसके बाद आप मावल आए।
1: हाँ।
0: अच्छा, आप नई नई शादी करके आए, आप दोनों सास बहू कैसे रहते थे?
1: वो राजकुशी रहते थे, जैसे माँ है, वो समझती थी बेटी, हमको मिल मिल कर बात करते थे, हंसी मजाक कर लेते थे सास बहू। हाँ। फिर ये ट्रेनिंग में चले गए उदयपुर, तो हम दोनों माँ बेटी जैसे रहते थे। हाँ। फिर बहुत 6-7 साल हो गई जब फिर हम इनके साथ रह गए, चले गए।
0: अच्छा, 6-7 साल कहाँ चले गए?
1: वो इनके साथ आ गई, हमारे सास रिटायर हो गई तो यहाँ आ गए। फिर ये मकान बना रखा था, वो यहाँ रहती, मैं फिर उनके साथ रहती, महीना भर रह के फिर वापस आ जाते, फिर यहाँ रहते महीने 2 महीने, फिर थोड़े दिन चले जाते इनके साथ।
0: अच्छा, बीच बीच में आवल जाते, वापस मावल आ जाते?
1: आवल नहीं, ये जहाँ ड्यूटी करते यहाँ।
0: अच्छा, आपके पति देव जहाँ सर्विस करते थे। हाँ। तो कहाँ कहाँ रहे आप?
1: आप रहे तो कहीं जगह, पहले तो ये उदयपुर रहे थे। हाँ, तो 1 महीना उदयपुर रह के आए, जिसके बाद में ये इकबालगढ़ आ गए। इकबालगढ़ से फिर जो अपने कह रहे सिलोत्रा गए, फिर सीधे भिलड़ी गए, भिलड़ी से फिर वो गंदम चले गए।
0: अच्छा, तो इतनी जगह आप रहे फिर?
1: ये तो मास्टरों की बदली होती रहती है, 3 साल में 3 साल में इस मारे।
0: अच्छा, तो आपके पतिदेव तो टीचर थे ना?
1: हाँ, टीचर थे, फिर स्टेशन मास्टर हो गए ना।
0: अच्छा, स्टेशन मास्टर हो गए, तो कैसे? पहले तो टीचर थे, अध्यापक थे, फिर स्टेशन मास्टर?
1: फॉर्म भरा था, फॉर्म भरा, फिर वो आ गई ड्यूटी।
0: अच्छा, तो स्टेशन मास्टर बनने के बाद आप जगह जगह घूमे?
1: हाँ, जगह जगह घूमे, जगह जगह घूमे,
0: और बीच बीच में वापस आप घर पर भी आते थे?
1: हमारे सास को संभालते थे ना फिर तो।
0: तो आपके सास के कभी छुट्टियाँ नहीं होती थी?
1: नहीं होती थी, 15 दिन में रेस्ट पड़ता था।
0: तो फिर वो आपके पास आते थे?
1: वो फिर हमारे पास ही रहने लग गई थी ना। फिर वापिस फिर गुजर गई, जब फिर हम रहने लग गए, बड़े बड़े बगान मेरे चले गए, बच्चे पढ़ने जैसे हो गए, फिर यहाँ आके मकान बना लिया, मकान में यहाँ रहते थे।
0: आपके कितने बच्चे?
1: हमारे 4 लड़के 1 लड़की।
0: अच्छा, तो सभी को पढ़ाया आपने?
1: सभी को, सभी को मैं पढ़ाया।
0: तो जैसे कि मावल आप रहते हो, फिर पढ़ाई कहाँ की बच्चों ने?
1: बच्चों ने यहाँ स्कूल से जब 8वीं तक थी, तो 8वीं तक यहाँ, नहीं 5वीं तक थी, 5वीं के बाद आबू रोड भेजा, आबू रोड पढ़े।
0: आबू रोड ही रहते थे, आबू रोड से डेली?
1: आबू रोड, यहाँ से आबू रोड जाते थे पढ़ने।
0: अच्छा, तो यहाँ से कोई गाड़ी की व्यवस्था करवाई आपने?
1: गाड़ी थी ना, सुबह सिगड़ोन थी, ये पार्सल थी, फिर साइकिल ले दी, फिर साइकिल से आते जाते थे।
0: अच्छा, और अभी तो आप भी दादी नानी बन गए?
1: हाँ जी, हाँ, अभी तो 5 बच्चे हैं, उनके भाई बेटा बेटी है, नवासा है।
0: आपके जमाने में गाड़ियाँ चलती थी?
1: गाड़ियाँ तो चलाते थे ना।
0: नहीं, ट्रेन तो चलती थी, बसें चलती थी?
1: बहुत, आबू रोड से अहमदाबाद तक खूब चलती थी, उदयपुर जाती थी।
0: तो आपके तो कोई दिक्कत नहीं आई इधर उधर आने जाने में?
1: कुछ नहीं, यहाँ से कभी आवल रहते थे जब 5 से उतर के पैदल जाते थे 2-2.5 किलोमीटर।
0: अच्छा, और जैसा कि आप बता रहे हो कि आपकी सास आपको बेटी की तरह रखते थे, आपके भी बहुए हैं, तो आप कैसे रह रहे हो बहुओं के साथ?
1: आपके तो देखो अभी भी ठीक है, भगवान की दया से, और वो तो टेम से टेम, जैसे पहले जैसे टेम तो है नहीं, अब थोड़ा परिवर्तन तो हो ही गया ना, तो भी अपने को तो खाना मिल जाता है, खाना देते।
0: जी जी, खाना तो मिल जाता है, लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन तो खैर होता ही है, थोड़े विचारों की भिन्नता आ जाती है। पर जैसे कि आप शादी करके आए, उस समय भी सास बहुओं के विचारों में तो भिन्नता होती है, तो अभी आपके बहुएं हैं, तो बहुओं के साथ आपका कैसा रहता है? आपको जैसे बेटी बना के रखा, आप अपने बहुओं के साथ कैसे रह रहे हो?
1: अब देखो बेटी बराबर रखते हैं, फिर वो टेट हो जाती है, फिर बोलती है नहीं बोलती, ऐसे हो जाता है, खटपट तो होती चलती है। चलो अब दो तो यार रहती नहीं है, दो गन्ना में वो लड़के डरे भरे तो वही रहती है, वो दो है तो यहाँ रहती है, एक थोड़ी आगे रहती है, आगे की वजह वो एक यहाँ रहती है हमारे पास।
0: जी जी, आप तो प्यार से रहते हो लेकिन सभी के स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। और
1: तो वो उसके एक बच्चा हुआ और वो छोड़ अभी गया छोड़ के, तभी बैठी घर पे 3-3.5 साल हो गई।
0: अच्छा अच्छा, बेटी की शादी कहाँ करवाई?
1: ये फुलेरा, फुलेरा है ना।
0: अच्छा फुलेरा, और उनके एक बेटा है वो यही है?
1: हाँ यही है इसके पास।
0: अच्छा, क्या कारण होगा?
1: आपके कारण क्या पता है, दोनों जने के क्या पता क्या कारण है। पहले एक साल तो अच्छी तरह रही है और फिर जो लड़का हुआ इसके बाद में खटाफटी होने लगी, बोलता नहीं। खटाफटी तो क्या, मारता कुछ नहीं, बोलता नहीं है खाली। अब क्या पता हुआ रहता है, वो बोलती है हम चले तो फिर नहीं मैं यहाँ आ जाऊंगा, वो बोलती मैं यहाँ आऊँ तो फिर मैं वहाँ चले जाऊंगा, क्या पता बार पग होगा उसका। तो फिर एक दिन आके छोड़ के चले गए।
0: तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं?
1: नहीं हमने नहीं कहा,
0: क्योंकि आपके चार बेटे हैं, एकलौती बेटी है, तो भाइयों ने कुछ कहा नहीं कि क्या गलती है जो इसको छोड़ के जा रहे हो?
1: कुछ नहीं बोला। अब भाई तो दो भाई वहाँ है, वो एक दो भाइयाँ हैं तो एक तो कुछ बोलता ही नहीं, वो तो बहुत सीधा है। एक भाई ने बोला क्या बात है, तो बोले कुछ नहीं, वो बोले भाई बोल बोल बोल, बस उनको वो ही है कि वो वहाँ आती है तो वो वहाँ चले जाता है, वो वहाँ चले जाती है तो ये यहाँ घर पे आ जाता है। बात ये है, एक ननद है खाली और ससुराल में कुछ नहीं, एक जेठ है तो वो तो बोलते ही नहीं उनसे, तो शादी में भी नहीं बुलाया।
0: जी, तो अब आप, आपकी बेटी पढ़ी हुई है?
1: हाँ है, मैं बीएड करी हुई है।
0: तो जॉब कर रहे?
1: जॉब ये यहीं जा रही है, स्कूल पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ाती बच्चों को,
0: ट्यूशन पढ़ाते हैं। कहते हैं कि देखिए इस तरह की
1: इंग्लिश स्कूल में जाती है पढ़ाने।
0: जी जी, इस तरह की परिस्थितियाँ आती है तो माता पिता को बेटी को गले लगाना चाहिए।
1: गले तो लगा ही रखा है ना अपना तो।
0: बिल्कुल माता जी, और आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुश है?
1: बस खुश, हाँ खुश है।
0: तो हमारी सुनने वाली माताओं को कुछ कहेंगे, कोई संदेश देंगे?
1: अब मेरे से संदेश दिया नहीं जाएगा।
0: चलो कोई बात नहीं। और शांति जी, आप अपने जीवन के अनुभव से हमारे सुनने वाली बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
2: अपने बच्चों को, बेटी को, बेटा को अच्छे से पढ़ाना, अच्छे संस्कार देना, अच्छे से रखना, उन्हें प्यार देना, लार द्वार देना। जो ससुराल जाएं तो उन्हें ये नहीं आवे कि हमारे मम्मी पापा ने, भाई ने, बहन ने, भाभी ने अच्छे से रखो, प्यार से रखो, तो उन्हें दुख नहीं होना चाहिए।
0: तो शांति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तीजा माता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने अपने जीवन के अनुभव सुनाए और रेडियो मधुबन और सुनने वाले श्रोताओं को इतना समय भी दिया, आपके जीवन के अनुभव भी शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। मावल गाँव की रहने वाली बहने जो तीजा माता जी और शांति जी शर्मा, इन दोनों के जीवन के अनुभव आपने सुने हैं। कहते हैं कि देखिए तीजा माता जी के आज 70+ इनकी उम्र है और इस उम्र में चार बेटे एक बेटी है, बेटी को ससुराल वालों ने बेटी को छोड़ दिया, इनके पास है, लेकिन फिर भी कहती है कि एक नारी कभी नहीं हारती, अपने बच्चों की अच्छी तरह पालना करती है, उन्हें पूरी तरह प्यार देती है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर फोन कीजिए और इस तरह आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन के सभी सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, रेडियो मधुबन पर अभी समय हो रहा है कार्यक्रम सलामे जिंदगी का, और आप जानते हैं कि सलामे जिंदगी के कार्यक्रम में हम आपके पास लेकर आते हैं हमारे समाज के एक सीनियर सिटीजन्स को, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनके जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी यात्रा से हम कौन सी प्रेरणा ले सकते हैं। दोस्तों, समाज में बड़े जो बुजुर्ग हैं वो एक बरगद की तरह हैं, जिनके छांव में परिवार न सिर्फ फलता फूलता है बल्कि शांति, सुख और आनंद का भी अनुभव करता है। उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं, हम उन अनुभवों से सीख लेते हैं और अपने जीवन में कई सारी गलतियां करने से बच जाते हैं। उनके मार्गदर्शन से हमारा जीवन की प्रगति जो है आसान हो जाती है। ऐसे ही एक विशेष अतिथि आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद है, जिनका नाम है अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक्स।
0: सबसे पहले मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं।
1: मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील से हूँ
0: जी,
1: और वर्तमान समय में अयोध्या में ब्रह्मा कुमारीज के जनसंपर्क अधिकारी के रोल में कार्य कर रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, कहना पड़ेगा जय श्री राम।
1: जय श्री राम, ये तो राम की बात, तो राम राज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि पूरे विश्व में राम राज्य हो जाए
0: जी।
1: तो राम के आदर्शों को जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक राम राज्य होना भी असंभव है।
0: हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो पर आप मौजूद हैं। इस यात्रा में हम आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताएं कि कहाँ आपका जन्म हुआ, अपने माता पिता के बारे में, उनसे क्या शिक्षाएं आपने प्राप्त की, तो वो समय कैसा था, ये सब सुनना चाहेंगे।
1: मेरा जन्म जो है 29 अप्रैल 1959 को जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील में हुआ, जहाँ मेरा ननिहाल था।

0: वैसे मैं मूलतः आजमगढ़ जनपद के मेहनगर बाजार का रहने वाला था, लेकिन मेरा ननिहाल होने के कारण मेरे पिताजी जो उस समय पोस्टमास्टर थे और होम्योपैथिक का भी प्रैक्टिस करते थे, और उस समय वो इंटर क्लास पढ़े हुए थे, जो कि उस समय लोग इंटर क्लास को बहुत ज़्यादा मानते थे। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी जो है मेरे आदर्श थे, और पिताजी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हैंडल किए। मैं तो तीन भाई था, लेकिन बड़े भाई के बाद मेरा नंबर था और उससे छोटे मेरे भाई थे। मैं पिताजी के मार्गदर्शन में अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करने में और पिताजी मेरे ज़िंदगी को तराशने में मेरा बहुत सहयोग देते थे। एक बार की बात है, मुझे याद है मैं क्लास 3 में पढ़ता था और पिताजी के साथ ही मैं सोता भी था, तो पिताजी ने मुझे पूछ लिया कि तुम्हारा नाम अखिलेश कुमार है, तुम अपने नाम के अर्थ को जानते हो? तो मैंने कहा, पिताजी मैं तो नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तक नाम के अर्थ में आप नहीं जाओगे तब तक जो है आप जो है उन्नति नहीं पा पाएंगे। तो मैंने कहा कि बताइए। फिर उन्होंने कहा, अखिल लेश जो नाम है उसमें अखिल धन ईश है, अखिल माने संपूर्ण ब्रह्मांड और ईश माने ईश्वर होता है, तो आप सारे संसार के मालिक के बच्चे हो, ये हमेशा याद रखना। ये चीज़ मेरे मानस पटल पर उसी समय अंकित हो गया और मैं उस चीज को अपने जीवन में गांठ बांध लिया था। धीरे धीरे धीरे मेरा उम्र बढ़ता गया और परिवार के कुछ विषम कारणों से मेरी पढ़ाई जो है एट्थ क्लास से ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि उस समय लोग 6 क्लास से इंग्लिश शुरू करते थे और मेरे पिताजी मुझे 3 क्लास से ही इंग्लिश सिखा दिए थे। मैं 6 क्लास में ट्रांसलेशन करता था और क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ भी जो है मुझे क्या हुआ कि बहुत रिस्पांस मिलता था, क्योंकि मेरे साथ के जो भाई बहन थे क्लास में स्टूडेंट, वो सब इतना नहीं जानते थे, और वहाँ पे उसका जो है फिर धीरे धीरे मुझे अन्य कारणों से, पारिवारिक कारणों से मुझे एट्थ क्लास से ज़्यादा पढ़ने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, और मैं पढ़ाई एट्थ क्लास में छोड़ करके फिर इलेक्ट्रॉनिक कोर्स जो है रेडियो का उस समय चलन था, उसका मैंने डिप्लोमा किया। मैं चाहता नहीं था कि ये डिप्लोमा करूं, लेकिन मेरे पिताजी मुझे ये सिखाना चाहते थे कि तुम ज़िंदगी में कोई बेकार मत रहो। मेरा मन जो था वो बिजनेस माइंडेड था, मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और काफ़ी मेरा कपड़े की दुकान भी थी। मैं एट्थ क्लास में ही पढ़ते पढ़ते हफ्ते में मैं 2-3 दिन वहाँ से 250 किलोमीटर दूर कानपुर जाकर के माल ले आता था और बहुत मेहनत करता था 6 क्लास से लेकर के जो है, और जब तक उस समय मैं पढ़ाई तो 8 के बाद छोड़ दिया था, लेकिन मेहनत करके अपने परिवार के लिए मुझे ध्यान रहता था। मैं 6 बजे सुबह से रात के 11 बजे तक दुकान पर बैठता था। संघर्ष, जिसको कहते हैं कि बिना संघर्ष के कुछ प्राप्ति नहीं होती है, तो वो चीज़ मैंने शुरू से ही किया। उसके बाद जो है मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक कोर्स करने के बाद जो मुझे बगल में एक जगह है जहाँ फारिक लोग बहुत रहते हैं, सरायमीर जगह है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो रेडियो वेडियो टेप रिकॉर्ड वकार्ड बहुत बड़े बड़े जो है टेप रिकॉर्डर जैसे चलते थे, बड़ा बड़ा जैसे फिल्म के जैसे रील की तरह चलते थे, वो सब मैं उसमें जो है रिपेयर करता था उनके साथ। तो मेरा ये भी सौभाग्य था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था उसमें, क्योंकि पता नहीं कहीं कहीं बीच में मेरे दिमाग में था कि ये कारीगरी लाइन जो है ठीक लाइन नहीं होती, लोगों को धोखा देने वाला लाइन होता है, तो मैं मन से नहीं करता लेकिन करता था। उसके बाद जो है मैं अपने कपड़े के दुकान पर ही बैठा रहा फिर मेरी शादी हुई 1983 में।
1: तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ देते हुए उनकी आज्ञा अनुसार आपने प्रगति की। माताजी से क्या सीखा आपने?
0: माताजी मेरी बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी मेरी माताजी, लेकिन माँ और पिता ये समझ लीजिए नेक्स्ट गॉड के रूप में माना जाता है
1: जी।
0: तो उनका जो वरदान था उन्होंने मुझे, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बचपन में ही रहता था कि माता पिता की सेवा संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप भगवान को न पूजिए लेकिन माता पिता की अगर आप पूजा करेंगे या उनके इच्छा को पूरा करेंगे तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। इस चीज को मैंने अपने जीवन में गांठ बांधा था। और उसी से एक बात किसी बुजुर्ग ने मुझे कहा था कि बच्चे जब तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा जरूर करेंगे। तो ये बात को मैं अनुभव भी किया बहुत।
1: माता पिता की सहाय से जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्कूल जाना होता है, स्कूल में शिक्षक होते हैं, उस समय की पढ़ाई किस प्रकार से होती थी?
0: ये बात तो बहुत, आपने कहने की बात यह है कि पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। गुरु और शिष्य का जो है क्वालिटी बहुत अच्छी थी।
1: ओके।
0: मैंने देखा है कि जब हम लोग पांचवी क्लास या चौथी क्लास में जब पढ़ते थे तो जरा से भी गलती होते थे तो हम लोग लकड़ी के पट्टी पर लिखते थे। उस समय, वो समय तो अब नहीं है, हम लोग जब कोई दंड देना होता था तो हमारे प्रधान अध्यापक जो मुंशी जी हम लोग का थे तो हम लोग को मुर्गा बनवाते थे और पीठे पीछ में पीछे 10-15 पटरी रखते थे।
1: ओके।
0: और एक घंटा दो घंटा चाहे हम रोते रहें चाहे जो करें हम लोग को उसी तरीके रखना पड़ता था। और बहुत समझ लीजिए कि वो चीजें जो हमने शुरू में कष्ट सहा है अंदर जो शिक्षा के रूप में वो पनप गया है,
1: क्षमता बढ़ गई है।
0: क्षमता हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई।
1: अभी भी आप देखते होंगे आपके जैसे बच्चों के बच्चे हैं, बच्चों को भी आपने पढ़ाया होगा, तो वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है और उस समय की शिक्षा व्यवस्था है, उस दोनों में क्या तुलना करेंगे आप?
0: शिक्षा तो कहने को तो बहुत आगे हो गया है, लेकिन शिक्षा का जो मूल स्वरूप है, जो उनके अंदर आदर्श आनी चाहिए, वो नहीं आ रहा आज के समय में।
1: खाली भौतिक
0: जी प्रोफेशनल हो गया है ये शिक्षा।
1: ओके।
0: शिक्षा वो नहीं है। और एक तरीके
1: क्या,
0: से
1: क्या मिसिंग लगता है
0: जी?
1: क्या मिसिंग लगता है
0: आजकल? हमको लग रहा है कि बच्चे लोग घबरा जा रहे हैं बहुत ज्यादा, शिक्षा के नाम पे इतना उनको थोपा जा रहा है, कहीं कहीं बच्चे डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। पहले ये बात नहीं थी, पहले विषय कम थे, लेकिन उनके जो है कार्य शिक्षा का जो स्वरूप था वो जीवन में बहुत जल्दी धारण होता था। आज वो बात नहीं है, किताबों में लिखा है लेकिन जीवन में नहीं आ पा रहा।
1: क्या बदलाव करना चाहिए उसमें?
0: बदलाव ऐसा क्या है कि देखिए, सबसे पहले बात तो है दुनिया का संस्कार सबसे बड़ी चीज है। जब माता पिता अगर संस्कारित होंगे तो अपने बच्चों को भी वो बना सकते हैं, नहीं तो कहीं नहीं। तो पहला माता पिता ही गुरु होते हैं बच्चे का और उन्हीं से वो सीखते हैं। तो हम तो सबसे अच्छा यही समझते हैं कि सब जितने भी माता पिता हैं वो इस बात को समझे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें एक दूसरे भी करेंगे।
1: तो आदर्श पहले हमारे माता पिता के अंदर ही पड़ेगा।
0: जैसे मेरा सोचना है कि मैं खुद उठूं सुबह 8 बजे और अपने बच्चों से कहूं कि आप 5 बजे भोर में उठ जाइए। बच्चे जो है देखते हैं माता पिता को। आज के समाज में जो यही है कि प्रैक्टिकल जीवन लोग देखते हैं तब धारण कर सकते हैं
1: जी।
0: और आगे जो मेरी जीवन जो गाथा और आगे है वो आप सुनेंगे, उसमें बताएंगे
1: जी,
0: हम
1: जी,
0: आपको
1: जी, जी।
0: कि कैसे हम आगे बढ़ते चले।
1: शिक्षकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब वर्तमान समय के जो शिक्षक है उनको कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: शिक्षक आज का डर रहा है। पहले बच्चों को अगर कोई दंड दिया जाता था तो माता पिता कहते थे गुरुजी बहुत आपने अच्छा किया। अगर आज किसी बच्चे को दंड दे दें तो शायद माता पिता FIR कर देंगे।
1: मेरे बच्चों को
0: कौन है मेरे बच्चे को बोलने वाले, चाहे पढ़े चाहे न पढ़े, आप कौन जिम्मेदार हैं?
1: तो क्या कहीं ना कहीं इसमें मोह का स्थान है, क्यों ऐसा हो रहा है?
0: नहीं, मोह का बात नहीं है। हाँ, अटैचमेंट तो कुछ है ही है। वो सोचते हैं कि मेरा लड़का चाहे जो करे, कोई दूसरा ना बोले, मुझे बोलना होगा तो बोल। लेकिन दुनिया में भी ये है, माता पिता और शिक्षक तीन ही तो हैं। अगर माता पिता फेल हो रहे हैं कहीं तो शिक्षा उनकी जिंदगी को संवार दे रहा है, शिक्षक संवार दे रहा है। तो आप शिक्षक को आदेश सही नहीं देंगे कि आप हमारे बच्चों को सुधारिए, उनको क्या गर्ज है। पहले क्या था कि शिक्षक को देख लेते थे हम लोग रास्ते में, उनका अभिवादन करते थे, चरण स्पर्श करते थे। आज की बात क्या है, शिक्षक को तो ऐसे मजाक बना लिए हैं,
1: वो भय खत्म भी हो गया है और रेस्पेक्ट भी खत्म हो गया है।
0: इस समय का देन है।
1: चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जैसे दोस्त होते हैं, क्योंकि माता पिता और शिक्षक और उसके बाद होते हैं हमारे दोस्त, क्योंकि ये एक सर्कल है जहाँ पर हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा उसका बेस पड़ता है। कि दोस्त आपको याद आते हैं कि जो
0: जरूर जरूर, हम देखिए क्या है, हर आदमी के अंदर हर आदमी का एक दोस्त होता है। और दोस्त की परिभाषा जो होती है, जब मत मिलता है तो दोस्ती होती है। जिसके लिए कहा गया है, शराबी को शराबी दोस्त बन जाता है, जुआरी को जुआरी बन जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति रहता तो आध्यात्मिक वैसा वो खोज भी लेता है।
1: आपके दोस्त कैसे थे?
0: हमारे दोस्त ऐसे हैं कि हमारे दोस्त तो सिक्स क्लास में चार पांच थे जो हमारे सहपाठी थे के समय में, कोई SP है, कोई IAS है, तो ऐसे थे।
1: उनको याद करना चाहेंगे उनके नाम से?
0: संजोग की बात है कि वो कहाँ है, नहीं है। पहले बात आज, पहले तो भाई वो मोबाइल वाइल नहीं था, आज के तो समय में सबको अपना दोस्त का नंबर वंबर सब सिक्स क्लास वन से बच्चे रख रहे हैं, चला गया सब समय वो नहीं है। लेकिन ये कि मुझे याद रहा चेहरा उनका, वो कितना अच्छा मेरा भाई था, दोस्त था। हम लोग कितना आजादी से रहते थे पहले की जी। सब चीजें चेंज हो गई हैं
1: जी। बहुत अच्छी आपकी यात्रा से हम कुछ सीख रहे हैं, चाहे उस समय के बारे में, शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके अपब्रिंगिंग कहें, पालना कहें, उसके बारे में और भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम सलामी जिंदगी, हमारे साथ बने हुए हैं अखिलेश जी। आप अयोध्या से आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे हैं और फिर मुलाकात होगी। आप सुनिए एक छोटा सा गीत, फिर लौट कर आते हैं। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कार्यक्रम सलामी जिंदगी के सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका। अगली कड़ी में हमारे साथ बने हुए अखिलेश जी। अखिलेश जी, बचपन से थोड़ा आगे चलते हैं, युवा काल आ जाता है, युवा काल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं ये विचार भी आ जाता है कि अब हमें क्या करना है। आपने 8वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद की यात्रा बताइए।
2: 8वीं पढ़ाई के साथ साथ मैं घर में आर्थिक अभाव के कारण अपने पिताजी का साथ देता रहा बिजनेस में
1: जी।
2: और क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है उनके अनुकूल नहीं थे और पिताजी मेरे पर भरोसा रख सकते थे
1: जी।
2: ये बेटा मेरा काम देगा, मेरे साथ देगा, और मैंने उनके भरोसे को तोड़ा भी नहीं, उनका साथ भी दिया और आज उनके आशीर्वाद से मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ।
1: पिताजी के साथ बिजनेस करते हुए आपकी यात्रा आगे बढ़ी
2: बिजनेस
1: और
2: में।
1: ये बिजनेस कब तक किया आपने?
2: पहले मैंने कपड़े का बिजनेस किया, वो सन 1973 से 1985 तक
1: जी।
2: 85 के बाद मैं जनरल स्टोर का दुकान खोला और मेरे साथ ये वहाँ पे लेवल लग गया कि जो पूरे मार्केट में कहीं सामान नहीं मिलेगा इनके यहाँ मिलेगा, मतलब नाम मेरा जी, नाम जी। उसके बाद जो है मैं 85 के बाद फिर जो है चेंज किया बिजनेस अपना।
1: अच्छा, क्या बिजनेस किया फिर?
2: मार्केट में मैं लेडीज जो आइटम का जनक माना जाता हूँ, वहाँ पे मैंने महिलाओं की बहुत स्टडी किया। वहाँ परिवेश जो था वो ग्रामीण था, मार्केट का था, तो बहनें वहाँ निकलती नहीं थी मार्केट में। आज किस तरह नहीं है कि परचेजिंग करती हैं। मैंने वो टेक अपनाया वहाँ के। उस समय तो लोग साड़ी भी लेना होता था, 10-5 साड़ी ले जाते थे, घर पे दिखाते थे, तब पसंद कराते थे। आज के समय में तो पैसा दे देते हैं घर वाले, जाओ अपना परचेजिंग कर लो। तो मैंने कहा कि मैं दिखाने के लिए सामान नहीं दूंगा, आइए यहीं पर ले जाइए। मेरा मतलब ये था कि अगर वो एक सामान लेना होगा तो महिलाओं की जो क्रय शक्ति है बहुत अच्छी होती है, परचेजिंग पावर महिलाओं के अंदर है, जेंट्स नहीं खरीदता, ये मैंने अनुभव किया है ये
1: जी।
2: तो मेरा मकसद यही था कि वो आएंगी तो जितना अपने पति जी से छुपा के पैसा वैसा रखी होंगी वो सब खरीदेंगी तो मेरा सेल बढ़ जाएगा
1: और 4 चीजें खरीदेंगी,
2: एक के बदले में 5 ले जाएंगी। ऐसा सोच के मैंने कहा कि मैं दिखाने के लिए नहीं दूंगा, आपको आकर के ही लेना है। और उसमें मैं कामयाब भी रहा। मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बहनों के लिए आता है प्यूमिक स्टोन, जो पत्थर का जमावटी होता है, वो सफाई करते हैं शरीर का अपना।
1: okay.
2: तो उस समय वो 36 रुपए दर्जन आता था, एक पीस 3 रुपए का मिलता था, मेरा देखिए मैंने 30 रुपए का एक पीस बेचा उसको। मैं बिजनेस सफल बिजनेसमैन माना जाता था वहाँ पे
1: जी।
2: और आज भी जो है बिजनेस तो मैं नहीं करता लेकिन लोग मुझे फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा कि ये बहुत कामयाब थे यहाँ के,
1: इन्होंने कैसे किया, हम भी ऐसा करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बिजनेस के लिए हमें एक दूरदर्शी होने की आवश्यकता है और एक उसके लिए वातावरण भी क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई आता है हमारे स्टोर पर तो वो उसके लिए उसकी सुइटेबल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जो हम और भी उनको ऑफर कर सकें कि और भी वो खरीदारी करें।
2: मैंने स्लोगन एक कहीं पढ़ा था, जहाँ न जाए रेलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। बिजनेस के लिए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती है वहाँ मारवाड़ी पहुँच जाते हैं। और भी मैंने क्योंकि

0: मेरा बिजनेसमैनों से बड़ा संपर्क था।
1: ओके।
0: वाराणसी में आज भी जालान एंड सन्स है, उनके मालिक से मेरा बहुत अच्छा संबंध, मुझे बहुत मानते थे कपड़े के बिजनेस में।
1: तो बनारस से आप सामान खरीद?
0: बनारस से भी बहुत मेरा माल आता था, कानपुर से भी आता था, बॉम्बे से भी आता था। उन्होंने कहा, एक स्लोगन मुझे कहा, असफलता ये सिद्ध करती है कि कार्य ठीक ढंग से नहीं किया गया। श्रोतागण ये नोट कर लें, ये चीज बहुत काम की चीज है कि असफलता ये सिद्ध करती है कि काम ठीक ढंग से नहीं किया गया।
1: कई बार हम लोग दूसरों को दोष देते हैं, अपने को दोष दे देते हैं, लेकिन ये एक मंत्र हम अगर मन में ठान लें, कहीं ना कहीं ये सफलता पाने के लिए हमारी एक अच्छी सीढ़ी साबित हो सकती है।
0: और भी मैं स्लोगन बहुत जगह, मेरा नेचर सीखने की नेचर है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा कुछ न कुछ सीखता रहूंगा, ये मैंने अपने अंदर बांधा हुआ है, गांठ कर रखा। और जगह मैंने देखा, एक जगह लिखा था या सुना था मैंने कि यात्रा रेल की अच्छी होती है, सब्जी सरसों की तेल की अच्छी होती है, और दुकानदारी मेल की अच्छी होती है। फर्नीचर आप चाहे जितना अच्छा लगा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास मेल नहीं है तो सेल नहीं होगा। ये सब चीजें मैंने जीवन में रखा अपने
1: जी,
0: और एक एक चीज को, एक भी कस्टमर मेरा लौटता नहीं था। मैं ऐसे मैनेज करता था कि कस्टमर जब तक खड़ा रहे उसके पास आ जाएगा सामान, ऐसा सेटिंग मैंने था। सेल्समैन थे, बहुत एक्सपर्ट रखते थे। कार्य करने का ढंग होता है तो सफलता मिलती है ना।
1: बहुत अच्छी बात है हमारे दोस्त, मैं समझता हूँ कि जब ये आपकी बातों को सुन रहे होंगे तो जरूर कुछ नोट्स भी ले रहे होंगे, क्योंकि ये एक एक वाक्य जो है उनके जीवन को पलटने वाला है। जैसे आपने, आपको हम आज देख रहे हैं कि 67 आपकी एज है, लेकिन कहीं से भी आप, वो उम्र का प्रभाव आप पर नहीं दिखता है, चाहे वो मानसिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो, आध्यात्मिक रूप में हो। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है रेडियो मधुबन पर अखिलेश जी, अयोध्या से आए हुए हैं, और अयोध्या नगरी के जो वाइब्रेशन है वो भी हम उनसे महसूस कर रहे हैं कि कैसे एक आध्यात्मिक विचार, भारतीय मूल्यों के प्रति उनका समर्पण भाव और सर्व के प्रति एक कल्याण की भावना उनकी बातों में समाई हुई है। एक निस्वार्थ भाव से वो अपनी अनुभवों को हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अखिलेश जी, जैसे शादी के पड़ाव पे जाना हुआ, उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन समय हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लें। दोस्तों, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, लौट कर आते हैं इस गीत के बाद।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर रेडियो मधुबन। दोस्तों, सलामी जिंदगी के इस कार्यक्रम में तीसरे पड़ाव में हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश जी रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर, और आइए आगे बढ़ते हैं। उनकी जीवन की यात्रा के बारे में जान रहे थे, तो अखिलेश जी जानना चाहेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। आपका विवाह किससे हुआ और क्या आप दोनों का समन्वय रहा, तालमेल रहा परिवार को आगे बढ़ाने में?
3: मैं जब 25 साल का हुआ या 24 साल का था
2: जी,
3: क्योंकि मेरी शादी जो हुई 17 नवंबर 1983 को हुई और मेरा 29 अप्रैल को डेट ऑफ बर्थ है, तो शादी भी मेरी जिनसे हुई उनके पिताजी बहुत परेशान थे। आपको बता दूं, मैं 8 तक पढ़ा हूं, लेकिन मेरी जो धर्म पत्नी जी हैं वो ग्रेजुएशन 1980 में की हैं। सोचने की बात है कि जो लड़की ग्रेजुएशन की है और उसकी शादी किसी 8वीं पास लड़के से हो तो क्या होगा। लेकिन जोड़ा तो भगवान के यहाँ से बन के आता है, दुनिया मानती है और हम भी। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी लड़की के माता पिता पूरा संसार खोज डालते हैं और उनके बगल में ही उनका जोड़ा रहता है, ये हमने देखा भी है। हम इतने लकीएस्ट हैं, भाग्यशाली हैं, जो हमारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी जी हैं वो सेम मेरे समकक्ष विचार की हैं।
2: अरे वाह, क्या नाम है उनका?
3: उनका नाम है उषा जी। वो मिर्जापुर जनपद की उत्तर प्रदेश में विंध्याचल के बगल में एक शक्तिपीठ है, मिर्जापुर की रहने वाली हैं और हम लोग गोल्ड इसमें स्वर्णकार हैं। उनके पिताजी बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे सोने के जेवर बनाने के, और उन्होंने बहुत परख करके मेरी शादी किया था। मैं 2-3 मिनट का उसका वाकया बताऊंगा कि मेरी शादी कैसे हो। बृहस्पतिवार के दिन मेरे शाहगंज मार्केट में दुकान बंद रहती है और मेरे पिताजी अपना अकाउंट का कार्य कर रहे थे और मैं दुकान पर उनके साथ बैठ करके बैठा था कि कोई कस्टमर आएगा तो मैं बेचूंगा। भाई उसमें मुझे तो मेहनत करके पैसा कमाने का धुन चला था। ससुर जी जो आए बृहस्पतिवार को, उषा जी के फूफा जी के साथ आए थे। फूफा जी बहुत परेशान थे, कई जगह तलाशते तलाशते थक गए थे। उन्होंने कहा चलिए हम एक लड़का दिखाते हैं आपको। पैसा वैसा तो उनके पास नहीं है लेकिन लड़का जो है बहुत मेहनती है, ये शब्द उन्होंने बोला था। वो समझ लीजिए बहुत आगे जा सकता है, हमने परखा उसको। तो वो लेके आए, हमारे ससुर जी ने कहा कि भाई साड़ी दिखाओ मुझे। मैंने कम से कम 200-300 साड़ियाँ दिखाई, नहीं पसंद आया उनको। टालते जा रहे थे, मेरी सहन शक्ति को परख रहे थे, कहें कि बाबू। मैंने कहा बाबू जी कैसा चाहिए आपको? तो कहें कुछ मुझे आइडिया बताइए, मैं और दिखाऊँ। मेरे पास कम से कम 500-600 साड़ियाँ थीं और अकेले था मैं उस दिन, स्टाफ नहीं था कोई। तो सारा मैंने दिखाया तो उन्होंने अंत में यही कहा कि बेटा मुझे साड़ी तो लेना नहीं था लेकिन मैं 5 साड़ी तुम्हारी मेहनत से प्रभावित होकर के ले रहा हूँ। उन्होंने लिया और इसी सब दरमियान जो है ऐसा है, मेरे पिताजी कहें कि जाओ जलपान उलपान ले आओ, तो मेरी छठी इंद्रियां समझ गई कि ये मेरी शादी के लिए आए। तो मैंने कहा ठीक है चलो
2: जी।
3: अच्छा, मेरी शादी और कहीं तय हो रही थी तो पिताजी जाने वाले थे लड़की देखने। वो इनके फूफा जी मेरे पिताजी को भी फूफा जी कहते थे।
2: अच्छा।
3: फूफा जी आप ऐसा कि ये लड़की भी देख लीजिए और जो आप देखने वाले वो भी देख लीजिएगा, तो जो आपको पसंद आएगा वो करिएगा, मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। मेरे पिताजी गए, मेरी माताजी से बात किए, कहें चलिए देख लें। जब मेरे पिताजी और मेरी माताजी मेरे ससुर जी के साथ ही उसी दिन चले गए देखने, लेकिन ये नहीं समझ पाई, मिर्जापुर चले गए। ये समझ नहीं पाई, जब पहुंचे तो समझ नहीं पाई क्योंकि उनके बगल में विंध्याचल है, देवी का स्थान है, कोई घूमने उमने दर्शन उर्शन करने आई होंगी। बहुत मैं गर्व के साथ कहता हूँ उषा जी भोजन बनाने में बहुत महारत हासिल है उनको
2: जी।
3: भोजन वो 600-600 लोगों का बनाती थी।
2: 600?
3: हाँ, बना सकती हैं, अभी भी बनाती हैं।
2: ओके।
3: अयोध्या की जो सेंटर पर भी बनाती हैं वो, तो वो बहुत उनके अंदर एक गुण था पाक कला का, तो वो मेरी माता जी को बना के खिलाई। तो मेरी माता जी कह रही मेरे सर में दर्द है, तो वो तेल लेकर के उनका मालिश भी कर दी। अब मेरी माता जी कहीं मुझे कहीं देखना नहीं है, मुझे इसी लड़की से शादी करना है, और शादी मेरा हो गया। मुझको बहुत ज़्यादा जेवर ओवर भी मिला मेरे ससुर जी से, जो लगता उनके लिए मिला, मुझे पहनना नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी कह रहे थे मैं पैसा नहीं खर्च करूँ, मैं जेवर नहीं दे पाऊंगा, आपको अगर जो देना तो अपनी लड़की को दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे शादी हो गई और जीवन हमारा बहुत ही सुंदर।
2: जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं साथ ही, दोनों पहिए पति और पत्नी अगर एक साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन की गाड़ी बहुत ही स्मूथ रहती है, बहुत आनंद में रहती है।
3: ऐसे भी सुना गया है
2: जी
3: कि अगर किसी गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर का लग जाए और एक स्कूटी का लग तो गाड़ी कैसे चले, इसलिए दोनों पहिया समान रहना चाहिए।
2: तो ये भाव जो आपका एक रेस्पेक्ट और प्रेम का भाव है अपनी धर्म पत्नी के लिए, वो भी बहुत सलाम करने लायक है। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि पारिवारिक जीवन में कौन से ऐसे मूल्य हैं, जीवन मूल्य जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में आजकल कई तालमेल बिठाने का जो एक समस्या है वो देखते रहते हैं।
3: परिवार में सबसे बड़ी बात होती है अगर एकता रहेगी तभी वो परिवार सुंदर बनेगा
2: जी,
3: और उसके लिए सबसे बड़ा गुण होना चाहिए हर सदस्य में, कोई कुछ कहता है तो उसको सुनने का मादा रहना चाहिए उनके अंदर। मेरे जैसे दो बच्चे लड़के थे और एक लड़की भी थी, मैं ये कहूँगा कि मैंने बच्चों को नहीं पाला है लेकिन उषा जी ने बहुत अच्छा उनको संस्कार दिया,
2: संस्कार,
3: और सारे बच्ची और बच्चे, मेरी बेटी भी शादी हो गई 40 साल की इसमें है, वो भी योगा टीचर है, योग धारा प्रवाह जो है एक ऑनलाइन कोर्स कराती है लोगों को BHU से, और मेरे बेटे भी मास कम्युनिकेशन किए हैं।
2: बेटे का नाम क्या है?
3: बेटे का नाम सौरभ है और बेटी का नाम शर्मिष्ठा है। छोटे बेटे इसमें संसार में नहीं है, का नाम जो है गौरव था, वो है नहीं, 20 साल की उम्र में उसने शरीर छोड़ दिया था। बेटे और बेटी दोनों मेरे जीवन में बहुत हमारे साथ सहयोग में थे और अपने इसमें जहाँ भी हैं वो लोग बहुत कामयाब हैं, आगे हैं।
2: बहुत अच्छी बात है। तो वैल्यूज के बारे में जैसे आपने बताया, ऐसे ही जैसे बच्चों को पालने के लिए आप जो वर्तमान हमारे श्रोता सुन रहे हैं जिनके छोटे बच्चे होंगे या बड़े बच्चे होंगे, तो किस चीज़ को हमको धारण करना चाहिए और सक्सेस कैसे मिलेगा बच्चों को अच्छा बनाने के लिए?
3: सबसे पहले अगर बच्चे से चाहते हैं कि वो हमारा बात माने, और जो चीज़ हम चाहते हैं कि वो हमारा माने, तो सबसे पहले अपने जीवन में लाना जरूरी है,
2: स्वयं के जीवन
3: जी।
2: कोई ऐसा अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप अपने जीवन से?
3: हमारे जीवन में
2: कोई ऐसा समय आया हो जब बच्चों के लिए कुछ आपको लगा हो कि अच्छा ये कैसे करना है, फिर आपने अनुभव किया हो कि नहीं बच्चों ने देखो उस बात को माना, समझा, आगे बढ़ा, जीवन में धारण किया?
3: मैं तो आश्रम में ब्रह्मा कुमारीज का सदस्य 34 वर्ष से हूँ, लेकिन ये कोरोना काल के पहले जो मेरी शॉप थी वो किराए पे थी, तो बेटे देख रहे थे क्योंकि मैं निर्बंधन होकर के आश्रम की सेवा करता हूँ अयोध्या में, और उषा जी भी करती हैं। बच्चों ने कहा कि पापा मुझे दुकान लेनी है ये, तो मैंने कहा कौन सी, जो जिसमें हमारी शॉप थी। तो उस समय मैं कोरोना के एक दो साल 2017 में दुकान को मैं 21 लाख में तय हुआ, उसने तय किया, मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन परमात्मा मेरे साथ था, इसलिए जो मैं अनुभव हुआ मुझे एक दिन में हमारा बैंक ने जो है लोन पास बिना कमीशन के एक दिन में, हम और उषा जी गए, मैनेजर उठकर खड़ा हो गया, कहिए बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं आपको
2: जी।
3: जो हम ड्रेस में थे अपने बाबा के, और इस आत्मिक स्मृति में उसको पहले हमने कहा कि बाबा ये आपका बच्चा है और मेरी मदद के लिए आपने इसको यहाँ पर भेजा है। उसने कहा कि अब मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपया चाहिए और मेरा लोन सैंक्शन, कहे कि आपको एक हफ्ते में पैसा मिल जाएगा
2: जी,
3: और मिला भी। उसके बाद 21 लाख में तय किया था, पार्टी जो थी मेरा दोस्त था वो जो इसको 15 लाख दिया, 6 लाख बाकी था, मैंने कहा कि 2-1 साल समय दे दो, कहे कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम करिए, अब दीजिएगा मुझको, और उसने दिया भी। फिर बनवाने की बात थी तो मुझे बनवाने के लिए बाबा का सहयोग मिला, और मैंने उनको कहा कि देखो बन रहा है, ये एक कहावत है ना, बाढ़े पूत पिता के धर्म में, अगर माता पिता धर्म काम करेंगे तो बच्चों को भी तकलीफ नहीं हो सकती है, कभी नहीं तकलीफ होगी, ये हमने अनुभव किया। तो हम लोग जो है ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे दूर दूर तक रिश्तेदार भी सुखी हैं। हमारा परिवार तो छोड़ दीजिए, रिश्तेदार भी सुखी हैं। और आज के कंडीशन में वो रिश्तेदार लोग कहते हैं कि हमारे घर में 5 मिनट के लिए आ जाइए, हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं।
2: एक बहुत ही आदर्शवादी दृष्टिकोण आपने अपने जीवन के रखा और इसके कारण आपके जीवन में अपने आप से अच्छे गुणों का समावेश हुआ, अच्छे कर्मों का समावेश हुआ, बहुत लोगों को आपसे सुख मिल रहा है और उसकी दुआएं जो हैं आपको और भी प्रेरित करके आगे बढ़ाती रहती हैं, ये हमें अनुभव हो रहा है। आगे फिर आपके वर्तमान जीवन के बारे में बात करेंगे। समय हो रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लें, हमारे श्रोताओं को एक गीत सुनने दें और फिर लौट कर आएँ। और जब लौट कर आएंगे तो जानेंगे कि आपका जो वर्तमान जीवन है, एक 67 ईयर का उम्र और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता होगा, बहुत सारे लोगों का आप ध्यान रखते हैं, तो जिस उम्र में आपका ध्यान रखने के लिए लोग चाहिए होते हैं उस समय आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, तो ये कमाल आप कैसे कर रहे हैं ये जानेंगे। तो दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी। क्यों ना हम उसे पढ़ाएं?
2: इतना तो हम कर सकते हैं।
3: दोस्तों हम फिर लौट कर आ गए हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी में और आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद हैं अयोध्या से पधारे हुए अखिलेश जी। अखिलेश जी के जीवन के अलग अलग पड़ावों के बारे में बात की हमने, उनका बचपन, युवा काल और वैवाहिक जीवन और बच्चों के पालने का समय, सब चीज़ों को हमने सीखा, समझा, सुना। अब चलते हैं आगे। अखिलेश जी, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं अभी रेडियो मधुबन, वो अलग अलग उम्र में होंगे अपने जीवन के। हर एक का समय आना है जब वो एक सीनियर सिटीजन का रूप लेगा, बुजुर्ग हो जाएगा, और उससे पहले क्या ऐसी तैयारी करें जो उनका जीवन भी आपकी तरह ही श्रेष्ठ रहे, चाहे वो उनके शारीरिक रूप से जैसे आप स्वस्थ हैं और मन से तंदुरुस्त हैं, वो तो सब हमारे श्रोता आपको सुन ही रहे हैं, जीवन भी आदर्शवादी है और उस आदर्श पे आप अन्य लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जो अभी आपसे कम उम्र के लोग हैं, उनको बुजुर्ग होने से पहले कैसा अपना जीवन रखना चाहिए?
4: देखिए, इस समय वर्तमान में जो है जीवन में दुख का मेरे समझ में एक ही कारण है, हमारी जीवन शैली खराब हो चुकी है, लाइफ स्टाइल। जीवन शैली खराब होने से ही दुख है। अब थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको
3: जी।
4: देखिए, हमें जब सोना चाहिए तब हम जागते हैं और जब जागना चाहिए उस समय तक हम सोए रहते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो जानबूझकर हम खाते हैं। जो खाना चाहिए वो हमारे लिए महंगा होता है। जो देखना चाहिए वो हम नहीं देखते हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो हम छुप छुप के देखते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को परेशानियों में डाल दिया है, दुखी बना दिया है। और जब से मुझे बाबा मिले हैं 1991 15 मई से, मेरे जीवन में उजाला आ गया, मुझे जीवन जीने की कला मिल गई और मैं उसी जीवन जीने की कला को अपने जीवन में ला करके आज आपके सामने 67 साल की उम्र में भी एकदम लोगों को प्रेरणा देने के काबिल मैं हूँ। बाबा के ज्ञान को अप्लाई करके लाइफ में और लोगों को देता हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे सिखाया है कि बच्चे तुम्हें देवता बनना है, सिर्फ देना है, दैवी मूल्यों को, गुणों को देना है उनको, जो भगवान के खजाने हैं। मैं उनका बच्चा हूं तो इसलिए मेरा भी अधिकार है, मैं भी वही बिजनेस करूंगा, वही दूंगा, जैसे मेरा पिता बाबा ज्ञान का सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मेरे जीवन से ज्ञान लोगों को मिले, मेरे जबान से न मिले, मेरे जीवन को देख करके उनको प्रेरणा हो कि मुझे भी ऐसा जीवन जीना है। मेरा बाबा प्यार का सागर है, मुझे प्यार देना है। ये नहीं देखना है कि ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, ये क्या है क्या नहीं है, सब मेरे आत्मिक भाई हैं। मैं तो मेडिटेशन करने का एक भी तरीका ये भी अपनाया हूँ, मैं सड़क पर जब चलता हूँ, बाबा मुझे आपने बेपनाह सुख दिया है, शांति दिया है, दौलत दिया है। मेरे भाई लोग जो कमजोर हैं, जिनको नहीं है, उनको मेरे हिस्से में से दीजिएगा आप। मैं इस तरीके से राह चलते भी योग करता हूँ और हमेशा रहता है कि मैं किसके काम आ जाऊँ, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ये मैं दिन भर सोचता हूँ। और जहाँ तक होता है मैं सहयोग की भावना रखता हूँ। सहयोग के द्वारा ही मुझे बाबा ने सिखाया है, बच्चे दुआएं देना है, दुआएं लेना है। थीम लेकर के मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ और बढ़ाता रहूँगा। मुझे विश्वास है कि बाबा मुझे अपने नैनों पे रख करके मेरी इच्छा अनुसार सब कार्य करते हैं और करेंगे, मुझे अपने साथ ले चलेंगे।
3: जी बिल्कुल, कहा भी जाता है कि जो देता है वो देवता है, और इसी भाव को आपने अपने ध्येय वाक्य बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। देने का ही भाव रखते हैं और जो देता है उसके लिए भगवान भी उसको देने के लिए हर चीज़ मुहैया भी करवाता है, चाहे वो शक्ति है, सामर्थ है, साधन है। इसी प्रकार से आप अनेकों की सेवा कर रहे हैं, ये मैंने भी अपने स्वचक्षियों से देखा है कि किस प्रकार से राम जन्मभूमि में राम जी के दर्शन करने के लिए जब पधारते हैं तो आप उनको गाइड करना, स्वागत करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनके पधारने से लेकर जाने तक हर सुविधाओं का ध्यान रखना, और इसके माध्यम से बहुत सारी दुआएं आप कमाते जा रहे हैं, ये भी मैंने देखा है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए

0: हाँ ये बता रहे हैं। देखिए जो मैं दुआएं कमाता हूँ ना, उसे अभी हाल की बात है, मैं अपने जोनल ऑफिस जा रहा था मोटरसाइकिल से और हल्की बरसात हुई, एक भाई जो चला रहा था वो स्लिप कर गया। मुझे अनुभव हुआ कि बाबा मुझे अपने गोद में ले लिया है, मैंने अनुभव किया वो
1: जी।
0: कहीं मुझे दर्द नहीं हुआ, मेरा कपड़ा गंदा हो गया था, एक दिन पहले मैंने कपड़ा बदला था, वो कपड़ा पहन करके फिर गया मैं बनारस तक। सोचिए पहले जौनपुर से जाना था, 70 किलोमीटर था, मैंने कहा कि नहीं अब निकला हूँ तो चलूंगा। बल्कि हमारी जोनल निशा सुरेंद्र दीदी पूछी कि कैसे आना होगा, मैंने कहा दीदी ड्रामा मुझे ले आया यहाँ पे आज। वो फिर जब मैं वहाँ से लौट के अयोध्या आया तो रास्ते में कहीं दर्द नहीं। अयोध्या में जब सेंटर पहुँचा, अपने कमरे में गया तो कुछ दर्द हुआ। मैंने कहा बाबा आप तो बैद्यनाथ हो ना, अपने बच्चे का दर्द कैसे देख रहे हो आप। उस समय मुझे टच हुआ कि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके वहाँ सिकाई कर दो अपने हाथ से, कपड़ा लेकर के रुमाल से, और उसके बाद दूध में हल्दी डाल के पी लो। और एक तेल था मेरे पास जो है, एक फिनिश नाम का तेल था, उसको लगा के सो जाओ, सुबह तुम ठीक हो जाओगे एकदम। मैं सुबह उठा एकदम कहीं कुछ नहीं लगा, मेरे दाहिने हाथ में खून जम गया था, मुझे दिखाई नहीं दिया था। 2-3 दिन बाद लगा मुझे यहाँ काला हुआ है धीरे। मैंने कहा बाबा ये क्या हो गया, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे तुम जब गिरे थे ना वैसे घूम गए थे तो खून वहाँ पे रुक गया था, चिंता की बात नहीं वो सब सही हो जाएगा। लेकिन बाबा मुझसे इसे बात करते हैं ऐसे, तो मैंने कहा ठीक है बाबा तो सही हो गया अपना। ऐसे मेरे अनेक कारण हैं। मेरे छोटे बेटे का मर्डर हुआ था 2008 में, 20 साल का था, और मुझे एक आंसू नहीं गिरा था। मुझे उस समय याद था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होगा, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये कहाँ मरती है। तो याद रहा एक भी मुझे आंसू नहीं आया था।
1: जब भारत में भगवान ने जो सनातन का ज्ञान दिया हुआ है, इसमें आत्मा का जो रहस्य बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया कि देह को हम धारण करते हैं और फिर समय पर त्याग करके चले जाते हैं। दोस्तों कई चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हो चुकी है, जो लौट कर वापस नहीं ठीक हो सकती है, तो वहाँ पर यह आध्यात्मिक ज्ञान बहुत काम आता है। तो जैसे आपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बताया, ये मन को भी ठीक रहना बहुत आजकल महत्वपूर्ण है। आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ाव है और वहाँ पर आप सेवाएं दे रहे हैं 67 साल की उम्र में भी, और आपकी बातों से हमारे श्रोता तो बहुत कुछ देख पा रहे होंगे आपका जीवन। आध्यात्मिकता का क्या महत्व है, और जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं वो कैसे इस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में आपकी तरह अपना सकते हैं।
0: देखिए हमारा ये मानना नहीं बल्कि दुनिया का मानना है कि जहाँ सारी शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं वही आध्यात्मिकता की शक्ति काम करती है। और ब्रह्मा कुमारी इसका जो 21 विंग है उसका मूल उद्देश्य यही है कि अपने कार्य व्यवहार में आध्यात्मिकता की शक्ति को लेकर के कामयाब बने जितने भी वहाँ पर हैं। इसीलिए यहाँ पे हेडक्वार्टर में उसका प्रोग्राम होता रहता है और लोग उसका लाभ लेते हैं, और बहुत लोगों ने अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है, बहुत ऊंचाई पर गए हैं
1: जी। आप आध्यात्मिकता को कैसे व्यवहार में लाते हैं अपने जीवन में।
0: हमारे यहाँ जो है क्या है कि सुबह देखिए ऐसा है कि हमारी जो सिस्टम है, हम भोजन बहुत पहले करते हैं क्योंकि शरीर के लिए सोने के 2-3 घंटा पहले जो है हमें भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि पचता है, टाइम लगता है। और दुनिया का एक परेशानी का कारण ये भी है कि भारत में सारे फंक्शन रात में होते हैं, सारे फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिश बनते हैं, वो खा करके लोग परेशान होते हैं, पछता है नहीं और दूसरे दिन नुकसान करता है। तो हमारा तो मानना यही है कि नाश्ता करो राजा की तरह, दोपहर का भोजन मिडिल क्लास करो और रात का भोजन कंजूस की तरह करो, तब आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। हमें याद रखना चाहिए कि हम जीने के लिए खा रहे हैं, न कि खाने के लिए जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे याद रहता है, मैं अपना जो है कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखता हूँ और मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे मैंने 2 महीना पहले चाय छोड़ दिया, क्योंकि बाबा मेरे अंदर दृढ़ संकल्प का पावर जगाए हैं, तो उससे मैं बहुत जो है कामयाब हो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि आज नहीं पिया तो दोस्त पी रहे हैं तो वहाँ पी लिया, ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल, एक एग्जाम्पल, रोल मॉडल मुझे खाना है लोगों को, क्योंकि दुनिया आज जो है ज्ञान नहीं सुनना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है आपके अंदर क्या है। बाबा ने मुझे कहा है ना कि तुम अपने चलन और चेहरे से दुनिया को बदल करके दिखाओ।
1: आपका सुबह कितने बजे शुरू होता?
0: मेरा सुबह 2:30 बजे उठता है।
1: 2:30 बजे उठता
0: जी, 2:30 बजे 4 घंटा के अंदर नींद पूरा हो जाता है मेरा। सबसे पहले मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करता हूँ। हाँ, एक बात और कह रहा हूँ, देखिए मल्टीमीडिया मोबाइल का लोग यूज करते हैं, मेरा सुझाव है कि शाम को वो कम से कम 7 बजे के बाद मोबाइल न छुएं तो अच्छा है। मोबाइल बहुत बड़ा कारण है, इसकी जद में बहुत लोग हैं, ज्ञान में भी हैं अज्ञान में भी हैं। मुझे लगता है कि आवश्यक चीज ही इसका उपयोग करें तब, और कम से कम, क्योंकि इसकी मोबाइल की माया बहुत बड़ी खराब हो गई है, ये जो माया पकड़ ली है अच्छे अच्छे लोगों को। तो मेरा सुझाव यही है कि मोबाइल कम से कम यूज करें तो अच्छा है, आवश्यकता के अनुसार, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जा रहा है। आजकल छोटे बच्चे तो मोबाइल की बीमारी ऐसा हो गया कि उनका अंग ही काम नहीं कर रहा है,
1: भोजन भी नहीं करते मोबाइल के बिना।
0: हाँ, मोबाइल जो है वो देखो ऐसा भी है कि आने वाले समय में, मैं तो उसका एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ टेलीपैथी का, हम एक दो दोस्त हैं वो कर रहे हैं, तो 20% तक आ गए उस पर, जैसे सोचते हैं तो उनको भी
1: विचार मिल जाएगा।
0: हाँ, वो यही काम करेगा, क्योंकि नेटवर्किंग जब फेल होगा तो ये टेलीपैथी काम करेगा, और इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में सोलार काम करेगा, क्योंकि सब फेल होना ही है, बाबा ने कहा है और कि परमात्मा ने कहा है वो पूरा हुआ है, हो रहा है। 81 में परमात्मा ने कहा था, बच्चे एक दिन तुम्हारा राष्ट्रपति भवन घर बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, वो हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसे की परमात्मा के ऊपर बहुत विश्वास है, और मैं यही कहूंगा कि परमात्मा की बातों को आप धारण करके अपने जीवन बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत लाइट हो रह सकते हैं, डबल लाइट रहेंगे आप।
1: बहुत ही प्रेरणादायी बातचीत रही आपसे अभी तक, और एक पूरे जीवन को एक घंटे के अंदर संभाल लेना तो संभव नहीं है, और समय की घड़ी हमको इशारा दे रही है कि हम इस कार्यक्रम से विदा लें, क्योंकि फिर समय पर अगला कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आप आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आए और अपने जीवन के जो अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं उनमें से कुछ हमारे श्रोताओं के सामने आपने प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ कि ये श्रोता जो सुन रहे हैं उन्हें भी, और मैं जो सुन रहा हूँ मुझे भी बहुत सारी चीज़ें एक मार्गदर्शन के रूप में, जीवन दर्शन के रूप में मुझे प्राप्त हुई हैं, और दोस्त भी हमारे जो सुन रहे हैं वो भी इसे कहीं ना कहीं नोट करेंगे, अपने मन में करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे जो आज की बातचीत से उन्होंने समझा, और उसके द्वारा अपने शारीरिक, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के जीवन को, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अखिलेश जी को, आज अयोध्या भूमि से हमारे पास पहुंचे हुए थे, और हम उनका धन्यवाद करते हैं और विदा लेते हैं रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम सलामे जिंदगी से। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
2: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
3: Namaskar and welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
4: Om Shanti.
3: Welcome to Going Beyond.
4: Thank you so much.
3: Sister, the other day I was speaking to somebody and they said, well, we like what you say, but they say either the wife sometimes or the husband or the parents, they have a question, very strong belief that spirituality takes away the love from each other. And once we fall in love with God, then we do not like the world. We are away from business.
4: It's not necessary between men and women. I've also seen it between parents and children. A lot of children also feel that when their parents start going or getting involved in any spiritual organization, and then you're taking out time to go there to study, and then probably taking out time to go and take part in the activities of an organization. I've seen a lot of children say that my parents have changed, or of course a spouse say that my husband or a wife has changed, and they're not very happy with the change. and mostly the children.

0: आए हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार सभी सुनने वालों को, और आज फिर से एक नए गेस्ट के साथ, एक युवा चेहरे के साथ हमारे साथ हैं वैष्णवी। आपका फेवरेट प्रोग्राम है जुनून, फिर से एक जुनूनी हमारे साथ। जुनून क्यों होना चाहिए, ये जुनून वैष्णवी को कहां से आया, आइए सुनते हैं वैष्णवी की कहानी। और आप हमें सुन रहे हैं 107.8 FM पे माउंट आबू की वादियों में, और हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आप हमें लाइव सुन सकते हैं। हमारे साथ वैष्णवी जी हैं, और वैष्णवी जी जयपुर से आती हैं, एक यंग ग्रेजुएट हैं, परंतु इनके अंदर एक जुनून है, और वो जुनून कहाँ से आया, आइए उनसे जानते हैं। वेलकम वैष्णवी जी हमारे प्रोग्राम जुनून में।
2: नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं रेडियो मधुबन और शरद सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने दो शब्द रखने के लिए, और मुझे बताने के लिए कि मुझमें जुनून कहाँ से आया। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, और मेरे में ये जुनून आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मैंने अपने पापा से ये जुनून लिया है कि माय फादर रविशंकर धाबाई, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि आपको ये सोशल एक्टिविस्ट या सोशल सर्विस में जाना चाहिए, आपको सोसाइटी के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, कोई भी ऐसी चीज़ करें जिससे कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो या सोसाइटी का बेटरमेंट हो, जिससे कि सोसाइटी एक साथ यूनाइटेड होके आगे बढ़ सके। तो मैं रेडियो मधुबन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। जी सर, शरद सर।
1: जी, जुनून तो आपके अंदर आ गया, और आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको मोटिवेट किया है इसके लिए। निश्चित रूप से हमारे आसपास और परिवार में ही कोई ऐसा होता है जिसको देखकर हम आगे प्रेरणा लेते हैं, और आपने वो प्रेरणा अपने फादर से ली।
2: जी तो सर।
1: वो जुनून आपके फैमिली से आपको मिला है, परंतु हम ये जानना चाहेंगे कि वो जुनून क्या है और आप क्या कर रहे हैं।
2: सर, जुनून मेरा यही काम है कि मुझे एनवायरनमेंट में अपना एक रोल निभाना है। जैसे मैंने काफ़ी ट्री प्लांटेशन करे हैं, और मैंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनमें मैं मोटिवेट करती हूँ कि हमें क्यों ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ऐसे ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो कि जिससे कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो इसी सोच के साथ मैं थोड़ा एनवायरनमेंट में अपना भागीदारी निभा रही हूँ। जी सर।
1: जी, एनवायरनमेंट को लेकर आप जो क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियां बनी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप हमारे जयपुर की ग्रेटा थंबर्ग हैं, राइट?
2: जी सर।
1: तो मैं वैष्णवी से पूछना चाहूंगा कि आप शहर में क्या देख रहे हैं अभी, जयपुर में क्या बदलाव आपने देखा है, और जयपुर के एनवायरनमेंट को लेकर कौन से ट्रीज हैं जो आपको लगते हैं कि सूटेबल हैं?
2: सर, काफी ऐसे ट्रीज हैं जैसे कि हमें नीम के पेड़ लगाने चाहिए हैं, और मैंगो के ट्रीज हो गए, या टीक वुड हो गया, या फिर अशोका के पेड़ हो गए। काफ़ी सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि हमें मदद करते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट की, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिससे कि हमारा अभी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो उतना ही हमें टेम्परेचर कम मिलेगा, और गर्मी जो अभी जितना 50 डिग्री तक जाता है वो कम रहेगा। तो ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं।
1: जी। निश्चित रूप से आप जयपुर में, आपका जन्म हुआ है तो आपने जयपुर को देखा है बदलते हुए, तो जयपुर का जो वेजिटेशन है या जयपुर की हरियाली है, उसमें आपको कुछ लगा कि क्या, कैसे राजधानी शेप ले रही है अभी?
2: जी सर, इम्प्रूव हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत हद तक इम्प्रूव हो रहा है, और बाकी और भी ऐसे चीज़ें अभी करनी है जिससे कि और इम्प्रूव हो, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है।
1: जी सर। तो मेन बात ये है कि जुनून कहाँ से आता है, ऐसा क्या हो जाता है कि हम कोई चीज़ पकड़ लेते हैं? मैं वो मानसिक प्रक्रिया को समझना चाह रहा हूँ कि वो आपकी क्या समझ बनी है, कि आपको ऐसी कभी फीलिंग नहीं आती कि मेरा समय क्यों वेस्ट कर रही हूँ, भाई मैं कुछ इस समय में कुछ बिजनेस कर लूँ मैं, है ना, ऐसा? तो वो जुनून एकदम से कहाँ से आ जाता है, वो मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, वो केमिकल लोचा जिसे कहते हैं दिमाग में, तो वो क्या है?
2: ये सर बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये लोचा कहाँ से आया है। तो सर ऐसा ये बात है कि अभी हम जैसे एनवायरनमेंट का यही नहीं है कि हम रिसोर्सेज ही यूज करे जाए और पढ़ाई करी जिसमें मैंने पी डिप्लोमा करा, तो उसमें मैंने यही पढ़ा कि आप रिसोर्सेज तो यूज ले रहे हैं सोसाइटी की, तो आप वापस क्या दे रहे हैं उसको, आप जैसे एनवायरनमेंट को वापस क्या दे रहे हैं। यही नहीं कि आप रिसोर्सेज यूज करे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप वापस भी दें। यही नहीं कि आप यूज़ ही करे जाएँ, उसका एक्सप्लॉइट ही करे जाएँ और वापस कुछ ना दें, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे हमें भी ऐसा नहीं है कि हमें भी आगे जाके अच्छा ही फ्यूचर मिलेगा, हम ही अभी प्लांटेशन करेंगे तो आगे जाके अच्छा ही, हम हमारे लिए भी अच्छा ही होगा, सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। तो एक यही मेरा पार्ट है कि भाई हमें वापस भी देना चाहिए।
1: निश्चित रूप से हमें वापस देना चाहिए, अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हमें वापस देना चाहिए, तभी बैलेंस हो पाएगा। और आप तो बिजनेस पढ़ के आए हैं तो बैलेंस शीट में बैलेंस होना जरूरी है, राइट? तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप ये काम कैसे करते हैं, मतलब क्या आपको चैलेंजेस आते हैं और क्या आप तक कर चुके हैं, अभी आपके क्या लक्ष्य आप पूरे कर चुके हैं और क्या भविष्य में सोचते हैं?
2: जी सर, मेरा यही है कि अभी जैसे मैंने अभी मेरे आसपास के एरिया में भी प्लांटेशन करा है, कम्युनिटी पार्क्स हो गए, इनमें हो गए, तो मैंने उधर जाके प्लांटेशन करा है। बाकी मेरा यही फ्यूचर गोल है कि मुझे बड़े वास्ट एरिया में प्लांटेशन करना है और एनवायरनमेंट के प्रति वर्क करना है। और अभी कम एरिया है तो मेरा यही गोल है कि आगे और आगे हद तक आगे जाके कई और एरियाज में बढ़ूँ मैं, आगे जाके और आगे काम करूं। चैलेंजेस यही है कि ट्रीज को अभी उनके केयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आगे जाके जैसे कोई सही जगह देखभाल नहीं कर पाते हैं। जी सर।
1: हाँ, नहीं, आप आराम से रखें अपनी बात। जी देखिए, चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से, आपको पेड़ों को पौधों को पाने में भी चैलेंजेस आता होगा, बड़ी संख्या में पेड़ों और पौधों को लगाने के लिए आपको एक टीम चाहिए होती है, तो वो टीम को मोबिलाइज करना भी एक चैलेंज है। तो इन सारे विषयों पे आप आराम से अपनी बात रख सकते हैं। जी वैष्णव।
2: सर जैसे आपने अभी पॉइंट रखा कि पेड़ों को पानी की बहुत जरूरत होती है, तो यही एक चीज है कि जैसे अभी हमने प्लांटेशन कर दिया तो आगे जाके इतनी केयर नहीं कर पाते हैं, सब जगह जाना इम्पॉसिबल है। तो ज्यादा से ज्यादा यही है कि अभी टीम बड़ी करके और फिर उनको डेप्यूट करना कि भाई आप इधर की देखभाल करें, आप इधर की देखभाल ये करें, ऐसे करके। सर मेरा ये पॉइंट है। जी,
1: आप शहर के अपने निवास के आसपास के जो गार्डन्स हैं उनको आप मैनेज कर रहे हैं, राइट?
2: जी।
1: तो पब्लिक गार्डन्स जो आपके घर के आसपास हैं, तो चूंकि आप विद्याधरनगर में रहते हैं और एक वो इलाका काफी ऑर्गेनाइज वेल डेवलप्ड इलाका है और काफी सारे गार्डन्स हैं, पब्लिक गार्डन्स की सहेज रखना, उनकी हरियाली को मेंटेन रखना भी एक अपने आप में एक मिशन है, राइट?
2: जी,
1: आपकी टीम में अभी कितने युवा हैं आपके साथ?
2: सर अभी इतना वास्ट ग्रुप नहीं है, करीबन 10-11 पीपल है जो कि अपने अपने एरिया में कर रहे हैं, कोशिश प्रयास कर रहे हैं।
1: प्लेटफॉर्म तैयार किया है इसके लिए या आप सोशल मीडिया पे कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ?
2: व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सब, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के थ्रू भी कर लेते हैं।
1: जी,
2: ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं।
1: जी, तो सोशल मीडिया का आप उपयोग कर रहे हैं इसके लिए?
2: जी सर।
1: क्या लक्ष्य है आपके भविष्य में?
2: सर लक्ष्य यही है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए आगे की जनरेशन के लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि हम इजीली रह सके और एक अच्छा डेवलपमेंट हो सके। अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, अगर हमारे पास एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो हमारा माइंड स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें हम हमारे आसपास के जो भी एरिया है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें अपने आसपास के एरिया में, जिससे कि हमारा एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके और हम सब एक साथ मिलके हमारे एनवायरनमेंट को, एक जहाँ भी हम रह रहे हैं उसको एक अच्छा और सुखद जीवन बना सके। जी सर,
1: नहीं बिल्कुल, आपको एक मिशन अगर आपने चुना है तो उस मिशन के ऊपर आपको एक लंबी यात्रा करनी है
2: जी।
1: तो आपके क्या लक्ष्य हैं भविष्य को लेकर और अपनी पढ़ाई के बीच में कैसे संतुलन करते हैं इसको लेकर?
2: जी सर, करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, पढ़ाई भी अपनी जगह है और ये चीज भी अपनी अपनी जगह है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही अपनी जगह अपनी अपना रोल प्ले करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सर जैसे मैं ऐसे डेज बना रखे हैं कि भाई सैटरडे संडे इधर ही काम करना है, या जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये करूँ चीज। जी सर।
1: तो अपने पापा को भी साथ लेके जाते हैं, अपनी फैमिली को भी लेके जाते हैं साथ में?
2: जी सर, यस सर।
1: बहुत बढ़िया। और हम तो युवाओं से बात करते रहते हैं, और युवाओं से मैं जब बात करता हूँ तो मैं युवाओं को कहता हूँ कि 5 घंटे अपना स्वाध्ययन और 5 घंटे की स्टडीज और 5 घंटे का सोशल वर्क अगर कोई युवा करता है तो उस युवा को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी फिलॉसफी है जिसको लेकर मैं युवाओं के साथ बात करता हूँ कि आप 5 घंटे वॉलंटियरिज्म और 5 घंटे अपनी स्टडीज के बीच में अगर आप बैलेंस बनाएंगे अपनी लाइफ में तो आप निश्चित रूप से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या ये बात सही है, आप इससे सहमत हैं?
2: सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने बहुत ही अच्छी बात रखी कि 5 घंटे अपनी पढ़ाई और 5 घंटे आप सोसाइटी को दे, बहुत ही जरूरी चीज है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। आपने वो बोला बिल्कुल, हमें आज युवा ही आगे देश को आगे बढ़ा सकता है, तो बहुत ही युवा एक अहम रोल प्ले करते हैं। वो सभी से गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी किसी भी नहीं सोशल सर्विस, यही नहीं कि भाई आप पेड़ ही लगाएं, और भी काफी सारे ऐसे हेल्थ सेक्टर में हो गया या एजुकेशन सेक्टर में हो गया। सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, आपने जो रखा कि 5 घंटे आप पढ़ाई में दें या एजुकेशन में दें और 5 घंटे आप सोशल सर्विस में दें, 5-5 रूल बहुत ही सही आपने बात रखी, मैं आपसे सहमत करती हूँ। और मैं सभी युवाओं से ये विनती करती हूँ कि भाई आप अपने सोसाइटी के प्रति भी कुछ रोल निभाएं, ये बहुत ही जरूरी चीज है। और मेरा यही कहना है कि भाई किसी भी जिसमें भी आपको लगता है कि पैशन है, जिसमें भी आपको लगता है कि मैं एनवायरनमेंट के प्रति कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या फिर एजुकेशन में कुछ कर सकती हूँ या स्किल्स दे सकती हूँ जो कि अनप्रिविलेज्ड हैं उनको मैं स्किल्स प्रोवाइड कराऊंगी या कराऊंगा, तो आप वो कराएं या फिर हेल्थ में कुछ उनको फैसिलिटीज दें। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सबसे कि आप जो भी बनता हो सोशल सर्विस में आप वो जरूर करें, जिससे कि आप अपना सोसाइटी का ही अपलिफ्टमेंट होगा, उन्हीं का ही डेवलपमेंट होगा। जी सर
1: जी, निश्चित रूप से हमको 360 डिग्री डोमेन में काम करने की जरूरत है, और 360 डिग्री में हमारा एनवायरनमेंट भी है, हमारी सोसाइटी भी है, हमारा स्किल भी है, हमारा कैरियर भी है और हमारी फैमिली भी है। तो इन 360 डिग्री पे ही के सभी आयामों पे हमें काम करने की जरूरत है, तभी हम एक सशक्त देश बना पाएंगे और हमारे युवाओं का अपना खुद का भी जीवन बेहतर कर पाएंगे। और आजकल 360 डिग्री का ही मूल्यांकन है, आप कॉर्पोरेट में जब आप जाएंगे तो HR मैनेजर जो है वो आपकी बॉस की रिपोर्टिंग से अलग हटके आजकल 360 डिग्री अप्रेजल का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आपके क्लाइंट आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, आपके जो दोस्त हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और इसके साथ साथ आपके नीचे का स्टाफ और आपके कलीग्स क्या आपके बारे में सोचते हैं। उस 360 डिग्री पर अप्रेजल जब होता है तभी उस एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है। तो ये एक बदलता हुआ दौर है, तो इस दौर की सभी चुनौतियों को देखते हुए हम लोग भी साथ में काम कर रहे हैं। तो वैष्णवी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज ने आपको या आपके जहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ भी क्या आपको इस बारे में कुछ सपोर्ट या मोटिवेशन मिल रहा था, या वहाँ पर किस तरह का माहौल रहा?
2: जी सर मिल रहा था, जैसे हमने अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा तो उसमें काफ़ी हमें सपोर्ट मिला, जैसे हमें कॉलेज में भी मोटिवेट करते थे कि भाई आप अपना कुछ भी भागीदारी निभाएं सोसाइटी के प्रति, कुछ भी जैसे छोटे मोटे पेड़ हो गए हमसे लगवाया करते थे कॉलेज में, हमसे प्लांटेशन उधर भी करवाई गई है, तो ऐसा नहीं है, कॉलेज भी एक मोटिवेटिंग पार्ट था हमारे लिए और उन्होंने भी काफ़ी हमें हद तक मोटिवेट करा कि आप कुछ भी स्किल्स और दूसरे जो भी अनप्रिविलेज्ड हैं उनको स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ रोल बताएं कि स्किल्स कितनी ज़रूरी है आज के समय में। तो ऐसा नहीं है, कॉलेज ने भी बहुत हद तक हमें मोटिवेट करा और उनका एक पार्ट रहा है, इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है इस चीज में।
1: जी
2: सर,
1: कोई नई लर्निंग आपको इन दिनों में एनवायरनमेंट को लेके कोई समझ बनी है? आप क्लाइमेट चेंज के बारे में आप क्या जान रहे हैं, आपका क्या मानना है उसके बारे में?
2: जी सर, काफी हद तक चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है, काफी हद तक लोगों में जागरूकता आ रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने चाहिए। काफी हद तक चेंजेस आ रहे हैं, जयपुर में भी काफी हद तक प्लांटेशन हो रहे हैं अलग अलग जगह, काफी लोगों में मानसिकता में चेंजेस आ रहे हैं।
1: क्लाइमेट चेंज के बारे में आप क्या समझते हैं?
2: क्लाइमेट चेंज ये है कि भाई जो भी हम ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको हम, जो कि हमारी ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रही है, तो हम उसको कम करें और जिससे कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा।
1: जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे दोस्तों के साथ बात करता हूँ कि एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री से नीचे ना लेके जाएं, और जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा, मेरे फ्रेंड्स को देखा, वो एसी भी ऑन कर लेते हैं, 18 डिग्री टेम्परेचर कर लेते हैं और ऊपर से ब्लैंकेट भी यूज कर लेते हैं।
2: जी,
1: तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जब आप ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं तो फिर आप एसी को ठंडा क्यों करने की जरूरत क्या है, आप एसी को 24-25 तक रख सकते हैं अगर आपको ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं तो। और फिर ये भी है कि अगर आप 29 डिग्री पे एसी सेट कर लेते हैं और आप फैन यूज करते हैं एसी के साथ में, तो फैन जो है वो एसी, फैन और एसी का कॉम्बिनेशन जो है, फैन एसी के टेम्परेचर को और लोअर ले आता है, रूम के टेम्परेचर को और लोअर ले आता है, मतलब कि 5 डिग्री का और आपका लोअर हो जाएगा। अगर आपने 25 डिग्री पे अगर आपका एसी है तो आपको 20 डिग्री का फील कराएगा अगर साथ में आप फैन का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमें यूथ के साथ ले जाने की जरूरत है, या उनसे इस बारे में बात करने की जरूरत है, या हमारी फैमिली गॉसिप में भी हम किसी की इधर उधर की लैग पुलिंग करने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि हम इस तरह के साइंटिफिक ट्रिक्स पे बात करें कि हम अपनी लाइफ को और हमारी ऊर्जा जो है हमारे देश की, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। खैर, तो आप ये बताएं कि जो पौधों को जुटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे, बहुत मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग हो गया है आजकल। मैंने पिछले दिनों जुलाई अगस्त के महीने में पौधों को सोर्स करने के नर्सरीज में ट्राई किया, पता लगा कि सब सारे पौधे जा चुके हैं।
2: तो
1: इसका मतलब ये है कि मतलब प्लांटेशन बड़ी संख्या में हो रहा है और सर नर्सरीज में उतने पौधे नहीं बन पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कुछ युवाओं को आगे कुछ नई नर्सरीज डेवलप करनी चाहिए जहाँ से हम रीजनेबल रेट्स पे बड़ी संख्या में पौधे हर साल जो हमें जरूरत पड़ती है प्लांटेशन के लिए वो हम कर सकें?
2: जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने जैसे बोला ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पौधों को सोर्स करना, तो बेसिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप नर्सरी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, वहाँ पे पौधे पाए जाए, मिलते नहीं हैं, रीजनेबल रेट पे नहीं मिलते हैं, और हम नर्सरी में जाएं तो हमें पौधे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपने जैसे कहा कि नर्सरी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए और उसमें पौधे मिलें, सबसे मेन तो यही है कि जिससे कि ट्री प्लांटेशन में आगे जुट सके हम।
1: जी
2: सर,
1: आप टेक से भी हैं और इस बार तो राजस्थान सरकार ने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है हेलो राजस्थान का, और उस टैग पे पेड़ों को जियो टैगिंग करके ही प्लांटेशन करना है, तो क्या आपका क्या अनुभव रहा उस एप्लीकेशन के साथ में? उसमें कुछ बदलाव की जरूरत लगती है आपको, या उसमें लगता है कि हाँ नहीं ठीक है वो उपयोगी है एप्लीकेशन युवाओं के हिसाब से?
2: सब मेरे हिसाब से तो सही लगा मुझे, मैंने एक दो पेड़ों के करे हैं जियो टैगिंग,
1: हाँ।
2: तो मुझे काफी हद तक सही लगा, एक दो बार फोटो अपलोड होने में दिक्कत आई थी थोड़ी,
1: हाँ।
2: बाकी तो जहां तक मैंने यूज करा तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं आई।
1: तो ये एक ऑथेंटिक तरीका है ना?
2: जी सर, ऑथेंटिक है काफी हद तक, अगर सही रूप में करा जाए तो ऑथेंटिक है।
1: आप एक राष्ट्रीय युवा अवार्डी हैं, कैसा अनुभव रहा आपका, किस साल आपको ये पुरस्कार दिया गया?
2: नहीं सर, आई एम नॉट इन नेशनल यूथ अवार्डी, आई अप्लाइड फॉर इट।
1: अरे यू अप्लाइड फॉर इट, ओके,
2: बट
1: नहीं, अच्छा ओके, यू अप्लाइड फॉर इट बट यू आर ट्राइंग फॉर इट, राइट? बढ़िया बढ़िया, आप लगातार आप ऐसे ही प्रयास करते रहे, आपकी आगे की भविष्य की क्या योजना है?
2: सर योजना यही है कि मैं अपने एनवायरमेंट को कुछ दे पाऊँ या सोसाइटी को कुछ वापस दे पाऊँ, मेरा मोटिव ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में मैं काम कर पाऊँ और कुछ मतलब मैं सोसाइटी के प्रति कुछ अपना भागीदारी निभा पाऊँ, यही है सर मेरा मोटिव अभी का।
1: वंडरफुल, तो वैष्णवी जी, आप ऐसे ही काम करते रहें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप हरियाणा राजस्थान एप्लीकेशन को देखिएगा, इसमें हम और क्या बदलाव कर सकते हैं वो उन बदलावों की के लिए सरकार को भी सजेस्ट करिएगा और हम तक भी पहुंचाइएगा। और रेडियो मधुबन के साथ आप जुड़े रहिए, आपको शुभकामनाएं।
2: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके मार्गदर्शन में मैं ये काम करती रहूंगी, आपका मार्गदर्शन बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू वैष्णवी आप जुड़ने के लिए। और श्रोताओं जो हमसे देर से जुड़े, मैं जाने कि हमारे साथ आज थी वैष्णवी धवाई जो जयपुर से आती हैं और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और प्लांटेशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर सजग युवा हैं और अपना अपनी भूमिका को लेकर जागरूक हैं और लगातार प्लांटेशन कर रही हैं। ऐसे ही आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारा फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM रेडियो मधुबन। नमस्कार, मैं RJ शरद।

0: मधुबन रेडियो के इस कार्यक्रम जुनून में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट शरद। आज हम लोग एक नई शख्सियत नए जुनूनी के साथ फिर से आए हैं। आज हमारे साथ हैं एक युवा चेहरे जयदीप पांचाल। जयदीप अपने गांव और अपने शहर में क्या कर रहे हैं और इनका क्या जुनून है, आइए जयदीप से जानते हैं। जयदीप, आपको जीवन की यात्रा में आपने सामुदायिक सेवा को सुना या आपने कुछ इनोवेटिव चीजें की और उसके फलस्वरूप आपको राजस्थान सरकार ने 2025 का यूथ आइकन पुरस्कार भी दिया। लेकिन जुनून कार्यक्रम में हम लोग आपके जीवन और आपके जुनून के कारण को समझने का ज्यादा प्रयास करते हैं। पुरस्कार तो सरकारों की तरफ से आते जाते रहते हैं, है ना। तो जयदीप, हम ये जानना चाहेंगे कि आप की यात्रा क्या है, पहले तो अपने बचपन के बारे में बताएं, फिर हम आपसे जानेंगे कि अब आप क्या कर रहे हैं। जी जयदीप।
1: सर, मेरा नाम जयदीप पांचाल है और मैं अलवर जिले के राजगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव पूर्णला का रहने वाला हूँ। बेसिकली मेरा जो शुरुआत की जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो जो ग्रामीण स्तर पे राजकीय महाविद्यालय से हुई है। सर, हमारे जो गांव का परिवेश है वो थोड़ा फॉरेस्ट एरिया वाला है, क्योंकि हमारे गांव के समीप ही सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो सीमा है वो हमारे गांव से ही लगती हुई है। तो ऐसे करते हुए हमने शुरुआत से ही कम संसाधनों में रहते हुए हमारी जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया। तो हमने अक्सर देखा कि हमारे जो आसपास के गांव है या फिर जो हमारा गांव है वहाँ पे लोग शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। तो जब मैंने कॉलेज की, उसके बाद मैंने देखा कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए और इसके लिए कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो तब से मैंने फिर अपना जो सोशल वर्क है, कम्युनिटी वर्क है, तब से स्टार्ट किया।
0: हम उस पर आते हैं, लेकिन पहले हम जयदीप फिर से वहीं शुरुआत करते हैं कि आपके स्कूल में आप कहाँ पढ़ रहे थे और आपके पेरेंट्स किस प्रकार से आपको गाइड कर रहे थे, ये हम जानना चाहेंगे।
1: जी सर। सर, शुरुआती शिक्षा मेरी, जैसे कि मैंने बताया कि गांव में ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय से स्टार्ट हुई थी। तो ग्रामीण स्तर पर हमारे आसपास के 6 गांवों में सिर्फ एक स्कूल था, तो वहीं पर रह के हमने जो उच्च माध्यमिक स्तर की जो पढ़ाई है जो पूरी कंप्लीट वहीं से की। उसके उपरांत हमारे वहां पे कस्बा पड़ता है तहसील राजगढ़, वहां से स्नातकोत्तर किया। उसके बाद में एमए हिस्ट्री वहीं से किया मैंने, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ से। तो शुरुआत से ही मैं जो शहर की जो आबोहवा है और जो शहर का वातावरण उससे दूर रहा, और ग्रामीण स्तर पर रहने का फ़ायदा ये मिला कि जो बाहर की जो चीज़ें उनको देखने की उत्सुकता शुरू से बनी रही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब बाहर निकले और देखा तो फिर सोचा कि जो अपना गांव है, अपने जो ग्रामीण परिवेश है उसको भी हमको डेवलप करना चाहिए। तो इसके लिए फिर हमने वहाँ पे ग्रामीण लेवल पे अपने काम स्टार्ट किया।
0: पिछले दिनों जो सरकार की तरफ से युवा आइकन पुरस्कार है वो आपको मिला, लेकिन फिर से वही बात है कि वो एक महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अभी जो आपको जिस कैटेगरी में वो पुरस्कार मिला, वो कैटेगरी क्या थी और आपने क्या नवाचार उसमें किया और कैसे वो यात्रा शुरू हुई, उसकी बात अब शुरू करते हैं।
1: जी सर, अभी हाल ही में युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। ये भी राजस्थान सरकार की इसी साल की पहल है कि जो युवा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि और भी युवा आगे बढ़े। तो इसकी शुरुआत मेरी हुई थी 2019 में, कोविड काल से पूर्व हम गांव में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तब हमने देखा कि हमारे आसपास शिक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा, क्योंकि जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र है और वहाँ पे लोग नशे या तंबाकू सेवन जैसे आदतों से भी घिरे हुए थे। तो वो क्या करते थे कि जो उनका जो कीमती पैसा होता था वो अपने बच्चों की पढ़ाई में न लगाकर वो उनको अपने नशे आदि के लिए उनका यूज़ करते थे। तो हमने फिर अपने जो ग्रामीण स्तर है वहीं से एक शुरुआत की और नशे की आदत से उनका छुड़वाने के लिए हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो लोकल जो रिसोर्स पर्सन होते हैं उनके साथ कोलैब करके एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जिससे कि हमने जो हमारी जो ग्राम पंचायत है कोंडला उसको 2020 के अंदर पूरी पंचायत को टीबी से मुक्त कराने में सफलता हासिल की। तो इससे ये हुआ कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने नशे को छोड़ा और जो अपना कीमती पैसा है वो बच्चों की पढ़ाई में लगाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जब लोग तो जागरूक हो गए हैं पढ़ाई के लिए, पर हमारे वहाँ पे उचित संसाधन नहीं थे जिनके माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके, तो और एक माहौल की कमी थी, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमने कुछ कम्युनिटी लाइब्रेरीज की हमारे यहाँ पे लोकलिटी में स्थापना की। तो उसके लिए हमने सीमित संसाधनों में रहते हुए जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको आकलन किया और देखा कि हम सीमित संसाधनों में रहते हुए क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले हमने लोगों को जोड़ा, इसके लिए हमने एक टीम बनाई, यूथ टीम कोंडला, उसको हमने नेहरू युवा केंद्र संगठन के एक यूथ क्लब के रूप में रजिस्टर करवाया। उसके बाद में एक टीम बनाकर तहसीलदार वीडियो से मिले, फिर हमने देखा कि हमारे गांव में के आसपास जैसे सभी गांव में सामुदायिक भवन कम्युनिटी हॉल सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं, परंतु उनमें कोई सुविधाएं नहीं होती और वो बिना काम के गांव में पड़े रहते हैं। तो हमने देखा और सभी ने सलाह करके हम उन कम्युनिटी सेंटर्स को हमने सरपंच से और जो ग्राम पंचायत की समिति होती है उससे हमने लिया और उनको एक लाइब्रेरी सेंटर कम ट्यूशन सेंटर के रूप में डेवलप किया। तो हम क्या करते थे कि जो पहले तो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद में स्कूल से जब छूट के वो अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त होते थे जिनसे उनकी शिक्षा में अवरुद्ध होता था, तो हम उनको कम्युनिटी सेंटर पे उनको इकट्ठा करते, उनको फ्री ट्यूशन क्लासेस, उनको कैरियर गाइडेंस आदि देकर उनको एक लाइब्रेरी के रूप में वहाँ पे बैठाते, जो स्कूल के बाद में बच्चे वहाँ पे आने लगे। तो ये पहल हमारी काम लाई और फिर धीरे धीरे और जगह के लोग भी हमसे जुड़ते गए और इस प्रकार से हमने अपना काम आगे बढ़ाया।
0: जी नहीं, बेहतरीन, आपने अपनी पूरी जर्नी को बहुत संक्षेप में रखा है, लेकिन मैं आपसे फिर से वही जानना चाहूंगा कि इतना सब कुछ करने के लिए टीम चाहिए होती है और कम्युनिटी सर्विस करने के लिए आप टीम बनाना आवश्यक है, तो आपकी जो टीम है वो आपने कैसे बनाई और आपके युवा मंडल में कौन कौन से सदस्य थे ये मैं जानना चाहूँगा। जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जानना चाह रहे होंगे कि ये खूबसूरत आवाज किस युवा की है, तो हमारे साथ हैं जयदीप पांचाल जी, दुनिया के की नक्शे पे अपनी छाप छोड़ने वाले राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का से के पास के गांव से हैं, कुंडला इनके गांव का नाम है जैसा जयदीप ने बताया। अब कुंडला की तस्वीर कैसे बदली है उस पर बात करेंगे और ये वो जुनूनी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हित को बाद में रखा और सोचा कि मैं कैसे अपने गांव को बेटर बनाऊंगा और अब जब मेरा गांव बेटर हो जाएगा तो मेरा जीवन तो अपने आप ही बेटर होना है। यही एक रिश्ता है जो जुनूनी व्यक्ति समझता है, लेकिन समाज के बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, इस समीकरण को, इस राज को वो नहीं समझ पाते कि ये सबसे बड़ा राज है जीवन का कि आप कैसे दुनिया को बदलते हुए अपने आप अपना निर्माण करते हैं और यही निर्माण की प्रक्रिया में हमारे युवा जयदीप पांचाल हैं जो अभी राज्य स्तर पर पहुंचे हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने काम के माध्यम से पहुंचेंगे क्योंकि ये राज इन्होंने जान लिया है और ये राज है जुनून का। तो हम जुनून की बात कर रहे हैं, जुनून में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो जशोदा हमसे देर से जुड़े हैं, आप सुन रहे हैं मधुबन रेडियो और मधुबन रेडियो के 107.8 FM पर आपका स्वागत है। तो जयदीप जी।
1: जी सर।
0: हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आपने कैसे संगठन बनाया, तो संगठन बनाने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है, वही एक फाउंडेशन है, तो वो संगठन बनाने में क्या समस्याएं आपको आई और परिवार ने आपको सहयोग किया कि नहीं किया?
1: जी सर, मैं आपको बताना चाहूँ कि बचपन में जब मैं गांव में रहता था तो मेरे जो दादाजी थे वो गांव के पोस्ट मास्टर थे, तो इस वजह से जो गांव की एक चौपाल के रूप में पोस्ट ऑफिस को जाना जाता था और वहाँ पे सभी गांव के गणमान्य लोग आते रहते थे, तो पूरा जो माहौल था वहाँ पे सामाजिक रूप से समृद्ध था। तो फिर बाद में जब मैंने 2019 में टीम बनाने का सोचा तो इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी मुहैया की, तो देखा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन जो युवाओं को जो सोशल सामाजिक कार्य से जुड़ना चाहते हैं उनका एक यूथ क्लब वो बनाते हैं, तो हमने भी उनके साथ जुड़कर एक यूथ क्लब अपना वहाँ पे बनवाया। तो इसमें सबसे पहले फिर हमने देखा कि इसमें कौन कौन जुड़ सकते हैं, तो जो समान रोशनी रखने वाले जो हमारे आसपास के युवा थे हमने उनको जोड़ा। उसके अलावा हमने ऐसे युवाओं को भी जोड़ा जो राजकीय सेवा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और उनको काफ़ी हद तक सफलता मिल गई थी परंतु उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। तो ऐसे लोगों को

0: नेक दिल से करते हो तो लोग आपके साथ अवश्य जुड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा करते करते हमारे गांव के बहुत सारे व्यक्ति हैं और आसपास के गांव के हैं जो सरकारी सेवा में पहले से ही कार्यरत थे और अच्छे अच्छे पदों पे थे, तो हमने उनको अपनी टीम के बारे में बताया तो वो भी हमसे कनेक्ट हुए। फिर हमने लाइब्रेरी के लिए उनको बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके किसी बच्चे का या फिर किसी दोस्त का या फिर स्वयं का कभी जन्मदिन आता है तो आप उसको जन्मदिन भी मनाइए, परंतु आप 1100 रुपये की राशि गांव के सरकारी स्कूल या फिर लाइब्रेरी में आप डोनेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अपन गांव में संसाधन विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे पास करीब 80,000 की हमको शुरुआत में सहायता मिली। उससे हमने लाइब्रेरी सेटअप करने में उसको यूज़ किया। तो धीरे धीरे करते करते हमारा ये मिशन है वो स्टार्ट हुआ।
1: बहुत बढ़िया, तो ये एक शुरुआत थी। तो संगठन में आपने जैसा बताया कि आपने कुछ पढ़ने वाले, कुछ खेलने वाले और कुछ ऐसे बच्चे जो जिनको दिशाहीन थे उनको आपने साथ में युवाओं को लिया और आपने एक संगठन बनाया। तो संगठन ये किस नाम से काम कर रहा था और ये संगठन का नाम क्या है?
0: सर हमको उस टाइम ज़्यादा अनुभव नहीं था तो इसलिए हमने टीम का नाम यूथ टीम कोंडला ऐसे ही कुछ रखा था। परंतु बाद में अभी थोड़े दिन पहले हमने उसको एक एनजीओ के रूप में भी करवाया, सरिस्का इंडिया फाउंडेशन। तो अभी उसके साथ मिलकर हम पूरे सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया में धीरे धीरे हम एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: तो जब आपने सरिस्का इंडिया फाउंडेशन के नाम से आप बता रहे हैं कि जंगल को लेकर भी आप संवेदनशील थे और आप वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को लेकर भी आप संवेदनशील थे, आपने अपनी बातचीत में कई बार उस संदर्भ में बात की।
0: जी सर।
1: तो मानवीय गतिविधियों का क्या प्रभाव जंगल पे पड़ रहा है जयदीप?
0: सर मानवीय गतिविधियों का डेफिनेटली काफी बुरा प्रभाव जंगल पे पड़ रहा है। मैं हमारे वहीं के जंगल के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगी, हमारे जो जंगल है, एक तो हमारा जो अलवर जिला है दिल्ली NCR में आता है
1: जी,
0: उसके अलावा जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ पे सर पहले तांबे की भी काफी खदानें थी
1: जी,
0: और इसके अलावा संगमरमर जो पत्थर निकलता है उसकी भी काफी खदानें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके माध्यम से अगर भारत में यदि कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य है तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में आप कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते
1: जी।
0: तो वहाँ पे उस कमर्शियल एक्टिविटी बंद होने के कारण कम से कम 100 से 120 खाने खदानी है जो बंद हुई थी, परंतु अभी नेताओं ने या फिर पॉलिटिशियंस ने मिलकर उन नियमों में कुछ बदलाव करवा कर दोबारा उन खानों को शुरुआत करवाना वो चाह रहे हैं। तो इससे काफ़ी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उन पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि जो फूड चेन होती है वो प्रभावित होती है। फूड चेन प्रभावित होने से जो हमारी फसलें हैं वो बर्बाद होती है, जो किसान है वो फसलें बहुत मेहनत से उगाता है तो वो सर उस पर काफी कुप्रभाव पड़ता है
1: जी। तो आप क्या संगठन ने क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया है कि आप इन खानों को रुकवाएंगे या आप इस प्रकार का एक्टिविज्म करना चाह रहे हैं?
0: सर अभी फिलहाल हमारा संगठन है जो सरिस्का इंडिया फाउंडेशन है, तो अभी हम जागरूकता और जो ऐसे छोटे मोटे क्रियाकलाप है उनके प्रति अभी हम काम कर रहे हैं कि जो सरिस्का के आसपास के क्षेत्र हैं उसमें जो खाद्य श्रृंखला नहीं टूटे उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि हम जो सरकारी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं उनके साथ मिलके उनको ये जागरूक कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने आसपास के जो वन्य क्षेत्र हैं उनको बचाने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे सर एक आइडिया बताऊँ आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि अमूमन यदि सांप दिख जाता है किसी को तो वो उसको मारने के लिए ही प्रेरित होता है, उनको मार के ही मतलब उसको वहाँ पे भगाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों में जागरूकता की कमी है कि ये सांप जहरीला है या फिर ये जहरीला नहीं है। ये जैसे एक सांप होता है जो चूहों को खाता है तो वो सांप हमारे खेतों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, यदि वो खेतों में से चूहों को खाएगा तो उससे चूहे ख़त्म होंगे और खेतों में फसल अच्छी होती है। इसके अलावा बहुत सारी तितलियाँ होती हैं जो अंकुरण के लिए आवश्यक होती हैं, काफ़ी बर्ड्स होते हैं तो वो भी हमारे जो खाद्य श्रृंखला के लिए काफ़ी ज़रूरत है, हम इसके लिए वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान सरकार का एक अभी उन्होंने युवा साथी केंद्र एक संस्था स्थापित की है जो प्रत्येक संभाग पे जो युवाओं को मेंटरशिप का काम करती है, जिसके माध्यम से वो कैरियर काउंसलिंग और मानसिक

0: से युवाओं को कैसे समर्थ किया जा सकता है उसके प्रति कार्य कर रही है। तो हम उस सेंटर के साथ मिलकर और जो फॉरेस्ट विभाग है, वन विभाग की टीम के साथ मिलकर अभी सर जन जागरूकता का काम कर रहे हैं।
1: जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर आप समन्वय और सहयोग के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने गांव की ही नहीं, अपने परिवार और अपने स्वयं की भी तस्वीर बदल पाएंगे, जीवन को नई राह दे पाएंगे। और यही युवाओं को सामुदायिक सेवा के माध्यम से सीखना चाहिए, और देश की युवा नीति भी यही कहती है कि हम सामुदायिक सेवा के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। खैर, तो इस पूरी प्रक्रिया में आपने ये सारी बात अपने बताई, लेकिन मेरा एक सवाल मन में रह गया, आपने जब पुस्तकालय बनाया तो आपने कौन कौन सी पुस्तकें लाइब्रेरी में आपने रखी और कैसे उनका चुनाव किया, ये मैं जानना चाहूँगा। और पुस्तकालय का नाम क्या है?
0: सर, पुस्तकालय का नाम हमने स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय रखा है, और उसमें हमने ये वहाँ पे किया है कि व्यवस्था उसमें अभी जैसे हर पुस्तकालय का हमने एक जैसे क्लास मॉनिटर होता है, वैसे मॉनिटर हमने वहाँ पे रखा है। तो वो ये काम करता है कि आप वो जो भी वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो या तो वो छोटी क्लासेस के होते हैं या फिर कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो होते हैं, तो हमने वहाँ पर उनको इंटरनेट उपलब्ध करवाया है जिसके माध्यम से वो अपनी क्लासेस ले सकते हैं। दूसरा, हमने वहाँ पे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं उनके लिए काम आने वाली पुस्तकें, जैसे सामान्य ज्ञान की किताबें, गणित विषय की, अंग्रेजी की किताबें, उसके अलावा करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, और इसके अलावा ऐसी किताबें जिनको हम एक संदर्भ किताब के रूप में मान सकते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान की लक्ष्मीकांत किताब, लूसेंट, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको हमने चूज़ किया कि उनको जो सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी को समान रूप से कायम आ सकें। इसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो स्वयं की किताब लाते हैं और वहाँ पे रखते हैं। उसके अलावा हमने एक पहल और की है कि जो राज्य के सेवाओं में जो छात्र या फिर जो प्रतियोगी हैं वो चले जाते हैं, उसके बाद वो उनके वहाँ पे किताबें बचती हैं तो वो उसको उस पुस्तकालय में डोनेट कर देते हैं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे काफ़ी किताबों का संग्रह हो जाता है।
1: जी, तो आपके जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय का खुलने का और बंद होने का समय क्या रखा है आपने?
0: सर, काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिन के समय पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो वो दिन में काम भी होते हैं। तो हमारी पुस्तकालय एवरेजन सुबह 7 बजे से खुलती है और शाम को 7 बजे तक चलती है। इसके अलावा हम जो वो बच्चे होते हैं, क्योंकि पुस्तकालय में काफ़ी कीमती सामान भी होता है, तो करीब और छात्र संख्या भी थोड़ी अब बढ़ी है, तो दिन में एक साथ सभी का बैठ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो काफ़ी ऐसे जो बड़े बच्चे होते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि उनको हम रात को भी वहाँ पे आने का एक्सेस देते हैं। एक तो उससे सुरक्षा बढ़ जाती है और दूसरा, रात में आने से वो अपना बिना रुकावट के वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो सर, देखा जाता है कि अमूमन वो 24 घंटे ही खुली रहती है हमारी लाइब्रेरी में।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मधुबन रेडियो का आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वो हमें सुन रहे हैं 107.8 FM पर, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन मधुबन रेडियो, और हमारे साथ है आज एक युवा जुनूनी जयदीप पांचाल। तो जयदीप अपनी यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से बता रहे हैं और हम उनसे समझना चाह रहे हैं कि वे दुनिया को खूबसूरत बनाने के बारे में कैसे योजना बना रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो जयदीप, हम ये जानना चाहेंगे जो आपका संगठन है, डेफिनेटली आपने बनाया है उसको सरिस्का इंडिया फाउंडेशन, तो सरिस्का इंडिया फाउंडेशन जो आपकी यंग टीम है वो कैसे काम को आगे बढ़ा रही है?
0: जी सर, अभी हम सर मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैब में काम कर रहे हैं, तो उनकी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आती रहती हैं, उसके अलावा हमारे भी कुछ आइडियाज़ होते हैं तो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट टीम्स के ACF सर, CCF और DFO सर हमारे साथ काफ़ी, क्योंकि वो भी यूथ ही हैं तो उनके साथ काम करने में थोड़ा ठीक रहता है। उसके अलावा राजस्थान यूथ बोर्ड का भी हमें प्रॉपर सहयोग मिल रहा है, और नेहरूया केंद्र जो अभी माय भारत के रूप में जाना जा रहा है, तो माय भारत के साथ भी हम कोलैब करके काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हमारे क्षेत्र में करवा रहे हैं। अभी माई भारत के थ्रू कुछ ELPs भी आई है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स, तो उनके साथ भी हम मिलकर ELPs के माध्यम से अपने जो यूथ हैं उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं।
1: जी, आप बता पाएंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम क्या है? मैं अपने श्रोताओं को भी थोड़ा सा बताता हूँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम सेवा से सीखे या कहें कि अनुभव से सीखे एक कार्यक्रम है जो भारत सरकार ने डिजाइन किया है और पूरी दुनिया में युवाओं को आगे लाने के लिए इस प्रकार की इस प्रक्रिया को बेहतर समझा गया है। और इसका मकसद ये है कि युवा अलग अलग छोटे छोटे कार्य करते हुए प्रशासन के साथ, कॉरपोरेट के साथ, समाज के साथ सीखें, और चूंकि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया को ही रियल माना गया है सीखने की दुनिया में, कि आप कुछ करके ज्यादा बेहतर सीख पाते हैं, और फिर उसको मालूम चलता है उस युवा को उस प्रक्रिया में कि ये कार्य मेरे लिए बना है और इस कार्य को मैं जिंदगी भर अपना सकता हूँ और इस काम को करने के लिए मेरे जिंदगी का मकसद जो है इसी काम से सिद्ध होता है, या मुझे ये कार्य अच्छा लगता है, मैं इसको बिना थके कर सकता हूँ। तो ऐसी समझ उसकी बन सके और वो सही उम्र में सही कार्य को चुन पाए, या कहें कि अपनी पसंद का कार्य चुन पाए, या कहें अपनी प्रवृत्ति या अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य को चुन पाए, उस पेशे को चुन पाए, ऐसा इस कार्यक्रम का मकसद है। और ELP कार्यक्रम से युवा शक्ति को भी एक नई ऊर्जा मिलती है। इस सारी संभावना को देखते हुए भारत सरकार ने ELP प्रोग्राम जारी किया है, और कोई भी युवा माय भारत पोर्टल पर, भारत सरकार के मेरा युवा भारत पोर्टल पर जाकर इस प्रक्रिया से जुड़ सकता है। तो जयदीप ने चूंकि इस विषय को छेड़ा है तो मैंने भी इस पर अपनी बात रखी है। तो जयदीप, आप ये बताएं आपका क्या अनुभव रहा ELP कार्यक्रम के साथ और आपके युवाओं का क्या रुझान है, बताएं।
0: सर, हमारे क्षेत्र में हमने युवाओं को जब माय भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया तो हमारे क्षेत्र में युवाओं को इसके प्रति काफी अधिक रुचि थी। तो एक समय ऐसा भी आया जब पूरे देश में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट से थे, तब हमने देखा कि हमारे यहाँ ELP प्रोग्राम्स काफी चलाने चाहिए। तो हमने जो लोकलिटी में जो यूथ है उनसे कंसिडर किया कि हमको आपको किस क्षेत्र में सीखना है। तो उन्होंने बताया कि एक तो हमको जैसे पुलिस विभाग के साथ उनके कार्य जो करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में उनके साथ मिलकर काम करना है। तो हमने पुलिस विभाग के साथ में मिलकर ELP प्रोग्राम एक सेटअप किया। उसके अलावा जो राजकीय अस्पताल होते हैं तो उसमें भी हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, उनको हमने वहाँ पे एनरोल करवाया। और वो हॉस्पिटल में किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से लोगों की वहाँ पे सेवा की जा सकती है, तो वहाँ पे अभी वो ELP प्रोग्राम्स हमारे यहाँ चल रहे हैं।
1: जी, मैं आपको बताऊँ कि ELP कार्यक्रम के माध्यम से मेरे जिले करौली जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ वहाँ पर भी एक नया अनुभव ये रहा कि जिस अस्पताल में मैंने कुछ महिला हमारी वॉलंटियर्स को, युवा महिला वॉलंटियर्स को संलग्न किया, तो मैंने देखा कि वहां पर महिला चिकित्सकों का अभाव था और वहां के लेबर रूम में महिला चिकित्सक ना होने के कारण जो गर्भवती महिलाएं जो थी वो अपने डिलीवरी के लिए या कहें कि अपने जच्चा बच्चा के इलाज के लिए नहीं आ रही थी, और या कहें कि अपने डिलीवरी के लिए उस अस्पताल को नहीं चुन रही थी, और वो जयपुर या किसी और बने बड़े शहर में जाने का प्रयास कर रहे थे जिससे कि उनके जीवन में खर्चीलापन आ रहा था। तो जब हमने हमारे वॉलंटियर्स को वहां पर डिप्यूट किया तो एक महीने के अंदर ये रुझान आया कि मालूम चला कि महिला प्रसूताओं की संख्या वहां पर बढ़ गई, क्योंकि तो उन्होंने देखा कि हमारे मदद के लिए, हमारे सहयोग के लिए यहाँ पर महिला स्टाफ अवेलेबल है, जबकि वो हमारे वॉलंटियर्स थे। और हमारे ELP कार्यक्रम के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से युवाओं को जानने को मिला कि कौन कौन से ऐसे बचाव हैं, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, या किस प्रकार के टेस्ट हैं, या क्या देख रेख करना चाहिए जच्चा बच्चा को। तो ये सब संभावनाएं भी हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से उन परिवारों में पहुंची जिन परिवारों में जागरूकता की कमी सामान्यतः रह जाती है, और उस जागरूकता की कमी के कारण बच्चा कम उम्र में या तो विकलांग या फिर कमजोर हो जाता है। और आपको तो मालूम ही है करौली और कुछ देश के हमारे ऐसे जिले हैं जहां पर बच्चे जो हैं का जो विकास है, शारीरिक विकास है, वो देश के स्टैंडर्ड मानकों से कम है, जो कि हम पोषण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से बचाव करने में ELP कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा ही कुछ रुझान हमारा है जो मैंने आपसे साझा किया, और अलवर में भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नए प्रयास होते रहे होंगे। कुछ ऐसी बात जो आपके युवा संगठनों के माध्यम से आपने सीखी, ये आपके जीवन के आगे का मकसद क्या है और आप क्या सोचते हैं, इस पर भी प्रकाश डाले हैं जयदीप जी।
0: जी सर, सर मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जो राजस्थान सरकार है वो एक यूथ डेलीगेशन भेज रही है जापान के लिए, अभी उसमें एप्लीकेशन आए हैं, अभी हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ था एसएमएस स्टेडियम में, तो फिलहाल तो अभी उसमें मेरा जाना क्या है, आगे देखते हैं क्या रहता है। तो वहाँ पर जो मेरा जो पीपीटी प्रेजेंटेशन का विषय था कि एम्पावर यूथ एम्पावर राजस्थान, तो उसके माध्यम से मेरी एक पहल आगे भविष्य में ये रहेगी कि हम किस प्रकार अपने राजस्थान के युवाओं को स्किल करके उनको सशक्त बनाकर 2047 तक किस प्रकार से हम भारत को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलवाने में अपन किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। तो अभी आने वाले भविष्य में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मेरा जो फोकस एरिया है वो रहेगा।
1: नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाए, तो इस विकसित राष्ट्र की प्रक्रिया में हमें अभी से हमारे समाज के, जैसा आपने बताया कि हमने बच्चों को जागरूक किया, पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, अब आप सोचिए कि जो बच्चा अगर आज स्कूल से ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, वो नहीं पढ़ पाता है, तो निश्चित रूप से जो बच्चा आज 5 साल का है वो 2047 में 30-40 साल का होगा, और वो नहीं पढ़ पाएगा, आज ड्रॉप आउट हो गया है तो वो बच्चा उस समय भी निरक्षर होगा, तो हमारा 2047 का सपना जो है वो टूट जाएगा। तो हमारा एक भी व्यक्ति हमारा निरीक्षर ना रहे, ये 2047 में विकसित होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मानक है। और तो हमें आज ही सभी बच्चों को विद्यालय में पढ़ाना सुनिश्चित करना होगा और उनको एक अच्छी शिक्षा देनी होगी, अगर हमें 2047 का सपना पूरा करना है, अन्यथा ये सपना पूरा करना मुश्किल होगा। तो इस प्रक्रिया में आपने बताया है कि हम भी सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सरिस्का और आसपास के इलाके में कुछ ना कुछ प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आगे की क्या प्रक्रिया है। जापान तो आप निश्चित रूप से जाएंगे ही, वो तो राजस्थान सरकार आप जैसे युवाओं को लेकर जाती है और ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से ही हम सीखते हैं। और आपको बताऊं कि जयदीप, हमारे आज़ादी के आंदोलन में भी इस यूथ एक्सचेंज का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब हमारे लीडर्स जो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को लड़ा है, वो जब यूरोप गए, अमरीका गए, तब उनको मालूम चला, चाहे उसमें लाला हरदयाल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बाबा साहब हो, जो भी लोग इस आंदोलन में जुड़े रहे, उनको मालूम चला कि दुनिया को में कैसे जिया जाता है, युवाओं को कैसे पढ़ने के लिए 24 आवर लाइब्रेरी मिलती है, कैसे उसको कसरत और व्यायाम के लिए खेल के मैदान मिलते हैं, कैसे वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकता है, वो बाल विवाह से मुक्त है, है ना, तो किस प्रकार के जो सामाजिक कुरीतियों से वो दूर है, तो उसको किस प्रकार से फ्रीडम और स्वतंत्रता मिलती है। तो जब हमारे युवा बाहर गए जो ये क्रांतिकारी थे, तो उनको मालूम चला कि दुनिया में कैसे जिया जाता है, कि दुनिया में कैसे मानक है, हमारे स्टैंडर्ड हैं, क्या सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें भी आज़ादी का आंदोलन करना है और हमें अपने देश को हमारे हाथों में लेके ऐसे ही विकसित बनाना है। तो तभी यूथ एक्सचेंज की संकल्पना को मजबूती मिली और यही यूथ एक्सचेंज है। इसी यूथ एक्सचेंज के माध्यम से हम, भारत सरकार चाहती है या राजस्थान सरकार चाहती है, अलग अलग राज्य सरकार चाहते हैं कि हमारे युवा विदेशों में जाएं और सीखें। निश्चित रूप से जब आप जापान जाएंगे, तो दुनिया के एक विकसित राष्ट्र में जब जाएंगे, तो आपको 2047 के लिए एक विजन मिलेगा, तो वो मौका आपको मिले, ऐसी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन हम आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे, ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे पूछना भूल गया हूँ और आपको लगता है कि आप बताना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो बताएं। और एक बार आप, हम ये भी आपने एक विषय रखा कि एम्पावर यूथ एम्पावर राजस्थान, तो उसकी संकल्पना क्या है, उस पर आप चाहें तो 2 से 5 मिनट आराम से आप विस्तार से हमें बताएं, हमारे श्रोताओं को।
0: सर, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है कि जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करें, तब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए। तो अभी 2025 चल रहा है और 2047 तक आते आते हमारे पास अभी 22 वर्ष का समय है। तो कृपा करके अपने यूथ को, क्योंकि हमारी जो युवा शक्ति है वो अभी माननीय मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी ने कहा था कि जो राजस्थान की जो युवा शक्ति है वो 65% जो युवा है जो राजस्थान की कुल जनसंख्या में है, तो अभी हम उनको स्किल्स के माध्यम से उनको जागरूक करके और उनको आगे बढ़ाकर अपन विकसित राष्ट्र का, विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि भारत में हर साल करीब 2 मिलियन यूथ जो काम में आता है, जो रोजगार के लिए आगे आता है, परंतु उनमें से देखा जाता है कि 2% से भी कम हैं जो उस जॉब के लिए रेडी रहते हैं और जॉब के लिए स्किल रहते हैं। अगर भारत को 2047 तक सर विकसित बनाना है, तो करीबन 15 बिलियन हमको स्किल लेबर की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमको स्किल के लिए और युवाओं को प्रेरित करना होगा। सर, ऐसी कुछ कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जिनके माध्यम से अगर युवाओं को रोजगार स्किल किया जाए तो वो छोटे छोटे अपने रोजगार सर्जित कर खुद को उत्थान कर सकते हैं और धीरे धीरे वो अपने राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं।
1: तो इस एम्पावर यूथ और एम्पावर राजस्थान में आपने बताया कि आप सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से करेंगे, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स युवाओं तक पहुंचेंगे कैसे? आपने जैसा बताया कि आप एम्पावर यूथ और एम्पावर राजस्थान कार्यक्रम में सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से राजस्थान के विकास में कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स युवाओं तक आप कैसे पहुंचाएंगे?
0: हाँ सर, जैसे कि हम एक डेटा देखते हैं कि जो चाइना है आजकल विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है, तो चाइना में एक सेंटर होता है गांव में ग्रामीण स्तर पर टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तो उसमें क्या होता है कि ऐसी जो जो छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स जैसे अपना रेज्यूमे बनाना, इंटरव्यू प्रेजेंट करना, उसके अलावा इंग्लिश कम्युनिकेशन और ये काफ़ी जो स्किल्स होती हैं उनके बारे में सिखाया जाता है। तो अपने अभी जब जो राजस्थान का 2025 का बजट आया था, तो उस बजट में पूरे राज्य से युवाओं को भी मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ पे बुलाया था, तो मेरा वहाँ पे एक सुझाव था कि प्रत्येक ग्राम में एक ऐसे सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए जिसके माध्यम से युवाओं को कनेक्ट किया जाए, उनको शिक्षा के प्रति पढ़ा जाए, उनको खेलों का वहाँ पे व्यवस्था हो, उसके साथ ये खेल मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि यदि युवा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तो वो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकेगा। साथ में वहाँ पे उनको एक कम्युनिटी वहाँ पे ऐसे ब्लॉक स्तर पे स्किल सेंटर्स की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पे युवाओं को पहचान कर चिन्हित कर उन स्किल सेंटर्स के वहाँ पे भेजा जाए और उनको सॉफ्ट स्किल्स या फिर जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं वो प्रोवाइड कर उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जाए।
1: बहुत बढ़िया। तो क्या आपने इस TVTC पर क्या क्या सुविधाएं और अवेलेबल होती हैं, और आपने ये TVTC का कॉन्सेप्ट जो बताया है चाइना का, क्या आप अपने गांव में इसकी स्थापना के बारे में सोच रहे हैं और आपने कैसे इसको रिसोर्सेज जुटाएंगे इसके लिए? आप
0: सर अभी शुरुआती स्टेज में प्रिपेयर किया था, उनको हमने थोड़ा गाइडेंस देके, एक कोर्स होता है सर MSW सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर, तो वो करवाया। उसके बाद हमने उनको एक काफ़ी NGO होते हैं जो अभी स्किल के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो जैसे ही एक अंबुजा फाउंडेशन है, उसके साथ ही एक आयुष्मान फाइनेंस बैंक है उनका फाउंडेशन है, तो सर हमारा एक अभी वॉलेंटियर है वो जयपुर का जो आयुष्मान का स्किल सेंटर है तो वहाँ पर सर अभी वो वर्क कर रहा है। तो हम ऐसे युवाओं को चिन्हित करते हैं जिनको स्किल्स की आवश्यकता है, उसके बाद उन युवाओं को उन सेंटर्स के पे भेजते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो सरकारी स्तर पर ऐसे स्किल सेंटर्स की कमी है, तो हम उस सेंटर पे उनको भेजते हैं। वहाँ पर सर एक नॉमिनल 2500 रुपये की फीस बच्चे से लेते हैं और उसमें 50 दिन का एक स्किल जो भी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं उसमें, तो उन स्किल्स को उनको सिखाते हैं और उसके बाद में उनको एक रोजगार के रूप में युवाओं को जोड़ते हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। धीरे धीरे करके अभी हमने 20 से 30 युवाओं को वहाँ पे भेजा है और वो अभी रोजगार भी उनको मिला है। तो ऐसा करके हम यदि सभी लोग प्रयास करें तो ऐसा करके धीरे धीरे बदलाव हो सकता है
1: जी। तो चलते चलते कोई आपका संदेश हमारे युवाओं के लिए और सुनने वालों के लिए हो तो बताएं यदि।
0: सर युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपने देश को विकसित करना है तो पॉजिटिव वे में रहते हुए नेक दिल से काम करते रहें और नशे आदि लतों से दूर रहें, क्योंकि नशा खुद के साथ साथ परिवार और समाज को भी खाता है। तो सभी चीज़ों से दूर रहते हुए अपने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य करते रहें
1: जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून, और जुनून में थे हमारे साथ आज जयदीप पंचाल फ्रॉम अलवर सरिस्का के पास टुंडला गाँव से। और चलते चलते बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ना आप हमें थका पाएंगे ना आप हमें हरा पाएंगे, रोक सको तो रोक लो, आंधी अपनी गति से आ रही है। थैंक यू वेरी मच, सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 8 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली से पहले गीत बजा है, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु जी। बाबा कहते हैं, नैन हीन अर्थात जिनके ज्ञान चक्षु खुले नहीं हैं, इसीलिए वो धक्के खाते हैं। और ये भक्त भगवान को पुकारते हैं कि आकर हमें राह दिखाओ। जब से द्वापर युग आरंभ होता है, भक्ति मार्ग आरंभ होता है, तब से ही मनुष्य अज्ञानता के अंधेरे रात में धक्के खाना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं, ज्ञान चक्षु अर्थात डिवाइन इनसाइट। ज्ञान चक्षु विधाता एक परमात्मा के लिए कहा जाता है, और वह आकर के सब आत्माओं को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। ज्ञान चक्षु अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, आत्मा का यथार्थ ज्ञान, पिता परमात्मा का यथार्थ ज्ञान। और ये ज्ञान मिलने से ही आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर मिलन होता है। तो बाबा कहे, इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के बने हो, तुम्हें मात पिता के गद्दी नशीन बनना है, अर्थात लायक बनना है। और लायक बनते ही है पवित्रता की धारणा से। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप से 21 जन्म का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। बाबा से 21 जन्म का पूरा वर्षा लेने की विधि है, इस संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्म के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी है, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। भगवान को समझने के लिए, उसको जानने के लिए बाबा कहते, कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से भक्ति शुरू हुई तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा।

जाता था। भारत सचखंड है, भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत की महिमा क्यों बड़ी जबरदस्त है? क्योंकि भारत ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। बाबा कहते सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। नयनहीन मन ज्ञान चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। श्रीमत के आधार पर बुद्धिवानों की बुद्धि परमात्मा आकर के हमें बुद्धिवान बनाते हैं। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। बाबा कहते ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही बाप को और बाप की सारी रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व पांच विकार है, इसलिए घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, ज्ञान का प्रकाश है तो ज्ञान की रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, इसीलिए गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में और पुजारी है अंधेरे में। तभी तो कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया तो अज्ञानता का अंधकार विनाश हो जाता है। परमात्मा को आप ही पूज्य आप ही पुजारी नहीं कह सकते। बाबा कहते परमात्मा को आप ही पूज्य आप ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही परम पूज्य और सदा के लिए पूज्य है। सबको पूज्य बनाने वाला, सब आत्माओं को भी पूज्य बनाने वाला, उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है। शिव बाबा भी आत्मा है परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं। यह पहले नंबर का अज्ञान है। जो ये कहे कि आत्मा ही परमात्मा है तो फिर ये कहना कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, बाबा कहे ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना, ये है नंबर वन अज्ञान।
तो पहले नंबर का ज्ञान है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे, पूरी मानव जाति के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है, ईश्वर है रचता। इस संसार के सभी आत्माएं ईश्वर के रचना है, तो फैमिली हो गई। गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम मात पिता किसको कहते हो? कौन कहता है ये? कौन कहता है, किसको कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। ये आत्मा कह रही है परमात्मा को। तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप? मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूं नई दुनिया के लिए। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। क्यों भ्रष्ट कहा? स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कैसे? कहते वहां भी कंस जरासंगी हिरण्यकश्यपादी थे। बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? बाबा पूछते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो, गाया भी जाता है शिवरात्रि, है ना? तो कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्य के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने हैं। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहां दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रॉन्ग है ना। बाबा कहे ये सबसे बड़ा अज्ञान है, जो समझते आत्मा सो परमात्मा ये समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे। हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनास्टी थी, स्वर्ग में सिर्फ नारायण की डिनास्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, वैसे
वहां भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो, वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम 100 ब्राह्मण चोटी है, इस समय हम है ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में, जिसने ईश्वर को पहचाना जाना तो बाबा कहे तुम आकर के ईश्वर की औलाद बनते हो प्रैक्टिकल में। वैसे आम सारी दुनिया है, लेकिन जिसने समझा है वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का, सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। बाबा कहते हैं पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत शाहूकार था, मंदिरों में भी अकीचार धन था, भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है तो क्या कह देते, वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते ये सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन सके। बाबा कहे अपने आप को देखा जाता कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस है, यह है ही ऋण के पानी मिसल यानी मृग तृष्णा के समान राज्य। यह है ऋण के पानी मिसल राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती है हमारी लाज रखो, सब द्रौपदियां है ना, यह बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी, नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, लौकिक अलौकिक दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, अर्थात जीते जी इस देह सहित सारी पुरानी दुनिया से
मर जाना है। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं तो खुशी होनी चाहिए ना। कालों के काल महाकाल को बुलाया है, फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे वो प्रजा पद पाएंगे। यहां तुम आए हो राज्य पद पाने, ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है, ये पढ़ाई है राजाई के लिए। बाबा कहते इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है, ये पढ़ाई है ही राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाला टीचर से रखना पड़े। अगर दुनिया में कोई बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ रहा हो तो जरूर उनको योग अपना रखना पड़े उस टीचर के साथ जो वो पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहां तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते मैं परमधाम बहुत दूर से आता हूं। परमधाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। बाबा को परमधाम इतना ऊंचे से आने में भी खाली सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं, जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते, बाकी सब आत्माएं फिर शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनका पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। इमॉर्टल माना जो समाप्त नहीं होता है, अविनाशी। तो आत्मा इमॉर्टल यानी अविनाशी है, तो उनको पार्ट भी इमॉर्टल यानी अविनाशी मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है, यही स्टार बड़ा छोटा हो न सके। सब आत्मा एक साइज की है, कोई छोटा बड़ा हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स, गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहां तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा ककपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। हाँ, कितना उदार दिल, तुम्हारा ककपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा, देह सहित जो कुछ है बस सब मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूं, सिर्फ मेरी मत पर चलो, बलदंदा आदि करो। उसके लिए बाबा मनाई नहीं करते, विलायत जाओ कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो, खबरदार रहना। बस सावधान रहना है, खबरदार रहना, किससे? माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
नमस्ते, शुक्रिया बाबा।